0: अगर पेपर लीक होता है तो उसके बाद कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन परीक्षा लीक प्रूफ कैसे कराई जाएगी, किसी परीक्षा का पेपर कैसे तैयार किया जाएगा, देश भर में लीक प्रूफ परीक्षा कैसे होगी, इसके लिए एक्सपर्ट की हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है।
1: फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नया बिल संसद में पेश हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन शुरू हो गया, हाई पावर टास्क फोर्स की कमेटी बन गई, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा सुधार के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी के परीक्षा सुधार चार्टर के 5 सूत्रीय प्रस्ताव अभी नए बिल का हिस्सा नहीं है। दरअसल सीजेपी ने केंद्र सरकार को अपनी तरफ से परीक्षा सुधार चार्टर का मसौदा सौंपा था, तब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इसकी जानकारी दी थी।
2: ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए। ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना यह है, जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: आखिर कॉकरोच जनता पार्टी के परीक्षा सुधार चार्टर में क्या है, समझिए। नंबर 1, कोई भी परीक्षा रद्द होती है, टल जाती है या फिर पेपर लीक होता है तो प्रभावित छात्रों को 10,000 मुआवजा मिले। नंबर 2, अगर कोई परीक्षा किसी आपात स्थिति में रद्द की जाए तो उसे 72 घंटे में फिर कराया जाना चाहिए। नंबर 3, OMR शीट या आंसर शीट का डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के बजाय टीचरों से चेक करवाया जाए। नंबर 4, परीक्षा या नतीजों में देरी से प्रभावित छात्रों को एज लिमिट में छूट दी जाए। नंबर 5, NTA को एक ऑटोनॉमस कमीशन बनाया जाए, सिर्फ परमानेंट स्टाफ रखा जाए और हर साल फाइनेंस और परफॉर्मेंस को ऑडिट किया जाए। नंबर 6, SSC को भी कमीशन का कानूनी दर्जा दिया जाए। सरकार की तरफ से यही भरोसा दिया गया है कि CJP के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद बिल में शामिल किया जाएगा। तो क्या सरकार और CJP के बीच हुई बातचीत कैबिनेट में बिल पास होने के बाद हुई, इस वजह से CJP के 5 सूत्रीय प्रस्ताव को शामिल करना मुमकिन नहीं था? क्या जिस बिल को लोकसभा में सरकार की तरफ से पेश किया गया है उस बिल में सरकार संशोधन भी पेश कर सकती है, क्योंकि तभी CJP के प्रस्ताव को बिल का हिस्सा बनाया जा सकता है।
3: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्ताव में स्टूडेंट चार्टर की मांग की गई है, ताकि जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जा सके, क्योंकि पेपर लीक सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। ऐसे में सीजेपी से किया गया वादा सरकार ने पूरा नहीं किया तो क्या एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी स्टूडेंट चार्टर को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर सकती है? दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बिल को लेकर सोमवार को दिन भर संसद में हंगामा जारी रहा। विपक्ष प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन को लेकर गृह मंत्री पर हमलावर रहा। हालांकि स्पीकर के दखल के बाद विपक्ष पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए तैयार हो गया था। अब आज पेपर लीक बिल पर चर्चा पूरी होने की उम्मीद है।
5: आई राइज टू मूव द पब्लिक एग्जामिनेशन ब्रैकेट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2026।
0: संसद में दिन में 12:10 पर पेपर लीक बिल पेश हुआ, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच आज दिन भर इस बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। पेपर लीक को लेकर पहले विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा था। अब इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार पर विपक्ष हमलावर है।
6: केवल हंगामा किया, गाड़ी में बैठ के चले गए, तो देश देख रहा है कि उनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं। जब आज सदन को चर्चा होनी चाहिए तब भी सदन को बाधित कर रहे हैं, तो इसके लिए कितना बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। और देश इनकी जनता इस कार्रवाई से कृत्य से उनको माफ नहीं करेगी।
7: हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा, क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती?
0: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आरोप है कि छात्रों का आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। न तो खुदकुशी करने वाले छात्रों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ और न ही छात्रों के खिलाफ पुलिस का एक्शन रुका है।
8: इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार झुक गई? सरकार तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार।
9: सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है।
8: नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को। सदन में ये बात तो आए।
9: सर आज छठा दिन है, आप लोग
8: सवाल छठे दिन का नहीं है। हाँ। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था आपका?
9: बात तो बातचीत से ही हल होगा ना सर। नहीं,
8: बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया।
9: बिहार में AK-47
8: और AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं।
0: भले ही विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन पेपर लीक बिल को लेकर सरकार उल्टा विपक्ष पर सवाल दाग रही है।
10: पार्लियामेंट में अगर डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? मैं फाइनली फिर से अपील करता हूँ कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के साथियों को कि हंगामा करके स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा बिल लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटिमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए।
11: जब तक ये सरकार पूरे जो इस भ्रष्टाचार से लिप्त हुए लोगों को बचाना चाहती है, संरक्षण देना चाहती है, तो इस अमेंडमेंट का कितना फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर वो सीरियस है, गंभीर है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारत के पूरे शिक्षा की प्रथा को कब्जा कर लिया जाए। तो इसीलिए अभी भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई ठोस कदम नहीं आई है कि वे शिक्षा विभाग में सुधार चाहते हैं।
0: टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद की माने तो पेपर लीक बिल सिर्फ ध्यान भटकाने का हथियार है, क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने लीक प्रूफ पेपर के लिए कानून बनाया था, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा।
12: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत में अगर आप चर्चा के लिए तैयार नहीं है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। और मेरी हम सभी सांसदों को छात्रों का हित देखते हुए चर्चा करनी चाहिए।
13: क्या सरकार ये गारंटी देती है कि पेपर लीक नहीं होगा? 24 में भी तो बिल लाए थे, 2 जुलाई 2024 में बिल के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन होता चला गया। जब तक वहां प्रोफेशनल नहीं बैठाए जाएंगे, आरएसएस के लोग हटाए नहीं जाएंगे, तब तक कैसे होगा? और क्या गारंटी देती है सरकार कि इस बिल आने के बाद पेपर लीक नहीं होगा?
14: प्रदर्शन खत्म होने के बावजूद विपक्ष इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाने में जुटा हुआ है। 2027 में यूपी में चुनाव है, लिहाजा समाजवादी पार्टी की नजर युवाओं पर टिकी है।
15: भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पर भी अत्याचार नहीं रुक रहा है, और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।
16: जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती, ये संसद चले नहीं देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया, तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है, तो संसद में इन्होंने मना किया कि ये बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए और देश जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि देश जो है, देश ने जो है इनको मैंडेट नहीं दिया है। तो ये इस तरह की राजनीति, जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है, वो कर रहे हैं।
14: भले ही आज संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन बिल पेश होने के बाद विपक्ष की तरफ से 91 संशोधन पेश किए गए हैं। शाम 5 बजे हुई मीटिंग में पेपर लीक बिल पर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के लिए लोकसभा में 6 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है, जो जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। अब देखना यही है कि कल पेपर लीक बिल पर संसद में चर्चा शुरू होगी या फिर एक बार हंगामे के चलते सदन स्थगित होगा। आज तक ब्यूरो।
4: धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद जब पहली बार संसद पहुंचे, तो बीजेपी के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया, शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया गया। लेकिन दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान के संसद पहुंचते ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन की अगुवाई प्रियंका गांधी कर रही थी।
14: शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे, तो ऐसा नजारा था। एक तरफ बीजेपी के सांसद थे जो धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत कर रहे थे, उनका अभिनंदन कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान को मिथिला पगड़ी और शॉल भेंट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ का नजारा अलग था। दूसरी तरफ विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। खुद प्रियंका गांधी विपक्षी सांसदों के दल को लीड कर रही थी।
17: इस वक्त हमारी मौजूदगी है संसद भवन के मकर द्वार पर, और ठीक मेरे पीछे आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे जो सांसद हैं इंडिया ब्लॉक के, वो यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी एक मार्च लीड करती हुई नजर आ रही है, उनके हाथ में जो तख्तियां हैं उस पर लिखा हुआ है 700 छात्रों पर हुआ जुल्म, हुआ लाठीचार्ज, इस तरह की बातें जो है वो यहां पर विपक्षी सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं फिर से एक बार एनडीए वर्सेस इंडिया यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। बीच में आप देखिए कैसे सीआईएसएफ के जवानों ने एक यहां पर एक लाइन लगा ली है, बीच में एक बॉर्डर सा बना दिया है, ताकि इंडिया ब्लॉक और एनडीए के जो सांसद है आमने सामने ना आए। वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो यहां पर पहुंचे, उनका स्वागत जो है एनडीए के सांसदों ने किया है। आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान जो है वो संसद भवन पहुंचे हैं, तो उनका स्वागत यहां पे जो एनडीए के सांसद थे उन्होंने किया।
14: धर्मेंद्र प्रधान का बीजेपी के सांसदों ने स्वागत किया तो कांग्रेस भड़क गई।
18: सरेआम बड़ी बड़ी गन्स लेकर घूम रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली में देश की राजधानी की सड़कों पर आज तक कभी पैलेट गन्स चलते हुए सुना आपने?
14: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अकेले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा।
19: तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। देखिए, एक धर्मेंद्र प्रधान गया, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ गया। हम तो आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ है कि आरएसएस ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को तबाह कर दिया। तो एक आरएसएस का गया, दूसरा आरएसएस आ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है।
0: विपक्ष के सवाल जारी रहे, हंगामा होता रहा। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया गया, मगर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बस हाथ जोड़कर चलते बने।
20: विपक्ष अभी भी हाउस नहीं चलने दे रहा है। मैंने इस्तीफे की आपकी मांग कर रहा था, कुछ कहना है उस पे सर? की हाउस में बिल आ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे सर?
21: के बावजूद जो है हाउस रन अपोजिशन नहीं होने दे रहा है।
20: क्या सर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है
21: वो छात्रों के हित में है सर, कि अभी ये लोग नहीं वो कर रहे हैं
20: सर? हाउस अभी भी नहीं चलने दे रहे सर, आपका इस्तीफा हो गया है।
0: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, नए शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाल लिया है, मगर हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसमी सिंह के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
4: संसद में मचे हंगामे के बाद अब बात यूपी की सियासत के बारे में करेंगे, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और अपनी सभाओं में समाजवादी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर से जब सीएम योगी ने अखिलेश की दिनचर्या पर सवाल उठाए तो समाजवादी पार्टी भड़क गई।
22: अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है।
23: 27 के समर में अभी समय है, मगर सीएम योगी पूरे रौ में है। वो अलग अलग शहरों में जनसभाएं कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं।
22: अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में चंगा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन भी होता है, रामनवमी की शोभा यात्रा भी होती है, दुर्गा पूजा के पंडाल भी सस्ते हैं, होली और दीपावली लोग मजे में आयोजन में भागीदार बनते हैं, परिवार के साथ आयोजन में भागीदार बनते हैं, कितना उत्सवपूर्ण माहौल होता है।
23: लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, मगर सीएम योगी अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलने लगे, उनकी दिनचर्या पर तंज कसने लगे।
22: जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठेगा, 2 बजे तक तैयार होगा, 5 बजे जिम जा करके फिर वहां पर जिम की ट्रेनिंग में चला जाएगा और 7 बजे के बाद अपनी महफिल में सजा देगा, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे? न किसी व्यक्ति से मिलना है, न कोई संवाद करना है, न विकास का कोई विजन है, केवल लूट करके अपने परिवार का खजाना भरना है।
23: अखिलेश यादव पर किया गया तंज समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। राम गोपाल यादव से जब इस मसले पर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
24: पागल लोगों का जवाब मैं नहीं देता हूँ, पागल लोगों का जवाब मैं नहीं देता हूँ, पागल लोगों का जवाब मैं नहीं देता हूँ।
23: राम गोपाल यादव की भाषा से बीजेपी भी तिलमिला गई।
25: राम गोपाल यादव बौखला गए हैं, जिस तरह की भाषा उनकी है, भाव भंगिमा है, ये स्पष्ट है वो जान रहे हैं कि चुनाव परिणाम उनके प्रतिकूल होने वाला है। और आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार काम कर रही है, इसके बाद उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए बौखलाहट में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और ये भाषा दिखा रही है कि उनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है, इसीलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।
26: और आज आदरणीय मोदी जी देश के युवाओं को, छात्रों को मंच देने की बात कर रहे हैं, न्याय देने की बात कर रहे हैं, वो इनसे पच नहीं रहा है, इसलिए पागल कौन है ये तय कर सकती है देश की जनता।
23: अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये टकराव और बढ़ेगा, बयानों के बाण और चलेंगे। आज तक ब्यूरो।
4: अब यूपी में 2027 की जंग शुरू हो गई है और इस जंग में एंट्री मारी है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी यूपी के मुस्लिम इलाकों में लगातार रैलियां कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बार ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को गठबंधन करने का खुला ऑफर दे दिया है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि बाद में रोना मत कि हमने ऑफर नहीं दिया था।
23: यूपी में विधानसभा चुनाव की रणभेरी अभी बची नहीं है, मगर ओवैसी ने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। ओवैसी यूपी के उन इलाकों में लगातार रैलियां कर रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, और इसी कड़ी में जब ओवैसी मुरादाबाद पहुंचे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को गठबंधन करने का खुला ऑफर दे दिया।
27: मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं, आज वक्त है बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए।
23: इतना ही नहीं, ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि अगर गठबंधन की बातचीत भी होगी तो वो पैर पर पैर रखकर बैठेंगे ओवैसी का ये बयान समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि ओवैसी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ।
1: आप भाजपा से लड़ रहे हैं या इंडिया अलायंस लड़ रहे हैं? अगर आप भाजपा से लड़ रहे होते तो आप गोरखपुर में रैली कर रहे होते, आप भाजपा से लड़ रहे होते तो आप बनारस में लड़ रहे होते। तो इनका तर्क आता है कि नहीं, जहां मुस्लिम बाहुल्य है तो क्या आपको बनारस का मुसलमान या गोरखपुर का मुसलमान आपको दिखाई नहीं पड़ता है?
23: समाजवादी पार्टी सवाल भी कर रही है कि सम्मान के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन की बात होगी तो वो आलाकमान तय करेंगे।
2: किसी को बात करनी है तो बिल्कुल वो बात करे, लेकिन अगर बात करके आप ब्लैकमेल करना चाहें, धमकी देना चाहें, तो मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है। बिल्कुल बात करिए। और देखिए, गठबंधन जो होते हैं ये राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं।
23: अब बीजेपी कह रही है कि यूपी में धर्म और जाति वाली सियासत अब नहीं चलेगी, यहाँ विकास हो रहा है और विकास ही चुनाव का मानक है।
3: ये जाति मजहब के समीकरण पर जीत नहीं मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों के आधार पर होगा और मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जीतना ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए समाजवादी पार्टी जाति के दलदल में फंसाना चाहती है।
23: अब 27 के चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, सारे दल अपने तीर तुक्के आजमा रहे हैं।
5: यूं तो ओवैसी इस रैली में समाजवादी पार्टी को गठबंधन का खुला ऑफर देते नजर आते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं अगर गठबंधन नहीं किया तो बाद में रोइएगा मत। ओवैसी ये भी कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेंगे तो ओवैसी भी पैर में पैर डालकर बैठेगा, यानी कि वो सामान्यता की बात करते नजर आते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ओवैसी से सवाल करती है कि आखिर सारी रैलियां सपा के ही गढ़ों में क्यों, क्यों बीजेपी के गढ़ों में ये रैलियां नहीं हो रही हैं। पार्टी ये भी पूछती है क्या गोरखपुर और बनारस में मुसलमान नहीं है, क्या ओवैसी का वहां जनाधार नहीं है या ओवैसी वहां जनाधार नहीं बनाना चाहते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और AIMIM आमने सामने नजर आ रही है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: अयोध्या में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद अब तक ट्रस्ट को फुल टाइम नया महासचिव तो नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ तब्दीलियों के साथ वही ट्रस्ट अब मंदिर की व्यवस्था सुधारने की कोशिशों में जुटा हुआ है। मंदिर में भीड़ प्रबंधन से लेकर चढ़ावा प्रबंधन तक तस्वीरें बदल रही हैं। नई व्यवस्थाएं और सुरक्षित ट्रांसपेरेंट होने का दावा भी किया जा रहा है।

0: राम मंदिर में दान चोरी के खुलासे के 50 दिन से ज्यादा हो गए। 50 दिनों में मंदिर में चढ़ावे की व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए जा चुके हैं, जिसमें अब डिजिटल इंतजाम पर जोर है। चढ़ावा चोरी के आरोप झेल चुके ट्रस्ट ने अब पारदर्शिता के लिए राम मंदिर की दान व्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया है। ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दान करने वालों को अब तत्काल डिजिटल रसीद मिलेगी, जो डाउनलोड की जा सकेगी। इसके लिए दानकर्ता को नाम, दान का उद्देश्य, पैन नंबर, दान तिथि, दान राशि, पता, राज्य, जिला, देश, पिन कोड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। डोनेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिस्टम डिजिटल रसीद जारी करेगा। वेबसाइट के जरिए दान करने वाले लोग दान संबंधित सहायता के लिए ईमेल और मोबाइल नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में नकदी दान करने वालों को भी अब अनिवार्य रूप से रसीद उपलब्ध कराई जाएगी। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद मंदिर ट्रस्ट के सामने भक्तों का विश्वास दोबारा हासिल करने की चुनौती बनी हुई है। इसी का सामना करते हुए ट्रस्ट मंदिर के प्रबंधन में सकारात्मक बदलाव कर रहा है। ऐसा ही एक बदलाव राम दरबार में दर्शन को लेकर किया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक अब दर्शनार्थी 5 अलग अलग कतारों में राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। इसमें भीड़ प्रबंधन के तहत प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग मार्ग तय किए गए हैं। राम मंदिर की दान पेटी से चोरी के 8 आरोपियों के पास से यूं तो जांच एजेंसियों ने तमाम तथ्य, सबूत, गवाह जमा कर लिए हैं, लेकिन चढ़ावा चोरी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। खासकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नई एसआईटी के निर्देश के बाद चढ़ावा चोरी कांड की जांच नए सिरे से, नए एंगल से हो रही है। इसमें आरोपियों की न्यायिक हिरासत से लेकर बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव की पेंशन पर लगी रोक को लेकर भी कानूनी लड़ाई चल रही है। संतोष शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: बिहार में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन और विपक्ष के बीच खींचतान है, और लेकिन एक वीडियो सामने आया है। छपरा में प्रदर्शन के दौरान बीडीओ रितेश कुमार सिंह और पुलिस वालों पर हमले का वीडियो सामने आया है। 25 जुलाई का ये वीडियो है, जहां साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने बाजार में सब्जी दुकान से वजन तोलने वाले बाट से रितेश कुमार सिंह पर हमला बोला, जो रितेश कुमार सिंह के सिर पर जाकर लगा और वो मौके पर ही गंभीर रूप से चोटिल होकर गिर पड़े। उनके सिर में इतनी ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं कि वो जिंदगी और मौत के बीच पटना के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। ऐसे मौके पर बीडीओ जो प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे, उनके सिर पर बचाव के लिए हेलमेट नहीं था। हो सकता है कि बीडीओ रितेश कुमार सिंह तुरंत ही हालात संभालने के लिए निकल पड़े हों, लेकिन प्रदर्शनकारी जो पत्थर और वजन तोलने वाले बात से हमला कर रहे हैं, वो सोचना उनके लिए जरूरी था कि ये कैसे प्रदर्शनकारी हैं, क्या प्रदर्शन की आड़ में हमला करने वाले ये आपराधिक तत्व नहीं है। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

एंटी पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में चर्चा, दोपहर 12 बजे से शुरू होगी बहस। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष भी ले सकता है हिस्सा, स्टेटमेंट पर बन सकती है सहमति। ममता के बागी सांसदों की औपचारिक तौर पर एनडीए में एंट्री, आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में होने वाली मीटिंग में करेंगे शिरकत, एनसीपीआई को मिला न्योता। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर और गिरफ्तारी को लेकर के बड़ा फैसला, किसी पर नहीं होगी कार्रवाई, 26 जुलाई शाम 6 बजे तक दर्ज सभी केस वापस होंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल थे क्रिमिनल बैकग्राउंड के 2873 लोग, दिल्ली पुलिस ने किया ये बड़ा दावा, सीसीटीवी में कैद हुए हिंसा के 100 वीडियो। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला दूसरा गोल्ड, शर्मिला धनकर ने शॉटपुट में जीता मेडल, हाई जंप में सर्वेश कुमार और वेटलिफ्टिंग में अजय बाबू, बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर जीता।

0: नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आज तक सुबह 6 बजे की 6 ताजा खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। सबसे पहले आज आपको बताएंगे, संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होनी है, जिसको लेकर विपक्ष भी फिलहाल राजी दिख रहा है, तो क्या आज सदन में गतिरोध खत्म हो जाएगा। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, एनडीए के संसदीय दल की बैठक होने जा रही है आज, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को भी न्योता दिया गया है। बुलेट में तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान के संसद में स्वागत पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। तो चौथी खबर यह भी होगी कि कहां पुलिस के फर्जी एक्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आखिर खबर होगी, देश का गौरव बढ़ाने वाली भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा गोल्ड मेडल मिल गया है। शर्मिला धनकर ने शॉटपुट में परचम फहरा दिया है। तो चलिए खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की, जो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता चला आ रहा है। ये दूसरा सप्ताह है और आज मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन है, इसलिए पेपर लीक की रोकथाम के लिए बिल को लेकर आज संसद में हंगामा खत्म होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो विपक्ष भी अब इस बिल पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमत हो गया है। आज 10 बजे इस पर एक बैठक होनी है, जिसमें आखिरी फैसला लिया जाएगा। इसके पहले लोकसभा संशोधन बिल विधेयक को कल पेश किया गया। सोमवार को जब बिल पेश हुआ, विपक्ष के हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष छात्रों पर नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा। तो पेपर लीक बिल को लेकर के सोमवार को दिन भर संसद में हंगामा जारी रहा। विपक्ष प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन को लेकर गृहमंत्री पर हमलावर रहा। हालांकि स्पीकर के दखल के बाद विपक्ष पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए तैयार हो गया। अब आज इस पर कानून पर पूरी तरह चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
1: संसद में दिन में 12:10 पर पेपर लीक बिल पेश हुआ, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच आज दिन भर इस बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। पेपर लीक को लेकर पहले विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा था। अब इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार पर विपक्ष हमलावर है।
2: केवल हंगामा किया, गाड़ी में बैठ के चले गए, तो देश देख रहा है कि उनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं। जब आज सदन को चर्चा होनी चाहिए, तब भी सदन को बाधित कर रहे हैं, तो इसके लिए कितना बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। और देश इनकी जनता इस कार्रवाई से कृत्य से उनको माफ नहीं करेगी।
3: हद हो गई है ये, इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है, क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती?
1: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आरोप है कि छात्रों का आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। न तो खुदकुशी करने वाले छात्रों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ और न ही छात्रों के खिलाफ पुलिस का एक्शन रुका है।
4: इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है, या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार।
5: सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है।
4: नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को। सदन में ये बात तो आए।
5: सर आज छठा दिन है, आप लोग
4: सवाल छठे दिन का नहीं है। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई, आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे, तो क्या आश्वासन था आपका?
5: बात तो बातचीत से ही हल होगा ना सर, सारी चीजें
4: बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया,
5: बिहार में
4: एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं, यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं।
1: भले ही विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन पेपर लीक बिल को लेकर सरकार उल्टा विपक्ष पर सवाल दाग रही है।
6: पार्लियामेंट में अगर डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? मैं फाइनली फिर से अपील करता हूँ कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के साथियों को कि हंगामा करके स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा बिल लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का स्टूडेंट का सेंटिमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेड बेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए।
7: जब तक ये सरकार पूरे जो इस भ्रष्टाचार से लिप्त हुए लोगों को बचाना चाहती है, संरक्षण देना चाहती है, तो इस अमेंडमेंट का कितना फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर वो सीरियस है, गंभीर है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारत के पूरे शिक्षा की प्रथा को कब्जा कर लिया जाए। तो इसीलिए अभी भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई ठोस कदम नहीं आई है कि वे शिक्षा विभाग में सुधार चाहते हैं।
1: टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद की माने तो पेपर लीक बिल सिर्फ ध्यान भटकाने का हथियार है, क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने लीक प्रूफ पेपर के लिए कानून बनाया था, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा।
8: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, सबसे बड़ी पंचायत में अगर आप चर्चा के लिए तैयार नहीं है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। और मेरी हम सभी सांसदों को छात्रों का हित देखते हुए चर्चा करनी चाहिए।
9: क्या सरकार ये गारंटी देती है कि पेपर लीक नहीं होगा? 24 में भी तो बिल लाए थे, 2 जुलाई 2024 में बिल के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन होता चला गया। जब तक वहां प्रोफेशनल नहीं बैठाए जाएंगे, आरएसएस के लोग हटाए नहीं जाएंगे, तब तक कैसे होगा? और क्या गारंटी देती है सरकार कि इस बिल आने के बाद पेपर लीक नहीं होगा?
1: प्रदर्शन खत्म होने के बावजूद विपक्ष इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाने में जुटा हुआ है। 2027 में यूपी में चुनाव है, लिहाजा समाजवादी पार्टी की नजर युवाओं पर टिकी है।
10: भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पर भी अत्याचार नहीं रुक रहा है, और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।
11: जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती, ये संसद चले नहीं देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया, तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है, तो संसद में इन्होंने मना किया कि ये बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए और देश जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि देश ने इनको मैंडेट नहीं दिया है। तो ये इस तरह की राजनीति, जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है, वो कर रहे हैं।
1: भले ही आज संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन बिल पेश होने के बाद विपक्ष की तरफ से 91 संशोधन पेश किए गए हैं। शाम 5 बजे हुई मीटिंग में पेपर लीक बिल पर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के लिए लोकसभा में 6 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है, जो जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। अब देखना यही है कि कल पेपर लीक बिल पर संसद में चर्चा शुरू होगी या फिर एक बार हंगामे के चलते सदन स्थगित होगा। आज तक ब्यूरो।
0: तो एक तरफ सदन में जहां एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो सकती है, तो दूसरी तरफ एनडीए का आज मंगल मिलन कार्यक्रम है। संसद के मानसून सत्र में जारी हंगामे के बीच एनडीए संसदीय दल की आज बैठक होने वाली है। सुबह 9:30 बजे मंगल मिलन में नीट पेपर लीक, विपक्ष के हंगामे जैसे मुद्दों पर सदन में सरकार की रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में पहली बार तृणमूल कांग्रेस के बागी 20 सांसद भी एनडीए की बैठक का हिस्सा होंगे, जो कि एनसीपीआई नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, यानी काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, यूसुफ पठान, सायोनी घोष समेत कुल तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद आज एनडीए की बैठक में मौजूद हैं। और अब बात करेंगे छात्रों के आंदोलन के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, और उसी इस्तीफे के बाद जब संसद में धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ, और इसी स्वागत पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। संसद परिसर में जब बीजेपी सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया तब राहुल गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा उन्होंने कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक हैं, हमेशा रहेंगे। उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ले ली, लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। इस्तीफा भी नैतिकता से नहीं बल्कि युवाओं के आक्रोश से डर कर देना पड़ा और आज उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है। राहुल गांधी ने आगे ये भी लिखा कि ये कोई सम्मान नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। देश का हर छात्र ये देख रहा है और इसमें शामिल हर चेहरा वो याद रखेगा। ये सोशल मीडिया वो पोस्ट है जब उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर अपनी नाराजगी जाहिर की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वो कल सदन पहुंचे, बीजेपी के सांसद उनके स्वागत सम्मान में खड़े थे, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा और पोस्ट में जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये तो भ्रष्टाचार शिक्षा की जो बदहाली है उसका चेहरा है, उसका प्रतीक है। ऐसे में उनका स्वागत सदन के पटल पर किया जा रहा है, संसद के बाहर संसद परिसर में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ले ली है और इसी सिस्टम का वो प्रतीक है तो क्या। और इसको लेकर ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब धर्मेंद्र प्रधान सदन पहुंचे तब उनका स्वागत हुआ। राहुल गांधी ने क्या कहा, धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक हैं, उसी सिस्टम ने जिसने 26 बच्चों की जान ले ली और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। इस्तीफा भी नैतिकता से नहीं युवाओं के आक्रोश से डर कर देना पड़ा और उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है। कोई सम्मान नहीं है बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का ये जश्न है। देश का हर छात्र ये देख रहा है और इसमें शामिल हर चेहरा याद रखा जाएगा। राहुल गांधी का सोशल मीडिया पोस्ट है और साथ में ये वो तस्वीरें हैं जब धर्मेंद्र प्रधान कल संसद पहुंचे थे। इस्तीफे के बाद संसद का सत्र चल रहा था और यहां पर देखिए कई सारे बीजेपी सांसद थे। हालांकि उन्होंने कई सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, मीडिया उनसे सवाल भी करता रहा, धर्मेंद्र प्रधान हर उस सवाल से बचते नजर आए, भागते नजर आए। लेकिन यहां पर बीजेपी के जो सांसद थे वो उनके स्वागत सम्मान में खड़े थे, तो एक तरफ पार्टी के सांसदों ने उनका स्वागत सम्मान किया, दूसरी तरफ राहुल गांधी की नाराजगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद जब पहली बार संसद पहुंचे तो बीजेपी के सांसदों ने उनका स्वागत किया, शॉल उड़ाया, अभिनंदन किया। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान के संसद पहुंचते ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई प्रियंका गांधी कर रही थी।
12: शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो ऐसा नजारा था। एक तरफ बीजेपी के सांसद थे जो धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत कर रहे थे, उनका अभिनंदन कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान को मिथिला पगड़ी और शॉल भेंट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ का नजारा अलग था। दूसरी तरफ विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, खुद प्रियंका गांधी विपक्षी सांसदों के दल को लीड कर रही थी।
13: इस वक्त हमारी मौजूदगी है संसद भवन के मकर द्वार पर और ठीक मेरे पीछे आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे जो सांसद हैं इंडिया ब्लॉक के वो यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी एक मार्च लीड करती हुई नजर आ रही है, उनके हाथ में जो तख्तियां हैं उस पर लिखा हुआ है 700 छात्रों पर हुआ जुल्म, हुआ लाठीचार्ज, इस तरह की बातें जो है वो यहां पर विपक्षी सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर से एक बार एनडीए वर्सेस इंडिया यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। बीच में आप देखिए कैसे सीआईएसएफ के जवानों ने एक यहां पर एक लाइन लगा ली है, बीच में एक बॉर्डर सा बना दिया है ताकि इंडिया ब्लॉक और एनडीए के जो सांसद है आमने सामने ना आए। वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो यहां पर पहुंचे, उनका स्वागत जो है एनडीए के सांसदों ने किया है। आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान जो है वो संसद भवन पहुंचे हैं तो उनका स्वागत यहां पे जो एनडीए के सांसद थे उन्होंने किया।
12: धर्मेंद्र प्रधान का बीजेपी के सांसदों ने स्वागत किया तो कांग्रेस भड़क गई।
14: सरेआम बड़ी बड़ी गन्स लेकर घूम रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली में देश की राजधानी की सड़कों पर आज तक कभी पैलेट गन्स चलते हुए सुना आपने?
12: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अकेले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा।
15: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, देखिए एक धर्मेंद्र प्रधान गया दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ गया। हम तो आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ हैं कि आरएसएस ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को तबाह कर दिया, तो एक आरएसएस का गया दूसरा आरएसएस आ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है।
12: विपक्ष के सवाल जारी रहे, हंगामा होता रहा। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया गया मगर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बस हाथ जोड़कर चलते बने।
13: विपक्ष
16: विपक्ष अभी भी हाउस नहीं चलने दे रहा है। मैंने इस्तीफे की आपकी मांग कर रहा था, कुछ कहना है उस पे सर कि हाउस में बिल आ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे सर?
17: इसके बावजूद जो है हाउस रन अपोजिशन नहीं होने दे रहा है
16: सर। क्या सर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है
17: वो छात्रों के हित में है सर, क्योंकि अभी ये लोग नहीं वो कर रहे हैं
16: सर? हाउस अभी भी नहीं चलने दे रहे सर, आपका इस्तीफा हो गया।
12: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, नए शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाल लिया है, मगर हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसमी सिंह के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: तो अब बात करेंगे नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के देश के सामने उभरी कांग्रेस जनता पार्टी की। सीजेपी ने सरकार को आज भर का अल्टीमेटम दिया है, केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मांगा है। सीजेपी प्रवक्ता ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही नहीं रुकी, दर्ज FIR वापस नहीं लिए गए, तो संगठन एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। सीजेपी का आरोप है कि 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ हुए समझौते का अब सरकार उल्लंघन कर रही है। इस बातचीत में सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि उन तमाम मांगों में वो मांगे भी मानी जाएंगी जिसमें छात्रों के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नहीं होगी, इसका जिक्र था। सीजेपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार उनका वादा याद दिलाया और उसी के साथ आज की तारीख तक का समय दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन एक बार सड़कों पर दोबारा शुरू होगा।

0: तो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने आज तक से खास बातचीत की और कहा कि कई छात्रों पर प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से FIR की जा रही है। सुनिए।
1: ये बात कही जा रही है कि जो पुलिस एक्सेसेस हुए हैं स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स पर, उस चीज पर क्या आप भी चाहते हैं कि उस पर क्लैरिटी रहे? क्या आपको इस तरह के स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि उन पर FIR अभी हो रही है?
2: जी बिल्कुल। अब देखिए, पुलिस ब्रुटैलिटी पे भी होनी चाहिए चर्चा। साथ साथ आपको पता होगा जो जेपी नड्डा जी थे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फाइनल टॉक्स था जिसमें रेजिग्नेशन का भी एक्सेप्ट हो गया था डिमांड, एंड साथ साथ जो दूसरे दो मुख्य डिमांड थे कि FIRs नहीं होंगे किसी भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, जो FIRs है वो विड्रॉ होंगे, एंड साथ साथ फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ किसी भी चीज के लिए, वो उसके लिए जो गारंटी थी एंड एक पत्र आना था गवर्नमेंट से, वो कल ड्यू है। लेकिन अभी जितना हमें रिपोर्ट्स मिल रहा है पूरे देश भर से, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, इन तीनों जगह से हमें पता चल रहा है कि काफी ज्यादा क्रैकडाउन हो रहा है, बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, मास FIRs फाइल हुए, बिहार में जैसे 500 FIRs फाइल हुए हमें पता चला है, एंड बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लगाए गए हैं। तो देखिए, वो जो गारंटी सरकार ने दिया था हमें, उस पे सरकार को अमल करना चाहिए। दे शुड ऑनर द वर्ड दैट दे हैव गिवन टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री। हम तो बहुत क्लियर है कि हमें जो गारंटी दिया है वो सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी को नहीं दिया है, आपने देश के वो लाखों लाखों युवाओं को दिया है जो रोड पे उतरे थे। अगर आप उस पे अमल नहीं करते हैं तो फिर युवाओं को फिर से सोचना पड़ेगा कि फिर से उनको क्या रोड पे आने का आवश्यकता पड़ेगा।
0: इस बीच CJP की ओर से भी जानकारी दी गई है कि सरकार के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की है और ये भी बताया कि देश के अलग अलग राज्यों में जो मुकदमे हुए थे उसे वापस लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं परीक्षा में सुधार के लिए पीएम मोदी ने एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया। इन्फोसिस को फाउंडर नंदन निलेकणी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस फैसले को लेकर के हमारे सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने IIM कोलकाता के डायरेक्टर आलोक कुमार राय से खास बातचीत की।
3: हमारे साथ डायरेक्टर IIM कलकत्ता के जुड़ रहे हैं। आलोक जी, बहुत धन्यवाद आपका। एक लंबा अनुभव आपका रहा है शिक्षा में, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी थे और वहां से आप IIM कलकत्ता के डायरेक्टर हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे, ये जो छात्रों का पेपर लीक के खिलाफ एक पूरा आंदोलन था, उसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है, कानून को और सख्त करने की बात की है, या फिर एक स्पेशल टास्क फोर्स उसके लिए बनाया है कि कैसे एग्जाम्स को लीक प्रूफ बनाया जाए, इस पर आपकी क्या राय है और आपका क्या सुझाव है?
4: देखिए मैडम, वन डे एग्जामिनेशंस बहुत बार ऐसा प्रोन होते हैं लीक्स के, लेकिन आप देखें कि जैसे कैट का एग्जाम होता है या JEE एग्जाम है या इसी तरह से UPSC का एग्जाम है, जैसे उनके प्रीलिम एग्जामिनेशंस होते हैं, इसमें लीक्स की हार्डली कभी आपने कोई बात सुनी होगी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, इस प्रोसेस में 5 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है। सबसे पहला है जो पेपर सेटर है, दूसरा है पेपर का प्रिंटर, तीसरा है जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चौथा है हमारा वो सेंटर जहां पे एग्जामिनेशन होता है, और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो ऑर्गेनाइजर है जो उसको करा रहे हैं। ये 5 में से किसी भी एक स्टेज पे पिलफरेज हो सकता है। मुझे लगता है सिस्टम सबसे ज्यादा ध्यान देता है सेंटर मैनेजमेंट पे, जो सबसे कम प्रोन होता है, क्योंकि अगर सेंटर पे जैसे लीक्स नहीं होते, सेंटर पे चीटिंग हो सकती है, तो और हम सबसे ज्यादा ध्यान सेंटर पे देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो सबसे क्रेडिबल इसमें माना जाता है, सबसे ज्यादा क्रेडिबल माना जाता है, वो टीचर फ्रेटर्निटी है जो सेटर है। अगर वही रोग टर्न कर जाए, यानी वही गलत कर जाए, जो इस बार के केस में जो हम लोग सुनने में पढ़ने में आता है कि वही से लीक हो गया, तो अब जड़ में ही अगर मट्ठा पड़ा हो तो आप क्या करेंगे? लेकिन इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, लेकिन वो कौन कर रहा है? जैसे कभी भी आप कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप शुरू करते हैं कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। मैंने जिन 5 लोगों की बात की, 5 स्टेक होल्डर्स की बात की, उन सबके ऊपर एक इन्फ्लुएंसर फ्रेटर्निटी है जो ज्यादातर केस में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या इस तरह का जो एक्सटर्नल एजेंट है वो हर जगह हिट कर रहा है। सेटर, प्रिंटर, लॉजिस्टिक्स, सेंटर और ऑर्गेनाइजर। लेकिन अब आपको जड़ में अगर जाना है तो जड़ वो इन्फ्लुएंसर फ्रेटर्निटी है जिसको आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए ज्यादा पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन की जरूरत है। इसीलिए ये जो हाई पावर कमेटी जिसकी बात अभी आपने बताई, जो टास्क फोर्स है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि नॉट जस्ट कि वो इस लीक के बारे में बात करेंगे बल्कि वो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात करेंगे, ओवरऑल एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज देखने की है वो आप इसका फॉर्मेशन देखें, फॉर्मेशन में फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन कितना डाइवर्स है, उसमें टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी है, उसमें इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट भी है, उसमें लॉजिस्टिक्स का एक्सपर्ट भी है, उसमें एकेडमिक फ्रेटर्निटी का एक्सपर्ट भी है, और सबसे बड़ी बात है ये बहुत क्रेडिबल फेसेस हैं अपने अपने डोमेन के। तो जो भी पांच इंडिकेटर्स, जो पांच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनकी बात हमने की, आप देखेंगे ये सारा रिप्रेजेंट हो रहा है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस हाई पावर कमिटी, जो न सिर्फ हाई पावर टास्क फोर्स है बल्कि बहुत हाई प्रोफाइल टास्क फोर्स भी है। तो ये इन पांचों को देख सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अगर हेड है वो बता सकता है कि ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फ्रेटर्निटी है, जैसे वो कोचिंग हो सकता है, वो कोई और हो सकता है, इस तरह के लोगों के लिए देखिए दो मेजर्स हैं, एक क्यूरेटिव है एक प्रिवेंटिव है।
3: जी,
4: आपने गलती कर ली तो हमने आपको क्या सजा दी, दूसरे हम गलती की
3: पेपर लीक होने ही ना दे, ठीक है, बिल्कुल जी जी। और दूसरी बड़ी बात जो आपने, ये हाई पावर्ड जो टास्क फोर्स है, आपने कहा कि हर तरह का प्रतिनिधित्व उसमें है, तो नंदन निलेकणी जी की अध्यक्षता को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो सह संस्थापक इन्फोसिस के हैं और एक लंबा अनुभव उनका भी, और आईटी सेक्टर को जिस तरह से वो समझते हैं जानते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, एक एक करके सब पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर सकते हैं।
4: देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक सेल्स मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है जो कहता है बिफोर सेलिंग योर प्रोडक्ट यू नीड टू सेल योरसेल्फ। तो आपकी थियरी, आपका प्रपोजिशन, आप जो भी प्रस्तावित करते हैं वो हम सब्सक्राइब करें, इसके पहले आपका फेस क्रेडिबल होना चाहिए। आप अगर यू नो सेलेबल हैं तो आपकी चीज भी सेलेबल होती है। इंपॉर्टेंट सिर्फ पॉलिसीज नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलिसीज का एक्सेप्टेंस कैसे है। बहुत अच्छी बात, कोई खराब आदमी कहता है तो बहुत बार हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छता पसंद है तो वो गांधी जी का नाम लेते हैं। तो इसलिए फेस का क्रेडिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ कॉम्पिटेंसी की दृष्टि से बट ऑल्सो कि पब्लिक में उसकी एक्सेप्टेंस कितनी ज्यादा है। और इसमें फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है ये क्रेडिबल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए आईआईटीज कई सारे हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो एक जमाने में आईआईटी कानपुर को हम लोग मानते थे कि हिंदुस्तान का बेस्ट आईआईटी है, लेकिन वर्षों में आपने देखा होगा आईआईटी मद्रास किस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, उसमें डायरेक्टर का एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो भी इसमें है।
3: अभी वी काम को
4: जी जी, इसीलिए उनको पद्मश्री भी दिया। अभी हमारे आईआईटी के आउटगोइंग डायरेक्टर हैं, उनका एक बड़ा क्रेडिबल फेस है। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन है वो बड़ा क्रेडिबल है, इसलिए जो आउटकम आना चाहिए न सिर्फ कि वो अच्छा आएगा लेकिन वो कन्विंसिंग होगा, एक्सेप्टेबल होगा एक वाइडर ऑडियंस के लिए, ये इम्पोर्टेंट, ये इसमें एक बड़ी चीज।
3: हाँ, मुख्य बात आप कह रहे हैं। और ऐसे सोमनाथ जी उसमें है जो कि इसरो के पूर्व प्रमुख हैं, तपन डेका हैं जो कि पूर्व डायरेक्टर आईबी के रह चुके हैं, अनीता करवाल पूर्व शिक्षा सचिव है, लॉजिस्टिक एक्सपर्ट के तौर पर अमृतलाल मीणा जी को भी ऐड किया गया है। मेरा अगला सवाल आपसे कानून पर है, क्योंकि कानून पहले भी आया जिसमें पनिशेबल ऑफेंसेस को बनाया गया और 3 से 5 साल के सजा का प्रावधान, करोड़ रुपया का जुर्माना, अब उसको बढ़ाया जा रहा है 10 साल की सजा 10। लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि सिर्फ सख्त कानून बनाने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। हमने देखा है कि ये एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता आप उस पर कितना टिप्पणी करना चाहेंगे, लेकिन मतलब पेपर लीक के मामले में लोग आरोपी बनते हैं, छूट जाते हैं सबूत के अभाव में, फिर वो पेपर लीक के आरोपी बनते हैं, फिर छूट जाते हैं, मतलब रिपीटेडली उन पर यह आरोप लगता है, लेकिन कन्विक्शन अभी तक सिर्फ 2 केसेस में हुआ है। फिर कई जगहों से ऐसी खबरें भी आई कि भाई जो ब्लैकलिस्टेड लोग हैं उन्हीं को फिर से टेंडर दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी खामियां हैं, आपको ऐसा नहीं लगता डायरेक्टर साहब?
4: जी, इसमें दो चीजें, एक चीज मैं ऐड करूं, तब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था जब 2020 और 2021 और ये दो वर्षों में स्टेट का बीएड एंट्रेंस जिसमें लगभग 8 लाख प्रतिभागी होते थे, वो एग्जाम कराया कोविड के पीक टाइम में, और जब पेपर प्रिंट कराने की बात आती तो ये एक बड़ी समस्या होती, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटी है, लेकिन वो तो आके अपने पेपर्स दिखाते हैं, यू नो, आज आपकी फर्म ब्लैकलिस्ट हो जाए, आप वही हैं, आपने नए नाम से कोई नई फर्म बना ली, आप जमानत पे आ गए, आपने अपने भाई को, रिश्तेदार को फर्म का ओनर कर दिया और फर्म का नाम बदल दिया, और अब आप कहते हैं साहब हम कर देंगे। तो इसके लीगल इम्प्लीकेशंस पर तो उतना मैं कमेंट नहीं करने का अधिकारी हूं, लेकिन ये सही है कि इसके वाया मीडिया बहुत है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि अगर

0: का, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. लॉ ऑफ कोर्स उसका उसका एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है, उसका एक अपना महत्व है. भय भय बिन होए न प्रीत, तो भय का भी अपना एक महत्व है जरूर, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जब सिस्टम डिजाइन करते हैं तो हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जहां पिल्फरेजेस के स्कोप मिनिमल.
1: बिल्कुल। और वही पिल्फरेज जिसकी आप बात कर रहे हैं, यानी किसी ने किसी तरीके से सिस्टम को सर्कमवेंट करके नए तरीके से चीट करना या फिर लीक कराना, वो अगर नहीं रुकेगा पूरी तरह से, और उम्मीद यही है कि ये हाई टास्क फोर्स उसमें जो बनाया गया है वो एक सफल उसमें कारगर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक कुमार राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डायरेक्टर IIM कोलकाता।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
3: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

एंटी पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में चर्चा, दोपहर 12 बजे से शुरू होगी बहस। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष भी ले सकता है हिस्सा, स्टेटमेंट पर बन सकती है सहमति। ममता के बागी सांसदों की औपचारिक तौर पर एनडीए में एंट्री, आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में होने वाली मीटिंग में करेंगे शिरकत, एनसीपीआई को मिला न्योता। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर और गिरफ्तारी को लेकर के बड़ा फैसला, किसी पर नहीं होगी कार्रवाई। 26 जुलाई शाम 6 बजे तक दर्ज सभी केस वापस होंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल थे क्रिमिनल बैकग्राउंड के 2873 लोग, दिल्ली पुलिस ने किया ये बड़ा दावा, सीसीटीवी में कैद हुए हिंसा के 100 वीडियो। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला दूसरा गोल्ड, शर्मिला धनकर ने शॉटपुट में जीता मेडल, हाई जंप में सर्वेश कुमार और वेटलिफ्टिंग में अजय बाबू, बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर जीता। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। अब वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हमारे पास बहुत सारा गोला बारूद है अलग अलग तरह का, बाइडेन ने यूक्रेन को बहुत कुछ दिया था इसलिए हम उसे फिर से जमा कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के रूस पर ईरान की मदद के आरोपों पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर यह सच है तो मैं पुतिन से पूछूंगा, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हमने ईरान की सैन्य ताकत को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया, वे खुद बातचीत की मांग कर रहे हैं, समझौते की संभावना है। ट्रंप ने कहा, हम ईरान के उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे नियंत्रण में है, उनके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई भी की जा सकेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में जनरल मोटर्स की फैक्ट्री का दौरा करते हुए कहा कि हम जनरल मोटर्स के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, टैरिफ की वजह से कंपनी शानदार प्रदर्शन कर रही है। आज पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी, वोटिंग हो सकती है, स्पीकर ओम बिरला की अपील पर सरकार विपक्ष के बीच गतिरोध टूट गया। सोमवार को लोकसभा में बिल पेश होने के बावजूद नहीं हो सकी चर्चा, नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए वाड़ा रहा विपक्ष। अमित शाह के बयान पर विपक्ष के रुख में नरमी देखने को मिली, सूत्रों के मुताबिक चर्चा के दौरान अमित शाह के बयान आने पर विपक्ष राजी है, आज सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक में आखिरी फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश से धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, इसी का एक्टिविस्ट नहीं हूं, सोमवार को बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में प्रधान का सम्मान किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी राज में शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई, टास्क फोर्स पहले क्यों नहीं बनाई। बिहार में

0: सरकारी छात्रों पर बिहार सरकार ने फैसला लिया। 26 जुलाई शाम 6 बजे तक दर्ज सभी FIR वापस होंगे। गिरफ्तार छात्रों की रिहाई भी जल्दी होगी। मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राजघाट पहुंचे सोनम वांगचुक। कहा गांधी की सिखाई बातें कारगर रही, अहिंसा सबसे प्रभावी रास्ता। शासक जनता की आवाज आज भी सुनता है। आज इंडिया पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है। NCPI सांसदों को भी न्योता मिला है। TMC के बागी 20 सांसदों का गुट है NCPI। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रोड शो किया। बोले बीजेपी को समर्थन देगी जनता, नतीजे आने तक सबका भ्रम टूट जाएगा। तेजस्वी यादव ने भी बांकीपुर में रोड शो किया। कहा छात्रों युवाओं को सरकार ने ठगा, सबका हिसाब जनता लेगी। 69,000 शिक्षक भर्तियों पर यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। सभी को नौकरी सुरक्षित है, नए लोगों को भी मौका देंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नई SIT गठित की गई। टीम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एक चार्टर अकाउंटेंट को भी शामिल किया गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों के न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। कोर्ट ने 10 अगस्त तक सबको जेल भेजा। आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट ने ऋतुव्रता बैनर्जी को LOP बनाने के स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। जिमखाना क्लब को खाली करने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के बागेश्वर में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश अलर्ट के बीच प्रशासन ने कदम उठाए। हिमाचल प्रदेश में आज से 31 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश। बिहार, झारखंड, असम, मेघालय में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी आज भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना। तो चलिए खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की, जो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता चला आ रहा है। ये दूसरा सप्ताह है और आज मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन है, इसलिए पेपर लीक की रोकथाम के लिए बिल को लेकर आज संसद में हंगामा खत्म होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो विपक्ष भी अब इस बिल पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमत हो गया है। आज 10 बजे इस पर एक बैठक होनी है जिसमें आखिरी फैसला लिया जाएगा। इसके पहले लोकसभा संशोधन बिल विधेयक को कल पेश किया गया। सोमवार को जब बिल पेश हुआ, विपक्ष के हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष छात्रों पर नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा।
1: Examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026.
2: संसद में दिन में 12:10 पर पेपर लीक बिल पेश हुआ, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच आज दिन भर इस बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। पेपर लीक को लेकर पहले विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा था। अब इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार पर विपक्ष हमलावर है।
3: केवल हंगामा किया, गाड़ी में बैठ के चले गए, तो देश देख रहा है कि उनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं। जब आज सदन को चर्चा होनी चाहिए तब भी सदन को बाधित कर रहे हैं, तो इसके लिए कितना बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। और देश, इनकी जनता इस कार्रवाई से कृत्य से उनको माफ नहीं करेगी।
4: हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह बिहार में, बंगाल में, तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती?
2: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आरोप है कि छात्रों का आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। न तो खुदकुशी करने वाले छात्रों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ और न ही छात्रों के खिलाफ पुलिस का एक्शन रुका है।
5: इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी? सरकार झुक गई, सरकार तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार।
6: सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है।
5: नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को। सदन में ये बात तो आए।
6: सर आज छठा दिन है, आप लोग
5: सवाल छठे दिन का नहीं है। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई, आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे, तो क्या आश्वासन था आपका?
6: बात तो बातचीत से ही हल होगा ना सर। नहीं,
5: बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया,
6: बिहार में AK-47
5: और AK-47 एक ही जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं।
2: भले ही विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन पेपर लीक बिल को लेकर सरकार उल्टा विपक्ष पर सवाल दाग रही है।
7: पार्लियामेंट में अगर डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? मैं फाइनली फिर से अपील करता हूँ कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के साथियों को कि हंगामा करके स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा बिल लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का स्टूडेंट का सेंटिमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेड बेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए।
8: जब तक ये सरकार पूरे जो इस भ्रष्टाचार से लिप्त हुए लोगों को बचाना चाहती है, संरक्षण देना चाहती है, तो इस अमेंडमेंट का कितना फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर वो सीरियस है, गंभीर है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारत के पूरे शिक्षा की प्रथा को कब्जा कर लिया जाए। तो इसीलिए अभी भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई ठोस कदम नहीं आई है कि वे शिक्षा विभाग में सुधार चाहते हैं।
2: टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद की माने तो पेपर लीक बिल सिर्फ ध्यान भटकाने का हथियार है, क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने लीक प्रूफ पेपर के लिए कानून बनाया था, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा।
9: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, सबसे बड़ी पंचायत में अगर आप चर्चा के लिए तैयार नहीं है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। और मेरी हम सभी सांसदों को छात्रों का हित देखते हुए चर्चा करनी चाहिए।
10: क्या सरकार ये गारंटी देती है कि पेपर लीक नहीं होगा? 24 में भी तो बिल लाए थे, 2 जुलाई 2024 में बिल के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन होता चला गया। जब तक वहां प्रोफेशनल नहीं बैठाए जाएंगे, आरएसएस के लोग हटाए नहीं जाएंगे, तब तक कैसे होगा? और क्या गारंटी देती है सरकार कि इस बिल आने के बाद पेपर लीक नहीं होगा?
2: प्रदर्शन खत्म होने के बावजूद विपक्ष इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाने में जुटा हुआ है। 2027 में यूपी में चुनाव है, लिहाजा समाजवादी पार्टी की नजर युवाओं पर टिकी है।
11: भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पर भी अत्याचार नहीं रुक रहा है। और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।
12: जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती, ये संसद चलने नहीं देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया, तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है, तो संसद में इन्होंने मना किया कि ये बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए और देश जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि देश जो है, देश ने जो है इनको मैंडेट नहीं दिया है। तो ये इस तरह की राजनीति, जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है, वो कर रहे हैं।
2: भले ही आज संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन बिल पेश होने के बाद विपक्ष की तरफ से 91 संशोधन पेश किए गए हैं। शाम 5 बजे हुई मीटिंग में पेपर लीक बिल पर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के लिए लोकसभा में 6 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है। जो जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। अब देखना यही है कि कल पेपर लीक बिल पर संसद में चर्चा शुरू होगी या फिर एक बार हंगामे के चलते सदन स्थगित होगा। आज तक ब्यूरो।
0: तो एक तरफ सदन में जहां एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो सकती है, तो दूसरी तरफ एनडीए का आज मंगल मिलन कार्यक्रम है। संसद के मानसून सत्र में जारी हंगामे के बीच एनडीए संसदीय दल की आज बैठक होने वाली है। सुबह 9:30 बजे मंगल मिलन में नीट पेपर लीक, विपक्ष के हंगामे जैसे मुद्दों पर सदन में सरकार की रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में पहली बार तृणमूल कांग्रेस के बागी 20 सांसद भी एनडीए की बैठक का हिस्सा होंगे, जो कि एनसीपीआई नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, यानी काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, यूसुफ पठान, सायोनी घोष समेत कुल तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद आज एनडीए की बैठक में मौजूद हैं। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टीम में आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर कामकोटी भी शामिल हैं। उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी मारिया शकील ने।
13: प्रधानमंत्री ने परीक्षा में सुधार के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके एक सदस्य हैं वी कामकोटी, जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर कामकोटी, आज तक पर आपका स्वागत है। पेपर लीक और परीक्षा सुधार को लेकर पहले भी काम किए गए हैं, लेकिन अभी तक पेपर लीक नहीं रुका है। आपकी टास्क फोर्स परीक्षा पर भरोसा कैसे लेकर आएगी, खासकर स्टूडेंट्स और यूथ के लिए, जो अब उनको लगता है कि एक ब्रोकन सिस्टम है?
14: नमस्ते मरिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अभी हमारे देश में पब्लिक एग्जाम बहुत डिकेड से चल रहा है, 6 डिकेड 7 डिकेड 1960s 1970s से पब्लिक एग्जाम हो रहा है। जो कुछ बदल हुआ अभी उसका स्केल, मैं जब भी 1985 में जेई लिखा था, वहां पे 5,000 लोग मेरे साथ एग्जाम लिया, अभी 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स अभी एग्जाम ले रहे हैं। हम पिछले 40 वर्ष में हम देखे तो हम टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके ही एग्जाम को और इफेक्टिव फुल प्रूफ कर रहे हैं। जेई में इसी प्रकार ही नीट है। अभी 5,000 से जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 50,000 हुआ, उसी समय हम ORS टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट, और उसके बाद अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आ गया, उसका भी अडॉप्ट किया है। हमारे देश में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने के लिए अभी 3 लाख एक ही सेशन में कर सकते हैं, इसलिए हमें जेई मेंस में जो 1.5 मिलियन पीपल राइट, उसका हम 5 सेशन में कर रहे हैं, और जो 2 बार लिख सकते हैं इसे 10 सेशन और 12 सेशन में कर रहे हैं। अभी नीट की व्यवस्था हम लेंगे, आपका क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए मुझ कुछ बैकग्राउंड कवर करना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। नीट में अभी 22 लाख स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, उनको CBT में करना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करना, एक ही सेशन में नहीं कर सकता। अभी तो करने के लिए हम 10 या 12 सेशन हमको करना है। सो इसलिए ही नीट ORS वो ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट में हुआ। अभी 2024 में नीट में कुछ क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उसी समय CBI एजेंसी वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उन्होंने बताया कि जब पेपर सर ट्रांसिशन में था, अभी पेपर प्रिंट होने के बाद वो पेटी में ट्रंक्स में लोड करके अभी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एग्जाम सेंटर उसी प्रकार चल रहा था, उस ट्रांसिशन में लीक हुआ, और इस लीक में 40 से 50 मैक्सिमम कैंडिडेट्स उनका बेनिफिट हो सकता है, और जो 40 और 50 वो कैंडिडेट सबको आइडेंटिफाई कर दिया, इसी प्रकार CBI का रिपोर्ट था। उस समय एक पिल था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तीन दिन उस बिल का लिसनिंग हुआ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस समय जस्टिस चंद्रचूड जी की बेंच में, तीन दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट इसका कंप्लीट एनालाइज किया था और हमारा डेटा भी एनालाइज किया और फिर ये एग्जाम में लीक हुआ था, पर वो बहुत कंटेन्ड है और जो कुछ उसमें लाभदायक हुआ उसका आइडेंटिफाई भी हुआ है, इसलिए एग्जाम कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, इसलिए रीनीट नहीं इस प्रकार का ऑर्डर दिया था।
15: प्रोफेसर कामकोटी, क्या नंदन नीलकणी
14: जी, एक मिनट मैडम, आई एम फिनिश करेंगे, जस्ट गिव मी टू मोर मिनट्स। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स, एक कमिटी बनाया, राधा कृष्णन कमिटी, उनको नीट 2024 में लीक कैसा हुआ इसके लिए रिकमेंडेशंस देने के लिए कहा। वो राधा कृष्णन कमिटी 200 प्लस रिकमेंडेशंस किया था
15: जी,
14: और नीट 2026 में एनटीए फ्रैंकली वो रिकमेंडेशंस को स्वीकार करके इंप्लीमेंट भी किया,
15: फिर भी लीक हुआ।
14: इसलिए ही नीट 2026 में जब पेपर एनटीए के बाहर आया और वहां से प्रिंटिंग प्रेस फिर पेटी में डालकर डिस्ट्रीब्यूशन किया और एग्जाम के दिन में जब वो कैंडिडेट के पास गया फिर तक लीक नहीं, इसी में उस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ नहीं, ये राधा कृष्णन कमिटी का रिकमेंडेशन से।
15: प्रोफेसर कामकोटी आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और, क्या नंदन नीलकणी से आपका संपर्क हुआ है और क्या ये टास्क फोर्स जो सुझाव देगी वो आने वाले एग्जामिनेशन साइकिल में लागू हो जाएगा?
14: अच्छा, सो इस पेपर का लीक, एक मिनट मरिया, हम फिनिश करेंगे, कुछ काम, कुछ समय दीजिए मुझे। इस पेपर का लीक एनटीए के बाहर आने के पूर्व वो पेपर सेटर्स उनके द्वारा लीक हुआ। अभी सभी सिस्टम के लिए रूट ऑफ ट्रस्ट है और रूट ऑफ ट्रस्ट तो पेपर सेटर्स है, वो पेपर सेटर्स ने लीक किया। सो इससे ही नीट 2026 में उसका आज का रीटेस्ट होने की संभावना हुआ, इसलिए हमें नंदन ने अभी कमिटी का संपर्क नहीं हुआ अभी तक, बट हमारा जो कुछ रिकमेंडेशंस होगा वे भी मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस ही होगा। अभी ये सब कुछ जो हम बोल रहे हैं मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, अभी कमिटी मीटिंग नहीं हुआ, सो कमिटी के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं, मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है।
15: ओके,
14: हम जो कुछ रिकमेंडेशंस देंगे वो तीन फेसेस में होने की संभावना है और हमारा अगला परीक्षा अभी दिसंबर में शुरू हो रहा है
15: जी,
14: तो उसके लिए हम कुछ रिकमेंडेशंस देंगे। हमारा चैलेंज, मेरे बैकग्राउंड इसलिए ही मैं बताया था आपकी व्यूअर्स के लिए, कुछ देर लगा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
15: प्रोफेसर कामकोटी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: कौन से ग्रह पति पत्नी के बीच में विवाद करवाते हैं, किन ग्रहों को बेहतर करके पति पत्नी के कलेश को शांत किया जा सकता है, क्या है घर के कलह कलेश का निवारण और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ।
18: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
19: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
16: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

एंटी पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में चर्चा, दोपहर 12 बजे से शुरू होगी बहस। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष भी ले सकता है हिस्सा, स्टेटमेंट पर बन सकती है सहमति। ममता के बागी सांसदों की औपचारिक तौर पर एनडीए में एंट्री, आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में होने वाली मीटिंग में करेंगे शिरकत, एनसीपीआई को मिला न्योता। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर और गिरफ्तारी को लेकर के बड़ा फैसला, किसी पर नहीं होगी कार्रवाई, 26 जुलाई शाम 6 बजे तक दर्ज सभी केस वापस होंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल थे क्रिमिनल बैकग्राउंड के 2873 लोग, दिल्ली पुलिस ने किया ये बड़ा दावा, सीसीटीवी में कैद हुए हिंसा के 100 वीडियो। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला दूसरा गोल्ड, शर्मिला धनकड़ ने शॉटपुट में जीता मेडल, हाई जंप में सर्वेश कुमार और वेटलिफ्टिंग में अजय बाबू, बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर जीता।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही नाजुक भी होता है, और कभी कभी ग्रहों की ऐसी स्थितियां बनती हैं जब पति पत्नी के बीच में बेवजह का तनाव होता है, बेवजह का कलेश होता है और इसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पति पत्नी के बीच में होने वाले कलेश की वजह क्या है और इसको दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 6:18 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर 1:11 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:49 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम पति पत्नी के संबंधों को बेहतर करने के उपायों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पति पत्नी के आपसी संबंधों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, पति के लिए विवाह का कारक शुक्र होता है, पुरुष के विवाह के लिए शुक्र जिम्मेदार है, जबकि पत्नी के लिए, स्त्री के लिए विवाह का कारक बृहस्पति होता है। किसी पुरुष का बृहस्पति उसकी पत्नी के बारे में बताता है, उसकी पत्नी के बारे में सूचना देता है, जबकि पत्नी का शुक्र उसके पति के बारे में उसके स्वभाव, व्यवहार, चाल और चरित्र के बारे में बताता है। लेकिन कुल मिलाकर पति पत्नी के आपसी संबंधों के लिए सबसे ज्यादा भूमिका होती है शुक्र की। पति पत्नी के संबंधों के लिए शुक्र ही जिम्मेदार होता है। चंद्रमा और मंगल ये वैवाहिक जीवन में शांति और धैर्य बनाए रखते हैं। इनकी वजह से वैवाहिक जीवन में शांति रहती है और इनकी वजह से वैवाहिक जीवन में धैर्य बना रहता है। पति पत्नी के बीच में तनाव होता क्यों है, विवाद होता क्यों है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का
दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, अपने स्वभाव का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की रुकावट दूर होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हर पति पत्नी में कलेश हो या हर समय कलेश हो। सामान्यतः पति पत्नी के बीच में विवाद कब बढ़ता है, कब घर में कलह कलेश होता है, ये जानते हैं। अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, जिसकी कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होगी वो बेवजह क्रोध करेगा और बेवजह अपने घर में अशांति पैदा करेगा। अगर पति या पत्नी में से किसी एक की कुंडली में या शुक्र या बृहस्पति के कमजोर होने की नौबत आ जाती है, पति की कुंडली में आ जाए, पत्नी की कुंडली में आ जाए, तो ये भी पति पत्नी के बीच में कलह का कारण बनता है। अगर पति पत्नी किसी एक की कुंडली में मजबूत मंगल दोष हो और मंगल दोष का निवारण ना किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी बेवजह का कलह होता है। अगर आठवें स्थान में कुंडली के पाप ग्रह बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति के घर में पति पत्नी के बीच में कलह कलेश होता है। और अगर महिला के अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठे हों, तो ये कलह कलेश बहुत गंभीर होता है, उसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। अगर शयन कक्ष में आपने काला रंग करा लिया, भूरा रंग करा लिया, लाल रंग करा लिया, शयन कक्ष का रंग अगर ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके घर में कलह कलेश होगा। शयन कक्ष में या ईशान कोण में आपके बेडरूम में या पूरब उत्तर के कोने में ईशान कोण में अगर गड़बड़ी हो तो कलह कलेश घर में बहुत होता है। जिनके जन्म का मूलांक 1, 4, 5 या 8 हो, ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में कलह कलेश की, झगड़े लड़ाई की, विवाद की संभावना बहुत होती है। पति पत्नी के संबंधों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर के मामलों में तेजी आएगी, धन लाभ की स्थिति बन रही है, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।
मांग राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। कन्या राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न वीणा जी ने हमें लिखा है और वीणा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अक्टूबर 1962, जन्म का समय दोपहर के 2:15, जन्म स्थान है मुंबई। वीणा जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे स्वास्थ्य में दिक्कतें चली आ रही हैं, एक ऑपरेशन भी मेरा हो चुका है, फिर भी मेरे स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो। वीणा जी, अभी आपको अप्रैल 2027 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अप्रैल 27 तक सेहत के हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मुख्यतः आपकी समस्या हड्डियों की है, अभी भी चोट चपेट और दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहना चाहिए। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहने, रोज सुबह 1 बार हनुमान बाहुक इसका पाठ करें या सुने तो आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि घर में किन सावधानियों का पालन करें, कौन सी सावधानियां रखें कि पति पत्नी के बीच में विवाद ना हो, कलह और कलेश ना हो। अपने घर में जंगल का या हिंसक पशु पक्षियों का चित्र ना लगाएं। अपने बेडरूम में हथियार या नुकीली चीजें मत रखें। खाने पीने की वस्तुएं भी अपने बेडरूम में ना रखें। अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में देवी देवताओं के चित्र भी ना लगाएं। घर में झाड़ू और चाकू फ्रंट पर न रखें, किनारे छुपा कर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। पति पत्नी का चित्र घर के दक्षिणी दीवार पर, घर के साउथ वॉल पर न लगाएं। घर के बेडरूम की नियमित रूप से साफ सफाई हो, घर का बेडरूम और बाथरूम साफ रखें। घर में बिना फूलों वाले, बिना फलों वाले या बहुत घने पौधे जो ना हो, ऐसे पौधे ना लगाएं। अगर आप इंडोर प्लांट लगाते हैं
तो आप घने पत्तों वाले या चौड़े पत्तों वाले इंडोर प्लांट लगाएं, थोड़े रंगीन हो, ज्यादा गाढ़े हरे हो तो ज्यादा बेहतर होगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आस।

वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी, योजनाओं को गोपनीय रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करने दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अगर पति पत्नी के बीच में निरंतर कलेश होता है, निरंतर वाद विवाद होता है, तो इसको दूर कैसे किया जाए? पति को शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए रोज शाम को, सफेद स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से, ओम शुं शुक्राय नमः। पत्नी रोज सुबह हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। अपने बेडरूम का कलर, पर्दे अगर ये गुलाबी हो, धानी हो या सफेद रंग के हो तो बहुत अच्छा होगा। और अपने बेडरूम में बहते हुए जल का चित्र लगाएं, साउथ वॉल पर मत लगाइएगा, बाकी किसी भी दीवार पर बहते हुए जल का चित्र लगाएं तो अच्छा होगा। पति पत्नी का एक चित्र, अगर शादी के समय का चित्र हो तो बहुत अच्छा होगा। पति पत्नी का एक चित्र पूरब या उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। और पति पत्नी दोनों मिलकर के शुक्रवार को सफेद मीठी चीज भगवान शिव को अर्पित करें और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। घर के आगे या घर के बीचों बीच में या अपने बेडरूम के साथ वाली बालकनी में एक तुलसी का पौधा लगाइएगा। घर में शिव और पार्वती जी की संयुक्त पूजा अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शिव परिवार का एक चित्र या एक मूर्ति अपने घर में रखें और इनकी अगर निरंतर पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक तनाव से बचाव करें, ऑफिस में विवादों से बचें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, करियर में सफलता का समय है। पारिवारिक समस्या हल होगी, धन संपत्ति का लाभ होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, आर्थिक लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। मंगलवार के दिन कर्जा नहीं लेना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा क्यों? देखिए, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का दिन होता है और मंगल जब गड़बड़ होता है तभी व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ता है या कर्ज आता है। अगर आप मंगलवार के दिन कर्ज लेंगे तो निश्चित रूप से कर्जा आपका बढ़ता चला जाएगा और कर्ज को चुका पाना आपके लिए कठिन होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। नंबर 9, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा, करियर और धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सत्य नारायण जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी की जन्म तारीख है 26 मार्च 1993,
जन्म का समय रात में 10:55, जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह अब तक नहीं हो पाया है, काफी प्रयास करने के बावजूद, तो मेरी बेटी का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सत्यनारायण जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय अभी अभी शुरू हुआ है, साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में इनके विवाह की संभावना बन रही है, लेकिन जब भी विवाह करिएगा कुंडली एक बार मिला लीजिएगा, क्योंकि इनकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतों की संभावना बनती है। आप ऐसा करिए, अपनी बेटी को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाइए। सुबह और शाम अपनी बेटी से कहिए कि वो 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो उनके लिए बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, किसी परीक्षा में जाना है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे।

मसूर की दाल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।

धनु राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि वालों के लिए करियर में लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को, बेवजह की चिंता और बेवजह का तनाव आपको हो सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है। आज शुभ और मंगल कार्य मत करिएगा, आज की तिथि रिक्तता है। आज हनुमान जी की पूजा जरूर करिए, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

आज पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी। वोटिंग स्पीकर ओम बिरला की अपील पर सरकार विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म हुआ। सोमवार को लोकसभा में बिल पेश होने के बावजूद नहीं हो सकी चर्चा। नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा विपक्ष। अमित शाह के बयान पर विपक्ष के रुख में नरमी आई। सूत्रों के मुताबिक चर्चा के दौरान अमित शाह के बयान आने पर आज विपक्ष राजी है। सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक में आखिरी फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, इसी का एक्टिविस्ट नहीं हूं। सोमवार को बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान किया था। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में शिक्षा व्यवस्था चौपट है। पूछा, टास्क फोर्स पहले क्यों नहीं बनाई। दिल्ली में राहुल गांधी ने इरफान से मुलाकात की। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान हुए थे वायरल। कहा, इरफान जैसे लाखों युवा ही देश की उम्मीद है। कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस को लेकर के नाराजगी जताई। लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा, बेवजह टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी ने डिजिटल मंच लॉन्च किया। प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस और रैफ की कार्रवाई के खिलाफ सबूत जुटाना लक्ष्य है। सीजेपी के दोबारा आंदोलन में चेतावनी। बोली, सरकार ने समझौता तोड़ा है। देश भर में सैकड़ों छात्र और झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। पेपर लीक को लेकर के देश भर में हो रहे प्रदर्शनों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कांग्रेस जनता पार्टी की याचिका में दिल्ली पुलिस पर संगीन आरोप है। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर बिहार सरकार ने फैसला लिया है। 26 जुलाई शाम 6 बजे तक दर्ज सभी FIR वापस होंगी।

0: गिरफ्तार छात्रों की रिहाई भी जल्द होगी। वेदांता अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राजघाट पहुंचे सोनम वांगचुक, कहा गांधी की सिखाई बातें कारगर हैं, हिंसा सबसे प्रभावी रास्ता है, शासक जनता की आवाज सुनता है। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होनी है, एनसीपीआई सांसदों को न्योता भी मिला, टीएमसी के 20 बाकी सांसदों का गुट है एनसीपीआई जो आज शामिल होगा। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबी ने रोड शो किया, बोले बीजेपी को समर्थन देगी जनता, नतीजे आने तक सबका भ्रम टूट जाएगा। बांकीपुर में तेजस्वी यादव ने रोड शो किया, कहा छात्रों युवाओं को सरकार ने ठगा, सबका हिसाब जनता ने। 70,000 शिक्षक भर्तियों पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जारी किया, कहा सभी की नौकरी सुरक्षित है, नए लोगों को भी मौका देंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी का गठित हुआ है, टीम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अब एसआईटी में शामिल होंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, कोर्ट ने 10 अगस्त तक सबको जेल भेज दिया है। आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, हाईकोर्ट ने ऋतुव्रता बैनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से तब इनकार कर दिया था। दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिमखाना क्लब को खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की सजा पर 31 जुलाई को फैसला आएगा, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में फैसला होगा। दिल्ली सरकार के कांवड़ कैंपों के लिए फंड बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है, मुफ्त बिजली की सुविधा भी जारी रहेगी। G20 पर अपने खिलाफ फेक कंटेंट पर नितिन गडकरी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे, याचिका दायर। महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक हो गया, कांग्रेस ने दावा किया कि एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक हुआ। गुजरात के जामनगर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में पेपर लीक की आशंका, बीएमएस परीक्षा से पहले पेपर लीक की आशंका, विश्वविद्यालय ने जांच समिति गठित की। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, मुरादाबाद कमिश्नर ने रोक लगाई, विकास प्राधिकरण ने दिए थे 38 बिल्डिंग गिराने के आदेश। संगरूर में बीजेपी कार्यालय पर बम धमाके के बाद सियासत गर्म है, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। पंजाब के मोहाली में पुलिस और ड्रग तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 तस्कर घायल, अमृतसर पुलिस ने सीमा पर हथियार और हेरोइन तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़। चार तस्कर इसमें गिरफ्तार किए गए, 5 आधुनिक पिस्तौल भी बरामद की गई। बिहार के आरा में भरत तिवारी की मां से मिले बीजेपी एमएलसी पवन सिंह, बोले न्याय की लड़ाई में हर कदम पर आपके साथ हैं। बिहार के सिवान में बंद के दौरान AK-47 से फायरिंग मामले पर बिहार पुलिस ने बयान दिया है, फायरिंग करने वाला सिपाही निलंबित किया गया, विभाविक की कार्यवाही भी शुरू। बिहार में 25 जुलाई की हिंसा पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने जानकारी देते हुए कहा 91 पुलिसकर्मी और पदाधिकारी भी जख्मी हुए हैं। छपरा में प्रदर्शन के दौरान रिवीलगंज वीडियो रितेश कुमार सिंह पर हमले का वीडियो सामने आ चुका है, 25 जुलाई को वजन तोलने वाले बार से रितेश कुमार के सिर पर हमला किया गया। छपरा हिंसा के विरोध में महनार समेत बिहार के प्रखंडों में वीडियो ने काली पट्टी बांधकर काम किया, अपने 2 साथियों पर जानलेवा हमले के खिलाफ रोष जताया, इंसाफ मांगा। देश को 38 जवान देने वाले टिहरी गढ़वाल के समन गांव के स्कूल में सिर्फ अब एक शिक्षक बचा है, 72 बच्चों की पढ़ाई और पूरी पढ़ाई अब भगवान भरोसे चल रही है। जिले के शाहदरा में 3 मंजिला इमारत अचानक एक ओर झुक गई है, घटना के बाद अब इलाके में हड़कंप मचा है, एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। जिले के शाहदरा में 4 लोगों के डूबने की आशंका जताई गई है, अब तक 40 साल के शख्स का शव बरामद किया गया जबकि बाकी की तलाश जारी है। दिल्ली के नरेला में तेज रफ्तार डंपर ने ट्रक और बाइक को टक्कर मारी, हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। पठानकोट नगर निगम की आधिकारिक ईमेल पर धमकी आई, आर्मी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। भीलवाड़ा में सेक्स एक्सटॉर्शन गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा, पूर्व पार्षद फजले रऊफ समेत 10 आरोपियों पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। इंदौर पुलिस के प्लास्टर ड्रामे का वीडियो वायरल हो गया, कोर्ट ले जाते समय आरोपियों के हाथ में चढ़ाया गया था प्लास्टर, निकाला था जुलूस। ग्रेटर नोएडा में उबर कैब लूटने वाले 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, 24 घंटे में खुलासा हुआ। बिजनौर में 25 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है, फर्जी कंपनियों के नाम पर 3,000 से ज्यादा लोगों को ठगा गया, FIR दर्ज हो गई। वाराणसी के दाल मंडी बाजार क्षेत्र में आखिर मस्जिद को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यूपी के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में गोकशी का आरोपी घायल हो गया, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा में लॉकअप शो देखने को लेकर के हुए विवाद के बाद युवती लटकी, बालकनी से लटकी युवती का वीडियो वायरल हुआ। बिहार के मोतिहारी में जमीन के चंद टुकड़ों की खातिर बेटे ने मां की हत्या कर दी, धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। पटना के बिहटा में शराब पार्टी करते पांच युवक गिरफ्तार किए गए, भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुणे में दिन दहाड़े दुकान में लूट, चाकू की नोक पर कैश लूटकर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। नासिक में ट्रक ड्राइवर ने नियंत्रण खोया, ट्रक सीधे फ्लाईओवर से नीचे गिरा, वीडियो तेजी से वायरल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में तेज रफ्तार कार ने दो बाइक को टक्कर मारी, एक की मौत एक गंभीर रूप से घायल। बिहार के सुपौल में स्मैक के साथ पांच आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इंदौर के लोधिया कुंड और चोरल डैम में दो युवकों की डूबने से मौत हुई, नहाते समय जान गई। सुकमा में पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने निर्मम हत्या की, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। गुजरात के नवसारी में उफनती नदी के तेज बहाव में बिना किसी सुरक्षा रिवर राफ्टिंग करते छह गिरफ्तार, वायरल वीडियो। यूपी के संभल में अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह का पर्दाफाश हुआ, तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए। हरियाणा के नूह में बच्चे के गलत ऑपरेशन का मामला गरमाया, मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया, विधायक आफ्ताब ने सरकार को घेरा। ग्रेटर नोएडा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा चाय की गुणवत्ता वाला वीडियो, फूड विभाग ने नोएडा का होने से इनकार किया। जैसलमेर के रामदेवरा में बर्थडे पार्टी से लौटते दो बच्चों की मां बाप ने हत्या की वारदात के बाद सुसाइड किया। इंदौर में बैंककर्मी महिला का शव जला हुआ मिला, मृतका की पहचान हुई, पुलिस अब जांच में जुटी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और मेडल मिला, अब तक दो गोल्ड, पांच सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते। भारतीय एथलीट सर्विस कुशारी ने पुरुष हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा, हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। भारत के लिए दोहरी खुशी भी आई, 53 किलो वर्ग में वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने सिल्वर मेडल जीता। वेटलिफ्टर विंध्या रानी देवी ने 58 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज जीता, स्नैच और क्लीन एंड जर्क मिलाकर कुल 199 किलो वजन उठाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विंध्या रानी देवी को बधाई दी। पैरा शॉटपुट में शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड जीता, शिल्पा शॉयला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बल्लूरी अजय बाबू ने सिल्वर मेडल जीता, वेटलिफ्टिंग के 79 किलोग्राम कैटेगरी में पदक जीता। ग्लासगो कॉमनवेल्थ में वेटलिफ्टिंग में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा, वेटलिफ्टिंग में 7 मेडल जीते। शूटिंग से भारत के लिए दोहरी खुशी आई, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारतीय महिला शूटर्स ने दिलाए 2 मेडल्स। ईशा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीता, स्वर्ण पदक जीतकर ईशा ने देश का गौरव बढ़ाया। अनुभवी निशानेबाज मनु भाकर ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया, डबल शूट ऑफ में मनु भाकर ने जीता कांस्य पदक। हांगझोउ में चल रहे आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 3 पदक के साथ भारत दूसरे स्थान पर, 14 मेडल्स के साथ मेजबान चीन पहले स्थान पर। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पैरा शॉटपुटर शिल्पा के शॉयला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ऐतिहासिक पोडियम फिनिश के साथ पदक जीता। असम के जोरहट में 50 साल में सबसे ज्यादा गंभीर बाढ़ का कहर, 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सुरेंद्रनगर में बारिश रुकने के बाद भी इलाके में पानी भरा, करीब 400 घरों में पानी भरने से लोग परेशान। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, यूपी पूर्वी राजस्थान हरियाणा पंजाब में भी भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड के बागेश्वर में आज स्कूल बंद हैं, भारी बारिश के अलर्ट के बीच प्रशासन ने कदम उठाया। हिमाचल में आज 31 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, सोमवार को कुछ हिस्सों में हुई हल्की से भारी बारिश। बिहार झारखंड असम मेघालय में भी भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी आज भारी बारिश हो सकती है, कर्नाटक तटीय आंध्र मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना। गुजरात के वलसाड में बाढ़ के बीच 1 महीने के मासूम का रेस्क्यू किया गया, स्थानीय लोगों ने बचाई मासूम की जान। राजौरी की बाढ़ के कारण सैकड़ों लोग बेघर, राहत शिविरों में रहने को मजबूर परिवार। करौली के हिंडौन सिटी में भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब, वाटर लॉगिंग की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बाड़मेर में बारिश आफत बन गई, 2 से 4 फीट पानी में शहर, सड़कें डूब गई, स्टेशन रोड पर जलभराव से मुश्किलें बढ़ी। वडोदरा में विश्वामित्री नदी किनारे मगरमच्छों का जमावड़ा देखने को मिला, पानी घटते बाहर निकले। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हमारे पास बहुत सारा गोला बारूद अभी भी बचा है, अलग अलग तरह का। बाइडेन ने यूक्रेन को बहुत कुछ दिया था, इसलिए हम उसे फिर से जमा कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर ईरान की मदद के आरोपों पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर यह सच है तो मैं पुतिन से पूछूंगा, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। ट्रंप ने कहा, हमने ईरान की सैन्य ताकत को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया, वे खुद बातचीत की मांग कर रहे हैं, समझते हैं कि संभावना है बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम ईरान के उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे नियंत्रण में है, उनके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में जनरल मोटर्स की फैक्ट्री का दौरा करते हुए कहा हम जनरल मोटर्स के लिए बहुत अच्छे रहे, टैरिफ की वजह से कंपनी शानदार प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली की महिलाओं को तोहफा मिला है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड से, फ्री बस सफर के साथ शॉपिंग भी आसान। मेरठ में कांवड़ यात्रा के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, 1500 सीसीटीवी 400 कैमरों से निगरानी की जाएगी। यूपी में कांवड़ मार्ग के ढाबों पर क्यूआर कोड लगाया गया है, क्यूआर स्कैन करते ही दुकानदार की पहचान दिखाई देगी। सीएम मोहन यादव ने दादा दरबार में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, दादाजी समाधि के दर्शन कर धूनी माई में आहुति डाली। अयोध्या में राम दरबार में श्रद्धालुओं के लिए नई दर्शन व्यवस्था लागू की गई है, 5 अलग अलग कतारों में मंदिरों में जाएंगे लोग। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन के नए पीएम एंडी बर्नहम से मुलाकात की, पोर्टसमाउथ में सैन्य बेस का दौरा किया, यूक्रेन को स्टोन क्लॉक तकनीक देने पर सहमति बनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की संसद को संबोधित किया, कहा यूक्रेन जंग में रूस की होगी जीत, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारों की कमी के दावे को खारिज किया, कहा अमेरिका के पास हथियारों में कोई कमी नहीं है। अमेरिकी बमबारी रुकने के बाद ईरान ने कड़ा रुख दिखाया है, ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा नियंत्रण अभी भी बरकरार है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri, Hind Bade Aram Se,
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
3: बहुत ही दुखद विषय है, कुछ समय पहले LOP आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश LOP राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय। खुद CJP ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई। मगर यह कहना आज कि AK-47, में बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर, इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: पेपर लीक वाले आंदोलन के बाद से मुल्क में राजनीति के दो रंग नजर आ रहे हैं, एक रील वाली राजनीति, दूसरी राजनीति वाली रील। सीजेपी वाले तो फिलहाल जश्न में मशगूल हैं, लेकिन सियासत की धार और रफ्तार दोनों तेज बनी है, क्योंकि सरकार को लगता है पेपर लीक पर आंदोलन हुआ, मंत्री का इस्तीफा हुआ, नए मंत्री को प्रभार मिल गया, नया विधेयक सदन में पेश हो गया, सरकार के हिसाब से मामला सुलझा दिया गया तो बाकी संसदीय कामकाज होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के हिसाब से हिसाब अभी बाकी है। उसके पूरे होने तक विपक्ष की आवाज बुलंद रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने तीन मांगे गिनाई थी। पहली थी इस्तीफा, वो हो गया। दूसरी थी प्रदर्शन पर अत्यधिक बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई, जो बाकी है। और तीसरी थी कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, उसकी कोई चर्चा नहीं। दो दिनों से पहली कामयाबी का जश्न मना रहे विपक्षी दलों की दो मांगे अधूरी थी कि विपक्ष ने संसद में तीन सियासी आरोपों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार ने लोकतंत्र में वोट चोरी कर दी, शिक्षा में पेपर चोरी कर दी, आस्था में चढ़ावे की चोरी कर दी। इन्हीं तीन आरोपों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच संसद के दोनों सदन में भरपूर हंगामा होता है, और इसी हंगामे के बीच नया बिल लोकसभा में टेबल भी कर दिया गया। लेकिन विपक्ष की राजनीति अब चार आरोपों और दो सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। आरोप ये कि 20 जुलाई को विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, प्रदर्शनकारियों पर घातक हथियारों टियर गैस का इस्तेमाल हुआ, महिला प्रदर्शनकारियों के निजी अंगों को निशाना बनाकर हमला हुआ, और सबसे आश्चर्यजनक तौर से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। लिहाजा सवाल है क्या गृह मंत्री ने घातक बल प्रयोग की मंजूरी दी थी, नहीं तो किसने दी? विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज कर रहे बिना वर्दी के लोग पुलिसकर्मी थे या स्वयंसेवक? वे किसके आदेश से तैनात हुए थे? ये सवाल कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से पूछा जाता है। विपक्षी दलों के आरोप और सवाल अलग और मामले से जुड़े तथ्य अलग। तथ्य है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में एक शख्स पैलेट गन के फायर का जख्मी है, जिसे राहुल ने मीडिया को दिखाया भी। दूसरे एक वीडियो और वायरल है, जिसमें बिहार के सिवान में सिपाही ऑटोमेटिक राइफल से एक गोली चलाई। सरकार और बीजेपी, विपक्ष और राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और सवालों को बेतुका बताते हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जब मंत्री का इस्तीफा हो गया तो आगे की तैयारी देखनी चाहिए और सख्त कानून पारित करना चाहिए। मसौदा विधेयक के रूप में पेश हो चुका है। कानून क्या है कि पेपर लीक पर जहां पहले 3 से 5 साल की जेल थी, नए बिल में 5 से 10 साल जेल होगी। पहले 10 लाख तक का जुर्माना था, नए बिल में 50 लाख जुर्माना होगा। पहले परीक्षा कराने वाली संस्था के दोषी मिलने पर 1 करोड़ जुर्माना और 4 साल की ब्लैकलिस्टिंग थी, अब 5 करोड़ जुर्माना, 8 साल ब्लैकलिस्टिंग होगी। पहले पेपर लीक माफिया पर 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान था, अब 10 करोड़ के जुर्माने और संपत्ति जब्ती का भी प्रावधान। पहले मुकदमे में जांच की समय सीमा नहीं थी, अब 2 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करेगी, 3 महीने में फैसला देना होगा। यह और बात है कि नीट पेपर लीक के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, उसकी पहली सुनवाई ही टल गई। अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि पेपर लीक जैसे मसले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा विपक्ष ये जवाब दे कि पंजाब में फार्मेसी एग्रीकल्चर की भर्ती परीक्षा में धांधली क्यों हुई, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग भर्ती में पेपर लीक क्यों हुआ, झारखंड में जेपीएससी की परीक्षाओं में धांधली क्यों हुई, कर्नाटक तमिलनाडु में पेपर लीक क्यों हुए। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार के एक बैकफुट ने विपक्ष का हौसला बढ़ा दिया, लिहाजा विपक्ष अपनी मांगे जोर शोर से उठा रहा है। हालांकि अब सरकार सीजेपी के आंदोलन जैसे दबाव से बाहर आ चुकी है और इन सियासी आरोपों और मांगों का मुकाबला करती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।

एंटी पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में चर्चा, दोपहर 1 बजे से शुरू हो सकती है बहस। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष भी ले सकता है हिस्सा, टूट सकता है डेडलॉक। ममता के बागी सांसदों की औपचारिक तौर पर एनडीए में एंट्री, आज पीएम की अगुवाई में होने वाले मंगल मिलन में करेंगे शिरकत। एनसीपीआई को मिला न्योता। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर और गिरफ्तारी को लेकर बड़ा फैसला, किसी पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। 26 जुलाई शाम 6 बजे तक दर्ज सभी केस होंगे वापस। जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल थे क्रिमिनल बैकग्राउंड के 2873 लोग। दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा, सीसीटीवी में कैद हुए हिंसा के 100 वीडियो। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला दूसरा गोल्ड, शर्मिला धनकड़ ने शॉटपुट में जीता मेडल। हाई जंप में सर्वेश कुशारे और वेटलिफ्टिंग में अजय बाबू और बिंदिया रानी देवी को सिल्वर मिला।

0: सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे हैं और अब वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपके सामने होंगी। आपको दिखाएंगे कि पेपर लीक पर नए बिल को लेकर आज क्या होने वाला है खबर। आज एनडीए के मंगल मिलन की भी होगी, साथ ही आपको बताएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान पर राहुल के नए आरोप आखिर क्या लगे हैं। इंदौर पुलिस के फर्जी एक्शन पर भी खुलासे की खबर आपको पूरी डिटेल के साथ देंगे। वही खबर ईरान पर ट्रंप के नए दावे की भी होगी। अमेरिका ईरान में युद्ध रुका है तो क्रूड ऑयल पर कैसे असर पड़ा है ये भी आपको डिटेल के साथ बताएंगे। और बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की कामयाबी की भी। तो सबसे पहले सुपर 8 में बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र की। दरअसल आज लोकसभा में पेश किए गए सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा की उम्मीद बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो विपक्ष बिल पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमत हो गया है। जानकारी के मुताबिक आज 10 बजे होने वाली बैठक में विपक्ष चर्चा में शामिल होने को लेकर फाइनल फैसला लेगा। इससे पहले कल लोक परीक्षा संशोधन बिल को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया, उसके बाद विपक्ष के हंगामे की वजह से चर्चा शुरू नहीं हो पाई और अब आज चर्चा शुरू होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। खबरों के मुताबिक दोपहर 1 बजे से चर्चा शुरू होने की पूरी संभावना है। कल स्पीकर की दखल के बाद विपक्ष चर्चा को तैयार हुआ है। हालांकि विपक्ष छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से बयान को लेकर मांग तेज कर सकता है। तो सुबह 10 बजे बैठक में विपक्ष का फाइनल फैसला आया और अब इस पर चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार हो गया है। और जानकारी इसी को लेकर आपको दे देते हैं। मॉनसून सत्र का आज दिन है और दूसरा दिन है आज दूसरे हफ्ते का। वहीं सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर इसमें चर्चा की जाएगी और इसमें कल हमने देखा कि विपक्ष काफी ज्यादा हंगामे के मूड में था, हंगामेदार सत्र रहा। वहीं चर्चा के लिए 6 घंटे का वक्त तय किया गया है और साथ ही 2024 में बने कानून में बदलाव इस चर्चा को लेकर होंगे। पेपर लीक बिल को लेकर मॉनसून सत्र में बात की जाएगी। कड़ी सजा और भारी जुर्माना का प्रावधान उसमें रखा गया है तो नया बिल पेश किया जाएगा जिसको लेकर वहां पर चर्चा होगी मॉनसून सत्र के दौरान। और देखने वाली बात होगी कि आज मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता है कि नहीं। अब क्या प्रावधान है वो आप समझिए। 5 से 10 साल की जेल की सजा इसमें होगी पेपर लीक को लेकर। 10 करोड़ तक जुर्माना उसमें रखा गया है जो बढ़ाया गया है पहले से। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चलाया जाएगा, जल्दी से जल्दी ये मामला होगा। वही रोजाना इसको लेकर सुनवाई भी होगी। एंटी पेपर लीक बिल को लेकर सख्त कानून है और उसको लेकर क्या प्रावधान है वो आप समझिए। 3 महीने में ट्रायल पूरा करने की बात इस बिल में कही गई है। तो 10 जो जुर्माना है उसको भी बढ़ा दिया गया है। वहीं अब इसको लेकर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए।
1: प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026।
2: पेपर लीक रोकने वाला बिल संसद में पेश।
1: आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस।
2: बिल पर चर्चा और वोटिंग के लिए सरकार पूरी तरह तैयार। आज सदन में बिल पर हो सकती है चर्चा।
3: नहीं मान रहे, हमने लोकसभा में भी बताया।
2: परीक्षाओं को लीक प्रूफ बनाने के लिए एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश हो गया है और सरकार का दावा है कि नए बिल में किए गए सुधार पर जैसे ही कानून बनेगा एग्जाम में होने वाली गड़बड़ी पर लगाम लग जाएगी।
1: बिल 2024। थैंक यू स्पीकर सर।
2: वहीं लगातार पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरने वाले विपक्ष ने चर्चा में शामिल होने के लिए अभी तक पत्ते नहीं खोले। सूत्रों की माने तो एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा में शामिल होने के लिए विपक्ष आज बैठक के बाद फैसला लेगा। जहां एक तरफ सरकार चर्चा को तैयार है वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बिल को सिर्फ ध्यान भटकाने वाला हथियार बताया।
4: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, सबसे बड़ी पंचायत में अगर आप चर्चा के लिए तैयार नहीं है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। और मेरी हम सभी सांसदों को छात्रों का हित देखते हुए चर्चा करनी चाहिए।
5: क्या सरकार ये गारंटी देती है कि पेपर लीक नहीं होगा? 24 में भी तो बिल लाए थे, 2 जुलाई 2024 में बिल के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन होता चला गया।
2: विपक्ष के हंगामे के चलते कल संसद में बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। विपक्षी सांसद छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर बहस पर अड़े रहे। अब देखना यही है आज बिल पर संसद में चर्चा शुरू होगी या फिर एक बार फिर हंगामे के चलते सदन स्थगित होगा। आज तक ब्यूरो।
0: चलिए अब बात कर लेते हैं एनडीए के आज होने जा रहे मंगल मिलन कार्यक्रम की। संसद के मॉनसून सत्र में जारी हंगामे के बीच एनडीए संसदीय दल की आज बैठक होने वाली है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली मंगल मिलन बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं इस बैठक में पहली बार टीएमसी के बागी 20 सांसद एनडीए की इस बैठक में शामिल होंगे, जो एनसीपीआई नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, यानी काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, यूसुफ पठान, सायोनी घोष समेत 20 टीएमसी के बागी सांसद एनडीए की इस बैठक में मौजूद होंगे। एनडीए की बैठक में एनसीपीआई सांसदों को भी न्योता दिया गया है, जो आज इस बैठक में शामिल होंगे। मीटिंग में टीएमसी के 20 बागी सांसद शामिल होने की बात कही जा रही है।
2: एनडीए का आज मंगल मिलन, मानसून सत्र के बीच संसदीय दल की बैठक, एनसीपीआई सांसदों को भी बैठक में बुलाया गया। संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर मचे घमासान के बीच एनडीए की बैठक होने जा रही है। ये मीटिंग मानसून सत्र शुरू होने के बाद दूसरी बार हो रही है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि टीएमसी से अलग हुए 20 बाकी सांसदों वाली एनसीपीआई को भी न्योता दिया गया है। वहीं बाकी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से एनसीपीआई में अपने विलय को मान्यता देने की मांग की है। अगर विलय को मंजूरी नहीं मिलती है तो उन्हें टीएमसी के बाकी सांसदों के रूप में बैठकों में हिस्सा लेना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर एनसीपीआई का दामन थाम लिया है। एनडीए का ये मंगल मिलन कार्यक्रम ऐसे वक्त हो रहा है जब सदन में पेपर लीक बिल पर चर्चा होनी है, वहीं एनसीपीआई के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है आज तक ब्यूरो।
0: बात कर लेते हैं इस्तीफे के बाद संसद में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भी कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। दरअसल संसद परिसर में कल बीजेपी सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया, जिस पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक है और हमेशा रहेंगे। उसी सिस्टम में 26 बच्चों की जान ली उस सिस्टम ने और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। तो राहुल गांधी ने इस पर क्या कुछ कहा है, पूरी बात उनकी आपको बताते हैं। उन्होंने किस तरीके से इसका विरोध किया है, जो धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया गया उस पर राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक है और उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ली, लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। ये राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि इस्तीफा भी नैतिकता से नहीं बल्कि युवाओं के आक्रोश से डर कर उनको देना पड़ा है और उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है। ये कोई सम्मान नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। देश का हर छात्र ये देख रहा है और इसमें शामिल हर चेहरा याद रखेगा। तो धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरीके से स्वागत किया गया और उनके इस्तीफे को लेकर उसके बाद राहुल गांधी ने यह निशाना साधा है। प्रधान पर राहुल गांधी ने यह पोस्ट करते हुए बताया है कि इसमें शामिल हर चेहरा ये चीज याद रखेगा। और एक बड़ी खबर, दरअसल सीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। देर रात 1 बजे सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की। ये बैठक 2 से 3 घंटे तक चली और इस दौरान अधिकारियों ने बिहार और असम के उन नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाई है जिनमें FIR वापस लेने, भविष्य में कोई भी कार्रवाई ना करने और सभी हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की गारंटी दी गई है। साथ ही सौरभ दास ने केंद्र सरकार और अन्य बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों द्वारा गारंटी नोटिफिकेशन जारी करने के अपने वादे को दोहराया है और इसके लिए आज तक का वक्त भी दिया गया है।
6: दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर के तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे FIRs वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कांग्रेस जनता पार्टी, हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं।
0: 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान हिंसा की खबर। दरअसल दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल लोगों के आपराधिक बैकग्राउंड की जानकारी साझा की है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि 20 से 25 जुलाई के बीच विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग शामिल हुए और इनमें से 989 लोगों का गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है। इनमें से कई पर तो हत्या की कोशिश, रेप, पॉक्सो, डकैती और दंगा फैलाने के मामले पहले से ही चल रहे हैं। प्रदर्शन में 2873 आपराधिक मामले सामने आए हैं। 989 लोगों का गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। पहले से पॉक्सो, रेप जैसे मामले उन पर दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है 20 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल अपराधियों पर सख्ती बरती जाएगी और सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा दावा किया है कि पहले से ही वहां पर कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जिनपे कई मामले पहले से दर्ज हैं। जंतर मंतर पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग भी आए थे।
7: देखिए दो बातें हैं और दो बड़े खुलासे हैं। पहला खुलासा ये कि जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट था वहां पर 2500 से ज्यादा क्रिमिनल वो घूमते हुए पाए गए, जिनमें से 100 हत्या के आरोपी हैं और लगभग इतने ही हत्या की कोशिश के आरोपी हैं। उसके अलावा एनडीपीएस केसेस के आरोपी हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपी हैं, डकैती पर जिन पर आरोप था। तो ऐसे 250 लोग जिन पर संगीन अपराध के केस दर्ज हैं वो जंतर मंतर के आसपास घूमते हुए पाए गए और एक नहीं कई बार घूमते हुए पाए गए, ऐसा दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के हवाले से 100 सीसीटीवी फुटेज आज तक के हाथ लगे हैं। इन फुटेज में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेड को तोड़ा गया है नई दिल्ली इलाके में, जितने भी बैरिकेड थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया था कि जो नई दिल्ली इलाका है उसमें बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, किसी तरह के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है, नारेबाजी की इजाजत नहीं है। और यही बार बार 20 जुलाई को लाउडस्पीकर से ऐलान किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि एक हफ्ते तक प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे और धैर्य के साथ दिल्ली पुलिस भी वहां पर ड्यूटी कर रही थी, लेकिन 20 जुलाई को जैसा कि तय था संसद मार्च का ऐलान था और बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक नहीं कई लेयर की जो बैरिकेडिंग है, ऐसा आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी, वो तस्वीरों में दिख रहा है। और उसके बाद पुलिस ने बार बार उनको चेतावनी दी, वार्निंग दी, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं। वो दिल्ली के वीवीआईपी इलाके जो बेहद संवेदनशील है उन इलाकों में जाना चाहते थे, ऐसा दिल्ली पुलिस का आरोप है, और संसद भवन की तरफ जाना चाहते थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की।
0: अब बिहार में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान बवाल की बात कर लेते हैं। दरअसल छात्रों के प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और हिरासत में लिए लोगों को रिहा करने का फैसला किया है। 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक बिहार में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी दंडात्मक, प्रतिशोधकात्मक या फिर प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल पेपर लीक के खिलाफ बिहार के कई हिस्सों में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान छपरा में जमकर हिंसा हुई थी और कई प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीर चोट भी आई थी। इसके बाद पुलिस ने कई जगहों पर मामले दर्ज किए थे और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। उधर 25 जुलाई को बिहार के सिवान में AK-47 से पुलिस की फायरिंग को लेकर सियासी घमासान जारी है। पूरे मामले को लेकर अब तेजस्वी यादव ने सिवान फायरिंग की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही ये पूछा है कि किसके आदेश पर AK-47 से गोलियां चलाई गई। वहीं राहुल गांधी ने भी बिहार पुलिस की ज्यादतियों को लेकर सम्राट सरकार पर सवाल उठाए। इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपना पक्ष रखा है और पुलिस का ये कहना है कि बंद समर्थकों द्वारा घेर लिए जाने के बाद सिपाही ने जानमाल और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए AK-47 से बैरल ऊपर कर 4 राउंड हवाई फायरिंग की थी। हालांकि फायरिंग वाली जगह पर भीड़ में शामिल किसी भी व्यक्ति के घायल होने की कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन तेजस्वी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं।
8: हम लोग अभी भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं उन दोषी अधिकारियों पर जो है कार्रवाई की जाए, एक सिपाही को बलि का बकरा ना बनाया जाए। सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है कि AK-47 जो है 15 साल के बच्चे पर छाती पर गोली चलाएगा। किसके आदेश से हुआ? इसका जो है जुडिशियल न्यायिक जांच होनी चाहिए। तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, और उन अधिकारियों को भी हम चेताते हैं, सम्राट चौधरी जी कब आए और कब जाएंगे पता नहीं, सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएगा उन अधिकारियों को।
0: तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज संसद मार्च के दौरान पुलिस सेक्शन के खिलाफ दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है, और अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें सीजेपी के नेतृत्व में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार एक संवैधानिक गारंटी है जिसे नकारा नहीं जा सकता।

0: दिल्ली पुलिस के एक्शन को लेकर गंभीर आरोप भी लगे हैं और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर विपक्ष ने एक और पेपर लीक होने का दावा किया है। दरअसल महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 22 मार्च 2026 को ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा कराई थी और इसको लेकर एनसीपी शरद गुट ने विधायक रोहित पवार ने पेपर लीक से जुड़े सबूत भी पेश करते हुए सरकार से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परीक्षा से 2 दिन पहले मोबाइल पर पेपर लीक हुआ है, ये बात कही गई है। अभ्यर्थी ने पेपर का पीडीएफ अपने दोस्त को भेजा और पेपर के बाद हुई चैट के स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। रोहित पवार ये आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी चीटिंग हुई है। एमपीएससी एफडीए दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात वो कह रहे हैं और साथ ही संबंधित कोचिंग संदिग्धों की सीडीआर चेक हो जल्द से जल्द, ये बात उनके द्वारा कही जा रही है। वहीं आगे बढ़ते हैं और इस पर एक
1: दिल्ली से महाराष्ट्र तक पेपर लीक को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट पेपर लीक पर मचे सियासी घमासान के बीच विपक्ष ने ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 22 मार्च 2026 को ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी गड़बड़ियों और पेपर लीक होने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने सबूत पेश करते हुए सरकार से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
2: जब एग्जाम थी उसके 2 दिन पहले वहाँ पे जो क्वेश्चंस आने वाले थे वो क्वेश्चंस वहाँ पे लीक हो गए थे और उस व्यक्ति को कैसे मिले, 12 लाख रुपए कैसे दिए गए, ऐसे कुछ जो पुरावे प्रूफ हमारे पास है वो प्रूफ हमने सरकार को वहाँ पे दिए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं एमपीएससी के माध्यम से इस विषय के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सरकार के माध्यम से भी इस चीज़ में प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
1: वहीं रोहित पवार के आरोपों पर कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर प्रवीण पाटिल ने इनकार करते हुए कहा कि वो किसी पेपर लीक में शामिल नहीं है।
3: दो उमेदवार या परीक्षे मध्ये सिलेक्ट होऊ शकला नाही आणि त्याला वाटलं की ही परीक्षा एक 12-14 वर्षांनी झालेली आहे, आता पुढची 10-12 वर्ष परीक्षा होणार नाही आहे, त्यामुळे आपण या सध्याच्या जर आपण अशी तक्रार केली तर कदाचित ही परीक्षा रद्द होईल आणि फेरपरीक्षा होईल, म्हणून त्यांनी अशी तक्रार केलेली आहे।
1: इसके अलावा रोहित पवार ने ड्रग इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में कहा है कि जब तक पूरी जांच ना हो जाए तब तक फाइनल रिजल्ट और नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पकड़े गए आरोपियों का पुलिस ने इलाके में जुलूस निकाला था। इस दौरान आरोपियों के हाथ पैर पर प्लास्टर बंधे हुए थे और जिससे कि ये संदेश जाए कि वो घायल है। हालांकि जेल गेट पर पहुंचते ही पूरी सच्चाई सामने आ गई है। रिपोर्ट देखिए।
1: इंदौर पुलिस पर उठे गंभीर सवाल। आरोपियों के नकली प्लास्टर का वीडियो वायरल। जेल पहुंचते ही आरोपियों ने उतार फेंकी पट्टियां। ये वीडियो इंदौर का है, जहां मारपीट और तोड़फोड़ में पकड़े गए आरोपियों का पुलिस ने इलाके में जुलूस निकाला था। इस दौरान आरोपियों के हाथ पैर में प्लास्टर और पट्टियां बंधी दिख रही थी। इससे लोगों को लगा कि पुलिस ने इन पर कड़ा एक्शन लिया। वहीं अब ये वायरल वीडियो देखिए, जिसमें आरोपी जिला जेल के गेट पर खुद ही अपने हाथों और पैरों पर बंधे प्लास्टर और पट्टियों को खोलते और फेंकते दिख रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों को घायल दिखाने के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं वायरल वीडियो में कुछ लोग पैसों के लेन देन की बात करते सुने जा रहे हैं।
4: इस पुलिस वाले ने 20,000 रुपए लेकर के, ये देखिए इनके हाथ पैर तोड़ने की शिकायत थी और ये पट्टा इसका ये यहाँ पे निकाल दिया है।
1: पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि 20,000 रुपए के लेन देन के चलते दिखावे के लिए प्लास्टर बांधा गया था।
5: उनको 170 BNSS के तरफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भी भेजा गया था। तो उसी उपक्रम में एक वीडियो अभी सामने आया है, जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि जो आरोपी हैं जिनको जेल भेजा जा रहा था उनके हाथ से पट्टी हटाई जा रही है। तो मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने एक जांच गठित की है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आते हैं, जो साक्ष्य आते हैं, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।
1: वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा इसको लेकर अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र सरकार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: वही पीओजेके में एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूटा है। दरअसल वहां जबरदस्त बवाल हुआ। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल हालात उस समय हिंसक हो गए जब रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर है जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की संख्या इससे भी ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंसा के बाद पीओजेके के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। तो वहीं ईरान और अमेरिका के बीच अभी हमले रोके जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सेना को लगभग खत्म कर दिया है और अब वो मिलना चाहते हैं और हम मिल रहे हैं। ट्रंप ने यह उम्मीद जताई है कि एक डील होने की संभावना भी है।
6: Pretty much destroyed their military. They want to meet, and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we can make a deal. Without what we did, they wouldn't even be talking to us. They requested a meeting through their surrogates and directly. And we're meeting, and you know, good things can happen. I guess oil dropped very big today. Stock markets, as of about an hour ago, was like through the roof. But no, they requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been hitting them very hard.
0: कर लेते कॉमनवेल्थ गेम्स की। भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं के पैरा शॉर्ट पुट एफ 57 इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर ये उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ सुपर एट में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
3: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
6: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
5: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
7: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
8: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। हमें स्वस्थ

0: जमीने की अंधाधुंध फायरिंग, कई लोगों के मारे जाने की खबर, पूरे इलाके में इंटरनेट बंद। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला दूसरा गोल्ड, शर्मिला धनखड़ ने शॉटपुट में जीता मेडल, हाई जंप में सर्वेश कुशारे और वेटलिफ्टिंग में अजय बाबू और बिंदिया रानी देवी को सिल्वर। करते इस वक्त की एक बड़ी खबर का, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की ओर से सीजेपी को धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय बदलने की पेशकश की गई थी। सरकार के वार्ताकारों का तर्क था कि मंत्री को पद से हटाना या उनका विभाग बदलना पूरी तरह से प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है और सीजेपी ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि प्रधान के इस्तीफे के अलावा कोई भी विकल्प मंजूर नहीं होगा। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, क्या अपडेट है?
1: देखिए, जब सेकेंड राउंड की बातचीत हुई थी इस्तीफे से एक दिन पहले, तो दोनों ही वार्ताकारों ने जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, उन्होंने सीजेपी के जो प्रतिनिधि आए थे उनसे ये साफ साफ कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से हटाना ये भी और उनका पोर्टफोलियो विभाग चेंज करना, दोनों ही विशेषाधिकार जो है प्रधानमंत्री के पास है और इस चीज को उन्होंने सिरे से जो है नकार दिया था सीजेपी के प्रोटेस्टर ने और साफ कह दिया था कि प्रधानमंत्री के प्रधान के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प जो है वो उन्हें मंजूर नहीं होगा। और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री, उनका विभाग जो है वो बदला जा सकता है अगर सीजेपी प्रोटेस्टर इसके लिए तैयार हों। लेकिन सीजेपी के जो प्रोटेस्टर हैं जो दोनों वार्ताकार वहां पहुंचे थे उनसे उन्होंने साफ कर दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उनका इस्तीफा ही उनको मंजूर है, उनका विभाग बदलने
0: यानी प्रधान के इस्तीफे पर ही सीजेपी अड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी साझा करने। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है सुपरफास्ट 100 का।

आज पेपर लीक बिल पर लोकसभा में होगी चर्चा और वोटिंग। स्पीकर ओम बिरला की अपील पर सरकार विपक्ष के बीच टूटा गतिरोध। सोमवार को लोकसभा में बिल पेश होने के बावजूद नहीं हो सकी चर्चा। नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा विपक्ष। अमित शाह के बयान पर विपक्ष के रुख में नरमी। सूत्रों के मुताबिक चर्चा के दौरान अमित शाह के बयान आने पर विपक्ष राजी। आज सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक में आखिरी फैसला। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश से बोले धर्मेंद्र प्रधान, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, एसी का एक्टिविस्ट नहीं। और सोमवार को बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में प्रधान का किया सम्मान। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी राज में शिक्षा व्यवस्था चौपट, पूछा टास्क फोर्स पहले क्यों नहीं बनाई। दिल्ली में राहुल गांधी ने इरफान से की मुलाकात, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान हुए थे वायरल, कहा इरफान जैसे लाखों युवा ही देश के असली हुए। कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस को लेकर केंद्र पर जताई नाराजगी, लगाया वादा खिलाफी का आरोप, कहा बेवजह किया जा रहा है टारगेट। कांग्रेस जनता पार्टी ने लॉन्च किया डिजिटल मंच, प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस और आरएएफ की कार्रवाई के खिलाफ सबूत जुटाना लगा।

बीजेपी की दोबारा आंदोलन की चेतावनी, बोली सरकार ने समझौता तोड़ा। देशभर में सैकड़ों छात्र अरेस्ट, झूठे मुकदमे किए। पेपर लीक को लेकर देशभर में हो रहे प्रदर्शनों से जुड़ी कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस जनता पार्टी की याचिका में दिल्ली पुलिस पर संगीन आरोप। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर बिहार सरकार का फैसला, 26 जुलाई शाम 6 बजे तक दर्ज सभी FIR होंगी वापस। गिरफ्तार छात्रों की रिहाई जल्द। मेदांता अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद राजघाट पहुंचे सोनम वांगचुक, कहा गांधी की सिखाई गई बातें कारगर, अहिंसा सबसे प्रभावी रास्ता, वहीं शासक जनता की आज भी सुनता है। आज NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, NCPI सांसदों को मिला न्योता, TMC के 20 बागी सांसदों का गुट है NCPI। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया रोड शो, बोले बीजेपी को समर्थन देगी जनता, नतीजे आने पर सबका भ्रम टूट जाएगा। बांकीपुर में तेजस्वी यादव ने किया रोड शो, कहा छात्रों युवाओं को सरकार ने ठगा, सबका हिस्सा लेगी जनता। 69,000 शिक्षक भर्तियों पर यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, सभी को नौकरी सुरक्षित, नए लोगों को भी देंगे मौका। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नई SIT गठित, टीम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे शामिल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों की बढ़ी न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने 10 अगस्त तक भेजा जेल। आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने ऋतव्रता बनर्जी को LOP बनाने के स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से किया था इनकार। दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई, जिमखाना क्लब को खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया था नोटिस। IV अफसर अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन की सजा पर 31 जुलाई को आएगा फैसला, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में देगा फैसला। दिल्ली सरकार कांवड़ कैंप के लिए फंड बढ़ाकर 15 लाख रुपए करेगी, मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी। E20 पर अपने खिलाफ फेक कंटेंट पर नितिन गडकरी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे, याचिका दायर की गई। महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक हुआ, कांग्रेस का दावा, MPSC ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक हुआ। गुजरात के जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पेपर लीक की आशंका, BMS परीक्षा से पहले पेपर लीक की आशंका, विश्वविद्यालय ने जांच समिति गठित की। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं चलेगा बुलडोजर, मुरादाबाद कमिश्नर ने लगाई रोक, विकास प्राधिकरण ने दिए थे 38 बिल्डिंग गिरने के आदेश। वहीं संगरूर में बीजेपी कार्यालय पर बम धमाके के बाद सियासत गर्म हुई, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर उठाया सवाल। पंजाब के मोहाली में पुलिस और ड्रग तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 तस्कर घायल हुए। अमृतसर पुलिस ने सीमा पार हथियार और हेरोइन तस्करी मॉड्यूल पर भंडाफोड़ किया, 4 तस्कर गिरफ्तार, 5 आधुनिक पिस्तौल बरामद। बिहार के आरा में भरत तिवारी की मां से मिले बीजेपी MLC पवन सिंह, बोले न्याय की लड़ाई में हर कदम पर आपके साथ। आज शाम थमेगा बांकीपुर उपचुनाव का प्रचार, आखिरी दिन NDA और महागठबंधन झोंकेंगे पूरी ताकत। बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान, प्रचार के अंतिम दिन चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर करेंगे जोरदार चुनाव अभियान। छपरा में 25 जुलाई को उपद्रवियों के पथराव में घायल हुए BDO पर हमले का लाइव वीडियो आया सामने। पटना में मेदांता में चल रहा है इलाज, हालात अब भी गंभीर। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर, भगवान शिव की मूर्ति भी जलमग्न, घरों में कैद होने के लोग मजबूर हुए, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई तक भारी बारिश का खतरा, कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट, UP पूर्वी राजस्थान हरियाणा और पंजाब में भी भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड के बागेश्वर में आज स्कूल बंद, भारी बारिश अलर्ट के बीच प्रशासन ने उठाया कदम। हिमाचल में आज से 31 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट, सोमवार को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। बिहार झारखंड असम मेघालय में भी हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा छत्तीसगढ़ के इलाकों में आज भी हो सकती है भारी बारिश, कर्नाटक तटीय आंध्र और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना। गुजरात के वलसाड में बाढ़ के बीच एक महीने में मासूम का रेस्क्यू किया गया, 1 महीने के मासूम का, वहीं स्थानीय लोगों ने बचाई मासूम की जान। राजौरी की बाढ़ के कारणों में सड़कों पर लोग बेघर हुए, राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुआ परिवार। करौली के हिंडौन सिटी में भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब, वाटर लॉगिंग की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। बाड़मेर में बारिश बनी बड़ी आफत, 2 से 4 फीट पानी में डूबी शहर की सड़कें, स्टेशन रोड पर जलभराव से बड़ी मुश्किलें। वडोदरा में विश्वामित्री नदी किनारे मगरमच्छों का जमावड़ा, पानी घटते ही बाहर निकले मगरमच्छ, अकोटा ब्रिज पर देखने के लिए उमड़ी थी। दिल्ली के शाहदरा में 3 मंजिला इमारत अचानक से एक और झुक गई, घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा, एहतियात के तौर पर इलाका कराया गया है खाली। दिल्ली के शाहदरा में 4 लोगों के डूबने की आशंका, अब तक 40 साल के शख्स का शव बरामद किया जा चुका है जबकि बाकी की तलाश जारी।
दिल्ली के नरेला में तेज रफ्तार डंपर ने ट्रक और बाइक को मारी टक्कर। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी। पठानकोट नगर निगम के आधिकारिक ईमेल पर धमकी दी गई। आर्मी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। भीलवाड़ा में सेक्स एक्सटॉर्शन गिरोह पर पुलिस का शिकंजा। पूर्व पार्षद फजले रऊफ समेत 10 आरोपियों पर लुकआउट सर्कुलर जारी। वह इंदौर पुलिस के प्लास्टर ड्रामे का वीडियो वायरल। कोर्ट ले जाते समय आरोपियों के हाथ में चढ़ाया गया था प्लास्टर, निकाला था जुलूस। ग्रेटर नोएडा में उबर कैब लूटने वाले दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए। 24 घंटे में हुआ खुलासा। बिजनौर में 25 करोड़ की ठगी का मामला आया सामने। फर्जी कंपनियों के नाम पर 3,000 से ज्यादा लोगों को ठगा गया। FIR दर्ज। वाराणसी में दाल मंडी बाजार क्षेत्र में आखिरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यूपी के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में गोकशी का आरोपी घायल। पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा में लॉकअप शो देखने को लेकर हुए विवाद के बाद युवती लटकी बालकनी से। लटकी युवती का वीडियो वायरल। बिहार के मोतिहारी में जमीन के चंद टुकड़ों की खातिर बेटे ने मां की हत्या कर दी। धारदार हथियार से वारदात को दिया अंजाम। पटना के बेटा में शराब पार्टी करते 5 युवक गिरफ्तार हुए। भारी मात्रा में हथियार जब्त। पुणे में दिन दहाड़े दुकान में लूट। चाकू की नोक पर कैश लूटकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। नासिक में एक ट्रक ड्राइवर ने खोया नियंत्रण। ट्रक सीधे फ्लाईओवर से नीचे गिरा। वीडियो तेजी से वायरल। छत्तीसगढ़ में जेसीबी इंडिया के दो वरिष्ठ अधिकारियों पर कोर्ट के आदेश के बाद FIR। 50 करोड़ निवेश में कथित धोखाधड़ी, शोषण और धमकी के आरोप। बिहार के सुपौल में स्मैक के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इंदौर के लोधिया कुंड और चोरल डैम में 2 युवकों की डूबने की वजह से मौत हुई। नहाते समय गई जान। सुकमा में पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने की निर्मम हत्या। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। गुजरात के नवसारी में उफनती नदी के तेज बहाव में बिना किसी सुरक्षा रिवर राफ्टिंग करते 6 गिरफ्तार। वायरल। यूपी के संबल में अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 3 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के नू बच्चे के गलत ऑपरेशन का मामला आया सामने। मंत्री ने जांच का दिया आश्वासन। विधायक आफताब ने सरकार को घेरा। ग्रेटर नोएडा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे चाप की गुणवत्ता वाला वीडियो। फूड विभाग ने नोएडा का होने से नकारा। जैसलमेर के रामदेवरा में बर्थडे पार्टी में लौटते ही 2 बच्चों की मां बाप ने हत्या कर दी। वारदात के बाद किया सुसाइड। इंदौर में बैंक कर्मी महिला का जला शव। मृतका की हुई पहचान। पुलिस जांच में जुटी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 6:18 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर 1:11 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:49 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, अपने स्वभाव का ध्यान रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की रुकावट दूर होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कर्क राशि, करियर के मामलों में तेजी आएगी, धन लाभ की स्थिति बन रही है, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।

बर्बाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी, योजनाओं को गोपनीय रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें, दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक तनाव से बचाव करें, ऑफिस में विवादों से बचें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, करियर में सफलता का समय है, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन संपत्ति का लाभ होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, आर्थिक लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: कोई काम नहीं बचा है। जनता ने बार बार उनको जो रास्ता दिखाया है, उनको लगता है बच्चों के भावनाओं के पे ऊपर राजनीति करके वो निकल जाएंगे। और यही काम उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जो धरना का काम किया, वो क्या था, जब ऑलरेडी बात चल रही थी, वो लोग धरना पे बैठे हुए थे, एक पैरेलल खड़ा करके कि हम नहीं पीछे रह जाए, राजनीति चमकाना था, इसलिए ना जा करके चुपचाप जा करके बैठ गए खड़गे जी के घर से निकल करके बर्थडे के नाम पर।
2: बेबी बनाए थे उनका, क्या हुआ, वो कमजोर थे क्या? पहले जो बनाया आपने वो कमजोर थे, जो पहले कानून बनाया वो कमजोर था, उसको इम्प्लीमेंट करानी अगला कानून बता दिया आपने। अरे उसको तो इम्प्लीमेंट कर लेते, उसमें तो चार्जशीट दाखिल नहीं करी, वो मुखिया को ही है, वो बरी होकर के चला गया। करना कुछ नहीं है, बातें करनी है, करिए, डिलीवर करने का टाइम है, ये आपकी बातों से नहीं पेट भरेगा लोगों का।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

एंटी पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में चर्चा, दोपहर 1 बजे से शुरू हो सकती है बहस। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष भी ले सकता है हिस्सा, टूट सकता है डेडलॉक। इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा एंटी पेपर लीक पर विपक्ष का स्टैंड। चर्चा के बीच अमित शाह के बयान पर राजी हो सकती है कांग्रेस। एनडीए के मंगल मिलन में पीएम का संबोधन, ममता के बागी सांसद भी होंगे शामिल।

में पाकिस्तानी सेना फिर कर रही है अत्याचार, प्रदर्शनकारियों पर मुनीर आर्मी ने की अंधाधुंध फायरिंग, कई लोगों के मारे जाने की खबर, पूरे इलाके में इंटरनेट बंद। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला दूसरा गोल्ड, शर्मिला धनकड़ ने शॉटपुट में जीता मेडल, हाई जंप में सर्वेश कुशारे और वेटलिफ्टिंग में अजय बाबू और बिंदिया रानी देवी का सिल्वर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज अच्छी खबर से शुरुआत करें क्योंकि संसद के गलियारों से कुछ अच्छी खबर इस वक्त आ रही है। खबर यह है कि आज एंटी पेपर लीक पर लोकसभा में चर्चा होगी। हालांकि अभी भी आधिकारिक रूप से अगर आप देखिए तो विपक्ष का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हमारे तमाम रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि जो उनकी बातचीत हुई है विपक्ष के नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड, उसमें वो ये कह रहे हैं कि कल शाम फ्लोर लीडर्स के साथ स्पीकर की बैठक में गतिरोध टूट गया है और थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक के सांसदों की बैठक होगी और उसके बाद ही विपक्ष की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। क्योंकि विपक्ष कल इस बात पर अड़ा था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग पर पहले गृहमंत्री बयान जारी करे, फिर विपक्ष चर्चा में शिरकत करेगा। अब सूत्रों से खबर है कि विपक्ष चर्चा के दौरान बीच में भी अगर गृहमंत्री बोलते हैं, बयान देते हैं, तो उनकी मांग पर वो उनका बयान अगर बीच में भी आता है तो उस पर वो राजी हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है जिसके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश आज हमारी संसद की तरफ देख रहा है। और संसद की तरफ क्यों देख रहा है, क्योंकि पूरा देश ये चाहता है कि जो उस नए कानून की बात हो रही है या सरकार की जो कमियां रही या विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहता है उस पर वो बोल पाए, कम से कम देश सुन पाए। क्योंकि नारेबाजी होने लगती है और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया 2 बजे तक के लिए और ऐसे ही पूरे दिन का काम धुल जाता है। वही राज्यसभा में भी होता है। तो सब चाहते हैं कि कम से कम जो जवाबदेही इस देश की संसद की है, जहां पर सरकार अगर बिल ला रही है उस बिल में भी कुछ कमियां हैं, तो उस पर रिसर्च करके आज चर्चा हो और बातचीत हो, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि हम अपने छात्रों को, अपने बच्चों को पेपर लीक भविष्य, पेपर लीक प्रूफ भविष्य दे पाए। आइए आपको सुनाते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि जो घमासान पीछे चल रहा है और आने वाले दिनों में अब इस पर क्या हो सकता है।
1: चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, चर्चा करने को तैयार है।
2: संसद के दोनों सदनों में हंगामे की ये चंद झलकियां सोमवार की थीं।
1: मैं कांग्रेस के साथियों कहना चाहता हूं, ऐसा काम मत कीजिए। हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए, बोलते नहीं, चर्चा करने को तैयार है, लेकिन होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए।
2: लेकिन शाम होते होते सूत्रों के जरिए अच्छी खबर ये आई कि सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर हो चुका है और आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा तय है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने आज इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा शुरू करने पर सहमति जताई है।
3: आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत, सबके विचार आए और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें।
2: कल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2026 पेश किया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ज्यादती पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्ष के शोर शराबे में चर्चा शुरू नहीं हो पाई। लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए और फिर 5 बजे तक के लिए स्थगित हुई, लेकिन 5 बजे भी सदन में शांति बहाल नहीं हो पाई और कार्यवाही को आज तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
1: आज इतना महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होने नहीं दे रहे, मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है, अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं।
2: संसद के मानसून सत्र में लगातार छठा दिन था जब लोकसभा में कोई काम नहीं हो पाया। गतिरोध को तोड़ने के लिए स्पीकर ओम बिरला ने विभिन्न राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स से बातचीत की और सूत्रों के मुताबिक बात बन गई। विपक्ष विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए राजी हो गया। विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चर्चा के दौरान विपक्ष गृह मंत्री के बयान की मांग करेगा।
3: सभी माननीय दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं, हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं।
4: इसलिए
2: मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा दिल्ली आज तक
0: हिमांशु अमित और जितेंद्र भारद्वाज अमित भारद्वाज और जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे तीन सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि देखिए आज अलग अलग तरीके से इस खबर को अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का एक संबोधन होना है जिस पर सबकी नजर है कि पीएम आज किन बिंदुओं पर बोलते हैं जब ये एनडीए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र बहादुर सिंह लगातार कवर कर रहे हैं क्योंकि दो ऐसे मुद्दे जिस पर सरकार के लिए तमाम विपक्ष तैयार है घेरने को वो है पेलेट गन और AK-47 सिवान में, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। वहीं अमित भारद्वाज आपको बताएंगे कि विपक्ष का क्या रुख है और विपक्ष किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये मूवमेंट किस तरह से आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी खबरें तो हिमांशु अभी भी निकल कर आ रही हैं। कुछ देर पहले ही आपने एक खबर बताई है, अब सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी जो तमाम बातें सामने आ रही है वो भी हमारे दर्शकों को बताएं हिमांशु।
5: देखिए, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उससे पहले 24 तारीख को जब बैठक हुई थी सीजेपी के जो दो प्रतिनिधि हैं और सरकार के दो नेगोशिएटर जो थे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, उनके बीच में जब बातचीत हुई तो ये कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान का जो है वो पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं, यानी विभाग बदला जा सकता है। सीजेपी के जो दोनों प्रतिनिधि थे वो इस बात को एक सिरे से उन्होंने अंजना अस्वीकार किया। उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम हमको स्वीकार नहीं है, अगर सरकार इस्तीफा नहीं कराएगी तो सोमवार यानी 27 तारीख को एक बार फिर से सीजेपी की तरफ से संसद चलो संसद मार्च का जो है वो घोषणा अभी हम बाहर कर देते। तब जो है सरकार के जो दोनों मंत्री थे उन्होंने कहा हमको ये बात ऊपर करनी पड़ेगी, उसके बाद जो भी होगा हम आपको अगली बैठक में यानी कल बताएंगे। उन्होंने 24 घंटे का समय दिया था और 72 घंटे के लिए उन्होंने कहा था कि 72 घंटे में हम एक बड़ा मार्च की घोषणा करेंगे जो संसद मार्च तक रहेगा। तो ये जो था इसमें कहीं ना कहीं सरकार के सामने दुविधा ही आ गई कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ये प्रोटेस्ट धरना खत्म नहीं हो सकता और विभाग बदलने की बात भी जो है सीजेपी के जो दोनों प्रतिनिधि थे जो प्रोटेस्टर की तरफ से थे उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया था और यही एक कारण बना कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो है 25 तारीख दोपहर को अपने इस्तीफे की घोषणा करने पड़ी और उन्होंने एक ओपन पत्र जो है खुला पत्र जो है वो युवाओं के नाम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा पहले दिन से उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी और वो जो काम कर सकते थे वो कर रहे थे। नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद जो कार्रवाई के एक्शन देने थे वो दिए, नीट का पेपर दोबारा री एग्जाम कराया गया, नीट के एग्जाम के रिजल्ट जल्द कराए गए, एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया, सचिव बदले गए, जो प्रक्रिया हो सकती थी सुधारों की उस पर सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन सीजेपी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए जो है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा जो है वो दिया आज, क्योंकि एनडीए की जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग है जिसे मंगल विलन का नाम दिया गया है उसमें पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था जिन लोगों ने जो है पेपर लीक किया है वो घोर पाप किया है उनको सजा मिलेगी, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये सरकार जो है अकाउंटेबल है रिस्पॉन्सिबल है, जैसी ही पता चला कार्रवाई की गई। लेकिन छात्रों के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए, छात्रों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, उनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, छात्रों को भड़काने का काम जो नहीं होना चाहिए, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और ये एक स्ट्रॉन्ग तरीके से फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिसे भविष्य में पेपर लीक ना हो। आज क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे ये सबकी नजर रहेगी क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है।
0: पार्लियामेंट्री पार्टी की आज बैठक है और उसमें पीएम क्या कहते हैं इस पर नजर रहेगी। जितेंद्र बहादुर सिंह आपके पास क्या क्या खबर है क्योंकि देखिये पेलेट गन और AK-47 ये सबसे कंटेंशियस कॉन्ट्रोवर्शियल इशू जिसको आज विपक्ष छोड़ेगा नहीं।
6: देखिए अंजना, कल भी हमने देखा कि लगातार राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके द्वारा पैलेट गन का मुद्दा उठाया गया, साथ ही AK-47 का मुद्दा जो बिहार के सिवान में वहां पर पुलिस के हाथों में था उस मुद्दे को भी राहुल गांधी ने लगातार उठाया, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर। राहुल गांधी लगातार यही कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इस पूरे मामले में बयान दिया जाना चाहिए, पर अब देखना है कि जब चर्चा की शुरुआत आज होती है तो उस दौरान किस तरीके से जो है है, सरकार की तरफ से इस पूरे मुद्दे को बयान दिया जाता है और इस पर जानकारी दी जाती है। लेकिन उससे पहले अंजना आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने आज तक को एक बड़ी जानकारी ये दी है कि जो 20 जुलाई को जो प्रदर्शन पूरा हुआ था, उस प्रदर्शन के दौरान किस तरीके से उसमें क्रिमिनल्स बहुत सारे ऐसे थे जो कि उसमें उनके ऊपर कई बड़े आरोप थे, वो लोग इसमें शामिल हो गए थे, जो कि करीब करीब 2800 के आसपास सीसीटीवी फुटेज कैमरे से जो उनकी जानकारी हासिल की गई है उनकी तस्वीरों के आधार पर, जिसमें यह पता चला है कि 989 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आरोप हैं कई तरीके के, और ये आरोप छोटे मोटे आरोप नहीं है, इनके ऊपर आरोप इस तरीके के हैं कि 101 ऐसे आरोपी हैं जो कि हत्या के आरोप में शामिल रहे हैं, 284 आरोपी जो हैं वो डकैती के और लूट के आरोप में शामिल हैं, और 92 आरोपी ऐसे हैं जो कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ इनके ऊपर मामले दर्ज हैं। तो इस तरीके के लोग जो हैं उस दौरान प्रदर्शन के समय में कनॉट प्लेस के एरिया में खास तौर पर, और इसके साथ साथ जनपद रोड और जो पूरा कनॉट प्लेस का सर्किल है, इन तमाम इलाके में दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इसके साथ ही जो सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स ने यह भी बताया कि ऐसे ही लोगों के द्वारा अटैक जो है बड़े स्तर पर रैपिड एक्शन फोर्स के 47 जवानों के ऊपर किया गया जो कि काफी चोटिल हुए हैं। तो ये तमाम चीजों की जानकारी जो है हो सकता है कि सरकार के द्वारा संसद में जब सवाल विपक्ष के द्वारा खड़े किए जाएं तो उनके द्वारा दिया जाए।
0: बिल्कुल, और ये वीडियो भी दिल्ली पुलिस ने जारी किया है, वो भी हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि वो इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि कैसे जो सुरक्षा बल के लोग थे उनको कैसे टारगेट किया गया है। ये दिल्ली पुलिस ने जारी किया है ये वीडियो 20 तारीख का, जो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक बार जल्दी से अमित भारद्वाज के पास चलते हैं। अमित, लेकिन पूरे देश की नजरें बवाल के आगे क्या, बवाल के आगे क्या छात्रों के पेपर लीक के मुद्दे पर इस देश की संसद सिर्फ गर्म होगी या कोई सार्थक उसका समस्या का नतीजा निकालेगी, कोई हल निकालेगी, इस पर नजर रहेगी। क्या भाव पा रहे हैं आप विपक्ष का मूड अमित?
4: अंजना, देखिए विपक्ष ने अपना रुख साफ कर दिया है। अगर आप तीन लेयर्स में इसको देखें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो हो चुका है। सदन के अंदर जो 20 तारीख को दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स का एक्शन रहा दिल्ली में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, उस पे डिटेल्ड चर्चा की मांग न केवल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बल्कि समाजवादी पार्टी जैसे भी अहम विपक्षी दल कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि सरकार खुद सदन में आकर माने कि किस तरह से लाठी चलाई गई उनके हिसाब से जो वो दावा कर रहे हैं, या जिस तरह से आपने देखा कि राहुल गांधी ने पहले सड़क पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात को एस्टैब्लिश किया उन्होंने कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, और बाद में बात कही जा रही है कि आरएफ में भी इसको लेकर इंटरनली जांच चल रही है। तो किसने पैलेट गन चलाया, किसने उसका आदेश दिया, कितने राउंड चले, ये सारी जानकारी विपक्ष चाहेगी कि सदन में सरकार के मुंह से बुलवाया जाए ताकि ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द हाउस आए। और इसके साथ साथ अब इसमें एक नया टूल पकड़ेगा जिस तरह से पुलिस का एक्शन बिहार में रहा, हालांकि बिहार पुलिस ने कल देर रात प्रदर्शनकारियों को सीजेपी और लेफ्ट के खासतौर पर जो प्रतिनिधि मंडल गया था उनको आश्वस्त किया है, अश्योर किया है कि अब कोई पुलिस एक्शन नहीं होगा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, और जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उन एफआईआर को भी वापस लिया जाएगा, बिहार पुलिस की तरफ से अश्योरेंस मिल गया है। लेकिन सिवान में AK-47 का विजुअल और उससे गन फायरिंग के शॉट्स, इसको लेकर भी सदन में बवाल होगा। तो संभवतः जब ये फेज निकल जाता है तब आप देखेंगे कि सदन स्मूथली आगे बढ़ेगा, और निश्चित रूप से पूरा देश चाहता है कि जो परीक्षा व्यवस्था है और जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लूपहोल्स को फिक्स किया जाए। अंजना,
0: बिल्कुल, और अमित सबसे बड़ा बवाल भी कल यही हुआ था, एक बार तीनों रिपोर्टर्स को दिखा दीजिए, सबसे बड़ा बवाल भी कल यही हुआ था कि एक तरफ हम लोग देख रहे थे कि कैसे इस पूरे मामले में केसेस की भी बात आई कि बिहार में कई जगहों पर छात्रों के खिलाफ केसेस हो रहे थे, देखिए वापस लेना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ सिवान का वो जो फुटेज है AK-47 वाला वो सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना है, तभी ये पूरा मामला इस तरह से आगे पैन आउट हुआ है। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी अब जुड़ गए हैं। जल्दी से एक एक रिएक्शन यहां से लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, विनोद अग्निहोत्री जी आज क्या बोलते हुए आप सोच रहे हैं कि वो सामने आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी अपनी तरफ से एक संवाद शुरू करने की कोशिश की अपने इंस्टाग्राम वीडियोस के जरिए, वहीं दूसरी तरफ इधर से एक्शन भी हो रहा है, क्या कुछ आप देख रहे हैं आज होता हुआ?
7: मुझे लगता है
0: और विपक्ष का मूड आप कैसे भांप रहे हैं, आपके सोर्स क्या बता रहे हैं?
7: देखिए प्रधानमंत्री, मुझे लगता है जो मंगल मिलन कार्यक्रम है एनडीए के सांसदों का, उसमें वो सबसे पहले तो वो सरकार ने जो कदम उठाए हैं छात्रों की समस्या को लेकर के उसके बारे में वो ब्रीफ करेंगे, क्योंकि वैसे तो उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए बताया ये, लेकिन वो विस्तार से बताएंगे मुझे लगता है। और इसके साथ ही वो एक अपील भी करेंगे खासकर छात्रों से और उनसे कि भाई सरकार गंभीर है इस मामले में, मंत्री का इस्तीफा हो गया है और अब जो है छात्र जो है अपने काम में लगे और किसी आंदोलन उसमें ना पड़े, एक तरह से आश्वासन वो देंगे, एक भरोसा देंगे। और धर्मेंद्र प्रधान की हो सकता है तारीफ भी करें वो, क्योंकि जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान को कल स्वागत किया गया है, तो यानी सरकार ये नहीं बताना चाहती, जताना चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने किसी दबाव में इस्तीफा दिया है। सरकार ये साबित करना चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है वो नैतिकता के आधार पर उनकी अपनी इच्छा से हुआ है, इसीलिए कल उनका स्वागत किया गया, उनको वो पाग जो है पहनाया गया उनको, और ऐसा लगा जैसे वो किसी बड़ी मुहिम से लौटे हो, उसी संदाज में उनका स्वागत किया गया। तो इस चीज को भी प्रधानमंत्री आगे बढ़ा सकते हैं। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष का मूड ये है मुझे लगता है, क्योंकि विपक्ष जितना विरोध प्रदर्शन कर सकता था कर लिया उसने, अब उसकी डिमांड है कि गृहमंत्री जी इस पर बयान दे, तो गृहमंत्री बयान तब देंगे जब चर्चा होगी, भाई हाउस तो चले तो गृहमंत्री का बयान तभी आएगा। और ये बात विपक्ष को भी समझ में आनी चाहिए और शायद आ भी गई होगी, इसीलिए कल जो फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई है उसमें जो सहमति बनने की खबरें आ रही हैं उसका कारण यही है कि विपक्ष अब सरकार सदन बैठेगा, क्वेश्चन आवर होगा, उसके बाद चर्चा होगी और चर्चा में फिर गृहमंत्री बोलेंगे, तब विपक्ष
0: बोलेंगे उसके लिए तैयार हो जाए विजय जी। क्योंकि देखिए विजय जी, आज सबसे बड़ी बात क्या है कि जब एक खुली मांग थी और अमित भी इससे सहमत होंगे, अमित लगातार उस पूरे आंदोलन को कवर कर रहे थे, भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, कांग्रेस जनता पार्टी ने भी जैसा हिमांशु बता रहे हैं कि उस पर वो अड़े रहे और उन्होंने कहा इससे कम में हम नहीं मानेंगे, अगर आप पोर्टफोलियो चेंज करेंगे तो हम नहीं मानेंगे, जो सोर्सेस के हवाले से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं। इस्तीफा हुआ, इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने एक जो लॉजिक है उसको समझते हुए उसके बाद से विड्रॉ किया अपने पूरे आंदोलन को, तो विपक्ष को भी अब मुझे लगता है कि कम से कम चर्चा इस पर होनी चाहिए।
8: मुझे लगता है कि चर्चा आज शुरू हो ही जाएगी, कल शाम को जो मेरी जानकारी है लोकसभा अध्यक्ष ने इनिशिएट किया और शायद ये अश्योर किया गया कि होम मिनिस्टर इंटरवीन करें, क्योंकि खासतौर से अब मसला है गोली जो चली, पैलेट गन का जो मसला है, AK-47 का जो मसला है, छात्रों पर जो मुकदमे थे, रात को मुझे जानकारी मिली कि रात को 12-1 बजे भी बिहार में ये आदेश दे दिया गया दिल्ली से कि जो भी मुकदमे हैं उनको विड्रॉ कर लिया जाए, तो ये सारी बातें लगातार हुई है, उस पर चर्चा होगी। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरा मंगल मिलन हो रहा है, जब आज पार्लियामेंट्री पार्टी है तो पूरा माहौल बदल गया। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ताकत के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ थी, जिसमें पहली बार नितिन नवीन साहब भी आए थे कि ये हम मामले को सुलझा लेंगे, लेकिन पूरा दबाव बना और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। मुझे नहीं समझ में आया कि किस बहादुरी के लिए कल उनको सम्मानित किया गया धर्मेंद्र प्रधान साहब को, खैर वो तो उनका पॉलिटिकल मसला है, लेकिन पूरा दबाव था जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और ये स्थापित करने से नहीं होता, लोगों को समझ में आ रहा है कि आप दबाव में आकर इस्तीफा दिया और इस सरकार के लिए बड़ा झटके के तौर पर मैं इसको देखता हूँ। अब सरकार की कोशिश क्या होगी कि अब फिर से ये जो कहा जाता है, कुछ लोग मित्र कह रहे हैं कि भाई खून मुंह लग गया, तो ये ना हो कि अब किसी दूसरे मंत्री के इस्तीफे के लिए पार्टियां एक लामबंद होने की कोशिश करें, इसलिए इस पर किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है ये जो बात विनोद जी कह रहे वो तो है ही, लेकिन वो अपने MPs को कहेंगे कि भाई लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, जो जिस तरह से नए मीडियम को प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया इंस्टाग्राम को, वो अपने MPs को भी इस बात पर जोर देंगे कि इंस्टाग्राम के थ्रू या जो नया मीडियम है सोशल मीडिया, उसके थ्रू छात्रों के साथ, लोगों के साथ, नौजवानों के साथ बातचीत करें, इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। अभी तो उनका गठबंधन का जो परिवार जो है वो बढ़ रहा है, आज वो जो नई पार्टी है CJP
0: NCPI
8: उनके लोग भी शायद उसमें आ रहे हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी पिछली बार नहीं आए थे, इस बार पार्लियामेंट्री
7: बैठक में
8: पार्लियामेंट्री पार्टी में आएंगे।
0: हर्ष जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको, आज पूरे दिन का, क्योंकि सबकी नजर है कि भाई बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलेगा, बहस शुरुआत होगी, लोग बोलते हुए सुनेंगे।
9: देखिए, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि ये कल क्यों नहीं हुआ, ये तो सद्बुद्धि विपक्ष को आनी चाहिए थी कि जो बच्चे राजनीति में नहीं है, जो प्रॉपर पार्टी भी नहीं है, वो पार्टी की तरह बिहेव कर रही है, वो सरकार पे दबाव भी बना ले रही है, वो सरकार के साथ कम्युनिकेट भी कर ले रही है और उसके हिसाब से मान भी जा रही है, वो ज्यादा मेच्योर नजर आ रहे हैं जो इमेच्योर लोग थे, और जो बरसों बरस से राजनीति करते आ रहे थे उनको मेजोरिटी में पता ही नहीं कि कल पूरा देश ये चाह रहा था आपके नारे, कल वो नहीं सुनना चाह रहा था, कल तो वो ये चाह रहा था कि आप सदन में आते, सदन में कहते कि सरकार ने ये गड़बड़ की है। और सचमुच बड़ा सरकार के पक्ष में कहें तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पैलेट गन तो एक मसला था, जो सरकार 20-22 दिन तक वहां प्रदर्शन करने देती है, जो सरकार सदन के नजदीक तक प्रदर्शनकारियों को आ जाने देती है, उसके ऊपर क्या लगा, पैलेट गन का धब्बा है। और AK-47 ये तो कमाल है, छात्रों के आंदोलन में कभी भी गलती से भी इस तरह की चीजें नहीं होती। ये तो जिसने भी किया है उस अधिकारी के ऊपर, मतलब अगर सरकार को सिर्फ इतना भर नहीं सस्पेंड कर दिया, ऐसी कार्रवाई, क्योंकि आप छात्रों से डील कर रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बीच में एक भी ये खबर गड़बड़ करती है। लेकिन मूल बात क्या है, मूल बात ये है कि क्या शिक्षा के सुधार पर अब विपक्ष और सरकार उस तरफ जाएंगे जिसकी वजह से देश के लाखों बच्चे, उनके परिवार पीड़ा से गुजर रहे हैं। मूल मुद्दा वो है। और दुर्भाग्य से जो अभी भी जो पोस्टरिंग दिख रही है, और मैं भी इससे सहमत हूं, कल भी मैं कह रहा था कि पता नहीं ये धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों बार बार इस तरह से कर रहे हैं, वो पता नहीं उनको अच्छा लग रहा हो कि नहीं, पाग पहना दिया, मिथिला का पाग वो सम्मान का प्रतीक होता है, भाई कोई वजह तो, सब जानते हैं कि धर्मेंद्र जी बहुत नीचे से हैं। सांसद जी कह रहे
0: हैं कि मिथिला जो मिथिला का मैथिल भाषा है उसको उन्होंने ये किया, इसीलिए वो इस वजह से
9: उसके लिए अलग से कार्यक्रम करते हैं ना। आप जब संसद में नारे लगा रहे हैं, संसद में कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि ये तो
0: आप देख रहे हैं कि स्थिति कितनी इस वक्त संवेदनशील बनी हुई है, बड़ी संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। और AK-47 का वो वीडियो सोशल मीडिया की जंग है ना, एक जो ब्लड थर्स्टी जंग है, उससे आगे निकलकर ये बात बहुत गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक SOP आपको लाने की जरूरत है कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती है और उसके बाद से बाद में फायर फाइटिंग की कोशिश होती है, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। और AK-47 का वो वीडियो मतलब अपने आप में ऐसा है जो आपको शायद बहुत दिन तक परेशान करे, इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक SOP, क्योंकि कब किस तरह का विरोध प्रदर्शन कहां पर शुरू हो उसके लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए, SOP सुरक्षा बल की हर टुकड़ी के लिए। जितेन, क्योंकि बहुत सारे उसके वो है ना कि आप एस्केलेशन के लेवल्स है जो आपको करने हैं। अब देखिए खबर आई, वीडियो हमने ब्लैक एंड व्हाइट में भी दिखाया था कि पटना में पूछ रहे थे कुछ बच्चे कि भाई टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, एक बार वाटर कैनन फिर से लाइए, सब वो अपनी जगह है, लेकिन ये लेवल्स होते हैं ना कि आपको आंदोलन को कैसे फाइट कर, कितने भी उग्र लोग हों आपको समझना है कि आप कहां तक जा सकते हैं, आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, उसके बाद मैं जो नेता कह रहे हैं वो सुनाऊंगी। जितेन
6: बिल्कुल अंजना, इसके लिए बाकायदे जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है और हर एक फोर्सेस के पास इस तरीके की जानकारी उनको पहले से ही दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है अंजना कि रैपिड एक्शन फोर्स, जिसको कि एक अलग तरीके से SOP दिया जाता है, क्योंकि जब भी भीड़ नियंत्रण करना होता है या इस तरीके का प्रदर्शन होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा रैपिड एक्शन फोर्स को उतारा जाता है ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और उस दौरान इनको किस तरीके के एक नियम पालन करना है उसमें भी जानकारी दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉन लीथल वेपन है उनका इस्तेमाल किस तरह,
0: बिल्कुल नॉन लीथल वेपन्स, यानी जिससे कभी भी किसी के मौत की आशंका ना हो, नॉन लीथल वेपन्स उन्हें कहते हैं। क्या कंफर्मेशन हो गया है सिवान में किसने ये गोली चलाई, किसने वो जो फायरिंग करता हुआ तो वो दिख रहे हैं, और क्या ये कंफर्म्ड है कि जिसने भी चलाई ये गोली वो आदमी मतलब कौन से सुरक्षा बल के साथ जुड़ा हुआ था, फिर वो वाकई AK-47 था नहीं था, क्या कंफर्मेशन ऑफिशियली कुछ हुआ है? जितेन
6: देखिए अभी आधिकारिक तौर पर कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से वीडियो उसमें दिखाई पड़ रहा है, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक लोकल पुलिस के जो लोग हैं उनके द्वारा इस तरीके का कदम बढ़ाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम चीजों को लेकर के, चाहे लोकल पुलिस हो या फिर अर्धसैनिक बल जिनको की प्रोटेस्ट के दौरान उतारा जाता है, इन तमाम लोगों के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसमें एक एक कदम चुन चुन करके बढ़ाना होता है। सरकार की तरफ से इसके लिए बकायदे गाइडलाइंस हैं, और जो ग्राउंड पर पुलिस या फिर प्रशासन के साथ जिनके साथ मिलकर के अर्धसैनिक बल, क्योंकि अर्धसैनिक बल कानून एवं व्यवस्था के लिए जिस राज्य सरकार में उनको भेजा जाता है उनकी पुलिस के आदेशानुसार वो लोग सारे लोग काम करते हैं, और उसके बाद ही उनको जो आदेश पुलिस प्रशासन के द्वारा मिलता है उसके आधार पर कदम बढ़ाते हैं। तो इन तमाम चीजों को ध्यान रखने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है और उसका पालन करना जरूरी होता है। नॉन लीथल वेपन की अगर बात करें तो उनके लिए भी एक गाइडलाइन है कि किस सिचुएशन में और कितने
0: गाइडलाइन की वजह से
6: जो इंटेंसिफाइड होता है अगर प्रदर्शन, हाँ, तो उसके
0: तो क्या एक्शन लेना है। और जितेंद्र इसी वजह से गाइडलाइंस के ही आधार पर अब एक्शन हो रहा है। जो खबर आई सिवान में भी हुआ है, लेकिन वही है कि अब इस पर तो एक पूरा इंक्वायरी बैठकर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो अंग्रेजी में एक शब्द है ट्रिगर हैप्पी, जब लोग दिखते हैं इस तरह से, पुलिस फोर्स हो कहीं से भी हो, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। एक बार आपको सुनाते हैं जो राजनीतिक दल है वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, फिर आज क्या होता है पार्लियामेंट पर उस पर सीधा चलेंगे।
10: देखिए सरकार तो अपील कर रही, दो बार संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होकर के उन्होंने कहा आपने चर्चा की मांग की, चर्चा की मांग की, और मांगे सब मान ली गई, उसके बाद भी फिर चर्चा ना हो, और स्पीकर ने कहा 6 घंटे अगर इससे अधिक समय चाहिए तो और मिलेगा। तो इससे साफ है कि विपक्ष आप देख रहे कितना गए, पूरे दिन राहुल नहीं थे, सदन को बाधित हो रहा है, उन्हें कौन सी दिलचस्पी है।
11: किरण रिजिजू जी को यह समझना पड़ेगा कि विपक्ष आपके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं है, चर्चा में भाग लेना चाहिए लेकिन आपकी शर्तों पे। आपकी शर्तों पे क्यों भाग लेंगे, संसद किस लिए है? विपक्ष यहाँ इसलिए थोड़ी आता है कि आप जो कह देंगे हम उसको मान लेंगे, विपक्ष यहाँ इसलिए आता है कि देश के लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद को देश के पटल पर, संसद के पटल पे कैसे रखा जाए। हम बिल्कुल चर्चा में भाग लेंगे, हमने मना नहीं किया है, लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो यह है कि गृहमंत्री जी आए, एक स्टेटमेंट दें, उसके बाद हम देश की सदन में चर्चा में भाग लेंगे।
12: हमारी मांग है कि सरकार स्पष्ट बात रखे कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा और भविष्य में कोई भी उनके साथ अन्याय नहीं होगा।
13: कुछ दल जानबूझकर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी सख्त कानून के लिए बिल लेके आए हैं, आप बहस के लिए तैयार नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो दल चर्चा के लिए तैयार नहीं है, उनकी मनोस्थिति क्या है?
14: पूरे विपक्ष की मांग है कि जो घटनाक्रम चला है और उस घटनाक्रम में जितना हमला हुआ है छात्रों के ऊपर, लाठी चार्ज हुए, आंसू गैस छोड़ी गई, तमाम जगह फायरिंग तक की गई, उसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी आए सदन में और पूरे देश को और सदन को बताएं कि आखिर घटनाक्रम पे सरकार ने क्या क्या फैसला लिया, क्या क्या स्टेप उठाए, और जिन नौजवानों पे मुकदमे हुए उन नौजवानों के मुकदमे वापस हुए कि नहीं हुए, जिन नौजवानों ने खुदकुशी की है उनके बच्चों को या मुआवजे को लेकर क्या सरकार ने फैसला लिया, सारी चीजें चूंकि संसद चल रही है सदन में एक बार आनी चाहिए माननीय गृह मंत्री जी की ओर से बात, उसके बाद विपक्ष तो सदन चलाना चाहता है।
15: विपक्ष को पूछिए ना पहले क्या बोल रहे थे, डेली गोल पोस्ट बदल रहा है, आज कुछ बोल रहा है, कल लाइन बदल के दूसरी तरफ जा रहा है, तो उनका मुद्दा कुछ नहीं है, उनको अपना राजनीति चलाने के लिए उनको लग रहा है कि सब जगह जो चुनाव में पिट रहे हैं शायद इसी में कोई आपदा में अवसर, कहता है ना लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे
16: हैं,
15: नहीं वही वही कोशिश कर रहा है कि जो कोई क्राइसिस हो और मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन जाए, वही देखने की कोशिश कर रहा है।
0: पक्ष विपक्ष अपने अपने हिसाब से तमाम बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है, मंगल मिलन जिसे कहा जाता है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे और अमित शाह, बताया जा रहा है गृहमंत्री अमित शाह उस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। एक तरफ संसद का गतिरोध जिसके आज टूटने की संभावना है, ये एक अच्छी खबर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में जेपी

0: हमला है वो गृह मंत्री को ही लेकर है, तो गृह मंत्री उस पर क्या जवाब देते हैं संसद में, इस पर भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गतिरोध है उसके टूटने के आसार हैं, क्योंकि जो विपक्ष कल तक अड़ा हुआ था कि सबसे पहले गृह मंत्री का बयान हो, उससे ऐसा लग रहा है कि वो समझौता करके ये कह सकते हैं कि ठीक है बहस की शुरुआत हो, और अगर इस बात पर गृह मंत्री इंटरवेंशन करते हैं, वो बीच में बोलते हैं, बीच में अपना बयान देते हैं, तो वो इसके लिए भी सहमत है, क्योंकि अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि देश की संसद में वो छात्रों के मुद्दे पर कितनी गंभीरता दिखाई जाती है, जिस कानून के पहले लागू होने के बाद एक साल दो साल के अंदर ये देखा जा रहा है कि इस कानून को और सख्त करने की जरूरत पड़ गई है, उस कानून में और क्या ऐसी कमियां हैं जिसको किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं, आप तमाम नेताओं को देख रहे हैं जो इस बैठक के लिए, शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में जा चुके हैं, निशिकांत दुबे सभी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो तमाम सांसद हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है, तो एनडीए के सभी सांसद अब एक एक करके इस बैठक के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले, तो हमारी नजर इस पर रहेगी जैसे ही और तस्वीरें आते हैं। जैसा हमने आपको बताया, गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह जी भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होने वाली है, हमारी नजर इस पर रहेगी। लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए सरकार एंटी पेपर लीक बिल लेकर आई है, टास्क फोर्स का गठन किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या पेपर लीक को रोका जा सकता है। इसे समझने के लिए जानना जरूरी है कि पेपर लीक आखिर होता कैसे है। आईआईएम कलकत्ता के निदेशक आलोक कुमार राय से मैंने इस पर बात की है, उन्होंने पेपर लीक की कड़ियों के बारे में विस्तार से बताया है, वो देखिए।
1: देखिए मैडम, वन डे एग्जामिनेशंस बहुत बार ऐसा प्रोन होते हैं लीक्स के, लेकिन आप देखें कि जैसे कैट का एग्जाम होता है या जेई एग्जाम है या इसी तरह से यूपीएससी का एग्जाम है, जैसे उनके प्रीलिम एग्जामिनेशंस होते हैं, इसमें लीक्स की हार्डली कभी आपने कोई बात सुनी होगी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, इस प्रोसेस में पांच इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है। सबसे पहला है जो पेपर सेटर है, दूसरा है पेपर का प्रिंटर, तीसरा है जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसके थ्रू ट्रांजेक्शंस होते हैं, चौथा है हमारा वो सेंटर जहां पे एग्जामिनेशन होता है, और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो ऑर्गेनाइजर है जो उसको करा रहे हैं। ये पांच में से किसी भी एक स्टेज पे पिलफरेज हो सकता है। मुझे लगता है सिस्टम सबसे ज्यादा ध्यान देता है सेंटर मैनेजमेंट पे, जो सबसे कम प्रोन होता है, क्योंकि अगर सेंटर पे जैसे लीक्स नहीं होते, सेंटर पे चीटिंग हो सकती है, तो और हम सबसे ज्यादा ध्यान सेंटर पे देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो सबसे क्रेडिबल इसमें माना जाता है, सबसे ज्यादा क्रेडिबल माना जाता है, वो टीचर फ्रेटर्निटी है जो सेटर है। अगर वही रोग टर्न कर जाए, यानी वही गलत कर जाए, जो इस बार के केस में जो हम लोग सुनने में पढ़ने में आता है कि वहीं से लीक हो गया, तो अब मतलब जड़ में ही अगर मट्ठा पड़ा हो तो आप क्या करेंगे। लेकिन इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, लेकिन वो कौन कर रहा है, जैसे कभी भी आप कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप शुरू करते हैं कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। मैंने जिन पांच लोगों की बात की, पांच स्टेक होल्डर्स की बात की, उन सबके ऊपर एक इन्फ्लुएंसर फ्रेटर्निटी है, जो ज्यादातर केस में कोचिंग इंस्टीट्यूशन या इस तरह का जो एक्सटर्नल एजेंट है वो हर जगह हिट कर रहा है, सेटर, प्रिंटर, लॉजिस्टिक्स, सेंटर और ऑर्गेनाइजर। लेकिन अब आपको जड़ में अगर जाना है तो जड़ वो इन्फ्लुएंसर फ्रेटर्निटी है, जिसको आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए ज्यादा पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन की जरूरत है। इसीलिए ये जो हाई पावर कमेटी जिसकी बात अभी आपने बताई, जो टास्क फोर्स है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि नॉट जस्ट कि वो इस लीक के बारे में बात करेंगे, बल्कि वो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात करेंगे, ओवरऑल एग्जामिनेशन रिफॉर्म। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज देखने की है वो आप इसका फॉर्मेशन देखें। फॉर्मेशन में फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन कितना डाइवर्स है, उसमें टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी है, उसमें इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट भी है, उसमें लॉजिस्टिक्स का एक्सपर्ट भी है, उसमें एकेडमिक फ्रेटर्निटी का एक्सपर्ट भी है, और सबसे बड़ी बात है ये बहुत क्रेडिबल फेसेस हैं अपने अपने डोमेन के। तो जो भी पांच इंडिकेटर्स, जो पांच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनकी बात हमने की, आप देखेंगे ये सारा रिप्रेजेंट हो रहा है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस हाई पावर कमिटी, जो न सिर्फ हाई पावर टास्क फोर्स है बल्कि बहुत हाई प्रोफाइल टास्क फोर्स भी है। तो ये पांचों को देख सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो

0: अगर हेड है वो बता सकता है कि ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फ्रेटर्निटी है, जैसे वो कोचिंग हो सकता है, वो कोई और हो सकता है, इस तरह के लोगों के लिए देखिए दो मेजर्स हैं, एक क्यूरेटिव है, एक प्रिवेंटिव है।
1: जी
0: आपने गलती कर ली तो हमने आपको क्या सजा दी, दूसरे हम गलती की स्थिति
1: पेपर
0: ही
1: लीक होने ही ना दे, ठीक है। तो आपने सुना, वो अपनी नजर से बता रहे थे। और शिक्षाविद, जब इस तरह की बात, इससे पहले वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं, अभी IIM के डायरेक्टर है, कहां कहां से लीक का पूरा मसला होता है। लेकिन अब हम आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद मंगल मिलन जो कार्यक्रम है पार्लियामेंट्री पार्टी का, एनडीए का, उसकी बैठक की शुरुआत होने वाली है। इसमें गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब बताया जा रहा है, इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें, क्योंकि अब एक तरफ किरण रिजिजू आपको दिख रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिख रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल दिख रहे हैं, तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस बैठक में क्या बोलते हैं, उन बिंदुओं पर पूरे देश की नजर रहेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी संवाद सोशल मीडिया वीडियोस के जरिए किया है, छात्रों को संबोधित किया है, और कोशिश ये की है कि जो कदम सरकार उठा रही है उसकी गंभीरता लोगों तक पहुंचे। क्योंकि सरकार एक तरफ कानून को सख्त करने की कोशिश कर रही है, वहीं अगर आप देखिए तो दूसरी तरफ, और जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं मुख्य वार्ताकार के तौर पर, ये और डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोनों ने ही मोर्चा संभाला, सौरभ दास और आशुतोष रांका से कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत करने में और प्रतिनिधियों से बातचीत करने में। और वही गृहमंत्री अमित शाह, जिनकी भूमिका, जिनका इस पूरे मामले में अगर आप देखिए तो अहम रहेगा, वो पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं, तमाम अन्य जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं, और इन सब के बीच पीएम जो आज कहते हैं उससे पता चलेगा कि सरकार इस वक्त क्या सोच रही है और आगे वो छात्रों के लिए क्या करना चाहती है, और कैसे ये जो पेपर लीक माफिया है वो पूरी तरह से काबू में आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज पूरे देश की नजर, आज पीएम जो भी कहते हैं इस पार्लियामेंट्री, एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में, क्योंकि देखिए जितने सहयोगी दल हैं उनके भी सांसद होंगे, और इन तमाम सांसदों के बीच अच्छा चर्चा टीएमसी से जो निकलकर एनसीपीआई में जुड़कर सरकार का समर्थन कर रहे हैं उनकी भी बात हो रही है, क्योंकि वो भी आज इस बैठक में मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो मंगल मिलन है उस पर हमारे अगर कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि लगातार विजय जी ये कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें जो बातें की जा रही हैं, प्रधानमंत्री का एक रीच आउट का भी एक तरीका होगा जिससे ये संदेश जाए कि इस मामले को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, पीएम कितने गंभीर।
2: बिल्कुल ठीक बात है, और पीएम का रीच आउट जो एक्सरसाइज है वही सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो सारा इशू खत्म भी हुआ, जिस तरह से पीएम ने रात को 12 बजे इंस्टाग्राम पर बच्चों को डायरेक्ट कनेक्ट किया है, उसके बाद दोबारा उनको थैंक यू करने के लिए भी किया है, वो सारी एक्सरसाइज सोचो यदि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो रहे धर्मेंद्र प्रधान साहब, वो भी रीच आउट करते पहले और लोगों को आकर बताते, बच्चों को बात बताते या पार्लियामेंट में इस पर बात करते या किसी भी एक माध्यम से ये बात करते कि सरकार क्या एक्सरसाइज कर रही है, वो तो चुप रहे। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण मुझे लग रही है, एक तो बिल पर जब हमारी चर्चा हो रही है तो आज जब बिल आ रहा है ये शायद ही ऐसा बिल होगा लोकसभा में या पार्लियामेंट में जो इतनी जल्दी अमेंडमेंट के लिए आ गया हो, दो साल में। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि मैं उसका रिकॉर्ड देख रहा था, पिछली बार आप लोकसभा के चुनावों से पहले फरवरी में लेकर आए बिल को 2024 में, क्योंकि आपको एक इमेज मेकिंग करनी थी और बहुत कोई लंबी डिबेट नहीं हुई, एक फॉर्मल सी डिबेट हुई और उस बिल को पास कर दिया।
1: बिल्कुल,
2: यदि उस समय
1: चिंता भी तो यही थी,
2: अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर
1: दिया, अभी भी चिंता यही है कि बिना बहस के अगर ये पास हो जाए, हाँ, पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है, प्रावधानों में क्या कमियां हैं। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी से खबर पर जुड़ रहे हैं। पीयूष, प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं अब इस एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक के लिए।
3: जी बिल्कुल अंजना, हम उसी वक्त मौजूद हैं जहां पर ये एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग यानी कि जो मंगल मिलन है वो चल रहा है। प्रधानमंत्री पहुंच गए और धीरे धीरे बाकी जो सांसद जो बारिश की वजह से जाम में फंस गए थे धीरे धीरे वो सब भी पहुंच रहे हैं, और जैसे ही सब पहुंच जाते हैं तो ये मंगल मिलन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लगभग एक घंटे का समय होता है, जब भी होता है हम देखते हैं अमूमन एक घंटे तक ये मंगल मिलन होता है, इसमें प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है। और पिछली बार तो जो NCPI से और आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ जो सांसद गए थे उनको वेलकम किया गया था, और आज ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपनी बात रखें, जिस तरह से छात्रों को लेकर लगातार कदम सरकार ने उठाए उसको लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात रखें। पिछली बार प्रधानमंत्री ने जरूर कहा था कि जो नीट पेपर लीक है वो एक घोर पाप है, और अब इस घोर पाप को लेकर जो कदम उठाए गए सरकार की तरफ से उसके बारे में जरूर प्रधानमंत्री जानकारी देने वाले हैं। पिछले एक हफ्ते में हमने ये देखा है कैसे सरकार एकदम एक्शन मोड में दिखी है, चाहे वो हाई पावर कमेटी का गठन हो या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई हो या इस बिल को जो सरकार लेकर आई है जो कल लोकसभा में पेश भी किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा इस बिल में कई बड़े प्रावधान है, सजा को बढ़ा दिया गया है और पेनल्टी उसको बढ़ा दिया गया, तो इन सभी चीजों को लेकर संभवतः प्रधानमंत्री की बात इस मंगल मेले में रख सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे सरकार सजग तौर पर इस पूरे मामले में एक्टिव है, एक्शन ले रही है। पिछली बार प्रधानमंत्री ने बताया कि था कि जब बिल पेपर लीक हुआ तो फिर 13 जो उसमें आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसी वक्त ये भी कहा गया था कि हम बहुत जल्द लीगल ल्यूमिनरीज से बात करके एक बड़ा कानून, कड़ा कानून लाने की बात भी करेंगे। और उसके बाद हमने देखा फास्ट ट्रैक कोर्ट सेट हुए और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है अंजना कि जितने भी एग्जिस्टिंग केसेस हैं जो पेपर लीक के हैं जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं अब वो सब भी इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको ट्राई किया जाएगा, ये हमें आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिली है। तो आज प्रधानमंत्री जरूर उन एक्शन के बारे में जिक्र करेंगे जिसको लेकर पिछली बार भी कहा गया था और जो एक्शन पिछले एक हफ्ते में लिए गए उसके बारे में जिक्र करेंगे और बताएंगे कि छात्रों के बीच एनडीए के सांसदों को जाना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे जो एनडीए की सरकार है वो लगातार छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है और आगे भी जितनी भी बातें हैं हमने ये भी देखा कैसे सीजेपी के
1: और तस्वीरें भी पेश आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत हो रही है, एक तरफ गृह मंत्री है एक तरफ रक्षा मंत्री है और उसके बाद से पूरा जो कैबिनेट के नेता है वो आपको पहली कतार में दिख रहे हैं, एनडीए के तमाम नेता दिख रहे हैं और यहीं से एक समझिए कि एक जो संदेश देने की कोशिश होगी वो बड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री जेपी नड्डा जो कि लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे, अगर आप देखें तो भूमिका बड़ी है क्योंकि ये खबर पहले भी आई कि कॉकरोच जनता पार्टी को ये कहा गया बातचीत के दौरान कि पोर्टफोलियो चेंज धर्मेंद्र प्रधान का किया जाए जिस पर वो राजी नहीं हुए। ऐसे में फिर जेपी नड्डा ने ये कहा कि हम लोग वापस जाकर इस पर चर्चा करेंगे और तब आपको फैसला सुनाएंगे। फिर उस दिन खबर आई कि गृहमंत्री से उनकी मुलाकात हुई अमित शाह से और फिर गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद वापस गृहमंत्री ने जो उनका संदेश है वो दोनों को दिया, जेपी नड्डा को दिया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिया और फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने उनको जाकर कन्वे किया जिसके बाद ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पूरी कड़ियों को अगर आप समझिए तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से और वहीं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सौरभ दास मौजूद थे, आशुतोष रांका मौजूद थे और दोनों ने फिर ये अनाउंस किया कि इस्तीफे पर सरकार मान गई है और इस वजह से अब हम ये आंदोलन खत्म कर रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि आज वो मियाद है जिसमें सरकार लिखित रूप से ये चाह रही है कि जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स, जो कॉकरोच जनता पार्टी चाह रही है कि जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा लिखित आश्वासन सरकार दे। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये बड़ी चुनौती की घड़ी एक तरह से पीयूष सरकार के सामने इस वक्त। पीयूष
3: जी बिल्कुल, चुनौती की घड़ी तो है क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकारी सूत्रों ने यह भी दावा किया था कि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तब भी शायद विपक्ष ना माने और कहीं ना कहीं ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। कल दिन भर हमने ये देखा भी था कि कैसे विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ छात्रों के ऊपर उस पर सरकार अपनी बात रखे और उसी वजह से दिन भर संसद नहीं चल पाई। हालांकि सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि आज समाप्त संसद चल सकती है, डिस्कशन नीट वाले मुद्दे पर हो सकता है, सरकार अपना जवाब दे सकती है, लेकिन ये सब कुछ 11-12 बजे के आसपास संभवतः पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्योंकि एक बैठक सूत्र बता रहे हैं कि एक बैठक बुलाई गई और लोकसभा स्पीकर सभी फ्लोर समय भी तय कर सकते हैं। हालांकि 6 घंटे की बात नहीं है और ये कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो 6 घंटे से ज्यादा चर्चा हो सकती है, लेकिन जो धरना प्रदर्शन हुआ और जिस तरह से छात्र घायल हुए उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इस वक्त जहां मौजूद है यहां पर मंगल मिलन चल रहा है अंजना, लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चलेगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ आपने वो तस्वीरें भी देखी जिसमें गृहमंत्री अमित शाह मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा मौजूद है, जितेंद्र सिंह मौजूद है और ये वो नेता है, ये वो मंत्री है जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जिन्होंने पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक सीजेपी हो चाहे वो सोना वांगचुक का धरना उनका अनशन तोड़वाना हो या फिर विपक्ष से भी बात करनी है, इन तीनों में इनकी भूमिका काफी सक्रिय रही है। हमने जितेंद्र सिंह को तो हर जगह देखा, जितेंद्र सिंह चाहे वो छात्रों से बात करने की बात हो, राहुल गांधी से खुद बात करने के लिए वो पहुंचे थे जब प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल गांधी बैठ गए थे और उसके बाद जब सोनम वांगचुक का भी अनशन टूटा तब जितेंद्र सिंह वहां भी मौजूद थे। तो जितेंद्र सिंह ने एक बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका इन सभी तीनों स्टेक होल्डर्स के साथ निभाई और कहीं ना कहीं स्थिति अब वापस बातचीत के मोड पर आती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने जरूर ये अंदेशा दिया है, उन्होंने ये इंडिकेशंस दिए हैं कि आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि वो भी अपनी बात रख सकते हैं, वो भी सरकार से ये मांग कर सकते हैं कि वो छात्रों पर जो हमला हुआ उस पर सरकार जवाब दे, और साथ साथ नीट को लेकर जो सरकार का फेलियर रहा उसको लेकर भी अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि सरकारी सूत्रों ने यह दावा किया है कि पूरी तरह से तैयार सरकार आई है, जो युवा नेता हैं बीजेपी के तेजस्वी सूर्या बासवी स्वराज जैसे नेता अपनी बात रखेंगे। हो सकता है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैं वो अब भी अपनी बात रखें। इन सभी नेताओं को लेकर चर्चाएं भी
1: पीयूष,
3: होंगी
1: धर्मेंद्र
3: और
1: प्रधान भी इस
3: साढ़े दस
1: बैठक में
3: बजे के आसपास।
1: शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं।
3: अब देखिए थोड़ी सी दूरी पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, तो जरूर
1: ठीक है,
3: लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी था। प्रधानमंत्री के आने की आने से पहले तक हमने धर्मेंद्र प्रधान को नहीं देखा था, हो सकता है उसके बाद वो जरूर पहुंचे हों।
1: ठीक
3: तो
1: है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज पहली बैठक है पीयूष, तो सबकी नजरें इस पर है, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री आज यहां क्या बोलते हैं मंगल मिलन पे, इस पर चर्चा होगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कवरेज जारी है, देखते रहिए आज।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी
6: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
9: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
8: Smartless.
10: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
8: Marketplace.
11: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
8: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
12: Savari, Sokudo.
13: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स, और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
14: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
3: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
4: वाह वाह वाह वाह।
3: सेबी और NSE का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
5: सोच कर, इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंड बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: सोनम वांगचू की तबीयत खराब होने के बाद छात्र हैं हजारों की संख्या में जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं।
3: इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं।
4: पुलिस के द्वारा यहां पर इनको रोका जा रहा है।
5: तमाम प्रदर्शनकारियों को तिथर बतर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर
7: राहुल गांधी को जिम्मेदार रावण को उठा लिया गया।
8: पक्ष और सरकार के सांसद आमने सामने आ चुके हैं मकर द्वार के अंदर।
9: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं।
10: सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी, क्या ये सरकार करोड़ों युवाओं को नकार सकती है?
11: जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वाज वेरी रिलीव्ड।
12: धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
13: कॉन्फर्मेशन यहाँ देना चाहूंगी तीन बातों का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग कन्फर्म्ड है।
14: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: बहुत ही दुखद विषय है, कुछ समय पहले एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। खुद सीजेपी ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई। मगर यह कहना आज कि AK-47 में, बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है, कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है, और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है।
4: शेयर बाजार में इस समय सबसे ज्यादा हलचल प्राइमरी मार्केट में देखने को मिल रही है। इस हफ्ते एक साथ कई कंपनियां आईपीओ के जरिए निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते बाद भी ये रफ्तार थमने वाली नहीं है। दरअसल अगस्त में भी कंपनियों की लंबी पाइपलाइन तैयार है, यानी निवेशकों के लिए आने वाले दिनों में प्राइमरी मार्केट लगातार व्यस्त रहने वाला है। इस हफ्ते आने वाले 9 आईपीओ का लक्ष्य 11,707 करोड़ जुटाना है। वहीं 7 कंपनियां इस वीक में शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अगस्त में भी 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों की बाजार में एंट्री की तैयारी है। जानकार बता रहे हैं कि लगातार बढ़ती कारोबारी गतिविधियां दिखाती हैं कि कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए इक्विटी मार्केट पर पहले से ज्यादा भरोसा जता रही हैं। आईपीओ बाजार में बढ़ती रौनक के पीछे केवल एक वजह नहीं है। जिन कंपनियों की विस्तार योजनाएं तैयार हैं, वो बैंकर्स की जगह शेयर मार्केट के जरिए पूंजी जुटाना चाहती हैं। वहीं हाल के महीनों में कई सफल आईपीओ के बाद कंपनियों का भरोसा भी बढ़ा है। बेहतर निवेशक भागीदारी ने भी इस रुझान को मजबूती दी है। यही वजह है कि मेन बोर्ड के साथ साथ एसएमई प्लेटफॉर्म पर भी लगातार नई कंपनियां दस्तक दे रही हैं। आने वाले हफ्तों में जिप्टो, शिप रॉकेट और ट्रू होम फाइनेंस जैसी कंपनियों के भी बाजार का रुख करने की तैयारी है, जिससे प्राइमरी मार्केट की रफ्तार आगे भी बनी रह सकती है। हालांकि ज्यादा आईपीओ आने का मतलब ये नहीं कि हर इशू निवेश के लिहाज से बेहतर हो। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निवेश से पहले कंपनी के कारोबार, उसकी कमाई, कर्ज, वैल्यूएशन और जुटाई जा रही रकम का इस्तेमाल किस काम में होगा, इन सभी पहलुओं को समझना जरूरी है। महज लिस्टिंग गेन की उम्मीद में लिया गया फैसला हर बार फायदे का सौदा साबित नहीं होता। ऐसे में निवेशकों को फ्रेश इशू बनाम ओएफएस, प्रमोटर होल्डिंग, रेवेन्यू और प्रॉफिट के ट्रेंड को बारीकी से देख समझ कर ही निवेश के बारे में सोचना चाहिए। इस हफ्ते 9 नए आईपीओ और 7 लिस्टिंग के साथ प्राइमरी मार्केट पूरी रफ्तार में रहेगा। वहीं अगस्त के लिए भी मजबूत पाइपलाइन संकेत दे रही है कि कंपनियों की फंड जुटाने की योजना फिलहाल तो धीमी पड़ने वाली नहीं है। ऐसे में आने वाले हफ्तों में निवेशकों के सामने विकल्प बढ़ेंगे, लेकिन निवेश का फैसला कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन और जोखिम को ध्यान में रखकर ही लेना बेहतर होगा। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो।

परीक्षा संशोधन बिल पर आज लोकसभा में चर्चा, दोपहर 1 बजे से बहस में भाग ले सकता है विपक्ष। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में हो सकता है डेडलॉक खत्म करने का फैसला। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एनडीए के पहले मंगल मिलन में प्रधानमंत्री का संबोधन, शामिल हुए ममता के बागी सांसद। सदन में परीक्षा बिल पर चर्चा के बीच अमित शाह के बयान पर राजी हो सकता है विपक्ष। पूर्व ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल का बड़ा खुलासा, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में देरी से नाराज था भारत, ब्रिटेन से रिश्ते हुए थे प्रभावित, लंदन की जेल में है भगोड़ा डायमंड किंग। पीओके में पाकिस्तानी सेना के फिर अत्याचार की खबरें आई सामने, प्रदर्शनकारियों पर मुनीर आर्मी ने की अंधाधुंध फायरिंग, अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर, पूरे इलाके में इंटरनेट बंद। राजस्थान से उत्तराखंड तक मानसून का कहर, देहरादून में धस गया नया पुल, पहाड़ी नदियों में उफान, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी गर्मी से राहत।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, और माना जा रहा है कि आज दोपहर 1 बजे में यह गतिरोध खत्म हो सकता है और विपक्ष सरकार के साथ चर्चा को राजी हो सकता है, जिसमें ये शर्त रखी जाए कि गृहमंत्री अमित शाह बीच में बोलने वाले हैं। सरकार और विपक्ष के बीच संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध के खत्म होने के आसार दिख रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि लोकसभा में लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा की तैयारी हो जाए। माना जा रहा है कि दोपहर 1 बजे लोकसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। लोकसभा स्पीकर के बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे का वक्त तय किया गया है। हालांकि एक दिन पहले ओम बिरला ने यह साफ किया था कि अगर जरूरत हुई तो चर्चा के समय को भी बढ़ाया जा सकता है। बिल पर चर्चा के बाद मतदान होगा। इससे पहले विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में विधेयक पेश किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो सकी। दिन भर कार्यवाही ठप रहने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चेतावनी भी दी कि अगर विपक्ष इसी तरह हंगामा करता रहा, चर्चा न करने पर अड़ा रहा, तो बिना बहस के सरकार विधेयक को पारित करा देगी। तब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मोर्चा संभालते हुए सभी दलों के नेताओं से बातचीत की है, और ये एक बड़ा रीच आउट की पहल माना जा रहा है। नेताओं से बातचीत करने के लिए वो आगे आए, बीच का रास्ता निकाला और विपक्ष बिल पर चर्चा के लिए राजी हुआ। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि विपक्षी नेताओं की बैठक में बिल पर चर्चा पर फाइनल फैसला अभी लिया जाएगा, तो 10 बजे ही ये बैठक होने वाली है। बीते दिन भी आपने देखा था 10 बजे ही पूरी स्ट्रैटेजी की, दिन भर क्या करना है पार्लियामेंट में, इसको लेकर विपक्ष के सांसद बैठते हैं, उनके नेता बैठते हैं, और उसके बाद से फैसला लिया जाता है कि आज उनका रुख क्या होगा, ताकि कहीं पर कोई ऐसा ना हो कि विपक्ष में अलग अलग पार्टियां जो है वो अलग अलग रुख अपना लें। तो कुल मिलाकर इसको एक कोऑर्डिनेशन बैठक भी आप कह सकते हैं, जो 10 बजे होती है, और अब से कुछ ही देर में वो बैठक भी शुरू हो जाएगी जिसके बाद ये फैसला होगा। तो आज 3 अलग अलग केंद्र बने हुए हैं। एक तो देश की पूरी नजर है लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही पर, दूसरी तरफ एनडीए मंगल मिलन बैठक, जिसमें एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक इस वक्त चल रही है, एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी है, प्रधानमंत्री मौजूद है, कुछ ही देर में पीएम भी उसमें बोलने वाले हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये पहली बैठक हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के सांसदों की आज बैठक हो रही है, उस पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि वहां क्या स्ट्रैटेजी बनती है वहीं से साफ होगा कि क्या आगे का रुख रहता है। जितेन हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जितेन, देखिए संसदीय दल की बैठक जारी है तो 2-3 बड़ी बातें हैं। एक तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहली ये बैठक हो रही है, सरकार यहां से नए और ठोस कदम उठाने की बात कर रही है, उसके पहले ये बैठक हो रही है, संसद का गतिरोध खत्म होता है नहीं होता है इस आशंका के बीच ये बैठक हो रही है। और वहीं अगर आप देखिए तो बहुत सारे जो टीएमसी के बागी सांसद हैं आज वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो बहुत सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि सरकार क्या कदम उठाती है बच्चे ये देखेंगे।
1: बिल्कुल, सरकार की तरफ से किस तरीके का कदम उठाया जाता है ये देखना होगा। संसदीय कार्य मंत्री जो है उन्होंने कल ही साफ कर दिया है कि सरकार इस पर चर्चा करना चाहती है और हर एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अब विपक्ष को देखना है, विपक्ष की जो बैठक है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ पर शुरू हो रही है संसद भवन के अंदर। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कमरा है वहाँ पर तमाम इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद ये तय होगा कि 11 बजे के बाद किस तरीके से कदम बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से कल हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि जो चढ़ावा चोरी राम मंदिर में हुआ है उसका मुद्दा वो संसद परिसर में उसको लेकर के वो लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, इस तरीके की बात और ऐसी जानकारी मिल रही है। तो विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के मांग कर रहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पैलेट गन और छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई है उस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा बयान दिया जाना चाहिए। तो लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि तमाम मुद्दों को लेकर के जो है सत्ता पक्ष के द्वारा इस पर बातचीत हो, उसके बाद जो है बिल को लेकर के कल जिस तरीके से स्पीकर ने बातचीत किया उसके बाद ये जानकारी मिल रही थी कि सहमति बन गई है, इसमें विपक्षी दल के नेता जो है वो भी चर्चा में शामिल होंगे और 6 घंटे का समय इसके लिए तय किया गया है। लेकिन अब अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो जानकारी मिल रही है कि संसद परिसर में समाजवादी पार्टी जो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर के वो लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी और दूसरे अन्य दल जो हैं पैलेट गन और इसके साथ साथ जो छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है उस पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को लेकर के वो लोग अड़े हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि 12 बजे के बाद या फिर 1 बजे के आसपास किस तरीके से जो बिल है उस पर चर्चा हो सकती है।
0: हिमांशु, इस बैठक पर जो मंगल मिलन बैठक है एनडीए पार्लियामेंट्री दल की, और वहीं दूसरी तरफ अब तो आप भी संसद भवन पहुंच गए हैं। आज जोरदार बारिश हुई है पूरे इलाके में, सुबह सुबह भारी बारिश जिसको कहते हैं मूसलाधार बारिश। देखते हैं मामला कितना ठंडा पड़ता है, लेकिन सबकी नजर है कि आज चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी, क्या गतिरोध खत्म होने की खबरें आ रही हैं, एक बजे से चर्चा शुरू हो सकती है, कौन कौन बोल सकता है, और पार्लियामेंट्री दल की इस बैठक को कैसे देखें। हिमांशु,
2: देखिए कल जब इस चीज़ की खबर आई कि गतिरोध जो है वो खत्म हो गया है, तब भी जो है बहुत तेज़ बारिश जो है इस लुटियन जोन एरिया में थी और संसद भवन के परिसर में हो रही थी। तो एक किस्म से ये कह सकते हैं कि गतिरोध खत्म हुआ तो दिल्ली को बहुत अच्छी बारिश मिली। लेकिन जिस तरीके एक बजे के बाद जो है ये चर्चा की शुरुआत हो सकती है, या दो बजे जो है इस बिल पर चर्चा की शुरुआत हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बांसुरी स्वराज, तेजस्वी यादव, तेजस्वी सूर्या और लवू कृष्णा टीडीपी की तरफ से, ललन सिंह जो है जेडीयू की तरफ से, अनुप्रिया पटेल अपना दल की तरफ से, और साथ ही साथ जो है एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना है उससे श्रीकांत शिंदे जो है वो इस चर्चा में भाग लेंगे। एनडीए की तरफ से एलजेपी के जो अरुण भारती हैं वो भी भाग लेंगे इस चर्चा के अंदर, और आज भारतीय जनता पार्टी की साथ जो है एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग है, एक महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, क्योंकि इसमें एनसीपीआई जो तृणमूल के जो 20 बागी सांसद थे अंजना, वो आज एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग है उसमें शामिल हो रहे हैं। तो एक तरीके से एनडीए का कुनबा जो है वो बढ़ा है, इसकी खुशी भी होगी, और आज ये इसकी घोषणा जो है वो स्वयं किरण रिजिजू के द्वारा की जाएगी, और इन सभी सांसदों का जो है वो परिचय भी जो है वो एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग के अंदर कराया जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग हुई थी जिसे मंगल मिलन का नाम दिया गया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर जो है वो बोला था, और उन्होंने साफ कर दिया था कि ये सरकार अकाउंटेबल भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है। जैसे ही पेपर लीक हुआ सरकार ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए, 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ जो है वो जांच पूरी तरीके से काम कर रही है और जिन लोगों ने ये काम किया था उन्होंने घोर पाप किया था। पीएम ने साफ अपील की थी कि नीट पेपर लीक मामले पर जो है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष को सरकार के साथ आकर काम करना चाहिए, इस चीज को इंश्योर करना चाहिए हम सबको कि जो ये पूरा सिस्टम है इसको फुल प्रूफ बनाया जाए, साथ ही साथ ये किसी राज्य या केंद्र का अंदर जो है वो पेपर लीक का मामला नहीं है। तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जरूर संबोधित किया जाएगा कि कौन कौन से कदम जो है सरकार के द्वारा अभी तक उठाए गए हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, उसके साथ साथ जो है कैबिनेट के अंदर अमेंडमेंट बिल लाया गया हो प्राइवेट एग्जामिनेशन बिल के अंदर, वो उस पर आज जो चर्चा होगी, उसके साथ जो है हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया हो सरकार के तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान का
0: और यही हिमांशु कैसे आगे सरकार कदम उठाती है और कैसे ये सुनिश्चित करती है कि जो उसका रोड मैप है एक पेपर लीक प्रूफ सिस्टम बनाने का, या फिर ओएसएम जैसा जो सीबीएसई की मार्किंग में जो पूरा बच्चों को इतनी मुश्किलें हुई थी, ऐसी समस्याएं नहीं आए। टेंडर को लेकर जो प्रश्न उठते हैं कि भाई ब्लैकलिस्टेड लोगों को कैसे मिल जाता है, क्या टेंडर में बदलाव किया गया ताकि खास लोगों को मिले, अगर वाकई इस तरह का भ्रष्टाचार है तो उसको कैसे रोकना है, किस स्तर पर हो रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इस कसौटी पर सरकार को ही उतरना होगा। पॉलिटिक्स ऐसे तमाम मुद्दों पर सरकार कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो की जाती है तो उससे दबाव ही बनता है, और उस दबाव से सार्थक क्या निकलता है, क्योंकि बच्चों को शिकायत फिर नहीं होनी चाहिए। सरकार क्यों घिरी, क्योंकि बच्चों को शिकायत थी, सरकार इसलिए घिरी क्योंकि बच्चे मुश्किलों का सामना कर रहे थे, और वो कौन रोक सकता है, वो आप रोक सकते हैं, आप सरकार है, तो ऐसे में पूरा जो चेन है वो ऐसे ही बनता हुआ दिख रहा है। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए, विनोद अग्निहोत्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि हर्ष जी यही सबसे बड़ा जो फ्लैश पॉइंट है वो यही है कि अल्टीमेटली बाकी चीजें अपनी जगह पर है, पर जो बच्चों को दिक्कत हुई वो तो आप ही को रोकना होगा, वरना ये नाराजगी नहीं थमेगी।
3: देखिए अंजना जी, एक बात आपकी बात से ही मुझे ध्यान में आया और पहले भी एक आध बार मैं ये कह चुका हूं, कुछ मामलों में सरकार को सरकार ही रहना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने अभी एक शब्द कहा कि ठेका किसको जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों जाएगा।
0: बिल्कुल,
3: जब सरकार ने नंदन निलेकड़ी जी की अगुवाई में एक शानदार कमेटी बनाई है, क्या सरकार कम से कम परीक्षाओं के लिए एक गवर्नमेंट सिस्टम नहीं बना सकती है?
4: सरकारी तंत्र हो, पेपर के मामले में आपको किसी प्राइवेट कंपनी पर, किसी ऐसी ऐसे व्यक्ति पर क्यों जाना हो जहां टेंडरिंग होगी, चार तरह के तरीके होंगे, किसी को देने के लाभान्वित करने के तरीके होंगे, वहां सरकार पूरी तरह से होनी चाहिए। इस पूरे सिस्टम में जो सबसे बड़ी मुश्किल रही क्या रही, एनटीए एडहॉक बॉडी की तरह
0: जोड़ती हूं हर्षवर्धन जी, जो आपने रेस किया है, आई एम कलकत्ता के जब मैंने राय जी से बात की, जो डायरेक्टर है वहां के, उन्होंने यही बताया कि जानते हैं क्या होता है, एक को आप ब्लैकलिस्ट कीजिए, फिर वो अपनी कंपनी किसी दूसरे नाम से खोलता है, अपने परिवार के किसी व्यक्ति के नाम से खोल लेता है, फिर वो वहां से पर्चा। अब ये आप एक व्यक्ति जो आ रहा है टेंडर के साथ, उसके परिवार वालों को देखेंगे कि इसके परिवार में पहले कोई कंपनी बना था
4: या नहीं था,
0: क्या वो ब्लैकलिस्टेड हुआ था नहीं हुआ था, तो फिर ये एक पूरा जो इसके इर्द गिर्द जो एक वो समस्या है ना, बहुत चैलेंजिंग।
4: फिर क्या है ना कि डायरेक्टर तो किसी को भी बना के कंपनी बना लेंगे, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। और मुझे लगता है जवाबदेही भी कम से कम इसमें गवर्नमेंट सिस्टम रहेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। जब गवर्नमेंट सिस्टम ही वहां नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, ब्लैकलिस्ट कर दिया हमने, ये कर दिया, और वो कंपनी कहां गई इसका भी कुछ पता नहीं। मुझे लगता है कि आज जो ये कानून आ रहा है, इसमें एक विपक्षी दलों को भी उठाना चाहिए कि इसमें पूरी तरह से सरकारी तंत्र हो जो देश की परीक्षाएं तकनीक के आधार पर ठीक से करा सके, कोई लीक ना हो।
5: जैसे यूपीएससी की परीक्षाएं होती है सरकारी तंत्र के जरिए होती है, लीक नहीं होती है। और इसमें रास्ता तो यही सुझा देते हैं ठेका देने वाले, अच्छा आपकी कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, अपने साले के नाम बना दो, अपने भतीजे के नाम बना दो।
0: तो
5: ये सारा सिस्टम है। बिल्कुल हर्ष जी सही कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र हो, सरकार की जवाबदेही होती है, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही होती है, उसमें अगर कोई ब्लैकशिप है तो उसको आप आइडेंटिफाई करके तुरंत आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ये
0: लेकिन ये पैसा कमाने और धंधा चलाने का एक मतलब शिक्षा को तो आपको फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। मतलब जितना भी पिल्फरेज का रास्ता आपको दिखता है यहां से वहां से हो सकता है, वो सील करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए ना, महाराष्ट्र से आज ही खबर आ रही है, उत्तराखंड से, पंजाब से,
6: कुछ होता ही रहता है
0: झारखंड में। झारखंड में बच्चों को एग्जाम के एक घंटे दो घंटे पहले मेल आया है,
5: मेल आया।
0: और वो भी मेल में बताया जा रहा है कि तुम्हारा एग्जाम यहां पर है और वो सेंटर ऐसी जगह पर है जो कि कई घंटे दूर है। आप सोचिए, रांची वाले को हजारीबाग बताया जा रहा है, मतलब कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति है।
6: लेकिन इसमें एक बात है ना अंजना जी, जो हमने आपने कहा, हर्ष जी ने कहा, वो बिल्कुल ठीक बात है कि ठेका जो है कंपनी ब्लैकलिस्टेड कंपनी बदल गई, ये आपको और हमें जानकारी नहीं है। जो लोग दे रहे हैं सरकार में उनको तो पता ही है कि किसकी कंपनी है।
4: बिल्कुल
6: नाम बदल दिया हो तो भी इसकी तो गारंटी मैं दे सकता हूँ, कोई भी सरकार में हो उसको पता होता है कि किसको ठेका वही बनवाते हैं। लेकिन आज जो बात हो रही है उसमें महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे राज्यों का मामला, सारी राज्य सरकारों का, सरकार की नीतियों में होता है, कोई भी सरकार हो वो ये करती है कि जो वो बिल लेकर आई है उसमें कोई अमेंडमेंट वो स्वीकार नहीं करती अपोजिशन का। ये बिल ऐसा है कि जिसमें अपोजिशन का मतलब दूसरे राज्यों में दूसरी सरकारें भी हैं, तो उनके अमेंडमेंट्स को भी लिया जाए। ये कोई जिद की बात नहीं कि नहीं, जो सरकार बिल लेकर आई है, पिछला बिल भी मैं देख रहा था, कोई अमेंडमेंट उन्होंने नहीं लिया। यदि कोई दूसरी पार्टी के भी अमेंडमेंट्स आते हैं और जो सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, उस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, तो उसको लिया जाए। और ये सारे देश भर का मसला है, राज्यों का भी मसला है। जिन पार्टियों ने आज उसमें अमेंडमेंट डाले होंगे वो किसी दूसरे राज्य में सरकार में होंगे, तो उन सब बातों को, ये जिद की बात नहीं है कि नहीं सरकार ने जो बिल लाया उसी को पास करना है, इस बेहतर व्यवस्था पर। और दूसरा मैं समझता हूँ इस बहस में पूरे एजुकेशन सिस्टम पर बहस होनी चाहिए कि कैसे हम इसको सुधार कर सकते हैं, कैसे इसके बजट को बढ़ा सकते हैं। नीति और नियत दोनों पर बात हो, आप 4.5% बजट को जो 2013-14 में, नहीं 2013-14 में जो 4.5% था बजट का, वो 2.6 पर आ गया।
4: नहीं सर, 4.5 कभी पहुंच ही नहीं पाया।
6: नहीं 4.5 था ना।
4: नहीं नहीं सर, 3 के ऊपर कभी गया ही नहीं।
6: 2.5
0: जो भी है, शिक्षा में पैसा बढ़ाना होगा। मैं तो यहां तक सोचती हूँ कि अगर हर सांसद एक अस्पताल एक स्कूल उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह हो जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हम देश में देखेंगे।
6: वैसे हर सांसद का एक स्कूल हॉस्पिटल होता है,
0: आप होता है, लेकिन उसका कैसे एक, एक, आप एक तरीका बनाइए कि उनका रिपोर्ट कार्ड निकले कि भाई वहां पर कुछ बदलाव किया जाए। स्कूल और वो तो छोड़िए, मतलब खाली 10 तरह की तस्वीरें खिंचा ली जाती है कि ये नई सड़क बन गई और ये हमारा बदल गया, वो नहीं है। आप स्कूल अस्पताल, मतलब ये तो प्राइमरी चीजें हैं ना जिसकी हम चर्चा करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं सियासी लड़ाई, लेकिन जो इस पर चल रही है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के नेता, महुआ मांझी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा की, क्या कह रहे हैं इस पर।
7: मंगल हो रहा है, मंगल मिलन हो रहा है, ये तो नाजायज गैर कानूनी, क्योंकि डिफेक्शन अब 10th शेड्यूल में हो नहीं सकता, मर्जर हो सकता। तो जब तलाक ही गलत है तो ये निकाह तो गैर कानूनी है, और फिर मोदी जी कर रहे हैं तो ऐसे भी गैर कानूनी होगा।
8: आज हाउस चलेगा, हालांकि देखिए सत्ता पक्ष खुद ही नहीं चाह रही है कि हाउस चले, जैसे ही अपोजिशन वाले 267 के नोटिस पर बात करना चाहते हैं, एक मिनट के अंदर हाउस को एडजर्न कर दिया जा रहा है बार बार। और अभी जो मुख्य मुद्दा ये भी है कि छात्रों के आंदोलन को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन उस समय जो प्रॉमिस किया गया था कि हर छात्र पर किए गए केस वापस ले लिए जाएंगे, उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन बात ये आ रही थी कि बिहार में भी बहुत सारे छात्रों पर उस अनाउंसमेंट के बाद भी उन्हें हिरासत में लिया गया है, केसेस किए गए हैं, कलकत्ता में भी ऐसा सुनने को मिला है, दिल्ली में भी हो रहे हैं। तो सरकार पहले अपने वादे पर खरा उतरे, छात्रों को भरोसा दिलाए कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया और उनके उस प्रॉमिस के आधार पर छात्रों ने जो आंदोलन वापस लिया उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।
0: संसद में गतिरोध के बीच अमित मालवीय का एक पोस्ट सामने आ रहा है। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अमित मालवीय का ये पोस्ट है। चीते की चाल बाज की नजर पर संदेह नहीं करते, तो बाजीराव मस्तानी का ये डायलॉग आज लिखा है उन्होंने। बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, ऐसा अमित मालवीय लिख रहे हैं। हालांकि उनको याद दिलाएं कि कई राइट विंगर्स ने इस फिल्म को बड़ा उस वक्त अपोज किया था, क्रिटिसाइज किया था, उसके खिलाफ बोला था, लेकिन ठीक है, अगर उनकी नजर या फिर उनका संदेश यह है हिमांशु कि इस पोस्ट के जरिए वो ये लिख रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जिस तरह से इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे उस पर देश संदेह नहीं करे, बच्चे भी भरोसा करना चाहते हैं। हिमांशु
2: देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे जाहिर तौर पर तीन इंस्टाग्राम पे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वीडियो शेयर किए हैं, और अगर देखें तो 380 करोड़ लोगों ने उस तीनों वीडियोस को देखा है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो कितनी बड़ी रीच है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो कल तक फेसबुक पे, ट्विटर पे होती थी, अब वो इंस्टा पे भी दिख रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि अगर आप एक्शन मूड में हैं और आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में कदम उठा रहे हैं, तो लोग उसकी सराहना भी करते हैं। क्योंकि हम पहले भी ये बात चर्चा कर चुके हैं अंजना, कि चाहे वो फास्ट्रैक कोर्ट का गठन हो, पहले अनाउंसमेंट, फिर सेम डे गठन होना, सोनम वांगचुक से जाकर मुलाकात करना और फिर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होना, साथ में CJP के जो प्रोटेस्टर हैं उनसे 3 राउंड की बातचीत करना, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना, क्योंकि CJP के जो प्रतिनिधि थे वो इस बात को लेकर अड़ गए थे कि इस्तीफे से कम पर कोई चीज़ मंजूर नहीं है, अगर नहीं 24 घंटे के अंदर सरकार की तरफ से कोई जवाब आया तो संसद में मार्च तक की घोषणा जो है, यानी कल जो है 27 मार्च की हम घोषणा कर देंगे, ये कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हाई पावर्ड टास्क फोर्स की घोषणा की कि उनकी निगरानी में जो है ये एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की कवायद जो होगी, NTA के अंदर 47 लोगों का तबादला कर देना और एक ऐसा बिल लेके आना जो पहले भी था उसको और मजबूत करना, जिससे पेपर लीक करने वाले जो लोग हैं, जो एक गिरोह काम करता है, उनके ऊपर लगाम लग सके, उनके अंदर मन में एक डर आए कि 10 करोड़ की सजा का जो जुर्माना और 10 साल की सजा, ये दोनों प्रावधान है। 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है लगातार सुनवाई करेगा, जांच भी उसी में होगी और फैसला भी उसी में आएगा, लीगल बैकिंग जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट को इसमें देने की बात है। तो सरकार की तरफ से लगातार जो कदम है ना वो उठाए जा रहे हैं। सरकार इस बात को भली भांति जानती है कि यूथ जो है वो अगर सड़क पर आता है, जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, सरकार ने फैसला लिया यूथ की भावनाओं का सम्मान करते हुए, ठीक है, लेकिन आगे इस तरीके की कोई गलती और गड़बड़ ना हो इसके लिए भी सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना है। इसीलिए लगातार जो है वो सरकार की तरफ से वो कदम उठाए जा रहे हैं। उसका जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो NDA की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में आज जरूर करेंगे कि पिछले सप्ताह जो उन्होंने कहा था उसके बाद कितने जो है कदम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जो है वो उठाए हैं।
0: बिल्कुल हिमांशु, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कहीं 20 मिनट कहीं 31 मिनट और यही चर्चा देश की चर्चा बन जाती है कि जब आम लोग अपने दफ्तरों में पहुंचते हैं तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि आप अपने जितने भी वर्किंग आवर्स हैं वो पूरा करें, तभी आपको तनख्वाह मिलती है। लेकिन वही जब इस देश के माननीय सांसद पहुंचते हैं तो क्या बवाल और कार्यवाही स्थगित, बवाल कार्यवाही स्थगित, इस चक्रव्यूह से, इस क्रम से हम निकल पाएंगे? हम आपको एक एक दिन का दिखा रहे हैं और डेट के साथ दिखा रहे हैं, कभी 22 मिनट है, कभी 21 मिनट है, ये कार्यवाही हो रही है। तो फिर जो आम लोगों के मुद्दे हैं, भाई कोई सांसद है तो सांसद प्रतिनिधि चुनकर आया है, वहां का क्वेश्चनार तो चले, वहां पर उसके सवाल तो वहां पर कम से कम उठाए जाए, क्योंकि सांसद की एक जवाबदेही उस, क्योंकि सब चीजें सिर्फ अगर कुछ मुद्दों पर ठप हो जाए तो वो भी बहुत प्रश्न खड़े करती है। हालांकि दो तीन बातें बड़ी है, पैलेट गन से लेकर AK-47 ऐसा मुद्दा जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से आइए आपको सुनाते हैं, और बिहार का मुद्दा खास तौर पर जो AK-47 वाला वीडियो है वो सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के लिए इस वक्त बनेगा। आइए आपको सुनाते हैं इस पर क्या कहा जा रहा है।
9: देखिए, सरकार तो अपील कर रही, दो बार संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होकर के उन्होंने कहा, आपने चर्चा की मांग की, चर्चा की मांग की, और मांगे सब मान ली गई, उसके बाद भी फिर चर्चा ना हो, और स्पीकर ने कहा 6 घंटे अगर इससे अधिक समय चाहिए तो और मिलेगा। तो इससे साफ है कि विपक्ष, आप देख रहे कितना गए, पूरे दिन राहुल नहीं थे, सदन को बाधित हो रहा है, उन्हें कौन सी दिलचस्पी है?
4: किरण रिजिजू जी को यह समझना पड़ेगा कि विपक्ष आपके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं है, चर्चा में भाग लेना चाहिए लेकिन आपकी शर्तों पर। आपकी शर्तों पर क्यों भाग लेंगे? संसद किस लिए है? विपक्ष यहाँ इसलिए थोड़ी आता है कि आप जो कह देंगे हम उसको मान लेंगे। विपक्ष यहाँ इसलिए आता है कि देश के लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद को देश के पटल पर, संसद के पटल पे कैसे रखा जाए। हम बिल्कुल चर्चा में भाग लेंगे, हमने मना नहीं किया है, लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो यह है कि गृहमंत्री जी आए, एक स्टेटमेंट दें, उसके बाद हम देश की सदन में चर्चा में भाग लेंगे।
10: हमारी मांग है कि सरकार स्पष्ट बात रखे कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा और भविष्य में कोई भी उनके साथ अन्याय नहीं होगा।
11: कुछ दल जानबूझकर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी सख्त कानून के लिए बिल लेके आए हैं, आप बहस के लिए तैयार नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो दल चर्चा के लिए तैयार नहीं है, उनकी मनोस्थिति क्या है?
0: तो दोनों ही तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सदन की कार्यवाही होती है या नहीं इस पर हमारी नजर है, और एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, कवरेज जारी है, देखते रहिए आज।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत।
13: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट, बिकॉज़ वेल्स फार्गो विल सेंड एन अलर्ट इफ हर बैलेंस ड्रॉप्स बिलो हर सेट अमाउंट। यप, नथिंग गेट्स पास्ट लूसी और वेल्स फार्गो फॉर दैट मैटर। हाउएवर यू मेक मनी वर्क, Wells Fargo can work with that.
14: Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
12: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera.
6: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
7: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: बाहर आएंगे, खबर भी आना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ जो है वो जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो खुद ब्रीफ करते हैं कि पूरी बैठक में क्या हुआ। लेकिन ज़्यादातर जो विषय होते हैं वो ऑफिशियल विषयों के बारे में ही जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या एड्रेस किया, किन विषयों पे किया, उस पर एड्रेस नहीं होता, लेकिन वो छन छन कर जानकारी आती है। लेकिन अंजना एक चीज़ ज़रूर है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं है आज, क्योंकि वो उड़ीसा गए हैं, किताब का विमोचन है वहाँ पर, जिसमें संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले रहने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान वहाँ पर रहेंगे और आज देर रात जो है वो दिल्ली फिर से वापस आएंगे। बड़ी बात ये है कि आज लगभग जो है ये मान के चला जा सकता है 1 बजे या 2 बजे जो है संसद के अंदर जो प्राइवेट एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर बिल है, इसको लेकर फिर से चर्चा शुरू होगी। और चर्चा के दौरान सभी पक्ष अपना अपना जो है वो रखेंगे जो भी इश्यूज हैं उनको। और सरकार की तरफ से और स्पीकर की तरफ से ये पहल की गई थी कि आप चर्चा चाहते हैं ठीक है, लेकिन जब इस बिल पर चर्चा हो तो आप अपने सभी विषयों को जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि ये मामला जो है ना सिर्फ नीट पेपर लीक मामले पर है, बल्कि जितने पेपर एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज हैं उनके लिए है, उनको फुल प्रूफ बनाने के लिए है। तो वहाँ पे आप अपनी बात को रखिए, चाहे वो लाठीचार्ज का मामला हो, पैलेट गन का मामला हो या अन्य विषय हो। तो विपक्ष इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन अब देखना यह है कि कल भी देर शाम तक विपक्ष यही कहता रहा कि गृह मंत्री अमित शाह जब तक स्टेटमेंट नहीं देंगे या ये सरकार की तरफ से एश्योरेंस नहीं आएगा कि इसी चर्चा में जो है गृह मंत्री जो है वो स्टेटमेंट देंगे या इंटरवीन करेंगे, तब तक हम जो है इस चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे। तो सरकार की तरफ से कुछ एश्योरेंस उनको मिली है कि अगर जरूरत पड़ी और आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो बाद में देखा जाएगा। अभी तक तय नहीं है कि गृहमंत्री अमित शाह जो है इस चर्चा में इंटरवीन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन विपक्ष तैयार है और ये जरूर है कि आज इस बिल पर चर्चा शुरू होगी और आज देर रात तक जो है चर्चा चलेगी। अगर देर रात तक चर्चा चलती है तो कल जो है वो शिक्षा मंत्री जो है प्रहलाद जोशी वो इस चर्चा पर जवाब दे सकते हैं और कल इस बिल को पास भी करवाया जा सकता है, या अगर सांसद तैयार रहे तो इस बिल पर आज ही चर्चा और आज ही इस बिल को लोकसभा से पास कराने की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी।
1: तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है कि आज चर्चा हो के इसको लोकसभा में आज ही पास कराने की प्रक्रिया हो। लेकिन अगर बड़ी तस्वीर को देखें और धर्मेंद्र प्रधान के नजरिए से देखें, आज उनके इस्तीफे के बाद उनकी गैर मौजूदगी रही इस बैठक में, और ये ऐसा लग रहा है कि जो संदेश धर्मेंद्र प्रधान के इर्द गिर्द दी जा रही है, आरएसएस के एक फंक्शन में इस वक्त वो ओडिशा में मौजूद है हिमांशु।
0: नहीं, आरएसएस का फंक्शन नहीं है, वो एक बुक रिलीज है। अच्छा। उस फंक्शन में धर्मेंद्र प्रधान जो है पहले से जो है इनवाइट थे और वो उस डायस को शेयर करने वाले थे जिसमें संघ के जो है सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले रहेंगे, और वो जो उनको निमंत्रण था वो एज ए शिक्षा मंत्री के तौर पर उनको उस कार्यक्रम में रहना था। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ हम सब जानते हैं कि अब वो शिक्षा मंत्री नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वहाँ गए हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और देर शाम जो है वो वापस दिल्ली आ जाएंगे।
1: बिल्कुल, देर शाम धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली वापस आएंगे। और अब अगर देखें विपक्ष का गतिरोध वाकई इस पर खत्म होता है, दो मुद्दा सबसे बड़ा हिमांशु जो कि फ्लैश पॉइंट सरकार और उनके बीच बनेगा, एक तो पैलेट गन का मुद्दा और वही सिवान का जो वीडियो है जिसमें AK-47 दिखाया जा रहा है। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक AK-47 है जिससे फायरिंग हो रही है स्टूडेंट्स पर, और एक्शन भी लिया गया है उस व्यक्ति के खिलाफ जो दिख रहा है। ये दोनों मुझे लगता है सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बनेगा जिस पर वो गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे
0: हैं। देखिए, बिल्कुल विपक्ष इसी चीज को लेकर अड़ा हुआ है कि पैलेट गन चली, जो लाठी चार्ज हुआ है वो किसके आदेश से हुआ, और AK-47 लेके सिवान में जिस तरीके से पुलिस के जवान जो है दौड़ रहे थे और वहाँ तानी गई है, उसको लेकर जवाब जरूर मांगा जाएगा। लेकिन ये भी एक तरीके से सरकार का ये कहना है कि जब इस तरीके की स्थिति आती है तो कुछ एक्शन के एवज में जो है वो रिएक्शन होता है और ये उसी के उसमें है। और सरकार एक पूरी तरीके से पूरा डेटा खंगाल रही है, दिल्ली पुलिस ने पूरा डेटा खंगाला है कि 20 जुलाई को जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो छात्रों के अलावा कुछ ऐसे उपद्रवी लोग थे, कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस मार्च में शामिल हो गए थे, जिनकी वजह से जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें लाठीचार्ज हुआ।

0: टियर गैस छोड़ी गई या पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, ये तमाम चीज़ों पर जो है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से पूरी सूचनाएं इकट्ठी की जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो गृह मंत्री जो है संसद में इस बिल पर चर्चा के दौरान जो है वे इंटरवीन कर सकते हैं। अभी तक जो है ये तय नहीं है कि गृह मंत्री इस पर चर्चा के अंदर जो है इंटरवीन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जानकारियां जो है सरकार की तरफ से पूरी तरीके से जुटा ली गई है। जब शिक्षा मंत्री इस पूरे जितेंद्र सिंह जब इस बिल पर पासिंग एंड कंसिडरेशन के बाद पूरी चर्चा के बाद जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के अंदर क्या स्थिति रही है उसका भी वो जवाब देंगे, क्योंकि जो सांसदों की तरफ से जो चर्चा के अंदर जो सांसद भाग लेंगे उनकी तरफ से जो सवाल खड़े किए जाएंगे, जो सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब जो है जितेंद्र सिंह जो है, क्योंकि ये पूरा बिल जो है वो डीओपीटी मंत्रालय के तहत आता है, तो आज का ये बिल डीओपीटी मंत्रालय के उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था कल और आज पासिंग एंड कंसिडरेशन के लिए रखा जाएगा। जब जवाब जितेंद्र सिंह देंगे तो पूरे जवाबों में ये पूरे घटनाक्रम का जिक्र भी जरूर करेंगे वो।
1: बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अब सबकी नजर इस बात पर है कि सदन में क्या कुछ होता है। राहुल गौतम हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। क्या गतिरोध खत्म होगा राहुल?
2: देखिए अभी मीटिंग चल रही है इंडिया ब्लॉक की, जिसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं वो शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, और वहीं पर फैसला किया जाएगा कि आखिर हमको चर्चा में शामिल होना है या नहीं होना है। लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि गृह मंत्री आकर स्टेटमेंट दे कि आखिर पिछले सोमवार को क्या घटा था, किस प्रकार से हिंसा हुई जंतर मंतर के आसपास के इलाकों के अंदर, और आखिर पैलेट गन को किसने अधिकार दिया जवानों को इस्तेमाल करने के लिए। साथ ही साथ आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार ये भी मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री माफी मांगे छात्रों से। ये दो मांगे हैं जो कांग्रेस का कम से कम कहना है कि अभी तक पूरी नहीं हुई है और इसी को लेकर अभी बैठक चल रही है। जाहिर है कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों से भी राय ले रही है कि क्या हमको चर्चा में भाग लेना चाहिए, क्या अगर हम भाग नहीं लेंगे तो ये परसेप्शन नहीं बनेगा कि हम चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है कि हमने आपकी सबसे बड़ी जो मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वो हम ले चुके हैं, ऐसे में हम एक कानून लेकर आ रहे हैं ताकि पेपर लीक रुके, दोषी हमको सजा मिले, अगर आप उसमें चर्चा में शामिल नहीं होंगे तो जाहिर है यही मैसेज जाएगा कि आप छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। फिलहाल ये बैठक चल रही है, थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बात की ज्यादा संभावना है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इस चर्चा में शामिल हों।
1: तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि कांग्रेस और जो विपक्षी दल है राहुल वो इस बैठक में शामिल हों। एक कोऑर्डिनेशन भी लगातार दिख रहा है, क्योंकि बीते दिन अगर आप देखिए राहुल तो सब नेता जब वहां पर नारेबाजी के लिए आए तो वो सब हो गए और फिर उसी तरीके से पूरा दिन उनका रुख रहा, और वहीं अब जब ये चर्चा आ रही है कि वो आज शामिल हो सकते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन उसमें भी दिखने की संभावना। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर स्टूडियो में जितने लोग हैं उनसे ले लेते हैं। विजय त्रिवेदी जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब लग रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ वापस जो काम होना चाहिए उस पर फोकस आ रहा है।
3: बिल्कुल ऐसा लग रहा है, और कल शाम को जो बैठक हुई है स्पीकर साहब के साथ उसमें एक तरह का ये मैसेज हो गया था कि अब इसको आगे चलाना, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी चीज की। जैसे पहले चर्चा में भी आया कि कल ही हो जाना चाहिए था लेकिन अब नहीं हुआ। अब सरकार के खिलाफ विपक्ष जो है वो क्या एकजुटता दिखाकर कितना दबाव बना सकता है, इस पर चर्चा वहां पर हो रही होगी कि जब बिल पर चर्चा हो तो किन किन मांगों के लिए दबाव बनाया जाए, किन बातों पर बिल को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सब बातों को। और मुझे लगता है बिल के साथ आज की चर्चा में जिस पर आप भी चिंता जाहिर कर रही हैं, पैलेट गन और AK-47 का यूज जो भी रहा है कि नहीं रहा है उसको लेकर दबाव बनाने की सरकार पर कोशिश रहेगी। बिल में कितना सुधार होना ये तो सब एक फॉर्मल चर्चा, जो सरकार ने बिल रखा है उसमें कितना बदलाव हो सकता है वो बात होगी, और छात्रों के जो मांग थी कि भाई उन पर आंदोलनकारियों पर कोई मुकदमे ना हो और वापस ले लीजिए, वो रात तक सारा काम सरकार ने कर ही दिया, तो वो भी इशू खत्म हो गया है। तो अब केवल ये पुलिस का जो बिहेवियर है, पुलिस का जो पैलेट गन का मामला है, AK-47 का मसला है, उस पर ज्यादा होगा, और विपक्ष जो है पूरी तरह से एकजुट होने की कोशिश करेगा। आपको याद हो कि पिछले दिनों जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात आ रही थी तो एक मैसेज ये दिया जाने लगा कि भाई विपक्ष एकजुट नहीं है, अखिलेश यादव शायद उससे अलग होकर जा सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना भी वो जा सकते हैं, लेकिन फिर धर्मेंद्र प्रधान वहां पर राहुल गांधी जी के लिए भी मौजूद रहे और बाद में भी उन्होंने साफ किया, अखिलेश यादव ने तो अखिलेश यादव वहां पर रहे, और अब मुझे लगता है विपक्ष एकजुटता के साथ आएगा क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं वैसे ही उनको एकजुट होने के।
1: आप कैसे देख रहे हैं हर्ष जी?
4: नहीं, मुझे लगता है कि विपक्ष की एकजुटता बहुत, जिसको कहें ना कि कहा जाता है कि केस टू केस बेसिस, तो अभी भी इसको बहुत ऐसे देख लेना कि विपक्ष एकजुट हो गया है तो थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट हो जाए, मेरा मानना है केस टू केस बेसिस
3: एकजुटता की कोशिश
4: है। इस पे तो क्या है ना कि देश का ऐसा,
1: छात्रों से बहुतों ने बहुत कुछ सीखा,
4: बिल्कुल इस पे देश का ऐसा मोमेंटम है कि कोई भी इसके खिलाफ भला कहां खड़ा हो सकता है। और मैं मानता हूं कि जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था वैसे ही पूरी संसद बिना किसी अपोजिशन के एक भी वोट के, यानी जो आईज और नोज करते हैं वो कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा, नंबर एक ये। तो दूसरा, सरकार की भी एक तैयारी हो, मुझे लगता है पिछले 3-4 दिनों से गृहमंत्री अमित शाह को लेकर जितने तरह के किस्से कहानियां वो बनाई गई हैं उसका भी पटाक्षेप आएगा और उसका जवाब ये किस तरह से देखने को मिलेगा ये अभी शायद अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन जैसे दिल्ली पुलिस के सोर्सेस से आया, जैसे जंतर मंतर पर किस तरह के लोग इकट्ठा हुए वो आया, इसका सीधा सा मतलब है कि गृह मंत्रालय की तैयारी पूरी है। अमित शाह आपको इस पर भी जवाब देते हुए दिखेंगे। तो एक जवाब होगा जो शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी देंगे, वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ किया, क्या होना चाहिए, बिल पर बात करेंगे, कितना हमने कड़ा किया। दूसरा, देश में जो अराजकता की स्थिति होती है उससे कैसे देश जूझ रहा है उस पर भी आपको बहुत कुछ सुनने को मिला। और मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ तो कुछ नहीं होना चाहिए लेकिन जो हिंसक हैं उनको छोड़ देना भी अच्छा प्रेसिडेंस नहीं होगा। संसद पर भीड़ चढ़ गई थी ये ध्यान में जरूर रहना चाहिए।
3: लेकिन बिल का रिप्लाई तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही करेंगे मुझे लगता है क्योंकि वो बिल तो वो रख रहे हैं ना टेबल उनका,
1: पेश कर चुके हैं बीते दिन ही बिल
3: पेश कर चुके। मैं कह रहा हूँ रिप्लाई जो है
1: डॉक्टर जितेंद्र सिंह
5: इनिशिएट भी वही करेंगे, रिप्लाई भी वही करेंगे। देखिए विपक्ष के पास अब बहुत कुछ प्रदर्शन करने के बचा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनके वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई और जो मुद्दे पैलेट गन का और राइफल का जो है और जो गृहमंत्री से जवाब मांगा है राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष ने और उसके लिए सदन बैठना बहुत जरूरी है, सदन की चर्चा बहुत जरूरी है। विपक्ष
1: संसद परिसर में बीजेपी सांसदों के प्रदर्शन की खबर आ रही है।
5: अब देखिए ये
1: हिमांशु है क्या हमारे साथ,
5: ये उल्टी गंगा बह रही है।
1: पंजाब पेपर लीक के मुद्दे पर ये बीजेपी के सांसदों का प्रदर्शन है जो इस वक्त चल रहा है। हिमांशु है क्या, एक बार सुना देते हैं आपको जो प्रदर्शन दिखा दीजिए, एक बार वीडियो दिखा सांसद आगे बढ़ रहे हैं। हिमांशु, ये पंजाब पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी के नेता नारेबाजी करते हैं।
0: देखिए बिल्कुल, जो बीजेपी ही नहीं एनडीए के जो सांसद हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और वो पंजाब में जो पेपर लीक का मामला है उस पर अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, कब इस्तीफा होगा, पंजाब में पेपर लीक हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीति है और राजनीति में सभी जो हैं ये बताने की कोशिश जरूर करते हैं अंजना कि मेरी जो कमीज है, जो मेरा कॉलर है कमीज का, वो आपकी कमीज के कॉलर से ज़्यादा सफ़ेद है, आपकी जो कमीज का कॉलर है उस पर दाग है। तो ये अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ नीट पेपर लीक मामले पे, तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मोमेंटम को एक नरेटिव बिल्ड जरूर करना चाहती है कि अगर केंद्र में हुआ है तो राज्य सरकारों में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों ने मकर द्वार पर जो है वो प्रदर्शन कर और नारेबाजी करके की है कि पंजाब के पेपर लीक मामले पर किसकी जवाबदेही है, जवाब देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को और वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए।
1: विनोद जी, अब देखिए पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग वो कर रहे हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि नीट का पेपर लीक बच्चों के साथ खिलवाड़ है और पंजाब में पेपर लीक से बच्चे प्रभावित नहीं होते।
5: नहीं, निश्चित रूप से कहीं भी पेपर लीक हो उतना ही गंभीर है जितना नीट का पेपर है, क्योंकि सब जगह बच्चे प्रभावित होते हैं। दिक्कत क्या है कि क्योंकि पंजाब में बीजेपी की वैधानिक विधायकों की स्ट्रेंथ बहुत कम है, 3 विधायक हैं, तो वहां प्रदर्शन करेंगे तो सबको ऐसा नहीं होगा। इसलिए संसद में प्रदर्शन करके बीजेपी संदेश देना चाहती है कि भाई हमने तो इस्तीफा ले लिया अपने मंत्री का, वो चाहे छात्रों के दबाव में लिया जो भी लिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। तो ये विपक्ष के पाले में गेंद है और मुझे तो आश्चर्य, मैं सोचा जानना चाह रहा था हिमांशु से राघव चड्ढा थे इस प्रदर्शन में कि नहीं थे।
4: अरे लीजिए,
5: क्योंकि राघव चड्ढा पंजाब की सरकार के आर्किटेक्टों में एक थे जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी वहां, अब वो बीजेपी में है तो वो किस तरह से प्रदर्शन में खैर शामिल तो हुए होंगे, लेकिन खैर ये तो एक राजनीतिक बात है। मैं जो बात कर रहा था अंजना जी कि विपक्ष अब जो है उसके सामने अगर वो बहुत ज्यादा इस मामले को खींचता और संसद नहीं चलने देता तो उसकी छवि जनता के बीच में खराब होगी और संदेश गलत जाएगा, छात्र भी इसको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि चर्चा हो, चर्चा में गृह मंत्री से जवाब मांगा जाए, गृह मंत्री अपनी
1: स्थिति। कांग्रेस जनता पार्टी के भी दोनों जो प्रतिनिधि गए
5: जी,
1: इस्तीफे का उन्होंने शर्त रखी थी, इस्तीफे के बाद मान लिए, और जब वो हो गया उसके बाद उन्होंने गतिरोध को बाकायदा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉल ऑफ किया। तो मतलब एक भाई
5: एक मुद्दा था, चूंकि छात्रों पर मुकदमे दर्ज होने की शिकायतें थी, इसीलिए सौरभ दास ने कभी
1: वो भी बिहार में शाम तक वापस लिया गया,
5: लेकिन शाम तक वो भी वापस होने, बंगाल में भी इस तरह खबरें आई कि वहां भी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जो FIR दर्ज हो जाती है तो उसको विड्रॉ करने का, ऐसा नहीं कि गयो पर्चा फाड़ दिया, उसकी पूरी एक लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, उसमें टाइम लगता है, तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे आप संसद को ठप करें या कार्रवाई न होने दें। तो मुझे लगता है विपक्ष भी समझदारी दिखा रहा है कि अब उसको, और रही बात एकता की, तो ये मैं सहमत हूँ ये फौरी एकता है अभी, क्योंकि नीट का मुद्दा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा, ये ऐसा मुद्दा था कि इस पे तमाम सत्ता पक्ष के सांसद भी दबे मन से इस मुद्दे के साथ थे। अगर उनसे आप अलग से बात करें तो कहते थे कि नहीं भी बड़ा गलत हो रहा है, तो इस मुद्दे में तो अलग होने का सवाल ही नहीं था। अब आगे जब संसद चलेगी, जब वो जो डिलिमिटेशन का मुद्दा, जैसे अगर अगर वो विधेयक आता है, अगर अगर वो एक देश एक चुनाव का विधेयक आता है, तब कितनी एकता रह पाएगी वो बड़ी परीक्षा होगी विपक्ष की एकता की, उसमें जरूर देखना होगा क्या स्थिति बनती है।
1: विजय त्रिवेदी,
3: ये बिल्कुल ठीक है ये बात, और पंजाब को लेकर भी बात होनी चाहिए, बल्कि मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा देर से कदम उठाया,
4: लेट स्विचिंग,
3: लेट
5: ये रिएक्शन हो गया ये।
3: हाँ नहीं, यदि पहले करते तो शायद उनके आंदोलन में भी इस पर थोड़ा सा बीजेपी पर वो दबाव कम रहता
5: है, सभी हो गई,
3: बल्कि मैं सोच रहा हूँ जैसे कर्नाटक में भी हुआ, कुछ और राज्यों में भी हुए, वो सारे इश्यूज
5: उत्तराखंड में भी हो गया,
3: उत्तराखंड में भी हो गया, तो वो सभी जगहों पर ये काम किया जाए। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब बिल पर चर्चा हो तो पूरे एजुकेशन सिस्टम पर भी चर्चा हो, और विपक्ष भी इसमें ज्यादा ईमानदारी के साथ केवल सरकार पर हमला करने के नजरिए से नहीं,
5: अपने संशोधन पेश करें,
3: संशोधन पेश करें, और सरकार भी थोड़ी सी जगह दे, स्पेस दे कि यदि संशोधन ठीक है तो उनको स्वीकार किया जाए, उस पर काम किया जाए,
5: सहमति बनने में आसानी रहेगी,
3: सहमति बनने में भी आसानी रहेगी, बिल तो पास करवा ही लेगी सरकार, उसमें कोई बात नहीं। और राघव चड्ढा जी तो आम आदमी पार्टी छोड़कर इसलिए आए थे कि उनको वहां पर मुद्दे उठाने की जगह नहीं मिल रही थी, तो जाहिर है वो साथ ही होंगे,
5: मुद्दा तो उठा रहे थे, समोसा और चाय और तमाम मुद्दे उठा रहे थे,
3: पॉलिटिकल पार्टीज में ये सब चलता रहता है। लेकिन अभी ये आज का दिन मैं बहुत गंभीर दिन मानता हूँ, और जैसे हर्ष जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जैसे नारी वंदन अधिनियम पर सब लोग सहमत हुए, इस पर भी सहमत हो, लेकिन सहमति का मतलब ये नहीं कि जो सरकार ही कर रही है, सब लोग सहमत हो इसका मतलब सरकार भी सहमत हो और विपक्ष भी सहमत हो,
5: और वो तभी होगा जब विपक्ष अगर कोई रचनात्मक संशोधन हो तो उनको सरकार स्वीकार करे और उनमें बिल में इंकॉर्पोरेट करे, शामिल करे।
3: हाँ, वही बात,
5: उससे एक आम सहमति आसानी से।
1: केजरीवाल चुप्पी तोड़ो के नारे इस वक्त लग रहे हैं संसद में, और देखिए जिस तरह से नीट की परीक्षा पेपर लीक को लेकर ये पूरा दबाव बना और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बीजेपी के सांसद एनडीए के सांसद ये कह रहे हैं कि वहां पर आप वो भी हटाई। अब हर्ष, ये एक बड़ी बात ये है कि जिसको कहते हैं ये पॉलिटिकल दबाव की वजह से ये इस्तीफा नहीं हुआ है, ये छात्रों का सड़कों पर आने की वजह से और जो आंदोलन चला उसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स के नजरिए से देखिए, क्योंकि अब पूरा एक्शन शिफ्ट हो चुका है जंतर मंतर से देश के पार्लियामेंट में, तो उधर से अगर धर्मेंद्र प्रधान के बाद गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा जा रहा है, तो इधर केजरीवाल चुप्पी तोड़ो।
4: नहीं देखिए, इसमें तो कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, ये विशुद्ध रूप से देश भर के छात्रों के दबाव में और बड़ी मजबूरी में लिया गया त्यागपत्र, ये इसको तो साफ साफ समझ। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, क्या हमारा अपोजिशन स्पेस इतना वीक हो गया, इतना कमजोर हो गया है, वो किसी मुद्दे पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं, इसका मतलब है कि उसकी साख का प्रश्न है। और कई बार ये भी लगता है कि ये जो नौजवान है ना, ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां, इन पर भरोसा नहीं कर पा रही। जहां तक पंजाब के मसले पर बात है, देखिए आम आदमी पार्टी तो अद्भुत ही है, वो तो मानने तक को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है। अब सवाल ये कि जब सांसद इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या अब इसको भी वो नहीं मानेंगे कि पेपर लीक हुआ, चूंकि पेपर लीक की खबरें आई, पेपर लीक पर कार्रवाई हुई और उन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई कर दी, वो लीक नहीं था, वो तो चीटिंग हो रही। अब सवाल ये कि क्या देश के हर राज्य में छात्रों की समस्या को लेकर वहां का विपक्ष इसी तरह से गंभीर होगा, या संसद में जा रहे हैं हमारे ऊपर आ गया तो चलो आज थोड़ा सा नारेबाजी कर लेते हैं, कुछ प्लकार्ड लेके चले जाते हैं, ये भर होगा क्या? मुझे लगता है देश के हर छात्र की समस्या उतनी ही गंभीरता से उठनी चाहिए, और ये कानून जब बने तो इसका दायरा इस तरह से किया जाए कि राज्य सरकारें भी इसके दायरे में अपने यहां की होने वाली परीक्षा को ठीक से करा सके।
1: बिल्कुल, और यही हिमांशु सबसे बड़ा चैलेंज है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन छात्रों को जो इस वक्त ईमानदार दिखेगा वो अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, वैसे तो बच्चों को हर इम्तिहान के लिए सामने आना पड़ता है, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड हर साल जाता है, बच्चों को ही अपने मतलब टीचर को भी जवाबदेही, माता पिता को भी जवाबदेही, भविष्य को लेकर भी चिंता, इन सब से संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आज वो रिपोर्ट कार्ड इन नेताओं का बना रहे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कवरेज जारी है हिमांशु, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: आर यू रेडी टू टैकल दोस होम प्रोजेक्ट्स, वेदर इट्स अ न्यू पैटियो, फ्रेश पेंट और जस्ट सम मोर स्पेस? Now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
9: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
12: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today. Sokudo.
14: कोई काम नहीं बचा है। जनता ने बार बार उनको जो रास्ता दिखाया है, उनको लगता है बच्चों के भावनाओं के पे ऊपर राजनीति करके वो निकल जाएंगे। और यही काम उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जो धरना का काम किया, वो क्या था, जब ऑलरेडी बात चल रही थी, वो लोग धरना पे बैठे हुए थे, एक पैरेलल खड़ा करके कि हम नहीं पीछे रह जाए, राजनीति चमकाना था, इसलिए ने जा करके चुपचाप जाकर के बैठ गए खड़गे जी के घर से निकल करके बर्थडे के नाम पर।
15: बेबी बनाए थे उनका क्या हुआ, वो कमजोर थे क्या? पहले जो बनाया आपने वो कमजोर थे, जो पहले कानून बनाया वो कमजोर था, उसको इम्प्लीमेंट करानी अगला कानून बता दिया आपने। अरे उसको तो इम्प्लीमेंट कर लेते, उसमें तो चार्जशीट दाखिल नहीं करी, वो मुखिया को वो बरी होकर के चला गया। करना कुछ नहीं है, बातें करनी है, करिए, डिलीवर करने का टाइम है, ये आपकी बातों से नहीं पेट भरेगा लोगों का।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: परीक्षा संशोधन बिल पर आज लोकसभा में चर्चा, दोपहर 1 बजे से बहस में भाग ले सकता है विपक्ष। इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद हो सकता है डेडलॉक खत्म करने का फैसला। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहले मंगल मिलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन नहीं हुआ संबोधन। पीयूष गोयल और ललन सिंह ने दिया अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन। पंजाब पेपर लीक पर एनडीए सांसदों का विरोध प्रदर्शन। पटना के बांकीपुर उपचुनाव में आज प्रचार के आखिरी दिन पहुंचे एनडीए के दिग्गज तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने भी झोंकी ताकत। 30 तारीख को डाले जाएंगे वोट, नितिन नवीन की साख दांव पर। पीओके में पाकिस्तानी सेना के फिर अत्याचार की इंतहा। प्रदर्शनकारियों पर मुनीर अभी ने भी की सेना ने की अंधाधुंध फायरिंग। अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर। पूरे इलाके में इंटरनेट बंद। राजस्थान से उत्तराखंड तक मॉनसून का कहर। देहरादून में धस गया कुछ दिन पहले बना हुआ पुल। पहाड़ी नदियों में उफान। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी जबरदस्त बरसात।
1: चर्चा करना चाहिए, चर्चा करने को तैयार है। ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए। होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की कार्यवाही पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और माना जा रहा है कि आज पक्ष और विपक्ष में जो गतिरोध बना हुआ है लगातार वो खत्म हो सकता है। सीधे सुनिए लोकसभा की कार्यवाही।
1: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ी सुश्री शर्मिला धनकड़ ने स्वर्ण पदक व सुश्री शिल्पा के शायल ने कांस्य पदक जीता है। श्री सवेश कुमार सारे, श्री वलूरी अजय बाबू, सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक एवं सुश्री बिंदिया रानी देवी ने कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत की 18 वर्षीय क्वेश खिलाड़ी सुश्री अनाथ सिंह ने कनाडा में वर्ल्ड जूनियर इस क्वेश चैंपियन 2026 खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से देश की मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए एवं टीम इंडिया कोच सबको परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक अच्छा संदेश जाता है कि हम खेलों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाड़ी जिस कड़ी मेहनत से स्वर्ण रजत कांस्य जीतते हैं और संसद उनका अभिवादन करती है, 140 करोड़ जनता अभिवादन करती है, तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। प्रश्नकाल है क्या चाहते हैं? नो
2: सर, सर
1: मैं सभी दलों से पुनः अपील करता हूं कि महत्वपूर्ण विधेयक पर हम चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा यह आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, आज और निवेदन कर रहा हूं मैं, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। आप प्रश्नकाल के बाद 12 बजे गतिरोध पैदा करें, हमारे कृषि मंत्री जी बहुत उत्तेजित हैं जवाब देने के लिए। मेरा आप सबसे आग्रह वो क्या है, खड़े होने की मुद्रा में पूरा रोल दूसरे, मेरा आप सबसे आग्रह है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, सबके मत विचार आए। एक
3: हमारी भी बात सुनी जाए सर,
1: पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा संवाद होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा नहीं करें। चलिए, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: तो एक बात साफ है, 2 बजे तक के लिए न सिर्फ जो सदन की कार्यवाही है वो स्थगित की गई है। ओम बिरला ने यह भी अनाउंस किया स्पीकर ने कुर्सी से कि 2 बजे बहस के लिए सहमति बन गई है। तो उन्होंने 2 बड़ी बातें कही हैं कि एक तो लोकसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए और 2 बजे से सहमति बन गई है, 2 बजे बहस शुरू होगी। हिमांशु, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे 1 बजे की बात हो रही थी लेकिन ऐसा लगता है कि लंच उपरांत
2: 2 बजे ही होती है नॉर्मली चर्चा।
4: इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया, ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं। अभी भी
0: तो सभी दलों ने चर्चा कर सहमति जताई है, ये भी स्पीकर ओम बिरला ने अनाउंस किया है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और 2 बजे बहस की शुरुआत होगी, ये सहमति भी तमाम पार्टियों की स्पीकर ओम बिरला ने बता दी है। अपने आप में इसको बड़ा माने क्योंकि हिमांशु अब देखिए गतिरोध भी खत्म हो जाएगा और 2 बजे से बहस की शुरुआत होगी। अब देश सुनना चाहेगा कि भाई इस पर क्या क्या बातें आती है, कैसे कानून को और भी मजबूत तरीके से बनाया जाए, लागू किया जा सके, इस पर नजर रहेगी। कौन कौन नेता बोलेंगे, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी है हिमांशु?
5: देखिए अभी जो जानकारी है वो एनडीए के जो स्पीकर्स हैं उनकी तो जानकारी है। एनडीए की तरफ से बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, टीडीपी से जो है वो लवु श्री कृष्णा बोलेंगे, ललन सिंह जेडीयू की तरफ से हैं, अनुप्रिया पटेल जो है वो अपना दल की तरफ से बोलेंगी, एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से श्रीकांत शिंदे रखेंगे, एलजेपी की तरफ से जो है अरुण भारती जो है इस चर्चा में भाग लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इतने दिन लगे और कल भी विपक्ष इस चीज़ को लेकर मांग में था कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जवाब दें, लाठी चार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन का यूज़ क्यों किया गया और बिहार के अंदर जिस तरीके से AK-47 का जो दृश्य है उस पर जवाब होना चाहिए। अब क्योंकि विपक्ष को स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री दोनों ने इस बात को लेकर सहमति बनाई और अलग अलग जो है सभी विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर से उन्होंने मुलाकात की, चाहे KC वेणुगोपाल हो, अखिलेश यादव हो या अन्य विपक्षी दलों के नेता हो, उनसे मुलाकात की, उनको समझाया आप चर्चा चाहते हैं ठीक है लेकिन इस बिल पर जब चर्चा हो तो आप उन सभी विषयों पर अपने मत को रख सकते हैं जो आप इस चर्चा के दौरान उठाना चाहते थे। अगर कुछ रह जाए तो उसके बाद अगर चर्चा की कोई गुंजाइश है तो चर्चा भी सरकार करना चाहती है लेकिन सबसे पहले इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास करके ये संदेश देना चाहिए कि पेपर लीक करने वाले लोगों के खिलाफ ये पूरा देश, पूरी संसद, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है एक साथ खड़ी हैं और शायद यही कारण है कि एक आम सहमति बनी है और ये चर्चा जो है आज 2 बजे से लोकसभा में शुरू होगी और देर रात तक ये चर्चा जो है वो चल सकती है और उसके बाद जो DOPT मंत्रालय के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह वो इस पूरी चर्चा का जब जवाब दें तो उन सभी सवालों के जवाब भी देंगे जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं या इस छात्र आंदोलन में जो है छात्रों की तरफ से जो उठाए गए थे और सरकार ने क्या क्या कदम जो है अभी तक आगे भविष्य में पेपर लीक ना हो इसके लिए उठाए हैं। इसके लिए लगातार पिछले 5 से 6 दिनों में सरकार की तरफ से कई कड़े कदम उठाए गए हैं और 3 बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है अपने वीडियो जारी करके बताए कि सरकार किस तरीके से जो है पेपर लीक भविष्य में ना हो इसके लिए काम कर रही है। चाहे आप देखें फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, फिर उसके साथ साथ जो है NTA के 47 अधिकारियों का तबादला हो, उसके साथ जो है हाई पावर टास्क फोर्स का गठन हो कि वो इंश्योर करे कि भविष्य में जो है कभी भी पेपर लीक ना हो, उस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया जाए और साथ ही जो है जो पुराना 2024 का प्राइवेट एग्जामिनेशन बिल है उसमें अमेंडमेंट और लाए गए जिससे एक डर जो है वो जो लोग इस गिरोह के तौर पे काम करते हैं पेपर लीक के लिए उनके मन में एक डर आए कि 10 साल की सजा होगी और 10 करोड़ का जुर्माना होगा, 3 महीने में जो है वो सुनवाई होगी और 3 ही महीने के अंदर जो है उसका फैसला आ जाएगा, यानी कि किसी भी तरीके से भविष्य में कोई भी इस तरीके का मामला आएगा तो जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये एक तरीके से सरकार इंश्योर करना चाहती थी और एक संदेश देना चाहती है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी इस पेपर लीक मामले पर एक साथ है, युवाओं का सम्मान करती है, युवाओं की जो भावना है उसको लेकर संसद काम कर रही है।
0: बिल्कुल, और यही कोशिश है कि अब सब ऐसे वक्त पर जिसकी बात हम लोग पहले कर रहे थे विनोद जी कि भाई सभी पार्टियां आप चाहेंगे अब 2 बजे गतिरोध खत्म करने का अनाउंस ही कर दिया ओम बिरला ने, तो सब को लग रहा है भाई एक दिन तो हमने चलो इस मुद्दे पर विरोध किया लेकिन अब तो बच्चे भी देखेंगे।
6: भाई देखिए अगर विपक्ष चर्चा से भागना चाहेगा तो फिर विपक्ष के लिए समस्या होगी, उसको भी जवाब उसकी भी जवाबदेही बनती, सरकार की जिम्मेदारी है जवाबदेही है, बिल्कुल ठीक बात है, इस्तीफा हो गया मंत्री का, अब संसद के अंदर एक कानून लेकर के एक विधेयक लेकर के सरकार आ रही है और उस विधेयक के बहाने जब उस पर चर्चा होगी तो सारे विषयों में चर्चा हो जाएगी, उस पर गृह मंत्री पर भी आप सवाल पूछ लेंगे, गृहमंत्री भी इंटरवीन करेंगे, इसके अलावा विधेयक में जो जो प्रावधान है उन पर चर्चा हो जाएगी, भविष्य के उपायों पर चर्चा हो जाएगी और सरकार विपक्ष चाहेगा तो सरकार की जो कमजोरियां हैं उनको भी उजागर करेगा, लेकिन वो तो सब सदन में ही होगा ना। तो ये बात तो एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आती है कि अगर आप सरकार पर हमलावर हमले करना चाहते हैं, सरकार को आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, सवालों घेरे में खड़ा करना चाहते हैं तो खाली वो मीडिया में या सोशल मीडिया में नहीं होगा, उसके लिए संसद में जाना ही होगा और संसद में जा करके आपको जो है वो रिकॉर्ड पर लानी होगी सारी चीजें, भाई पैलेट गन पे आपने चिट्ठी लिखी राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष ने, AK-47 का मसला जो है उस पर विपक्ष हमलावर, तो सारी बातें जब आप संसद में चर्चा में आएंगे तभी तो रिकॉर्ड पे आएंगी, और जब रिकॉर्ड पे आएंगी तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में जाएंगी, जनता के बीच में जाएंगी, मीडिया में जाएंगी, तो ज्यादा बड़ा उस पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही जो कानून जो विधेयक लेकर सरकार आ रही है उस पर भी चर्चा होगी, 2 साल पहले जो कानून आपने पास किया था वो इतना कमजोर क्यों बनाया था कि ये 2 साल में, तो ये सारी बातें तभी होंगी जब सदन में आप पहुंचेंगे। और ये बात विपक्ष के नेताओं को भी समझ में आ गई है कि अब बहुत ज्यादा चर्चा से ना होने देना मतलब चर्चा से भागना होगा, और चर्चा से भागने का मतलब सरकार को ये मौका मिलेगा कि विपक्ष जो है वो कमजोर विकेट पर है, वो चर्चा नहीं चाह रहा, जबकि छात्र जो है जो आंदोलनकारी छात्र है और जो आंदोलन में नहीं भी आए वो सब चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, सरकार क्या कर रही है ये बात सामने आए।
0: विजय त्रिवेदी,
7: विपक्ष के हमेशा रणनीति क्या रहती है, विपक्ष की रणनीति होती है कि सरकार को कैसे घेरा जाए, अभी तक था धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा पेपर नेट पर बिल को, अब वहां पर आ गए तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो सरकार को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता, तो अब वो अमित शाह और पुलिस के बिहेवियर पर आ गए कि भाई पुलिस को लेकर कैसे घेरा जाए, तो वो इसलिए दबाव बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जब कल शाम को जैसे मैंने भी आपको बताया था कि स्पीकर के साथ ये सहमति बन गई थी तो आज का प्रश्नकाल चलाना चाहिए था, जब ये सहमति हो गई और स्पीकर साहब ने तो वहां हाउस में भी बोल दिया कि भाई ये सहमति बन गई है तो फिर क्यों नहीं चला रहे, लेकिन विपक्ष इसलिए नहीं चलाना चाहता कि वो ये दिखाना चाहता कि भाई अमित शाह जी पर कैसे दबाव बनाया जाए, तो हमेशा विपक्ष के पास कोई ना कोई कारण, ये नहीं है कि चर्चा से भागना चाहता, विपक्ष को चर्चा से भागना चाहेगा सरकार, चर्चा से भागने का काम तो सरकार का होता है, उनको करना विपक्ष को, लेकिन विपक्ष एक के बाद एक स्टेप पर रहना चाहता है और वो समझता है कि सबसे ताकतवर जो मंत्री हैं इस सरकार के अमित शाह जी, उन पर पुलिस के बहाने, क्योंकि अमित शाह जी पर सीधा नहीं हो रहा लेकिन एक पुलिस के बहाने से भी अमित शाह पर दबाव बनाया जाए और सरकार को भी उसी तरह से
0: घेरा जाए। अड़े हुए थे कि भाई उनके बयान से, विजय जी की
7: उनका बयान आए तो उसे शुरू किया जाए, उसी पर बात बनी,
0: हर्षवर्धन जी एक समझौते की स्थिति आ गई है।
8: नहीं देखिये, एक तो एक विजय जी ने जो कहा ना कि सरकार भागती है विपक्ष क्यों भागेगा, तो हर बार हमने देखा है कि विपक्ष जब चर्चा शुरू हो जाता है तो फिर संकट में पड़ जाता है, क्योंकि विपक्ष के पास वक्ता नहीं होते हैं, मुद्दे नहीं होते हैं। हमने ये भी देखा है कि विपक्ष चर्चा मांगता है और उसके बाद पीएम बोलने लगते हैं तो निकल के सब चले जाते हैं, राहुल जी को भी हमने जाते हुए देखा, तो भागता कौन है ये तो खैर देश देखेगा, लेकिन मूल मुद्दा क्या है, जब सरकार ने प्रोएक्टिव होकर रात में फिर से प्रदर्शनकारियों से बात कर ली, और इतना तो कोई सरकार छात्रों के सामने झुकी नहीं दिखी, बिहार सरकार ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 26 तारीख को शाम 6 बजे तक के जितने प्रदर्शन है उनमें से किसी को कुछ नहीं किया जाएगा, फिर आज अभी जब आपने एक बार बात कर ली, लोकसभा अध्यक्ष से सहमति बन गई, तो फिर आज प्रश्नकाल बाधित करना, आज अभी फिर हम लोगों के सामने ये दिखा कि 2 बजे तक के लिए चर्चा रुक गई, इसकी जरूरत थी क्या? मुझे लगता है विपक्ष अपनी रणनीति में अब शायद कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना विरोध करें, कितना देश को ठीक लगेगा या छात्र किस पर नाराज जाएंगे, अभी तो छात्रों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो कि एक पूरा दिन चला गया और आज भी ये सुनने में आया कि सुबह सदन शुरू होता है उसका स्थगित 2 बजे तक के लिए हो जाता है, लेकिन अच्छा है कि 2 बजे से चर्चा होगी और हम उम्मीद करते हैं कि सार्थक चर्चा दोनों तरफ से आएगी, लेके आइए जितना आप लोगों के पास हथियार हो, जरा एक दूसरे ऊपर हमला कीजिए लेकिन देश का भला कीजिए, छात्रों का भला कीजिए।
0: आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु जो लगातार सरकार क्या फैसले ले रही है उस पर कवर कर रहे हैं, मौसमी 2 बजे से, हालांकि यहां पर चर्चा हो रही है कि क्वेश्चन आर भी चलने देना चाहिए था, दूर दराज से सांसद आते हैं, उनके मुद्दे रहते हैं, मंत्रियों से जवाब लिया जाता है, मांगा जाता है, लेकिन खैर 2 बजे से गतिरोध खत्म हुआ ये अच्छी खबर है, क्योंकि छात्र भी अब रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे नेताओं का।
9: बिल्कुल, देखिए अंजना, खबर यह आ रही है कि 2 बजे जब चर्चा शुरू होगी तो कांग्रेस की तरफ से सारे जो लीड प्लेयर्स है उनको उतारा जाएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर, ये 4-5 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि ये संभवतः स्पीकर्स होंगे कांग्रेस की तरफ से। जाहिर तौर पे चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, सभी लोग अपने इस धुरंधरों को उतारेंगे, क्योंकि ये पहली बार होगा पूरे मानसून सत्र में जब विपक्ष के पास सरकार को घेरने का एक मौका होगा। जो आप गतिरोध की बात कर रही थी, लगातार इसको लेकर विपक्ष ने पशुपेश कि अमित शाह का स्टेटमेंट बिल की चर्चा के पहले कराया जाए, और इसको लेकर आपने देखा किस तरीके से मंडे से बवाल खींचा हुआ था। लेकिन अब शायद इस बात पर स्पीकर के इंटरवेंशन से अब सहमति बनी गई है कि अब जब चर्चा होगी बिल में, उसी में आप मांग कर लीजिएगा गृह मंत्री अमित शाह के स्टेटमेंट का, और उसी पे सरकार की तरफ से कोई ना कोई जवाब आ जाएगा। इसको लेके जो पैलेट गन्स और तमाम चीजों को लेके जो आपने वो हल्ला सुना, वो उसको लेके हो रहा था। लेकिन अब स्पीकर की फहरिस्त से जान गया, जाहिर तौर पर हिमांशु बताएंगे कि किस तरीके से सरकार की तरफ से भी बड़े बड़े धुरंधरों को, सियासी धुरंधरों को उतारा जाएगा। तो काफी मुझे लगता है वार और पलटवार देखने
10: कि
9: को
10: जेन
9: मिलेगा।
10: जी की उम्र के जितने सबसे करीब जो नेता मिल पाए पार्टी में, क्योंकि तेजस्वी सूर्या हो या फिर हिमांशु बासुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, ऐसे नेताओं की खोज हो रही होगी जो मतलब सबसे कम उम्र के हों, जिनसे जो यंगर जनरेशन है, जो जेंजी है, वो रिलेट कर सके
6: पार्टी की। जेंजी जो है
10: पार्टी के
6: एमपीएस में जेंजी
10: है, नहीं
7: नियरेस्ट,
10: हाँ जो मतलब नियरेस्ट,
6: नियर मतलब
10: हाँ
6: नहीं, उनका जो एज ग्रुप है ना,
10: हाँ पार्टी
6: उसमें जेंजी है।
10: हिमांशु,
5: कोशिश ये जरूर रहेगी अच्छा वक्ता हो, और जेंजी हो या जेंजी रहे, कुछ समय पहले ही जेंजी रहे हो, ये हर पार्टी खोज कर रही होगी। और कल मेरी समाजवादी पार्टी में भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से भी कुछ युवा जो हैं वो आएंगे, जिसमें पुष्पेंद्र सरोज जो हैं वो बोल सकते हैं, प्रिया सरोज जो हैं वो भी बोल सकती हैं, इकरा हसन बोल सकते हैं, और खुद ही डिम्पल यादव और अखिलेश यादव भी बोलेंगे। तो हर पार्टी इस तरीके की जो है वो खोज जरूर कर रही है अपने समय के अनुसार, कितना समय उनको एलोकेट किया गया। एक चीज़ अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि क्यों नहीं चला प्रश्नकाल, क्यों हंगामे की भेंट चढ़ गया, तो मैं आपको बता देता हूं कि बैक चैनल जब बातचीत होती है तो उसमें कई चीजें जो है साइड रख दी जाती हैं। ये आज से नहीं है अंजना जी, ये आप जब बहुत लंबे समय से आप संसद में देखेंगे तो ये होता है, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या वाजपेयी सरकार की एनडीए सरकार हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली ये सरकार हो वर्तमान में, ये हमेशा होता है कि जब आप कोई आम सहमति बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। कल देर शाम जो है वो सहमति बन चुकी थी, 5 बजे से पहले सहमति बन चुकी थी, लेकिन सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई क्योंकि ये तय किया गया था कि आज चर्चा होगी और चर्चा ही होगी, उसके अलावा बाकी चीजों पर जो है वो कोई कार्रवाई सदन के अंदर नहीं हो पाएगी, नहीं चलने देगा विपक्ष। ये आम सहमति बैकडोर चैनल पे बनती है और ये यूपीए सरकार में भी बनती थी, जब वाजपेयी यूपीए सरकार के अंदर जो है बीजेपी और अन्य एनडीए दल किसी चीज पर मांग करते थे, चाहे वो जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो उसके अंदर या अन्य विषय हो, कई ऐसे विषय होते थे जब सरकार के अंदर एक सहमति बनती थी कि चर्चा होगी, लेकिन कई चीजों पर यह रहता था कि ठीक है आप सदन की कार्रवाई नहीं चले। ये बैक चैनल बातचीत होती है जिससे सरकार को ये लगता है कि उनका लेजिस्लेटिव जो है वो जल्द से जल्द पास हो जाए।
10: हाँ, इधर कांग्रेस में भी एक कंसोलिडेशन की स्थिति दिखती है, जो 5 नेता चुने गए उनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शशि थरूर को शामिल किया गया है, क्योंकि बीजेपी वाले ये नस भी पकड़ते थे कि देखो उनको अलग थलग करते हैं क्योंकि वो बीच बीच में और उन चुनाव भी लड़ा था, तो ऐसे में पार्टी के अंदर, तो इस बार शशि थरूर को भी मौका दिया गया है, क्योंकि इस मुद्दे पर शशि थरूर लगातार छात्रों के साथ खड़े थे और बहुत प्रबल तरीके से उन्होंने छात्रों का मुद्दा उठाया। बॉश
9: बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही में मुझे शशि थरूर का नाम याद करती है तो मुझे मनीष तिवारी का नाम चला याद आ जाता है, और अभी जब पंजाब की बैठकें हुई थी तो मनीष तिवारी को नहीं जोड़ा गया था, तो उन्होंने शेरो शायरी के अंदाज में कुछ बयां कर दिया था लोगों की इनसिक्योरिटी को लेके। तो मुझे लगता है कि शशि थरूर जेंजी से बढ़िया कनेक्ट करते हैं शायद और अच्छे वक्ता हैं, तो उनका चयन उसके लिए हुआ। लेकिन हाल ही में एक प्रोसेस अडॉप्ट किया है कांग्रेस ने रोटेशन का, तो अब स्पीकर्स को रोटेशनल बेसिस पे मौका दिया जाता है। दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम जोड़ लीजिए अंजना, वो तस्वीर आपने देखी होगी बैरिकेड पे चढ़े दीपेंद्र हुड्डा, जब NSUI का ये पेपर लीक को लेके प्रोटेस्ट हो रहा था तो बैरिकेड पे चढ़ गए थे। तो दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम जोड़ लीजिए, वो भी वक्ताओं में से एक होंगे। लेकिन कुल मिला के देखिये ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बाकी घटक दलों का भी दबाव है कांग्रेस पे, क्योंकि राहुल गांधी पैलेट गन्स को लेके, अमित शाह की जवाबदेही को लेके चाहते थे कि लंबे लंबे समय तक हम लोग ये मांग करते रहे, भले ही गतिरोध बना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चाहते हैं चंदा चोरी का भी मसला आगे आए और बाकी मसले भी आगे आए, और इसीलिए कहा गया कि बहुत लंबा इसको खींचना सही नहीं होगा, बिल की चर्चा के दौरान ही मांग लीजिए, क्योंकि चंदा चोरी की भी बारी आनी चाहिए।
10: बिल्कुल, और यूपी में चुनाव भी है तो तमाम ये मुद्दे गर्म होंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कवरेज जारी है, देखते रहिए आज।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
12: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
14: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So, you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
15: Savari.
16: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.
4: पापा.
5: सॉरी यार, गलती हो गई है. ये चोट खर्चा वर्चा.
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा.
5: छक्का
6: सब कैशलेस हो गया
5: है. ओ लव लव ही मेरा बैट.
7: वो अभी तो ठीक हुआ. तू
8: बिलोंड चार्ज हुआ यार.
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

सात दिन बाद टूटा संसद का गतिरोध, परीक्षा संशोधन बिल पर दोपहर 2 बजे लोकसभा में शुरू होगी चर्चा। बहस में भाग लेने पर राजी हुआ विपक्ष, स्पीकर ने कहा जितनी देर चाहे हो सकती है चर्चा। कांग्रेस की तरफ से परीक्षा संशोधन बिल पर बहस में बोलेंगे 5 बड़े नेता, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी समेत शशि थरूर, गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल होंगे मुख्य वक्ता।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहले मंगल मिलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन नहीं हुआ संबोधन। पीयूष गोयल और ललन सिंह ने दिया अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन। पटना के बांकीपुर उपचुनाव में आज प्रचार के आखिरी दिन पहुंचेंगे एनडीए के दिग्गज। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने भी झोंकी पूरी ताकत। 30 तारीख को डाले जाएंगे वोट। नितिन नबीन की साख दांव पर। पीओके में पाकिस्तानी सेना ने फिर की अत्याचार की इंतहा। प्रदर्शनकारियों पर मुनीर आर्मी ने की धंधाधुंध फायरिंग। अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर। पूरे इलाके में इंटरनेट बंद।

देख रहे आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज कुछ ही देर पहले हमने देखा कि हंगामा तो हुआ, लेकिन इस बात पर बड़ी खबर यही है कि सहमति बन गई है। 2 बजे से चर्चा की शुरुआत होने वाली है। लोकसभा में आज भी विपक्ष का जोरदार हंगामा रहा, नारेबाजी रही, लेकिन इन सब के बीच स्पीकर ओम बिरला ने ये मंच से वहां पर अपनी कुर्सी से ये अनाउंस किया है कि परीक्षा संशोधन जो बिल है उस पर 2 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी। तो कम से कम जो गतिरोध लगातार बना हुआ था उसके खत्म होने के पूरे आसार अब दिख रहे हैं। ये बड़ी खबर। आज सदन की कार्यवाही मतलब सुचारू रूप से कम जो चर्चा होनी है बिल पर उसकी शुरुआत 2 बजे दोपहर से हो जाएगी। तो अब ऐसी उम्मीद है कि लोकसभा में दोपहर 2 बजे जो लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर बहस है उसकी शुरुआत हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसका साफ मतलब है कि सहमति बन गई है, लेकिन इसके लिए पर्दे के पीछे काफी कोशिशें हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जब संसद में विपक्ष का विरोध शांत नहीं पड़ रहा था, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खुद मोर्चा संभाला। स्पीकर ने विपक्ष के नेताओं से खुद मुलाकात की, उन्हें बिल पर चर्चा के लिए तैयार किया।

0: these terrorists? What is wrong with you?
1: हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया।
2: लगा तो यही था कि संसद में ये तनातनी जल्द खत्म नहीं होगी, संसद का मानसून आपसी विरोध के ही भेंट चढ़ जाएगा। लेकिन अब सूरत बदलती दिख रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा को लेकर सहमति बन गई है। खबर है कि सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के नेताओं से बात की। स्पीकर ने विपक्ष के नेताओं को बताया कि बिल पर चर्चा क्यों जरूरी है। स्पीकर के साथ विपक्ष के नेताओं की अलग अलग बैठक में आखिरकार गतिरोध दूर हो गया। विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
3: मैं महत्वपूर्ण विधेयक पर हम चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें, सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा यह आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे।
2: आखिर इस बिल की जरूरत क्यों पड़ गई? मुख्य वजह तो ये है कि पेपर लीक के खिलाफ देश भर में भारी आक्रोश दिखा। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए सरकार ने पहले से सख्त कानून लाने का इरादा किया।
4: दुखी मन के साथ कह रहा हूँ, पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे है। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए, ये आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से।
2: पेपर लीक पर सख्त कानून को शिद्दत से महसूस किया जा रहा था। आपको बता दें कि जून 2024 तक पेपर लीक के रोकने के लिए केंद्रीय कानून नहीं था। धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होता था। इन धाराओं में जमानत की कोई सख्त शर्तें नहीं है। 21 जून 2024 को केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम लागू किया। इसमें पेपर लीक पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन अब केंद्र सरकार संशोधन विधेयक लाकर 10 साल तक सजा का प्रावधान करना चाहती है। नया बिल संसद में पेश हो चुका है, लेकिन इसे पारित कराने के लिए चर्चा जरूरी है। अब उम्मीद है कि नए बिल पर गंभीरता से चर्चा होगी और ये जल्द कानून की शक्ल लेगी। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
5: सवाल है कि जिस बिल को लेकर इतनी रस्साकशी हुई है, आखिर उससे हासिल क्या होगा? क्या बिल के पास होने से देश में शिक्षा क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी? नए कानून से क्या क्या बदलेगा, देखिए ये रिपोर्ट।
6: मध्य प्रदेश की आकांक्षा जो नागपुर में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी करती रही, पेपर लीक के बाद ऐसा टूटी, 20 मई को जान दे दी। मऊगंज के गरीब परिवार की बिटिया को डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करने के लिए पिता ने कर्ज लिया, नागपुर में कोचिंग करानी शुरू की, पेपर लीक के बाद बेटी ने जान दी, पिता को ब्रेन हेमरेज हो गया, शरीर पैरालाइज, सिर पर उधार, परिवार चाहता है अब कोई बच्ची पेपर लीक की वजह से देश में जान ना दे।
7: सरकार किसी का बच्चा तो वापस दे नहीं सकता है, किसी के भविष्य बिल्कुल ना खराब हो, हमारा तो हो गया, पर आगे चल के किसी की भविष्य ना खराब हो।
6: क्या संसद में पेश हुआ पेपर लीक रोकने वाला नया बिल देश में फिर किसी परिवार की आकांक्षा को नहीं मरने देगा? महाराष्ट्र की अहिल्यानगर की अंकिता सांगले नीट पास करके डॉक्टर बनना चाहती थी, परिवार का दावा है 3 मई वाली नीट की परीक्षा अच्छी दी थी, पेपर लीक से एग्जाम कैंसिल हुआ, दोबारा नीट की परीक्षा का प्रेशर दावा है, अंकिता सह नहीं पाई, रिजल्ट में कट ऑफ से कम नंबर आया तो जान दे दी।
8: थोड़े डिप्रेशन में चली गई पेपर फूटी की वजह से, और बाद में वो इतने डिप्रेशन में चली गई

0: उसने अपना अपने आप को ही खत्म कर दिया।
1: सरकार की बनाई टास्क फोर्स, संसद में पेश हुआ नया बिल, क्या आप किसी अंकिता को जान देने के लिए मजबूर करने वाले पेपर लीक को नहीं होने देगा। तीसरी कहानी, तमिलनाडु के धर्मपुरी की 19 साल की रोशनी, नीट की परीक्षा देने वाली छात्रा जिसने पेपर लीक के बाद 20 जून को जान दी, परिवार अब तक बिखरा है। पिता कहते हैं बस अब किसी के बेटा बेटी की जान पेपर लीक से ना हो।
2: இந்த மாதிரியான நபர்கள் வந்து தாங்கள் எங்களுடைய குடும்பத்தை பார்த்து அவர்கள் வந்து திருந்தணும். இந்த மாதிரி நாங்கள் இன்னைக்கு இந்த என் மகளுடைய இறப்புக்கு பிறகு குடும்பத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு இப்போ 38வது நாள் 39வது நாள் ஆகிறது. இதுவரை நாங்கள் மீண்டு வர முடியவில்லை.
1: क्या संसद में पेश हुआ बिल अब फिर किसी परिवार की रोशनी को पेपर लीक की वजह से छीनने नहीं देगा?
3: The public examination bracket prevention of unfair means. Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024.
4: प्रश्न के विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है।
1: द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में पेश होते ही पहले हंगामा होता है और तब सवाल आता है कि जिस देश में पेपर लीक की वजह से 20 से ज्यादा नीट परीक्षार्थियों के सुसाइड के बाद ऐसा आंदोलन चलता है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ता है, वहाँ संसद में पेश बिल से क्या क्या बदलेगा? तो जवाब ये है, पेपर लीक करने पर जहां 3 से 5 साल की सजा पहले मिलती थी और 10 लाख का जुर्माना था, अब उसे बढ़ाकर 5 से 10 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना कर दिया गया है। पेपर लीक में शामिल सर्विस प्रोवाइडर के लिए प्रस्तावित कानून में जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया, जबकि उन पर बैन करने का वक्त 4 साल से बढ़ाकर 8 साल यानी 2 गुना कर दिया गया। साथ ही परीक्षा का खर्च वसूलने वाला प्रावधान भी शामिल रहेगा। परीक्षा में धोखाधड़ी में शामिल पाए जाने वाले डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट या जिम्मेदार लोगों को कम से कम 5 साल की जेल और 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। परीक्षा से जुड़े संगठित अपराधों के लिए कम से कम सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल तक कर दी गई है, जबकि कम से कम जुर्माना जो था वो 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
5: गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया जो घोषणा की है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो।
1: कानून केवल सजा और जुर्माने को लेकर सख्त नहीं हो रहा, बल्कि बिल में 2 नई धाराएं 12A और 12 खंड 2 जोड़ी गई है। इसके तहत केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी या एसटीएफ को केंद्र सरकार की तरफ से मामला सौंपे जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी, फिर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा, जहां राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह करके सेशन कोर्ट को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर तय करेंगी। यहां रोजाना सुनवाई जरूरी है, सुनवाई टालने के लिए लिखित कारण देना होगा, चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करना होगा, पेंडिंग केस स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे और ट्रांसफर के 3 महीने के अंदर पूरे किए जाएंगे। अपील की प्रक्रिया के तहत नई धारा 12 बी इस प्रस्तावित बिल में जोड़ी गई है, जहां स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले, सजा आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपील की सुनवाई 2 जजों की बेंच करेगी। जमानत के आदेशों के खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपील स्वीकार होने के 3 महीने के अंदर निपटारा करना होगा। अपील करने की समय सीमा 30 दिन होगी। ठोस वजह होने पर इसे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
6: बार बार पेपर लीक से लाखों छात्रों, उनके परिवारों को जो परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इससे देश के प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ मामला है। अगर पेपर लीक नहीं रुके तो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग जाएगा। अगर आप देखें तो पूरा जो एग्जाम होता है उसकी गुणवत्ता में भी गिरावट आएगी। अयोग्य लोग हमारा आपका इलाज करेंगे, स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर से सबका भरोसा उठ जाएगा। ये नौबत ना आए इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदन निलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। सवाल है कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए नंदन निलेकणी ही क्यों? देखिए,
7: I think in both the cases, whether it's Infosys or Aadhaar, what I've found is that if you have a clarity of vision of what you want to do, if you have a honesty of purpose and you're willing to act, nothing is impossible.
1: जिस देश में अब तक परीक्षा का पेपर लीक होने से रोकना करीब करीब असंभव रहा है, वहां अब जेन जी और सरकार दोनों को नंदन नीलेकड़ी से उम्मीद है।
8: हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: तो नंदन नीलेकणी के कंधों पर देश की परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ाकर जेन जी का भरोसा जीतने की जिम्मेदारी है। और दूसरी बड़ी चुनौती डिग्री बनाम स्किल वाली होगी, क्योंकि अब दुनिया भर के देशों में डिग्री से ज्यादा स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस हो रहा है। भारत जैसे बड़े देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाओं में 20-20 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं, और ऐसे में इतने बड़े वर्ग के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करना बड़ी चुनौती है जो पूरी तरह से लीक प्रूफ हो। लेकिन सवाल वही कि नंदन नीलेकणी पर प्रधानमंत्री को इतना भरोसा क्यों है?
8: फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है।
1: नंदन नीलेकणी को भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पितामह कहा जा सकता है, जो आईटी कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक रहे। साल 2009 में उन्हीं के नेतृत्व में आधार कार्ड की योजना देश में शुरू हुई, जिसमें आगे जाकर मोदी सरकार ने मोबाइल और बैंक खातों को जोड़कर डिजिटल क्रांति कर दी। यूपीआई से जुड़ी समिति का भी नेतृत्व उन्होंने किया और भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल गया, वो भी सिर्फ 10 साल में।
8: अब उसको प्रथम गांव कहते हैं, अब हम उसको लास्ट विलेज नहीं कहते, फर्स्ट विलेज कहते हैं।
9: जी।
8: तो वहां आपने यूपीआई किया?
9: जी सर, वहां में मैंने यूपीआई किया।
1: जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति ने पेमेंट करने का तरीका भारत में हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सरकारी योजनाओं में होने वाला भ्रष्टाचार और बिचौलियों की दखल काफी हद तक कम हो गई। अब नंदन नीलेकणी के कंधों पर सरकारी पैसे की लीकेज रोकने की तरह पेपर लीक रोकने की भी जिम्मेदारी है।
8: जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं।
1: दिलचस्प बात यह है कि नंदन नीलेकणी ने साल 2014 में कांग्रेस के टिकट पर बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा। हालांकि इन चुनावों में उन्हें बीजेपी के अनंत कुमार ने हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी, जिसने भारत को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे कर दिया, वो भी सिर्फ 10 साल में। इस बात का लोहा सारी दुनिया मानती है।
10: 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today, the same vendor accepts payments on his phone, instantly. Instantly, for free, from anyone in the country. That is not just a tech story. That is a civilization story. And India built something that no other country in the world has built. A digital identity for 1.4 billion people.
1: नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में बनी टास्क फोर्स में पूर्व इसरो चीफ से लेकर आईआईटी के निदेशक तक शामिल हैं, जिनके सामने एक चुनौती ये भी होगी कि कैसे परीक्षा को लेकर छात्रों का मानसिक तनाव कम किया जाए, कैसे कोचिंग पर निर्भरता कम की जाए, और ये तभी मुमकिन होगा जब शिक्षा सबके लिए सुगम और सस्ती होगी। इस लक्ष्य को सरकार तकनीक के ज्यादा इस्तेमाल से पूरा करना चाहती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपीआई जैसी क्रांति करने में अहम भूमिका निभाने वाले नंदन नीलेकणी पेपर लीक को रोकने के लिए क्रांतिकारी प्लान बनाकर सरकार को देंगे।
6: इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
13: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग. यू सी इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
14: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
15: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
16: Jack, you're killing me.
15: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free. Beautiful.
17: बहुत ही दुखद विषय है. कुछ समय पहले एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है. मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है. देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है. खुद सीजेपी ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई. मगर यह कहना आज कि AK-47 में, बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है, कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है, और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं. यह बहुत ही आपत्तिजनक है.
18: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste.
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
4: continue to face political pressure to reach a peace deal,
3: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
0: Complete oral health ka sach.
5: शेयर बाजार में इस समय सबसे ज्यादा हलचल प्राइमरी मार्केट में देखने को मिल रही है। इस हफ्ते एक साथ कई कंपनियां आईपीओ के जरिए निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते बाद भी ये रफ्तार थमने वाली नहीं है। दरअसल अगस्त में भी कंपनियों की लंबी पाइपलाइन तैयार है, यानी निवेशकों के लिए आने वाले दिनों में प्राइमरी मार्केट लगातार व्यस्त रहने वाला है। इस हफ्ते आने वाले 9 आईपीओ का लक्ष्य 11,707 करोड़ जुटाना है। वहीं 7 कंपनियां इस वीक में शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अगस्त में भी 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों की बाजार में एंट्री की तैयारी है। जानकार बता रहे हैं कि लगातार बढ़ती कारोबारी गतिविधियां दिखाती हैं कि कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए इक्विटी मार्केट पर पहले से ज्यादा भरोसा जता रही हैं। आईपीओ बाजार में बढ़ती रौनक के पीछे केवल एक वजह नहीं है। जिन कंपनियों की विस्तार योजनाएं तैयार हैं, वो बैंकर्स की जगह शेयर मार्केट के जरिए पूंजी जुटाना चाहती हैं। वहीं हाल के महीनों में कई सफल आईपीओ के बाद कंपनियों का भरोसा भी बढ़ा है। बेहतर निवेशक भागीदारी ने भी इस रुझान को मजबूती दी है। यही वजह है कि मेन बोर्ड के साथ साथ एसएमई प्लेटफॉर्म पर भी लगातार नई कंपनियां दस्तक दे रही हैं। आने वाले हफ्तों में जिप्टो, शिप रॉकेट और ट्रू होम फाइनेंस जैसी कंपनियों के भी बाजार का रुख करने की तैयारी है, जिससे प्राइमरी मार्केट की रफ्तार आगे भी बनी रह सकती है। हालांकि ज्यादा आईपीओ आने का मतलब ये नहीं कि हर इशू निवेश के लिहाज से बेहतर हो। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निवेश इससे पहले कंपनी के कारोबार, उसकी कमाई, कर्ज, वैल्यूएशन और जुटाई जा रही रकम का इस्तेमाल किस काम में होगा, इन सभी पहलुओं को समझना जरूरी है। महज लिस्टिंग गेन की उम्मीद में लिया गया फैसला हर बार फायदे का सौदा साबित नहीं होता। ऐसे में निवेशकों को फ्रेश इशू बनाम ओएफएस, प्रमोटर होल्डिंग, रेवेन्यू और प्रॉफिट के ट्रेंड को बारीकी से देख समझ कर ही निवेश के बारे में सोचना चाहिए। इस हफ्ते 9 नए आईपीओ और 7 लिस्टिंग के साथ प्राइमरी मार्केट पूरी रफ्तार में रहेगा। वहीं अगस्त के लिए भी मजबूत पाइपलाइन संकेत दे रही है कि कंपनियों की फंड जुटाने की योजना फिलहाल तो धीमी पड़ने वाली नहीं है। ऐसे में आने वाले हफ्तों में निवेशकों के सामने विकल्प बढ़ेंगे, लेकिन निवेश का फैसला कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन और जोखिम को ध्यान में रखकर ही लेना बेहतर होगा। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

शोधन बिल पर दोपहर 2 बजे से लोकसभा में चर्चा बहस में भाग लेंगे कांग्रेस के 5 नेता। राहुल, प्रियंका, शशि थरूर होंगे मुख्य वक्ता। समाजवादी पार्टी से बोलेंगे अखिलेश। सीजेपी प्रदर्शन में पुलिसी एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में जारी है सुनवाई। पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन के इस्तेमाल का मुद्दा उठा, आंख की रोशनी जाने का दावा। अदालत सुन रही है दोनों ही पक्षों की दलील। मंगल मिलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री, लेकिन नहीं हुआ संबोधन। पीयूष गोयल और ललन सिंह ने दिया विभागों का प्रेजेंटेशन। बैठक में नहीं आए धर्मेंद्र प्रधान। आज ओडिशा में आरएसएस के मंच पर रहेंगे मौजूद।

माफी कहा, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रिमूव हो गया था पोस्ट, बाद में किया गया बहाल। मेटा के ग्लोबल हेड को सरकार ने किया तलब। पीओके में पाकिस्तानी सेना ने फिर से किया अत्याचार के इंतहा। प्रदर्शनकारियों पर मुनीर आर्मी ने की अंधाधुंध फायरिंग। अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर। पूरे इलाके में इंटरनेट बंद।

0: बचे 12 रिपोर्ट आप देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत सरकार और विपक्ष के बीच में बचे घमासान की। विपक्ष और सरकार के बीच में संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध लेकिन अब खत्म होने जा रहा है और आज लोकसभा में दोपहर 2 बजे एंटी पेपर लीक बिल उस पर चर्चा शुरू होगी। 8 से 10 घंटे इस पर चर्चा हो सकती है। बिल पर चर्चा के बाद मतदान भी होगा। इस बिल में केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं, कड़े प्रावधान इसमें किए हैं। इसमें 10 साल की सजा, 10 करोड़ के जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। एनडीए के स्पीकरों की लिस्ट तैयार है। एनडीए बिल पर बोलने के लिए युवा सांसदों को आगे करने वाला है। सरकार की ओर से अधिकांश वक्ता युवा ही होंगे। बीजेपी से बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या बोलेंगे। वहीं एनसीपीआई और बागियों की तरफ से सैनी घोष बोलेंगे, मिताली बाग बोलेंगे। टीडीपी से लाभुश्री कृष्ण देवरायलू, जेडीयू से ललन सिंह बोलेंगे, शिवसेना से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे बोलेंगे, एनसीपी से सुनील तटकरे बोलने वाले हैं और अपना दल से अनुप्रिया पटेल अपनी बात रखेंगे। एलजेपी रामबेला से अरुण भारती का नाम शामिल किया गया है।
1: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, आज और निवेदन कर रहा हूं मैं, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए।
0: हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, बहस की शुरुआत हो रही है, सत्ता पक्ष अपनी जो युवा वाली स्ट्रैटेजी है उसे अपना रही, इसके पीछे की वजह क्या, जेंजी तक संदेश पहुंचाना, और ऑपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी?
2: देखिए, अपोजिशन की स्ट्रेटेजी साफ है कि वो भी अब इस चर्चा में भाग लेना चाहता, वो ये संदेश कतई नहीं चाहता कि आम युवाओं के बीच में जाए जब पेपर लीक जैसे मामले हो और उससे जुड़े हुए जो कानून है उसको और मजबूत करने के लिए जो संशोधन बिल लाया गया है उस पर चर्चा ना हो। और इसी चर्चा के दौरान जो है विपक्ष ये जरूर चाहेगा कि सरकार को घेरे, किस तरीके से जो है वो पैलेट गन का यूज किया गया, लाठी चार्ज किया गया, टीयर गैस जो है उसका यूज किया गया, बिहार के सिवान में जो है AK-47 लेकर का दृश्य जो देखने लायक है, जो प्रधानमंत्री जो पुलिस कर्मी लेके भागे, तो कहीं ना कहीं ये इन सारी चीजों पर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा और लगातार पेपर लीक जिस तरीके से हो रहे हैं उस पर विपक्ष को घेरेगा और साथ ही साथ ये कोशिश यही रहेगी कि सरकार से इन सब चीजों के जवाब लिए जाए और ये चर्चा जो है वो लगभग 8 से 10 घंटे जो है वो चल सकती है।
0: बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा से पहले आज एनडीए की अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई एनडीए की मंगल मिलन में बैठक में 2 मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन दिया है। इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान शामिल नहीं हुए। धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ओडिशा में है।
3: आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में 4 बड़ी घटनाएं हुई। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय दल को संबोधन नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद आज इस बैठक में नहीं पहुंचे, वो एक किताब विमोचन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उड़ीसा गए हैं। और एनसीपीआई यानी टीएमसी के 20 बागी सांसद जो हैं वो आज एनडीए की बैठक में पहुंचे जहां उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एफटीए को लेकर एक प्रेजेंटेशन दी और दूसरी प्रेजेंटेशन जो है वो ललन सिंह के द्वारा फिशरी को लेकर दी गई है। कैमरामैन नासिर खान के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल होने वाले 20 सांसद भी शामिल हुए। एनसीपीआई की सायोनी घोष ने बताया कि बैठक में आज क्या हुआ।
4: आज तो मैंने पहली बार एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लिया और बहुत ही एनरिचिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक मीटिंग थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पे उपस्थित थे, गृहमंत्री जी थे, दूसरे माननीय मिनिस्टर्स भी थे। आज एफटीएस पे विस्तारित रूप से आलोचना की गई और उसके साथ ब्लू इकोनॉमी जो है हमारे देश में बढ़ती हुई एक इकॉनमी, उस सेक्टर पे भी प्रेजेंटेशन दिया गया। अच्छा लगा मुझे, सकारात्मक आलोचनाएं हुई और आज तो यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया गया था कल, हम चर्चा करेंगे आज 6 दिन बाद संसद चलने वाला है।
0: एनडीए पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की भी रणनीति पर चर्चा की। आज इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्ष ने छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की ओर से ये मांग उठाई गई। विपक्ष की इस मांग पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जब लोकसभा में बिल पर चर्चा होगी तब सभी मुद्दे उठाए जा सकते हैं।
5: संसद में लगातार चल रहा गतिरोध अब स्पीकर के हस्तक्षेप से सुधरता हुआ कुछ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष अब चर्चा के लिए राजी हो गए हैं, 2 बजे से पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले विपक्ष की एक अहम बैठक हुई 10 बजे, जिसमें यह तय किया गया कि अगर अमित शाह से जवाबदेही मांगनी है तो बिल की चर्चा के दौरान ही पैलेट गन से लेकर AK-47 और लाठीचार्ज पर जवाबदेही मांग ली जाएगी। और इसीलिए विपक्ष, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी दल चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े बड़े नेता डिबेट में शिरकत करेंगे। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से अब एनडीए ने विपक्षी दलों को घेरना भी शुरू कर दिया है। पंजाब में हुए पेपर लीक के मुद्दे पर आज एनडीए के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर भी उन्होंने सवाल उठाए।
6: नीट पेपर लीक के बाद अब पंजाब में जिस तरह से पेपर लीक हुए उसकी गूंज संसद में सुनाई दी। आज बीजेपी के सांसद, जिसमें सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल और कई अलग अलग सांसद मौजूद थे बीजेपी के, उन्होंने पंजाब में हुए पेपर लीक को लिखा जो मुद्दा है वो संसद के मकर द्वार के सामने उठाया। स्वाति मालीवाल ने यह तक कहा कि पिछले कुछ दिनों में पंजाब में 6 पेपर लीक हुए, लेकिन भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध ली है। इसी मांग के दौरान एक बात और कही गई कि अब पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें। आपको बता दें कि इस्तीफे की मांग तब उठ रही है जब केंद्र में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, यानी कि अब नीट पेपर लीक पर जो विवाद हुआ था अब वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है उस तरफ जा रहा है, जहां पर बीजेपी इस पूरे मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है और साथ साथ अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान से लगातार जवाब मांग रही है। देखना यह होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी चुप्पी कब तोड़ती है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक।
0: आम आदमी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने वाले राज्यसभा सदस्य ने दोहरे मापदंड को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए।
7: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 पेपर लीक हुए हैं, मैसिव स्तर पे चीटिंग कराई गई है और अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल जो पंजाब के सुपर सीएम है, उन्होंने अभी तक इस बात पे चुप्पी ठानी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पूरा टाइम नशे में डूबे रहते हैं, वो ये कह रहे हैं ये झूठ है, जबकि ये वो जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली झूठ है। अरविंद केजरीवाल ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, बहुत सारा उसको फंड दिया, अपने सारे उनके ही सहयोगियों ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, सोशल मीडिया पर जमकर उन्होंने पैसों से पेड कैंपेन करवाए और एक देश में माहौल बनाने की कोशिश करी गई कि अकाउंटेबिलिटी हो एजुकेशन के ऊपर। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी के खुद के स्टेट पंजाब की बात आती है तब वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट फेसबुक से जुड़ी हुई, जहां पर पीएम मोदी का एक वीडियो हटाया गया था और वीडियो हटाने के मामले में भारत सरकार ने अब सख्ती दिखाई है। मेटा के ग्लोबल हेड को सरकार ने समन भेजा है। उधर पीएम मोदी के पोस्ट हटाने के मामले में मेटा की तरफ से माफी भी आई है। मेटा ने अपनी सफाई में कहा था कि टेक्निकल गड़बड़ी के चलते पीएम मोदी का वीडियो हटा दिया गया था।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया ताकि वो युवाओं से, बच्चों से डायरेक्ट बातचीत कर सकें। इसको देर रात अपलोड किया गया, लेकिन किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये जो वीडियो है ये कुछ समय तक इंस्टाग्राम पर अवेलेबल नहीं था। सरकार ने एकदम साफ शब्दों में अब मेटा से ये सवाल पूछा है कि आखिरकार आप हमें बताइए कि जो टेक्निकल ग्लिच की आप बात कर रहे हैं वो टेक्निकल ग्लिच है तो है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो के 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए थे, लेकिन सरकार का कहना है कि आप सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। मेटा को सरकार ने साफ कर दिया है कि एक स्टेटमेंट से ये बात खत्म नहीं होगी। मेटा के हेड, इंस्टाग्राम के हेड को समन किया गया है और उनसे विस्तार के अंदर जवाब मांगा गया है कि आखिरकार वो टेक्निकल ग्लिच क्या था जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कुछ घंटों के लिए प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रहा था।
0: लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा की तैयारियां। इसी बीच में छात्र आंदोलन की अगुवाई करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी। सीजेपी की ओर से कहा गया कि अगर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई रुकी नहीं, उन पर दर्ज केसेस वापस नहीं लिए गए, फायर वापस नहीं हुई, तो फिर देशव्यापी आंदोलन शुरू हो जाएगा। सीजेपी का आरोप है कि 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्रियों यानी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ हुए समझौते का सरकार उल्लंघन कर रही है। सीजेपी का कहना है कि सरकार ने आंदोलन वापस लेने के बदले प्रदर्शनकारियों पर किसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई नहीं करने का भी भरोसा दिया था, लेकिन अब इसके उलट छात्रों और वॉलंटियर्स को निशाना बनाया जा रहा है।
9: कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर हुए छात्र आंदोलन में पुलिस कार्रवाई में जिन छात्रों के ऊपर FIR दर्ज की गई है, क्या उन छात्रों की के ऊपर से FIR वापस की जाएगी? कॉकरोच जनता पार्टी के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, क्या वहाँ भी इस मामले की चर्चा होती है, क्योंकि बिहार और असम सरकारों ने ये घोषणा कर दी है कि वो छात्रों के खिलाफ जो आरोपी छात्र हैं या जिन छात्रों ने प्रदर्शन किए, पुलिस पर हमले किए, उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ से दोनों तरफ से FIR दर्ज हैं और पुलिस अधिकारियों ने भी ये कहा है कि छात्रों ने उन पर हमले किए, और उधर बिहार में AK-47 लिए हुए एक पुलिसकर्मी वहां पर दिखाई पड़ा, दिल्ली में भी एक पुलिसकर्मी ऐसा दिखाई पड़ा जिसने 7 फायर पैलेट गन से किए थे जिसमें छात्र घायल हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि उन्होंने चेहरा रिकॉग्निशन करने वाले कैमरे से ये देखा है कि उसमें लगभग 1,25,000 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड हैं और लगभग 800 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोपों में मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीच का रास्ता क्या निकलता है।
0: सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने आज तक साथ खास बातचीत में कहा कि कई छात्रों पर प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से FIR की जा रही है।
10: ये बात कही जा रही है कि जो पुलिस एक्सेसेस हुए हैं स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स पर, उस चीज पर क्या आप भी चाहते हैं कि उस पर क्लैरिटी रहे? क्या आपको इस तरह के स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि उन पर FIR अभी हो रही है?
11: जी बिल्कुल, अब देखिए पुलिस ब्रुटैलिटी पे भी होनी चाहिए चर्चा। साथ साथ आपको पता होगा जो जेपी नड्डा जी थे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फाइनल टॉक्स था जिसमें रेजिग्नेशन का भी एक्सेप्ट हो गया था डिमांड, एंड साथ साथ जो दूसरे दो मुख्य डिमांड थे कि FIR नहीं होंगे किसी भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, जो FIR है वो विड्रॉ होंगे, एंड साथ साथ फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ किसी भी चीज के लिए, वो उसके लिए जो गारंटी थी एंड एक पत्र आना था गवर्नमेंट से, वो कल ड्यू है। लेकिन अभी जितना हमें रिपोर्ट्स मिल रहा है पूरे देश भर से, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, इन तीनों जगह से हमें पता चल रहा है कि काफी ज्यादा क्रैकडाउन हो रहा है, बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, मास FIR फाइल हुए, बिहार में जैसे 500 FIR फाइल हुए हमें पता चला है, एंड बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लगाए गए हैं। तो देखिए वो जो गारंटी सरकार ने दिया था हमें, उस पे सरकार को अमल करना चाहिए। दे शुड ऑनर द वर्ड दैट दे हैव गिवन टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री। हम तो बहुत क्लियर है कि हमें जो गारंटी दिया है वो सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं दिया है, आपने देश के वो लाखों लाखों युवाओं को दिया है जो रोड पे उतरे थे। अगर आप उस पे अमल नहीं करते हैं तो फिर युवाओं को फिर से सोचना पड़ेगा कि फिर से उनको क्या रोड पे आने का आवश्यकता पड़ेगा।
0: इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर कंगना रनौत के बयान पर रेणुका चौधरी ने पलटवार किया है। रेणुका चौधरी ने कंगना की सोच पर सवाल उठाए। दरअसल कंगना ने अपने बयान में कहा था कि मैंने अपने जीवन में इतना अटपटा कुछ नहीं देखा, इतना भद्दा कुछ नहीं देखा, इन्हें किसने जन्म दिया, इन्हें कौन पाल पोस रहा है?
12: कंगना रनौत कहती है कि जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थीं वो पढ़ाई में भी अच्छी नहीं है और गटर जनरेशन इनको मैं कहूंगी, क्योंकि अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती।
13: तो इनको हाउसवाइफ बनने का सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन कौन सी है, मैं पूछूं कंगना जी से, किसने कहा कि आप बहुत अच्छे हाउसवाइफ बन सकते हैं? और ये गटर से जो निकले हैं खुद वही तो पहचान सकते हैं कि गटर से कौन आए कौन नहीं आए। बहुत अफसोस की बात है एक महिला होते हुए ऐसे लिख रही है और ये सोचती है कि इसके वजह से उनकी तारीफ होगी और ये पार्लियामेंट में ये सरकार इनकी साथ देगी। बहुत जल्दी समझ में आएगी महिलाओं के साथ भाजपा क्या करती है।
14: मैम देखा था हम लोग ने कि छात्राओं ने किस तरह से आंदोलन लीड किया, सारी महिला छात्रों की, उनकी भाषा पे शायद टिप्पणी कर रही है कि गटर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है गटर से।
13: अगर सांसद में आके आप ऐसा बात कर रहे हैं तो तो आप कौन सी उम्मीद रख रहे हैं युवाओं से? आप इसे तो देख के सीख रहे हैं।
5: क्या लगता है मिसोजिनिस कमेंट नहीं है मैम? अच्छी हाउसवाइफ नहीं बन सकती इस तरह की बात कहने के की
13: वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे जिम्मेदारी ऐसे बातें कर रही है और इसके परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा।
0: बात अब बिहार की करते हैं। बिहार के बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव का प्रचार आज शाम से थम जाएगा। ये सीट नितिन नवीन के पद छोड़ने के बाद से खाली हुई है, लिहाजा बीजेपी यहां पर जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर के मैदान में होने से बांकीपुर की लड़ाई अभी और दिलचस्प बनी है। एक दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी यहां बांकीपुर में रोड शो करके प्रचार किया था।
15: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार आज शाम थक जाएगा। बीजेपी, जनसुराज पार्टी और आरजेडी ने आखिरी दिन भी प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो अपील भी सामने आया है। प्रशांत किशोर भी पिछले कई सप्ताह से डोर टू डोर कैंपेन पर जोर दिए हुए हैं और तेजस्वी यादव भी विदेश से वापस पटना आने के बाद लगातार रोड शो कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बांकीपुर की जनता 30 जुलाई को किसको वोट करती है और इसका नतीजा जब 3 अगस्त को सामने आएगा तो पता चलेगा कि बीजेपी के इस 35 साल पुराने गढ़ में आखिर किसने बाजी मारी है।
0: बांकीपुर का क्या है मिजाज? आज तक ने बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से खास बातचीत की और आपको ये बता दें कि बांकीपुर जो सीट है नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद से खाली हुई है।
16: नितिन जी, ये आपका घर है, आप यहाँ रोड शो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब रिस्पॉन्स लगता है जीत मतलब उसी तरह होगी, बड़ी होगी?
17: देखिए, जिस प्रकार से हम लोग का लंबा संबंध इस क्षेत्र के लोगों के साथ परिवार का भाव पड़ा है, पिताजी स्वर्गीय नवीन सिन्हा ने जो संबंध बनाया आज वही संबंध मेरे साथ लोगों का बना रहा और आज उन्हीं के आशीर्वाद के बल पर मैं आज पार्टी का इस प्रकार का नेतृत्व कर पा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में नीरज सिन्हा के प्रति भी वही विश्वास और समर्थन 30 जुलाई को जनता का देखने को मिलेगा। आज जो समर्थन करने जनता सड़कों पे उमड़ी है, मुझे पूरा विश्वास है कि 30 जुलाई को वही आशीर्वाद और स्नेह एक सामान्य कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को भी बांकीपुर की जनता देगी। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे सभी एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने बांकीपुर में और बिहार का विकास का संकल्प लिया है, जनता उस संकल्प के साथ है।
16: आपने जब भी चुनाव लड़ा हमने देखा है, लोग कहते हैं घर का लड़का कोई चुनाव लड़ा हो, अब आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको भरोसा है, आपने सबसे निचले पायदान के वर्कर को उतारा, उम्मीदवार यहाँ बनाया, क्या उससे बड़ी जीत होगी जो नितिन नवीन को अब तक बांकीपुर की जनता देती
17: रही? स्पष्ट रूप से कहूंगा, बांकीपुर की जनता दिखाएगी देश के लोगों को कि एक सामान्य कार्यकर्ता को किस प्रकार से ताकत और समर्थन लोगों का मिलता है। भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता भी सेवा के भाव से काम करता है और जनता उसको आशीर्वाद देती है।
16: तेजस्वी यादव भी कैंपेन कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, प्रशांत किशोर भी मैदान में है, बड़ी चुनौती दे रहे हैं और सीधे आप पर निशाना है उनका?
17: मेरा उनका हर निशाना मेरे प्रणाम करता हूं और कहता हूं जनता के साथ जुड़िए, सब इस तरह के दावे और प्रतिदावे का कोई मतलब होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो समर्थन जनता का दिख रहा है वो निश्चित रूप से 3 अगस्त को फिर से एनडीए का कमल, भाजपा का कमल बांकीपुर की जनता खिलाएगी।
0: 12:12 रिपोर्टर में अब अगली खबर पीओके से। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा बलों की फायरिंग में अब तक 20 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। रावलकोट में विरोध प्रदर्शन के लिए स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे थे, तभी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उन पर गोलियां चला दी जिसमें अब तक 20 लोगों की जान चली गई। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो गया है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, कई इलाकों में यह बारिश हुई है और इस बीच मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आज और कल तक बारिश का यह दौर लगातार देखने को मिलेगा जिससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी।
18: दिल्ली एनसीआर को भी उमस से राहत मिली है और सुबह से लगातार तेज बूंदाबांदी हो रही है। आसमान में बादलों का ये काला रंग बता रहा है कि दिल्ली एनसीआर को न सिर्फ उमस भरी गर्मी से राहत मिली है बल्कि मौसम विभाग ने दिल्ली और ज्यादातर दिल्ली के इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया। इसलिए कई इलाकों में तेज बारिश सुबह से हो रही है, कहीं पर रुक रुक करके, और अगर ऐसा होता है तो लो लाइन इलाकों में जो है जल जमाव का खतरा भी बना हुआ है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में जहां पर डीप डिप्रेशन की वजह से पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, तो दिल्ली एनसीआर में भी बीते कुछ दिनों से जो उमस भरी गर्मी थी आज उससे काफी राहत मिली है। झमाझम बारिश सुबह से हुई है और ऐसे में भी दोपहर में भी अगर आप देखेंगे तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में काले बादलों का जो ये घुमड़ना है वो भी भरी दोपहर में, और बरसात एक बार फिर जो है दिल्ली एनसीआर में फिर से दस्तक दे रही है।
0: 12 बजे 12 रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट देहरादून से। देहरादून में आपत की बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि साल भर में करोड़ों की लागत से तैयार हुआ टॉस नदी का नव निर्मित पुल जो है, आप उसकी हालत देखिए, ये फुफंती नदी में समा गया, एक तरीके से जवाब दे गया। और नंद की चौकी प्रेम नगर में ये पुल का बड़ा हिस्सा अचानक धंसकर नदी में जा समाया, पुल के बीचों बीच विशाल गड्ढा बन गया। इस खौफनाक मंजर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर हादसे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल यातायात रोका, पुल पर बैरिकेडिंग की गई ताकि लोग न जाएं, आवाजाही को किसी तरह से रोका जा सके।
19: बीती रात से भारी वर्षा की वजह से देहरादून के कई क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिल रहा है, और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 16 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल जो है, या फिर नए पुल का अप्रोच जो है, वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। और देखिए कितना बड़ा ये पिट होल यहाँ पर बना है, जिसकी वजह से आम लोगों को यहाँ पर रोका गया है और पुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये क्षेत्र देहरादून के प्रेम नगर को विकास नगर और हिमाचल से जोड़ता है। लोगों को उम्मीद थी कि अब नए पुल से राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत कुछ ही दिन की थी, और ये जैसे कि एक बड़ा यहाँ पर पिटहोल देखा जा सकता है बन गया है, उस वजह से ये पुल अब एक और बार बंद हो गया है। पिछले साल आई आपदा की वजह से ये पुल पूरी तरीके से टूट गया था, और अब इसको रिपेयर करने का काम फिर से एक और बार शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जो पुल 16 करोड़ रुपए की लागत से बना था वो 16 दिन भी नहीं टिक सका।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब खबर खेल जगत की। श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में 2 खिलाड़ियों को पहली बार जगह मिली है। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में डेब्यू करने वाले गुरनूर बरार और मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में मौका मिला है।
20: श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम को अगले महीने श्रीलंका में ही 2 इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच खेलने हैं, और चूंकि श्रीलंका की कंडीशंस ऐसी होती है जहां पर स्पिनर्स आपको ज्यादा मदद देते हैं, इसीलिए भारतीय सिलेक्टर्स ने स्पिन हैवी साइड को चुना है। अगर हम इस पूरी टीम की बात करें तो शुभमन गिल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, उप कप्तानी का जो भार होगा वो केएल राहुल के पास होगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह की अवेलेबिलिटी। जसप्रीत बुमराह को चोट लगी थी इंग्लैंड में, और उसके बाद उनको इस स्क्वाड में सब्जेक्ट टू फिटनेस कैस्टिक के साथ डाला गया है, लेकिन उम्मीद यह की जानी चाहिए कि सीरीज के शुरू होने के पहले जसप्रीत बुमराह फिट हो जाए। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर, जो कि पहले टेस्ट मैच से बाहर है, उनको भी सब्जेक्ट टू फिटनेस का एस्ट्रिक्स मिला है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि 4 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम आ जाएगी, जिसमें रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानस उतार और सारण जैन का भी नाम शामिल किया गया है। ये सीरीज हर मायने में भारतीय टीम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये देखना बड़ा जरूरी होगा कि क्या अफगानिस्तान के बाद जो टेस्ट मैच में हमें जीत मिली थी वो श्रीलंका में भी जारी रहती है या नहीं।
0: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
22: In association with
23: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
24: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
21: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। In association with
23: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
3: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

बिल पर दोपहर 2 बजे से लोकसभा में चर्चा, 6 से 10 घंटे तक होने वाली बहस में कांग्रेस की ओर से बोलेंगे राहुल, प्रियंका, शशि थरूर, समाजवादी पार्टी से भाग लेंगे अखिलेश। 20 जुलाई के प्रदर्शन में पायलट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस ने कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी, सीजेपी के वकील ने की दोषी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन की मांग, आग की रोशनी जाने का दावा भी। मंगल मिलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री लेकिन नहीं हुआ संबोधन, पीयूष गोयल और ललन सिंह ने विभागों का दिया प्रेजेंटेशन, बैठक में नहीं आए धर्मेंद्र प्रधान, आज ओडिशा में आरएसएस के मंच पर मौजूदगी। फेसबुक से पीएम मोदी के पोस्ट हटाने के मामले के मामले, मेटा की माफी, कहा तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रिमूव हुआ था पोस्ट, बाद में किया गया बहाल, मेटा के ग्लोबल हेड को सरकार ने किया तलब। पीओके में पाकिस्तानी सेना ने फिर से किया अत्याचार के इंतहा, प्रदर्शनकारियों पर मुनीर आर्मी ने अंधाधुंध फायरिंग की, अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर, पूरे इलाके में इंटरनेट बंद।

अब शुरुआत करते हैं यूपी एक्सप्रेस वे की। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। यूपी सरकार ने नौकरी बचाने का भरोसा दिया। यूपी के 69,000 शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज। सरकार बोले कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। सपा का आरोप है 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने आरक्षित वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ किया। नौकरी बचाने की यूपी सरकार के हलफनामे पर सियासी घमासान।

नोएडा की गार्डन ग्लोरी सोसाइटी के बेसमेंट में लगी आग, 3 कारें चल गई, कोई जनहानि नहीं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़, ओला उबर कैब लूटने वाले 2 बदमाश पैर में गोली लगी, गिरफ्तार हो गए। प्रयागराज छात्र प्रदर्शन का मामला हंगामा और तोड़फोड़ में 10 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की आगे की कार्रवाई। बिजनौर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, फिर पलट गई, हादसे में 3 लोग घायल। बिजनौर में लगातार बारिश से जल भराव, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवागमन में परेशानी।

0: और सीजेपी के आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको देते हैं और यूपी से यह बड़ी खबर है, जहां पर प्रयागराज में सीजेपी के आंदोलन के दौरान पिछले शनिवार को हुए प्रदर्शन में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस प्रदर्शन के दौरान सिविल लाइन्स इलाके में कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई, उपद्रव हुआ था, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को निशाना बनाया था। इनमें कुछ वाहनों पर भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। घटना के बाद दो बीजेपी नेताओं की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू की थी। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, वायरल वीडियोस और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर इन आरोपियों की पहचान की और इनमें से 10 आरोपियों को गिरफ्तार करके अभी जेल भेज दिया है।
1: 25 तारीख को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जो पत्थर गिरजा घर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान कुछ उपद्रवी तत्व भी उसमें शामिल हुए थे और उनके द्वारा पब्लिक की कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और उनके संबंध में जो गाड़ी के ओनर्स थे उनके द्वारा थाना सिविल लाइन्स में अब तक 3 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। उसमें उपद्रवियों के जो चेहरे हैं वो वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उनकी जानकारी की गई थी। अब तक टोटल 10 ऐसे लोग जो उपद्रवी थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको रिमांड पर जल्दी भेजा जा चुका है और बाकी अन्य जो उपद्रवी हैं उनकी वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कराई जा रही है, उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाने की प्रयास किया जा रहा है।
2: अच्छा, ये जो ये अरेस्ट हुए हैं इनका बैकग्राउंड मतलब के स्टूडेंट्स थे ये मतलब
1: इनका हमने बैकग्राउंड भी चेक किया था तो ये छात्र नहीं थे और इनमें से कुछ कुछ का जैसे कोई फल या सब्जी बेचता है, कोई होटल में सफाई का कार्य करता है, कोई एक तो इसमें से एक थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, तो इस तरह के इसके बैकग्राउंड हैं और इनमें से छात्रों की दृष्टि से इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो छात्र था।
0: के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अलग अलग पेशों से जुड़े लोग शामिल हैं, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर, ओयो होटल संचालक, होटल का सफाई कर्मी, फल एवं सब्जी विक्रेता वाले, दूध बेचने वाले समेत अन्य लोग शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में शिवम कुमार यादव, अभिषेक सोनकर, अवनीश यादव, अमर यादव, कारगिल सिंह, आशीष यादव, दिलशाद, मोहम्मद सुफियान खान नाम के ये 10 लोग शामिल हैं। अब पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेजेस और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर इन उपद्रवियों की पहचान की गई और इन लोगों की संलिप्तता अब तक मिली और दूसरे जो लोग हैं उनकी अगर संलिप्तता आएगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। वहीं प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज के जिला अधिकारी के साथ मुलाकात कर छात्रों की गिरफ्तारी का विरोध किया। पीएम की बात को दोहराते हुए कहा कि छात्रों को छोड़ दिया जाए। कल ही सीजेपी ने कहा कि आंदोलन में शामिल लोगों पर मुकदमा होगा तो फिर कपिल सिब्बल उनका मुकदमा लड़ेंगे। अब देखना होगा कि इन गैर छात्रों का मुकदमा सीजेपी लड़ती है या नहीं। पेपर लीक मसले पर विद्यार्थियों का आंदोलन दिल्ली में तो सफल हुआ है, विद्यार्थियों के आंदोलन को कामयाबी की एक खबर उत्तर प्रदेश से भी आई है। यूपी के रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 अवैध इमारतों के ध्वस्तीकरण का आदेश फिलहाल अगले आदेश तक टाल दिया गया है और इसके लिए पिछले 2 हफ्तों से विद्यार्थी विश्वविद्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे।
3: यूपी के रामपुर में अली जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठे विद्यार्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि फौरी तौर पर ही सही उनकी यूनिवर्सिटी की ध्वस्त हो रही 38 इमारतें अभी नहीं ढहाई जाएंगी, क्योंकि विश्वविद्यालय की ओर से कमिश्नर को सूचित किया गया था कि अधिवक्ता के निधन के कारण 28 जुलाई को सुनवाई नहीं हो सकती थी। कमिश्नर मुरादाबाद

0: अंजनेय कुमार सिंह ने आवेदन पर विचार करते हुए 15 जुलाई को जारी किए गए आदेश को स्थगित कर दिया।
1: हम भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हैं कि अगर इस देश में और इस प्रदेश में किसी भी शैक्षिक संस्थान के खिलाफ आपका बुलडोजर चला तो बुलडोजर पहले समाजवादियों के ऊपर से गुजर के जाएगा।
2: ध्वस्त कर देना, विध्वंस कर देना, ये तो खबरें हैं। निर्माण कर देना, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये बदले की भावना की एक कार्रवाई है।
0: दरअसल आजम खान की अली जौहर यूनिवर्सिटी के ढहाने के आदेश के बाद से ही लगातार विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे। लखनऊ से लेकर उन्नाव और उन्नाव से लेकर चंदौली तक यूपी के किसी न किसी हिस्से में रोज इस मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहे थे, जिसमें विश्वविद्यालय की इमारतों को ढहाने के फैसले का विरोध हो रहा था। दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन के साथ ये मुद्दा सियासी स्कोरिंग का भी बन चुका था। पहले समाजवादी पार्टी के 28 नेताओं का प्रतिनिधि मंडल नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में जिला प्रशासन से मिलकर ध्वस्तीकरण का आदेश रद्द कराने की मांग कर चुका था। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी ठीक उसी दिन रामपुर पहुंचे, जब ध्वस्तीकरण के आदेश पर स्थगन हो गया।
3: हम लोग लगातार शुरू से, क्योंकि 15 तारीख को नोटिस इशू की, 17 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जौहर विश्वविद्यालय के साथ पूरी तरीके से सरकार गलत काम कर रही है। सरकार उनसे चिढ़कर, उनसे जो चिड़न वश के आज यहां पर ध्वस्त करना चाहती है, ये हम नहीं होने देंगे। और मैं नौजवान अपने साथी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरी ताकत साथ उन लोगों ने आज विरोध किया, हम सब लोग आए, उनको आज उनकी पहली जीत हुई है।
0: बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी लिखा कि अली जौहर यूनिवर्सिटी को नहीं ढहाने का फैसला स्वागत योग्य है। दरअसल रामपुर के जिलाधिकारी और रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध पाया था। उन इमारतों का नक्शा पारित नहीं था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को तय समय में खुद निर्माण हटाने को कहा गया था। मियाद खत्म होने पर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था, जिस पर मंडलीय कमिश्नर ने अंतरिम रोक लगाई है। हालांकि अभी इसका अंतिम फैसला बाकी है। रामपुर से आमिर खान के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: अब आगे बढ़ने से पहले यूपी से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आपको देते हैं। यूपी के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 के मेरिट लिस्ट को रद्द करके आरक्षण के नियमों के तहत सूची बनाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के बराबर अंक लाने पर उनकी नियुक्ति किस वर्ग के तहत होनी चाहिए। अब इस मामले में अहम खबर यह भी है कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो है देकर यह बताया है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्त किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। साल 2020 में नियुक्त 67,867 शिक्षक अपनी नौकरी पर बने रहेंगे और हाईकोर्ट के आदेशानुसार नए योग्य उम्मीदवारों को खाली पदों पर समायोजित किया जाएगा। 2020 में चयनित होने के बाद से कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रहेगी। नए संशोधित मेरिट लिस्ट में यदि नए अभ्यर्थी पात्र नहीं पाए जाते हैं और अगर पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें मौजूदा शिक्षकों को हटाने के बजाय रिक्त या खाली पदों पर नियुक्ति उनकी कर दी जाएगी। कोर्ट में 8,217 ऐसे अभ्यर्थियों की सूची भी सौंपी गई है जो अभी सेवा में नहीं है और इनमें नियमों के तहत पात्रों को राहत दी जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह नियम सिर्फ इसी एक भर्ती तक सीमित रहेगा और इसे भविष्य की दूसरी भर्तियों के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा।
1: 1000 भर्ती में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार एक्सपोज हो गई, उसका कोई सानी नहीं है। ये सरकार लगातार इन बच्चों के साथ खिलवाड़ करती जा रही है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ पिछले 2018 से लेकर 26 साल तक 2026 तक मतलब 8 साल से ये बच्चे धक्के खा रहे हैं, रोड पे बैठ के अनशन कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और अब आपने 8 साल सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आपने हलफनामा किया है कि इनमें से 8200 लोगों को आप रखेंगे। आप करना क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब आप मानते हैं कि 8 सालों से आपने अपने रिश्तेदारों को, अपर कास्ट के लोगों को, 8200 लोगों को अवैध तरीके से नौकरी करवाई है, तो आप क्या चाहते हैं कि हमारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भीख मांगे, रोटी के लिए तरस जाए और 8 साल जब सुप्रीम कोर्ट का आपके ऊपर हंटर चले तो आप हलफनामा करके कहें कि इन 8,000 लोगों को आप रखना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपकी सोच पे और जो अवैध रूप से आपके रिश्तेदार लोग नौकरी कर रहे हैं उनका क्या है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से मनुवादी सरकार है और आज वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सपोज हो गई है।
5: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हमेशा विद्यार्थियों के पक्ष में रही है, प्रतिभागियों के पक्ष में रही है, किसी का भी हक ना मारा जाए इसको लेकर के हमने हर संभव प्रयास किए हैं। और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा देकर के कहा है कि जिन लोगों को भी नौकरी मिल गई है उनकी नौकरी प्रभावित नहीं होगी और जिनका वास्तविक हक होगा जो कोर्ट डिसाइड करेगा उत्तर प्रदेश की सरकार उनको समायोजित करने का काम करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने कभी भी ना आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ किया है ना मेधा और प्रतिभा के साथ कोई खिलवाड़ किया।
4: चुनावी साल में यूपी में 69,000 शिक्षकों का मामला एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीतिक हमलों की दिशा भी तय कर सकता है।
6: 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे ने राजनीति को बढ़ा दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जहां बीजेपी को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का विरोधी बता रही है, सिर्फ वोट के लिए उनके हितैषी होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि वो नौजवानों के साथ खड़ी है, अन्याय किसी के साथ नहीं होने देगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पूरी राजनीति के बीच अभ्यर्थियों, चाहे वो आरक्षित हों या अनारक्षित वर्ग के, सभी को लगता है कि समय से नौकरी नहीं मिल पाना उनके साथ अन्याय है।
4: हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, हलफनामा भी यूपी सरकार दे चुके हैं, लेकिन अब कोर्ट में आज क्या होने वाला है?
7: सुप्रीम कोर्ट में आज चूंकि सरकार हलफनामा दे चुकी है, इसलिए कोर्ट इस मामले में तय करेगा कि उनके हलफनामे को किस तरह से लिया जाए। और सरकार के जवाब, सरकार ने अपना जवाब दे दिया है, ये कह दिया है कि इन शिक्षकों को हटाएगी नहीं और उन्हें नौकरी दिया जाएगा। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद कोर्ट इन तीन बातों से सहमत हो जाए और ऐसा बीच का रास्ता निकाले जो शिक्षकों को भी, जिस पर कोई आपत्ति नहीं हो, क्योंकि अधिकतर लोगों की आपत्ति उनको हटाए जाने को लेकर थी कि इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे और कहाँ नौकरी के लिए आवेदन।
4: बिल्कुल इंटरेस्टिंग। संजय, यूपी में अगले साल चुनाव है, यूपी की राजनीति में इस फैसले का कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है?
7: बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि नाराजगी इसी बात से लेकर थी, अगर नौकरी चली जाती तो इसको लेकर नाराजगी थी और सरकार भी इस बात को भांप रही थी। लिहाजा इतने दिनों से मामला चल रहा है, सरकार चाहती तो पहले भी कह सकती थी, लेकिन सरकार ने एंड टाइम पर, जब चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं, ये एक तुरंत का पता चला है जिससे लगता है कि ये शायद आगे ये कारगर रणनीति होगी।
4: बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं यूपी की चुनावी सियासत की। यूपी की सियासत में मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन की राजनीति अब तेज होती जा रही है और खासकर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही असहज हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी बार बार अखिलेश के गठबंधन में शामिल होने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ओवैसी ने एक बार फिर से कहा है कि अखिलेश उन्हें भी गठबंधन में ले लें, वरना बाद में बी टीम वाली शिकायत मत करना।
8: पिछले डेढ़ महीने में ओवैसी यूपी के चार जिलों में बड़ी रैलियां कर चुके हैं। बहराइच से बिजनौर तक और सहारनपुर से मुरादाबाद तक की रैलियों में ओवैसी के निशाने पर मोदी योगी सरकार रही है, जिसमें मुसलमानों के सवाल रहे हैं। लेकिन हर रैली के मंच से ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में घुसने की दलीलें भी दी है। इस बार फिर मुरादाबाद की रैली में ओवैसी खुलकर समाजवादी पार्टी को गठबंधन का ऑफर देते नजर आए हैं।
9: मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं, आज वक्त है बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद।
10: किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे।
8: ओवैसी पर समाजवादी पार्टी के आरोप यूं ही नहीं है। दरअसल ओवैसी यूपी में चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाके ही होते हैं, जहां 90% वोट इंडिया गठबंधन को मिलता रहा है। ओवैसी की पिछली चार रैलियां जिन जिलों में हुई हैं, वहां 2024 में इंडिया गठबंधन को सहारनपुर में 21-85% मुस्लिम वोट मिले, मुरादाबाद में 85% से अधिक वोट मिले थे, बहराइच में 78-82% मुस्लिम वोट मिले थे, बिजनौर में 75% मुस्लिम वोट मिले थे। और इन चारों ही जिलों में दूसरे नंबर पर बीएसपी थी जिन्हें मुस्लिम वोट मिले थे। ओवैसी इन्हीं जिलों पर इस बार अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है क्योंकि 2022 में सहारनपुर जिले की 7 में से 5 सीटें एसपी के पास थी, 85% वोट थे। बिजनौर की 8 में से 4 सीटें एसपी गठबंधन ने जीती, 80% वोट मिले। मुरादाबाद में 6 से 5 सीटें एसपी ने जीती, 88% वोट मिले। बहराइच में 7 में 6 सीटें और 78% वोट मिले। ऐसे में इन्हीं सीटों पर जब ओवैसी एक्टिव होते हैं तो समाजवादी पार्टी इन्हें बीजेपी की बी टीम बताने लगती है। ऊपर से ओवैसी गठबंधन का ऑफर भी शर्तों के साथ पेश कर रहे हैं।
9: अब हम दरी नहीं बिछा कर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा।
11: देखिए, उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना तरीका है राजनीति करने का, लेकिन हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा प्रतिपक्ष एक साथ होकर भी लड़ेगा तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से वो रोक नहीं सकता है।
8: ओवैसी यूपी में हर वो मुद्दा हथियाने की कोशिश करते दिखते हैं जो पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी का मुद्दा हुआ करता था। इसी में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी है। हालांकि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि दल डीएम से मिलकर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें ढहाने के खिलाफ ज्ञापन दे चुका है, लेकिन ओवैसी इसे चुनावी सियासत बताते हैं। यूपी में अभी तक ओवैसी के मुद्दे सिर्फ मुसलमानों से जुड़े नजर आते हैं, वक्फ, बुलडोजर, मस्जिद, मदरसे और मुठभेड़ों से जुड़े नजर आते हैं। हालांकि ओवैसी दलील देते हैं कि संविधान का राज कायम करने के लिए वो किसी भी दल के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: ब्रेक का वक्त हो चला है, खबरों का सिलसिला लेकिन जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
12: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
14: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। टू टैप्स लेटर, क्लेयर सेज नोप टू द चार्ज एंड वेल्स फार्गो इज ऑन द केस। However you make money work, Wells Fargo can work with that.
15: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
16: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
17: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
16: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
18: Sokudo.
19: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
20: कुछ तो बात है इस दिल में।
21: पी मार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
22: सरसों से सरसों।
23: कोई काम नहीं बचा है। जनता ने बार बार उनको जो रास्ता दिखाया है, उनको लगता है बच्चों के भावनाओं के पे ऊपर राजनीति करके वो निकल जाएंगे। और यही काम उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जो धरना का काम किया, वो क्या था, जब ऑलरेडी बात चल रही थी, वो लोग धरना पे बैठे हुए थे, एक पैरेलल खड़ा करके कि हम नहीं पीछे रह जाए, राजनीति चमकाना था। इसलिए ना जा करके चुपचाप जा करके बैठ गए खड़गे जी के घर से निकल करके बर्थडे के नाम पर।
24: बेबी बनाए थे उनका क्या हुआ, वो कमजोर थे क्या? पहले जो बनाया आपने वो कमजोर थे, जो पहले कानून बनाया वो कमजोर था, उसको इम्प्लीमेंट करानी, अगला कानून बता दिया आपने। अरे उसको तो इम्प्लीमेंट कर लेते, उसमें तो चार चीट दाखिल नहीं करी, वो मुखिया को ही वो बरी होकर के चला गया। करना कुछ नहीं है, बातें करनी है, करिए, डिलीवर करने का टाइम है, ये आपकी बातों से नहीं पेट भरेगा लोगों का।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बोलेंगे राहुल, प्रियंका, शशि थरूर समाजवादी पार्टी से भाग लेंगे अखिलेश। 20 जुलाई के प्रदर्शन में पेलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस ने कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी, 7 राज्यों समेत केंद्र को नोटिस, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और छात्रों को आदेश। फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर मीटा ने मांगी माफी, कहा तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रिमूव हो गया था पोस्ट, बाद में किया गया बहाल, मीटा के ग्लोबल हेड को सरकार ने किया तलब। दिल्ली और आसपास सुपर एक्टिव हुआ मॉनसून, कल से जारी है झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी में भर गया है पानी करंट लगने से पीएचडी स्कॉलर की मौत।

लंच ब्रेक आपके साथ हूं मैं नेहा बादम। शुरुआत करें नॉनस्टॉप 100 के साथ। लोकसभा में भारी हंगामे के साथ शुरू हुई दोनों सदनों की कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। ओम बिरला की अपील, सदन चलने दें, चर्चा और बातचीत से जाएगा अच्छा संदेश। अध्यक्ष बोले सभी के विचार सामने आए, संसद में चर्चा और संवाद जरूरी। पेपर लीक बिल पर विपक्ष की एकजुटता बिखरी। इंडिया ब्लॉक का संयुक्त विरोध नहीं। प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, बोली धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत शर्मनाक, छात्रों की आवाज दबा रही है सरकार। पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन, बीजेपी सांसदों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की। छात्रों पर पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष हमलावर, अमित शाह से बयान की मांग। पेपर लीक बिल पर दोपहर 2 बजे चर्चा, स्पीकर बोले सभी मुद्दे सदन में उठाए। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी, तकनीकी गड़बड़ी बताई वजह। मीटा का बयान, गलती से हटाया गया कंटेंट, अब किया गया बहाल, सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। सीजेपी प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीजेआई बोले स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत प्रथम दृष्टया दिखती है। पैलेट गन, लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जांच के लिए एसआईटी या हाई पावर कमिटी की मांग। सीजेआई सूर्यकांत बोले लोकतंत्र में आंदोलन जरूरी, प्रदर्शन के लिए दिशा निर्देश बनाने पर विचार जरूरी। सीजेपी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी घटनाओं की वैज्ञानिक तरीके से जांच हो, प्रक्रिया जल्द तय हो। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई और पुलिस की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कई राज्यों की घटनाओं का जिक्र। लोकसभा में आज पेश होगा पेपर लीक रोकने वाला संशोधन बिल, 8-10 घंटे चर्चा की संभावना। पेपर लीक विरोधी बिल पर एनडीए की रणनीति, बहस में युवा सांसदों को उतारेगा गठबंधन। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सवालों का जवाब देंगे नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रश्नकाल में रहेंगे मौजूद। पेपर लीक रोकने वाले बिल पर शशि थरूर बोले संसद में युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए, बहस जरूरी है। इमरान मसूद का दावा, देश का माहौल बदला है, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव से अब जेंजी को नहीं बहकाया जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एनडीए की पहली मंगल मिलन बैठक, पीएम मोदी हुए शामिल। पीयूष गोयल और ललन सिंह ने विभागीय प्रेजेंटेशन दिए, पंजाब पेपर लीक के विरोध में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। यूपी मॉडल पर सियासत तेज, प्रदर्शन में हिंसा रोकने के दावे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस का हमला, दिल्ली हिंसा के लिए केंद्र जिम्मेदार, योगी मॉडल पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी का दावा, जंतर मंतर प्रदर्शन में यूपी में बड़ी संख्या में युवा शामिल, सरकार से नाराजगी बढ़ी। 69,000 शिक्षकों का भर्ती मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, यूपी सरकार ने नौकरी बचाने का दिया भरोसा। यूपी के 69,000 शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आज सरकार बोली किसी भी की भी नौकरी नहीं जाएगी। सपा का आरोप, 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने आरक्षित वर्ग के हितों से किया खिलवाड़। नौकरी बचाने की यूपी सरकार के हलफनामे पर सियासी घमासान, विपक्ष ने साधा निशाना। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद पर कांग्रेस हमलावर, बोली सरकार ने युवाओं के साथ न्याय नहीं किया है। पेपर लीक विरोधी बिल पर बोलेंगे अखिलेश यादव, जंतर मंतर प्रदर्शन में सक्रिय रहे समाजवादी सांसद, भी विपक्ष की सूची में शामिल। विद्यार्थियों के आंदोलन का असर, रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी में 8 इमारतों के ध्वस्तीकरण पर रोक। पेपर लीक आंदोलन के बीच छात्रों को मिली राहत, आजम खान यूनिवर्सिटी में ध्वस्तीकरण आदेश टला। लखनऊ केजीएम में प्रशासन ने मुख्य गेट के पास हाजी हरमन शाह की मजार पर लगे घरेलू बिजली कनेक्शन पर आपत्ति जताई, कनेक्शन को तत्काल निरस्त करने की मांग। प्रशासन ने आशंका जताई है कि गलत दस्तावेजों के आधार पर बिजली कनेक्शन प्राप्त किया गया, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, कई क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा आने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। बारिश के बाद कई घरों में घुसा मलबा, लोगों ने छोड़े घर, राहत और बचाव में जुटा प्रशासन। देहरादून में भी भारी बारिश का कहर, 16 करोड़ रुपए से बना पुल 17 दिन में ढहा। देहरादून में टॉन्स नदी पर बने पुल में हुआ बड़ा गड्ढा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई, घाटों पर एडवाइजरी जारी की गई और लोगों से नदी किनारे सावधानी बरतने की अपील। असम में बाढ़ के बाद धीरे धीरे स्थिति में सुधार, जोरहाट सहित ऊपरी असम के कई जिलों में जलस्तर घट रहा है, राज्यभर में प्रभावित लोगों की संख्या घटी। असम के शिवसागर में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में अब भी पानी में डूबे दिखाई दिए, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की बड़ी परेशानी।
रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर, भगवान शिव की मूर्ति जलमग्न, घरों में कैद होने को मजबूर है लोग, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई तक भारी बारिश का खतरा, कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में छाया घना कोहरा, धुंध जैसे हालात। रियासी में लगातार बारिश से चेनाब नदी का बढ़ रहा है जलस्तर, सलाल डैम के खोले गए गेट, डैम का गेट खोलने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों से सतर्क रहने की प्रशासन की अपील। एमपी के खंडवा में बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, किसानों को किया सम्मानित। गुरुग्राम में मायरा भंडारी का हृदय रक्षक अभियान, लोगों को सीपीआर की सही तकनीक सिखाकर कार्डियक इमरजेंसी में जान बचाने का दिया प्रशिक्षण। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री रंगासामी ने एनसीसी के समुद्री अभियान को दिखाई हरी झंडी, कहा विकास की गति और बढ़ेगी। श्रीनगर में एसकेआईसीसी में टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा हुए शामिल। बंगाल के नौ 24 परगना में जब्त पटाखों में विस्फोट, नीलगंज इलाके में मचा हड़कंप। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में भीषण सड़क हादसा, मल्टी व्हीकल एक्सीडेंट में 2 की मौत, 5 घायल। भोपाल में शिव मंदिर को लेकर विवाद, पूर्व अफसर की बहू पर अपशब्द कहने का आरोप। बेतिया के सरकारी स्कूल में शिक्षक शिक्षिका पर आरोप को लेकर हंगामा, शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच। इटावा में शादी के 20 दिन बाद पति ने दी जान, पति ने किया आत्महत्या का प्रयास, शक के बाद हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालु की बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में कई लोग घायल, एलजी ने ली घायलों की जानकारी। हादसे के तुरंत बाद पुलिस, एसडीआरएफ, राहत दल और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर चलाया रेस्क्यू, दुर्घटना के कारणों की जांच जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार खाई में गिरी, एक ही परिवार के बच्चे समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। धनबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जेएमएम नेता हरेन चौहान के घर छापेमारी, रेड के खिलाफ समर्थकों का जबरदस्त हंगामा। नागपुर में कार की चपेट में आने से 3 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने।

वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में करीबी आए तेज गेंदबाज जस्टिस ग्रीन ने रचा इतिहास लगातार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ईरान के साथ टकराव खत्म करने को लेकर बहुत दोस्ताना बातचीत चल रही है, जल्द युद्ध खत्म होने की उम्मीद, बातचीत नाकाम रही तो फिर होंगे हमले। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा तेहरान अमेरिकी पक्ष को युद्ध और शांति का समय तय करने की इजाजत नहीं देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वो पुतिन से पूछेंगे कि क्या रूसी सैटेलाइट तेहरान को मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करने में मदद तो नहीं कर रहे। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा खास सैन्य अभियान में शामिल लोग रूस और अपनी मातृभूमि के लिए बहादुरी से लड़ रहे हैं, उन्हें पूरे देश और समाज का समर्थन हासिल है। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी कडुना राज्य के एक गांव पर हथियारबंद लोगों ने किया हमला, कम से कम 30 लोगों को मार डाला, मरने वालों में 8 बच्चे शामिल। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने जंगलों की आग से प्रभावित गिरोंडे इलाके का किया दौरा, कहा ऐसी घटनाओं का सामना कर रहे हैं जिनका अनुभव हमने पहले कभी नहीं किया। पूर्वी स्पेन के कैसलॉन प्रांत में आग से लगभग 8,500 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, 16,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अमेरिका के पूर्वी विस्कॉन्सिन में बवंडर से तबाही, कई इमारतें क्षतिग्रस्त, बुनियादी ढांचों को बड़ा नुकसान, सैकड़ों घरों में बिजली गुल, बवंडर से यातायात प्रभावित। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 100 के पार, इनमें ज्यादातर मौतें घर और छत गिरने की वजह से। अमेरिकी कंपनी जॉनसन जॉनसन ने 5.5 अरब डॉलर का समझौता किया जिससे उन हजारों मुकदमों का निपटारा हो जाएगा।

0: अब आपको दिल्ली एनसीआर में मौसम का हाल दिखाते हैं। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर चुका है। मिंटो रोड जो हर साल पानी से लबालब दिखाई देती है, एक बार फिर वैसा ही नजारा मिंटो रोड पर दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ घंटे की लगातार बारिश में दिल्ली का हाल देखिए, धीमे धीमे रेंगती हुई गाड़ियां और शाम तक आलम और ज्यादा खराब होने की उम्मीद, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था जैसे ही लगातार बारिश होती है चरमरा जाती है और ऐसा ही कुछ होना शुरू हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश यहां पर फुल फोर्स आ चुकी है। सुबह से ही घने बादल के बाद अब एक बार तेज बारिश लगातार हो रही है। मिंटो रोड से मेरे सहयोगी सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, तस्वीरें दिखाइए।
1: आप देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि सुबह 7 बजे से लगातार जिस तरीके की बारिश हो रही है उसके कई दिल्ली के इलाकों में वाटर लॉगिंग जो है वो देखने को मिली। ये तस्वीरें मिंटो अंडरपास की है, जो हर साल पानी जाया करता था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जबरदस्त वाटर लॉगिंग थी, लेकिन फिलहाल ये पानी की निकासी जो है वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। ट्रैफिक पूरी तरीके से स्मूथ होना शुरू हो गया। ट्रैफिक की आवाजाही को जो है वो रोक दिया गया था, लेकिन फिलहाल अब अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर पानी जो है वो काफी हद तक कम हुआ है। हर साल वाटर लॉगिंग के चलते मिंटो अंडरपास जो है पूरी तरीके से डूब गया करता था, ट्रैफिक की आवाजाही को बंद कर दिया था, लेकिन अगर आप देखेंगे ट्रैफिक की रफ्तार बेशक थोड़ी सी धीमी जरूर हुई हो, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या जो थी वो बरकरार थी। लेकिन फिलहाल पिछले साल के मुकाबले अगर बात की जाए तो इस बार वाटर लॉगिंग जो है वो कम नजर आ रही है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी विभाग की जो टीमें हैं, एमसीबी की जो टीमें हैं, दिल्ली पुलिस की जो टीम है, वो लगातार पूरे इलाके में आसपास आईटीओ और इसके अलावा मिंटो अंडरपास जो तमाम इलाके हैं जो कि हॉटस्पॉट है वहां पर वाटर लॉगिंग हो चुकी। फिलहाल वो स्थिति थोड़ी सी अब कम नजर आ रही है। जब ये बारिश शुरू हुई थी उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पर जबरदस्त वाटर लॉगिंग थी, उसके बाद पीडब्ल्यूडी की टीमें यहाँ पर पहुंची, पानी की निकासी जो है वो शुरू करी, क्योंकि जो नालियां थी वो पूरी तरीके से बंद थी, उनको दोबारा खोला गया है। अब पानी जो है वो पूरी तरीके से कम हुआ है और ट्रैफिक भी जो है वो धीरे धीरे शुरू रोका हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है मिंटो अंडरपास।
0: तो एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं, चाहे सस्ती कार हो या महंगी, सब एक बार बारिश के आगे मजबूर दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे कार चल रही हैं क्योंकि वाटर लॉगिंग की समस्या से दिल्ली मॉनसून में दो चार होती है और ऐसा इस बार भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बार मॉनसून का डेफिसिट बताया जा रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से बारिश हो रही है उसे ऐसा लगता है कि आज दिन भर सड़क पर हालात काफी गंभीर रहने वाले हैं।

0: तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल ये सेंट्रल दिल्ली के तीनों इलाके कनॉट प्लेस, बाराखंबा रोड, बंडी हाउस, जहां पर इस वक्त तेज बारिश हो रही है। और इस बारिश के बीच ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दरअसल कई तरह के कयास लगाए जाते हैं कि क्या वाकई दिल्ली तैयार है इस बार मानसून से निपटने के लिए, या फिर शाम तक और दोपहर में भी ट्रैफिक रेंगता हुआ दिखाई देगा। दिल्ली एनसीआर में अगले दो दिन भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो चुका है।
1: राजधानी दिल्ली में सुबह से ही कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका असर दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर है मेरे पीछे मिंटो अंडरपास की, जहां पर इस वक्त एक बार फिर से वाटर लॉगिंग जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि हर साल जिस तरीके से मिंटो अंडरपास डूब जाया करता था, वैसी स्थिति जो है वो नजर नहीं आ रही है। ट्रैफिक फिलहाल स्मूथली यहाँ पर चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी जो टीमें हैं वो दिल्ली के इन इलाकों के अंदर वाटर लॉगिंग को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले हैं उनको परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। लक्ष्मी नगर हो चाहे आईटीओ हो, वहां पर भी बड़े बड़े पंप्स के जरिए पानी को जो है वो निकाला जा रहा है, ताकि लोग परेशान ना हो। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले मिंटो अंडरपास पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से ट्रैफिक को जो है फिर से खोल दिया गया है और पूरे रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की टीमें जो है वो लगातार पानी की निकासी में लगी हुई है। कैमरा पर्सन मानसी के साथ सुशांत मेरा दिल्ली।
0: तो आपने दिल्ली का तो हाल देख लिया, अब आपको चंडीगढ़ का हाल दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के बीच करंट लगने से एक पीएचडी स्कॉलर छात्रा की मौत हो गई है। हादसा पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस का है। जानकारी के मुताबिक ज्योति नाम की छात्रा सड़क किनारे बिजली के खंभे के पास मृत पाई गई। यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में बारिश की वजह से पानी भर गया है और हादसे को लेकर छात्रों में भी आक्रोश है। यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया। इसी मौत को लेकर छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो यही वो जगह है जहां पर छात्रा मृत पाई गई। इसके ठीक बगल में एक इलेक्ट्रिसिटी पोल है, एक खंभा है, और माना यही जा रहा है कि करंट लगने की वजह से इस छात्रा की मौत हुई। भारी बारिश के बीच ये दर्दनाक हादसा, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश है। दो तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे छात्र अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस छात्रा की मौत को लेकर।
2: प्रथम है हमारे साथ एबीवीपी से, क्या कारण है प्रथम, क्या कैसे डेथ हुई?
3: आज सुबह ही क्या हुआ, एक लड़की अपने डिपार्टमेंट की ओर जा रही थी, हॉस्टल की तरफ जा रही थी।
2: लड़की थी
3: ज्योति नाम की थी, हरियाणा की थी, पीएचडी स्कॉलर थी, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहती है, 10 नंबर हॉस्टल में जो बताया जा रहा है। आज उसकी करंट लग के रोड पे ही हत्या हो गई है उसकी। एक ये हम लड़की की डेथ नहीं कह सकते, ये मर्डर है पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज के खिलाफ। और आज अब जब हमसे बात करने है, ना यहाँ पे एसडीएम है, ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एक्सीएन है, यहाँ पे अंदर चाय फरमाई जा रही है, और ये कहते हैं किसी के साथ भी हो सकता है। ये यूनिवर्सिटी का तानाशाही रवैया जो चल रहा है, अपनी अथॉरिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी मानने का, जो ये अपनी बात नहीं मान रहे उसके खिलाफ ये धरना लगाया गया है। ये कल को स्टूडेंट हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, ये बीसी ने भी इसी सड़कों से जाना है, डीएसडब्ल्यू ने भी इसी सड़कों से चलना है, वो करंट किसी को भी लग सकता है।
2: स्टूडेंट सड़क से जा रहे थे और
3: जा रही थी इमीडिएट डेथ
2: जी। स्विच या कोई तार को उन्होंने टच नहीं किया,
3: पानी के अंदर करंट था जी। आप देख सकते हैं सुबह से इतनी बारिश हो रही है, ये कोई जवाब दे ही नहीं है कि बारिश हो रही है किसका हाथ है, किसके हाथ में कंट्रोल है। ये तो यूनिवर्सिटी इतने साल पुरानी है, आपको ये कंट्रोल करना ही पड़ेगा। बारिश का मौसम में करंट लगने के चांस है, उस चीज को आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है यूनिवर्सिटी के। पंजाब यूनिवर्सिटी हमेशा ये चीज कह के भाग जाती है, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास हमारी कोई गलती नहीं है, बारिश हमारे हाथ में नहीं है, और ये किसका कंट्रोल है। फिर आप छोड़ दो अपनी अपनी कुर्सियां।
0: अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, जिस तरीके से छात्र आक्रोशित हैं, आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर, क्या वाकई वहां पर इस तरीके के हालात थे कि लापरवाही सामने आई है जिसकी वजह से छात्रा की मौत हुई है?
4: देखिए, क्योंकि मौसम जब खराब होता है तो 30 तारीख तक रेड अलर्ट है, वाटर लॉगिंग पूरे चंडीगढ़ में सुबह से है, 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ था, तो इसका रख रखाव, कहीं ड्रेनेज और बेहतर सुचारू रूप से इसको चलाना प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाता है कि कोई नंगी तारे ना हो, कोई पोल टूटा ना हो, किसी में करंट सप्लाई ना हो। तो ऐसे में जो साउथ कैंपस है सेक्टर 24 का, पंजाब यूनिवर्सिटी का UIET, तो वहां पर भी इसी कच्चे रास्ते से ज्योति जा रही थी। सेक्टर 10 से जो उसका माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें PhD स्कॉलर वो है, तो वहां से जब कच्चे रास्ते से जा रही थी वो स्लिप हुई, पोल को पकड़ा और पानी के अंदर पैर थे, वाटर लॉगिंग थी और पोल को टच करने से उसके बाद करंट लगा, उसके बाद उसकी वहां पर डेथ हो गई मौके से। तो ये लापरवाही, एक नेग्लिजेंस पंजाब यूनिवर्सिटी का इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट पिछले साल भी हुआ था, जो यूनिवर्सिटी में रहते एक एम्प्लॉय थे उनके बच्चे की जान चली गई थी इसी वाटर लॉगिंग में, स्विच बंद करते समय घर के बाहर ही। तो ये नेग्लिजेंस सुधारने की यूनिवर्सिटी को जरूरत है, ये ABVP और स्टूडेंट लीडर्स का कहना है। लेकिन ज्योति जो रिवाड़ी से है, 25 वर्षीय थी, PhD स्कॉलर थी, उसकी जान चली गई और अब यूनिवर्सिटी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहां लापरवाही रही है, किसकी नेग्लिजेंस है और उस पर कड़ा एक्शन लिया जा सके। लेकिन एक PhD स्कॉलर की, जो ज्योति रिवाड़ी से थी, उसकी जान चली गई और सुबह से ही, क्योंकि मौसम विभाग समय समय पर इत्तला करता है, लेकिन कोई इंतजाम इस तरीके से नहीं किए गए, ये स्टूडेंट जो लीडर्स हैं उनका कहना है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वक्त ही से ब्रेक का उछला, टिकते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर। इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट। Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
10: Schwarber to right field, and it will.
9: From the first pitch of the season to the stretch run,
10: that's the ball game.
9: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
11: Sokudo.
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: अरे इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se.
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ फिटनेस योगा मेंटल वेलनेस सब कुछ एक ही जगह फिट तक सिंपल टिप्स एक्सपर्ट इनसाइट्स रियल कॉन्वर्सेशंस लाइफ अपग्रेड करो इजी वे वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
0: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
5: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

छह से दस घंटे तक होने वाली बहस में कांग्रेस की ओर से बोलेंगे राहुल, प्रियंका, शशि थरूर, समाजवादी पार्टी से भाग लेंगे अखिलेश। 20 जुलाई के प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस ने कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी, 7 राज्यों समेत केंद्र को नोटिस, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और छात्रों को आदेश। फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर मेटा ने मांगी माफी, कहा तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रिमूव हो गया था पोस्ट, बाद में किया गया बहाल, मीटा के ग्लोबल हेड को सरकार ने किया तलब। सुपर एक्टिव हुआ मॉनसून, झमाझम बारिश के बाद कनॉट प्लेस समेत कई वीआईपी इलाके लबालब भरे, जनपद में दुकानों में घुस गया है पानी, मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी, पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने से पीएचडी छात्रा की मौत। पीओजेके में पाकिस्तानी सेना ने फिर किया अत्याचार के इंतहा, प्रदर्शनकारियों पर मुनीर आर्मी ने किया अंधाधुंध फायरिंग, अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर, 5 जून से अब तक 70 की मौत, पूरे इलाके में इंटरनेट ठप।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली में आज मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने कहा है कि निचले इलाकों में जलजमाव का खतरा भी बना हुआ है। इस वक्त पूरी दिल्ली में भारी बारिश हो रही है और इसका सीधा और साफ साफ असर सड़कों पर दिख रहा है। राजधानी कई इलाकों में पानी भर चुका है, कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या है और ये तस्वीरें पूरे दिल्ली से आ रही हैं जिसमें धीमी धीमी रेंगती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और ये हालात और ज्यादा शाम तक खराब होने वाले हैं क्योंकि बारिश लगातार जारी रहेगी। इसका IMD ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है दिल्ली और NCR के लिए। तो आज भारी बारिश के बीच लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। अगर बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर निकले, अगर दफ्तर जाना है तभी निकले या कोई जरूरी काम हो तभी निकले, वरना ट्रैफिक में फंसने की पूरी संभावना है। तो दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक तरफ बारिश से डूबी डूबी दिल्ली दिखाई दे रही है, देखिए कैसे लोग पानी के बीच बसों में सवार हो रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कई इलाकों में जलजमाव के चलते ट्रैफिक भी धीमा पड़ गया है और ऐसे में थोड़ी सी धीमी होती ट्रैफिक की रफ्तार पूरे दिल्ली में आज दिन भर दिखाई देगी। ट्रैफिक की समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए कई इलाकों से बचकर रहें जो आम तौर पर चौक रहते हैं। और दिल्ली वालों को भी अब तक मालूम चल गया है कि कहां पर ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है। GPS के जरिए भी आप ये पता कर सकते हैं कि कहां पर ट्रैफिक मिलने की संभावना है, तो उन रास्तों को अवॉइड करें, वहां से बचें।

0: सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, एक बार तस्वीरें दिखाइए और दर्शकों को बताइए कि आज किन किन रास्तों से उन्हें बचना चाहिए।
1: हाँ देखिए नया, जरूर मैं आपको ये पूरी जानकारी अपने दर्शकों को जरूर दूंगा कि किस तरीके से किन रास्तों से बचकर चलना चाहिए। लेकिन दिल्ली की जो बारिश है वो लोगों के लिए राहत का मुसीबत ज़्यादा लेकर के आती है। सुबह का वक्त जो लोग घर से दफ्तरों के लिए निकले उनको किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं, जहाँ आपको आउटर सर्कल पर इस वक्त पानी ही पानी चारों तरफ जो है वो नज़र आएगा। कई सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको पानी जो है वो नज़र आएगा जो कि अंदर तक घुस गया। फिलहाल उस पानी को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश जो है वो तमाम जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। मॉप के जरिए उन पानी को बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा मिंटो अंडरपास जो हर साल पानी में डूब जाया करता था, वो भी सुबह के वक्त जिस तरीके से बारिश हुई लगभग 1.5 से 2 घंटे, उसके बाद मिंटो ब्रिज को भी जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा, लेकिन उसके बाद मिंटो अंडरपास को जो है वो खोल दिया गया। ये तस्वीर है कनॉट प्लेस की। अगर आप देखेंगे कि बारिश के चलते, वाटर लॉगिंग के चलते ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो पूरी तरीके से धीमी हो गई है। अंडरपास चाहे वो ITI हो, लक्ष्मी नगर हो, विकास मार्ग हो, ये वो इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी हुई है, क्योंकि इन इलाकों के अंदर वाटर लॉगिंग जो है

0: सड़क के एक राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों और आपको पानी नजर आएगा, जिसके कारण जो लोग यहाँ से निकलने अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले थे उनको तकरीबन आधे से एक घंटे जो है वो ट्रैफिक में जूझना जो है वो इस वक्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पंप भी जो है वो नजर आएंगे, पिछले साल भी इसी तरीके की तस्वीर जो है वो सामने नजर आई थी, लेकिन उस वक्त पानी जो है वो लगभग 2 से 3 घंटे तक जमा रहा था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के जो मंत्री हैं वो खुद मौके पर पहुंचे थे अगले दिन और यहाँ पर व्यवस्था का जायजा लिया था और यहाँ पर बड़े बड़े पंप जो है वो सेटल किए थे। आज भी यहाँ पर आपको पंप नजर आएगा, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे पानी जो है वो यहाँ पर कम होता हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो जरूर कम
1: जरूरी है। अब तस्वीरें आपको कनॉट प्लेस की दिखा देते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद क्या स्थिति है वहां से पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा, देखिए उनकी ये रिपोर्ट।
2: हम इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं और आउटर और इनर सर्कल के बीच का जो सर्कल होता है मिड सर्कल, ये देखिए पूरी तरह ये 100-150 मीटर का जो स्ट्रेच है ये अब जलमग्न हो गया है, लगभग 1 से 1.5 फीट और कई कई इलाकों में 2 फीट पानी है। यहाँ पर देखिए ऑटो रिक्शा है वो बंद पड़ गया है, पीछे जो गाड़ियां हैं वो कई सारी या तो यू टर्न ले रही हैं, स्कूटर बंद पड़े हैं, अब ये ऑटो रिक्शा यहाँ पर जो है तबाह हो गया है। यहाँ पर एक बैंक है और कई सारे कैफे हैं, तो जिनको निकलना है बाहर अब वो फिलहाल तो नहीं निकल सकते जब तक ये पानी ना निकले। तो कनॉट प्लेस का इलाका ही देखिए पूरी तरह आपको लग रहा है ना कि किसी नदी नाले में खड़ा हूं, लेकिन ये मुख्य और व्यस्ततम सड़क है, 1 फीट से 1.5 फीट तक का पानी है, कुछ ही मिनटों की बरसात हुई और कनॉट प्लेस भी जो है नई दिल्ली, बिल्कुल नई दिल्ली का दिल माना जाता है कनॉट प्लेस, व्यस्ततम इलाका बाजारों में से एक, और यहां पर भी आप देखिए कि पूरा सैलाब जैसे बना हुआ है। तो ये 200 मीटर इधर का स्ट्रेच और यही नहीं है, कई सारे ऐसे स्ट्रेच पॉइंट हैं जहां पर अब हालांकि पंपिंग करने की कोशिश की जा रही है इससे भी जो निचले इलाके हैं, लेकिन वो पानी भी यहां आ रहा है। तो जब तक बारिश नहीं रुकती मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जाएगा, ये देखिए गाड़ियां आ रही हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर पानी कितना ज्यादा है। ये कनॉट प्लेस की तस्वीर है, ये नई दिल्ली के आसपास की कई सारे जो इलाके हैं वहीं पर पानी, जो भी निचले इलाके हैं वहां पर जल जमाव की चेतावनी मौसम विभाग ने दी थी, पहले येलो अलर्ट फिर ऑरेंज अलर्ट फिर रेड अलर्ट। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कनॉट प्लेस की, उधर से आने वाली या तो गाड़ियां बंद पड़ जा रही हैं और जो निकल रही हैं उनके लिए कितनी मुसीबत है मशक्कत है। तो अब जितने सारे लोग अपने इन इमारतों के दफ्तरों में काम कर रहे हैं या तो अगर निकलना भी चाहे तो जब तक पानी पूरी तरह बारिश नहीं रुकती है अब वो मौसम की मेहरबानी पर ही रह जाएंगे, तो 2 पहिया और 3 पहिया गाड़ियों के लिए ऑटो रिक्शा के लिए बड़ी मुसीबत है, कब बंद पड़ जाएगी। दूर से अगर आप देखिए 200 मीटर तक का पूरा ये जो स्ट्रेच है कनॉट प्लेस का यही पूरी तरह से जलमग्न है। ये दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीर है, कुछ मिनटों की बारिश के बाद ये इलाके जो है जलमग्न नजर आते हैं। कनॉट प्लेस पर अमित बदवार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
1: वही दिल्ली के पंचकुला रोड पर भी स्थिति गंभीर है, सड़क पर जलभराव साफ दिखाई दे रहा है, पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं संवाददाता आशुतोष मिश्रा।
2: मैं इस समय दिल्ली के पंचकुला मार्ग पर हूं और जैसे ही कुछ मिनटों की बरसात हुई है देखिए ये पूरी सड़क ऐसा लग रहा है कि कोई नदी है, आपको यमुना जैसी फीलिंग आ जाएगी, पूरी सड़क डूब चुकी है और इसीलिए ज्यादातर किनारे के हिस्से से गाड़ियां जा रही हैं और आगे वो रास्ता बंद हो चुका है, ये देखिए घुटनों तक पानी है यहां पर आगे और इसीलिए ज्यादातर गाड़ियों के और उसके आगे पूरा ट्रैफिक जाम है क्योंकि ये पूरी सड़क है वो बंद हो जाती है। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं है, यहां पर मैं देख पा रहा हूं एक पंप भी लगाया गया है पानी हटाने के लिए, लेकिन ये पंप बंद है, इसको शुरू नहीं किया गया अभी तक और इसकी वजह से अब चूंकि हैवी वोटर पंप अगर ये लगाए जाते हैं तो कुछ तो पानी हट जाए लेकिन वो नहीं हटा है। तो पंचकुला रोड पर आगे जो है अब कोई भी गाड़ी कभी बंद हो सकती है, आगे रास्ता पूरी तरह से बंद है जल जमाव की वजह से, देखिए घुटने तक पानी है, लगभग 1 फीट पानी आपको पंचकुला में इलाकों में दिखाई देगा। खासकर देखिए स्कूल कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मुश्किलें हैं, निकलना चाहते हैं तो कैसे बच बच के उनको जाना पड़ रहा है एकदम डिवाइडर के पास से, उसमें खतरा यह होता है कि अगर नीचे से प्रेशर ड्रेनेज का प्रेशर से कोई मैनहोल खुल जाए तो आदमी भी इसमें नीचे चला जाएगा। तो बारिश कुछ मिनटों की दिल्ली में तेज झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया चेतावनी को, जिसके बाद पंचकुला के पूरे इलाके में आपको यहां पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव की तस्वीरें आने लगी हैं। दिल्ली समित बदवार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
1: और इस बीच बिंटो रोड अंडरपास पर भी जलभराव होने से संकट गहरा गया है और ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी सुशांत बेहरा।
3: राजधानी दिल्ली में सुबह से ही कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है जिसका असर दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर है मेरे पीछे मिंटो अंडरपास की, जहां पर इस वक्त एक बार फिर से वाटर लॉगिंग जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि हर साल जिस तरीके से मिंटो अंडरपास डूब जाया करता था वैसी स्थिति जो है वो नजर नहीं आ रही है, ट्रैफिक फिलहाल स्मूथली यहाँ पर चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की जो टीमें हैं वो दिल्ली के इन इलाकों के अंदर वाटर लॉगिंग को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले हैं उनको परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। लक्ष्मीनगर हो चाहे आईटीओ हो वहां पर भी बड़े बड़े पंप्स के जरिए पानी को जो है वो निकाला जा रहा है ताकि लोग परेशान ना हो। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले मिंटो अंडरपास पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया था लेकिन अब एक बार फिर से ट्रैफिक को जो है फिर से खोल दिया गया है और पूरे रास्ते को क्लियर किया जा रहा है।

0: आरडब्ल्यूडी की टीमें जो है वो लगातार पानी की निकासी में लगी हुई है। कैमरा पर्सन मानसी के साथ सुशांत मैराजी आज
1: अनमोल बाली मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे आईटीओ से। अनमोल, वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां भी वाटर लॉगिंग है?
2: नहीं, इस समय मैं दिल्ली के आईटीओ पर खड़ा हूं। हालांकि वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति तो यहां देखने को नहीं मिल रही, पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे कुछ घंटों की भारी बारिश ने यहां पर जो ट्रैफिक के हालात हैं वो नाजुक कर दिए। आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक है इस समय कितना धीमा धीमा यहां पर आप देख सकते हैं चल रहा है। बहुत धीमे धीमे लोग जो है अपनी गाड़ियां यहां से लेके जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आईटीओ। हालांकि यहां हमेशा ही ट्रैफिक जो है वो ज्यादा रहता है, पर बारिश का कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। अभी भी हल्की हल्की जो बारिश है वो पड़ रही है और मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर जो रेड अलर्ट है वो इशू किया। हालांकि दिल्ली के जो सेंट्रल दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पहले वाटर लॉगिंग देखी जाती थी, हालांकि अब वहां वाटर लॉगिंग देखने को नहीं मिल रही, पर आसपास के जो कुछ इलाके हैं वहां पर वाटर लॉगिंग का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सीधा सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लंच टाइम है और आप देख सकते हैं कि कैसे इस समय बड़ी धीमी रफ्तार से जो ट्रैफिक है वो आगे बढ़ रहा है। आगे तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो आगे तक आप देख सकते हैं विजुअल में कि कैसे जो गाड़ियां हैं उनका जमावड़ा यहां पर लग गया है। तो तस्वीरें साफ तौर पर आप
1: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। वहां पर इस वक्त ट्रैफिक की स्थिति खराब हो रही है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, आपकी हमने रिपोर्ट देखी थी, इस वक्त जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां क्या समस्या है? पानी भर गया है, ट्रैफिक स्लो है?
3: सेंट्रल दिल्ली है, कनॉट प्लेस है, ये दिल्ली का दिल कहा जाता है, सबसे हैपनिंग बाजारों में से एक है नेहा। और इस समय ऐसा लगेगा कि मैं किसी नदी नाले में खड़ा हूं, लेकिन एक कनॉट प्लेस का मिड सर्कल है और पूरा 200 से 300 मीटर का जो स्ट्रेच है। हालांकि बारिश की जो तीव्रता है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है, वो वरना समझिए कि लगभग आधा फीट पानी कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियों की ब्रेक डाउन, ट्रैफिक की तो समस्या है। लेकिन आप सोचिए कि कनॉट प्लेस की तस्वीर है और ये वो हर जगह हर साल ऐसी स्थिति यहां पर होती है। अब अगर आपके हाथ में ना हो पैदल चलने के, लोगों को एक डर ये होता है कि होल का ढक्कन अगर खुला हुआ तो आपने सीधा नीचे चला जाएगा। अब देखिए पूरी जितनी गाड़ियां ये काफिला आ रहा है सब कोई लगभग 1 से 1.5 फीट पानी इस इलाके में जमा है। तो इसके पहले पचकुया, जनपथ रोड, कनॉट प्लेस के ये इलाके, ये सारे ब्लॉक, और आप समझिए कि लो लाइन इलाके बाहरी दिल्ली, क्योंकि सबसे पहले येलो अलर्ट आया जिसे ऑरेंज अलर्ट में अपग्रेड किया गया और उसके बाद मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया, फिर अचानक बूंदाबांदी जो है काफी तेज हुई है। और अगर ये स्थिति रही तो निकासी में समस्या ये होगी, क्योंकि ड्रेनेज सीवर लाइन की जो क्षमता है, जो साफ सफाई वो कितनी हुई थी वो तस्वीरें आपको बेहतर बता देती है। पचकुया रोड पर तो ऐसी स्थिति थी कि पानी ज्यादा था, लेकिन वहां बड़ा सा पंप लगाया गया था इंडियन से द्वारा, वो चालू ही नहीं था। तो जब पानी पंप आउट ही नहीं होगा तो वो जमा होगा और वो पार करके सीधे कनॉट प्लेस में इंटर होते, देखिए कई सारी गाड़ियां ब्रेक डाउन होने लगी हैं। तो दरअसल क्या है कि बारिश पूरे दिन के लिए रेड अलर्ट है, बारिश तेज होगी, ट्रैफिक जल जमाव तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा जैसे आप देखेंगे, अब
1: मैं रोकूंगी आपको। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जापान से, जहां भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। अब जापान वो देश है जहां पर अक्सर भूकंप आता है और एक बार फिर से जापान भूकंप के जोरदार झटके, देखिए तस्वीरों में जाहिर हो रहा है कि जो इस इमेज को कैप्चर कर रहा है किस तरीके से उसका कैमरा हिल रहा है। रेक्टर पैमाने पर 7.1 तीव्रता, कोई भी भूकंप 6 से ऊपर तीव्रता का काफी जोरदार माना जाता है। जापान के उकी सिटी माकीजानो इलाके में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जोरदार झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। जापान वो देश जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, ये सिस्मिक जोन में भी आता है। जापान के कई इलाके भूकंप के झटके अक्सर महसूस करते हैं, यानी कि अर्थक्वेक प्रोन है ये इलाके। और रेक्टर पैमाने पर इस वक्त बताया जा रहा है कि 7.1 तीव्रता का ये भूकंप आया है। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान की उकी सिटी माकीजानो इलाके में ये भूकंप। शिवानी शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवानी, कहां कहां ये भूकंप के झटके और कितना जानमाल का नुकसान, क्या खबर मिल रही है?
4: लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि बहुत ही तीव्र भूकंप है। अगर रिक्टर स्केल पर इसके पैमाने की भी बात की जाए तो ये 7.1 है, जो कि बहुत ज्यादा माना जाता है। और जापान की उकी सिटी के अलावा बाकी जोनों का इलाका है, कुमामोटो का इलाका है, और ये जो इलाके हैं नेहा, ये सब समुद्र के नजदीक हैं। लिहाजा यहाँ पर जब भी भूकंप आता है तो सुनामी की वार्निंग जारी होती है, और जब इस तीव्र पैमाने का भूकंप आता है तो सुनामी की वार्निंग दी जाती है, और इस बार सुनामी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये जो पूरा सी है यहाँ पर, आरियाके और यात्सुशिरो समुद्र है, यहाँ पर सुनामी की वार्निंग जारी की गई है। प्रधानमंत्री जो है जापान की उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि लगातार यहाँ पर एडवाइजरी के साथ साथ जो भी डैमेजेस हुए हैं उसका पता लगाया जाए, उसको असेस किया जाए। भूकंप आया है तो किस तरह का नुकसान हुआ है जान और माल का, उसको असेस किया जा रहा है। तो जब ये आधिकारिक आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद ये पता लग पाएगा कि किस तरह का नुकसान हुआ है। और जो लोग वहां पर हैं उनको कहा गया है कि ह्यूमन लाइफ यानी कि लोगों की रक्षा करें, बाकी सब बाद में होगा, सैनिटाइज किया जाए, लोगों को बचाया जाए इस पूरे इलाके।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी तमाम जानकारी के लिए आपका। और देश भर के अलग अलग राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। और अभी दिल्ली एनसीआर की बात कर लेते हैं जहां पर मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली, नोएडा, इसके अलावा रुद्रप्रयाग, चंडीगढ़, चमोली और चंबा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, मलबा सड़कों तक आ गया है जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। इन हाईवेज को अवॉइड करने की सलाह दी गई है ताकि आप कहीं पर भी खतरनाक हाईवे से होकर ना गुजरें। चंबा की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी मलबा हटाने का कई जगहों पर काम जारी है जहाँ पर गाड़ियाँ धंसी हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दिल्ली के जनपद इलाके में मूसलाधार बारिश का संकट दिख रहा है, वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा, देखिए उनकी रिपोर्ट।
3: दिल्ली एनसीआर में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है और खासकर नई दिल्ली के कुछ इलाके जो, अगर आपको बताऊं, जनपद के पास जो रास्ता जंतर मंतर पे जाता है यहां पर भी देखिए 360 डिग्री में आपको तस्वीर दिखाता हूं, सड़कों पर पानी जमा होने लगा। मौसम विभाग ने पहले येलो अलर्ट और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और उसके बाद ज्यादातर अब जो सड़कें हैं यहां पर वो आपको दिखाई दे रही है जलमग्न होती हुई। पानी का स्तर इसलिए बढ़ा क्योंकि बारिश बहुत तेज है और आज ही मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी की थी। और अब ऐसे में देखिए जो दोपहिया वाहन जा रहे हैं उनके पहिए इन सड़कों पर डूबना शुरू हो चुके हैं। ये पुलिस का बैरिकेड आप देख पा रहे हैं कितना पानी है, और अगर और तेज बारिश होती रही तो घुटनों तक भी पानी आ सकता है। अब जैसे आपको लिए चलते हैं, यहां पर कई सारी जो दुकानें हैं अब इनके लिए मुश्किल ये है कि पानी धीरे धीरे दुकानों में घुसना शुरू हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं यहां नुकसान होगा। इधर आ जाइए सड़कों पर, सड़क का ये जो किनारा है ये देखिए यहां तक का पानी घुटनों तक पहुंचने लगा है। तो ये नई दिल्ली बिल्कुल जंतर मंतर के पास का इलाका, ये जनपद रोड है जहां पर हमें इस समय, और जैसे जैसे मैं आगे आपको ले चलूंगा देखिए इधर ये जो पेडेस्ट्रियन रोड है ये भी पूरी तरह पानी में डूबी, और सड़क किनारे जो जरा सा भी निचला इलाका है वहां पर पानी भरने लगा है। तो इसी के साथ साथ मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की थी कि जो लो लाइन इलाके हैं वहां पर जो है पानी भरेगा, जल जमाव होगा, ऐसी स्थिति हो सकती है। बरसात के पहले नालों की स्थिति क्या थी, ड्रेनेज की सफाई को लेकर के अभी अपने आप में सवाल खड़ा हुआ। देखिए जहां मैं खड़ा हूं डिवाइडर के पास बिल्कुल पानी का स्तर आपको पता लग जाएगा। अब तक सिर्फ एक घंटे भी नहीं हुई है बारिश को, और उसके बाद यहां देखिए ये पीछे जो इलाका है दुकानों का यहां पर भी आपको पानी दिखाई देने लगेगा। तेज बरसात हो रही है और इसी के चलते ज्यादातर इलाकों में आपको जल जमाव की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। जनपद पर अमित बधवार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
1: और इस बीच आपको बता दें दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भी गंभीर हालात हैं, जलभराव की स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता हर्षित मिश्रा।
5: राजधानी दिल्ली में आधे घंटे की बारिश के बाद जो हालात है वो आपके सामने है। बुराड़ी इलाके की मुख्य सड़क पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। यहाँ हम इस समय बुराड़ी सोफुटा रोड पर मौजूद है और यहाँ के हालात जो है वो आपको देख करके शायद लग रहा होगा कि ये कोई नदी है, लेकिन ये बुराड़ी की लाइफलाइन कही जाने वाली मुख्य सड़क है जहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और हर बार बारिश के बाद ऐसे ही हालात यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो छोटे बच्चे जिनके स्कूलों की छुट्टी हुई है वो परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर जो बुजुर्ग है वो परेशान हो रहे हैं, और कई गाड़ियां जो है वो भी बंद हो चुकी है। आप देखिए एक ये गाड़ी है यहाँ पर फंस गई है, ये गाड़ी बंद हो गई है। सरकार भले ही ये दावे करती हो कि अब दिल्ली में जल जमाव नहीं होगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके के हालात आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो देखिए ई रिक्शा चालक है ये अपनी जो क्षमता है उससे ज्यादा बच्चों को बैठा करके लेकर के जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये हादसों को दावत देती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। किसी भी समय ये जो ई रिक्शा है ये हादसे का शिकार हो सकता है। छोटे बच्चे जो है वो पानी में इस समय निकल करके आ रहे हैं, जल जमाव काफी ज्यादा है, और ये 4 से 5 किलोमीटर की सड़क है जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है, और यहाँ पर कई कई फीट पानी भरा हुआ है। चाहे वो स्कूल की छात्राएं हो वो भी इस समय पानी से होकर के निकल रही हैं, और स्कूल की छुट्टी हुई है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। आप देखिए जो बच्चे यहाँ हैं वो किस तरीके से यहाँ पर बारिश के पानी जो जल जमाव है उसी से होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ
1: वक्त से ब्रेक का हौसला देखते रहिए आज।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
10: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
9: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
11: मैंने क्या सिखाया था सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क गोल्ड के लिए हॉल मार्क
12: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क
13: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना
14: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों
15: कुछ तो बात है इस दिल में
16: बहुत ही दुखद विषय है कुछ समय पहले एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं यह अपने आप में घोर अन्याय है खुद सीजेपी ने आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया किस प्रकार से माननीय नड्डा जी माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई मगर यह कहना आज कि AK-47 में बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल अराजकता का माहौल एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं यह बहुत ही आपत्तिजनक है

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सात दिन बाद टूटा संसद का गतिरोध, परीक्षा संशोधन बिल पर शुरू होने वाली है लोकसभा में चर्चा। 6 से 10 घंटे तक होने वाली बहस में कांग्रेस की ओर से बोलेंगे राहुल, प्रियंका, शशि थरूर। समाजवादी पार्टी से भाग लेंगे अखिलेश। इस जुलाई के प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस ने कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी। 7 राज्यों समेत केंद्र को नोटिस, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और छात्रों को आदेश। फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर मेटा ने माफी मांगी, कहा तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रिमूव हो गया था पोस्ट, बाद में किया गया बहाल। मेटा के ग्लोबल हेड को सरकार ने किया तलब। दिल्ली में सुपर एक्टिव हुआ मानसून, झमाझम बारिश के बाद कनॉट प्लेस समेत कई वीआईपी इलाके लबालब। जनपद में दुकानों में घुसा पानी, मौसम विभाग का रेड अलर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने से पीएचडी स्कॉलर की मौत। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने फिर की अत्याचार की इंतहा, प्रदर्शनकारियों पर मुनीर आर्मी ने की अंधाधुंध फायरिंग। अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर, 5 जून से अब तक 70 की मौत। पूरे इलाके में इंटरनेट बंद।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach, in association with
1: Bharat.
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज हम बात करेंगे, संसद में लंबा गतिरोध चला आ रहा था और अब वो गतिरोध खत्म होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आज एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में चर्चा करेंगे और थोड़ी देर में लोकसभा में बहस शुरू होगी। विपक्ष से गतिरोध खत्म होने के बाद बिल पर चर्चा के लिए 2 बजे का वक्त तय हुआ है और अब कुछ ही देर में इस बिल पर चर्चा होगी सदन में। बहुत लंबे वक्त से, शुरुआत से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में हंगामा हुआ और उसके बाद फिर वो स्थगित हुई, यही चला आ रहा था। लेकिन अब फाइनली 10 घंटे संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी और लोकसभा की कार्यवाही अब शुरू हो चुकी है। सीधे आपको लिए चलते हैं।
3: क्या
4: Now government is saying this important bill, piece of legislation has brought to address the concern of the students of this country and youth of this country. Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. Come on.
5: Rajya Mantri baithe hain yahan pe. Aapka vishay to... हाँ बताओ, आप पीछे क्या आपका
4: सर? सर बिफोर द बिफोर स्टार्टिंग द बिल
5: सदन
4: वी नीड अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट।
5: पटल पर रखे जाने वाले सदन पर पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर टू श्री जितिन प्रसाद
6: अध्यक्ष महोदय,
5: टाइम घंटे एक मिनट। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बैठकर आपस में चर्चा कर लेना। मैंने आप सुनिए, ऐसे नहीं होता है। मैंने व्यवस्था 6 घंटे की दी थी, दोनों दल और सब दल मिलकर अभी शुरू होने के 1 घंटे बाद आपस में चर्चा करके और मुझे बता देना। मैंने व्यवस्था पहले 6 घंटे की दी थी, पर संसदीय कार्य मंत्री आप बैठकर चर्चा कर लेना।
7: वेनू जी, 1 मिनट। वेनू जी, 1 मिनट, 1 मिनट।
5: आप
7: एक, मैं बताता हूँ सर।
5: आप आपस में
7: आपने घोषणा किया कि इस विधायक पे 6 घंटे का आप टाइम देना चाहते हैं, फिर भी आप सदन के नेता सब मिलकर के बात कीजिए। आपने वहां से एक निर्देशन दिया था, फिर मैंने सब पार्टी के नेताओं से बातचीत किया। आज कांग्रेस के चीफ व्हिप और समाजवादी के हमारे चीफ व्हिप और डीएमके के, उसके बाद में एसपी शरद पवार जी का एनसीपी पार्टी, सबसे हमने बात किया। तो सबने कहा कि ठीक है, 6 घंटे को हम 2 घंटे बढ़ा करके 8 घंटे हम चर्चा करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ, सब थे हम लोग। फिर उसके बाद नहीं, फिर अभी मैंने एक मिनट फिर एक मिनट से
5: मणिकम टेगोर,
7: आप मणिकम टेगोर को बुला लीजिए, आपका चीफ व्हिप है।
5: गरम संसदीय कार्य मंत्री झूठ नहीं बोलते, यहाँ मणिकम टेगोर था, उनसे बात करके आए थे।
7: और मैं
5: बुलाया मणिकम टेगोर को, हाँ हाँ, मेरे को आपने कहा, मुझे आपने कहा, मैंने आपको कहा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री,
7: ठीक है, मैं सदन में कहता हूँ वेणुगोपाल जी, अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है, एक बार मिलकर के तय कर लेंगे। अभी स्पीकर साहब ने कह दिया, हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारा कोई आपत्ति नहीं है सरकार।
5: आप कितने, आप बता दे कितने घंटे की बात करना चाहते हैं?
7: इसलिए मैंने क्रमवार बोला, पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला, 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार है।
5: ठीक है, ओके ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए, प्लीज बैठ जाइए। अव्यवस्था जम गई। जब बीएससी नहीं होती तो सदन का सेंस लिया जाता है, इसलिए सदन का सेंस बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, जितिन प्रसाद जी।
6: अध्यक्ष महोदय,
1: मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं।
5: आइटम नंबर 3 श्री रामनाथ ठाकुर।
3: मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।
5: आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय।
8: मेघवाल जी,
5: अर्जुन मेघवाल जी।
9: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो श्री नित्यानंद राय साहब के नाम के आगे अंकित है, आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद।
5: आइटम नंबर 5 श्री एसपी सिंह बघेल।
10: मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ।
5: आइटम नंबर 6 श्री बीएल वर्मा जी।
11: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र स्वागत पत्र रखता हूँ।
5: आइटम नंबर 7 श्री बंडी संजय कुमार।
12: मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 7 पर मेरा नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ।
5: आइटम नंबर 8 श्री पवित्रा मार्गेटा जी।
13: Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 8 of the Minister of Textiles as per today's revised list of business.
5: Item number 9, Srimati K. Kanimoji. Aap sadan ke patal pe papers to be nahi. Sri Rao Rajendra Singh ji. Chali, koi baat nahi, ho jata hai. आइटम नंबर 10
14: सर, मैं
5: आप रखना चाहते हैं? अच्छा, रख राव साहब रख दें।
14: आदरणीय अध्यक्ष इशी पुटी
5: राव साहब रख लें, कोई बात नहीं।
14: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्य सूची में अपने नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 17वें और 18वें प्रतिवेदन की एक एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ।
5: आइटम नंबर 10 श्री जितिन प्रसाद जी।
15: रिस्पेक्टेड सर, विद योर काइंड परमिशन, आई मेक अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस कंटेन्ड इन द 195th रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉमर्स ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स 26-27, डिमांड नंबर 10 पर्टेनिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
5: आइटम नंबर 11 श्री रामनाथ ठाकुर जी।
3: माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्य सूची क्रम संख्या 11(1) में वर्णित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के लिए कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मांग अनुदान मांग संख्या 1 की अस्थायी समिति 7वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक सदन के पटल पर रखता हूँ।
5: आइटम नंबर 12 श्रीमती अनुप्रिया पटेल।
16: Honorable Speaker, sir, on behalf of my senior colleague, Shri Jagat Prakash Nadda ji, I rise to move that in pursuance of Section 4G, read with Section 6(3) of the All India Institute of Medical Sciences Act 1956, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as the member of the All India Institute of Medical Sciences, Guwahati, Vice Shri Pradyut Bordoloi, resignation from Lok Sabha, with effect from 20th March 2026, subject to the other provisions of the said Act. Thank you.
5: प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई, वे व्यक्तिगत रूप से अपने अनुमोदित पाठ को सदन पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 14 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय मंत्री जी कुछ रखना चाहते हैं? एक मिनट में बोल लूँ। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। जब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस विधेयक की चर्चा के लिए सहमत हुए, ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विशिष्टता की ओर अधिक सुदृढ़ बनाना है तथा प्रश्न पत्र लीक, संगठित परीक्षा अपराधों एवं अनुचित साधनों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विधि व्यवस्था को और सशक्त बनाना है। परीक्षा प्रणाली की विशिष्टता और पारदर्शिता राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर व्यापक चर्चा, गंभीर विचार विमर्श इस सदन में होना आवश्यक है। पूरा देश चाहता है कि सभी मान्य सदस्य इस विषय पर सार्थक विचार विमर्श करें, अपने अनुभव साझा करें, अपने विचार रखें और रचनात्मक सुझाव रखें ताकि हम एक बेहतर कानून बना सकें। कानून जितना बेहतर होगा, मेरा मानना है, परीक्षा प्रणाली के अंदर विशिष्टता और प्रामाणिकता भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हम इस चर्चा को सकारात्मक रूप से संसदीय परंपराओं, नियमों और मर्यादाओं के अनुरूप रखें ताकि एक अच्छा सकारात्मक देश हमारे देश के युवा विद्यार्थियों के बीच में जाए। माननीय मंत्री महोदय,
8: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधक विधेयक 2026 पर विचार किया जाए।
17: बोलो
8: स्पीकर सर, दिस बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस यस्टरडे इज इन फैक्ट एन अमेंडमेंट टू द अर्लियर बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, विच वॉज ऑल्सो ब्रॉड बाई दिस गवर्नमेंट एंड नॉट ओनली ब्रॉड, इट वॉज परहैप्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। The earlier bill and the amendment today are in a way a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard

Guard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. Ab ye jo examination ko lekar ke tarah tarah ki vardaatein hoti rahi ya paper leak bhi hota raha, ye keval kisi ek pradesh ya ek prant tak simit nahi raha. ऐसा पहले भी होता था, अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे. सूची लंबी है, लेकिन केवल याददाश्त ताजा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो बहुत ज्यादा समाचार सुर्खियों में रहे. 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है. 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2009 में हो गया, 2012 में, 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणु गोपाल जी, बाय चेंजिंग फिगर्स और डिजिट्स यू कैन नॉट चेंज द रिकॉर्ड, सो इट इज ऑन रिकॉर्ड. 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 आई विल गो ऑन एंड ऑन, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. देन 2011 ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2012 एम्स न्यू दिल्ली एंट्रेंस पेपर लीक, 2013 महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन. सो इफ आई गो ऑन एंड ऑन देन आई विल नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट द बिल एज सच, बट द लिस्ट इज ओके. 2010 ओके, इफ दैट सेटिस्फाइज, ओ इफ इफ इफ इफ दैट सेटिस्फाइज यू, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम. 2010 बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश, 2012 तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन. आई कैन गो ऑन टिल यू आर सेटिएटेड. 2009 वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम. सो देयरफॉर इट वॉज रियलाइज बाय दिस गवर्नमेंट दैट we need to have an exclusive legislation. usi par aa rahe hain, usi par aa rahe hain. I am following a chronology. unfortunately the chronology starts from the earlier times, aur isliye ye socha gaya ki overall public examinations ko lekar ke ek vyapak samuhik vyavastha vidhek laya jaye. bharat sarkar mein char pramukh recruitment agencies hain, जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल. और इसी तरह से हायर एजुकेशन एडमिशंस के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा. अब आप कह रहे हैं कि डेट्स क्यों बता रहा है, वो इसलिए के 1992 में फर्स्ट टाइम देर वॉज अ रिकमेंडेशन मेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन हेडेड बाई द कांग्रेस पार्टी, दैट देर शुड बी अ कॉमन टेस्टिंग नेशनल एजेंसी. इट वॉज 1992. देन इन 2010 ड्यूरिंग यूपीए रूल देर वॉज अगेन अ कमिटी विच सजेस्टेड. आई डोंट नो वाई दिस वॉज नॉट गिवन ड्यू कंसिडरेशन फॉर वट एवर रीजन्स and for whatever interest. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government.

0: डायरेक्टर के लिए द इंप्रिजनमेंट वॉज 3 to 10 ईयर्स इन द अर्लियर एक्ट, वी आर इंक्रीजिंग इट टू 5 to 10 ईयर्स एंड द फाइन वॉज अप टू 1 crore, इट हैज बीन इंक्रीज टू 5 crore. एंड फाइनली द ऑर्गेनाइज क्राइम कमिटर्स वेयर देर इज अ माफिया गैंग फाउंड, देर इज अ नेक्सस फाउंड एज वी हैव एक्सपीरियंस. I am not accusing any government, not finding fault. As I said right in the beginning, it is a malaise. It is an issue which is being faced by almost every state and UT of this country, regardless of whichever party in power. It is happening in Punjab. It is happening in Karnataka also, whether we name those states or not. So organized crime, that is examination authority, or service provider institution, whatever. In that case, the imprisonment earlier was 5 to 10 years. It's been increased to 7 to 10 years. And the fine was earlier up to 1 crore. It is now proposed to be increased to 10 crore. और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका प्रधानमंत्री जी ने वीडियो के माध्यम से जिक्र भी किया, to ensure speedy justice, we will have special fast track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. Or chahe wo special task force ho, chahe wo central jaise, because this bill and the earlier bill also entitles the government or the authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force or even where the police RC is conducting. उनके लिए सेक्शन 12 ए हैज बीन एडेड टू दिस अर्लियर बिल विच प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है, द इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज अ सेंट्रल एजेंसी और अ स्पेशल टास्क फोर्स. और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट. और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील विल नॉट बी लेस देन डबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट एंड अपील विद इन 30 days, दैट टू इफ देर आर जस्टिफाइबल ग्राउंड्स टू सेटिस्फाई द क्राउन. इसके साथ ही साथ इससे जुड़े जो और जुर्म होंगे, जो और क्राइम होंगे, दे विल ऑल्सो नॉट गो अनअटेंडेड और स्कॉट फ्री. जो हमारी भारतीय न्याय समिति के प्रावधान है उसके अंतर्गत उनका भी निवारण करने का प्रावधान रहेगा. और इसलिए मेरा ये निवेदन है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के आए हैं हम, और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया कि वक्त ज़ाया ना हो तो ये जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है इनको स्थापित करने का भी क्रम साथ ही साथ प्रारंभ किया जाए. उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी. इसके साथ ही साथ अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम्स सिस्टम्स लीक प्रूफ. उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए हैं हु बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एकेडमिक्स, वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हु आर नोन टू हैव एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस इन दीज डोमेन्स. मिस्टर नंदन निलेकानी, को फाउंडर इन्फोसिस, मिस्टर एस सोमनाथ, ISRO Chief, Tapan Dekka, ex-DIB, Mr. V. Kamakoti, Director IIT Madras, Chennai, और इसी तरह से हमारे दो और मेंबर भी उसमें शामिल हैं, एक फॉर्मर सेक्रेटरी एजुकेशन और एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो मोटी मोटी 46 की रिकमेंडेशंस थी, उसमें से भी लगभग 76% अर्थात 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो कहने का कुल मिलाकर के तात्पर्य यह है, बहुत समय ना लेते हुए, कि सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। धन्यवाद।
1: श्री एन के प्रेमचंदन जी, आपने कोई संशोधन दिया है?
2: यस सर, आई हैव गिवन एन अमेंडमेंट टू द मोशन मूव्ड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल कंसर्निंग द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द कंट्री। द यूथ एंड स्टूडेंट्स वर ऑन स्ट्राइक एंड द एंटायर कंट्री इज कंसर्न्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट मैटर। सो वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, द पीपल ऑफ द कंट्री, पीपल इन द कंट्री would like to make so many suggestions, experts would like to submit so many suggestions. So my amendment to the motion moved by the Honorable Minister is that the bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by 1st December 2026 so okay. that the bill can be made more fruitful. I am moving the amendment.
1: Okay. Shri Gaurav Gogoi.
3: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस बिल पर प्रारंभ करने से पहले मैं आपका ध्यान असम में हुए बाढ़ और वहां पर लगभग 70 व्यक्तियों की मौत की तरफ आकर्षित करता हूं और इस सदन से बड़ी पीड़ा मन से, बड़े दुखी मन से केंद्र सरकार से असम के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज की मैं गुजारिश करता हूं। सर, मैं शुरुआत करता हूं इस बिल से, और अभी हमने आदरणीय मंत्री जी के वक्तव्य सुना और उनके बात और इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी एक ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। ऐसे ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं। तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है, ताकि पता तो चले कि यह सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया,

11 महीने तक वो फरार था, 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में

2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। उस मामले में उसको बेल मिल गया। मई 6, 2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है वो बेल। एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था उसको मई 7, 2025 को उसको बेल। एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा मई 15, 2025 उसको बेल। राकेश जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसने उसकी चोरी की उसको बेल। तो ऐसे एक लंबा ब्यौरा है चाहे वो अमित प्रसाद महाराणा का हो या धीरेन्द्र कुमार पांडा का हो। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ। और अफसोस की बात है सर उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा। उन्होंने कहा कहां हुआ पेपर लीक, नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की, आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर आज ये बात प्रधानमंत्री आते हैं इंस्टाग्राम के रील पर, वो अलग बात है कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उस कैबिनेट बैठक में शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, पेपर माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सेटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सॉल्वर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, टेस्टिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, कोचिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, सिलेबस कैसे स्कूल के सिलेबस के साथ मिले, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा के पेपर ना आए, CBSE के OMR में धांधली न हो, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो। और प्रधानमंत्री जब आते हैं हाई पावर कमिटी की बात करते हैं तो 2 साल पहले जो के राधा कृष्ण की जो हाई कमिटी थी उसका क्या हुआ। 2 साल हाई कमिटी आपने गठन की, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के निरीक्षण में एक हाई कमिटी बनी, के राधा कृष्ण फॉर्मर इसरो के चेयरमैन। अगर वास्तविक में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया तो 2 साल पश्चात ही आज क्यों दोबारा ऐसा पेपर लीक हुआ। सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये बहुत गंभीर है। पिछले कुछ दिनों में पता चला कि NTA के लगभग 47 लोगों को बदला गया। सर मैं इस सरकार से मैं ब्यौरा चाहूंगा कि वे जो 47 लोग हैं जिनको आपने ट्रांसफर किया या सस्पेंड किया कौन है वो, क्योंकि NTA की जो एक्चुअल सैंक्शन कैपेसिटी है वो 34 की है। 34 की सैंक्शन कैपेसिटी है, ये 47 कौन है ये 47? 34 में से तो शायद 10-11 वैकेंसियां हैं, 24 ही है जहां पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो 47 जो सैंक्शन ये कौन है जो आउटसोर्स करके अपने लोगों को लाया NTA में, वो लोग हैं क्या? उसका ब्यौरा मिलना चाहिए। हम जान

0: चाहते हैं। आपने एनटीए के डीजी को बदला और एनटीए के चेयरमैन को रखा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको एनटीए के डीजी पर विश्वास नहीं, आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, आपने ये भी मान लिया, तो आपको एनटीए के चेयरमैन पे इतना विश्वास क्यों? ये हम जानना चाहते हैं। सुनाई दे रहा होगा सर, एक विशेष संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उसका ब्यौरा देख लीजिए, एनटीए के चेयरमैन का ब्यौरा देख लीजिए। इससे पहले वह मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस चेयरमैन के कमीशन के चेयरमैन थे और उस समय में भी धांधली हुई, उस समय भी धांधली हुई, उससे पहले वह छत्तीसगढ़ में भी पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन थे, उस समय में भी धांधली हुई। ऐसे इतने धांधली से जुड़े हुए व्यक्ति को आज भी इतने पेपर लीक होने के पश्चात भी आपकी सरकार बचा रही है, आपकी सरकार बचा रही है। जिस एनटीए के द्वारा 21 बच्चों ने आत्महत्या की, आज भी वो चेयरमैन बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष संघ के साथ जुड़ा हुआ है और यही दर्शाता है कि आप शिक्षा विभाग में आप सुधार नहीं चाहते, क्योंकि आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है। मैंने कोई असंसदीय बात नहीं की, आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इसीलिए हम देखते हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में हो, कॉलेज के प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में हो, जब फैकल्टी की बदली होती है उसमें हो, चाहे आउटसोर्सिंग में हो, हर चीज में हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी, जिन यूनिवर्सिटी की कल्पना पंडित नेहरू ने एक साइंटिफिक टेंपर के द्वारा उन यूनिवर्सिटीज के एक सपना देखा था, आज उन्हीं यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी को आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर रहे, आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी के लोगों को आने वाले समय में आपके दल के सदस्य बने, आपको वोट दे, उसके लिए आप एक माहौल बना रहे हो। यह है आपके लिए शिक्षा का उद्देश्य, यह है शिक्षा का उद्देश्य। और हमने देखा कि वे जो संस्थाएं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, देश भर से माता पिता अपने बच्चों को बोल रहे कि जाओ दिल्ली जाओ, अगर दिल्ली नहीं जा सकते तो बॉम्बे जाओ, बिहार में जाओ, लेकिन धरना प्रदर्शन करो। आज शिक्षा की बात है, आपको अपना भविष्य आपको बचाना है। मैं नहीं जा सकता पर मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक माँ ने एक आशीर्वाद के साथ अपनी बेटी को भेजा, एक बाप ने अपने बेटे के पीठ पे थपथपाकर उसको जंतर मंतर पे भेजा और डीयू आईआईटी जेएनयू कहती है आप मत जाओ, छात्रों को कहती है अगर आप जाओगे तो आपके करियर पर प्रभाव बन सकता है। यह है शिक्षा की संस्थाएं। ऐसे हम आने वाले पीढ़ी, आने वाले चुनौतियों के लिए हम भारत का निर्माण करेंगे, अपने युवाओं को हम उनको ताकत देंगे। इसीलिए अगर एक बात इस पूरे घटनाक्रम से निकलती है वो ये है कि आज शिक्षा में ये इस बिल से, जिसमें आपने पेनल्टीज बढ़ा दिए, पनिशमेंट बढ़ा दिए, इससे हमारा शिक्षा विभाग नहीं सुधरेगा। राहुल गांधी जी बार बार कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी सिर्फ एक मुखौटा है आपके शिक्षा विभाग, आपकी शिक्षा के प्रति जो उनका, आपकी जो नीति है वो सिर्फ एक उसका एक चिन्ह है, एक सिंबल है। उनके हटने से भी शिक्षा में सुधार आएगा? आज भी ना बच्चों को विश्वास आता है इस बात पर, ना हमें इस बात पर विश्वास है। लेकिन इसके पश्चात भी आज शिक्षा पर बातचीत हो रही है, आज शिक्षा को लेकर धरना हो रहा है, आज शिक्षा को लेकर जंतर मंतर में हजारों की तादाद पर लोग इकट्ठे हुए हैं, आज शिक्षा के विषय पर सारे दल संगठन सबने अपने अपने प्रदेशों में, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे या असम में हो, सब जगह विभिन्न राजनीतिक दल संगठन और इन दल संगठन से अलग सारे युवा सड़क पे आ गए, सबने अपने शिक्षा की मांग की। और क्यों मांग की? उनके दुख को पहले हमें समझना चाहिए, उनके पीड़ा को हमको समझना चाहिए, वो उनके अंदर जो नाराजगी है उस बात को हमें समझना चाहिए। नहीं तो किसी का इतना साहस नहीं कि सड़क पे आके गर्मी बारिश, सड़क पे सोना, पुलिस की लाठी खाना, दिन दिन भूख हड़ताल पे रहना, सबकी इतनी साहस नहीं है। ये साहस कहां से आता है? ये साहस आता है उस दर्द से, जिस दर्द में अपने भविष्य को लेकर वो विवश हैं, जिस दर्द में अपने देश के भविष्य को लेकर वो विवश है, जिस दर्द को वो आज के समाज में उसको व्यक्त भी नहीं कर सकते, सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। और बहुत ही बढ़िया, एक व्यक्ति ने इस पूरे जो दर्द है, इस दर्द का दर्द के बारे में बात करते हुए गोपाल दास नीरज के गीत की बात करता है। वो व्यक्ति जिस व्यक्ति से राहुल गांधी जी मिलने गए, उसने कहा, उसने हमें याद दिलाया कि नीरज की वो पंक्तियां, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी, भाग गए बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये बच्चों की वो दुख है, क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है इतने कि हम पेपर खरीद पाएं, 30-30 लाख का पेपर हमें खरीदने के पास हमारे पिताओं के पास इतने सामर्थ्य नहीं है। वो दुख है, वो नाराज है, और इसीलिए जब वो दुख से वो लड़ नहीं पाते तो आत्महत्या पर आ पड़ते। और एनसीआरबी में सर, आज देश की ये व्यवस्था, देश की असली ये है कि आज एनसीआरबी में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में, ये भी एक कारण है कि आत्महत्या हुई क्योंकि वो बच्चा एग्जाम में फेल हुआ, ऐसा भी एक कारण आ गया है। बच्चों की आत्महत्या, छात्रों की आत्महत्या लगभग 1 लाख से ऊपर बढ़ चुकी है, 1 लाख से ऊपर, जिसमें से 2000 ने तो साफ साफ कहा है, 2400 ने साफ साफ कहा है कि मैं फेल हो गया और इसीलिए मैं सुसाइड ले रहा हूं। बहुत लोग बच्चों ने फैमिली, पारिवारिक कारण से, फैमिली रीजन से वो आत्महत्या उन्होंने की, लेकिन इसके पश्चात भी वे युवा आए, वो चाहे गुजरात से हो, वो चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे विदेश से हो, चाहे दक्षिण भारत से हो, महाराष्ट्र से, वो सब आए। और जब वो आए और दिल्ली की गर्मी, दिल्ली के बारिश से, जब वो जो उन्होंने उसमें जो दर्द है, उसमें जो संघर्ष है, उस संघर्ष को याद करते, उस संघर्ष को झेलने में उन्होंने याद किया सावित्री बाई फूले को। वे लड़कियां जो आई थी, ऐसे बहुत लड़कियां थी जिन्होंने रील पे कहा कि मैं अपने माता पिता को बिना बोले मैं जा रही हूं क्योंकि मुझे लड़ना है। ऐसे भी लड़कियां थी जिन्होंने कहा कि मैं छात्र नहीं हूं, मैं काम करती हूं, लेकिन मैंने भी कुछ साल पहले नीट का परीक्षा दिया था, मैं पहले अटेम्प्ट में मेरा पेपर लीक हो गया, कितना मानसिक मेरे पे दबाव बना मैं खुद समझ सकती हूं। आज अगले पीढ़ी के साथ, जिस समय मैं खड़ी नहीं हो पाई, मैं बाहर नहीं आ पाई, लेकिन आज अगले पीढ़ी के साथ मैं खड़ा होना चाहती हूं, मैं जाऊंगी आज। ये सब वहां पे आए क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास को याद किया कि जिस प्रकार से सावित्री बाई फूले हो या फातिमा शेख हो, जिस प्रकार से समाज ने उन पर उत्पीड़न किया, लेकिन वो कभी भी अपने मार्ग से हटे नहीं। युवा लोग आए, एक लड़का था हरे शर्ट में, वो पुलिस को बोल रहा कि आ मार, मुझे मारो, मारो सर मारो। उसमें वो भगत सिंह का जज्बा हमें दिखाई दिया, हमेशा उसने हाथ नहीं उठाया, उसने खाली बोला कि मारो, क्योंकि ये थी लोगों की और युवाओं की ताकत कि अब वो डर उनसे चला गया, डर खत्म हो गया, डर गायब हो गया। लाठी है, दर्द होगा, रात को सोने में मुश्किल होगी, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होता, अगर शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर मुझे 2-3 लाठी भी खानी पड़ेगी तो मैं लाठी खाने जाऊंगा। ऐसे भी लोग थे जो 20 जुलाई की रात को आए, वो 20 जुलाई के सुबह नहीं थे, 7 बजे नहीं थे, 4 बजे दोपहर को नहीं थे, वो रात को 10 बजे आए। क्यों? कि उनको दुख हुआ, उन्होंने रील में देखा कि किस प्रकार से पुलिस वालों ने बच्चों पर हाथ उठाया और उन्होंने बोला कि चलो मैं भी एक लाठी खाने जाऊंगा। ये है हमारा युवा शक्ति। मैं इस सदन से भारत के युवा समाज को मैं नमन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, शुभकामनाएं मैं देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें दोबारा याद दिलाया कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, आपने दोबारा हमें याद दिलाया कि सवाल पूछना आप सबका, हमारा सबका मौलिक अधिकार है। हमने वो भी देखा उस मध्य प्रदेश से आए हुए आदमी को जिसके सर पर खून निकल रहा था, क्यों? क्योंकि कांटों से भरा हुआ एक डंडा उसके सर पर पड़ा और उसने तब भी वो पीछे नहीं हटा। खून से लथपथ उसका चेहरा उस समय भी पुलिस को लड़का रहा था कि देखो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता राज, प्रजा प्रजा राजा राजा होता है। ये है वहां की उस ताकत। मैं अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत से गलत शब्द भी उस सभा में जंतर मंतर में किए गए। मैं उन गलत शब्दों का, जो मर्यादा से बहुत दूर है, अमर्यादित है, उन शब्दों का समर्थन नहीं करता, लेकिन उन शब्दों के बारे में भी याद करना चाहिए जो बाकी बच्चों ने हमें याद दिलाया। किसी एक बच्चे ने याद दिलाया वसीम बरेली की कविता, जिसने जिसमें लिखा है, जो उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये है बच्चे, ये है वो बच्चे, और जो अलग अलग प्रदेश से आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई। हर वो बेटी जो वहां जाती थी वो कहती थी कि ये जंतर मंतर ये ऐसा एक जगह बन गया है जहां पर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूं। जब पुलिस की लाठी आती है तो कोई अनजाना व्यक्ति, कोई अनजाना उसके सामने आकर अपने शरीर से उस लड़की को बचाता है, डंडा उसके लड़के के शरीर पर पड़ता है, वो लड़का कहता है कि इस उंगली से मैंने पिछली बार कमल पर वोट डाला, आज इसी उंगली को कमल के पुलिस ने तोड़ डाला। ये है उनका साहस। आज समाज, मैं पूरे छात्र के साथ पूरे समाज को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उस गुरुद्वारों को मैं के संचालकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपना दरवाजा खोला, लोगों को वहां पे शरण दिया। ये है हमारी देश की खूबसूरती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश भर से लोगों ने फोन किया कि मैं वहां जा नहीं सकता, लेकिन स्विगी के द्वारा उन बच्चों को खाना तो पहुंचा सकता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन वकीलों का, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो, चाहे वो जंतर मंतर पे आए हो, सबने बोला कि लोकतंत्र के साथ संविधान के पक्ष में आज हम सब यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी भी, वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत, और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है, और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं आज इस सदन में, इस सत्र में, इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं।
1: yes.
0: गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं।
2: मेरा कहना है
0: सर, गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं।
2: यहाँ पर बैठे हैं
0: सर, आज ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है समझना चाहिए। ये बिल इसलिए आया है कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई, इसीलिए ये बिल आया है। आपने उस धरना को खत्म नहीं कर पाया, इसलिए ये बिल आया है। हमने देखा ना सिर्फ दिल्ली में, बिहार में आपने AK-47 का इस्तेमाल किया, ये नौबत है, ये नौबत है। हमने इसीलिए इसीलिए मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और धरना प्रदर्शनकारी के साथ है जिन्होंने कहा, जिन्होंने एक और हमें बहुत ही खूबसूरत गीत याद दिलाया दिनकर किया, दिनकर का, अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्म है तो दो बार नहीं मरना है। ये जो लोगों ने आज जो संदेश दिया है लोकतंत्र में, दोबारा उन्होंने आज हमारे ऊर्जा जो दी है, इसके लिए सारे विपक्षी दल, हम भारत के युवा समाज के साथ है, छात्र समाज के साथ है, वे सारे जिन्होंने संघर्ष किया उनके साथ है। और आज भी हम चाहते हैं कि गृह मंत्री आए और सदन के अंदर बोले कि क्यों आपने पुलिस के द्वारा बच्चों पर ये दुर्व्यवहार किया, बच्चों के पर आपने आक्रमण किया और बच्चों के साथ आज उनके आंसू निकलते हमने देखने पड़े। इन सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।
1: सुश्री बांसुरी स्वराज,
3: धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 के सपोर्ट में खड़ी हुई हूं। अध्यक्ष जी, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है। अध्यक्ष जी, जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, इसका असर तो उस उनींदी माँ पर भी होता है जो सुबह 4 बजे गर्म दूध और भीगे हुए बादाम अपने बच्चे को खिलाती है, उसका असर उस पिता पर भी होता है जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर उस बच्चे की फीस भरता है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, और इसीलिए मैं यहाँ कहना चाहूंगी और इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नियत है, इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहाँ पर लाया गया। स्पीकर सर, अ लॉ इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट, it needs to evolve with the challenges that it faces, and in a democracy as complex as ours, in a democracy as large as ours, an examination is definitely the truest, most meritocratic ritual, because this is one ritual where under the same clock the son of a laborer and the daughter of a CEO sit down, answer the same set of questions and get judged by the same yardstick. When such a ritual, such an examination is compromised, what gets diluted is a very holy covenant. A covenant that binds the most striving children of India. A quiet promise that in India, effort and merit alone shall prevail. अध्यक्ष जी, आज परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है, और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है, क्योंकि इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने चलती है न्याय के पक्ष में। क्यों? क्योंकि ये बिल ये प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बिल ये कहता है कि आपको मात्र 2 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको पूरा का पूरा ट्रायल 3 महीने के भीतर भीतर खत्म कर अपना फैसला देना है। डे टू डे ट्रायल के साथ साथ ये भी प्रावधान इस संशोधन में दिया गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे जाएंगे। उनका एकमात्र काम होगा केवल और केवल इस प्रकार के मुकदमों की पैरवी करना और किसी भी प्रकार की अननेसेसरी एडजर्नमेंट कोर्ट नहीं देगा। अगर किसी भी प्रकार की एडजर्नमेंट कोई भी पक्ष अगर लेगा तो उसके रीजंस जज राइटिंग में नोट कर देगा। और अगर किसी मुजरिम को ये लगता है कि अरे अपील कर वहां पर अपील का टाइम लंबा खींच लूंगा, तो अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका भी ये उम्मीद पूरी तरह समाप्त करता है ये संशोधन, क्योंकि ये संशोधन ये कहता है कि अपील डायरेक्टली डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट को जाएगी, यानी कि जहां पर दो जजेस न्यायपीठ पर बैठे हुए हैं, और अपील भी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त कर उसका फैसला सुनाया जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं स्वयं एक वकील हूं, हमें हमेशा एक लीगल मैक्सिम सिखाया गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये यही आत्मा बन गया है इस संशोधन का, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को बधाई देती हूं। स्पीड के साथ साथ ये संशोधन सजा को भी और कठोर करता है। आप ये देखिए कि अगर साधारण अपराधी है तो उसको 10 लाख नहीं 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा अब, और उसकी सजा भी 3 से 5 वर्ष की बजाय 5 से 10 साल तक बढ़ा दी गई है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इसमें जुर्म करता है तो उसका जुर्माना बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और 8 साल के लिए उसको डीबार कर दिया जाएगा। और यही नहीं, अगर कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, कोई संगठित अपराध इसमें अगर पाया जाता है, तो मिनिमम फाइन 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है और जेल का टर्म 7 से 10 वर्ष कर दिया गया। एंड देयरफॉर स्पीकर सर, दिस अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स मेरिट, इट प्रिजर्व्स फेयरनेस एंड सेफगार्ड्स द ड्रीम्स ऑफ इंडियाज यूथ। It provides for expeditious investigation. It provides for time-bound trial procedures while reinforcing institutional accountability across the entire examination ecosystem. This amendment is the product of a responsive governance by a responsible Modi government. But Speaker, sir, this reform is not in isolation. अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता हैं जो यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र देते हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, और इसीलिए परीक्षा में चर्चा कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। आप देखिए, 12 सालों में अध्यक्ष जी, मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल सीट्स हैव डबल्ड, दुगनी हो गई है उनकी संख्या। यही नहीं, IITs अब 16 के बजाय बढ़कर 23 हो गई हैं, IIMs 13 से बढ़कर 21 हो गई हैं, फंक्शनिंग एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब 7 नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में 7 से बढ़कर 20 हो गई हैं। यही नहीं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भारत में मोदी जी के कार्यकाल में 60% से ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। As far as higher education enrollment statistics are concerned, अध्यक्ष जी, 91 lakh additional students अब higher education के institutes में enroll करते हैं, जिसमें से 50 lakh महिला students हैं, female students हैं, और हाँ, SC students की enrollment तो 44% हो गई है। ST students की संख्या बढ़कर 65% हो गई है। अध्यक्ष जी, ये विस्तार केवल अफसरों का विस्तार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का विस्तार है। लेकिन मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स को केवल इंस्टीट्यूशंस तक सीमित नहीं रखा, डिजिटाइज कर ये सुनिश्चित कर दिया कि दीक्षा के माध्यम से एजुकेशन हर बच्चे के मोबाइल फोन तक पहुंच जाए, ईट पाठशाला के माध्यम से पूरी की पूरी लाइब्रेरी अब बच्चों की हथेली में है, सीयूईटी जैसा एडमिशन प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन लाकर एडमिशन प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बना दिया, और एनईपी 2020 में भारत की एजुकेशन सिस्टम को रिजिड स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। यदि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी के साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो उसको अब अपनी प्रतिभा में किसी एक सब्जेक्ट का चयन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि प्रतिभा ना परिस्थितियों की अधीन होनी चाहिए और ना ही एजुकेशन स्ट्रीम्स की मोहताज। अध्यक्ष जी, जब अफसरों का विस्तार होता है तो उसके साथ साथ उन अफसरों की निष्पक्षता भी सुनिश्चित करनी अनिवार्य है। ये अमेंडमेंट बिल 2026 का यही सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष जी, सदन में पिछले 2 वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को, सबसे पहली बात तो बेल सरकार नहीं, इस देश का कोर्ट देता है, और लोकतंत्र में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT examination 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment Board examination 2009, AIEEE 2011, SSC CGL examination 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट। अब मैं राज्यों के कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगी। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रीट, आरपीएससी, सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट, पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, सीएचएमओ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लीक हुए। टीएमसी की जब सरकार थी पश्चिम बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने 27,753 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करा गया, क्योंकि उन्होंने उसमें फ्रॉड और मैनिपुलेशन पाया। यही नहीं, जब बीआरएस की सरकार थी तेलंगाना में तो टीएसपीएससी पेपर का लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ, तब तो सॉल्वर गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड के गैंग्स वहां ऑपरेट करते थे। और हाल ही में पंजाब में, ये तो इसी साल की बात कर रही हूं, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में तो हाईटेक यानी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर उस पेपर को कॉम्प्रोमाइज करना गया। पर मैं पूछना चाहती हूँ इससे पहले कि विपक्ष मुझ पर ये इल्जाम लगाए दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वॉटअबाउटरी, दिस इज नॉट अबाउट वॉटअबाउटरी बट आई एम कॉलिंग आउट द ऑपोजिशन ऑन इट्स सिलेक्टिव आउटरीच। मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष से कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि अभी खड़े होकर इन्होंने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करी, क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? यही बात नहीं है अध्यक्ष जी, एक सिंगल प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मांग पिछले 30 साल से इस देश में पेंडिंग थी। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसका जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया तब ये मांग उभर कर आई। इसको आईआईटी डायरेक्टर्स कमिटी ने 2010 में रीइटरेट करा, इसे दोहराया, लेकिन ये मांग इसको अनदेखा कर दिया कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य कसौटी पर नहीं उखर रहा था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य उसकी बलि दी जा रही थी। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो 2017 में एनडीए का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेंजी की भाषा को बोरो करूं, देन आई विल हैव टू से मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन। बट व्हाइल नरेंद्र मोदी प्रोवाइडेड एन एंटी पेपर लीक लॉ, अ वेरी रोबस्ट लॉ व्हिच टुडे इज बीइंग इवन मोर फॉर्मिडेबल, ऑल दैट द ऑपोजिशन डिड वाज चेज पॉलिटिकल ऑपर्चुनिज्म। अध्यक्ष जी, फर्क साफ है, फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाय, मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी कवि दुष्यंत की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अध्यक्ष जी, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है, और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है। और इसीलिए मैं यहां से इस सदन के पटल से हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं। और आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी विपक्ष के साथियों से और सदन के एक एक सदस्य से कि सर्वसम्मति से आज इस संशोधन को पारित करिए। अब ना कोई पेपर बिकेगा, ना किसी का सपना झुकेगा, जो युवाओं के भविष्य को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। जय जगन्नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्री अखिलेश यादव जी,
4: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं अपने साथी माननीय सदस्य गौरव गोगोई जी के से सहमत हूं, बहुत सारे महत्वपूर्ण उन्होंने बिंदु उठाए। और अध्यक्ष महोदय, मुझसे ज्यादा मेरे रिश्ते शायद हमारे विपक्ष के लोग ज्यादा जान रहे हैं, और जितना विपक्ष के लोग नजर रखेंगे मैं समझता हूं उतना रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आंदोलन को बहुत दूर से देख रहा था और उस आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है। लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने, जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें। और बिंदु दूसरे अलग हैं, जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है, अध्यक्ष महोदय सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने, एक प्रधान जी को हटा करके प्रधान जी प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया अंतोगत्वा सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग किया उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी। और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया, जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठने दिया। सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया। हमने वो भी समय देखा है कि जहां पर धरने पे नहीं बैठने दिया, वर्षों वर्ष लोग बैठे रहे धरने पर, उनकी सुनी नहीं गई। इसी दिल्ली को घेरा था किसानों ने, और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आ जाता है कहीं कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मींस एक्ट, सरकार को कम से कम यह बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो, और केवल गिनती के एक दो पेपर लीक नहीं हुए। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें मां बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम उसमें जोड़ दें, दादा दादी मां बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे, और 5 × 20 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है, और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें माँ बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी, और अध्यक्ष महोदय जो लोग चढ़ावा चोटी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे किस कानून को? जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई है। दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया, जूनियर इंजीनियरिंग के भर्ती का पेपर लीक हो गया, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का पर्चा लीक हो गया, नलकूप चालक भर्ती का, यूपी टीईटी का परीक्षा लीक हुआ, और एक बार नहीं हुआ 3 बार पेपर लीक हुआ यूपी टेट का, हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा लीक कर दिया, इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा लीक हुई, इंटरमीडिएट का फिर परीक्षा का लीक हुआ, कई बार हुई, सिपाही भर्ती लीक हुई। आप सोचिए कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं, और नीट परीक्षा कोई पहली बार लीक नहीं हुई, दोबारा लीक हो गई, कानून बनने के बाद लीक हुई। सहायक प्रोफेसर भर्ती लीक है, लेखपाल भर्ती लीक हुई, यूपी जैसे स्टेट जो सबसे बड़ा स्टेट है, जहां से प्रधानमंत्री चुन करके आते हो, वहां तक पेपर लीक हो जा रहा है। और जो संस्था परीक्षा एग्जामिनेशन करा रही है वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया आपने। हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें।
5: आउटसोर्स सरकार है,
4: जो सबसे विश्वसनीय संस्था है उसमें आउटसोर्स पे आपने कर्मचारी को रखा हुआ है, किस बात की जवाबदेही है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ये तो नहीं है, आप अकाउंटेबिलिटी को ये ना कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए, कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है? आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने, जिस संस्था की जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की, उसमें सब आउटसोर्स। और ये सच कहा कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने मांग की है कि वो हम लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार कौन लोग थे जो आउटसोर्स होकर के बैठ करके परीक्षा में इस तरह की घोटाला कर रहे थे। आखिरकार जवाबदेही क्या है, किसकी थी? और फिर केवल नीट की परीक्षा की बात करें और परीक्षाओं की बात करें, अगर हम अध्यक्ष महोदय जब से सरकार बनी है तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा परीक्षा और यूनिवर्सिटी का ताना बाना पूरा ध्वस्त हो जाए, उसको एक रंगी बना दें हम, उसमें अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग शामिल हो जाएं। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हो रहा है। और फिर शुरुआत कहां से होती है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के गरीब लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ें। सरकार ने सबसे पहले हमला किया प्राइमरी स्कूल पर, और प्राइमरी स्कूल कितने बंद किए हैं आपने, जहां से बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू होती है,
6: एक गरीब परिवार का बेटा बच्चे कहां से पढ़ करके निकलते हैं? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों से पढ़ करके निकलते हैं। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे, वो उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके आज इस सदन तक पहुंचे होंगे। आपने सबसे पहले स्कूलों पे हमला किया और प्राइमरी से लेकर के नौकरी तक पे आपने हमला किया है। युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है और जो प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए हैं वो इसीलिए बंद किए हैं आपने कि पिछड़े दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख न जाएं। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जा रहा है, सबसे समाज के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमला आपने वहीं किया और इसीलिए किया क्योंकि नींव पर ही अगर हमला होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आंकड़े सरकार के बताए गए हैं, 1,00,000 से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, और अगर ये बात गलत है तो हमें उम्मीद है सरकार इस पर भी जवाब देगी। और अगर हम आंकड़े निकालें तो जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं और ये सरकार के आंकड़े हैं कि 7,00,000 से ऊपर विद्यालय थे जो अब 6,00,000 रह गए हैं और यूपी में तो सबसे ज्यादा बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 26,386 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने और केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया और घोटाला इतना बड़ा है कि वो सभी कोर्टों में गए हैं और पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। नहीं ठीक है तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसका भी जवाब देगी। माध्यमिक स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे स्कूल बंद हुए हैं और जो बोर्ड की परीक्षाएं लीक हुई हैं, पूरे देश में बड़े पैमाने पर बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार 10वीं और 12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? 10वीं और 12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इसके लिए अगर कोई सरकार के पास जवाब हो तो बताएं। और जो बच्चियों ने जान दी है नीट की परीक्षा में, जब परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और सभी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और हमें उम्मीद है कि सरकार उन बच्चों की मांग मानेगी जिन बच्चों ने ये शर्त रखी है कि उनके परिवार के लोगों को 1,00,000,000 मुआवजा दिया जाए। जब उच्च शिक्षा में जिस तरीके से भर्ती हो रही है, अध्यक्ष महोदय, जो उच्च शिक्षा की भर्ती है उसमें जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनके बारे में तो क्या चर्चा करें कि जब संस्था पे सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति ही अन्याय करेगा तो पूरी संस्था में अन्याय होगा। जब से ये सरकार आई है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन सब संस्थाओं में एक रंगी लोगों को बैठा करके उन संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं और न केवल उन संस्थाओं को खराब कर रहे हैं बल्कि अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई, इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी? और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। और जब नौकरी की बात आ जाए तो अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर भर्ती में भी जो हर साल में कितनी भर्ती होती थी, कभी 80,000 भर्ती हुआ करती थी,

0: अब भर्ती केवल 10,000 हो पा रही है। आखिरकार अध्यक्ष महोदय, सरकार नौजवानों की पढ़ाई और नौकरी पे हमला क्यों कर रही है? और नौकरी पे हमला क्यों हो रहा है? जब आप ये कहते हैं कि हमारे नौजवान हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड बन करके आए हैं, कहीं यही नौजवान हमारी आपदा न बन जाए, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तो तरक्की भी पक्की होगी। और ये तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा पर और परीक्षा पर हमला कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देता हूं। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप, जो 24 में बिल लेकर के आए थे, उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको तो संकट से बचा लिया। और अगर
1: अखिलेश जी तो समाजवादी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा है, बता दीजिए।
0: अध्यक्ष महोदय मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया, तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है, इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था, और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ, कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान, और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है।
1: अखिलेश जी बिल पे।
0: और अध्यक्ष महोदय, आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, शिक्षा की रक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ है वो हमेशा आंदोलन जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका।
1: श्री अभिषेक बनर्जी।
2: थैंक यू सर, आई rise here today to speak on the Public Examination Amendment Bill 2026. We support this bill, but I want to make it very clear in the beginning that just because we support this bill doesn't mean, or the government should expect us to applaud those who set the world on fire because they turn up with a bucket of water. We support this bill and the amendment because no responsible political party
3: आप इनको बोलिए
2: 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म करो,
3: इसको बंद कराइए।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se
1: Punjab National Bank Bharose Ka Prateek.
2: सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद छात्र हैं हजारों की संख्या में जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं।
3: इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं।
4: पुलिस के द्वारा यहां पर इनको रोका जा रहा है।
5: तमाम प्रदर्शनकारियों को तिथर बतर करने के लिए पुलिस की तरफ से टियर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर
7: राहुल गांधी को जमीन राहुल गांधी को उठा लिया गया।
8: पक्ष और सरकार के सांसद आमने सामने आ चुके हैं मकर द्वार के अंदर।
9: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं।
10: सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी, क्या ये सरकार करोड़ों युवाओं को नकार सकती है?
11: जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वाज वेरी रिलीव्ड।
12: तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
13: कॉन्फर्मेशन यहाँ देना चाहूंगी तीन बातों का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग कन्फर्म्ड है,
14: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है।
15: बहुत ही दुखद विषय है। कुछ समय पहले एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय। खुद सीजेपी ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई। मगर यह कहना आज कि AK-47, में बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर, इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बिल पर बहस जारी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई का बयान, ये बिल सरकार की असफलताओं का स्मारक। अखिलेश यादव बोले, प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचाया गया।

0: संसद का गतिरोध, 6 से 8 घंटे तक लोकसभा में होगी परीक्षा बिल पर बहस। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा सभी दल चाहे तो बढ़ा सकते हैं चर्चा का समय। विधेयक पर कल बोलेंगे राहुल गांधी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो गुड।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं गौरव सावंत। और सबसे पहले बात लोकसभा की, जहां दोपहर 2 बजे से पेपर लीक से जुड़े लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम, अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी नए कानून से। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने कहा यह सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर बिल्कुल नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती, यह सिर्फ दिखावे का बिल है। छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेटगन का आदेश किसने दिया? सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वचन नहीं जुमले देती है। दोपहर का सत्र शुरू होने पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैंने चर्चा के लिए 6 घंटों का वक्त तय किया है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर चाहे तो यह समय बढ़ाया भी जा सकता है। और इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी दलों से बात कर ली है, अब 8 घंटों तक चर्चा होगी, जरूरत होगी तो हम 10 घंटे के लिए चर्चा के लिए भी तैयार है। अब से थोड़ी ही देर पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संबोधन के दौरान उनके और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक हुई। देखिए पेपर लीक के मुद्दे पर इमरजेंसी का जिक्र क्यों हुआ और दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर दोनों ने एक दूसरे को कैसे घेरने की कोशिश की।
3: कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए।
4: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया है, तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है, इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा।
0: अच्छा, अखिलेश यादव की ओर से यह इकलौता तंज नहीं था, उन्होंने एक और तंज कसा। उन्होंने उस समय के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भी कड़ा एतराज जताया और कहा कि प्रधान को हटाकर प्रधान जी को बचाया जा रहा था। इशारा प्रधानमंत्री की ओर, सुनिए।
4: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने, एक प्रधान जी को हटा करके प्रधान जी प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
0: लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर संसद में इस समय चर्चा जारी है और इसके बीच कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। उनके आरोपों और सवालों का जवाब बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज ने दिया, जिन्होंने इसे एक रिफॉर्म एक्सप्रेस कहा। गौरव गोगोई की तरह ने कहा कि इससे कोई सुधार होगा ही नहीं। सुनिए,
5: सरकार ये दिखाना चाहती है कि यह बहुत गंभीर है। पिछले कुछ दिनों में पता चला कि NTA के लगभग 47 लोगों को बदला गया। सर, मैं इस सरकार से मैं ब्यौरा चाहूंगा कि वे जो 47 लोग हैं जिनको आपने ट्रांसफर किया या सस्पेंड किया, कौन है वो? क्योंकि एनटीए की जो एक्चुअल सैंक्शन कैपेसिटी है, एनटीए की जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 34 की है, 34 की सैंक्शन कैपेसिटी है। ये 47 कौन है, कौन है ये 47? 34 में से तो शायद 10-11 वैकेंसियां हैं, 24 ही है जहां पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो 47 जो सैंक्शन, ये कौन है जो आउटसोर्स करके अपने लोगों को लाया एनटीए में, वो लोग हैं क्या? उसका ब्यौरा मिलना चाहिए। हम जानना चाहते हैं आपने एनटीए के डीजी को बदला और एनटीए के चेयरमैन को रखा, ऐसा क्यों? आपको एनटीए के डीजी पर विश्वास नहीं, आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, आपने ये भी मान लिया, तो आपको एनटीए के चेयरमैन पे इतना विश्वास क्यों? ये हम जानना चाहते हैं
6: कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नियत है, इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहां पर लाया गया।
5: प्रधानमंत्री जब आते हैं, हाई पावर कमिटी की बात करते हैं, तो 2 साल पहले जो के राधाकृष्ण की जो हाई कमिटी थी उसका क्या हुआ? 2 साल हाई कमिटी आपने गठन की, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के निरीक्षण में एक हाई कमिटी बनी, के राधाकृष्ण फॉर्मर इसरो के चेयरमैन। अगर वास्तविक में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया तो 2 साल पश्चात ही आज क्यों दोबारा ऐसा पेपर लीक हुआ?
6: परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है, और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है, क्योंकि इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने चलती है न्याय के पक्ष में।
5: आज ये बात प्रधानमंत्री आते हैं इंस्टाग्राम के रील पर, वो अलग बात है कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उस कैबिनेट बैठक में शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, पेपर माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सेटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सॉल्वर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, टेस्टिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, कोचिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, सिलेबस कैसे स्कूल के सिलेबस के साथ मिले, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा के पेपर ना आए, सीबीएसई के ओएमआर में धांधली न हो, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर ध्यान दो।
6: कि बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है, और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है, और इसीलिए मैं यहां से इस सदन के पटल से हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं, और आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी विपक्ष के साथियों से और सदन के एक एक सदस्य से कि सर्वसम्मति से आज इस संशोधन को पारित करिए, अब ना कोई पेपर बिकेगा, ना किसी का सपना झुकेगा, जो युवाओं के भविष्य को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा।
0: वैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन उनका स्वागत विपक्ष को इस समय पसंद नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव से पहले कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने भी धर्मेंद्र प्रधान का जो भव्य स्वागत हुआ उसको लेकर न केवल बीजेपी बल्कि पूरे एनडीए पर सवाल उठाए और यही पूछा कि इससे क्या संदेश जाएगा बाहर। सुनिए,
5: 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा हुआ पेपर लीक, नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आप आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर।
0: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। कल बिल पेश करते हुए आज सदन में इस पर चर्चा भी हुई और इसी के तहत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साफ कहा कि नकल माफिया और संगठित अपराध में शामिल संस्थाओं पर अब 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा और सजा को बढ़ाकर भी 7 वर्ष से 10 वर्ष किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले जो मामलों में स्पीडी जस्टिस के लिए देश में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए नियमों के तहत 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी और घटना के दिन से लेकर अंतिम फैसले तक ये जो पूरी प्रक्रिया है ये महज 5 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। नए कानून के तहत इसका प्रावधान किया जा रहा है। इसके साथ ही परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और लीक प्रूफ बनाने के लिए इंफोसिस के जो संस्थापक है नंदन निलेकणी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ जैसे दिग्गजों को मिलाकर एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं कि यह बिल पेश करते हुए एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा।
7: जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 था उसमें था कि एनी पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व्ड विल बी लायबल टू अ पनिशमेंट नॉट लेस देन 3 to 5 years एंड अ फाइन अप टू 10 लाख। आज ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है इसके तहत द सेम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट हैज बीन मेड नॉट लेस देन 5 to 10 years एंड फाइन अप टू 50 लाख। द सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 इसमें था कि सर्विस प्रोवाइडर, नाउ हु इज सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो वी हैव ट्राई टू कवर अ वाइड रेंज सो दैट नोबडी गोज स्कॉट फ्री। I'll just read out the definition of service provider which has been provided in this amendment. Service provider means any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship firm, including its associates, subcontractors and provider of support of any computer resource or any material by whatever name it may be called, which is engaged by the public examination authority for the conduct of public examination. So, service provider ke liye saza pehle bhi kafi mazboot thi. There was fine up to 1 crore in the 24 Act. Usko badha karke ab 5 crore kiya ja raha hai. इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में ये भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 years। उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है। सो एनी सर्विस प्रोवाइडर found guilty of indulging in any kind of misappropriation or malpractice which has resulted in such consequences will be debarred from conducting an exam for the next or the subsequent 8 years. Isi tarah subsection 3 of section 10 director or senior management jo uske in charge honge even they will not be spared. Kai baar aisa ho jata hai kanun mein ki jo immediate handler hai usko punishment ho jati hai. So this act seeks to include all involved directly, indirectly, one way or the other, so that it sets a deterrent example also for others. So senior direct management persons or director ke liye, the imprisonment was 3 to 10 years in the earlier act. We are increasing it to 5 to 10 years, and the fine was up to 1 crore. It has been increased to 5 crore.
0: Lekin sansad mein कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई ने लोकसभा में सरकार को घेरा। पेपर लीक के आरोपियों पर शिकंजा कसने की ढिलाई को लेकर भी सवाल उठाए।
5: 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है, ताकि पता तो चले कि यह सरकार दो साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था, 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। मई 6, 2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है वो बेल। एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था उसको मई 7, 2025 को उसको बेल। एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा, मई 15, 2025 उसको बेल। राकेश जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसने उसकी चोरी की, उसको बेल। तो ऐसे एक लंबा ब्यौरा है, चाहे वो अमित प्रसाद महाराणा का हो या धीरेन्द्र कुमार पांडा का हो। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज दो साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ। और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे।
0: तो गौरव गोगोई की ओर से यह कड़ा प्रहार किया गया था कि 2024 का जो कानून था वो सरकार की विफलता का स्मारक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चर्चा के दौरान पूर्व की केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों का जिक्र किया कि पेपर लीक की जो समस्या है वो किसी एक राज्य या किसी एक परीक्षा या एक सरकार की समस्या नहीं रही है। एक लंबे अरसे से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों के दौरान इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। एक पेपर लीक का माफिया है जिसके खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है। सुनिए,
7: अब ये जो एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे, सूची लंबी है, लेकिन केवल याददाश्त ताजा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो बहुत ज्यादा समाचार सुर्खियों में रहे। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2009 में हो गया, 2012 में 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी, बाई चेंजिंग फिगर्स और डिजिट्स यू कैनॉट चेंज द रिकॉर्ड, सो इट इज ऑन रिकॉर्ड। 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 आई विल गो ऑन एंड ऑन, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग देन, 2011 ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2012 एम्स न्यू दिल्ली एंट्रेंस पेपर लीक, 2013 महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन. सो इफ आई गो ऑन एंड ऑन देन आई विल नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट द बिल एज सच बट द लिस्ट इज ओके. 2010 ओके इफ दैट सेटिस्फाइज ओ इफ दैट सेटिस्फाइज यू यू आर वेलकम यू आर वेलकम यू आर वेलकम. 2010 बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश. 2012 तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन. आई कैन गो ऑन टिल यू आर सेटिएटेड. 2009 वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम. सो देयरफॉर इट वॉज रियलाइज बाय दिस गवर्नमेंट दैट We need to have an exclusive legislation.
0: इसमें दो राय नहीं कि एग्जाम पेपर पहले भी लीक होते थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या इस समय हमारे जितने भी सांसद हैं सब एक मंच पर आकर एक ऐसा कड़ा कानून लाएंगे जिससे पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ी जा सके. इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर. फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी. लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से. In association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक.
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी. लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा. In association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
1: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: खाने की थाली में स्वाद का तड़का लगाने वाला एडिबल ऑयल और चाय से लेकर मिठाई का स्वाद बढ़ाने वाली चीनी, दोनों ही इस वक्त आम जनता की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। इसलिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA की रिपोर्ट में देश के बढ़ते आयात खर्च पर गहरी चिंता जताई गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि मार्केटिंग ईयर 2025-26 में देश का एडिबल ऑयल इम्पोर्ट बढ़कर 1,75,00,000 रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ये आंकड़ा पिछले साल के 1,61,00,000 रुपए के इम्पोर्ट बिल के मुकाबले करीब 9% ज्यादा है। मार्केटिंग ईयर के पहले 8 महीनों में ही 1,19,00,000 रुपए का तेल इम्पोर्ट हो चुका है, जो पिछले साल इसी दौरान 99,000 करोड़ था। खाद्य तेलों के इस बढ़ते इम्पोर्ट बिल के पीछे रुपये की कमजोरी और ग्लोबल मार्केट के दबाव को बड़ी वजह माना जा रहा है। घरेलू स्तर पर भी मौसम का मिजाज सरकार और आम जनता की टेंशन बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर मॉनसून से 17 जुलाई तक देश में खरीफ तिलहन की बुआई घटकर 147,00,000 हेक्टेयर रह गई है, जो पिछले साल 155.7 लाख हेक्टेयर थी। दरअसल इंडोनेशिया के बायोडीजल प्रोग्राम और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल तनाव के असर से माल ढुलाई और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ी है, जिससे तेल महंगा हुआ है। तेल के इस खेल के बीच भारतीय थाली को मीठा करने वाली चीनी भी अब कड़वी होती जा रही है। बीते महज एक महीने के भीतर चीनी की कीमतें 15% से भी ज्यादा बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी की एक्स मिल कीमतें 4,400 से लेकर 4,500 रुपए प्रति क्विंटल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंची हैं। वहीं दिल्ली के थोक मार्केट में चीनी की कीमत 4,800 रुपए प्रति क्विंटल तक दर्ज की जा रही है। हालांकि सरकार ने फिलहाल चीनी इंपोर्ट करने की किसी भी योजना से साफ इनकार कर दिया है, दूसरी ओर बढ़ती कीमतों को लेकर मिल मालिक और व्यापारी आमने सामने आ गए हैं। मिल मालिकों का आरोप है कि वो जमाखोरी नहीं कर रहे, बल्कि व्यापारियों के लेवल पर होर्डिंग कर बाजार में आर्टिफिशियल कमी पैदा की जा रही है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि मिल्स ने पहले प्रोडक्शन का गलत एस्टीमेट देकर सरकार से 5,00,000 टन चीनी के एक्सपोर्ट की मंजूरी ली, जिससे देश में सप्लाई घट गई है। इस बीच देखना यही है कि आने वाले दिनों में देश में जरूरी सामानों की महंगाई की चाल कैसी रहती है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

तो जितेंद्र सिंह ने की चर्चा की शुरुआत, कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई का बयान, ये बिल सरकार की असफलताओं का स्मारक। अखिलेश यादव बोले, प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचाया गया। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज ने बिल को बताया ऐतिहासिक, कहा नहीं बचेगा माफिया। नरेंद्र मोदी सरकार में चल रही है रिफॉर्म एक्सप्रेस, विपक्ष करता है सेलेक्टिव राजनीति। क्यों नहीं मांगा पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। सात दिन बाद टूटा संसद में गतिरोध, 6 से 8 घंटे तक लोकसभा में होगी परीक्षा बिल पर बहस। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा सभी दल चाहें तो बढ़ा सकते हैं चर्चा का वक्त। विधेयक पर कल बोलेंगे राहुल गांधी।

के बाद छात्रों में उबाल, वाइस चांसलर के कमरे में लॉक किया, पूरे परिसर में तोड़फोड़, विश्वविद्यालय कंपाउंड में पानी भरने से फैला करंट। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में पाकिस्तानी सेना का दूसरा बड़ा नरसंहार। मीरपुर में भी प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग, कई लोगों की मौत की खबर। रावलाकोट में कल आसिम मुनीर की आर्मी ने ली थी 20 लोगों की जान।

0: गाड़ी मस्जिद की तरफ से जा रहा चली और आंसू के हाथ बताई जा रही है। ये देखे इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है।
1: लगातार फायरिंग जारी है।
2: खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात खराब हो चुके हैं।
3: इस बंदे
4: ठीक है। माय रामलकोट हैव बीन मर्डर्ड। कैंपस ऑफ माय ब्रदर्स, कैंपस ऑफ माय फादर्स हैव बीन किल्ड इन रामलकोट।
5: नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि। मैं हूं गौरव सावंत और इस समय पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर एक रणभूमि बना हुआ है। वहां की आवाम आवाज उठा रही है और पाकिस्तान में आसिम मुनीर की फौज उन्हें रौंद रही है। वही पाकिस्तानी फौज जो आज तक भले ही कोई जंग ना जीत सकी हो लेकिन पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तान की बंदूकें बरस रही है, मौत बरसा रही है। सबसे खौफनाक और चिंताजनक तस्वीरें पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के मीरपुर इलाके से आ रही हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। यहां पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के रेंजर्स ने मीरपुर बाजार में निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी हैं। गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और जहां एक ओर लाशें बिछी हुई हैं दूसरी ओर घायल लोग अपनी जान बचाते भाग रहे हैं। हम जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं ये वीडियो साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तानी रेंजर्स निशाना साधकर निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं। इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में और जो खबर आ रही है वो ये है कि 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि पाकिस्तान से नहीं हो पा रही है लेकिन सोचिए सरे

0: बेकसूर लोगों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पहले पीटा गया और फिर गोली मार दी गई। ये कैमरे पर कैद हुई तस्वीरें हैं। पूरा रावलाकोट अपनों के खून से और अपनों की लाशों से समय अटा हुआ है। सड़कें खून से सनी हुई हैं और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां की आवाम कह रही है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि आसिम मुनीर जो कसाई है उसने जो खून बहाया है वो जनरल डायर ने भी नहीं किया, जो जनरल आसिम मुनीर ने किया है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों के कपड़े, लोगों के रुमाल, लोगों के कुर्ते वो खून से सने हुए हैं। कल का दिन पाकिस्तान के इतिहास का ये स्याह दिन है। एक तरफ आसिम मुनीर की फौज पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में चुनावों के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है, बैलेट बॉक्स लूटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ चुनावों का बहिष्कार करने वाली आवाम पर गोलियां बरसा रही है। कल के कत्लेआम में 20 प्रदर्शनकारियों की लाशें गिर चुकी हैं। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि इस समय बात कहा यह जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों की हालत बेहद गंभीर है। ये पाकिस्तानी फौज की खुली दहशतगर्दी है, उन्हें किसी का खौफ भी नहीं क्योंकि कैमरे पर कैद हो रहे हैं लोगों की लाशें गिराते पाकिस्तान के सैनिक। मुनीर की दहशतगर्द फौज ने 2 महीने के भीतर, खबर आ रही है कि लगभग 91 लोगों को, जम्मू पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के 91 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के मुंह में भी दही जमा हुआ है, फफूंद लग गई है उनके मुंह पर, ऐसा लगता है एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, उनके मुंह पर ताला है। जो मानवाधिकार का ढिंढोरा पीटने वाले पश्चिमी देशों की मीडिया है या पश्चिमी देशों के जो का एक पूरा इकोसिस्टम है वो भी आंख मूंद कर इस समय सो रहा है, इसकी परवाह किए बिना कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में कत्ल नहीं रुक रहे हैं, पाकिस्तान की फौज वहां पर कत्ल कर रही है। मुजफ्फराबाद की ओर आवाम बढ़ रही है, इस बार वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान से आजादी के लिए अब आर पार की जंग की बात कर रहे हैं। ये 4 अलग तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाती हैं कि इस समय पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थिति कितनी संवेदनशील है। और हम आपको यह भी बता दें कि भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में जो जम्मू और कश्मीर का भाग है उसमें जो फ्रॉड चुनाव है उसकी जो प्रक्रिया है उस पर भारत ने एतराज जताया है। भारत ने दो टूक कहा है कि जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, भारत का अटूट अंग है, अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में चुनावी नाटक सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे, कुशासन और वहां हो रहे मानवाधिकारों के हनन पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश है। भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसमें पाक अधिकृत गिलगित और बाल्टिस्तान जिसे पाकिस्तान अपना नॉर्दर्न एरियाज बोलता है वो भी शामिल है। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के रेंजर्स ने यानी पाकिस्तान के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उन्होंने आज सवेरे रावलाकोट में निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी हैं। लाखों प्रदर्शनकारी वहां चिनार चौक पर जमा हुए और अब वो हटने से इनकार कर रहे हैं। विरोध का काफिला चिनार चौक जब पहुंचा रावलाकोट में मकबूल बट शहीद चौक पर रात के लिए रुकने से पहले डी चौक की ओर वो बढ़ रहा था और इसी दौरान पाकिस्तान के रेंजर्स ने उन पर फिर से अंधाधुंध फायरिंग कर दी और ये सारी तस्वीरें लोगों के कैमरों में कैद हो गई। हालांकि वहां इंटरनेट बंद है लेकिन कुछ दूर जाकर लोगों ने ये तस्वीरें इंग्लैंड में, अमेरिका में, दुनिया भर में अपने रिश्तेदारों के साथ साझा की और कहा दुनिया उनके लिए आवाज उठाए क्योंकि आसिम मुनीर इस समय जल्लाद मुनीर बना हुआ है।
1: नंबर्स नहीं है, लाशों की तस्वीर भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं और किसी के पास कोई कंपाइल डाटा नहीं है कि अभी तक ये 30 है नंबर शहादतों का, 20 है या कहीं ज्यादा है, क्योंकि गोली बहरहाल खुलेआम चली है और बगैर किसी शक्को शुबे के वहां पर बड़ी कत्लोगारत जो है वो कर दी गई है। कश्मीर एक्शन कमेटी के रहनुमा ख्वाजा मेहरान ने पाकिस्तान के साथ तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद करने का ऐलान किया है। मुबारक हो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री, हिलाले जुरत, आपने मतलब काम कर दिखाया है। अब कश्मीरी कह रहे हैं कि

0: पिछले 1.5 महीने में ओवैसी यूपी के 4 जिलों में बड़ी रैलियां कर चुके हैं। बहराइच से बिजनौर तक और सहारनपुर से मुरादाबाद तक की रैलियों में ओवैसी के निशाने पर मोदी योगी सरकार रही है, जिसमें मुसलमानों के सवाल रहे हैं। लेकिन हर रैली के मंच से ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में घुसने की दलीलें भी दी है। इस बार फिर मुरादाबाद की रैली में ओवैसी खुलकर समाजवादी पार्टी को गठबंधन का ऑफर देते नजर आए हैं।
1: मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद।
2: किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे।
0: ओवैसी पर समाजवादी पार्टी के आरोप यूं ही नहीं है। दरअसल ओवैसी यूपी में चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाके ही होते हैं, जहां 90% वोट इंडिया गठबंधन को मिलता रहा है। ओवैसी की पिछली 4 रैलियां जिन जिलों में हुई हैं, वहां 2024 में इंडिया गठबंधन को सहारनपुर में 21-85% मुस्लिम वोट मिले, मुरादाबाद में 85% से अधिक वोट मिले थे, बहराइच में 78-82% मुस्लिम वोट मिले थे, बिजनौर में 75% मुस्लिम वोट मिले थे। और इन चारों ही जिलों में दूसरे नंबर पर बीएसपी थी, जिन्हें मुस्लिम वोट मिले थे। ओवैसी इन्हीं जिलों पर इस बार अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, क्योंकि 2022 में सहारनपुर जिले की 7 में से 5 सीटें एसपी के पास थी, 85% वोट थे। बिजनौर की 8 में से 4 सीटें एसपी गठबंधन ने जीती, 80% वोट मिले। मुरादाबाद में 6 से 5 सीटें एसपी ने जीती, 88% वोट मिले। बहराइच में 7 में 6 सीटें और 78% वोट मिले। ऐसे में इन्हीं सीटों पर जब ओवैसी एक्टिव होते हैं तो समाजवादी पार्टी इन्हें बीजेपी की बी टीम बताने लगती है। ऊपर से ओवैसी गठबंधन का ऑफर भी शर्तों के साथ पेश कर रहे हैं।
1: अब हम दरी नहीं बिछा कर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबर ही चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा।
0: ओवैसी यूपी में हर वो मुद्दा हथियाने की कोशिश करते दिखते हैं जो पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी का मुद्दा हुआ करता था। इसी में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी है। हालांकि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि दल डीएम से मिलकर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें ढहाने के खिलाफ ज्ञापन दे चुका है, लेकिन ओवैसी इसे चुनावी सियासत बताते हैं। यूपी में अभी तक ओवैसी के मुद्दे सिर्फ मुसलमानों से जुड़े नजर आते हैं, वक्फ, बुलडोजर, मस्जिद, मदरसे और मुठभेड़ों से जुड़े नजर आते हैं। हालांकि ओवैसी दलील देते हैं कि संविधान का राज कायम करने के लिए वो किसी भी दल के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: कोई काम नहीं बचा है। जनता ने बार बार उनको जो रास्ता दिखाया है, उनको लगता है बच्चों के भावनाओं के पे ऊपर राजनीति करके वो निकल जाएंगे। और यही काम उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जो धरना का काम किया, वो क्या था, जब ऑलरेडी बात चल रही थी, वो लोग धरना पे बैठे हुए थे, एक पैरेलल खड़ा करके कि हम नहीं पीछे रह जाए, राजनीति चमकाना था, इसलिए ना जा करके चुपचाप जा करके बैठ गए खड़गे जी के घर से निकल करके बर्थडे के नाम पर।
1: देवी बनाए थे उनका क्या हुआ, वो कमजोर थे क्या? पहले जो बनाया आपने वो कमजोर थे, जो पहले कानून बनाया वो कमजोर था, उसको इम्प्लीमेंट करानी अगला कानून बता दिया आपने। अरे उसको तो इम्प्लीमेंट कर लेते, उसमें तो चार्जशीट दाखिल नहीं करी, वो मुखिया मुखिया को वो बरी होकर के चला गया। करना कुछ नहीं है, बातें बातें करनी है, करिए, डिलीवर करने का टाइम है, ये आपकी बातों से नहीं पेट भरेगा लोगों का।

हवाई जहाज के सफर का नाम सुनते ही दिमाग में आराम और रफ्तार की तस्वीर आती है। बादलों के बीच उड़ते हुए मंजिल तक पहुंचने का रोमांच हर किसी को पसंद आता है। लोग पैसे खर्च करते हैं जिससे सफर आरामदायक रहे, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस आराम के लिए आप टिकट खरीदते हैं वही धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दरअसल बढ़ती यात्री संख्या और लागत को नियंत्रित रखने की कोशिश में विमान कंपनियों ने इकोनॉमी क्लास में यात्रियों के लिए उपलब्ध जगह लगातार घटाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल पहले इकोनॉमी क्लास में दो सीटों के बीच की दूरी 34 से 35 इंच होती थी, आज ये दूरी घटकर 30 से 31 इंच रह गई है, जबकि कुछ बजट एयरलाइंस में तो 28 से 29 इंच तक सिमट चुकी है, यानी पैरों के लिए उपलब्ध जगह में करीब 4 से 7 इंच तक की कमी आई है। सीटों के बीच की दूरी ही नहीं, उनकी चौड़ाई भी पहले के मुकाबले कम हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि पहले सीटों की चौड़ाई करीब 18.5 से 19 इंच होती थी, आज कई विमानों में ये घटकर 16.5 से 17 इंच के बीच रह गई है। वहीं पिछले 4 दशकों में लोगों की औसत शारीरिक चौड़ाई करीब 8 से 13 फीसदी बढ़ी है, यानी यात्री पहले के मुकाबले ज्यादा जगह घेरते हैं लेकिन सीटें छोटी होती जा रही हैं। विमान कंपनियां ज्यादा यात्रियों को जगह देने के लिए सीट की लंबाई चौड़ाई में बदलाव कर रही है। यही वजह है कि लंबी दूरी की उड़ानों में असुविधा की शिकायतें बढ़ रही है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बोइंग 737 में पहले 120 से 130 सीटें होती थी, जो अब बढ़कर 180 से 190 तक पहुँच गयी है। एयरबस A320 में सीटों की संख्या करीब 150 से बढ़कर 180 से 186 के बीच हो गई है। वहीं भविष्य के लिए ऐसी सीटें भी विकसित की जा रही हैं जिनमें यात्री पूरी तरह बैठने की बजाय टिक कर सफर करेगा। इसी तकनीक का एक उदाहरण स्काई राइडर 2.0 है, जिसे इटली की एक कंपनी ने विकसित किया है, जिसका दावा है कि इससे विमान में करीब 20% ज्यादा यात्रियों को जगह दी जा सकती है। फिलहाल स्थिति ये है कि अगर आप उड़ान के दौरान ज्यादा लेगरूम चाहते हैं, तो इसके लिए अतिरिक्त पैसा चुकाना पड़ सकता है। घरेलू उड़ानों में ऐसी सीटों के लिए 500 से 2000 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में ये चार्ज 3 से 10 हजार रुपए तक पहुंच सकता है। हवाई सफर में सीटों की जगह कम होना यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में उड़ान भरने से पहले टिकट की कीमत के साथ साथ सुविधा और सुकून का ध्यान रखना जरूरी हो गया है। आज तक ब्यूरो।

0: लोकसभा में परीक्षा बिल पर बहस जारी। जितेंद्र सिंह ने की चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई का बयान, ये बिल सरकार की असफलताओं का स्मारक। अखिलेश बोले, प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचाया गया। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज ने बिल को बताया ऐतिहासिक। कहा, नहीं बचेगा माफिया। मोदी सरकार में चल रही है रिफॉर्म एक्सप्रेस, विपक्ष करता है सेलेक्टिव राजनीति। क्यों नहीं मांगा पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर ली जाएगी वापस। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया निर्देश, सीजेपी के साथ केंद्र सरकार के समझौते के बाद एक्शन। पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने से पीएचडी छात्रा की मौत के बाद छात्रों में उबाल। वीसी को कमरे में लॉक किया, पूरे परिसर में तोड़फोड़। विश्वविद्यालय कंपाउंड में पानी भरने से फैला था करंट। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में पाकिस्तानी सेना का दूसरा नरसंहार। मीरपुर में भी प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग, कई लोगों की मौत की खबर। रावलकोट में कल बुनियाद आर्मी ने ली थी 20 लोगों की जान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूँ साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। और आज संसद में सियासी दंगल चल रही है।
1: हमसे कुछ ही समय पहले आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री जेपी नड्डा वहां गए थे और उनसे कुछ समय पहले अन्य नेता भी गए। जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की माँ नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। हा? सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए। किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते, किसी कोई भी हो, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते।
2: बिल्कुल,
1: आप संसद में बैठे हैं,
2: निशिकांत जी आप बना रहे हो।
1: जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की माँ नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। किस लिए आए हो, उसने आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमें पूछा। हमारे सामने कांपते हुए हाथ जोड़े कहने लगी कि धन्यवाद आप आए हैं, ठीक है, मगर मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। महोदय, उस माँ की पीड़ा से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, सुबह से बड़े बड़े लोग यहां आ रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं, वह भी आए जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है, किस लिए, उसने हमसे पूछा।
2: शेम,
1: किस लिए? मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई है, लेकिन उसे कुछ भी हो जाए तो मैं उसके लिए अपने आप लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले लड़ लूंगी। महोदय, शायद मुझे यहां खड़े होकर सबके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर उस माँ की गुहार ने मुझे शर्मिंदा किया। उसके दिल के टूटने की वो आवाज जो अस्पताल की दीवारों से मैं गूंज रही थी, मेरे मन में अभी भी गूंज रही है। इसलिए उस माँ की इजाजत लिए बिना मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया, गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन, यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब, इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। ये करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहां तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए गाते मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी? कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है, उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है, और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी, जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे, देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है, और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है, 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट, और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस तरह देश के भविष्य, हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता, उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहां फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर अखबारों में है,
3: अखबार में नहीं, मेरा
4: कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? तो कैसा क्या है इनके पास?
5: ऐसे ही कोई आरोप लगा दीजिए, कोई नियम कानून नहीं है,
6: गांधी जी बोल रही थी तो बीच में उनके वहां से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहां से भी हुए थे, अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं। लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर एसेसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से।
7: मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी
3: वो भी डिलीट करो सर, ये तो किसी काम बोलता, वो भी ये सीधे काम बोल रहा था
1: सर। सर जो जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्कीज बानों के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज मैं ऑथेंटिकेट
3: करूंगा।
5: स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने

0: पेपर लीक के बिल पर भाषण कर रही थी और इस बीच उन्होंने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के
1: आप उनको बोलने दो, आप मत को डिस्टर्ब। मैं एक विषय बता दूं, एक मिनट बताऊं। नियम 353 के अंदर फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध महानहारी या अभियोगात्मक प्रकृति का कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दे दी हो। ये व्यवस्था है।
2: House man, this same house, Honorable Shikant Dubey told, still that is in the record about Indira Gandhiji. Still that is in the record. Still that is in the record. Sir, sir, sir, you are not removed, sir.
1: Bolo, aap bhi bolo.
3: Sir, Kesi Venugopal ji ne jo naam liya hai, aur main Nehru ji ke baare mein jo baat kaha hai maine sir, main us par kaam hoon aur main kitab jo hai authenticate karne ke liye taiyar hoon.
1: जब आसन पर होता हूं, जो मैं व्यवस्था देता हूं, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मैं समान व्यवस्था देता हूं। मैं जब आसन पर होता हूं, बोलने दो, आप उनको बोलने दें, उनको बोलने दें। नो, अरे आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, चलिए चलिए।
4: 114
1: प्लीज प्लीज चाहिए।
5: सर सर सर, प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। आप जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक,
4: 114
5: में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए हुए, इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए।
6: नहीं, ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा सर, बिल पे बिल पे।
7: सर, here is a newspaper article. सर,
8: अरे आप तो पूरा बुकी ले गए, आपने
7: सर, written by a respected journalist. I will authenticate using this, sir. आप
1: माननीय सदस्य प्लीज इसको छोड़ दें।
7: सर, अगर जोशी जी अपने बयान का खंडन,
1: इस विधेयक पर ही चर्चा होगी,
7: आप इस बयान का खंडन कर रहे हैं?
1: माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ, इस सदन में इस विधेयक पर ही चर्चा होगी, फिर भी नो, ये विधेयक का विषय नहीं है, आप नो, आप बोलो तो विधेयक में बोलो, ये मेरी अपेक्षा आपसे। प्लीज छोड़िए, इस विषय को छोड़िए।
7: आज हम सदन पटल पर एक ऐसे विधेयक में संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं जो 2024 में पारित हो चुका था, और इसमें मुख्य संशोधन यही है कि पेपर लीक के अन्य अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। मगर जब से ये विधेयक पारित हुआ तब से अब तक इस सरकार ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है, इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा, उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी, आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ,
9: अरे बात
7: फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर सच है, आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं, मन मुस्कुरा लीजिए।
1: वो आपने भी चुनाव लड़ा।
7: सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है, वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 महीने तो एग्जाम चलते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। सिर्फ आरएसएस के लोगों से भरने की बजाय सिस्टम को शिक्षित, एजुकेटेड, उन्नत और उदार दृष्टिकोण के लोगों से भी भरिए, जिनकी योग्यता सिर्फ उनकी विचारधारा न हो। रोजगार पैदा करने के सख्त कदम उठाइए, इस पर फोकस करिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए, ताकि ये बच्चे जो मेहनत कर करके भी अपने भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देख पाए। अध्यक्ष महोदय, छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। देश के नौजवान न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। वे यहां सरकार गिराने नहीं, अपना भरोसा बचाने के लिए आए थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, अपनी साख बचाइए, अपनी नियत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं, चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी, लेकिन सबसे बड़ी चोरी हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई, कहिए बोलिए शांति से सुन लीजिए। आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी, किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे, मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। सर अब तो मुस्कुरा लीजिए, भाषण खत्म।
9: जी ने राहुल गांधी जी का स्पीच का चोरी कर लिया है, वो पूरा
10: ड्रामा।
11: अच्छा
0: तो प्रियंका गांधी ने चुटकी ली है, कहा है कि क्या जरूरत थी छात्रों पर लाठीचार्ज करने की। पैलेट गन चलाने का मुद्दा भी उठाया गया और कहा बेरहमी से जिस तरीके से लाठियां चलाई गई वो छात्रों को मंजूर नहीं होगा। पैलेट गन चलाने की क्या जरूरत थी, और कांग्रेस पार्टी जवाब मांग रही है। प्रियंका गांधी के स्पीच में कई बार सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, एनडीए के सांसद है, उनके तरफ से कई आक्षेप उठाए गए, खास करके शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के एक बयान को लेकर जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने किया, उस बात को लेकर भी काफी हंगामा हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री पर चुटकी लेते हुए, उस वीडियो पर चुटकी लेते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अलग अलग एंगल से वीडियो बनाने से नहीं होगा, दिल का एंगल बदलना होगा। लेकिन उसके साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा भी प्रियंका गांधी ने उठाया हुआ है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं।
12: फ्यूचर एंड ही नोस दैट दिस गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप इज ट्राइंग टू फिक्स द सिस्टम वंस एंड फॉर ऑल फॉर द बेटर फॉर हिज फ्यूचर। अध्यक्ष जी, एजुकेशन इस देश में एक ऐसा एक महत्वपूर्ण लैडर है समाज में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और आम परिवार को, ऑर्डिनरी परिवार को शिक्षा के अलावा दूसरा रास्ता होते ही नहीं। बाकी जो परिवार होते हैं, अमीर परिवार से आते हैं बच्चे, उनको कई सारे रास्ता होते हैं, पापा के बिजनेस होता है, उनको लाइफ में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कई सारे होता है। जो आम परिवार से जो बच्चे होते हैं उनको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होते अध्यक्ष जी, उनको एग्जाम के तैयारी करना पड़ता है, शिक्षा के माध्यम से ही उनको जीवन में आगे जाना पड़ता है। और शिक्षा और एग्जामिनेशन एकमात्र ऐसा व्यवस्था है देश में जहां आपके सरनेम ना पूछा जाता है, जहां आपके परिवार का पर कैपिटा इनकम ना पूछा जाता है, आपके कास्ट, आपके बैकग्राउंड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ पता नहीं, पूछा नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत के आधार पर आपको वहां एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। और इसलिए अध्यक्ष जी, जब शिक्षा में और एग्जामिनेशन में मैल प्रैक्टिस जब होता है, जब पेपर लीक होता है, तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं. व्हाट डिड वी डू राइट आफ्टर द एग्जामिनेशन पेपर लीक? इमीडिएटली वी टुक 3 steps. फर्स्ट, टू इंश्योर जस्टिस. केसेस दर्ज हो गया, सीबीआई जांच हुई, पूरे देश में इसके ऊपर जो किए थे उनका अरेस्ट हुआ. दिस वॉज टू इंश्योर जस्टिस. सेकेंड, रीनीट हमने की एंड वी डिड इट इन अ रिकॉर्ड टाइम, ताकि बच्चों का एक पूरा एकेडमिक साल खराब ना हो. रीनीट वॉज कंडक्टेड. दिस वॉज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी डिलीवर्ड ऑन दैट. सेकेंड एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्यक्ष जी, वॉज ब्रिंगिंग इन रिफॉर्म्स to strengthen the NTA and make sure that the next NEET, whenever it happens, will not fail the students. Pradhan Mantri ji, isliye do bade kadam uthaye. One, we have declared that the next examination will be a computer-based examination on the basis of how IIT JEE exams take place, a very big examinations reform. Second, the Prime Minister has also set up a high-powered committee to make various reforms, recommendations to in the whole of the examination apparatus, from setting the question papers to the examination center, and these all will be carried out in good faith. Third and the most important reform is also strengthening this law that we are discussing today. Adhyaksh ji, Priyanka ji, abhi tak bahut vistar mein baat ki. I want to ask her, in 2010, UPA government had introduced a similar bill, prevention of malpractices bill.
10: To take your seat.
12: Why did you not pass the bill? Why did that bill fail? If at all you were so concerned about the future of young people, in 2010, you should have passed this bill so that the last 30 years, these paper leaks would not have taken place. Adhyaksh ji, in 75 years of India's independent history, कई सारी पेपर्स लीक हो चुके हैं. मैं जब इस भाषण के लिए तैयारी कर रहा था, हजारों पेपर्स इन द लास्ट 20 इयर्स, मोर देन 200 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस, केंद्र स्तर सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे. आई कैन गिव यू अ फुल लिस्ट व्हेन हु वाज इन पावर, बट इज दैट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? The student does not need politics. He does not want solution. He does not want slogans. He wants solution. And this bill that Prime Minister Modi is bringing today is the solution. It is 30 years late, but for the first time in the country's history, 70 years ke baad ek special kanoon examination ke baare mein parit ho raha hai. All of these whiles, Priyanka ji asked a question. Why has there been no conviction? Priyanka ji, main aapko batana chahta hu. कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था. आप 2010 में इसको

रिश्तेदार का बेटी होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है। अध्यक्ष जी 16-17 इयर्स बच्चा, व्हाट इज द स्ट्रेस दैट वी आर पुटिंग इनटू। और मैं प्रियंका जी को आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रियंका जी आपने ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना टिप्पणी की ना, ये एजुकेशन सिस्टम किसका लेगेसी है? ये एजुकेशन सिस्टम मैं बोलता हूं 34 ईयर से जो नए शिक्षा नीति को आप नहीं लाए थे, दिस इज द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम विच इज प्रोड्यूसिंग क्लक्स, विच इज प्रोड्यूसिंग नो ओरिजिनल थिंकिंग। आज देश में एक बड़ा प्रश्न उठा रहा है अध्यक्ष जी, वाई इज इंडिया नॉट बिल्डिंग ग्रेट प्रोडक्ट कंपनीज, वाई इज इंडिया नॉट प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल रिसर्च, वाई आर इंडियन यूनिवर्सिटीज नॉट इन द टॉप 100? बिकॉज फंडामेंटली आर एजुकेशन सिस्टम प्रमोट्स रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन एंड रट मार के एग्जाम पास करना, दिस इज बिकम द स्ट्रक्चर। और मैं आज बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं अध्यक्ष जी, दिस एजुकेशन सिस्टम इज बींग ट्रांसफॉर्म्ड रूट एंड ब्रांच बाई द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट अवर गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन 2020। दिस इज द बिगेस्ट चेंज, हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। इट वॉज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 34 ईयर्स, अवर गवर्नमेंट हैज डन दिस। और अखिलेश जी से लेकर सब लोग बहुत अच्छे सुझाव दिए एग्जामिनेशन के कंडक्शन कैसा होना चाहिए इसके ऊपर। मैं 2 मिनट आपसे पूछना चाहता हूं, देयर ऑल गुड सजेशंस, पर आप एक बार एनईपी पढ़े हैं क्या? हैव यू सीन द एनईपी? अध्यक्ष जी मैं पिछले 2 महीनों से लगातार मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवाओं से बात कर रहा हूं और ये युवा कुछ सुझाव दे रहे हैं, सरकार को दिए हैं। क्या सुझाव है? 1, आप पूरे अपना एजुकेशन सिस्टम को 8 साल 10 साल का जो अपना तैयारी है, यू आर डिसाइडिंग इट ऑन 1 डे, एक दिन का 3 घंटे का एक परीक्षा में अपना पूरा डिसाइड हो रहा है फ्यूचर। अगर मुझे उस दिन वायरल फीवर आ गया, माइग्रेन आ गया, या जैसे बैंगलोर में जब नीट का एग्जाम हो रहा था, री नीट का, कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक आंदोलन हो रहा था, ट्रैफिक जाम में कुछ बच्चे वहां दे कुड नॉट रीच द एग्जामिनेशन ऑन टाइम, ऐसे कई सारे चीज होते हैं। द क्वेश्चन वॉज, द रिफॉर्म दैट द स्टूडेंट्स आस्क्ड वॉज, प्लीज डू नॉट हैव 1 डे 1 एग्जामिनेशन दैट विल डिसाइड आर फ्यूचर। दिस वॉज देयर डिमांड। दूसरा डिमांड उनका था, प्लीज हैव अ सिस्टम वेयर देयर इज अ डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट। अध्यक्ष जी युवा इजी एग्जाम नहीं मांग रहे, एग्जाम इजी कर दो, आसान कर दो, ये युवाओं का मांग नहीं है। उनका मांग है क्वेश्चंस में थोड़ा ओरिजिनलिटी ले आ। अगर मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मुझे आप बायोलॉजी पे ज्यादा टेस्टिंग करो फिजिक्स और केमिस्ट्री से, ये उनका मांग है। और बच्चों का तीसरा मांग है अध्यक्ष जी, मैं खुद मेरा एग्जाम्पल देता हूं। अध्यक्ष जी जब मैं कॉलेज में था, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, आई वॉज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, बट आई वॉज वेरी बैड एट मैथ, आई सक्ड एट मैथ। और मैं ऑप्शन चाह रहा था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ूं और मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़ूं, पर ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कांग्रेस के जो एजुकेशन सिस्टम था और कुछ हद तक अभी भी जारी है, दैट डज नॉट अलाउ फॉर दिस मल्टीडिसिप्लिनरी ऑप्शन। नाउ व्हाट हैव वी चेंज्ड? अध्यक्ष जी आपके अनुमति से मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 3 वाक्य पढ़ना चाहता हूं। दिस इज गोइंग टू कन्विंस आर यंग पीपल दैट द होल रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम इज टेकिंग प्लेस एंड देयरफॉर द एग्जामिनेशंस एज वी नो इट टुडे विल चेंज इन द कमिंग ईयर्स। फर्स्ट बच्चों का मांग क्या था? आज मेमोराइजेशन के आधार पर, रट मारने के आधार पर पूरा एजुकेशन सिस्टम है। इसके वजह से जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं उसका कुछ महत्व नहीं होता है। ऑल दैट इज टेस्टेड इज वेदर यू कैन रिकलेक्ट, मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस इट, वॉमिट इन एन एग्जाम 3 ईयर्स में, 3 आवर्स में, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली टेस्टेड। नाउ द फर्स्ट रिफॉर्म दे हैव आस्क्ड इज, इसके वजह से कोचिंग सेंटर बढ़ रहा है, द होल सिस्टम इज अ प्रॉब्लम। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डायग्नोसिस द प्रॉब्लम इन दीज वर्ड्स। प्लीज सुनिए अध्यक्ष,
The current nature of secondary school

0: School exams, including board exams and entrance exams, and the resulting coaching culture of today are doing much harm to students. These exams also force students to learn a very narrow band of material in a single stream, rather than allowing the flexibility and choice that will be so important in the education system of the future. ये डायग्नोसिस मोदी सरकार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे है. दिस इज नॉट द ओल्ड लेगेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टीज एजुकेशन सिस्टम एंड दिस एनईपी इज नाउ बीइंग इंप्लीमेंटेड. दिस इज व्हाट इज इंप्लीमेंटेड नाउ. दूसरा अध्यक्ष जी, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कहे, व्हाट इज द फिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे. बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइंड. सुप्रिया जी प्लीज सुनिए, बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइंड टू टेस्ट प्राइमरीली core capacities, competencies, critical problem solving things.
1: She is listening you very patiently because after you she will speak.
0: Yes, please. critical thinking rather than months of coaching and memorization with subject choice and up to 2 attempts a year, a main examination and one for improvement to reduce the exam's high stakes character. और अध्यक्ष जी मुझे बताते हुए बहुत गर्व है, इस साल के सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन साल में एक बार नहीं हुआ, एनईपी के आधार पर 2 बार हुआ एंड स्टूडेंट्स वर गिवन द चॉइस टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द स्कोर्स. ये फ्लेक्सिबिलिटी हो रहा है सिस्टम. दिस इज अ न्यू चेंज वी आर ब्रिंगिंग. थर्ड क्या है अध्यक्ष जी, मैंने बताया अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जब मैं स्कूल में था मैं बहुत मुश्किल से मैथ्स में पास होता था, पर मैं डिबेट कंपटीशन में, एसे कंपटीशन में, क्विज में हमेशा मैं टॉप में होता था. बट वो सबको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता था, इट वॉज नॉट इवन कंसिडर. एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज इट एस्टैब्लिशेस अ नेशनल असेसमेंट सेंटर पराक एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी दैट फुलफिल्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस for a standardized assessment which will be a continuous evaluation and a 360 degree assessment of the student. ye sabse bada change hai dekh ji, 360 degree assessment of the student. ek din ka, ek 3 ghante ka pariksha kisi ka future aane wale dino mein decide nahi karega. 3 saal se aap jab tak aap college mein ye board exam denge तब तक 360 डिग्री असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क होगा, रिसर्च पेपर्स होगा, ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्टीज होगा, अन्य करिकुलर एक्टिविटीज होगा. ये 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर एग्जामिनेशन का मार्किंग होगा. व्हाट दिस मींस इन अदर वर्ड अध्यक्ष जी इज दिस इज गोइंग टू फंडामेंटली चेंज द नेचर ऑफ एग्जामिनेशंस इन द कंट्री. और ये ऐसा नहीं है कि ये 25 साल के बाद जारी होगा, 20 साल के बाद जारी होगा. एज वी स्पीक अध्यक्ष जी, 8वीं कक्षा तक नए करिकुलम के आधार पर नए टेक्स्ट बुक्स तैयार होके सीबीएसई के बच्चों को दे दिया गया है. और इस साल 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को नया करिकुलम मिलेगा. आने वाले 2-3 साल में 11th 12th का जब ये पूरा सिस्टम सुधार हो जाएगा, आज के जो एंट्रेंस एग्जाम का जो व्यवस्था है दैट इज गोइंग टू फंडामेंटली.
2: प्रियंका गांधी के सदन के भीतर जिस बयान पर बवाल हुआ उसके समर्थन में राहुल गांधी खड़े हुए हैं. राहुल गांधी ने सदन के बाहर एक बयान दिया है, वो जरा सुन लेते हैं.
3: Who is the defender of rape? See, and so many girls are protesting. They've been beaten. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India. It's strange. It's a strange reaction from the prime minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects rapists. Quite amazing.
2: तो सदन के भीतर बहस चल रही है पेपर लीक संशोधन कानून को लेकर, उस बहस पर हम बने रहेंगे। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी कवरेज जारी रहेगा, आप देखते रहिए आज।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
9: Sokudo.
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se
1: Punjab National Bank Bharose Ka Prateek.
2: जहाँ जुर्म वहीं कहानी, जहाँ कहानी वहीं साजिश, जहाँ साजिश वहाँ क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक YouTube पर और बचिए हर क्राइम से।
3: सोनम वांगचू की तबीयत खराब होने के बाद छात्र हैं हजारों की संख्या में जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं।
4: इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं।
5: पुलिस के द्वारा यहां पर इनको रोका जा रहा है।
6: तमाम प्रदर्शनकारियों को तिथर बतर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर
8: राहुल गांधी रावण को उठा लिया गया।
9: पक्ष और सरकार के सांसद आमने सामने आ चुके हैं मकर द्वार के अंदर।
10: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं।
11: सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी, क्या ये सरकार करोड़ों युवाओं को नकार सकती है?
12: जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वाज वेरी रिलीव्ड।
13: धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
14: कॉन्फर्मेशन यहाँ देना चाहूंगी तीन बातों का, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे मीटिंग कन्फर्म्ड है,
15: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: कहीं सड़कें बह गई हैं, कहीं पुल धस गया है, कहीं नदियों में जबरदस्त उफान है। और हालात ऐसे हैं कि वहां भगवान की मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है। ये उत्तराखंड का हाल है, वहां से आ रही तस्वीरें हालात की गवाही दे रही हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चमोली की तस्वीर। वहां देर रात हुई बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम के करीब कंचन गंगा के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। पहाड़ों से पानी के साथ साथ बड़े पत्थर और मलबे का ढेर सड़क पर आ गया। हालात ऐसे हो गए कि गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। सड़क को दोबारा खोलने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं। युद्ध स्तर पर काम जारी है। बीआरओ की मशीनें मौके पर मलबा हटाने में जुटी हैं। उधर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी के जलस्तर में जबरदस्त तूफान है। हालात ऐसे हैं कि अलकनंदा नदी का पानी प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव गुफा तक पहुंच गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुफा नदी से करीब 30 मीटर दूर है। नदी का पानी गुफा के भीतर पहुंच चुका है। इस वजह से गुफा में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे भक्तों को गंगा जल भरने और गुफा तक पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी हाहाकार है। वहां बीती रात हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज बारिश के कारण जिले के कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। इसका असर जनजीवन पर पड़ा। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, हालांकि कई घरों, दुकानों और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। उदयपुर, घोलटी, नवोदय मार्ग और भरियाड़ क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। इन इलाकों में भारी भूस्खलन के कारण 12 से अधिक गाड़ियां दब गई हैं मलबे में। लगातार हो रही बारिश के चलते भरमौर, पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तडोली नाला भी उफान पर आ गया। तेज बहाव अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मिट्टी का मलबा बहा कर लाया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। चंबा में ही एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहड़ के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। चंबा से विशाल आनंद, चमोली से कमल लयन सिलोड़ी के साथ प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: कटाक्ष, कहा कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदले पीएम। नए शिक्षा मंत्री पर लगाए संगीन आरोप, बीजेपी बोली ये चरित्र हनन है। प्रियंका के बचाव में आए राहुल। बहस के दौरान बीजेपी ने विपक्ष की नियत पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं उठाते सवाल। मोदी सरकार चला रही है रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक का होगा पुख्ता इंतजाम। परीक्षा बिल पर चर्चा के दौरान बोले अखिलेश यादव, प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचाया गया। गौरव गोगोई का बयान, सरकार की असफलताओं का स्मारक है ये बिल। बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर ली जाएंगी वापस, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए निर्देश। सीजेपी के साथ केंद्र सरकार के समझौते के बाद एक्शन। पीओके में पाकिस्तानी सेना का दूसरा नरसंहार, मीरपुर में भी प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग, कई लोगों की मौत की खबर। रावलकोट में कल मुनीर आर्मी ने ली थी 20 लोगों की जान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: नहीं, आप
3: मेरा चले, चर्चा हो, संवाद हो, सबके मत विचार आए।
4: पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला, 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं।
5: इट इज ऑल्सो अ रीइटरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी's रिजॉल्व not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India.
6: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है।
7: एक प्रधान जी को हटा करके प्रधान जी प्रधानमंत्री बचा लिया।
8: If this is our new India, why do our examination paper leaks with such remarkable consistency is the question I would like to ask, sir.
9: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया?
10: इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है।

0: रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेपर लीक में लोकसभा में पेपर लीक के नए बिल पर बहस शुरू हो चुकी है। हम तस्वीरें आपको वहां की दिखाएंगे क्योंकि इस वक्त भी बहस चल रही है। 10 घंटे की यह बहस चलने वाली है, लेकिन इस बहस में बिल से ज्यादा सियासत का सवाल आ रहा है। विपक्ष ने सिर्फ पेपर लीक रोकने की सरकार की जो कोशिशें हैं, नियत है, उस पर सवाल उठाया है। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन का इस्तेमाल, देखिए पेलेट गन का इस्तेमाल, और साथ ही बिहार में AK-47 की फायरिंग पर सरकार को घेरने की कोशिश भी इस वक्त चल रही है। आज दिल्ली पुलिस की डायरी एंट्री में आखिरकार पेलेट गन के इस्तेमाल के जिक्र की खबर आ ही गई। इस बीच शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभालने वाले प्रहलाद जोशी को लेकर प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर भी बवाल हुआ है, जिस बीजेपी ने अब संसद के रिकॉर्ड से इस प्रियंका वाड्रा गांधी के बयान को, जो उन्होंने टिप्पणी की है प्रहलाद जोशी पर, उसको हटाने की मांग की है बीजेपी ने। उधर बीजेपी की बांसुरी स्वराज जो सांसद आज बोले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनमें बांसुरी स्वराज थी और तेजस्वी सूर्य, दोनों ने ही नए बिल का जमकर बचाव किया। कहा कि पुरानी शिक्षा नीति की वजह से पेपर लीक होते रहे, जिसे पीएम मोदी बदल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पेपर लीक के मुद्दे पर अब सरकार के संकट का राउंड टू शुरू हो रहा है? क्या सरकार नए बिल से जेन जी बच्चों का विश्वास जीत सकेगी? क्या पेपर लीक पर अब संसद में तेरा मेरा की सियासत शुरू हो गई है? पेपर लीक पर अब संसद वाला संग्राम, जिस पर हम करेंगे बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए।
1: आप क्या चाहते हैं?
0: एक हफ्ते से ज्यादा चले सड़क से संसद तक के हंगामे के बाद आखिरकार लोकसभा में नए पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हो गई है।
2: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधक विधेयक 2026 पर विचार किया जाए।
0: बिल पेश करने वाले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने न सिर्फ 2014 के पहले के पेपर लीक गिनाए, बल्कि नए समय की चुनौतियों के मद्देनजर नए बिल की वकालत की।
2: एडमिशन्स के लिए एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। ऐसा पहले भी होता था, अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
0: सरकार ने जहां पेपर लीक रोकने के खिलाफ सरकार के कमिटमेंट को साबित करने की कोशिश की, तो विपक्ष के पास मुद्दों का पिटारा था। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई पहले वक्ता रहे, उन्होंने दावा किया कि ये सरकार पेपर लीक नहीं रोक पाएगी।
3: संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है। और ऐसा
0: नए बिल पर चर्चा में जोरदार हमला अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी की ओर से भी हुआ।
4: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है।
5: इफ दिस इज आवर न्यू इंडिया, व्हाई डू आवर एग्जामिनेशन पेपर लीक्स विद सच रिमार्केबल कंसिस्टेंसी इज द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क सर। एवरी टाइम देयर इज अ पेपर लीक, द गवर्नमेंट रिएक्ट्स एज इफ देयर सीन एज एन अनफोर्सिन एक्ट ऑफ गॉड। पेपर लीक्स इन टुडेज इंडिया हैज बिकम अ पैटर्न।
0: विपक्ष की ओर से बिल पर जारी बहस में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठाया गया है और इसीलिए अमित शाह विपक्ष के निशाने पर आए हैं। पिछले 4 से 5 दिनों में विपक्ष ने पैलेट गन के इस्तेमाल के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा है। 20 जुलाई को सीजेपी के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आरएएफ के जवान ने पैलेट गन चलाई। 21 जुलाई को मीडिया रिपोर्ट्स में पैलेट गन से 3 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट्स छपी। 22 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल के दावों को फेक न्यूज करार दिया। 23 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने आए पीड़ित के मेडिको लीगल रिपोर्ट में पैलेट गन से घायल होने की पुष्टि हुई। 24 जुलाई को राहुल गांधी ने पैलेट गन के पीड़ित साहिल लोचाप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 24 जुलाई को ही आरएएफ ने आरोपों की वेरिफिकेशन करने का फैसला किया। 26 जुलाई को राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाया और 28 जुलाई को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की 22 जुलाई की डायरी एंट्री में एक डीसीपी के निर्देश पर पैलेट गन के इस्तेमाल की बात पुलिस ने स्वीकार कर ली।
6: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। जवाब देंगे, किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए?
4: इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया, तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला। तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा।
7: यहाँ पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया।
0: बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के पद से हट चुके धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भी सवाल उठाया।
7: जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं।
0: उधर बिल के जरिए बीजेपी जेन जी के आक्रोश को कम करना चाहती है। पार्टी की ओर से पहली वक्ता बांसुरी स्वराज रही। एनडीए की कोशिश है कि सरकार के प्रयासों को जेन जी को समझाया जा सके।
8: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नियत है, इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहाँ पर लाया गया।
9: जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए।
7: किसने ऑर्डर दिया?
0: लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ नए बिल पर बहस जारी है, लेकिन सरकार की संसद की परीक्षा अब भी बाकी है। राज्यसभा में आज भी कामकाज नहीं हो सका है। आज तक ब्यूरो। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, प्रियंका वाड्रा गांधी जब आज सदन में बोल रही थी तो उन्होंने जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी, उन पर टिप्पणी की, जिसको लेकर बवाल हुआ और बीजेपी के तमाम सांसद उस बयान पर हंगामा करने लगे। नए शिक्षा मंत्री पर प्रियंका की टिप्पणी को लेकर किरण रिजिजू ने कहा है कि प्रियंका को क्षमा मांगनी चाहिए। आइए आपको सुना देते हैं, इस सरकार में शिक्षा बजट को लेकर भी प्रियंका गांधी ने टिप्पणी की है, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी बहन को डिफेंड किया। राहुल गांधी ने प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन किया है, सुनिए।
6: प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर अखबारों में है।
1: अखबार में नहीं, मेरा
6: बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज
10: दूंगी। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने कहिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा।
11: पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर,
10: उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको।
0: इस बीच प्रियंका गांधी के इस बयान का समर्थन किया है राहुल गांधी ने और उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी ने सही कहा है। प्रहलाद जोशी पर भड़के राहुल गांधी और उन्होंने नए शिक्षा मंत्री को लेकर रेपिस्ट को बचाने वाले को बीजेपी ने बिठाया, ये कहा है राहुल गांधी ने। शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर भड़के हैं राहुल गांधी। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है।
12: The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the Education Minister of India. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects.
0: जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं उनमें गौरव भाटिया प्रवक्ता बीजेपी के, गुरदीप सप्पल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हिमांशु राय डायरेक्टर आईआईएम इंदौर के कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरू करते हैं क्योंकि अब तो नए शिक्षा मंत्री को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है और उन पर बिल्किस बानो के मामले में बयान देने का समर्थन का, जो दोषियों की रिहाई हुई थी उसका समर्थन करने का आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। एक तो इस पर आपकी जानकारी और दूसरा ही आपकी सफाई, उसके साथ ही दूसरा बड़ा मुद्दा जो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, उन छात्रों का विश्वास जीतना, वो कैसे होगा? क्योंकि पैलेट गन को ही लेकर देखिए ना, कभी कुछ कहा गया फिर बयान बदला गया, हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई उसको भी अलग अलग तरीके से, दिल्ली पुलिस ने ही फैक्ट चेक किया था जब ये सबसे पहले खबर दिखाई गई मीडिया रिपोर्ट्स में कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, और अब वो खुद ही मान रहे हैं, आज खुद ही माना है। गौरव जी
1: देखिए, अंजना जी मैं तो आज जो मुख्य मुद्दा है, हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, मैं इस पे बोलता। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा ना, आज पूरे भारत ने देखा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा बिल्कुल राहुल गांधी की बहन है, बिना तैयारी के आती है, झूठ बोलती है, और सत्यापन के लिए जब कहा जाता है कि आप प्रमाणित करिए, ऑथेंटिकेट करिए, तो वो कहती है मैं भेज दूंगी, मैं अभी थोड़ी देर में भेज दूंगी। क्या एक सांसद को ये शोभा देता है कि आप किसी पे इल्जाम लगाएं, उसका चरित्र हनन करें, और वो व्यक्ति देश का शिक्षा मंत्री है वो वहां बैठा है, आप उसको नोटिस नहीं देते, और जब आपत्ति दर्ज करी जाए तो आपकी तैयारी भी वैसे ही है जैसे राहुल गांधी फेल्ड बच्चा होता है, आप कहती है बाद में भेज दूंगी। उस वक्तव्य को कार्रवाई से हटा दिया गया है, इसलिए अगर किसी को उत्तर देना है, सफाई देनी है, यह स्थापित करना है कि उसकी आस्था संसद के जो रूल्स हैं उसमें है, तो वो कांग्रेस पार्टी है और सप्पल जी है मेरे दोस्त। लेकिन अब मैं आता हूं बड़ी बात पे। देखिए, आपने कहा बच्चों का विश्वास जीतना है, बच्चों का विश्वास हमने तब जीता है जब हमारे देश के मंत्री जेपी नड्डा जी बच्चों से बातचीत करते हैं और बच्चे कहते हैं हम आंदोलन वापस ले रहे हैं। जो बच्चों की मांग थी, हमने देखा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। हमने विश्वास तब जीता जब हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया और कहा कि अगर कहीं पर्चा लीक होगा तो तुरंत ट्रायल होगा और जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे जो दोषी हैं। और जो हम लोग बिल ला रहे हैं, मैं सवाल पूछता हूं, 2024 में हम पहली बार एंटी चीटिंग लॉ लाए, क्या इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार 10 साल रही? अंजना जी एक बार तो सवाल पूछना बनता है ना, कैसे कई 100 पर्चे लीक हुए उनके 10 साल में, कौन सा कानून लाए थे ये सवाल पूछिएगा। और आज जो कानून आ रहा है आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक समय सीमा तय हो रही है विवेचना के लिए, 2 महीने में विवेचना पूरी होगी, जो ट्रायल है वो 3 महीने में होगा, मतलब अगर पर्चा लीक हुआ तो 5 महीने के अंदर अंदर सजा हो जाएगी दोषियों को। ये एक ठोस कदम है जो ये सुनिश्चित करेगा पर्चा लीक ना हो। दूसरी बात, किस तरह से जो सजा है वो 3 साल हो सकती है और 5 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, अब उसको और कड़ा बना दिया गया, 5 साल की सजा मिनिमम और 10 साल तक वो एक्सटेंड करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर अगर पर्चा लीक करेगा तो जो 1 करोड़ का फाइन था उसको अब 5 करोड़ कर दिया गया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सारे कदम ये दर्शाते हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अगर देश के बच्चों के प्रति एक संदेश छोड़ा है तो उसको संसद आज चर्चा कर रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, हमारे देश की सांसद नेत्री झूठ बोलती पकड़ी गई, एक दूसरा बच्चों का विश्वास हम ऐसे जीतेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा को पता होना चाहिए जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, 2014 में शिक्षा बजट था 79,000 करोड़, 2025 में 1,40,000 करोड़ और 8.27% का इंक्रीज हुआ एजुकेशन बजट। क्या यह सत्य नहीं है कि 2014 में एम्स 7 थे जो अब 23 हो गए, 16 बढ़ गए, केवल 12 वर्षों में, जो 55 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई हमने किया, आईटी 16 से 23 हो गए, 7 बढ़ गए और आईएम 13 से 21 हो गए, 8 बढ़ गए। यह क्या दर्शाता है, अगर सबसे ज्यादा चिंता किसी को है बच्चों की तो वो नरेंद्र मोदी जी को है। और एक आंकड़ा और मैं दुरुस्त कर दूं प्रियंका गांधी वाड्रा का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2014 में जब हमारी सरकार आई 387 मेडिकल कॉलेज थे देश में, आज 780 है, मतलब दुगने से भी ज्यादा 12 साल में, जो 55 साल में ये बना पाए। और 51,348 सीटें थी 2014 में मेडिकल की जो प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही थी, आज 1,20,000 हो गई और 2025 में 43 न्यू मेडिकल कॉलेज खुले, ये मैंने आंकड़े दिए। आज सवाल ये पूछा जाएगा कि आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाया, पर्चे तो तब भी लीक होते थे, सजा नहीं होती थी, सजा मोदी जी की सरकार में हो रही है, दूसरा आप कोई कानून क्यों नहीं लाए, ये सवाल पूछो।
0: गुरदीप सप्पल जी, नहीं ये सवाल मैं ऐसे भी पूछ रही हूँ लगातार, ये आपके अच्छे लगने के लिए नहीं पूछूंगी गौरव जी, लेकिन ये भी है कि इस मामले पर सिर्फ वॉटअबाउटरी से नहीं होगा, क्योंकि केंद्र जी गौरव जी, केंद्र हो, राजस्थान हो, तमाम जगहों से इनकी सरकार को जनता ने बाहर कर दिया है। और राजस्थान में तो पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या थी गहलोत सरकार में कि जनता के बीच में, चुनाव को मैंने भी कवर किया, बड़ा मुद्दा था। लेकिन अब सवाल है कि वही मुद्दा ग्राउंड पर आपके खिलाफ बन रहा है, तो चैलेंज आपके सामने। लेकिन गुरदीप सप्पल जी, आखिरकार निर्भया का भी, जब ये सवाल भी मैंने पहले पूछा है, निर्भया का भी मुद्दा हुआ, तो भाई कानून में क्या बदलाव किया जा सकता है, कैसे सख्ती डेटरेंस की मिसाल पैदा की जा सकती है, कैसे सिस्टम को पुल प्रूफ बनाया जा सकता है, उसके लिए टास्क फोर्स, यही तो कदम उठाए जा सकते हैं। तो ऐसे में इस कानून में क्या कमी है, इस कानून को ऐसे क्या मजबूत और किया जाए, क्योंकि बच्चे तो रिपोर्ट कार्ड सभी नेताओं का लिखेंगे ना, विपक्ष का ये भी तो रोल होना चाहिए कि कानून को कैसे और मजबूत बनाए।
13: बिल्कुल आपने ठीक बोला, पर पहले मैं जरा गौरव जी की एक बात की बात कर दूं, प्रियंका जी ने जो बोला प्रहलाद जोशी के बारे में कि उन्होंने रेप विक्टिम्स का समर्थन किया था, रेप एक्यूज का समर्थन किया था, कन्विक्टेड का सॉरी, ये इंडियन एक्सप्रेस की 18 अक्टूबर 2022 की वेबसाइट पे रिपोर्ट है, ये कोई भी देख सकता है, गूगल कर लीजिए आपको मिल जाएगा, और तमाम अखबारों ने इसको कवर किया था। ये सिर्फ इस तरह से बोलना चाह रहे हैं टेक्निकी सवालों में उठा के कि ऑथेंटिकेट पहले करना है बाद में करना है, जैसे दिल्ली पुलिस अभी मिसगाइड कर रही थी कि हमने पहले गन्नी चलाई, बाद में पता चला दिल्ली पुलिस ने वाकई नहीं चलाई थी, वो तो सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स है उसने चलाई थी। तो ये क्या है, अर्ध सत्य में उलझाकर बात को करते हैं। अब बिल पे आ जाते हैं, देखिए 24 का जो बिल था अंजना जी आप जानती हैं, उसको ऐतिहासिक बिल कहा गया और आज का ये महा ऐतिहासिक बिल था। इस 2 साल में महा फेलियर हुआ और आज उस महाफेलियर की दास्तान पूरा देश देख रहा है, जब संसद के अंदर इतने बड़े मुद्दे पर जिसपे छात्र आंदोलित है उस पर डिबेट हो रही है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद के अंदर नहीं दिखे, इतनी सीरियसनेस है। कल धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करने के लिए कल संसद के बाहर सब थे, लेकिन आज जो है वो नहीं दिखे हम संसद के अंदर। अब आ जाइए इस पे, ये बात सही है कि पहले भी पेपर लीक हुए, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन दो बड़े फर्क हैं। एक तो सैकड़ों नहीं हुए, जैसे गौरव भाई ने बोला, उस पीरियड में पूरे यूपीए 1 यूपीए 2 में बीजेपी के सांसदों ने नेताओं ने एक बार भी लोकसभा में या राज्यसभा में कोई क्वेश्चन, कोई कॉलिंग अटेंशन, कोई जीरो आवर, कोई डिबेट नहीं उठाई, क्योंकि तब वो इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। होते थे इक्का दुक्का, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। तब यूपीए सरकार ने कमेटी बनाई, कहा यह समस्या है, और सातों आईआईटी डायरेक्टर्स की एक कमेटी बनी, प्रोफेसर आचार्य कमेटी, जिसने एनटीए का सुझाव दिया। उसके बाद सात मेंबर्स की टास्क फोर्स बनी जिसको एनटीए बनाने का काम दिया गया, जिसने स्पष्ट कहा कि जैसे यूपीएससी बना है, जैसे एसएससी बना है, और एसएससी एक वैधानिक संस्था है, कानून से बनी है, वैसे एनटीए बनाना चाहिए। यह यूपीए के टाइम में तैयारी हो गई थी 13 तक। अब 14 में आ गए मोदी जी, 3 साल आप चुप बैठे रहे, 17 और 18 में जाके एनटीए बनाया, और बनाया किस तरह से, एसएससी की तरह नहीं बनाया, कानूनन एक एनजीओ की तरह बना दिया। एसएससी जिसके अंदर परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, जो सब काम इनहाउस होता है यूपीएससी एसएससी के अंदर, जिसके अंदर पेपर सेटिंग इनहाउस होती है, वो सब बंद कर दिया, और इन्होंने क्या किया, हर काम ठेके पे देने का फैसला किया। एक ऐसा एनटीए बनाया जो ठेकेदारी व्यवस्था पे चलता है, पेपर सेटिंग ठेके पे होती है, पेपर की जांच ठेके पे होती है, पेपर का ट्रांसपोर्ट ठेके पे होता है, सेंटर का एलोकेशन ठेके पे होता है, डाटा मैनेजमेंट ठेके पे होता है। जब आप सारे काम ठेके पे कराओगे तो पेपर लीक की समस्या तो आएगी, कहीं ना कहीं से तो लीकेज होगा, और ये एक कॉन्शियस डिसीजन था मोदी सरकार का 2018 में, जबकि उस समय यूपीए के टाइम पे आईआईटी के डायरेक्टर्स ने जो बनाई थी रिकमेंडेशन उसको आपने किनारे किया। तो ये हो गई बात अब, और अब ये बात बोल दिए जी हमारे टाइम पे इतना शिक्षा के अंदर चीजें आगे बढ़ी हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? शिक्षा के अंदर कैसे आगे बढ़ी है? अंजना जी सिर्फ 2 मिनट में बात करूंगा, यूपीए के टाइम में शिक्षा के अंदर इन्वेस्टमेंट का क्यूमुलेटिव ग्रोथ हर साल 21% था, मोदी सरकार के 11 साल में 7%, यानी केवल एक तिहाई रह गया इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ। उस समय से लेकर अब तक इन्होंने ठीक का बहुत सारे कॉलेज बने, मैं भी मानता हूं, और मैं बता दूं गौरव भाई 50% कॉलेजों में देशभर में वृद्धि हुई है और यूनिवर्सिटीज में 200% वृद्धि हुई है मोदी राज में, लेकिन इसमें केवल 1% सरकारी है, 49% कॉलेज प्राइवेट हैं और 200% यूनिवर्सिटीज प्राइवेट खोली गई हैं। और इसका फर्क क्या पड़ा, जिस मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं केवल 30,000 सीटें 1,00,000 में सरकारी हैं, 70,000 सीटें ऐसी हैं जिसकी फीस 1 करोड़ से 4 करोड़ रुपए की है,
0: ठीक है,
13: और देश का 1% आबादी सिर्फ ऐसा है जिसकी सालाना इनकम 22,00,000 से ऊपर है, सिर्फ 1%, यानी 99% जनता उन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले नहीं सकती। आपने व्यवस्था ये बना दी, हर चीज प्राइवेट, हर चीज जो है प्राइवेट के हाथों में दे दीजिए, मित्रों के हाथों में दीजिए, और जनता जो 99% जिस इनकम रेंज के अंदर, 99% मैं डेटा पे बोल रहा हूँ, ये हवा हवाई बात नहीं बोल रहा हूँ, 99% जनता उन 70,000 सीटों, जो 70% सीटें हैं, 70,000 70% होती हैं, उन 70% सीटों पे आम व्यक्ति नीट पास करने के बावजूद एडमिशन लेने के लायक नहीं है,
0: क्योंकि
13: फीस,
0: गौरव भाटिया जी अब इसका जवाब दीजिए, फीस की जो इस वक्त अगर आप ही निकाल लीजिए, मतलब आप ही ऑनलाइन जाकर फीस स्ट्रक्चर निकाल लीजिए कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट्स में, तो समझ में आ जाएगा कि क्या हालत है। कई बच्चे तो जो गरीब परिवारों के होते हैं, पास करने के बाद भी एडमिशन लेना उनके लिए मुश्किल होता है, और शिक्षा के क्षेत्र में मतलब पैसे को लेकर उसमें वृद्धि होनी चाहिए थी, एक राइज की जरूरत है देश में, ऐसा नहीं दिख रहा है गौरव जी।
1: पहले देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो जो भी बातें मैंने कही, मेरे भाई हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, सरल व्यक्ति हैं, लेकिन एक भी उत्तर नहीं दिया, मुझे थोड़ा चिंता हुई, अचंभा हुआ, तैयारी से क्या नहीं आए। मैंने पहला कहा सत्यापन करना होता है, ये रूल्स हैं पार्लियामेंट के,
13: करके बताइए,
1: इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, इन्होंने कहा टेक्निकल बात है, एक एक करके एक एक, मैं लिख रहा था जब आप बोल रहे थे, अब मैं हर बात का उत्तर भी दूंगा और आपको मौका आएगा, आप भी दीजिएगा। मैं समझता हूँ इतनी अच्छी चर्चा जब हो रही है, सब दर्शकों को भी अच्छा लगेगा कि हम लोगों में भी काबिलियत है, हम एक दूसरे को इज्जत दे के चर्चा कर सकते हैं। पहली बात मैंने कहा, सत्यापन होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। संसद में बयान देंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और वहां पे उनका बयान सुनिएगा सप्पल जी, उन्होंने क्या कहा, मैं ऑथेंटिकेशन कर दूंगी। और यहां प्रवक्ता आज तक पे ऑथेंटिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं एक न्यूज़पेपर का रिपोर्ट दिखा के। पहली बात, टेक्निकल क्या होता है गुरदीप जी, राहुल गांधी के खिलाफ भी कुछ बहुत गंभीर बलात्कार के आरोप आए थे और ये जजमेंट में रिकॉर्डेड है, लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी तो मैं अगर उसको उठाता हूं, मेरी जिम्मेदारी है मैं बताऊं कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में था और उनको राहत मिली। मैं किसी पे आरोप लगाऊं और उसके बाद कहूं सत्यापन बाद में करूंगा, ऐसा नहीं होता है। तीसरी बात, मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा था, एक और मौका दे रहा हूं। 2024 में हम कानून लाए और हमने कहा कि ये जो परीक्षा में पेपर लीक होता है इसको रोकेंगे। आप 2004 से 14 तक रहे 10 साल और 45 साल और रहे हैं, कृपया करके हमें ये बताइए कौन सा कानून आप लाए थे, ये तो गलत सवाल हो नहीं सकता है, आपने बताया नहीं। हाँ, राजस्थान की मैं एक बात बताता हूं, डेप्यूटी सीएम थे सचिन पायलट और सीएम थे अशोक गहलोत। सचिन पायलट ने बयान दिया कि 17 पेपर लीक हुए हैं जब से सरकार आई है कांग्रेस की, और क्या जादूगर है अशोक गहलोत, उनकी तिजोरी से पर्चा लीक हो जाता है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा था, मैं आपको वक्तव्य पढ़ देता हूं। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है, गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए हैं और ये एक बड़ी समस्या है, पूरे देश में है, सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है। हमने कोशिश करी है बार बार रोकने की लेकिन रोक नहीं पाए। अब आप बताइए, खुद ही विफलता मान रहे हैं और यहां पे हम कानून ला रहे हैं, कानून पे चर्चा हो रही है, मैंने उसके कुछ अंश पढ़े, क्या अच्छाइयां। कृपया करके गौरव गोगोई से कहिए, राहुल गांधी से कहिए, कुछ सुझाव।
0: स्पीकर से मिल रहे प्रहलाद जोशी, ये खबर इस वक्त आ रही है कि लोकसभा में प्रियंका गांधी की टिप्पणी के बाद ये मुलाकात हो रही है और लोकसभा में प्रियंका की टिप्पणी के बाद स्पीकर ओम बिरला से मिल रहे हैं प्रहलाद जोशी और टिप्पणी के बाद ही ये मुलाकात हो रही है। देखिए, अब आप समझ लीजिए कि बच्चों का पेपर लीक का मुद्दा रह गया पीछे, अब ये हो गया शुरू कि भाई नए शिक्षा मंत्री पर क्या टिप्पणी की, और टिप्पणी की तो अब उसके खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या किया जाएगा। अब इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि इस बार सभी नेताओं का, वो किसी भी पार्टी के हो, इस बार हमेशा बच्चों के रिजल्ट्स होते हैं ना, बच्चों का एग्जाम लिया जाता है, उनका रिपोर्ट कार्ड बनता है, हर साल बनता है रिपोर्ट कार्ड। इस बार वो नेताओं का रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कौन सा नेता वाकई उनके जो परेशानियां हैं, सिस्टम जो वीक है, बिल्कुल सिस्टम जो वीक है उससे लड़ना चाहता है, और कौन सिर्फ पॉलिटिक्स में उलझाना चाहता है। गौरव जी, अब प्रहलाद जोशी मिल रहे हैं स्पीकर ओम बिरला से, क्या मतलब है इसका, क्या करिएगा? मतलब अगर उन्होंने कहा है, वो कह रही ऑथेंटिकेट करेंगी, तो वो अलग का इशू है ना, मेन इशू तो पेपर लीक के खिलाफ ये बिल है। गौरव जी,
1: नहीं अंजना जी, मैं भी देखिए इस चर्चा में सकारात्मक बात करने आया हूं, सप्पल जी भी अच्छी बात करेंगे मुझे उम्मीद है, कुछ तैयारी से आए होंगे, कुछ सुझाव देंगे जो संसद तक जाएंगे। लेकिन एक बात कहूंगा, संसद जो है वो कानून से चलती है, जो बिजनेस रूल्स होते हैं, अगर सत्यापन करना जरूरी है किसी पे आरोप लगाने से पहले तो वो करना पड़ेगा, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, ये देश के कानून से, संसद के कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन एक और झूठ पकड़ता हूं आपके चैनल पे, सप्पल जी ने ये नहीं बताया कि जब ITIM एम्स का मैंने आंकड़ा दिया जो 55 साल में इन्होंने किया, हमने 12 साल में करके दिखाया। एक मिनट सप्पल जी, एक मिनट में बात पूरी कर लूं। इनके मुंह से निकला कि ये जो मेडिकल कॉलेज बड़े हैं जिसका मैंने आंकड़ा दिया था 2014 में 387 थे अंजना जी, और 2025 में 780 हो गए, इन्होंने कहा ये प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 433 है, 433, और इनके समय में टोटल मेडिकल कॉलेज 387 थे। ये एक और झूठ पकड़ा गया। अब एक सवाल है और अंत करूंगा, सप्पल जी ये बताइए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो चाहे दिल्ली के हो, अब ये केरला में लाठी भाजी जा रही है, झारखंड में भी पर्चे लीक हुए हैं लाठी भाजी जा रही है, कर्नाटका में पर्चे लीक हुए लाठी भाजी जा रही है, वहां पे दर्द नहीं होता है? प्रियंका गांधी वाड्रा जी तो एक माँ है, क्या माँ अपने बच्चों में भी भेदभाव करती है? कि अगर केरला का हो गया बच्चे तो कोई बात नहीं।
0: एक सेकंड गौरव जी, आपको भी टोक रही हूँ, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त लोकसभा में डिंपल यादव बोल रही
14: हैं, जहाँ उनको 16 दिन हो गए थे, अनशन पे बैठे हुए थे सभी बच्चे और सोनम वांगचू जी, लेकिन 18 जुलाई को सरकार ने क्या किया? सवाल इस बात का है, जो लोग अहिंसा के साथ बैठे हुए थे, जो लोग गांधी जी के विचारों के साथ सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आप लोगों ने सफेद कफन बनाने का काम किया। 18 तारीख को आप लोगों ने उनको कफन बनाने का काम किया और गांधी जी के विचारों को आप लोगों ने कहीं ना कहीं कफन बनाने का काम किया। इस देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन वाकई में क्या स्वतंत्रता है? सवाल इस बात का है। आज जिस तरह बच्चे आए 20 जुलाई को, और कहां से नहीं आए, हर प्रदेश से बच्चे आए, यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, आसपास के मध्य प्रदेश हो, सभी स्टेट से, बॉम्बे हो, सभी स्टेट से, सभी प्रदेशों से बच्चे आए, क्योंकि वो सब अपनी एकता दिखाना चाहते थे। क्योंकि ये लगातार पेपर जो लीक हो रहे हैं, लगातार जिस तरह का दौर चल रहा है आज, और लगातार जिस तरह सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई है और जो सुन नहीं रही है, वो अपनी बात रखने आए थे सरकार से, वो अपनी भावनाओं को सरकार के सामने रखने आए थे, वो चाहते थे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन हो, और तो कोई बात नहीं थी, सब अपनी एकता और अखंडता दिखाने आए थे, फॉर अ पर्पस दे हैड कम टू जंतर मंतर, लेकिन सरकार ने उनके साथ क्या बर्ताव किया, सवाल इस बात का है। क्योंकि हम लोग भी उस आंदोलन में शामिल हुए, और क्यों शामिल हुए हम लोग, क्योंकि ये बच्चे आंदोलन में बैठे थे, क्योंकि हमारे देश के बच्चे आंदोलन में बैठे थे। हो सकता है हमारे बच्चे नहीं बैठे हो, हम किसी के भी, लेकिन बच्चे तो देश के थे, हमारे बच्चे थे। इसी भावना के साथ हम इस आंदोलन में गए कि हमको साथ देना है, नहीं तो हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे, हमारी अंतरात्मा क्या जवाब देगी। और ये आत्मा की जवाब जो हम दूसरों को नहीं देना चाहते थे, हम खुद को हमको जवाब देना था, इसीलिए हम सब गए। लेकिन जो बर्बरता देखी गई सड़कों पे, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। आपने बैरिकेडिंग लगा दी 100-100 मीटर पर, और बच्चों को आपने वहां पे ट्रैप कर दिया, और फिर वहां पे आपने लाठियां बजाई बच्चों पे, उनके सर फोड़े गए, बेटियों के कपड़े जानबूझ के फाड़े गए। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने की।
0: तो डिंपल यादव ये कहते हुए कि बच्चों के बीच गए, वहां पर हम राजनीति करने नहीं गए थे, बच्चों के, आम बच्चे जो देश भर से आए थे, उनकी मुश्किलें थी, उसमें शामिल होने आए थे, उनके दुख दर्द में। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वापस से गुरदीप सप्पल जी, जल्दी से एक छोटा सा आपका बयान, उनका जवाब।
13: जी, सबसे पहले मैं गौरव जी की इस बात का जवाब दूं। गौरव जी, ऑथेंटिकेशन दो तरह का होता है। मैं भी 10 साल मैंने राज्यसभा का काम देखा उपराष्ट्रपति के साथ, सिस्टम बहुत साफ था कि अगर आपने कोई आरोप लगाया है तो फाइनल डिबेट पब्लिश होने से पहले 48 घंटे के अंदर आपको ऑथेंटिकेट करके चेयरमैन को देना होता था, स्पीकर को देना होता था। ये हाल में आपके राज में जो हुआ है वो कहा गया कि तुरंत अभी कीजिए, और वो भी करना शुरू कर दिया, प्रियंका जी करने गई। दूसरी बात, ये मैं आपको नियम कानून की आप बात बता रहे थे, मैं आपको नियम कानून बता रहा हूं। ये भी पहली बार हो रहा है कि संसद में जो कुछ कोई नेता बोलना चाहे, कोई सांसद बोलना चाहे, हर बात वो ना अखबार से होनी चाहिए, ना वो टीवी से होनी चाहिए, ना वो किसी रिपोर्ट से होनी चाहिए। यानी ये मानना कि कोई सांसद पहले कोई मुद्दा उठाने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके पास तो पुलिस नहीं है, उसके पास जांच एजेंसी नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन करके प्रूफ के साथ सामने लाए। तो कल तो जो आपने 50 साल 55 साल राजनीति की विपक्ष के अंदर, आपका कोई नेता

0: पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का हमको करना चाहिए। और कहने का तात्पर्य ये कि सारे जो पेपर हैं वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में एनक्रिप्ट होकर के एक नेशनल सिक्योर एग्जामिनेशन क्लाउड में जाएं, और उसके बाद एग्जाम से ठीक 30 या 35 45 मिनट पहले उनको हम डाउनलोड करें एग्जामिनेशन सेंटर पे साइमल्टेनियसली पूरे देश में एक साथ। और उसके बाद जो उनकी प्रिंटिंग है वो लोकल ही होनी चाहिए एक सिक्योर प्रिंटिंग रूम में जहां पे भी है वो। तो इससे जो भी एक डाउनलोडेड कॉपी है उस पे एक वाटर मार्क होना चाहिए जिससे कि वो चिन्हित हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी पेपर सबसे पहले तो बीच में ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं करना पड़ेगा हमें। दूसरा जो एक चीज हम कर सकते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई को यूज करके हम हर सेशन के लिए कम से कम 10-15 इक्विवेलेंट वर्जन बना ले पेपर के जिनकी कठिनाई सेम, और एआई हमको बता देगा कि ये सारे पेपर सेम हैं। और उसके बाद रैंडम एलोकेशन हो किसी भी वर्जन का कैंडिडेट्स को। तो मान लीजिए कोई वर्जन लीक भी हुआ हो तो सारे कैंडिडेट्स के लिए वो लीक नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर हमने 10-15 वर्जन बना दिए हैं और वो समान डिफिकल्टी के हैं तो हम पता कर लेंगे कि ये वर्जन यदि लीक हुआ है तो इससे किन किन कैंडिडेट्स को प्रभाव पड़ा है, और इसलिए हमारा जो नुकसान होगा वो एक सीमित रूप से होगा। और तीसरा, हमारे पास एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है सर्टेन, उसी के नक्शे कदम पे हमको एक और एजेंसी बनानी चाहिए जिसको हम नेशनल एग्जामिनेशन सिक्योरिटी एजेंसी बुलाएं, और ये नीसा जो एजेंसी है ये सिक्योरिटी की ऑडिट करे, ये
1: जी
0: जितने भी पर्सनेल हैं ये पूरे जो चेन
1: हाँ
0: होती है ना
1: हाँ
0: अंजना जी, एक तो जो पेपर बनाता है उसके बाद जो उसको हैंडल करता है फिर ट्रांसपोर्ट करता है फिर सेंटर सुपरिंटेंडेंट होता है, इन सबके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने चाहिए। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण रूल है जो आता है कि 2 पर्सन इन एनी सेंसिटिव थिंग, और वो 2 पर्सन सरकार द्वारा एक रैंडम तरीके से चुने जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको कोई ट्रक पे चीज ले जानी है इधर से उधर, उसमें 2 ड्राइवर, और वो 2 ड्राइवर आपस में एक दूसरे को ना जानते हो पहले से, ये हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। उसी तरह से जो पेपर बना रहे हैं एक ही पेपर सेट पे काम करने के लिए 2 लोग, और जो एक दूसरे को ना जानते हो, तो ये अगर हम 3 चीजें करेंगे तो लघुकालिक दृष्टिकोण से हमको लाभ मिलेगा। और दीर्घकालिक एक मैं बताना चाहता हूं जो कि टास्क फोर्स का भी गठन हुआ है, इसको करना चाहिए। वो कैट में भी, जैसे हम लोग 2009 में हम
1: मैं वही
0: कैट
1: पूछ रही
0: ऑनलाइन थे
1: थी
0: और
1: कि
0: दो
1: चूंकि साल 2009 में, अगर मैं सही हूं हिमांशु जी, तो आप जब ये वो पेपर पेंसिल मार्क से लेकर उसको पूरा कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ सीबीटी, उसमें आप का एक योगदान था कि उसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए,
0: जी,
1: तो वो कैसे किया जा सकता है?
0: उसमें हम लोग उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे ले गए। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे एक तो सबसे पहले ये होता है कि आपका पेपर पेंसिल एकदम ही गायब हो जाता है वहां से। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जब हम करते हैं तो हम एक लोकल सर्वर पे डाउनलोड करते हैं पेपर को मात्र आधे घंटे पहले, तो कोई चांस नहीं है। और उसके बाद यदि हमको कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मान लीजिए 10-15 दिनों में करनी पड़े, बिकॉज नीट की यदि हम बात करें उसी के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो उसका नंबर बहुत ज्यादा है, तो एक
1: एग्जैक्टली,
0: बैलेंस
1: लाखों
0: करके,
1: लाख
0: हाँ, तो
1: लाखों
0: एक
1: लाख
0: नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है स्टैटिस्टिक्स में, उससे हम 20 दिन 25 दिन जितने भी दिन करना चाहें हम समानांतर पेपर बना सकते हैं। और अंततोगत्वा अंजना, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि किसी एक ही टेस्ट पे जो एक ही दिन होता हो उस पे लाखों छात्रों का भविष्य नहीं टिका हुआ होना चाहिए। तो अंततोगत्वा एक चीज होती है जिसको हम लोग लॉफ्ट मॉडल बोलते हैं, लीनियर ऑन द फ्लाई टेस्टिंग। जैसे जो जीआरई और जीमैट के एग्जाम होते हैं वो आप कभी भी जा करके अपना बुकिंग करा करके कभी भी जा करके लिख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए एक बार आपने लिखा, जो आपके पास स्कोर आया वो आपको नहीं पसंद है, तो आप 6 महीने बाद फिर से जा करके लिख सकते हैं। तो हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये जो टास्क फोर्स संगठित हुई है इसको इस विषय पे भी काम करना चाहिए कि लीनियर ऑन द फ्लाई टेस्टिंग मॉडल पे हम कैसे जा सकें भविष्य में।
1: अगर आपकी बात को माना जाए, और ये फिर शिकायत आए कि ये जो अलग अलग वर्जन्स बन रहे हैं पेपर के, वो वाला वर्जन आसान था, अब ये तो कोई भी दावा कर सकता है कि एक वर्जन आसान था एक मुश्किल था, ये कैसे हैंडल होगा?
0: बिल्कुल नहीं दावा कर सकता, ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। जब हमने कैट में किया था तो भी ये मुद्दा उठा था, इनफैक्ट ये कोर्ट में भी बात गई थी, और वहां कोर्ट में हम लोग ने एकदम अपने आप को साबित कर दिया था कि जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो इक्वल है। तो ये एक बहुत साधारण स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है अंजना, इसमें किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए।
1: बैकग्राउंड चेक तो बहुत दूर की बात है, हिमांशु जी जो

0: टीचर्स पेपर टेस्ट, क्योंकि इस बार जो पेपर लीक के आरोपी है उनमें से एक तो वही टीचर है जिन्होंने ये एग्जाम सेट किया.
1: अब अनफॉर्चुनेट,
0: या रियली अनफॉर्चुनेट. लेकिन मतलब क्या उनकी फ्रिस्किंग भी नहीं होती है? मतलब मैं तो बेसिक चीज पूछ रही हूँ समझने के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने कॉपी किया तो किसी चीज पे तो ले गए होंगे, मोबाइल हो, चिट हो, कुछ हो. क्या मतलब कैसे हुआ ये?
1: ह्यूमन बुद्धि से ज्यादा बड़ी और क्या चीज हो सकती है? मैं अगर 20-25 क्वेश्चन, अगर मैं टीचर हूं, अध्यापक हूं और मैं ही क्वेश्चन बना रहा हूं, तो 20-25-30 क्वेश्चन तो मेरी स्मरण शक्ति में ही रहेंगे जिनको मैं बाहर जाके बता सकता हूं. तो यहां पे तो एक चरित्र की और एक मूल्य की बात आ गई. तो अब अंजना, इसीलिए मैंने बोला कि ये जो हम नीसा जो बनाने का मैं बोल रहा हूं, कि नेशनल एग्जामिनेशन सिक्योरिटी एजेंसी, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए बैकग्राउंड चेक करने का. हम हर तरह का बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उनका तो हमको बैकग्राउंड चेक करना भी ही चाहिए.
0: तो
1: हाँ,
0: एनटीए
1: इसके
0: क्या
1: बावजूद
0: करेगा?
1: ये 100% गारंटी नहीं है कि ऐसा
0: मांशु जी,
1: नहीं होगा.
0: एनटीए क्या करेगा?
1: एनटीए एनटीए अपने अपने से नहीं कर सकता. एनटीए हमको ध्यान रखना चाहिए, एक टेस्टिंग एजेंसी है. उसका काम है सिर्फ टेस्टिंग कराना. वो ये बैकग्राउंड चेक, साइबर सिक्योरिटी और रेड टीम एक्सरसाइजेस करके हम लोग एक चीज करते थे जिसमें हम देखते थे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है. हम एंटिसिपेट करते थे और फिर उसकी तैयारी करने का प्रयास करते थे. जब, जैसे कि आपने बताया, कैट 2010 का जब मेरे को कन्वीनर बनाया गया उसको ठीक करने के लिए, और वर्ल्ड क्लास फिर हमने उसका ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट किया, उसमें हमने एक्चुअली कुछ साइबर सिक्योरिटी कंपनीज को हायर किया कि आप अटैक करिए, आप हमारा पेपर निकाल करके दिखाइए. और उसका कारण ये था कि हमें पता चले कि हमारे कमजोरियां कहाँ कहाँ हैं पूरे सिस्टम में. और ये काम एनटीए नहीं कर सकता है. इस काम के लिए मेरे को लगता है कि हमको ये नेशनल एग्जाम सिक्योरिटी एजेंसी बनानी ही चाहिए.
0: कई
1: और
0: लोग
1: दूसरा एक
0: सोशल
1: और
0: मीडिया के
1: चीज,
0: जरिए एक पॉइंट मुझसे पूछ रहे हैं, वो मिस ना हो जाए इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ. कई लोग कह रहे हैं कि बजट जब पेश होता है तो उस दौरान कई दिनों तक, लगभग एक महीने तक, जितना भी दिन रहता है, लोगों को बिल्कुल अलग करके रखा जाता है ताकि बजट का कुछ भी लीक ना हो, क्योंकि उसके रेपरकशंस इकोनॉमिकली बहुत होते हैं, स्टॉक मार्केट से लेकर सब कुछ अफेक्ट होता है. क्या ऐसा कुछ करने की जरूरत है?
1: देखिए, ऐसा करके भी एक तो पहला कोई लाभ नहीं होगा, बिकॉज हम जितना भी कर लें, अभी टेक्नोलॉजी ऐसी चली गई है कि हम कहीं ना कहीं से एक दूसरे से बातचीत कर ही सकते हैं, और लीकेजेस उसमें भी होने के चांसेस हैं. अब इसमें मैं जाना नहीं चाहता, इसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता, पर लोग बाहर निकल सकते हैं, लोग किसी ना किसी से बात कर सकते हैं, तो लीकेजेस के चांस तो यहां पे भी हैं कि व्यक्ति किसी और बाहर के व्यक्ति से बात कर रहा है. हमको अंततोगत्वा ये करना है कि एक ही व्यक्ति या जो 10-12 व्यक्ति जो कि पेपर सेटर हैं, केवल उन्हीं का पेपर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारा क्वेश्चन बैंक इतना बड़ा होना चाहिए. मान लीजिए हमने एक, मैं आर्बिट्रेरी नंबर दे रहा हूं, 1 करोड़ मैंने क्वेश्चन बना दिए. अब उसमें से मेरे को मात्र 200 क्वेश्चन निकालने हैं. वो 200 क्वेश्चन मैं कौन से निकालूंगा ये किसी को नहीं पता होगा, ये सिर्फ उस टेस्टिंग एजेंसी को पता होगा. तो हमको एम करना है और एस्पायर करना है वहां के लिए. और जो एक बात आपने बोली कि कुछ लोगों ने ही इसको लीक किया, तो ये हमको कर देना चाहिए कि लाइफ टाइम डिबारमेंट होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का जिनका जिनके ऊपर हमें अंदेशा भी हो, और
0: मैं भी इससे
1: लाइफ
0: सहमत हूं
1: टाइम
0: मांशु जी.
1: डिबारमेंट होना चाहिए उन कंपनीज का, परमानेंट ब्लैकलिस्टिंग होनी चाहिए,
0: परमानेंट ब्लैकलिस्टिंग. और ये भी
1: परमानेंट
0: आपको एक
1: ब्लैकलिस्टिंग.
0: तरीका खोजना होगा कि जैसे कल भी मैं IIM कोलकाता के डायरेक्टर से बात करी थी, उन्होंने कहा कि कई कंपनियां फिर नाम बदल लेती हैं, किसी और रिश्तेदार के नाम पर वही कंपनी आ जाती है. तो मतलब एक तरीका इसके लिए खोजना होगा. लेकिन UPSC, JEE, इन एग्जाम्स में कैट और भी बहुत सारा, GMAT ये सब होता है, उसमें ये नहीं होता है, नीट में बार बार क्यों होता है?
1: अब अंजना, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होता है, सब में हुआ है. यूपीएससी भी एक बार लीक हुआ है, जेई का पेपर भी लीक हुआ है, कैट जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 2003 में उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था. तो ऐसा नहीं है कि लीक नहीं हुआ है, लीक असंभव नहीं है, चाहे हम कितना भी पुख्ता इंतजाम क्यों ना कर लें. इश्यू इज, हैव वी लर्न फ्रॉम इट? यदि हमने उससे सीख नहीं ली, तो एक ही एग्जाम 2 बार लीक नहीं होना चाहिए. एक बार तो क्षम्य है, दूसरी बार वो अक्षम्य बन जाता है. इसका मतलब कि हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है. तो हमको ये देखना है कि हम इस जो प्रोसेस है ये लीक करने की, इसको कितना मुश्किल और कितना एक्सपेंसिव बना दें उन लोगों के लिए जो कि राष्ट्रद्रोही तो है ही,
0: ठीक.
1: क्योंकि वो इतना पेपर लीक करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इनके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट एक होनी चाहिए.
0: हिमांशु राय जी, डायरेक्टर आईआईएम इंदौर के, आप आज तक पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और उम्मीद करते हैं कि आपके अनुभव और आपकी बातों से कुछ ना कुछ सहायता इसमें और जो बच्चे हैं खासतौर पर चिंतित अपने घरों में, उनके लिए कोई रास्ता दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अंजना।
0: धन्यवाद सर। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे संसद के परीक्षा हॉल में बहस और हंगामे के बीच क्या सरकार पेपर लीक के कड़े इम्तिहान में पास हो पाएगी, और इसके बाद आपको बताएंगे कि पेपर लीक के कसूरवार राज्यों को क्लीन चिट कैसे मिल गई। आखिर में आपको बताएंगे कि जो इंस्टाग्राम फेक न्यूज और भद्दी रील नहीं हटा पाता, उसे प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट हटाने का ग्लिच कैसे हुआ, देखते रहिए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
6: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
7: సోకుడు

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: पापा
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ
7: ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
7: चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
12: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
13: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
14: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
15: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
16: कुछ तो बात है इस दिल में।
17: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
18: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
19: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
20: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
19: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
20: अर्ज किया है
19: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
21: वाह वाह वाह वाह।
19: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
22: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
23: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड.
4: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है.
5: कुछ तो बात है इस दिल में.
6: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी. ये आपके लिए.
5: कुछ तो बात है इस दिल में.
7: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933.
8: सरसो से सरसो.
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है। ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क और
9: मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
10: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
11: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
12: Kuch to baat hai is dil mein.
13: We are over, Jimmy.
14: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
2: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच, हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
4: अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने, जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें। और बिंदु दूसरे अलग हैं, जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है, अध्यक्ष महोदय सरकार हर विषय पर स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ

0: नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संसद में बोली प्रियंका गांधी, कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदले प्रधानमंत्री मोदी। नए शिक्षा मंत्री पर लगाया आरोप, बीजेपी ने किया विरोध, बचाव में उतरे राहुल। बहस के दौरान बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं करते बात, मोदी सरकार चला रही है रिफॉर्म एक्सप्रेस। परीक्षा बिल पर चर्चा के दौरान बोले अखिलेश, प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचाया गया, गौरव गोगोई का भी सरकार पर बड़ा हमला। बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी छात्रों पर दर्ज एफआईआर ली जाएंगी वापस, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए निर्देश, सीजेपी के साथ समझौते के बाद एक्शन। पीओजेके में नापाक करतूत, मीरपुर में नरसंहार, कई लोगों की मौत की खबर। शो की शुरुआत पेपर लीक पर बने बिल को लेकर संसद में जारी घमासान के साथ, जहां लोकसभा में लंबी चर्चा चल रही है। आज सरकार और विपक्ष के नेताओं ने पेपर लीक बिल पर अपना पक्ष रखा। इस बीच कई बार जोरदार बहस देखने को मिली।
1: परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
2: और आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। नकारात्मक राजनीति करती थी और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए, लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया अंतोगत्वा सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग किया उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी।
3: इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी, कवि दुष्यंत की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अध्यक्ष जी, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है, और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है, और इसीलिए मैं यहां से इस सदन के पटल से हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं।
0: उधर आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए, जिसे लेकर संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला।
1: प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है।
4: लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें।
5: All these young people were protesting about the education system.
6: And so many girls
5: are protesting. They've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects rapists.
0: सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र वाले प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए।
7: जंतर मंतर पर हुए इस बवाल की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले। छात्रों के खिलाफ हुए बल प्रयोग के मसले पर वकीलों ने दलीलें दी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच होगी। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी। प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं। दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया। जिन लोगों पर पहले कोई केस नहीं था उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी।
8: कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको फौरन रिहा किया जाए। इसके साथ ही जिनके आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पिछले रिकॉर्ड नहीं है, उन सारे छात्रों को भी रिहा किया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि उन छात्रों के खिलाफ फिलहाल किसी भी तरह का कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, यानी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
7: इस मामले में पुलिस की तरफ से भी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं जिनमें कहा गया है कि आंदोलनकारियों के नाम पर असामाजिक तत्व वहां इकट्ठा थे जिन्हें कैमरे के जरिए पहचाना जा चुका है। इनमें से 800 से ज्यादा लोग वो हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं।
8: कोर्ट ने कहा कि इन सारी चीजों की जांच की जरूरत है और इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाए। अगले सोमवार को जब इस मामले की सुनवाई होगी तो जांच कमेटी को लेकर रूपरेखा साफ हो जाएगी, यानी अब जांच कमेटी का दायरा भी बढ़ेगा और इस मामले में अब धीरे धीरे बहुत सारे खुलासे भी होंगे। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
0: जनधन मंत्र पर छात्रों के साथ हुई बेरहमी को लेकर संसद में आज फिर हंगामा बरपा। कांग्रेस ने फिर से सवाल उठाया कि आखिर छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, क्योंकि पैलेट गन तो चली लेकिन किन हालातों में चली, किसने आदेश दिया और क्या पैलेट गन विवाद में पर्देदारी हो रही है।
9: मेरा आपसे आग्रह है, आज और निवेदन कर रहा हूं मैं।
10: संसद में पैलेट गन के चलने को लेकर हंगामा बरपा। पिछले 4-5 दिन से विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है और जवाब के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। 20 जुलाई को सीजेपी के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आरएएफ के जवान ने पैलेट गन चलाई। 21 जुलाई को मीडिया रिपोर्ट्स में पैलेट गन से 3 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट छपी। 22 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल के दावों को फेक न्यूज करार दिया। 23 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने आए पीड़ित के मेडिको लीगल रिपोर्ट में पैलेट गन से घायल होने की पुष्टि हुई। 24 जुलाई को राहुल गांधी ने पैलेट गन के पीड़ित साहिल लोचाप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 24 जुलाई को ही आरएएफ ने आरोपों के वेरिफिकेशन करने का फैसला किया। 26 जुलाई को राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाया और 28 जुलाई को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की 22 जुलाई की डायरी एंट्री में एक डीसीपी के निर्देश पर पैलेट गन के इस्तेमाल की बात पुलिस ने स्वीकार कर ली। आज फिर संसद में प्रियंका गांधी ने इसी पर सवाल किया कि पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया।
1: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।
10: विपक्ष ने पैलेट गन को बड़ा मुद्दा बना लिया। पैलेट गन से घायल साहिल के साथ राहुल गांधी पहले ही सामने आ चुके हैं।
6: पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन।
10: अब जांच जारी है, लेकिन अब तक साफ तस्वीरें सामने नहीं आई हैं जिससे पता चल सके कि पैलेट गन क्यों चली।
0: बिहार के छात्रों के प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई एफआईआर पर जबरदस्त सियासत हो रही है। एक तरफ छात्र संगठन सभी केस खत्म करने और छात्रों की रिहा करने की मांग पर अडग हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर AK-47 चलाने की जरूरत क्यों पड़ी।
10: सीवान से आई ये तस्वीर बिहार सरकार के गले की हड्डी बन गई है। सवाल हो रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि AK-47 चलानी पड़ गई। लेकिन इस सवाल के साथ ही विवाद तब बढ़ा जब बिहार के अलग अलग जिलों में हंगामे के बाद एफआईआर दर्ज हुई। 25 जुलाई को 15 जिलों में 694 लोगों को हिरासत में लिया गया। 26 जुलाई को 15 जिलों की 59 एफआईआर वापस लेने का आदेश आया। हिरासत में लिए गए 339 नाबालिगों को तुरंत रिहा कर दिया गया। राज्य भर में तकरीबन 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुए थे। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, सीपीआई माले विधायक संदीप सौरभ समेत माले के 4 नेता जेल में बंद हैं। अब छात्र संगठन कह रहे हैं कि अगर जल्द ही सबकी रिहाई नहीं हुई तो इस बार आंदोलन पटना में होगा।
11: जो वादे किए गए हैं उस पर सरकार वापस कदम लेगी, तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी।
10: इस पूरे मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि छात्र आतंकवादी तो हैं नहीं जिन पर AK-47 तान दी गई।
12: बिहार में तो सबसे ज्यादा ज्यादती हुई छात्रों पर, AK-47 तक चलाया गया, जैसे लग रहा है कि आतंकवादी वहां छात्रों पर जिस तरह की कार्रवाई हुई, जिस तरह से आतंकवादियों के साथ निपटती है पुलिस, उस तरह से छात्रों के साथ वहां व्यवहार किया।
10: तेजस्वी कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सुना कि किसी आंदोलन में AK-47 चलाई गई हो।
13: जनता चाहे किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, किसी वर्ग के हो, इस बार सब लोग मन बनाए कि भाजपा को रगड़ना है, भगाना है।
10: एक दिन पहले ही बिहार के सीएम ने आरोपियों की तस्वीरें अखबारों में छपवाई थी, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ रहा है और बिहार सरकार की पेशानी पर बल ला रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर आ रही है कि शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी उन्होंने मुलाकात की है, तो उन्होंने क्या बात की है और इस मुलाकात का क्या मतलब है, क्योंकि प्रहलाद जोशी के अपॉइंटमेंट पर सवाल उठाया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने फ्लोर पर, और राहुल गांधी ने भी पूछा है कि क्यों प्रहलाद जोशी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना पड़ा सरकार को। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी अब गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, उससे पहले वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी उन्होंने मुलाकात की है। हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, प्रहलाद जोशी की क्या मांग है?
14: ये देखिए, हमारे इस वक्त मैं आपको बता दूं कि एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है गृहमंत्री अमित शाह के साथ, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ साथ पीयूष गोयल, और अभी अभी एक अपडेट और इसमें दर्शकों को देना चाहेंगे कि यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू भी इस बैठक के लिए पहुंच गए। तो इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक हाई लेवल मीटिंग पार्लियामेंट के अंदर चल रही है, क्योंकि जिस तरह की बातें प्रियंका गांधी के द्वारा की गई है उसके बाद अब सरकार एक स्ट्रैटेजी बना रही है कि कैसे बिल पास कराया जाए, संसद में कोई गतिरोध ना हो, इसको लेकर चर्चाएं लगातार चलती रहे और कल बिल पास कराने की कवायद जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। और इस वक्त इसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इस बैठक से पहले कुछ देर पहले प्रहलाद जोशी की मुलाकात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी हुई थी और उस बैठक में भी पीयूष गोयल मौजूद थे और पीयूष गोयल के साथ साथ बीजेपी सांसद।
0: तो पीयूष, ये फ्लोर स्ट्रैटेजी की मीटिंग है?
14: जी बिल्कुल, ये फ्लोर स्ट्रैटेजी की मीटिंग है, क्योंकि जो ये बिल है ये एजुकेशन से जुड़ा बिल है और इसी बिल में जो एंटी पेपर लीक का जो लॉ है जिसमें अमेंडमेंट लेकर आई है सरकार, उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या क्या इसमें डिस्कशन करना है, क्या क्या बातें आगे रखनी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा भी हो रही है। और पीयूष गोयल जो है वो केंद्रीय मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री है, उनके साथ साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू में मौजूद है, प्रहलाद जोशी एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर इस बैठक में मौजूद है और सरकार की तरफ से चर्चा की जा रही है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि किस तरह से आगे
0: जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% सरकारी खरीदी और फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की किसान क्रांति पैदल यात्रा भोपाल पहुंच गई है। मंडीदीप में भोपाल सीमा पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर करीब 2000 किसान राजधानी में घुस गए हैं। वे मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से रवीश पाल जुड़ गए हैं। रवीश, भोपाल में अभी क्या स्थिति है?
15: देखिए, करीब 2000 किसान जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर कूच कर रहे हैं और जिस जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है मुख्यमंत्री का निवास, और यहाँ पे आप देखिए पुलिस ने एक आखिरी बैरिकेटिंग यहाँ पे रखी हुई है और पूरी कोशिश है कि इससे आगे जो है जो फार्मर्स है, जो किसान है, वो आगे नहीं जा पाए, क्योंकि 3 बैरिकेड और पहले ही किसान जो है वो तोड़ चुके हैं। लेकिन अब जो है ये अंतिम बैरिकेटिंग है, पुलिस ने साफ कर दिया है कि इससे आगे वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने बसें और गाड़ियां रोड पे इस तरीके से खड़ी की है कि किसान अपने साथ जो गाड़ियां लेके आ रहे हैं या फिर वो बैरिकेड जिस तरीके से तोड़ के अब तक आगे बढ़ रहे थे वो इससे आगे नहीं जा पाए। और यहाँ तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी है। पुलिस कमिश्नर जो है भोपाल के वो भी यहाँ मौजूद है और इनके साथ ही यहाँ पे तमाम दूसरे बड़े अफसर जो है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे और इनकी तैयारी को देख के आप समझ जाएंगे कि पुलिस ने यहाँ पे कैसे इन किसानों को आखिर में मुख्यमंत्री निवास जाने से रोकने के लिए तैयारी कर रखी। टीयर गैस की अगर जरूरत पड़ी तो उसकी भी तैयारी पुलिस ने यहाँ पे की है। सामने वज्र वाहन आपको दिख जाएगा कि अगर वाटर कैनन चलाने
0: की। यूपी की तरफ, जहां जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने के फैसले को प्रशासन ने वापस ले लिया है, लेकिन इस पर सियासत अभी जारी है।
16: यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी सियासत का नया केंद्र बन गई है। सरकार ने भले ही यूनिवर्सिटी को तोड़ने के आदेश पर यूटर्न ले लिया हो, लेकिन सीजेपी आंदोलन के बाद अब विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से छोड़ता नहीं दिख रहा है।
2: उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई, इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के
17: कि किसी नेता की किसी मैसेज को इतनी बार नहीं देखा गया होगा। 400 मिलियन व्यूज एक मैसेज को देखने के, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं में कितने लोकप्रिय है। जब दूसरा वीडियो डाला तो उसमें भी 250 मिलियन से ज्यादा, 270 मिलियन हो गए। आपके कहने से लोकप्रियता खत्म नहीं होगी, लोकप्रियता है तभी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया है। और अध्यक्ष जी सवाल ये खड़ा होता है कि आज हम सब लोग इस बात पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में धांधली पेपर लीक ये किसी आतंकवाद और माओवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे पहला शिकार हमारा युवा होता है। और अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है और इसमें भी हम इसका निवारण करने जा रहे हैं, इलाज करने जा रहे हैं। आप देखिए, इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद ने दशकों तक हमें बहुत जुल्म दिए, बहुत जख्म दिए, और इन गहरे जख्मों से निजात दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से हमने ही खत्म किया है और पेपर लीक्स की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। और इसीलिए आज जब हम सब इकट्ठे हुए हैं तो देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये देश के युवाओं के भविष्य की बात है, हमारी सरकार युवाओं के साथ है और युवा और मोदी सरकार ने मिलकर तय किया है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तय किया है कि एक ऐसा कानून लाएंगे जो आतंकवाद के खिलाफ बने कानून से भी ज्यादा सख्त होगा और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने पे भी काम आएगा। और आज का ये कानून आप देखिए, जो 2024 में हम लाए थे उसमें संशोधन करने के लिए लाए। अभी वेणुगोपाल जी कह रहे थे, पहले प्रियंका जी ने कहा कि कानून में बदलाव क्यों करने वाले हो, हम सिस्टम को और फूल प्रूफ करना चाहते हैं, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना कोई खेले उसके लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। तारीख पे तारीख, डिले पर डिले, ये ना हो, जान से लेकर जुडिशियल सिस्टम को समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए हम ये नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप तो समय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, हाउस चलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या। तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए, वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन में समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने। आपको कभी मौका अंदर जाने का नहीं मिलने वाला है। और हालत देखिए साहब क्या थी, हर तरह के प्रयास करके देख लिए, युवा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन युवा ये जानता है कि जब 3 मई को नीट एग्जाम हुआ और उसके 3-4 दिन के अंदर एक खबर आ गई कि कुछ लीक जैसी हुई, तो हमारी सरकार ने 12 मई को उसको निरस्त कर दिया और मात्र 3 दिन के अंदर 15 मई को नया यानी कि री एग्जामिनेशन करने का निर्णय लिया, ताकि युवाओं का एक साल बर्बाद ना हो, यह हमारी सरकार ने निर्णय लिया। यही नहीं, हमने चंद दिनों के अंदर देश भर में 5,440 से ज्यादा सेंटर्स में नीट एग्जामिनेशन को कराया, दुनिया भर के देशों में 14 सेंटर्स पे करवाया, 13 भाषाओं में करवाया और 21 जून को इसको करवा भी दिया और मात्र 45 दिनों के अंदर सारा प्रोसेस पूरा करके रिजल्ट भी निकाल दिया। ये युवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी। हम इनकी तरह दिखावा नहीं करते, मोदी जी ने युवाओं के हित में हर कदम उठाया, आगे भी उठाएंगे। हमारे खिलाड़ी अगर देश के लिए खेलने के लिए किसी देश में दूसरे देश में जा रहे हो तो देश के प्रधानमंत्री उनसे संवाद भी करते हैं, आने के बाद उनका अभिनंदन स्वागत भी करते हैं। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इनके समय 800 करोड़ रुपए का मात्र बजट था खेलों के लिए, हमारे समय 4000 करोड़ का बजट हो गया। इनके समय मात्र 65,000 करोड़ का शिक्षा का बजट था, आज उससे दुगने से ज्यादा 1,40,000 करोड़ का बजट हमने करके दिया। प्रियंका जी, आपके उत्तर दूंगा मैं इसके बाद। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती है, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती है, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर मुझे दुख इस बात का है, क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। और मैं एक बात और कह दूं, मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्हें कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। देश के प्रतिष्ठित प्रेस्टीजियस जो साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे साइंटिस्ट के साथ सदा कांग्रेस यही करती रही। लेकिन वैज्ञानिक होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सभ्यता और समाज से कट जाएं, आप अपनी परंपराओं को ना जाने। डॉक्टर कामाकोटी जी आधुनिक विज्ञान के शिखर पर है, एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो दूसरी ओर गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं, जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है, और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। डॉक्टर साहब हो सकता है एक ही गौमूत्र उनको क्योर करे। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, अभी तो उस इलाज पे भी आते, लेकिन पहले पेपर लीक का इलाज कर लें। आनंद जी आनंद आएगा सुनने में, भदौरिया जी
18: गौमूत्र का कर लो।
17: सर मैं इतना ही कहूंगा, ये कहीं रोक नहीं है कि आप कोई बिल लाया हो तो उस पर उसके अमेंडमेंट नहीं ला सकते। ये मोदी सरकार की सोच को बताता है कि जिस तरह की रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, हमारी सरकार वो रिफॉर्म्स करेगी जो युवाओं के हित में होगी। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, और आप सारे कागज पेन निकाल कर लिख लीजिए, ये जो हम नया बिल लेकर आए हैं, ये बिल, ये कानून एक नजीर होगा। दिस विल सेट एन एग्जाम्पल सर, और इसकी मैं पूरा उल्लेख बाद में करने वाला हूं क्या क्या इसके लाभ होने वाले हैं। लेकिन हमने अब तक क्या क्या किया? एक तो जल्द री एग्जामिनेशन करवाया। प्रियंका जी कह रही थी फेस रिकॉग्निशन, अरे फेस रिकॉग्निशन छोड़िए, हमारी सरकार ने 13 के 13 लोग जो पेपर लीक में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी करवा दी, जेड में सड़ रहे हैं और उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में आज कार्रवाई हो रही है। यही नहीं, नया बिल लेकर हम आगे हैं और हमने हाई पावर टास्क फोर्स भी बना दी निंदन नीलकंठ जी की अध्यक्षता में, जो एग्जाम रिफॉर्म्स करेगी और देश के युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने का काम करेगी। मैं इतना ही कहूंगा, जहां तक कांग्रेस ने भी और प्रदर्शन करने वालों में से भी एक दो लोगों ने बात कही कि प्रदर्शन में कुछ गुंडे आ गए थे, इन्होंने कहा फेस रिकॉग्निशन करनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं, जो ऐसे लोग जो गुंडे थे, असामाजिक तत्व थे, जो उस आंदोलन को खराब करना चाहते थे और जो संसद की इस चर्चा में, मैं बड़े साफ कह रहा हूं, जो असामाजिक तत्व और गुंडे थे, उनके ऊपर कानून के रूप में कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। देश का युवा पेपर लीक की बात करने आया था, बेहतर सिस्टम की मांग करने आया था, वो पुलिस की गाड़ियां जलाने, पुलिस को पीटने नहीं आया था। देश का युवा नहीं कर सकता, ये मुझे ही समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद कह रहे थे। हम गए तो हमें भी उन्होंने भगा दिया कि आप क्यों आए हो। मैंने कहा भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा था, आपको वहां कौन लेता। अरे आपके नेता आपके नेता अखिलेश यादव जी पे आऊंगा मैं, ठहरो जरा बताता हूँ क्या आप बोलते थे। वो उन युवाओं ने भी इनका मजाक उड़ाया, राहुल जी तो हिम्मत ही नहीं कर पाए उस आंदोलन में जाने की, वो बाहर जाके प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठ गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या देखिए ये हुई, खुद चले गए समाजवादी पार्टी वालों को और बाकी इंडिया गठबंधन वालों को बुलाया ही नहीं कि महफिल अकेले लूटना चाहते थे। ये ट्रस्ट की कमी आपके गठबंधन में है, ना नेता है ना नीति, और नियत में तो खोट पहले दिन से नजर आता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो कह रहे हैं, जो लोग पेपर लीक के अंदर कसूरवार थे, माफिया है, उनको मिट्टी में मिलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। देश के युवाओं को आश्वस्त कराना चाहता हूं, और मैं इसलिए कहता हूं सर, ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि क्या है। देश में पहला एंटी चीटिंग लॉ कौन लेकर आया, हमारी सरकार लेकर आई देश में 2024 में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। आज उसमें संशोधन करने की भी ताकत किसी ने रखी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर रही है। राज्यों में भी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, उस समय हमने उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा लाने के लिए राजनाथ जी ने शानदार काम किया, एंटी चीटिंग लॉ वहां पर हम लाए। लेकिन अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह से जब मैं पूछना चाहता हूं, जब उस समय मुलायम जी थे, क्या भाषण देते थे। अरे भाषण
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं मारिया शकील। मॉनसून जमकर बरस रहा है लेकिन पहाड़ों के लिए ये किसी आफत से कम नहीं है। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में बुरा हाल था तो अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर मॉनसून भारी पड़ रहा है। यहां लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों पर चलना तो खतरे से खाली नहीं, पता ही नहीं चलता कि कब सड़क पर चलें और ऊपर पहाड़ से मलबे के रूप में मौत आ जाए, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है कि पहाड़ के पहाड़ गिर जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए।
21: कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं नदियों में उफान है, कहीं लोगों की आफत में जान है। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा डर लग रहा है सड़कों पर। ये देहरादून मसूरी रोड की तस्वीरें हैं, ऊपर पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। पहले तो लगा कि हल्का है लेकिन थोड़ी देर में इस भूस्खलन की रफ्तार तेज हो जाती है। पत्थर, मिट्टी, पेड़, मलबा, लगता है कि जैसे पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया। यहाँ सोमवार रात से ही मूसलाधार बारिश जारी है और इसका साइड इफेक्ट मसूरी देहरादून रोड पर दिख गया। इस रास्ते पर भूस्खलन हुआ तो दोनों तरफ गाड़ियों की बड़ी बड़ी लाइनें लग गई। घंटों तक यात्री परेशान रहे। बाद में प्रशासन मौके पर पहुंचा और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया। वहीं देहरादून मसूरी रोड पर ही मूसलाधार बारिश के बीच एक और बड़ा हादसा टल गया। यहां सड़क किनारे बने एक रेस्टोरेंट पर अचानक पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आ गिरे। गनीमत रही कि हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए और किसी की जान नहीं गई। हालांकि इस रेस्टोरेंट को भारी नुकसान पहुंचा है। मसूरी से ही एक और वीडियो सामने आया है। यहां पूरा का पूरा पहाड़ ही बहकर नीचे आ गया। यह मसूरी चमसारी सड़क का वीडियो है। यह रास्ता गांव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग है। यहां भी लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से भारी मात्रा में मलबा और चट्टाने खिसक कर सड़क पर आ गई। बारिश पहाड़ों पर कहर तो मचा ही रही है लेकिन भ्रष्टाचार की भी पोल खोल रही है। यह देहरादून के प्रेमनगर का वीडियो है जहां नीचे से टोंस नदी बह रही है। भारी बारिश में पुल की अप्रोच रोड पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। साल 2025 में सितंबर के महीने में देहरादून के अलग अलग इलाकों में आई प्राकृतिक आपदा में यह पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पुल को फिर से तैयार करने में 16 करोड़ रुपए की लागत लगी, 10 महीने का समय लगा और 13 जुलाई 2026 को यह पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। लेकिन सिर्फ 16 दिन के भीतर ही इस पुल की अप्रोच रोड धंस गई और इतना बड़ा गड्ढा हो गया। अब सवाल बरसात की तीव्रता से ज्यादा निर्माण की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार की मात्रा पर उठ रहे हैं।
3: आप मेरे पीछे देखेंगे ये अप्रोच पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में धंसकर बह गया है। हालांकि एक नाकाम कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा, इसमें मलबा डाला जा रहा है क्योंकि गड्ढा भरने की कोशिश है और जल्द ही इस पुल निर्माण को पूरा करावा जाए, भी शुरू कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो पुल का प्रवाह है, नदी जिस तरह से बह रही है, देखिए किस तरीके से मलबा डाला जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जो पुल का हिस्सा धसा है उसे जल्द ही दोबारा से बनाया जा सके ताकि आवाजाही हो। लेकिन जो मौसम है वो चेतावनी बना हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग लगी हुई है, तमाम जो लोग हैं वो इस तरफ खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से दर्जनों ग्रामीण इलाकों का संपर्क राजधानी से टूट गया है। यहाँ तमाम जो लोग हैं वो आवाजाही को लेकर मुश्किलें झेल रहे हैं क्योंकि अगर ये पुल जल्दी से ही नहीं होता है तो राजधानी पहुंचने के लिए एक

0: है भोपाल, वे मुख्यमंत्री आवास की के बाहर हैं और ये सीधे तस्वीर आ रही है भोपाल से। वहाँ रवीश पाल मौजूद हैं और ये झड़प दिख रहा है किसानों और पुलिस के बीच में। रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, ये तस्वीरें जो आ रही हैं, क्या ये मुख्यमंत्री निवास के पास की है?
1: देखिए, मुख्यमंत्री निवास यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है और पुलिस ने ये अंतिम बैरिकेडिंग रखी है जहाँ पे किसान और पुलिस के बीच में लगातार यहाँ पे बातचीत हो रही है। लेकिन ये तस्वीरें जो है, आप ये देखिए, ये किसान और पुलिस के बीच में फिलहाल बातचीत हो रही है। किसान यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन
2: बहुत तानाशाही करी जा रही है, दो पैदल चल के आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत जोरों से हटाए जा रहे हैं।
3: हमें 2 दिन हो गए, ये लोग बोल रहे हैं बातचीत करने गए हैं, 2 दिन हो गए, 2 दिन से पैदल आ रहे हैं हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है। हमारी हमारी केवल 2 ही मांगे हैं, ई टोकन को बंद करो और 100% मूंग खरीदी करो।
1: आप ये देखिए, पुलिस यहाँ सबको बैठा रही है, पुलिस यहाँ सबको बैठा रही है, पुलिस जो है यहाँ पे लोगों को कह रही है कि वो इससे आगे ना जाएं। फिलहाल जो है पुलिस यहाँ पे सबको बैठा रही है और ये तस्वीरें हैं। आप जी बताइए,
4: जब मोहन यादव जी को अगर बैठ के बात करना था तो 2 दिन पहले जब किसान पदाधिकारी आए थे तो आप दिल्ली क्यों भागे?
1: फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पे सबको बैठा रही है, ये तस्वीरें हैं उस प्रदर्शन की जो नर्मदापुरम से शुरू हुआ है और अब जो है वो भोपाल पहुंच चुका है। हजारों की संख्या में किसान जो है वो यहां से आगे मुख्यमंत्री निवास जाना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिस जो है उन्होंने यहीं पे बैठा दिया। फिलहाल कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है, पुलिस ने कोई बल प्रयोग नहीं किया है और किसानों को समझाई दी जा रही है कि वो यहाँ बैठ जाए। उनके जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, कृषि सचिव से मुलाकात करने आगे गए हैं। पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि जब वो आ जाएंगे और उसके बाद इनकी जो बात होगी, जनप्रतिनिधि जो मिलने गए हैं उनके प्रतिनिधि मंडल, उसके बाद आगे का कोई कदम उठाए। फिलहाल पुलिस ने सभी को यहाँ बैठने के लिए कहा है और ये पूरी सड़क होशंगाबाद रोड है जिसपे फिलहाल जो बड़ी संख्या में किसान है वो यहाँ बैठ गए हैं धरने पे। आप
0: रवीश, अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आगे रुख करते हैं क्योंकि देहरादून और मसूरी की तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अगर देहरादून और मसूरी में ये हाल है तो ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर क्या हालत होगी? बारिश की वजह से चार धाम यात्रा रोकनी पड़ी है क्योंकि जगह जगह सड़कें टूट गई हैं, पहाड़ों पर नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारी बारिश की चेतावनी आगे भी है।
5: पहाड़ों पर भारी बारिश कैसे लोगों की जान जोखिम में डाल देती है ये तस्वीरें बता रही हैं। ये रुद्रप्रयाग का तिलवाड़ा पुल है जहां मंदाकिनी नदी में ये महिलाएं फंस गई हैं। ये महिलाएं नदी में बह रही लकड़ियों को निकालने के लिए यहां गई थी, लेकिन अचानक से नदी में पानी बढ़ गया। जिस तरफ से महिलाएं गई थी वहां पानी भर गया जिससे महिलाएं यहीं फंस कर रह गई।
6: 3 महिलाएं तिलवाड़ा की नदी के तट पर लकड़ी लेने गई थी तो दोनों ओर से बाढ़ आने के कारण तीनों महिलाएं यहां पर फंस गई हैं।
5: इसके बाद लोगों ने एसडीआरएफ को सूचना दी, तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। नदी के एक तरफ से छोटा सा अस्थायी पुल बनाया गया और फिर एक एक करके इन महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। गनीमत थी कि कोई हादसा नहीं हुआ क्योंकि नीचे नदी का बहाव बहुत तेज था और इसी बहाव में इन महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया। रुद्रप्रयाग में सारी नदियां उफान पर हैं। ये अलकनंदा की तस्वीरें हैं जो बिल्कुल खतरे के स्तर पर पहुंच गई है। अलकनंदा का डेंजर लेवल 627 मीटर है और नदी अभी 626 मीटर तक पहुंच गई है। सब कुछ जलमग्न हो गया है। यहाँ बड़े बड़े घाट हैं, भगवान शिव की मूर्ति है वो भी नदी में डूब गई और अब तो लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। लोगों को प्रशासन अलर्ट कर रहा है क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
7: इस समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी डेंजर लेवल पर बह रही है। नदी किनारे स्थित सभी घाट, पैदल रास्ते पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी में तमाम तरह का

0: कूड़ा करकट, पेड़ पौधे बहकर आ रहे हैं। ये अलकनंदा नदी किनारे स्थित बेरनी घाट है। ठीक सामने भगवान शिव की नदी से तकरीबन 20 मीटर दूर विशाल प्रतिमा मौजूद है, लेकिन पानी का इतना अधिक बहाव है कि मूर्ति का कहीं कुछ पता नहीं है। मूर्ति से भी कई दूर तक नदी का पानी बह रहा है। इसके अलावा आप ठीक सामने देख सकते हैं जो घाट आने का रास्ता है, वह भी पूरी तरह जलमग्न हो चुका है।
1: यह है प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव गुफा। यहाँ गुफा के अंदर शिवलिंग है और बगल में अलकनंदा बहती है। अलकनंदा के जल से श्रद्धालु शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन अभी तो हालात ऐसे हैं कि अलकनंदा सीधे खुद ही गुफा के अंदर जलाभिषेक कर रही है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
0: इस समय हम रुद्रप्रयाग से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध भगवान शिव की कोटेश्वर गुफा में मौजूद है। आप देख सकते हैं कोटेश्वर गुफा के भार बहने वाली माँ अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है। ऐसा लग रहा है मानो नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है। आप ये देख सकते हैं ये कोटेश्वर गुफा को जाने वाला रास्ता है। कोटेश्वर गुफा के भीतर भगवान शिव का लिंग है। यहाँ भक्त लिंग का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जो रास्ता है वहाँ पूरी तरह पानी भर चुका है। स्थिति यह है कि गुफा के भीतर तक भी पानी पहुंच चुका है।
1: लगातार बारिश को देखते हुए केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है, क्योंकि बारिश और भूस्खलन हो रहा है, इसीलिए यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई है और यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रुकने की सलाह दी गई है। फिलहाल यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका जा रहा है, क्योंकि कल रात ही केदारनाथ हाईवे पर गुप्तकाशी में पहाड़ी टूट गई और मलबा दो दुकानों में घुस गया, जिससे कई दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। इधर चमोली में देर रात से बारिश जारी है, जिसकी वजह से कंचनगंगा के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। यहां पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी सड़कों पर आ गए, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। सड़क खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन कह रहा है कि मौसम सामान्य होने तक यात्रा न करें और सतर्क रहें। बारिश से तबाही उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी हो रही है। यहाँ चंबा में सोमवार की रात को बारिश ने भारी तबाही मचाई। मलबा कई घरों में घुस गया। राहत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई घरों, दुकानों और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। मलबे की चपेट में आने से 12 से ज्यादा वाहन दब गए, जिनमें निजी कारें, मालवाहक ट्रक, मोटरसाइकिलें और स्कूटी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई से 31 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। 30 और 31 जुलाई को कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: कई क्षेत्रों में मौसम
3: विशेष में मेरे साथ आज इतना ही। आगे श्वेता सिंह के साथ
4: Ready, set, summer with the Honda Summer Event. With available features like all-terrain tires and off-road tuned suspension, the rugged Honda Pilot, Ridgeline, CR-V, and Passport have all you need to get summer ready with the most fuel-efficient full-line automaker in America. Visit your local Honda dealer today.
5: See dealer for financing details. Based on EPA estimate of 2024 large full-line automaker fleet-wide fuel economy, EPA Automotive Trends Report 2025.
6: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: You hear it once and remember everything.
8: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
7: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
2: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
1: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
3: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
4: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
5: पापा
6: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ओला ला भाई मेरा बैट,
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: अभी तो डिस्चार्ज हुआ यार।
8: ओला बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
12: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
13: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
14: कुछ तो बात है इस तेल में।
15: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
18: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
19: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी, हिंड बड़े आराम से,
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद छात्र हैं हजारों की संख्या में जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं।
3: इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं।
4: पुलिस के द्वारा यहां पर इनको रोका जा रहा है।
5: तमाम प्रदर्शनकारियों को तिथर बतर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर
7: राहुल गांधी को जमकर रावण को उठा लिया गया।
8: पक्ष और सरकार के सांसद आमने सामने आ चुके हैं मकर द्वार के अंदर।
9: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं।
10: सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी, क्या ये सरकार करोड़ों युवाओं को नकार सकती है?
11: जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वाज वेरी रिलीव्ड।
12: धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
13: कॉन्फर्मेशन यहाँ देना चाहूंगी तीन बातों का, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग कन्फर्म्ड है,
14: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है।
15: बहुत ही दुखद विषय है, कुछ समय पहले एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय। खुद सीजेपी ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई। मगर यह कहना आज कि AK-47 में, बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है, कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है, और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदले पीएम, नए शिक्षा मंत्री पर लगाए संगीन आरोप, बीजेपी बोली ये चरित्र हनन है, प्रियंका के बचाव में आए राहुल। बहस के दौरान बीजेपी ने विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं उठाते सवाल। मोदी सरकार चला रही है रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक का होगा पुख्ता इंतजाम। परीक्षा बिल पर चर्चा के दौरान बोले अखिलेश, प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचाया गया, गौरव गोगोई का बयान, सरकार की असफलताओं का स्मारक है ये बिल। बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर ली जाएंगी वापस, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए निर्देश, सीजेपी के साथ केंद्र सरकार के समझौते के बाद एक्शन। भोपाल में किसानों का प्रदर्शन, सीएम आवास की ओर जाने से पुलिस ने रोका, ई टोकन बंद करने, मूंग की 100% सरकारी खरीद को लेकर आवाज उठाई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: का देश की संसद आज बहुत दिनों बाद युवाओं के मुद्दे पर चर्चा कर रही है। लेकिन इस चर्चा के बीच इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको खबरदार कर दें, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कुछ ही देर पहले ये पोस्ट लिखी है कि अगर छात्रों को निशाना बनाना बंद नहीं किया गया तो फिर सीजेपी के साथ युवा प्रदर्शन करने उतर सकते हैं। हालांकि बिहार, असम और महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारी युवाओं पर केस वापस लिया जा चुका है। देश में, संसद में देश के बच्चों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर चर्चा चल रही है। 6 दिन के हंगामे के बाद आज दोपहर 2 बजे से पेपर लीक रोकने के लिए नए बिल पर चर्चा हो रही है। अभी 2 घंटे और सदन में सांसद अपनी बात रखेंगे। दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज खबरदार करके हम पूछते हैं कि जब पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षकों की कमी, शिक्षा के राजनीतिकरण के दर्द से जूझती जनता की पीर पिघलकर जंतर मंतर तक बहने लगी, तब क्या संसद से समाधान की गंगा बहेगी? या फिर लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा करके, राज्यसभा में भी शायद इतनी ही चर्चा करके नए बिल को कानून की शक्ल देकर भुला दिया जाएगा? क्या देश में अब युवा, स्कूल, शिक्षा, परीक्षा, रोजगार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, या फिर 4 दिन की चर्चा फिर अंधेरी रात? इसी सवाल पर आज आपको खबरदार होना है।
1: भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 6 करोड़ 30 लाख हो गई। यानी 4 दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी, लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो जाती है। यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहां लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है।
2: इट इज ऑल्सो अ रिइटरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जीज रिजॉल्व नॉट टू अलाउ एनीवन टू कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया। एंड देयरफॉर दिस बिल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वे as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा, या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगे। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान, पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई।
3: आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
4: विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे।
5: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
6: छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए।
5: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी।
3: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।
7: जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं।
8: जस्ट बिकॉज वी सपोर्ट दिस बिल डजंट मीन और द गवर्नमेंट शुड एक्सपेक्ट अस टू अपलॉड दोज हु सेट द वर्ल्ड ऑन फायर बिकॉज दे टर्न अप विद अ बकेट ऑफ वाटर।
9: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
0: लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाले नए बिल पर होती चर्चा के बीच इस सवाल को समझना जरूरी है, जहां चुनाव में लोग मानते आए हैं कि युवा और बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन फिर वोट देने में जाति धर्म देखा जाने लगता है, क्या वहां भी बदलाव होगा? मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे हर साल दो बार, एक बार शुरुआत में, एक बार साल के बीच में देश का मिजाज समझता है। पिछले कुछ साल के डेटा को हमने आज निकाला, जिसमें पता चला कि 2022 से लेकर इस साल जनवरी तक हर बार देश के मिजाज में बेरोजगारी और युवा सबसे बड़ा मुद्दा बनता आया है। 27% तक लोग इसे मुद्दा मानते आए। बस अब फर्क यह है कि हाल के सालों में पहली बार युवाओं ने आंदोलन से किसी मंत्री का इस्तीफा लिया हो, और संसद में सब बहस कर रहे हैं, लेकिन इसी बहस में नए शिक्षा मंत्री को लेकर प्रियंका वाड्रा टिप्पणी करती हैं, जिसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। लेकिन बाहर आकर प्रियंका फिर बयान देती, राहुल गांधी समर्थन करते हैं। मामला बिल्किस बानो के मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई से जुड़ा है, जिस पर प्रियंका कहती हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया है जिन्होंने दोषियों की रिहाई पर सहमति जताई थी, जिसका विरोध तुरंत संसद में हुआ। रिजिजू, निशिकांत दुबे और खुद प्रहलाद जोशी ने विरोध किया, कहा कि पहले प्रियंका इस बात का सबूत दे और माफी मांगे।
10: द बीजेपी पुट्स अ मैन हु इज अ डिफेंडर ऑफ रेपिस्ट्स, दैट्स द मोस्ट फिल्थी टाइप ऑफ मैन, देयर कैन बी नो फिल्थी अ मैन देन समबडी हु सेज दैट रेपिस्ट नीड प्रोटेक्शन, दैट इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुडे। इट्स स्ट्रेंज, इट्स अ स्ट्रेंज रिएक्शन।
3: आई एम गोइंग टू अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट, मैंने भेज दिया वीडियो भी है उस समय का, मैं दूंगी और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से दूंगी।
0: सियासी बहस एक तरफ, रहे और शिक्षा के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर बहस लगातार होना जरूरी है, क्योंकि आंकड़ा ये भी कहता है कि 2013-14 से लेकर 25-26 के केंद्रीय बजट में कुल आवंटन में शिक्षा की हिस्सेदारी प्रतिशत में घटती जा रही है, जहां आंकड़ा है कि शिक्षा मंत्रालय में ये 46% तक गिरी है, स्कूल शिक्षा विभाग में 53% तक और उच्च शिक्षा विभाग में 38% तक। ये आंकड़े कुल केंद्रीय बजट से आवंटित प्रतिशत के रूप में है, जिनको लेकर सोचना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच अभी संसद में, जहां एक तरफ पेपर लीक कानून को सख्त करने वाले बिल पर सत्ता कहती है कि हमें युवाओं का ख्याल नहीं, वहीं विपक्ष मंशा पर सवाल उठाता है।
11: सरकार ने उनके साथ क्या बर्ताव किया, सवाल इस बात का है, क्योंकि हम लोग भी उस आंदोलन में शामिल हुए। और क्यों शामिल हुए हम लोग? क्योंकि ये बच्चे आंदोलन में बैठे थे, क्योंकि ये हमारे देश के बच्चे आंदोलन में बैठे थे। हो सकता है हमारे बच्चे नहीं बैठे हो, हम किसी के भी, लेकिन बच्चे तो देश के थे, हमारे बच्चे थे। इसी भावना के साथ हम इस आंदोलन में गए कि हमको साथ देना है, नहीं तो हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे, हमारी अंतरात्मा क्या जवाब देगी। और ये आत्मा की जवाब जो हम दूसरों को नहीं देना चाहते थे, हम खुद को, हमको जवाब देना था, इसीलिए हम सब गए। लेकिन जो बर्बरता देखी गई सड़कों पे, उसका बयान नहीं किया जा सकता है।
12: वेणुगोपाल जी कह रहे थे आरटीआई, अरे सपा से पूछिए आरटीआई कहां गई थी, सारी कॉपियां जला दी गई थी वहां पर। और यही नहीं सर, फाइनल रिजल्ट आने पर भी विवादों में रहे, आयोग को जाते विशेष आयोग बना दिया, ऐसे आरोप लगे। सर ये लाठियों की बात करते हैं, सर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर जितने युवा गए थे, सिर फटे, टांगे टूटी, मुकदमे किए गए। आज मैं पूछता हूँ कहाँ पर है वो, इन्हीं की सरकार ने लाठियां चलाई थी सर। सर इनकी हालत तो वो है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, 100 पेपर लीक करवा के राहुल गांधी अखिलेश यादव आंदोलन करने चले। सर
0: पेपर लीक रोकने के लिए बनाई गई नई कमेटी को लेकर प्रियंका वाड्रा ने सवाल उठाए, सदस्यों का नाम लेकर कहा कि इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता। सबसे बड़ा हमला प्रियंका ने प्रोफेसर वी कामकोटी पर किया।
3: इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ,
12: अरे
3: फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी?
12: मुझे दुख इस बात का है, क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी।
0: प्रोफेसर वी कामकोटी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। प्रियंका वाड्रा ने उन्हें गोमूत्र एक्सपर्ट कहकर बुलाया, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आखिर इससे जुड़ा विवाद क्या है? प्रोफेसर वी कामकोटी भारत के जाने माने कंप्यूटर वैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं। आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एमएस और पीएचडी की उन्होंने उपाधि ली। आईआईटी मद्रास के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं वो दे चुके हैं। 2022 से आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं। भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति परियोजना से जुड़े हैं। वाणिज्य मंत्रालय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चेयरमैन रहे। पिछले साल जनवरी में चेन्नई में एक गौशाला में माटू पोंगल कार्यक्रम के दौरान कामकोटी ने देसी गायों और जैविक खेती के बारे में बात करते हुए कहा कि गोमूत्र में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और पाचन से जुड़े गुण होते हैं। उन्होंने एक साधु का किस्सा भी सुनाया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि गोमूत्र पीने से उनका बुखार उतर गया था। एक कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा चुप। क्या यही युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे पर राजनीति में होता है? जहां बीजेपी शासित राज्य में भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक हो, तो विपक्ष आक्रामक होकर प्रदर्शन करता है, लेकिन जब विपक्ष के शासन वाले राज्य में पेपर लीक, भर्ती धांधली होती है तो विपक्षी दल चुप हो जाते हैं। यही झारखंड में हो रहा है, जहां युवा नाराज हैं, सड़क पर हैं। वजह, झारखंड लोक सेवा आयोग, जिसकी कराई भर्तियों में धांधली की जांच का इतिहास यह है कि दो दशक में झारखंड की 10 भर्ती की जांच सीबीआई कर रही है, 6 भर्ती अभी जांच के दायरे में है, 9 आगे की भर्ती स्थगित करनी पड़ी है। वजह है धांधली और भ्रष्टाचार।
13: देश में चलते संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित की बात करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक जाकर धरना देते हैं, संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं, छात्रों के हक में सवाल उठना चाहिए, सबका हक है, जरूरी भी है, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को ये पता है या नहीं कि उन्हीं की गठबंधन वाली सत्ता की नाक के नीचे हजारों छात्र परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर जेएमएम कांग्रेस शासित राज्य झारखंड की है, जहां भर्ती आयोग भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। रांची में नीले रंग का तिरपाल लगाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे वो बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी देने के नाम पर हुई परीक्षाओं में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से ठगने, रुलाने, दौड़ाने और भटकाने का आरोप है।
14: जो अभ्यर्थी हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे है और ठीक जंतर मंतर के तर्ज पे यहाँ पे देखिए अनिश्चितकालीन यहाँ धरना का कार्यक्रम जो है वो सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह।
13: झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है, 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है, जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं।
15: सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हमारे हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना सकें।
13: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां 4 तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर 4 है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई, तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई।
16: TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जो लखनऊ की है, जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ कि कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहाँ हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपये अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपये में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपये कहाँ से आ रहा है। तो 200 रुपये के लिए सरकार जो है जो उसका जो जेपीसी का चेयरमैन और अध्यक्ष है वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है सीटों को बेचा जा रहा है। आज 14वीं जेपीसी सबके सामने आया है।
13: हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड एसएससी के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो,
17: कोई ऑप्शन नहीं है, घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा। हम भी अब उन्हें हम उन्हें मतलब आसरा देते हैं, वो हमें डांडस देते हैं, एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं इमोशनली। हम उन्हें कर समझाते हैं, वो हमें समझाते हैं, ये स्थिति बना हुआ है।
18: भरोसे पे सब कुछ चल रहा है, ये परिवार वाले को भरोसा देते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और दो, और परिजन ये कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त और लो, लेकिन कुछ कर के आओ और वो हो नहीं पा रहा है जो ये करना चाहता है।
13: अब तक सीआईडी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एल खियांगते के घर तक छापा मारा गया। जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं, सीआईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है।
2: The agency, whatever agency that the commission has taken to do the work, at the point in which the work was given, at that point, the understanding is that the agency was not blacklisted.
13: दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करती है और कांग्रेस राज में भर्ती में होती धांधली के आरोपों पर युवाओं के हक में प्रदर्शन करने बीजेपी उतरती है।
14: जेपीएससी के 14वें सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम्स में भारी अनियमितता के खिलाफ बीजेपी जेपीएससी कार्यालय पहुंची है। बैरिकेडिंग को जो लगाया गया था सुरक्षा के लिहाज से उसको तोड़कर, पहले बैरिकेडिंग को तोड़कर यहां बीजेपी के कार्यकर्ता आगे पहुंच चुके हैं।
19: पूरा लिपा पोती हो और इस राज्य में सरकार है प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री है कोई नहीं सुन, इस राज्य में सिंडिकेट का।
13: अब सवाल दो है। पहला तो ये कि बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं, और दूसरा सवाल, क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है, या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद देश भर में जेन जी की चर्चा है, लेकिन अब उनके बाद वाला जेनरेशन यानी जेन अल्फा भी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक स्कूल के छात्र छात्राओं ने न केवल बुनियादी चीजों के लिए प्रदर्शन किया बल्कि प्रशासन को अपनी मांग मनवाने के लिए मजबूर कर दिया। ये खबर बताती है कि अब छात्र अपना हक समझते हैं, वो जानते हैं कि अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाए। इसीलिए हमने आज पहले सवाल उठाया है कि क्या संसद से सड़क तक होती चर्चा और प्रदर्शन से देश की राजनीति में युवा और रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा आगे भी रहेंगे।
13: जंतर मंतर पर जेनजी की प्रदर्शन से उत्साहित होकर अब जेन अल्फा भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना जान चुके हैं। ये देश के जेन अल्फा का शायद पहला प्रदर्शन कहा जाए जिसने स्कूल प्रशासन को झुका दिया। जगह है उत्तर प्रदेश का फतेहपुर। यहाँ पर सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले इन बच्चों ने कॉलेज में बिजली और पानी के लिए आंदोलन किया।
20: लोग पानी, शुद्ध पानी नहीं है, पंखे से किरण आ रहा है, बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं, और हम लोग सब लोग मिलकर धरना दिए तो सिस्टरों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा थे।
13: जेन जी के जंतर मंतर वाले आंदोलन की तरह जेन अल्फा के इस प्रदर्शन में बाबा साहब की तस्वीरें छात्रों के हाथों में दिखी। छात्रों ने अपनी मांगों को रखने का आत्मविश्वास वंदे मातरम के नारों के साथ सुना।
21: स्कूल की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है।
22: अच्छा, टंकी को लेके क्या कहे, पेयजल समस्या आपको?
21: पानी से काई निकलती है, अच्छा पानी नहीं आता है,
22: सारी छात्रा इसी से पानी पीती है।
21: इसी से पीते हैं।
22: कितने कितने दिनों में सफाई होती है इसकी?
21: लगभग हफ्ते भर में।
22: अच्छा,
21: महीने महीने हो जाते हैं कभी।
13: फतेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले ये बच्चे कक्षा में पंखा, स्कूल में पीने का साफ पानी और शौचालय में गेट लगवाने की मांग लगातार करते आ रहे थे, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो फिर ये स्कूल के गेट के बाहर प्रदर्शन करने के लिए खुद ही उतर पड़े। इस प्रदर्शन की खबर मिली तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूल का निरीक्षण किया और इनकी सभी बातें मान ली। अब छात्रों को हर कक्षा में 4 पंखे, वायरिंग ठीक करवाने, साफ पानी के लिए एक आरओ लगवाने और क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए बेंच की व्यवस्था करवाने का आदेश दिया गया है।
23: कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं और आज रात से लेके कल तक हम जाएंगे। वायरिंग जो है हमारी ओपन है, उसको हम लोग वायरिंग पाइप वाली कराने का जाएंगे। उसी तरीके से एमडीएम का जो मेनू है उसके अनुसार मात्रा और न्यूनू सुनिश्चित कराया जाएगा। जो 6, 7, 8 के बच्चों को डिस्पेंस चाहिए उनको एक महीने के अंदर डिस्पेंस की व्यवस्था कराई जाएगी। पेयजल के लिए अलग एक RO और एक वाटर कूलर बच्चों के लिए उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब चीज़ें एक जो जल्दी हो सकती है वो जल्दी हो जाएगी।
13: जनरेशन अल्फा मतलब जिनका जन्म साल 2010 से 2024 के बीच हुआ, पहली ऐसी पीढ़ी है जिसने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बिना दुनिया नहीं देखी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि फतेहपुर में जनरेशन अल्फा को बुनियादी चीजें मांगने के लिए ही सड़क पर उतरना पड़ रहा है। प्रशासन इस प्रदर्शन के बाद अब सभी स्कूल की मूलभूत सुविधाएं जल्द से जल्द देने का वादा करता है, लेकिन खबरदार करता ये सवाल है कि इन स्कूली बच्चों को पीने के पानी, क्लास में पंखे और बेंच तक के लिए अगर सड़क पर उतरना पड़ रहा है, तो ये जो अधिकारी जिनका काम है निरीक्षण करना, स्कूल में बच्चों का ध्यान देना, वो कर क्या रहे हैं?
0: राज्य कोई भी हो, नेता कोई भी हो, सत्ता किसी की भी हो, इनके लिए युवा और रोजगार केवल मौसमी मुद्दा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज तक खबरदार करता रहेगा, आपको भी खबरदार करना होगा। जैसे मध्य प्रदेश की बात है, यहाँ नेताओं को अपनी गाड़ी, अपना दफ्तर, अपना भत्ता, सबकी चिंता रहती है। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने वाले जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर रखे गए, उन्हें सैलरी के लिए रुला दे रहे हैं। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि संसद में होती चर्चा केवल चर्चा बनकर न रह जाए, बदलाव युवाओं के लिए हर जगह आए।
13: गोद में बच्चों को लेकर प्रदर्शन करने की मजबूरी ला दी गई, क्योंकि जिनके भरोसे मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ये ढिंढोरा पीटती है कि सुनो सुनो सुनो, सरकारी स्कूल में बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं। अब वही कंप्यूटर शिक्षा देने वाले गेस्ट टीचर को सैलरी के लिए इतना रुला दिया कि सिवाय भोपाल में प्रदर्शन के कोई रास्ता इनके पास नहीं बचा।
1: मांग है कि इनको जो मानदेय मिलता है वो तकरीबन 15,000 रुपए महीने के हिसाब से 12 महीनों के लिए 1,80,000 रुपए तय किया गया था, लेकिन जब से इनकी ज्वाइनिंग हुई है तब से लेकर के वो जो मानदेय है वो कभी भी इनको 9 महीने से ज्यादा मिल नहीं पाया है। और आरोप ये भी है कि वो कई बार मानदेय जो 15,000 रुपए का तय हुआ था महीने का, उसमें भी कटौती की गई।
13: सोच कर देखिए, आपका बेटा या बेटी जिसने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डिग्री ली हो, ऐसे 6,000 लोगों को सरकार ने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में रखा, लेकिन कंप्यूटर पढ़ाने सिखाने वालों को उनके हक के महीने के 15,000 रुपए देने में रुला दिया जाता है। सीहोर की भावना चित्तौड़ा छोटी बेटी के साथ इसीलिए भोपाल में प्रदर्शन कर रही है।
4: तनख्वाह हमारी बहुत बहुत लेट आती है सर।
1: किस तरीके की चुनौतियाँ आती हैं आर्थिक रूप से घर चलाने में?
4: सर बहुत सारी तरीके की आती है, बच्चों की फीस भरना, घर का खर्चा चलाना, बहुत सारी समस्याएं आती है।
13: उज्जैन की रहने वाली रीना गुप्ता सिंगल मदर है, घर का खर्च इनकी सैलरी से चलता है, लेकिन वो तो समय पर मिलती नहीं, ऊपर से पूरा पैसा भी नहीं आता, घर चलाना इनके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा हो जाता है।
5: 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, फिर हम अपना खर्चा कैसे निकालेंगे? अब मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो मेरे साथ में ये कंडीशन होती है कि मुझे मकान का किराया भी देना है, घर में राशन भी भरना है, मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनका भी देखना है, तो मैं अकेली उस सारी चीज को कैसे मैनेज करती? कभी मुझे इससे पैसे उधार लेने पड़ते, कभी उससे उधार लेने पड़ते, कई बार तो मुझे ब्याज पे उठाना पड़ता।
13: सागर जिले के अखिलेश दिव्यांग प्राइवेट नौकरी करते थे, सरकारी स्कूल में ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की नौकरी कर ली, लेकिन अब दुखी है, चपरासी से कम वेतन मिलता है।
6: हम लोगों के सर 3-3 माह तो रोक कर रखते हैं पेमेंट को सर, हम सर अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे सर, और हम अपने 12वीं वालों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये कौन सी कहां की सर प्रथा है सर? सर हमने इस मकसद से इसको ज्वाइन किया।
13: ये प्रदर्शन करते युवा केवल कंप्यूटर ही बच्चों को पढ़ाते नहीं, बल्कि स्कूलों की कंप्यूटर लैब का रख रखाव, सरकारी पोर्टल पर डेटा एंट्री, डिजिटल रिकॉर्ड और शिक्षकों को तकनीकी सहायता देने जैसे कई अहम काम संभालते आए, लेकिन इनको वक्त पर सैलरी देने से जुड़े सवाल पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का ढीठ पना देखिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत चलने वाली योजना पर सैलरी देने की जगह खुद ऐड कर सवाल करने वाले मंत्री को तो जनता के टैक्स से समय से वेतन और भत्ता लाखों का मिलता है, लेकिन ऐसे मंत्री अब भूलने लगे हैं कि किस काम की शपथ इन्होंने ली है। ये भी भूल जाते हैं कि जनता का गुस्सा सड़क पर आता है तो अब इस्तीफा भी हो जाता है। लेकिन अभी सवाल कि सरकार मध्य प्रदेश में कंप्यूटर टीचर के भविष्य को सुरक्षित करने का कोई रास्ता निकालेगी या फिर डिजिटल शिक्षा के दावों और वो शिक्षा देने वाले दोनों को अंधेरे में धकेल देगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम का वीडियो फेसबुक पर अपने आप आ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके अकाउंट सेंटर में ऑटो शेयरिंग विकल्प चालू होता है। पीएम मोदी ने 23 तारीख को आंदोलनकारी छात्रों को संबोधित करने के लिए आधी रात को इंस्टा पर एक वीडियो बनाया, लेकिन देश तब हैरान रह गया जब फेसबुक पर ये वीडियो नहीं दिखा। 28 तारीख को मेटा ने तकनीकी गलती का हवाला देकर वीडियो रिस्टोर कर दिया, लेकिन फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा सवालों में आ गई।
7: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है।
13: 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आधी रात इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो ने रिकॉर्ड बनाया।
7: पीड़ादायक है।
13: नरेंद्र मोदी के इस वीडियो को 30 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया और रातों रात करीब 10 लाख नए लोग पीएम मोदी के इंस्टा अकाउंट से जुड़ गए। लेकिन देश तब हैरान हुआ जब फेसबुक और इंस्टा की पेरेंट कंपनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया। जब फेसबुक पर यह वीडियो दिखाई नहीं दिया तो इस पर सवाल उठे और मामले ने तूल पकड़ लिया। अब सरकार ने मेटा के अफसरों को तलब कर लिया है।
8: सर, आर दे संबंध मेटा और
9: वी आस्क्ड फॉर मीटिंग? यस।
10: संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं।
13: अब सवाल उठता है कि जिस इंस्टा वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक पर चिंता जताई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया, उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसे मेटा ने कुछ देर के लिए हटा दिया? इसका जवाब मेटा ने यूं दिया है, कहा है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वीडियो गलती से हट गया, लेकिन सरकार इस सफाई से संतुष्ट नजर नहीं आती है।
9: I think the explanation that it was a technical ground and that there was a technical glitch in the kind of discovery program that they had, the algorithm that they had to find this kind of content, does not appear to be an acceptable explanation in its entirety. We have sought more details.
13: मेटा पहले एआई की मदद से संदिग्ध वीडियो की पहचान करता है, उसके बाद जरूरत पड़ने पर मॉडरेटर उसकी जांच करते हैं। अगर वीडियो कंपनी के कम्युनिटी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे हटा दिया जाता है। वहीं अगर वीडियो गलती से हट जाता है तो समीक्षा के बाद उसे दोबारा रिस्टोर कर दिया जाता है।
9: What was done was wrong. The authorized content from the authorized handle of the Prime Minister being removed is an extremely disturbing occurrence. It should have never happened.
13: हिंसा या हिंसा के लिए उकसाने वाला कंटेंट हो, नफरत फैलाने वाली कोई पोस्ट हो, आतंकवाद या उग्रवाद का समर्थन हो, अश्लीलता या बाल शोषण से जुड़ा कंटेंट हो, फर्जी या नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी हो, तो उसे मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम से हटा देते हैं। साल 2020 में फेसबुक और ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का कोविड-19 पर भ्रामक वीडियो हटाया। इसी तरह की कार्रवाई ब्राजील के बोल्सोनारो, वेनेजुएला के निकोलस मादुरो पर हुई, जिन्होंने ट्रंप की तरह कोरोना पर भ्रामक पोस्ट किया। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या पर शोक जताने वाला वीडियो पोस्ट किया, जिन्हें मेटा ने हटा दिया। हालांकि विरोध के बाद कंटेंट दोबारा बहाल कर दिया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इंस्टा वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था जिसके आधार पर मेटा वीडियो हटाता और फिर 23-24 तारीख की रात से 28 तारीख तक ये वीडियो दिखाई नहीं दिया। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, जिसके बाद सरकार ने मेटा को दो टूक बताया है कि अहम शख्सियत के आधिकारिक अकाउंट से किए गए पोस्ट को तकनीकी गलती का नाम लेकर न हटाया जाए।
9: मेटा realized that they had to apologize for this mistake and their unconditional apology for the mistake is a good step.
13: तो मेटा की सफाई के बावजूद सरकार की तरफ से ये मामला खत्म होता नहीं दिखता, क्योंकि चाहे मेटा, गूगल हो या फिर एक्स, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सवालों में है। नितिन गडकरी ने E20 से जुड़े मामले में अपने व्यक्तित्व के अधिकारों के उल्लंघन के लिए 11 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। बॉम्बे हाई कोर्ट में 86 पेज के अपने मुकदमे में अपमानजनक पोस्ट और एआई से बने डीप फेक को हटाने की मांग नितिन गडकरी की तरफ से की गई है। गडकरी की आपत्ति मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब पर एआई से बने फर्जी वीडियो पर है, जिसमें गडकरी और उनके परिवार को केंद्र सरकार के E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम और उससे जुड़े कथित भ्रष्टाचार से गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। तो एक तरफ मेटा की तरह एक्स, गूगल, यूट्यूब पर एआई से बने फर्जी वीडियो, अहम पदों पर बैठे लोगों की छवि को तार तार करने वाले वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं, लेकिन ये सभी अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों उन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित होती हैं। वहीं मेटा प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टा वीडियो को हटाए जाने की गलती को तकनीकी गलती के नाम पर बच निकलना चाहता है।
0: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान जेन जी का गुस्सा देश ने देखा, इसे लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया है। कहा है भारत में जो महिलाएं हैं उनकी एक नई पीढ़ी गटर जेनरेशन है। कंगना ने अपने इस बयान की वजह जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को दी गई गालियां बताया।
3: देश ने जो इनको मैंडेट नहीं दिया है तो ये इस तरह की राजनीति जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं।
13: अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाली, अक्सर विपक्ष पर फायर रहने वाली सांसद कंगना रनौत इस बार जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आई महिलाओं के एक वर्ग पर आग बबूला दिखती हैं, जो लिखती हैं कि भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी गटर जनरेशन, इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, ये अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। ये पहला मौका नहीं जब कंगना रनौत के बयान राजनीतिक या सामाजिक विवाद का कारण बन रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब उन प्रदर्शनकारियों के लिए विवादित बयान दिया जो महिलाएं। नीट पेपर लीक के खिलाफ होते छात्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन पर कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी सेक्शन में लिखा है कि सबसे शर्मनाक बात उन युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है जो स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहती। असल में

0: अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे, और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है।
1: तो कंगना का कहना है कि उन्होंने ऐसे ही छात्रों के वर्ग पर टिप्पणी की है जिन्होंने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे हैं।
2: बारिशों में पुल का बहना भारत में आम बात है, लेकिन अगर पुल 16 करोड़ रुपए में बना हो और 16 दिन बाद बंद हो जाए तो फिर बवाल तो मचेगा ही। उत्तराखंड के देहरादून में करोड़ों के एक पुल पहली बारिश नहीं झेल पाया, उसकी अप्रोच रोड पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि पुल पर आवाजाही बंद करनी पड़ी।
1: करोड़ रुपए में अगर कोई पुल बने और 16 दिन में उसका यह हाल हो जाए तो खबरदार करना पूरे देश को जरूरी हो जाता है। पहली ही बारिश में पुल के अप्रोच रोड में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि अब इसे क्या कहें। सवाल तो उठेंगे और गुणवत्ता को लेकर ही सवाल पूछा जाएगा। जनता पीडब्ल्यूडी को घेर के पूछेगी कि बताओ कैसे बनाया था ये 16 करोड़ का पुल और उसका अप्रोच रोड।
3: बस ये सरकार ने क्या भ्रष्टाचार कर रखा है कुछ समझ नहीं आता है। 16 करोड़ लगा के 16 करोड़ में से 16 लाख भी मुझे नहीं लगता कि इसमें लगे होंगे। और ये जो जैसी हालत पिछली बार थी वैसी हालत इस बार फिर हो चुकी है। क्या फायदा हुआ इस पुल को बनाने में? जनता को इतनी समस्या है, जनता बहुत परेशान है इससे।
4: मलबा डाला जा रहा है अभी,
3: मलबा डाला जा रहा है छुपाने के लिए, बस और क्या है इसमें, लिपापोती कर रहे हैं।
1: ये गड्ढा देश को याद दिलाता है कि राज्य और शहर कोई भी हो, प्रशासन की पसंदीदा कहावत मानो गलती पर पर्दा डालना हो गई। सो देहरादून यानी उत्तराखंड की राजधानी में भी इस गड्ढे वाली गलती पर मलबा डाला जा रहा है ताकि बात आई गई हो जाए। क्योंकि अगर इस गड्ढे में कोई गिर गया वो तो बचेगा नहीं, लेकिन सरकारी प्रशासन जानता है कि कैसे मलबा डालकर बचा जाता है।
5: और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 16 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल जो है या फिर नए पुल का अप्रोच जो है वो पूरी तरीके से धाराशाही हो गया है। और देखिए कितना बड़ा ये पिट होल यहाँ पर बना है जिसकी वजह से आम लोगों को यहाँ पर रोका गया है और पुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये क्षेत्र देहरादून के प्रेम नगर को विकास नगर और हिमाचल से जोड़ता है और टोंस नदी पे ये ब्रिज बना है। मेरे पीछे टोंस नदी पूरे बहाव में उफान पर देखी जा सकती है।
1: नंदा की चौकी के इस पुल के अप्रोच रोड में आया ये धसाव बनाने वाली की नीयत और इस्तेमाल किए गए माल पर गंभीर सवाल उठाता है।
6: दो दो विधायक की सीमा के अंतर्गत ऐसा साल में दो दो तीन तीन बार होना और अभी ही बना है 16 करोड़ में, मुझे नहीं लगता इसमें 5 लाख करोड़ भी लगा होगा।
4: क्या मांग करते हैं
6: इसको जो है कि जो कार्य है वो संतुष्टि पूर्ण कराया जाए ताकि आने वाले भविष्य में पब्लिक को या जनता को किसी प्रकार का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये तो मौत से खिलवाड़ हो रहा है। पैसा भी जनता का है और जनता ही परेशान हो रही है।
1: पिछले साल 15 सितंबर नंदा का पुराना पुल बाढ़ के दौरान रह गया था, इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक अस्थायी पुल बना जिसके 11 जुलाई को धस जाने के बाद इस नए पुल को खोल दिया गया। चूना उना डालकर प्रशासन ने नए नवेले पुल को जनता के नाम समर्पित किया, लेकिन पहली ही बारिश ने पुल के अप्रोच रोड में ऐसा गड्ढा किया कि सरकारी खजाने को चूना लगने की बात सामने आ चुकी है। अब सरकार कहती है कि जांच करवाएं।
7: पुल नहीं धसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहां से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो किसी भी प्रकार की हो जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं।
1: पिछले साल बारिश में भी पुल इसलिए बह गया क्योंकि वो पुराना हो चुका था, ये बात समझ में आती है, लेकिन 16 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अगर नया पुल मकसद पूरा ना कर पाए तो फिर जनता का आक्रोश जायज है।
8: ये पुल जो है बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और ये पुल ठीक से नहीं बनाए, इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की गई है। और क्या गनीमत रही
9: कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई? क्या गारंटी है कि 10 मिनट बाद यहाँ पर घटना नहीं हो सकती थी, कोई जान माल को खतरा हो सकता था? ये भ्रष्टाचार की जो है पुल एक बांधगी है, केवल आप देख सकते हैं इसकी सच्चाई आज जनता के सामने आ चुकी है।
1: बारिश से हुआ यह गड्ढा तो प्रशासन भर देगा, लेकिन जनता के मन में पीडब्ल्यूडी के कामकाज को लेकर असंतोष का गड्ढा कैसे भरा जाएगा? सवाल है कि अगर सरकार के 16 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी पीडब्ल्यूडी का बनाया पुल अगर जनता के किसी काम का नहीं तो फिर इसके जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?

0: पंडित शर्मा देहरादून आज तक।
1: इस मामले में ताजा खबर यह है कि मुख्यमंत्री की डेडलाइन के बाद स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी ने प्रेम नगर ब्रिज को दोबारा शुरू कर दिया है। पुल के अप्रोच में बड़े गड्ढे भर दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव ने 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। इस बीच एक और प्रदर्शन अब बड़ा होने लगा है। भोपाल में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की मांग है कि मूंग की फसल की एमएसपी पर 100% यानी उसकी पूरी खरीद हो। इसीलिए 19 किसान संगठन के बैनर तले हजारों किसान भोपाल पहुंच गए हैं। ये किसान मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगे, इन्हें रोका गया और फिलहाल ये किसान धरना देकर बैठे हुए हैं।
2: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान पहुंच गए, पुलिस ने रोका। दिन भर से थके हारे किसान भोपाल में जब पहुंचे तो जाहिर सी बात है रात को अब खाने की भी जरूरत है और खाने की तैयारी भी किसान अपने साथ करके आए हैं। और मध्य प्रदेश का मशहूर जो पकवान है दाल बाटी और दाल बाफले, वो भोपाल की सड़कों पर अब किसान इसी तरीके से बैठ के तैयार कर रहे हैं। उपले तैयार है गोबर के, उनके जरिए इन बाफलों को बाटियों को सेका जाएगा और इन कंडों में फिर बनने के बाद जो दाल बाफले हैं वो यही किसानों को परोसा जाएगा। तो ये तस्वीर भी भोपाल में देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है किसान है, अन्नदाता है और शाम का वक्त है, रात हो गई है, तो ये व्यवस्था भी उन तमाम प्रदर्शनकारी किसानों के लिए है। ये बताइए क्या क्या और तैयारी है रात भर अगर रुकना पड़े तो?
3: देखिए हम तो रात भर के हिसाब से 15 दिन के हिसाब से आए हैं और जो हमारी सरकार से मांगे हैं वो मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक हम इस होशंगाबाद रोड से हिलने वाले नहीं है।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
7: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
6: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
7: सुपर स्ट्रॉन्ग
6: और मॉइस्चर प्रूफ।
7: वारंटी
6: 15 साल की।
7: कदम
6: सर प्लीज
7: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
8: क्रॉसबॉन्ड HDMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
14: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
15: कुछ तो बात है इस तेल में।
16: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
17: वी आर ओवर जिमी।
18: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
19: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI/UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
20: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
21: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
20: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चले।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
8: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
9: कुछ तो बात है इस तेल में।
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
13: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
14: In association with
15: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera.
16: अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने, जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें। और बिंदु दूसरे अलग हैं, जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पर स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ।
17: लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो ACP भी, वो ACP का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने आंसू, उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनके उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पेट पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत। और इसलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं आज इस सदन में इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं।
4: कोई काम नहीं बचा है। जनता ने बार बार उनको जो रास्ता दिखाया है उनको लगता है बच्चों के भावनाओं के पे ऊपर राजनीति करके वो निकल जाएंगे। और यही काम उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जो धरना का काम किया वो क्या था, जब ऑलरेडी बात चल रही थी वो लोग धरना पे बैठे हुए थे एक पैरेलल खड़ा करके कि हम नहीं पीछे रह जाए, राजनीति चमकाना था, इसलिए ना जाकर के चुपचाप जाकर के बैठ गए खड़गे जी के घर से निकल करके बर्थडे के नाम पर।
18: बेबी बनाए थे उनका क्या हुआ, वो कमजोर थे क्या? पहले जो बनाया आपने वो कमजोर थे, जो पहले कानून बनाया वो कमजोर था, उसको इम्प्लीमेंट करानी अगला कानून बता दिया आपने। अरे उसको तो इम्प्लीमेंट कर लेते, उसमें तो चार चीट दाखिल नहीं करी, वो मुखिया को ही वो बरी होकर के चला गया। करना कुछ नहीं है, बातें करनी है, करिए, डिलीवर करने का टाइम है, ये आपकी बातों से नहीं पेट भरेगा लोगों का।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
20: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको उस परीक्षा हॉल के बारे में बताएंगे जहां पेपर लीक के मुद्दे पर देश की सियासत का सबसे कड़ा इम्तिहान चल रहा है। ये परीक्षा हॉल है देश की संसद, जहां अभी भी परीक्षा संशोधन बिल पर जोरदार बहस चल रही है। जब आप ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं तब भी देश की संसद में आज इस बिल पर चर्चा हो रही है और आज एग्जामिनर की भूमिका में है देश के युवा। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद के परीक्षा हॉल में सरकार पेपर लीक पर पास हो पाएगी। संसद में आरोप प्रत्यारोप के बीच आज हर पार्टी यह मानने पर मजबूर हुई कि युवाओं का आंदोलन ही था जिसने सरकार को संसद में यह विधेयक लाने पर विवश किया। आज आपको यह भी बताएंगे कि पेपर लीक के मामले में देश के तमाम राज्यों की जो सरकारें हैं वो भी कसूरवार है, तब उन्हें क्लीन चिट किसने दी, जबकि इन राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। क्या राज्य सरकारों की पेपर लीक पर कोई जवाबदेही नहीं और उस पर सवाल पूछ लेना गुनाह हो गया। इसके साथ ही आपको फेसबुक से जुड़े विवाद के बारे में बताएंगे जिसने सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे जेंजी युवाओं के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन 28 जुलाई की सुबह फेसबुक से ये वीडियो अचानक गायब हो गया और लिखा गया लीगल रिक्वेस्ट के कारण इसे रोका गया। बाद में मेटा ने सफाई दी कि ये कोई सरकारी आदेश नहीं बल्कि एक टेक्निकल ग्लिच था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो प्लेटफॉर्म्स देश के प्रधानमंत्री के वीडियो को गलती से हटा देते हैं ग्लिच की वजह से, वो फेक न्यूज, हेट स्पीच, डीप फेक, ऐसे अकाउंट्स पर लगाम क्यों नहीं लगा पाते। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम किसी राजनीतिक बयान, किसी आरोप या किसी बहस से नहीं करना चाहते। आज हम शुरुआत करना चाहते हैं एक ऐसी बेटी की कहानी से जिसे शायद हमारा देश भूल चुका है। इस छात्रा का नाम था विधि सूर्यवंशी। हो सकता है आज ये नाम आपको याद ना हो सकता है आपने इसके बारे में कभी सुना ही ना हो, लेकिन अगर आज देश शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कर रहा है, अगर संसद में परीक्षा प्रणाली को लेकर गंभीर बहस हो रही है, अगर लाखों युवा सड़कों पर उतरकर एक बेहतर सिस्टम की मांग कर रहे हैं, तो उस पूरी कहानी की एक दर्दनाक कड़ी विधि सूर्यवंशी भी है। हमें लगा कि आज का दिन इस छात्रा को याद करने का सबसे सही दिन है। विधि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार की बेटी थी और वो अपने पिता और भाई से अक्सर कहा करती थी कि एक दिन डॉक्टर बनकर उनका नाम वो रोशन करेंगी। उस सपने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। हर घंटे की पढ़ाई में उसे अपने परिवार का भविष्य दिखाई देता था, वो और मेहनत करती। इसके लिए साल 2020 में उसने नीट की परीक्षा दी। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना टूट गया। रिजल्ट में उसके सिर्फ 6 अंक दिखाए गए। जरा सोचिए, जिस छात्रा ने सालों तक डॉक्टर बनने का सपना देखा, जिसने मेहनत का पूरा, जिसको भरोसा हो, जिसने दिन रात एक कर दिया हो, खाना पीना सब भूल गई हो, उसके सामने अगर अचानक ऐसा परिणाम आ जाए तो उसके मन पर क्या गुजरी होगी। 6 मार्क्स। विधि उस सदमे को सह नहीं पाई, उसने आत्महत्या कर ली। एक पल में एक बेटी चली गई, एक परिवार बिखर गया, एक घर की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। परिवार को यकीन नहीं हुआ कि इतनी मेहनत करने वाली विधि सिर्फ 6 अंक कैसे ला सकती है। उसके भाई ने उसकी OMR शीट और परीक्षा में सवालों के उत्तरों का मिलान किया। इसके बाद जो सच सामने आया उसने पूरे मामले को बदल दिया। नीट की उस परीक्षा में विधि के 6 नहीं बल्कि 590 अंक आए थे। उस साल की कट ऑफ लगभग 468 अंक थी, उससे कहीं ज्यादा। यानी वो सिर्फ पास नहीं हुई थी बल्कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने की हकदार थी। सोचिए, जिस लड़की ने यह मान लिया कि उसका सपना खत्म हो गया, असल में उसका सपना पूरा हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही एक तकनीकी गलती, एक लापरवाही, व्यवस्था की खामी ने उसकी जिंदगी छीन ली।
आज हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि पुराने जख्म कुरेदे। हम इस कहानी को इसलिए सुना रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि आज जो आंदोलन दिखाई दे रहा है

पीछे सालों का दर्द इकट्ठा है। विधि अकेली नहीं थी, पिछले कई सालों में ना जाने कितने छात्र कभी पेपर लीक से, कभी रिजल्ट की गड़बड़ियों से, कभी सिस्टम की लापरवाही से, कभी सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम में गलत मार्किंग की वजह से, क्वेश्चन पेपर आंसर मार्क्स कुछ तालमेल ही नहीं, किसी का सपना टूट गया, किसी छात्र का एक साल चला गया। कुछ ऐसे भी थे जो अपनी पूरी मेहनत करते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो आइए आपको दिखाते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी हार बैठे थे ऐसे लोगों ने क्या सोचा। इसलिए अगर आज देश का जो जेन जी है, वो युवा शिक्षा व्यवस्था को बदलने की मांग कर रहा है, तो उसे केवल राजनीति कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। हकीकत में ये सब राजनीति के लिए नहीं हो रहा है, और ये सरकार और विपक्ष के बीच पैदा हुए सिर्फ राजनीतिक टकराव का विषय नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अचानक इस मुद्दे पर इतना शोर क्यों मच गया, उन्हें एक बार इन बच्चों की कहानियां जरूर पढ़नी चाहिए, उनके घरों में जाकर देखना चाहिए कि एक परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद, सालों की मेहनत भविष्य का नाम होती है। सोचिए कि 5-6 मार्क्स आना, बच्ची का सुसाइड करना और बाद में पता चलना कि उसके तो टॉपर वाले मार्क्स थे। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या करना समाधान नहीं है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को ये विश्वास होना चाहिए कि किसी भी परीक्षा से बड़ी उसकी जिंदगी है। लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि हम ये स्वीकार करें कि अगर हमारी व्यवस्था बार बार बार बार बच्चों को इस हद तक तोड़ रही है, तो उनका आत्मविश्वास, उनका भविष्य, कभी कभी उनकी जिंदगी छीन रही है, तो ये समस्या सिर्फ बच्चों में नहीं, समस्या इस व्यवस्था में है। और शायद किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि वो अपने बच्चों के सपनों की रक्षा करे। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब एक परीक्षा की गलती किसी भी छात्र की जान ले लेती है, तब वो सिर्फ एक प्रशासन

0: विधि के मामले में एनटीए ने आज तक कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है, लेकिन उसका और उसके जैसे दूसरे छात्रों का परिवार आज इस दर्द को अपने अंदर समेटे हैं और उसे उम्मीद है कि शायद इस आंदोलन से कुछ तो बदलाव आएगा। आज संसद में इसकी शुरुआत भी हुई और पेपर लीक के खिलाफ जो नया संशोधित बिल आया है उस पर सरकार की तरफ से चर्चा कराई गई। अगर संक्षेप में देखें तो इस चर्चा के कुल पांच बड़े बिंदु जो हैं, पांच पॉइंट्स आते हैं। पहला, संसद में शिक्षा व्यवस्था, एनटीए और परीक्षा प्रणाली पर केंद्र सरकार को व्यापक जवाबदेही का सामना करना पड़ा। दूसरा, सरकार ने नए संशोधन बिल को पेपर लीक के खिलाफ समाधान बताया, जबकि विपक्ष ने पूछा कि जब 2024 का कानून ही असरदार नहीं हुआ तो नया कानून क्या बदल देगा। इस चर्चा का एक बड़ा केंद्र यह भी रहा कि पेपर लीक के मामलों में सख्त कानून बनाने से क्या जरूरी ज्यादा यह है कि इन मामलों की अच्छे से जांच हो, दोषियों को सजा दिलाई जाए। इसी चर्चा में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने माना कि छात्रों के आंदोलन ने सरकार को परीक्षा सुधारों पर नया विधेयक लाने और व्यापक चर्चा के लिए मजबूर किया है। और इस मुद्दे पर संसद में हुई राजनीति और आरोप प्रत्यारोप के बीच लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत दिखी कम से कम कि पेपर लीक देश के युवाओं के भविष्य पर हमला है, परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार अब टाले नहीं जा सकते। तो सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है कि आज हमारे जेन जी युवाओं ने शिक्षा को इस वक्त का सबसे बड़ा राष्ट्र मुद्दा बनाया और संसद ही नहीं बल्कि हर घर में इसके बारे में बात हो रही है। आज लोकसभा में दोपहर 2 बजे से पेपर लीक संशोधन बिल पर तीखी बहस शुरू हुई, जिस पर सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी बातें रखी और हम चाहेंगे कि इन बातों पर आप भी इनको ध्यान से सुने। ऐसा हम इससे कह रहे हैं क्योंकि कई बार संसद में होने वाली चर्चा राजनीतिक खबरों तक सीमित रह जाती है, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो इस देश के युवाओं, उनके भविष्य से जुड़ा और यहां पर आपकी बात हो रही है। सबसे पहले देखिए कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ नए संशोधन बिल पर क्या कह रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि साल 1992 और 2010 में परीक्षा सुधारों के लिए कई सिफारिशें की गई थी, लेकिन तत्कालीन यूपीए और कांग्रेस सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। एनटीए का प्रस्ताव भी यूपीए के समय आया था जिस पर अमल नहीं हुआ। इन बातों को देखते हुए सरकार ने यह बताने की कोशिश की कि पेपर लीक को लेकर सरकार की नीति और नियत पूरी तरह ईमानदार है और भारत के बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा। अब सरकार के इन आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। उन्होंने संसद में जो आंकड़े रखे वो हैरान करने वाले थे। उन्होंने बताया कि 2024 के नीट पेपर लीक में 45 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें 44 को आज जमानत मिल चुकी है। यही नहीं, इस पेपर लीक में जो मास्टरमाइंड 11 महीने तक फरार रहा और 2025 में उसकी गिरफ्तारी हुई, वो भी बेल पर छूट चुका है। गौरव गोगोई ने संसद में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भी सवाल उठाए और ये कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद सदन में लौटे तो सरकार ने उन्हें ऐसा माला पहनाई जिसे वो पाकिस्तान से जंग जीत कर आए। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर एनडीए के डीजी को हटा दिया गया, माफ कीजिएगा, एनटीए के डीजी को हटा दिया गया तो चेयरमैन को क्यों नहीं बदला गया। सुनिए,
1: हम जानना चाहते हैं आपने एनटीए के डीजी को बदला और एनटीए के चेयरमैन को रखा, ऐसा क्यों? आपको एनटीए के डीजी पर विश्वास नहीं, आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, आपने ये भी मान लिया, तो आपको एनटीए के चेयरमैन पे इतना विश्वास क्यों, ये हम जानना चाहते हैं।
0: इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी आज कितनी बड़ी पार्टी बन गई है और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भगवान के दरबार का चढ़ावा और दान नहीं बचा सके वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। हालांकि इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई और अखिलेश यादव से ये पूछा कि अगर सरकार छात्रों के आंदोलन के बाद बिल लेकर आती है तो ये लोकतांत्रिक तरीका अच्छा है या आंदोलन कुचलने के लिए इमरजेंसी लगा देना अच्छा है। सुनिए,
2: आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको तो संकट से बचा लिया है। और अगर
3: अखिलेश जी तो समाजवादी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए।
2: अध्यक्ष महोदय मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया।
0: बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी ने भी पेपर लीक पर सरकार को 3 सुझाव दिए हैं। पहला, फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमों के निपटारे की कड़ी निगरानी हो। दूसरा, जांच प्रक्रिया को तेज करने के लिए फोरेंसिक विभागों में खाली पड़े पदों को तुरंत भरा जाए। और तीसरा, शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह नॉन प्रॉफिट बनाना जरूरी है।
4: The bill which they are bringing today, you are not addressing the core issue.
5: Yes.
4: The core issue is NEET. NEET is not necessary. NEET is not uniformity. NEET is against the students, the first time students who are coming from the first generation students who want to become doctors.
6: Even now, if you look at it across the states, if you look at it in various states, 40% of the forensic positions are still lying vacant, sir. We make this education as a not-profit, keep it not-profit, and eligible for every student across the country, sir. I request the government to look at it very seriously, sir.
0: आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, पहले गन के इस्तेमाल, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर कई सवाल उठाए। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले प्रहलाद जोशी पर बड़ा हमला कर दिया। सुनिए,
7: पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा, उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। इस नई कमेटी में तो एक XIB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर सच है, आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
0: इसी के बाद बहुत सारे आरोप प्रियंका वाड्रा गांधी ने लगाए। ये आरोप लगा रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सरकार ने एक ऐसे नेता को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जो एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर सहमति व्यक्त कर रहे थे। यहां प्रियंका गांधी वाड्रा उसी मामले का जिक्र कर रही थी जिसमें शिक्षा मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के मामले में 11 दोषियों के समय से पहले रिहा होने के फैसले का बचाव किया था। और ये मामला जब संसद में उठा तो इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया। लेकिन बाद में संसद से बाहर आकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी बात को फिर से दोहराया। क्या कहा सुनिए।
8: द बीजेपी पुट्स अ मैन हु इज अ डिफेंडर ऑफ रेपिस्ट्स, दैट्स द मोस्ट फिल्थी टाइप ऑफ मैन। देयर कैन बी नो फिल्थियर मैन देन समबडी हु सेज दैट रेपिस्ट्स नीड प्रोटेक्शन। That is the education minister of India. It's strange. It's a strange reaction from the prime minister. That there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects rapists.
5: क्वाइट अमेज्ड है
9: मैम. ऑथेंटिकेट करना है या अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट. मैंने
10: वीडियो
9: है वीडियो भी है उस समय का. आप समझ भी नहीं.
0: इस पूरी राजनीति को देखकर आज सिर्फ एक बात याद आती है. अब तक इस देश में बच्चों की परीक्षा ली जाती थी लेकिन आज वही बच्चे इस देश की राजनीति की परीक्षा ले रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बच्चों के सामने प्रश्न पत्र रखा जाता था और आज बच्चों ने नेताओं के सामने सवालों की एक कॉपी खोल दी है. ये बदलाव बहुत बड़ा है क्योंकि पहली बार देश का युवा सिर्फ अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहा बल्कि पूरे सिस्टम को पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग कर रहा है. वो ये नहीं कह रहा कि मुझे किसी तरह नौकरी दे दीजिए. वो कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें मेहनत करने वाले हर छात्र को न्याय मिले. सबसे अच्छी बात यह है कि यह सवाल किसी एक पार्टी से नहीं पूछा जा रहा. जहां जिस पार्टी की सरकार है वहां उसी से जवाब मांगा जा रहा है. कहीं पेपर लीक पर सवाल है, कहीं भर्ती में देरी पर सवाल है, कहीं परीक्षा व्यवस्था पर सवाल है, कहीं शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल है. यानी अब युवा राजनीतिक झंडे लेकर नहीं अपने भविष्य को लेकर खड़ा है और यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे अच्छी तस्वीर होती है. लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने का नाम नहीं है. लोकतंत्र का असली मतलब है जनता नेताओं से सवाल पूछ सके. और अगर इस देश के युवा शिक्षा रोजगार अपने भविष्य पर सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा लोकतंत्र और परिपक्व हो रहा है. आप खुद सोचिए किसने सोचा था कि इस देश की संसद में राजनीतिक मुद्दों से इतर शिक्षा के मुद्दे पर गंभीर चर्चा के लिए ये नेता मानेंगे. और हमें लगता है कि यही भारत के लोकतंत्र की एक नई परीक्षा है. इस परीक्षा में पास वही होगा जो युवाओं का भरोसा जीत पाएगा. यानी इस बार रिपोर्ट कार्ड बच्चे लिख रहे हैं. ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो लोग पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के इस मुद्दे को सिर्फ मोदी सरकार की घेराबंदी का मुद्दा बना रहे हैं वो गलती कर रहे हैं. अगर आपको यकीन ना हो तो इस जरा इन घटनाओं पर एक बार नजर डालकर देखिए. महाराष्ट्र में 28 जून को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा होने वाली थी लेकिन उससे पहले खुलासा हुआ कि इस परीक्षा के का पेपर लीक हो चुका है और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है. पंजाब में भी फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल रैकेट पकड़ा गया. पेन कैमरा वायरलेस ईयरपीस मॉडिफाइड मोबाइल फोन्स जैसे उपकरणों के जरिए परीक्षा में धांधली कराने की कोशिश की गई. 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी को जो मौजूदा सेमेस्टर है उसकी 2 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी. क्यों? क्योंकि आरोप यह लगा कि इन परीक्षाओं का पेपर पहले ही लीक हो गया था और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है. कर्नाटक में भी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे जिसके कारण परीक्षा के पास हुए उम्मीदवारों की सूची रोकनी पड़ गई. पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है. कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है. झारखंड में तो कमाल ही हो गया है. झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती घोटाले की जांच लगातार तेज हो रही है. सीआईडी ने पूर्व अध्यक्ष तक को पूछताछ के लिए बुलाया है और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच जारी है. इससे पहले भी हमने आपको बताया था झारखंड में एग्जाम में सोचिए बच्चों का एग्जाम देने के 1-2 घंटे पहले उनको मेल आ रहा था कि उनका सेंटर कहां पर है और वो सेंटर जहां पर वो मौजूद थे वहां से 1-2-3-3 घंटे की दूरी पर. इसीलिए हम कह रहे हैं समस्या किसी एक राज्य की नहीं है, समस्या किसी एक सरकार की नहीं है, समस्या उस व्यवस्था की है जिस पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है. और जो लोग राजनीति में उसको उलझाकर कहते हैं कि यहां की बात मत करो, वहां की बात मत करो, वहीं की बात करो, वो सिर्फ भटकाना चाहते हैं. इन राज्यों में सरकार अलग अलग है लेकिन सवाल एक ही है कि क्या पेपर लीक को राजनीतिक पार्टियां सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ एक मुद्दा मानेंगी या वो अपने राज्यों में भी पेपर लीक के खिलाफ कदम उठाएंगी और इसमें बीजेपी के राज्य भी शामिल हैं. कई लोगों ने इन राज्यों में भी पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली को लेकर शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे का मुद्दा उठाया. लेकिन क्या आप जानते हैं इन राज्यों में शिक्षा मंत्री कौन है और कितने राज्यों के शिक्षा मंत्री दागी है? तो हमने सोचा कि इन माननीयों के बारे में जरा सा आपको बताया जाए. वो माननीय जो शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं. सबसे पहले बात झारखंड की करते हैं. झारखंड को साल 2001 में एक अलग राज्य बनाया गया था और तभी से वहां पेपर लीक के मामले हर साल आते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को पिछले 21 सालों में अलग अलग भर्तियों के लिए 21 परीक्षाएं करानी थी, जिनमें वो 13 परीक्षाएं ही करा सका और इनमें भी सभी परीक्षाएं अलग अलग विवादों और गड़बड़ियों से घिरी है। इनमें भी एक परीक्षा तो ऐसी है जिसके लिए साल 2015 में भर्ती निकाली गई थी, लेकिन आज तक ये परीक्षा नहीं हो पाई है। साल 2024 में जब ये परीक्षा हुई तब शाम को ही ये खबर आ गई कि इसका पेपर लीक हो चुका है, जबकि दूसरी बार जब ये परीक्षा कराई गई और इसके लिए सरकार ने इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया तब भी पेपर लीक हो गया और आज ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है। ये स्थिति भी तब है जब हेमंत सोरेन 2019 से लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के शिक्षा मंत्री भी वही हैं। इससे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या हेमंत सोरेन के शिक्षा मंत्री रहते जो पेपर लीक हुए उनके लिए उनका इस्तीफा मांगा जाएगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि झारखंड में पेपर लीक की कहानियां हजारों युवाओं का दिल तोड़ने वाली कहानियां हैं, जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा लीक हुई उसमें सीआईडी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें अभय तिवारी नाम का आरोपी भी शामिल है। अब आप जानते हैं ये अभय तिवारी कौन है। इसने झारखंड लोक सेवा आयोग में 5 बार सरकारी नौकरी की परीक्षा पास की है। उसका भाई, उसकी पत्नी भी झारखंड सरकार में नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा ये आरोपी पहले उस कंपनी में प्रबंधक का काम संभालता था जिसे झारखंड में परीक्षा कराने का ठेका मिला हुआ था और इस कंपनी ने जो परीक्षाएं कराई वही बाद में लीक हुई। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर अब ये दिखाना चाहती हूं कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था पर इतनी बहस तो हो रही है लेकिन कई राज्यों के शिक्षा मंत्री ऐसे हैं जो दागी हैं और उन जिनके खिलाफ सोचिए आपराधिक मामले दर्ज है। तो हमने सोचा कि हर जगह का देखिए, कांग्रेस की भी सरकार है, बीजेपी की भी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी सरकार है, टीडीपी की भी सरकार है, लेकिन आप देखिए कि कितने कितने मामले हैं। तो सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, तो वो है ये देखिए तेलंगाना। शिक्षा मंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी, इन पर कितने मामले चल रहे हैं जरा ये वाले कलर से दिखाते हैं तो साफ दिखेगा, 89, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आइए तो आपराधिक मामले डीके शिव कुमार के खिलाफ हैं 19 और वो फिलहाल डीके शिव कुमार है शिक्षा मंत्री। अब आ जाइए आप 17 के साथ टीडीपी की सरकार सहयोगी है बीजेपी की, 17 मामले हैं नारा लोकेश पर, वो शिक्षा मंत्री है। फिर आइए राजस्थान, शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, 14 आपराधिक मामले, 14। उसके बाद आ जाइए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यहीं पर है शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन, 5 आपराधिक मामले उन पर है। फिर आ जाइए उत्तर प्रदेश जहां पर योगेंद्र उपाध्याय है उच्च शिक्षा मंत्री, ये आपको योगेंद्र उपाध्याय का चेहरा देखिए, 4 आपराधिक मामले हैं इनके खिलाफ। उसके बाद से आ जाइए आपराधिक मामले 3 वाले केरलम में एन शमशुद्दीन है शिक्षा मंत्री और 1 आपराधिक मामले वाले बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में उदय प्रताप सिंह ये हैं। तो ये सारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनके चेहरे आप देख लीजिए और इसी के साथ साथ उनके बगल में बने जो आपराधिक मामले हैं वो देख लीजिए और फिर आप ये तय कीजिए कि क्या ऐसे बेदाग नहीं मिलते जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला ना हो और वो इस देश के शिक्षा मंत्री बन सके। आज बड़ा सवाल यही है और इसीलिए सबसे बड़ी समस्या भी यही दिखाई दे रही है। अब सोचिए, आज हम शिक्षा व्यवस्था को दागी होने से बचाने की बात कर रहे हैं और इसी दौरान कई राज्यों में शिक्षा मंत्री बने नेता खुद दागी हैं, ये कैसे चल सकता है?
5: आप लोगों ने इससे पहले की कई परीक्षाओं को आप लोगों ने देखा है कितनी सफलतापूर्वक परीक्षाएं हुई। आप पिछले जो हमारे विपक्ष के लोगों के कार्यकाल को देखें उसमें उन लोगों ने कितने एग्जाम्स कराए और हम लोगों ने इतने दिनों में कितने एग्जाम्स कराए, कितने सफलतापूर्वक कराए। चूंकि ये सिस्टम में बहुत बड़ा ये है, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहां एक एक समय पर ही पकड़ में आते हैं, छुपे छुपे लोग हैं, बरसों से जगह जगह पर बैठ करके गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं।
10: पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है पंजाब में पेपर लीक।
11: लेकिन सर बच्चों ने प्रदर्शन किया पंजाब में, उसका कोई असर नहीं, नहीं। बच्चे भी कहीं दिखा है कहीं लगा हुआ है, पंजाब में बच्चों ने भी वो किया है, प्रोटेस्ट किया है बकायदा, वहाँ भी एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे वहाँ पर जवाब दे।
10: पंजाब आज पहली बात तो जो है एजुकेशन मिनिस्टर का वो डिपार्टमेंट नहीं है, वो तो फार्मेसी है, वो तो मेडिकल, वो हेल्थ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है।
11: तो क्या हेल्थ मिनिस्टर क्या करेंगे सर?
10: नहीं नहीं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ही ये क्लियर किया, देयर वॉज नो चीट नो पेपर लीकिंग, ओनली चीटिंग चल रही थी जो कि रोक दी गई, वही एग्जाम हुआ है सक्सेसफुली।
12: आम्ही तर टीईटीच्या परीक्षेमध्ये घोटाळा होतो लक्षात आल्याबरोबर परीक्षा व्हायच्या आधी घोटाळेबाजांना पकडलं आणि त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई देखील केली, त्यामुळे आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं पायचं वाकून हे बंद करा।
0: हमारे देश में जब भी पेपर लीक की बात होती है, जब भी शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर सवाल उठते हैं, तब एक सवाल बार बार पूछा जाता है, वो सवाल ये होता है कि आखिर हर किसी को सरकारी नौकरी की चर्चा क्यों हो। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि ये सवाल असली मुद्दे से ध्यान भटकाता है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि युवाओं को सरकारी नौकरी क्यों चाहिए और चाहिए, असली सवाल ये है कि देश में ऐसी कितनी नौकरियां हैं जहां एक युवा सम्मान के साथ अपना भविष्य बना सके। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था आज के भारत के लिए बच्चों को तैयार कर रही है, या वो बीते हुए भारत के लिए इन बच्चों को तैयार कर रही है। एक समय था जब सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती थी बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद होती थी। गांव का किसान, रिक्शा चलाने वाला पिता, दिहाड़ी मजदूर, छोटी दुकान चलाने वाला परिवार, सब अपने बच्चों से कहते थे कि बेटा पढ़ लिख लो, सरकारी नौकरी मिल गई तो जिंदगी बन जाएगी। उस समय ये सोच अलग थी क्योंकि तब देश में निजी उद्योग कम थे, बड़ी कंपनियां नहीं थी, टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार नहीं था, हाई स्किल नौकरियों का बाजार नहीं था, इसलिए उस दौर में पढ़ाई का सबसे बड़ा मकसद सरकारी नौकरी बन गया। इसी सोच ने कोचिंग इंडस्ट्री को जन्म दिया, लाखों परिवार ने अपनी बचत बच्चों की पढ़ाई पर लगाई और फिर एक पूरा जैसे दुनिया बदल गई। नई टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डिजाइन, एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन एनर्जी, ना जाने कितने नए क्षेत्र पैदा हुए, दुनिया बदली। लेकिन सोचिए क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बदली? और यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे स्कूल्स का सिलेबस बहुत धीरे धीरे बदला, कॉलेजेस में आज भी लाखों छात्र ऐसी डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं जिनकी बाजार में बहुत कम मांग है। और सोचिए जब ये हालात बनते हैं तो इसी देश के छात्रों से पूछा जाता है कि वो सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। जब आप छात्रों को आजकल की नौकरियों के हिसाब से शिक्षा नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? हमारे देश में सरकारी नौकरियां कुल रोजगार का सिर्फ लगभग 4-5% है, मतलब 95% रोजगार और नौकरियां सरकारी नहीं है। लेकिन क्या फिर भी किसी ने सोचा कि लाखों युवा उन्हीं 4-5% नौकरियों के पीछे आखिर क्यों भागते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं है कि बाकी व्यवस्था उन्हें एक स्थिर, एक सम्मानजनक, एक सुरक्षित रोजगार दे पाएगी। और जब उन्हीं कुछ सरकारी नौकरियों की परीक्षा का पेपर भी लीक हो जाए तो जरा सोचिए उस युवा पर क्या बीतती होगी जिसने 2-2 साल तक कमरे में बंद होकर सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी की। यही गुस्सा आज सड़कों पर दिखाई दिया, और यह गुस्सा सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, यह गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ है जो युवाओं से मेहनत तो मांगती है लेकिन उन्हें भरोसा नहीं दे पाती। हम अक्सर सुनते हैं कि देश में धर्म खतरे में है, संस्कृति खतरे में है, पहचान खतरे में है, लेकिन आज अगर कोई चीज सचमुच खतरे में है तो वो है भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये शब्द थोड़ा कठिन लगता है लेकिन इसी में आज के आंदोलन की पूरी सच्चाई छिपी है। जब किसी देश में काम करने की उम्र वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं तब वो देश सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। यानी अगर युवाओं को सही शिक्षा मिले, सही स्किल मिले, सही नौकरी मिले तो वही युवा पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल सकते हैं, और आज भारत इस दौर पे है। केंद्र सरकार कहती है कि देश की लगभग 69% आबादी है वो 15-64 साल की उम्र के बीच है, यानी ये वो पीढ़ी है जो काम कर सकती है, उत्पादन कर सकती है, देश को आगे ले जा सकती है। अगर हम इन लोगों को नौकरियां दें या उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करें तो शायद भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, और कई देशों ने ऐसा किया है। इसका फायदा जापान ने उठाया, दक्षिण कोरिया ने उठाया, चाइना ने उठाया, थाईलैंड, स्पेन, इटली ने उठाया। इन देशों ने अपने युवाओं को नौकरी दी, उद्योग लगाए, स्किल सिखाई, आर्थिक ताकत बन गए। अब वही मौका भारत के सामने है, लेकिन सवाल यही है कि क्या हम अपने युवाओं को वही मौका दे पा रहे हैं? आंकड़े कहते हैं कि अभी नहीं दे रहे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार अप्रैल 2025 में 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर 13.8% थी, लेकिन जून 2026 तक ये बढ़कर 16.2% हो गई है। यानी हर 100 युवाओं में लगभग 16 ऐसे हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ किसी एक राज्य की कहानी नहीं है, पूरे देश का चैलेंज है। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, ये संकट लगभग हर राज्य में दिखाई देता है और आप उसके लिए ये ग्राफिक्स को देख सकते हैं। लगभग हर पार्टी की सरकारों में उस वक्त जेंजी युवाओं में बेरोजगारी दर बढ़ रही है और कोई सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। यह भी तब हो रहा है जब इसी देश में नौकरी ढूंढने वाले कम होते जा रहे हैं। आमतौर पर बेरोजगारी तब बढ़ती है जब ज्यादा लोग नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है। भारत में नौकरी खोजने वालों की संख्या घट रही है लेकिन फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है। यानी बहुत से युवाओं ने उम्मीद ही छोड़ दी है, शायद ये सबसे बड़ा खतरा। और हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप देखिएगा बेरोजगारी दर, तो वापस से एक बार ग्राफिक्स दिखा दीजिए। केरल 18.2% आप देख रहे हैं, वहां पर अब कांग्रेस की सरकार है, हालांकि अभी बनी है। तेलंगाना 18.1 कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 17%, 16.2% टीडीपी की सरकार गठबंधन में बीजेपी के साथ आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में टीवीके की सरकार है, दो राज्य राजस्थान और बिहार जहां पर 12% के साथ बीजेपी की सरकार है। ऐसे ही कांग्रेस की सरकार वाला कर्नाटक 8.6%, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश लगभग 8% है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार। हम हमेशा कहते रहे कि अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन आज पढ़ाई और नौकरी के बीच का रिश्ता भी कमजोर पड़ता जा रहा है। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि 2023 में लगभग 1,10,00,000 ग्रेजुएट युवा बेरोजगार थे। यानी समस्या अब सिर्फ अशिक्षित या कम पढ़े लिखे लोगों की नहीं है, डिग्री वाले युवा नौकरी के लिए जब भटकते हैं तो बड़ी दिक्कत है। क्या शिक्षा और नौकरी के बीच का जो कनेक्शन है वो कहीं कटा हुआ है? 1983 से 2023 के बीच देश में ग्रेजुएट युवाओं की संख्या लगभग 13 गुना बढ़ी, लेकिन इसी दौरान ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या वो 16 गुना बढ़ी। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड है। आज भारत की औसत उम्र लगभग 29 साल है, 2030 तक करोड़ों नए युवा नौकरी के बाजार में आएंगे। अगर हम अब भी उन्हें वही पुरानी शिक्षा देंगे, वही पुरानी सोच देंगे, नई अर्थव्यवस्था के हिसाब से उन्हें तैयार ही नहीं करेंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ उन युवाओं का नहीं होगा, सबसे बड़ा नुकसान भारत का होगा।

सरकार पर सामाजिक बोझ बढ़ेगा, युवाओं में निराशा बढ़ेगी। ये हमारी सबसे बड़ी खोई हुई संभावना बन सकता है। इसीलिए पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ भर्ती का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ सरकार और विपक्ष की राजनीति भी नहीं है, ये भारत के भविष्य का सवाल है। क्योंकि अगर एक देश अपने युवाओं को अच्छी शिक्षा, सही कौशल, ईमानदार अवसर नहीं दे पाता तो वो सिर्फ नौकरियां नहीं खोता, वो अपनी अगली पीढ़ी का भरोसा खोता है। और किसी भी देश के लिए इससे बड़ा संकट कोई नहीं हो सकता।

0: और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष राजनीति कर रहा है ऐसा सरकार की तरफ से कह रहे हैं किरण रिजिजू। देर रात संसद चलाने का क्या फायदा, किरण रिजिजू कह रहे हैं विपक्ष ने मौका गवा दिया है। उनका ये कहना है कि कानून पर कोई भी सुझाव विपक्ष की तरफ से नहीं आ रहा है, वो इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ सरकार पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। आइए आपको सुना देते हैं क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू।
1: पार्लियामेंट शुरू किया और देर रात तक चल रही है, मुझे अच्छा लगा कि अभी हम लोग देर रात तक एक साथ बैठ करके पार्लियामेंट में हमारे छात्रों का, स्टूडेंट्स का भविष्य को लेकर के एग्जामिनेशन का पेपर लीकेज जैसे बहुत गलत चीज लोग कहीं कहीं करते हैं अलग अलग राज्यों में, उसको रोकने के लिए बड़ा कानून लेके आया है। मुझे अच्छा लगा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं और देर रात तक कर रहे हैं, लेकिन दुखी इस बात का है कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर के जितने भी स्पीच आप कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के सारे स्पीच सुन लीजिए, किसी ने भी इतना महत्वपूर्ण जो बिल पे चर्चा हो रही है बिल पे किसी ने नहीं बोला, वो सिर्फ राजनीति ही कर रहे थे, सारे के सारे लोग राजनीति कर रहे थे, ये तो ठीक नहीं है। जब बिल पे चर्चा होते हैं तो बिल के प्रावधान का मेरिट्स पे बोलो ना, जो एग्जामिनेशंस रोकने के लिए जो जो प्रक्रिया जो जो कठोर कानून लेके आया है उस पे बहस करते तो लाभ होता। मैंने ध्यान से सुना है बीजेपी और एनडीए के जितने भी एमपीस हैं उन्होंने बिल पे बोले, लेकिन कांग्रेस और ऑपोजिशन के लोग किसी ने भी बिल पे नहीं बोले, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
2: सर प्रियंका, संविधान के अनुसार और रूल के अनुसार ही पार्लियामेंट में बोला जा सकता है, और एक गरिमा होती है किसी भी राजनीतिक दल के जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनकी एक गरिमा होती है, वो गरिमा को कभी नीचे नहीं गिराते। सदन के

फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर दिन करोड़ों पोस्ट, वीडियोस, तस्वीरें अपलोड होती हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कंटेंट को संभालने के लिए कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिस्टम, मशीन लर्निंग मॉडल, ऑटोमेटेड फिल्टर, कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती हैं। ये सिस्टम कुछ शब्दों, तस्वीरों, विषयों, संदर्भों के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि कोई कंटेंट नियमों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए यौन उत्पीड़न को लेकर ऐसी या आत्महत्या कोई संवेदनशील जानकारी हो जो लोगों को विचलित कर सकती है, इस पर कोई वीडियो या पोस्ट है तो इसे कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम हाइड कर देता है या उसे हटा देता है। अब यह होता सिर्फ संवेदनशील मामलों में है, लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं और इसी वजह से अब इस मामले में फेसबुक और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यानी सवाल यह है कि क्या फेसबुक ने नीट के मुद्दे पर कोई ऐसा कीवर्ड या कंटेंट हाईलाइट किया जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो पोस्ट हट गया। और सोचिए अगर जंतर मंतर आंदोलन और पेपर लीक को लेकर वाकई में ऐसा कोई कीवर्ड हाईलाइट हुआ होगा तो फिर इस मुद्दे पर और कितने लोगों के पोस्ट हटाए गए होंगे। इन्हीं बातों को देखते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। और यहां आपको यह भी सोचना होगा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो पोस्ट तो हटा देता है, लेकिन जिन डीप फेक अकाउंट से जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन को लेकर फेक न्यूज फैलाई गई, उन अकाउंट्स को ये कंपनियां नहीं हटाती या उन पोस्ट को नहीं हटाती। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसने खुद ऐसे 450 अकाउंट्स की पहचान की जो आंदोलन को लेकर झूठी खबरें फैला रहे थे और वो भी एआई के जरिए, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस को इन कंपनीज के पास जाकर ये बताना पड़ा कि इनके प्लेटफॉर्म कैसे फेक न्यूज का माध्यम बन गए हैं। यहां ये भी समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का फेसबुक अकाउंट कोई अगर आप देखिए तो एक राष्ट्राध्यक्ष का अकाउंट है, प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट है और उसमें टेक्निकल ग्लिच की बात की जा रही है। दुनिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और उनका अकाउंट सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। लेकिन यहां अगर जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीट पेपर लीक को एक वीडियो पोस्ट करते हैं तो पोस्ट हट जाता है और कंपनीज की मंशा पर सवाल उठते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री को फॉलो करने वाले लगभग 6.1 करोड़ लोग फेसबुक पर, वहीं इंस्टाग्राम पर 10.5 करोड़ लोग। और यही वजह है कि सरकार ने इस मुद्दे पर मेटा के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी हेड को तलब किया। जानते हैं महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अब तक दुनिया में जितने भी पोस्ट को हटाया गया है, उनका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, उन सभी मामलों में कोई ना कोई विवाद था। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का एक्स अकाउंट निलंबित हुआ तो उसका कारण अमेरिकी संसद में हुई हिंसा थी। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया। 28 मार्च 2021 को जब वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का फेसबुक अकाउंट निलंबित हुआ तब भी उन पर झूठी खबर फैलाने का आरोप था। और 2021 में जब ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो का फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट बंद किया गया तब उन पर भी आरोप था कि उन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर गलत दावे किए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का पहला ऐसा मामला है जिसमें आंदोलनकारी जेन ज़ी युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक पर एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को

0: संपत्ति का असली हकदार कौन बनेगा। हाल ही में अमेरिका के न्याय विभाग की सीक्रेट फाइल से यह ऐसा नाम सामने आया है जिसे सबको हैरान कर दिया। यह नाम है बेलारूस की एक गुमनाम डेंटिस्ट का। साल 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में आत्महत्या करने के बाद एपस्टीन अपने पीछे लगभग 600 मिलियन डॉलर की संपत्ति छोड़ गया। खबर है कि जेल में जान देने से सिर्फ 2 दिन पहले एपस्टीन ने अपनी वसीयत और ट्रस्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उसने अपनी सारी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा जो है अपनी 37 साल की गर्लफ्रेंड डॉक्टर कारीना शुल्याक के नाम कर दिया। दावा किया जा रहा है कि वसीयत में कारीना को करीब 950 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम, पेरिस और न्यूयॉर्क के आलिशान घर, करीबियन आइलैंड और 33 कैरेट की एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी मिलने का जिक्र है। दावा किया जा रहा है कि मौत से पहले एपस्टीन ने जेल से आखिरी कॉल भी कारीना को ही किया था। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट पे हम रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।
1: When your cat is acting weirder, or your dog is being louder, your turtle moves slower.
2: Hello, Ted.
1: Your cat seems thirstier.
3: Whoa, slow down, buddy.
1: Or your puppy is acting clumsier. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
2: Veg ER for Pets, this is Kate.
1: Veg, the better, kinder ER for Pets.
4: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover,
5: we all just be big rock stars
4: interested in what's going on around the world,
6: I have no idea how this election is going to play out,
4: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
3: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: जिमी, hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Expectation से better placement मिली है तुझे? अब सब set है ना?
2: सब set है. बस अब चाहिए एक salary account जो match करे मेरी lifestyle से.
3: तो सोचना क्या है? मेरा अपना bank है ना?
1: मतलब
3: पंजाब नेशनल बैंक जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर OTT सब्सक्रिप्शन लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे.
1: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ.
3: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है. PNB मेरा अपना बैंक.
4: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर.
5: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे. कैसे कदम?
6: क्रॉसबॉन्ड
5: सुपर स्ट्रॉन्ग
6: और मॉइस्चर प्रूफ.
7: वारंटी
6: 15 साल की.
5: कदम
6: सर प्लीज
5: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ. वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे.
8: क्रॉसबॉन्ड HMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

कहीं सड़कें बह गई हैं, कहीं पुल धस गया है, कहीं नदियों में जबरदस्त उफान है। और हालात ऐसे हैं कि वहां भगवान की मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है। ये उत्तराखंड का हाल है, वहां से आ रही तस्वीरें हालात की गवाही दे रही हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चमोली की तस्वीर। वहां देर रात हुई बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम के करीब कंचन गंगा के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। पहाड़ों से पानी के साथ साथ बड़े पत्थर और मलबे का ढेर सड़क पर आ गया। हालात ऐसे हो गए कि गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। सड़क को दोबारा खोलने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं। युद्ध स्तर पर काम जारी है। बीआरओ की मशीनें मौके पर मलबा हटाने में जुटी हैं। उधर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी के जलस्तर में जबरदस्त तूफान है। हालात ऐसे हैं कि अलकनंदा नदी का पानी प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव गुफा तक पहुंच गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुफा नदी से करीब 30 मीटर दूर है। नदी का पानी गुफा के भीतर पहुंच चुका है। इस वजह से गुफा में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे भक्तों को गंगा जल भरने और गुफा तक पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी हाहाकार है। वहां बीती रात हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज बारिश के कारण जिले के कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। इसका असर जनजीवन पर पड़ा। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, हालांकि कई घरों, दुकानों और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। उदयपुर, घोलटी, नवोदय मार्ग और भरियाड़ क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। इन इलाकों में भारी भूस्खलन के कारण 12 से अधिक गाड़ियां दब गई हैं मलबे में। लगातार हो रही बारिश के चलते भरमौर, पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तडोली नाला भी उफान पर आ गया। तेज बहाव अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मिट्टी का मलबा बहा कर लाया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। चंबा में ही एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहड़ के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। चंबा से विशाल आनंद, चमोली से कमल लयन सिलोड़ी के साथ प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए. और मिलावट के इस दौर में सिर्फ धोखा ही है जो 100% शुद्ध मिल रहा है. नमस्कार.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का. हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी. प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

0: परीक्षा बिल पर बहस के दौरान सदन में गर्मा गर्म बहस, संसदीय कार्य मंत्री का बयान, राजनीति के चक्कर में विपक्ष ने बिल पर नहीं की बात, कल भी जारी रहेगी चर्चा। शिक्षा मंत्री पर प्रियंका के बयान से बवाल, बीजेपी ने उठाए सवाल, सदन की कार्यवाही से सस्पेंड किया गया बयान, कल दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे राहुल। कांग्रेस के आरोप पर बिफरी बीजेपी, विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं करते सवाल, मोदी सरकार चल रही है रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक पर लगेगी पक्की लगाम। भोपाल में किसानों का प्रदर्शन, सीएम के घर की ओर जाने से पुलिस ने रोका, ई टोकन बंद करने, मूंग की 100% सरकारी खरीद को लेकर उठाई आवाज। उत्पाद से कैंसर फैलाने वाले मुकदमों को रोकने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का प्रस्ताव, अमेरिकी कोर्ट को दिया 52,000 करोड़ का ऑफर, समझौते के लिए 95% दावेदारों की स्वीकृति जरूरी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक कि कैसे जंतर मंतर का आंदोलन खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों पर एक्शन होता है, एफआईआर से लेकर गिरफ्तारियां होती हैं, जेल में डाला जाता है। बिहार में प्रदर्शनकारियों पर AK-47 चलाने से लेकर दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर विवाद खड़ा होता है। लेकिन कैसे अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन पर पुलिस से लेकर सरकार यू टर्न मार रही है, आज हम आपको उसका एक एक पहलू दिखाने जा रहे हैं। कैसे सरकार कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के बीच घिरी हुई नजर आ रही है, CJP सरकार को आंदोलन खत्म करने की शर्तें याद दिला रही है, तो विपक्ष प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर सरकार को घेर रहा है और सरकार को यू टर्न लेना पड़ रहा है। आइए दिखाएं आया मौसम यू टर्न का।
1: में प्रदर्शनकारियों से केस वापस, सरकार का यू टर्न। महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों से केस वापस, सरकार का यू टर्न। असम में प्रदर्शनकारियों से केस वापस, सरकार का यू टर्न। प्रदर्शनकारियों पर AK-47 का इस्तेमाल, बिहार पुलिस का यू टर्न। प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल, दिल्ली पुलिस का यू टर्न। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद CJP एलानिया कहती है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: क्या कह रहे हैं, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: और आंदोलन खत्म होने के बाद भी CJP कैसे प्रदर्शनकारियों के लिए ढाल बनकर खड़ी है, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। जब बिहार में प्रदर्शनकारियों को जेल में डाला गया, उन पर मुकदमे लगाए गए, प्रदर्शनकारियों पर एक्शन के विज्ञापन और पोस्टर जारी किए गए, तब CJP ने बिहार सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि वो 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले बिहार में कहीं भी हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी सभी FIR, आपराधिक शिकायतों और कारण बताओ नोटिस को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। सरकार ने कहा कि ऐसे मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा कर देगी। ये भी तय करेगी कि भविष्य में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। आपको बता दें कि पटना में दर्ज 24 मामलों में 86 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जबकि पूरे बिहार में तकरीबन 5,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुए थे। बिहार पुलिस के मुताबिक पटना समेत 15 जिलों में 694 लोगों को हिरासत में लिया गया था। और ये है बिहार में प्रदर्शनकारियों के एक्शन पर सरकार के यू टर्न का वो लिखित पन्ना जो कॉकरोच जनता पार्टी तक पहुँच चुका है।
3: जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है, जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे FIRs वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए।
1: आपको बता दें कि दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बिहार में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हैं। जगह जगह पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें होती हैं। इसी कड़ी में बिहार के सिवान में प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग का वीडियो भी आता है। सिवान के JP चौक के पास SIT के एक जवान ने फायरिंग की। SIT के जवान अभिषेक पटेल की तरफ से फायरिंग वाला वीडियो वायरल होता है। तीन प्रदर्शनकारियों के घायल होने का दावा किया जाता है और तगड़ा सियासी संग्राम छिड़ जाता है। अब बिहार पुलिस ने कैसे AK-47 पर यू टर्न मारा है, पूरी टाइमलाइन देखिए। 25 जुलाई को बिहार पुलिस ने AK-47 वाले मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 26 जुलाई की सुबह ये खबर सामने आई कि फायरिंग करने वाले जवान अभिषेक पटेल को निलंबित कर दिया गया है। AK-47 से फायरिंग को लेकर मामला तूल पकड़ता गया। 27 जुलाई को बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक आधिकारिक प्रेस बयान जारी किया गया। बिहार पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में AK-47 से फायरिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की। हालांकि ये जरूर दावा किया गया कि सिवान के JP चौक पर AK-47 से जो फायरिंग हुई थी वहां कोई घायल नहीं हुआ, जबकि जो तीन लोग घायल हुए वो उस लोकेशन से काफी दूर की घटना है। सिवान जिले के SP ने अपने बयान में कहा कि AK-47 से फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है।
4: AK-47 से कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। क्यों DIU का जवान JP चौक पर गया, इसकी जांच के दौरान पता चला कि उस दिन एक हत्या की घटना घटित हुई थी। इसकी जांच एवं कार्यवाही के लिए टीम वहां से गुजर रही थी। कमिश्नर सर एवं DIG सर का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रक्रिया दिन है। तत्काल प्रभाव से सिपाही अभिषेक को निलंबित कर दिया गया है।
1: यानी 25 जुलाई को जो बिहार पुलिस प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग पर बोल नहीं रही थी और वो मान रही थी कि AK-47 से फायरिंग हुई है लेकिन कोई घायल नहीं हुआ है, अब विपक्ष ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और सड़क से संसद तक विपक्ष गरज रहा है।
5: सत्ता के नशे में इतने चूर है कि छात्रों को या सवाल पूछने वालों को आतंकवादी गुंडा बोल रहे हैं। AK-47 से भूना जा रहा है, छातियों पर गोलियां चलाई जा रही है। ये नया सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, इनको थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए कि किस राजपाट कैसे चलाया जाए। ये पुलिस को भी जो है पुलिसिया गुंडा राज ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये
6: 47 से गोली चला रहा है, मार रहा है, तो रास्ता क्या है? क्या डंडा ही ना बचाओ है, क्या रास्ता है?
7: AK-47 भारत के भीतर और बिहार के भीतर छात्र आंदोलन पर इस्तेमाल हुआ, वो दुनिया के इतिहास में नहीं। एक कम्युनिस्ट चीन सरकार अपने थियानमेन चौक पे अपने छात्रों पे बुलडोजर चला दिया था, वो कम्युनिस्टों का राज था। भारत में लोकतांत्रिक कहने वाले लोग अपने ही छात्रों पे AK-47 SLR से गोली चला देंगे बिहार में, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई माफी नहीं। या हम देश में लोकतंत्र नहीं चला रहे हैं, बल्कि यहाँ पे तानाशाही कायम हो चुकी है, अघोषित नहीं घोषित इमरजेंसी लागू हो चुका है।
8: जो भी सरकार के कानून का उल्लंघन करेगा, सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करेगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा अधिकारी कर्मचारी नहीं हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए बेवजह पुलिस ने जांची होगी, जो उच्च अधिकारी हैं और जो फायर हुआ बेवजह हुआ है, इसीलिए उसके खिलाफ।
0: खबर इस समय बता दे, भले ही बिहार, महाराष्ट्र, असम में प्रदर्शनकारियों पर से केस वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, अभिजीत दीपके ने कहा है, अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक बड़े और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के द्वारा इसका जवाब देगी। सरकार को छात्रों को निशाना बनाना, उन्हें परेशान करना बंद करना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि सरकार देश भर में प्रदर्शनकारियों पर केस कर रही है। छात्रों, प्रदर्शनकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। CJP की इस चेतावनी के बाद दिल्ली पुलिस ने भी पैलेट गन के इस्तेमाल पर जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला है।
1: इसी तरह से दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर दिल्ली पुलिस ने कैसे यू टर्न लिया है, उसकी भी टाइमलाइन देखिए। 20 जुलाई को CJP के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए RAF के जवान ने पैलेट गन चलाई। 21 जुलाई को मीडिया रिपोर्ट्स में पैलेट गन से 3 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट छपी। 22 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल के दावों को फेक न्यूज करार दिया। 23 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने आए पीड़ित की मेडिको लीगल रिपोर्ट में पैलेट गन से घायल होने की पुष्टि हुई। 24 जुलाई को राहुल गांधी ने पैलेट गन के पीड़ित साहिल लोचाप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 24 जुलाई को ही RAF ने आरोपों का वेरिफिकेशन कराने का फैसला किया। 26 जुलाई को राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाया। और 28 जुलाई को संसद बार पुलिस स्टेशन की 22 जुलाई की डायरी एंट्री में एक डीसीपी के निर्देश पर पैलेट गन के इस्तेमाल की बात पुलिस ने स्वीकार कर ली।
9: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है।
10: इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया है। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा।
1: प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार पर सवार है तो CJP की चेतावनी है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कहीं भी एक्शन हुआ तो फिर से आंदोलन होगा। ऐसे में बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और असम से लेकर राजस्थान तक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है तो कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को लेकर विचार किया जा रहा है।
11: देश का जो युवा है वो जाग चुका है, वो एकजुट हो चुका है एंड बहुत ज्यादा एकता है। आप अगर आज इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे तो आप देखोगे लोग कैसे जंतर मंतर को एक तरह से मिस कर रहे थे, क्योंकि एक सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी आया था जंतर मंतर के वजह से। लोग यूनाइटेड थे, युवा यूनाइटेड था। तो सरकार को बहुत बड़ी लर्निंग इससे लेनी चाहिए, सांसदों को भी लेनी चाहिए बहुत बड़ी लर्निंग। एंड इस युवाओं का भरोसा रखते हुए, जो गारंटीज बोले हैं उसको रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जो गारंटी दिया एंड पूरे देश भर में दिया, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया, अगर वो गारंटीज पे आप अमल नहीं करेंगे और जो डेडलाइंस के अंदर आप अगर अमल नहीं करेंगे तो युवा फिर से रोड पे निकलेगा। मैं ये सरकार को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ।
1: इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी CJP के आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई और अब कोर्ट ने कहा है कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, साथ ही 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: आपने प्रदर्शनकारियों पर सरकार का यू टर्न देखा और अब हम आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर लिए चलते हैं। क्या छात्रों के आंदोलन के डर से जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन पर उत्तर प्रदेश की सरकार ब्रेक लगाने पर मजबूर हुई है? रामपुर प्रशासन की तरफ से जौहर यूनिवर्सिटी को अपनी 38 अवैध इमारतों को गिराने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही कमिश्नर ने अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर स्टे लगा दिया, यानी कि रोक लगा दी। बुलडोजर एक्शन पर स्टे लगने के बाद धरने पर बैठे छात्रों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है।
1: इनकलाब के नारों के साथ जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपना धरना खत्म कर दिया। आज छात्रों के चेहरों पर खुशी है, उम्मीद यही है कि जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर नहीं चलेगा।
12: हमारी जो मांग थी वो इस आदेश को खारिज करने की थी, स्टे की नहीं थी। प्रशासन से हमारी शुरुआत से पहले दिन से ही अपील रही थी कि ये जो आदेश जारी किया है उसे खारिज किया।
13: हमारी डिमांड यही थी कि जो आपने जो ऑर्डर दिया उसे खारिज कर दिया जाए सर, तो अभी हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे सारे लोग।
14: सुनवाई तक रोक है
13: सर? देखिए सुनवाई हमारा जो डिमांड थी वो पहले यही थी, जो आपने ऑर्डर दिया है उसे खारिज कर दिया जाए। जी सर, उसे खारिज कर दिया जाए।
14: कितने दिन से हो गए धरने को?
15: आज 10 दिन हो गए।
14: 10 दिन में आज कमिश्नरी कोर्ट ने स्टे दिया है, क्या कमिश्नरी कोर्ट का स्वागत करेंगे?
15: बिल्कुल स्वागत करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, इससे लगा दिया है। बाकी जो रणनीति अभी धरने की है वो अभी खत्म नहीं होगी, धरना ऐसे जारी रहे।
1: दरअसल रामपुर के जिलाधिकारी और रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। आदेश की मियाद 30 जुलाई को खत्म हो रही थी, लेकिन मियाद खत्म होने से पहले जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कमिश्नर कोर्ट में आदेश को चुनौती दी गई थी। अपील पर सुनवाई करते हुए मंडलायुक्त ने मामले में अंतरिम राहत देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। अब अंतिम निर्णय आने तक 38 इमारतों को गिराने की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
16: विश्वविद्यालय का मामला है, बच्चों के हितों का मामला है, तो न्यायालय द्वारा उनकी शंका और बच्चों के भविष्य के देखते हुए न्याय हित में उनकी एप्लीकेशन केवल अग्रिम सुनवाई तक टेकअप की है और आईडीए द्वारा पारित आदेश को स्थगित कर दिया है। अभी इसमें अग्रिम सुनवाई मेरिट के आधार पर होनी है, जिसमें आरडीए की ओर से और स्टेट की ओर से हम पक्ष रखेंगे और तब मेरिट पर सुनवाई होगी।
17: अब पेपर लीक बिल पर संसद में आज दिन भर क्या क्या हुआ, आइए वो हम आपको दिखा दें। आज लोकसभा में पेपर लीक बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने मुद्दे रखे। सरकार ने अपने बिल को लेकर बड़े बड़े दावे किए तो विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।
18: दिस अमेंडमेंट इज बीइंग ब्रॉट इन टू मेक
1: आज पेपर लीक पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई। सरकार ने अपने नए बिल की खूबियां गिनाई तो विपक्ष ने सरकार की नीति और नियत पर सीधा हमला बोला।
18: दो महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी।
10: कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी।
19: 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है।
10: जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे।
1: बीजेपी ने इतिहास के पन्नों को पलटा और यही दावा किया कि पेपर लीक तो यूपीए सरकार में भी होते थे।
18: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था।
20: जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े।
1: प्रियंका गांधी ने बहस के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर सवाल उठाए तो वहीं पीएम मोदी के इंस्टाग्राम वाले वीडियो को लेकर नसीहत भी दी।
9: परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यही मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
1: वहीं अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की व्याख्या नौजवानों की जीत और सरकार की हार से जोड़कर की।
10: और आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए सरकार भी झुकती है।
1: बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया कि अब की बार मोदी सरकार पेपर को लीक प्रूफ बनाकर रहेगी।
2: इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है और इसमें भी हम इसका निवारण करने जा रहे हैं, इलाज करने जा रहे हैं। आप देखिए, इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद ने दशकों तक हमें बहुत जुल्म दिए, बहुत जख्म दिए और इन गहरे जख्मों से निजात दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से हमने ही खत्म किया है और पेपर लीक्स की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे।
1: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा कि 2024 में भी मोदी सरकार ने खूब ढोल बजाकर कानून बनाया था, लेकिन ना तो पेपर लीक बंद हुआ और ना ही लीक माफियाओं के मंसूबे कमजोर पड़े।
19: ये बिल एक संशोधन बिल है। आज से दो साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी एक ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा।
1: पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान जमकर तूतू मैं भी हुई।
21: अरे देश के बच्चे आंदोलन में बैठे थे
22: और आप इन्वेस्टिगेशन को इख्तियार भी नहीं देते कि जो पेपर लीक करते उनको सजा दी जाए। कितने अफसोस की बात है मैडम कि IAF को इस्तेमाल, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आजम 130 करोड़ आवाम के हैं, वो सिर्फ एक एग्जाम की निगरानी कर रहे हैं और ये सरकार बड़ी फखर से कहती है कि वजीर आजम देख रहे हैं, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एयरफोर्स को एक जमहूरी मुल्क में एक सिविलियन काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इससे बड़ी शर्मिंदगी और शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक सरकार किसी, और ये क्या बताता है मैडम कि ना वजीरों पर भरोसा है ना वजीर आजम पर भरोसा है, तो फिर इसीलिए हम इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी मैडम, मेरी आपसे ये बोलना ये है कि स्पेशल टास्क फोर्स क्या है, हाई लेवल कमेटी क्या है, पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैडम, फास्ट ट्रैक कोर्ट 2019 से अब तक 1100 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में खर्च हुए हैं और अब तक 2,45,000 केसेस चल रहे हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जादू की छड़ी तो नहीं है जो आप बेच रहे हैं जनता के सामने आकर। मैडम, द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम लीक्स फ्रॉम 2002 टू 2025 विद अ कैंडिडेट काउंट अबाउट 1 लाख इन ईच इज 45। The number of cases that led to conviction abysmal low. सिर्फ दो लोगों को सजा हुई है मैडम। NTA क्या है? NTA पर RTI नहीं लगता है मैडम। NTA एक सोसाइटी है, ना कैबिनेट ऑर्डिनेंस से बनाया गया ना कानून से बना। मैं खत्म कर रहा हूँ मैडम। तो मैं आपसे हुकूमत से सवाल कर रहा हूँ कि नीट का अंडर एग्जाम पेपर सेट हो गया था, अब नए चीफ ने आकर उसको क्यों चेंज किया, इसका सवाल दे जवाब दे। ये डॉक्टर सरदाना पराशर का क्या इन्वॉल्वमेंट है? पुणे लिंक क्या है? ये इनोवेटिव व्यू टेक्नोलॉजीज को 2018 से क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा बगैर टेंडर के? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GFRCVC रूल्स है, इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि AI का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए। और NTA का चेयरमैन, DG, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस IAS क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। और मैडम इसमें विजिल ब्लोअर्स का, मैडम खत्म कर रहा हूं, इसमें विजिल ब्लोअर्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसा
17: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे कॉकरोच आवामी पार्टी से कैसे बचेंगे मुनीर, पाकिस्तान में फटा विरोध का ज्वालामुखी। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दस्तक।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
25: When your cat is acting weird-er...
3: or your dog is being louder, your turtle moves slower.
4: Hello, Ted.
3: Your cat seems thirstier.
5: Whoa, slow down, buddy.
3: Or your puppy is acting clumsy-er. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
4: Veg ER for pets. This is Kate.
3: Veg. The better, kinder ER for pets.
6: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
7: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
25: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
26: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना.
25: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
26: अर्ज किया है.
25: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं.
27: वाह वाह वाह वाह.
25: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें.
28: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी.
29: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क और
9: मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
10: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
11: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
14: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: वी आर ओवर जिमी।
18: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: दिल्ली से महाराष्ट्र तक पेपर लीक को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट पेपर लीक पर मचे सियासी घमासान के बीच विपक्ष ने ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 22 मार्च 2026 को ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी गड़बड़ियों और पेपर लीक होने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने सबूत पेश करते हुए सरकार से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
1: जब एग्जाम थी उसके दो दिन पहले वहाँ पे जो क्वेश्चंस आने वाले थे वो क्वेश्चंस वहाँ पे लीक हो गए थे, और उस व्यक्ति को कैसे मिले, 12 लाख रुपए कैसे दिए गए, ऐसे कुछ जो पुरावे प्रूफ हमारे पास है वो प्रूफ हमने सरकार को वहाँ पे दिए है। इसीलिए हम चाहते हैं एमपीएससी के माध्यम से इस विषय के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सरकार के माध्यम से भी इस चीज में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
0: वहीं रोहित पवार के आरोपों पर कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर प्रवीण पाटिल ने इनकार करते हुए कहा कि वो किसी पेपर लीक में शामिल नहीं है।
2: दो उमेदवार या परीक्षे मध्ये सिलेक्ट होऊ शकला नाही आणि त्याला वाटलं की ही परीक्षा 12-14 वर्षांनी झालेली आहे, आता पुढची 10-12 वर्ष परीक्षा होणार नाही आहे, त्यामुळे आपण या सध्याच्या जर आपण अशी तक्रार केली तर कदाचित ही परीक्षा रद्द होईल आणि फेर परीक्षा होईल, म्हणून त्यांनी अशी तक्रार केलेली आहे।
0: इसके अलावा रोहित पवार ने ड्रग इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में कहा है कि जब तक पूरी जांच ना हो जाए तब तक फाइनल रिजल्ट और नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब खबर पाकिस्तान की, आइए आपको दिखाएं कि कैसे आसिफ मुनीर और पाकिस्तान की सरकार के लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। एक तरफ तो पीओके में जनरल डायर बनकर मुनीर बेगुनाहों का खून बहा रहा है, लाशें बिछा रहा है, और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की ही तरह पाकिस्तान में बनी कॉकरोच आवामी पार्टी ने शहबाज सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। मतलब पाकिस्तान में पीओके से लेकर सिंध तक एक ऐसा गदर मचा हुआ है। तो आइए दिखाएं आपको पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज की शामत कैसे आई हुई है।
4: हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं।
5: मुनीर बने जनरल डायर पीओके में नरसंहार,
4: और जिसकी तारीख से जो है ना इस वक्त बेशुमार नौजवान
5: लाशों से पटा रावला कोट, सड़कों पर बहा बेगुनाहों का खून। मुजफ्फराबाद में अंधाधुंध गोलीबारी, 20 लोगों की मौत। पीओके में बेकाबू हालात, शहबाज और मुनीर की शामत। अब भड़केगा आंदोलन, पाकिस्तान में कॉकरोच आवाम पार्टी आ गई। पाकिस्तान में एक तरफ तो पीओके चुनाव के दौरान भयंकर हिंसा भड़क गई है। अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की फौज ने गोलियां बरसा दी, और देखते ही देखते 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की लाशें बिछ गईं। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन इतनी ही संख्या में लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के आंदोलन की तर्ज पर पाकिस्तान में भी युवा सोशल मीडिया पर कॉकरोच आवाम पार्टी के बैनर तले सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह बनी है सिंध के हैदराबाद इलाके में हुई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा। आरोप है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि 4000 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 70 को पास किया गया। युवाओं का साफ आरोप है कि नौकरियां काबिल उम्मीदवारों के बजाय नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों को बांट दी गई। इस धांधली के विरोध में पाकिस्तानी युवाओं ने 2 हफ्तों तक लगातार धरना दिया, और कॉकरोच पार्टी के नाम से पूरे देश में एक नए आंदोलन की शुरुआत कर दी है। सिंध में शहबाज की शामत आई है तो पीओके में नरसंहार के लिए मुनीर की अब खैर नहीं है। पाकिस्तान के लिए कब्जे वाला कश्मीर गले की फांस बन गया है। वही पीओके जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, और तो और पीओके में भी लोग कह रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इसी खुन्नस में आर्मी चीफ बर्बरता पर उतर आए हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में अपनी मांगों और हक की आवाज उठा रहे लोगों ने पीओके में पाकिस्तान के दिखावटी चुनावों का बहिष्कार किया तो मुनीर ने गोलियां चलवा दी। ये तस्वीरें पीओके के मीरपुर की हैं। यहाँ चुनावों के पहले चरण में भले ही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी ने 9 सीटें जीत ली, लेकिन यहाँ जो गदर मचा, पाकिस्तान ने पूरी बर्बरता दिखा दी। पीओके में 3 चरणों में चुनाव है, और पहले ही चुनाव में पीओके ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में चुनाव की प्रक्रिया पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने दो टूक कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीओके में चुनावी नाटक सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे, कुशासन और वहां हो रहे मानवाधिकारों के हनन पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश है। भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपना रुख साफ कर दिया है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरह से गैर कानूनी है। जी हाँ, पाकिस्तानी रेंजर्स ने मीरपुर के बाजार में निहत्ते लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की है। गोलीबारी से दहशत फैल गई, और एक तरफ जहां लाशें बिछ गईं, वहीं दूसरी तरफ घायल लोग जान बचाते भागे। वीडियो में पाकिस्तानी रेंजर्स निशाना साधकर निहत्ते और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते दिख रहे हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने की भी खबर है।
1: अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे, अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे।
6: लाशों की तस्वीर भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं और किसी के पास कोई कंपाइल डाटा नहीं है कि अभी तक ये 30 है नंबर शहादतों का, 20 है या कहीं ज्यादा है, क्योंकि गोली बहरहाल खुलेआम चली है और बगैर किसी शक्को शुबे के वहां पर बड़ी कत्लोगारत जो है वो कर दी गई है।

0: इंटरनेट बंद है, संचार काट दिया गया है ताकि कत्लेआम की खबर बाहर न जा सके। सुनिए उस बिलखती कश्मीरी बेटी की आवाज़ को जो दुनिया के बंद जमीर को झकझोर रही है।
1: We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day.
2: Yeah, by sare duniya, Human Rights Organization, kahan mar gaye aap sab log? Kahan mar gaye? Kahan mar gaye?
3: Aap ye lagi par aayenge.
2: Aaj kaise thi? Tum bhi fucked hai, aaj. Roti. Aaj. Aaj hume maare ye zalim. Ye zalim hume maare.
0: लेकिन गोलियां जितनी तेजी से चल रही हैं, पीओके की आवाम का गुस्सा उतनी ही तेजी से उबल रहा है। खौफ के बुत टूट चुके हैं, अब ये आंदोलन सिर्फ अधिकारों का नहीं बल्कि आजादी के लिए है।
4: मुजफ्फराबाद डिवीजन की भी जो है वो आवाम से भी मेरी दादमदाना अपील है कि आप जो है वो घरों से निकलें, ये खौफ के बुत तोड़ें। आप जो है वो आज कुफियों में अपना नाम लिखवा रहे हैं।
0: अपनी ही आवाम पर गोलियां चलाकर कत्लेआम करके अगर इस्लामाबाद के हुक्मरान सोचते हैं कि वो इस क्रांति को दबा देंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। रावलाकोट की सड़कों पर बहा ये खून अब बेकार नहीं जाएगा। पाकिस्तानी सेना का ये जुल्म अब बड़े विद्रोह का रूप ले चुका है। आज तक ब्यूरो।
5: और अब खबर ईरान अमेरिका युद्ध की। बीते 3 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम है, लेकिन इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका में हैं। चाहे नेतन्याहू हो फिर या ज़ेलेंस्की, दोनों ही ईरान पर हमले जारी रखने के पक्ष में हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि ट्रंप से मिलने से कुछ घंटे पहले ईरानी जहाज पर यूक्रेन ने हमला किया, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग से ठीक पहले नेतन्याहू ईरान युद्ध को लेकर बड़ा दावा कर चुके हैं। आखिर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू को अमेरिका क्यों बुलाया? क्या ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है?

0: ईरान पर हमले के बाद पहली मुलाकात। ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान ईरान क्या है? क्या एटमी ठिकाने पर हमले की तैयारी है? क्या युद्ध में फिर शामिल होगा इजराइल? पुतिन ने पत्ते खोले तो नेतन्याहू की एंट्री। ट्रंप ने नेतन्याहू को बुलाया, ईरान घबराया। वैसे तो रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप और नेतन्याहू के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की ये पहली वन टू वन मुलाकात है। ट्रंप से मुलाकात से पहले ही मीटिंग का एजेंडा नेतन्याहू ने मीडिया के सामने रख दिया। प्रधानमंत्री के रूप में अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि इन जटिल परिस्थितियों में हमें दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता दोनों के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। हम एजेंडा में शामिल सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ईरान का मुद्दा है। इजराइल का लक्ष्य अपनी सुरक्षा की रक्षा करना और क्षेत्रीय शांति समझौतों का विस्तार करना है। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के पहुँचने की टाइमिंग बहुत अहम है। स्थायी युद्ध विराम को लेकर ईरान के साथ अमेरिकी वार्ताकारों की बातचीत जारी है। खुद ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध विराम को लेकर ईरान के साथ बातचीत अच्छे माहौल में चल रही है, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो ईरान पर अमेरिका फिर ताबड़तोड़ हमले करेगा। मतलब यही है कि ईरान के साथ बातचीत के बीच ट्रंप हमले की तैयारी भी कर रहे हैं। ट्रंप के इसी वॉर प्लान को इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरानी जहाज पर हमले के ठीक बाद ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे और ट्रंप के साथ अहम मीटिंग की, तो युद्ध काल में ही नेतन्याहू भी ट्रंप से मिल रहे हैं और मीटिंग का एजेंडा ईरान युद्ध के साथ साथ लेबनान है। तो क्या अब ईरान के खिलाफ अमेरिका के अगले हमले में यूक्रेन और इसराइल दोनों शामिल होंगे? क्या यूक्रेन, इसराइल और अमेरिका की टिकरी अब ईरान पर नए हमले मिलकर करेगी?
1: They want to meet, and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we can make a deal. Without what we did, they wouldn't even be talking to us. They requested a meeting through their surrogates and directly.

0: and we're meeting, and you know, good things can happen. I guess oil dropped very big today. Stock markets, as of about an hour ago, was like through the roof. But no, they requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been there.
1: सरल शब्दों में समझे तो ट्रंप प्लान ए और प्लान बी पर काम कर रहे हैं। प्लान ए में ईरान के साथ अपनी शर्तों पर युद्ध विराम का प्लान है और प्लान बी में ईरान पर यूक्रेन और इजराइल के साथ हमले की तैयारी है। अब सवाल यही है कि ईरान के खिलाफ यूक्रेन और इजराइल को युद्ध में ट्रंप क्यों शामिल कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ युद्ध को ट्रंप लंबे वक्त तक नहीं खींच सकते क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक अमेरिका के पास नहीं बचा है। ऐसे में मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। बड़ी बात यह है कि जॉर्डन में एक ईरानी मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस को भेदकर 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की वजह बन गई है। अमेरिका में सैनिकों की मौतों पर भारी नाराजगी दिखी है। अमेरिकी जनरल डैन केन भी इशारा कर चुके हैं कि ईरान के साथ पूर्ण युद्ध संभव है, लेकिन इससे मिडल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के पास मौजूद मिसाइल का स्टॉक भी खत्म हो जाएगा। वहीं ईरानी सेना के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। खुद अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास अभी भी 2100 मिसाइलें बची हैं, जो युद्ध शुरू होने से पहले मौजूद भंडार का करीब 70% हैं। यानी ईरान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। ईरान लंबे वक्त तक युद्ध लड़ सकता है। हालांकि ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि सेना के पास मिसाइलों के स्टॉक की कमी नहीं है। डिफेंस फैक्ट्रियों में मिसाइलें तेजी से बनाई जा रही हैं।
0: Different types. You know, Biden gave a lot to Ukraine, and so we're building that up, but we have a lot. We have a lot of the mid-level stuff, too. I mean, more than we could ever use, no matter what. But we have a lot. I'd like to have more, to be honest. So we're building it very rapidly. Plants are being built, and a lot of equipment's being built. The Patriots, in particular, are being built. The THAAD system is going up. We have a lot.
1: ट्रंप भले ही दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी सेना के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बीते कुछ दिनों में ईरान की जवाबी कार्रवाई में मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि ईरान के हमलों को रोकने में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले ईरान की मिसाइलों को अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से इंटरसेप्ट कर लेता था, लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका की इस क्षमता में कमी आई है। एक्सपर्ट्स इसकी वजह इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ऐलान कर रखा है कि जब तक इजरायली सेना लेबनन से पीछे नहीं हटती, तब तक वो अमेरिका के साथ शांति समझौते पर सहमत नहीं होगा। और तो और, ईरानी जहाज पर हमले के बाद यूक्रेन पर हमले की धमकी भी ईरान दे चुका है। किसी ईरानी जहाज पर यूक्रेनी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ये हमला यूक्रेन का खतरनाक दुस्साहस है। युद्ध में यूक्रेन की एंट्री का रूस ने विरोध किया है। क्रेमलिन ने ईरानी जहाज पर यूक्रेन के हमले को ईरान पर हमला माना है। क्रेमलिन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कैस्पियन सागर में एक ईरानी जहाज पर यूक्रेन का हमला ईरान पर हमला करने के बराबर था। इस खतरे को बेअसर करना होगा और इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा।
2: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach, in association with
4: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
8: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
7: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
8: They score!
7: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
9: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.
4: सरसों से सरसों।
5: अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है, और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने, जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं, जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ।
6: कोई काम नहीं बचा है, जनता ने बार बार उनको जो रास्ता दिखाया है, उनको लगता है बच्चों के भावनाओं के पे ऊपर राजनीति करके वो निकल जाएंगे, और यही काम उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जो धरना का काम किया वो क्या था, जब ऑलरेडी बात चल रही थी, वो लोग धरना पे बैठे हुए थे, एक पैरेलल खड़ा करके कि हम नहीं पीछे रह जाए, राजनीति चमकाना था, इसलिए ना जा करके चुपचाप जा करके बैठ गए खड़गे जी के घर से निकल करके बर्थडे के नाम पर।
7: भी बनाए थे उनका क्या हुआ, वो कमजोर थे क्या? पहले जो बनाया आपने वो कमजोर थे, जो पहले कानून बनाया वो कमजोर था, उसको इंप्लीमेंट करानी अगला कानून बता दिया आपने। अरे उसको तो इंप्लीमेंट कर लेते, उसमें तो चार चीट दाखिल नहीं करी, वो मुखिया को ही है, वो बरी होकर के चला गया। करना कुछ नहीं है, बातें करनी है, करिए, डिलीवर करने का टाइम है, ये आपकी बातों से नहीं पेट भरेगा लोगों का।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी भी, वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने आंसू, उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनके उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत। और इसलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं।
2: yes.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आपसे कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

परीक्षा बिल पर बहस के दौरान सदन में गर्मा गर्म बहस, संसदीय कार्य मंत्री का बयान, सियासत के चक्कर में विपक्ष ने बिल पर नहीं की बात, कल भी जारी रहेगी चर्चा। शिक्षा मंत्री पर प्रियंका के बयान से मचा बवाल, बीजेपी ने उठाए गंभीर सवाल, सदन की कार्यवाही से स्पॉन्ज किया गया बयान, कल दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के आरोपों पर बिफरी बीजेपी, विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं करते सवाल, मोदी सरकार चला रही है रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक पर लगेगा पक्का लगाम। भोपाल में किसानों का प्रदर्शन, सीएम आवास की ओर जाने से पुलिस ने पहले रोका, ई टोकन बंद करने, मूंग की 100% सरकारी खरीद को लेकर उठाई गई आवाज। और उत्पाद से कैंसर फैलाने वाले मुकदमों को रोकने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का प्रस्ताव, अमेरिकी कोर्ट को दिया 52,000 करोड़ का ऑफर, समझौते के लिए 95% दावेदारों की मंजूरी जरूरी।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बरेली में एक कारोबारी का कत्ल हो जाता है। पुलिस किसी तरह कातिल तक पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। कातिल अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है, लेकिन पुलिस तब परेशान हो जाती है जब कातिल कहता है कि उसने कत्ल किया जरूर है, लेकिन यह कत्ल उसने एक जिन के कहने पर किया है। वो जिन जो पिछले 1.5 साल से उसे कत्ल करने के लिए परेशान कर रहा था। ये लाश बरेली के एक व्यापारी की है। सुबह ये अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी एक भूत जिन या आत्मा ने इनकी कार को टक्कर मारी, फिर कार के टूटे शीशे से सीने और गले पर 3 वार किया और फिर वो जिन भूत या आत्मा गायब हो गई। अब व्यापारी का कत्ल करने वाले उस जिन भूत या आत्मा से मिली, यही है वो। 19 साल के इस लड़के का नाम वैसे अरमान है, इस वक्त पुलिस के घेरे में खड़ा है और सामने मीडिया की अनगिनत माइक। सबसे पहले तो इसका इकरार जुर्म सुन लें।
1: तीन चाकू मारे थे।
2: कहाँ मारे थे?
1: तीन दो सीने पे मारे थे।
2: पहले गाड़ी से टक्कर मारी थी?
1: हाँ, पहले गाड़ी से टक्कर मारी।
0: अब सुनिए ये कत्ल इसने क्यों किया, इससे ये कत्ल कराया किसने और क्या ये उस व्यापारी को पहले से जानता था जिसका इसने कत्ल किया, या क्या उससे कोई इसकी दुश्मनी थी, या फिर यूं ही मार दिया।
1: पहले घर में से मैं सोया नहीं पहले 2 दिन तक। अब मुझे बोला था कर वरना, मन में ही बात कह रही है, नींद अगर आके बीच रहा हूँ मैं। उसके बाद में आँख सोने ही नहीं दे रहा था, वो मुझे करा कर और गाली सड़ा सड़ गाली भग रहा था। मैं कुछ बताई नहीं, दवाई भी मेरी चल रही थी तो मैंने छोड़ लगी थी दवाई। हाँ, इससे इसके बाद में ये मुझे उठा के ले गया। मैंने उनका पहले बहुत ऐसा नहीं था, मैं इनको ही मारूंगा। मैंने पीछा भी किया, पहले एक मोटरसाइकिल वाले का पीछा किया मैंने, उसको भी नहीं मारा, पता नहीं कौन था। मैं वापस मोड़ के मैंने किया, अब मैं घर चल रहा हूँ। तो मुझसे बोला अरे रुक रुक यही रोक ले थोड़ी देर, तो एजेंसी के पास मैंने बैन रोक ली। अब पता नहीं क्या बात करने लगा। अब मैं फिर गाने सुनने लगा एजेंसी पे, ये निकल के जा रहे थे। हाँ, ये पहुंच गए सीधे सुनसान रोड पे। अब मैं इनके पीछे पीछे गया।
0: तो अरमान कह रहा है कि पक्का नहीं था कि वो किसे मारेगा, बस जो भी उसे सुनसान जगह पर मिल जाता वो उसी का कत्ल कर देता। 3-4 लोगों का तो पीछा भी किया था, तो क्या ये सचमुच भूत जिन या आत्मा के चक्कर वाला मामला है?
3: कोई उससे आत्मा वगैरह कोई जिन वगैरह आकर कहता था?
4: देखिए, ये इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता, विचना अभी प्रचलित है और डॉक्टर से बयान लिया जाएगा इसमें और डिटेल में और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल एक ये सनसनी केस घटना थी और कस्बे का ही अभियुक्त है और ये कस्बे के ही एक ये किराना के दुकानदार थे और इनकी दुखद घटना एक कारित की है। और जो इसने अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि जो भी इसको उस दिन पहले मिल जाता एकांत में उसकी ये हत्या करता, तो ये और गंभीर बात है। और इसमें हम लोग इसकी स्थिति की जानकारी कर रहे हैं, डॉक्टर से भी बयान लेंगे और समस्त सबूतों को मनी लैला के समक्ष रखेंगे।
0: अब आइए कत्ल की इस बेहद अजीबोगरीब कहानी पर। कत्ल की ये वो कहानी है जिसमें कातिल कत्ल की बात कबूल तो कर रहा है मगर साथ ही ये भी कह रहा है कि कत्ल उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि जिन ने उसके कानों में आकर कहा कत्ल करो कत्ल करो कुछ करो कुछ करो। इस वजह से जिन उसे सोने भी नहीं दे रहा था। पिछले 2 दिनों से वो सोया तक नहीं था। बस उसी जिन के कहने पर ये घर से गाड़ी लेकर निकला और जो पहला शख्स सुनसान जगह पर मिला उसे मार दिया।
1: पहले घर में से मैं सोया नहीं पहले 2 दिन तक। अब मुझे बोला था कर वरना, मन में ही बात आ रही है, नींद अगर आके बीच रहा हूँ मैं। उसके बाद में आँख सोने ही नहीं दे रहा था, वो मुझे करा कर और गाली सड़ा सड़ गाली भग रहा था। मैं कुछ बताई नहीं, दवाई भी मेरी चल रही थी तो मैंने छोड़ लगी थी दवाई। हाँ, इससे इसके बाद में ये मुझे उठा के ले गया। मैंने उनका पहले बहुत ऐसा नहीं था, मैं इनको ही मारूंगा। मैंने पीछा भी किया, पहले एक मोटरसाइकिल वाले का पीछा किया मैंने, उसको भी नहीं मारा, पता नहीं कौन था। मैं वापस मोड़ के मैंने किया, अब मैं घर चल रहा हूँ। तो मुझसे बोला अरे रुक रुक यही रोक ले थोड़ी देर, तो एजेंसी के पास मैंने बैन रोक ली। अब पता नहीं क्या बात करने लगा, अब मैं फिर गाने सुनने लगा एजेंसी पे, ये निकल के जा रहे थे। हाँ, ये पहुंच गए सीधे सुनसान रोड पे, अब मैं इनके पीछे पीछे गया।
0: जब अरमान बेखौफ पुलिस वालों की मौजूदगी में ये कहानी सुना रहा था तो खुद पुलिस वाले खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहे थे। वैसे अरमान ने अपनी कहानी की शुरुआत एक कहानी से की थी, कहानी 1.5 साल पहले की, जब पहली बार सफेद घोड़े पर कुछ लोग आए थे इसके पास। वो घोड़ा जिस पर पर लगे थे, वही लोग उसे परेशान कर रहे थे किसी का कत्ल करने के लिए, और आखिरकार उसने अपना पहला कत्ल कर ही दिया।
1: बस ऐसी चीजें मुझे परेशान करती थी, और दिखी भी हैं, दिखते भी हैं, कभी कोई चीज चमक रही है बराबर में, कुछ हो रहा है, चाहे आप किसी पंडित जी से पता कर लो, मौलाना से पता कर लो, अगर मेरा ही अगर इसमें कुछ हाथ हुआ तो मैं सजा काट लूंगा, वरना मेरी
2: हत्या करने के लिए उकसाती
1: हैं। हाँ, मतलब ये 1.5 साल से मेरे पीछे पड़ी थी जी, बोल रही थी कर दे जल्दी कर दे, गाली बकती थी बहुत ज्यादा, गंदी गाली बकती थी। अब मैं बाहर जाता था तो मैं अकेला बैठने लगा, हाँ कभी हंसी की सुनाई आती थी, हाँ कुछ जिन ही टाइप होगा, और दिखे भी थे मुझे। आज से वो कुछ साल पहले जो पहले बिजली कड़कड़ाई थी बहुत, शायद में ध्यान होगा, जो बिजली बहुत गंदी वाली कड़कड़ाई थी, तो उस टाइम पापा और मैं थे, उसके बाद में क्या बोलते हैं बहुत घोड़ों से आए थे कुछ लोग। हाँ, मैं रो भी बहुत रहा था घोड़ों पे बैठ के, और उनके घोड़ों पे पर भी थे, मैं अंदर दुब गया जाके, बहुत ज्यादा रो रहा था, मेरी नानी के घर वालों से पूछ लो, मेरे पापा की गोदी में चिपक के रो रहा था मैं, जब बहुत।
0: तो अरमान की पूरी कहानी तो आपने सुन ली, अब बाकी की कहानी सुन लीजिए। 24 जुलाई को बरेली के 65 साल के कारोबारी सियाराम अपनी कार से पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी घर से कुछ दूरी पर सड़क किनारे उनकी लाश बरामद होती है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है और फिर परिवार वालों से बात करती है। सियाराम के घर वाले 3 लोगों पर अपना शक जताते हैं। उनके बयान पर पुलिस बाकायदा FIR भी लिख लेती है, पर जांच के दौरान पता चलता है कि जिस वक्त सियाराम का कत्ल हुआ तब वो तीनों अपने अपने घरों में सो रहे थे।
4: देखिए, प्रकरण थाना भोजीपुरा से संबंधित है, जहां धौरा टाडा कस्बे के निवासी सियाराम का शव दिनांक 24/7/2026 को प्रातः लगभग 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। उनका शव जो है बीबीआपी रोड पे धौरा टांडा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे ही पड़ा मिला था। शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी, तथा इसमें मृतक के पुत्र सुरेश की लिखित तहरीर पर 3 पड़ोसी लाला राम आदि को नामजद करते हुए हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। और इसमें प्राथमिक रूप से जब इन तीनों को पूछताछ के क्रम में लाया गया तो ये सब अपने घर पे मिले, और पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया इनका संलिप्तता नहीं पाई गई।
0: अब पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू की, सबसे पहले आसपास के CCTV कैमरों को खंगाला, तभी पुलिस की नजर एक ओमनी कार पर पड़ी जो जाते वक्त तो ठीक थी पर वापसी में कार का फ्रंट शीशा टूटा हुआ था। अब उसी कार के नंबर प्लेट के सहारे पुलिस उस कार मालिक के घर पहुंचती है।
4: एक ओमनी वैन इसमें प्रकाश में आई जो मृतक का पीछा करते हुए एक CCTV कैमरे में दिख रही थी, और उस ओमनी वैन को जब वापस बैक ट्रैक किया हम लोगों ने तो वापसी में उसका शीशा टूटा हुआ था फ्रंट का। तो इसमें डेवलप करके फिर जब गहनता से विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज है, जो कि 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकबाल किया, और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में। और इनसे दोनों ही अभियुक्त गण से पजेशन में ओमनी वैन सफेद रंग की ये बरामद हुई है, आला कत्ल छुरी, एक आधार कार्ड मृतक का, एक मोबाइल फोन सैमसंग का जो कि मृतक का था, कांच के टूटे हुए टुकड़े जो कि गाड़ी के कांच के टूटे हुए कूड़े के टुकड़े थे जो मौके पे मिले हैं, और कुछ इसने जो छिपाया था उन दोनों का मिलान कराया जाएगा भविष्य में।
0: अब जब पुलिस ने अरमान को पकड़ा तो खुश होने की बजाय पुलिस और परेशान हो गई, क्योंकि अरमान सियाराम के कत्ल की बात तो कबूल कर रहा था पर साथ ही सारा इल्जाम उस जिन पर डाल रहा था जिसने उसे इस कत्ल के लिए मजबूर किया। उसकी हालत देखकर पुलिस को भी अब लग रहा है कि शायद वो किसी वहम का शिकार है।
4: इनसे गहनता से पूछताछ के क्रम में हेलुसिनेशन की कोई स्थिति निकल के आई है, तो अब जो भी स्थिति आती है आगे उस पर गहनता से विवेचना की जाएगी। इसने जुर्म कबूल किया है तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमारे पास पूरे हैं और पजेशन में जो भी वस्तुएं गई थी वो सब इनसे बरामद हुई हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के अध्यक्ष में भेजा जाएगा।
0: हालांकि अरमान से पूछताछ के बाद पता चला कि अरमान के पिता को भी पता था कि उसने कत्ल किया है, पर पुलिस को इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी, लिहाजा पुलिस ने अरमान के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। पिता से पूछताछ में पता चला कि अरमान की मानसिक हालत पूरी तरह ठीक नहीं है, उसका इलाज भी चल रहा था, साथ ही वो नशा भी करता था।
5: आपको पता है आपका बच्चा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको
3: ऐसा कोई ऐसी बात ही नहीं आई कि दवा खा रहा था।
5: कब से दवा चल रही थी?
3: दवा तो इनने अब तो 3 महीने छोड़ रखी है।
5: कोई नशा वगैरह भी करते थे? कौन सी क्लास में पढ़ाई की इन्होंने?
3: हाई स्कूल पढ़ने के बाद इन्होंने मना कर दिया पढ़ाई करूंगा।
5: कितने साल पहले हाई स्कूल किया था?
3: अभी 2-3 साल की बात है, तो 3 साल से सीख रहा था। ये धान नशे का मुझे पता नहीं, मेरी बीवी की बीमारी के चक्कर में मुझे पता ही ना चला मेरा बच्चा कब बिगड़ा।
4: देखिए, अभी तक की विवेचना से ये सूखे नशे का आदि बताया गया है और इसके इलाज भी मानसिक रूप से चल रहा था इसका, और वो उन्माद की स्थिति इसकी पिता ने स्वीकार किया कि कभी भी उन्माद की स्थिति आती है तो किसी को भी पीट देता है, किसी के साथ भी कोई घटना कारित कर देता है, इस टाइप की चीजें आई है निकल के, और इसमें अभी गहनता से विवेचना जारी है। अभी तक के सबूतों के आधार पर इनको पर्याप्त सबूतों को एक जगह करके माननीय न्यायालय के अध्यक्ष में भेजा है।
0: अरमान फिलहाल बरेली पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वक्त रहते वो पुलिस के हाथ लग गया, वरना इसी जिन की जिद के चक्कर में न जाने और कितने कत्ल कर बैठता।
4: देखिये, ये इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता, विवेचना अभी प्रचलित है और डॉक्टर से बयान लिया जाएगा इसमें और डिटेल में और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल एक ये सनसनी केस घटना थी और कस्बे का ही अभियुक्त है और ये कस्बे के ही एक ये किराना के दुकानदार थे और इनकी दुखद घटना एक कारित की है, और जो इसने अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि जो भी इसको उस दिन पहले मिल जाता एकांत में उसकी ये हत्या करता, तो ये और गंभीर बात है और इसमें हम लोग इसकी स्थिति की जानकारी कर रहे हैं, डॉक्टर से भी बयान लेंगे और समस्त सबूतों को माननीय न्यायालय समझ रखेंगे।
0: इस पूरी कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि जिन सियाराम का कत्ल हुआ वो बेचारे यूं ही मारे गए बेवजह, क्योंकि खुद कातिल की भी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी क्या, जान पहचान तक नहीं थी। कृष्ण गोपाल, बरेली आज तक। गोरखपुर में 10 साल के एक बच्चे का किडनैप हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से अगले 4-5 घंटों में किडनैपर तक पहुंच भी जाती है, उसके घर भी हो आती है, लेकिन बच्चा नहीं मिलता। फिर पूरे 17 घंटे बाद उस बच्चे की लाश मिलती है उसी किडनैपर के घर से, जिस घर की तलाशी पुलिस पहले ही ले चुकी थी। बोरी में लिपटी ये 10 साल के एक बच्चे की लाश है, चौथी क्लास में पढ़ने वाले एक जौहरी के पोते की लाश। ये लाश एक घर के बेसमेंट में इसी तरह बोरी में पैक मिली। हालांकि इस लाश के साथ पुलिस ने बच्चे के कातिल को भी पकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद यहां मौजूद ये भीड़ पुलिस वालों से खासी नाराज है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कातिल पुलिस के पास 17 घंटे से मौजूद था, लेकिन पुलिस बच्चे का सच फिर भी उससे उगलवा नहीं सकी। यहां तक कि उस कातिल के घर तक भी पुलिस हो आई, लेकिन उसी घर के बेसमेंट में रखी लाश तक को वो ढूंढ नहीं पाए।
6: हमारा बच्चा और पुलिस वालों ने 6 बजे जब बिट्टू शर्मा को कस्टडी में लिया, उसके बाद हम लोग को गुमराह किए। इन लोगों को मालूम था कि बच्चा इसी घर में है, लेकिन घुमा के हम लोग को रात भर यहाँ किए, वो किए, ऐसे किए, वैसे किए। अभी 11 बजे दोपहर में जब माहौल ठंडा हुआ है, तब ये लोगों ने उनके घर में दबाव डाला, उनके घर में घुसा और बॉडी को बरामद करके बता दी कि नहीं है, अब हम लोग का साथ
7: आने। आप आरोप लगा रहे पुलिस पे?
6: हाँ, क्योंकि सब मौके पर मालूम रहते हुए भी उन लोगों ने कुछ किया नहीं।
0: मामला यूपी के उस गोरखपुर का है जहां से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। इसी गोरखपुर में एक जौहरी का पोता 10 साल का वैभव वर्मा सोमवार को स्कूल से घर लौटता है। किताबों का बस्ता घर में रखकर अपनी नई साइकिल चलाने घर से निकल जाता है। तब दोपहर के 2 बजे थे। दोपहर के खाने का वक्त था, फिर भी जब वैभव नहीं लौटा तो घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया।
8: तो स्कूल से बच्चा जब पढ़ के आया है तो अगर हमारे गली के बगल में गली है वहाँ पर साइकिल लेकर गया है, वहाँ से बच्चा गायब हो गया है 2:07 के आसपास में। उसके बाद हम लोग 2:30 से खोजना चालू कर दिए हैं। सीसीटीवी खंगाला गया है तो देखा गया बिट्टू शर्मा उसका चप्पल लेके खेत में जाकर फेंक रहे हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है।
0: वैभव घर से ज्यादा दूर नहीं गया था, सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि वो बराबर की गली तक गया फिर गायब हो गया। उसी गली में एक कंप्यूटर टीचर सर्वेश भट्ट रहता था। इधर वैभव की खोजबीन के दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में दिखा कि सर्वेश शाम करीब 6 बजे खेत में चप्पल फेंक रहा है। चप्पल किसी बच्चे का था। खेत के पास ही वैभव की साइकिल भी पड़ी थी। साइकिल और चप्पल मिलते ही यकीन हो गया कि वैभव को किडनैप कर लिया गया है। तब तक पुलिस भी आ गई। वैभव के घर वालों की शिकायत पर पुलिस सर्वेश के घर गई और उसे पकड़ भी लिया, मगर घर की तलाशी ठीक से ली ही नहीं। अगर घर की तलाशी ले देती तो उसी वक्त वैभव की लाश घर के बेसमेंट से बरामद हो जाती।
7: आगे बच्चे का डेड बॉडी कहाँ मिला है?
9: उसी के घर में।
7: घर में? किसके घर में?
9: वही
7: शाम को 6 बजे से उसको कस्टडी में लिए हुए हैं।
9: शाम को 6 बजे से कस्टडी में लिए हुए हैं,
7: मगर उससे सच नहीं निकल
9: रहा है। वो पता करवा रहा है, ये से पता करवा रहे हैं, वो से पता करवा रहे हैं। हम लोग पूरा कह रहे थे किसी का हाथ है, किसी का हाथ
10: है,
0: सर्वेश भट्ट की गिरफ्तारी के बाद अगले 17 घंटे तक पुलिस उससे पूछताछ करती रही। 17 घंटे बाद अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह फिर उसे अपने साथ लेकर उसके घर पहुंची और आखिरकार सर्वेश के घर के बेसमेंट से बोरी में रखी वैभव की लाश बरामद हो गई।
11: कल हनुमान वर्मा नामक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसका बालक जो 10 वर्षीय वैभव वर्मा है वो 2 बजे अपने घर से साइकिल से निकला था और अपने घर नहीं लौटा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय थाने द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 239/26 पंजीकृत करते हुए थाने की 2 टीमों को और SP साउथ के अधीन SOG की 3 टीमों को बालक की बरामदगी के लिए लगाया गया था। इस क्रम में उसी के पड़ोस में रहने वाले कंप्यूटर टीचर सर्वेश भट्ट 36 वर्षीय जो थाना खजनी का ही निवासी है से गहन पूछताछ पे और CCTV फुटेज के अवलोकन से यह देखा गया कि वैभव को सर्वेश अपने साथ लेके कहीं जा रहा है। इस संबंध में जब गहनता से पूछताछ की गई तब आज सर्वेश भट्ट के घर के बेसमेंट से वैभव का शव बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई और मृत्यु के कारणों की गहनता से पूछताछ की जा रही है।
0: अब सवाल यह है कि जब आरोपी पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस की नजर में था, तो फिर कैसी पूछताछ कर रही थी पुलिस कि उसका मुंह खुलवाने में पुलिस को 17 घंटे लग गए। जब CCTV कैमरे में वैभव सर्वेश के घर की तरफ जाता दिखाई दिया, उसका चप्पल खेत में फेंकता कैमरे में कैद हुआ, तो फिर पुलिस ने सर्वेश के घर की तलाशी उसी वक्त क्यों नहीं ली?
8: उस आधार पर प्रशासन पकड़ के उनको लाई है, पूछताछ कर रही है और आज दोपहर में उनके घर में से लाश मिली है हमारे भतीजे का बेसमेंट से। कल रात में कहां कब उसको किया, पूरा परिवार मिलकर क्या किया है, अब ये हमको पूरी जानकारी नहीं है कैसे कैसे उसकी हत्या किए हैं, लेकिन उनके घर में बेसमेंट में लाश मिली है और यहां स्वीकार है तो प्रशासन गई है वहां पर निकाली।
0: वैसे एक जानकारी और दे दूं कि अभी तक गोरखपुर पुलिस ये भी साफ साफ नहीं बता पा रही है कि सर्वेश भट्ट ने वैभव को उठाया या मारा क्यों। महीने भर के अंदर वैभव के घर पर गम का ये दूसरा पहाड़ टूटा है। इससे पहले 27 जून को वैभव की मां की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक। नहर से 2 लाशें मिलती हैं, एक लड़का और एक लड़की की लाश। दोनों के हाथ एक दूसरे से फोन के डेटा केबल से बंधे हुए थे। नहर के करीब ही एक कार खड़ी थी। कार के अंदर खून से सना एक हथौड़ा था। अब मामला यहीं आकर उलझ जाता है कि क्या दोनों ने नहर में कूदकर खुदकुशी की या फिर उन्हें मारकर नहर में फेंका गया।
12: ये एक नहर की तस्वीर है और ये है इस नहर के किनारे बोट पर पड़ी लड़का लड़की की 2 लाशें। मामला दिल्ली के करीब फरीदाबाद का है। इन लाशों की तस्वीर तो हम आपको हूबहू नहीं दिखा सकते, लेकिन दोनों ही लाशों की एक खास बात आपको जरूर दिखा सकते हैं। ये देखिए, लड़का और लड़की की कलाइयां एक दूसरे से कसकर बंधी हुई हैं, शायद किसी डेटा केबल से। और इस तस्वीर को देखकर ही ये लगता है कि शायद दोनों ने एक राय होकर अपने अपने हाथ एक दूसरे से बांधकर पानी में छलांग लगाई, ताकि दोनों साथ साथ पानी में डूबें और दोनों की मौत साथ साथ हो। लेकिन फरीदाबाद पुलिस अभी इस डबल सुइसाइड मिस्ट्री को सॉल्व करती, तब तक उसकी नजर मौका वारदात पर खड़ी इस ब्लैक कलर की किया सोनेट कार पर पड़ती है, और कार के अंदर उसे जो कुछ दिखता है वो इस केस को सिर के बल खड़ा कर देता है। कार में दो मोबाइल फोन के साथ साथ खून से सना हुआ एक हथौड़ा भी है। पता चलता है कि ये कार पानी में डूबकर मरने वाली इस लड़की की ही है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये मामला डबल सुइसाइड का है, तो फिर कार में पड़े खून से सने उस हथौड़े का क्या कनेक्शन है? तो यही इस डबल डेथ की असली मिस्ट्री है। लेकिन इससे पहले कि हम इस मिस्ट्री को सुलझाने की ओर आगे बढ़ें, आइए जल्दी से उस लड़की के पति को सुन लेते हैं, जिसकी लाश किसी और लड़के के साथ नहर से बरामद हुई है।
10: कि एक्चुअली ना मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, ये फ्रीलांसर है।
13: अरे आ गया।
10: तो इसने नियर बाय जिम स्टार्ट किया, मुझे बता जिम करना है मुझे, ठीक है। वहाँ ये गए, वहाँ इन्होंने जिम स्टार्ट कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे उस लड़के ने हाय हेलो चालू करी, और उसके बाद बातचीत करनी चालू करी। डेली रात में परेशान करने लगा, मेरी वाइफ ने रोका, वो नहीं मानी। नहीं मानने के बाद उसके बाद जब वो नहीं माना तो उसने क्या बोलते हैं, परेशान करना चालू करा।
13: कब से परेशान कर रहा था?
10: समथिंग 2-2.5 महीने से।
13: क्या नाम था?
10: उसको रोका भी गया था, और उसकी ना महिला थाने में कंप्लेन भी करी थी 16 सेक्टर में।
13: आप लोगों ने लड़का पक्ष से बातचीत नहीं की?
10: नहीं, एक्चुअली जब थाने में महिला थाने में कंप्लेन करी थी तो भाई और उसकी मम्मी आए थे, समझाया था। समझाने के बाद उसकी मम्मी ने माफ़ी मांगी थी मेरी वाइफ से कि बेटा अभी आगे से गलती नहीं करेगा, और अगर आगे ये करता है गलतियां तो मैं आज तेरे साथ चल के कंप्लेन करवाऊंगी इसकी थाने में।
12: तो आपने शिवम को सुना, और शिवम की माने तो ये मामला एकतरफा इश्क का है, और इसी एकतरफा इश्क में उसकी बीवी रश्मि की जान चली गई। शिवम की माने तो रोज की तरह वो 11 जुलाई को भी अपनी ड्यूटी पर गुरुग्राम गया था, लेकिन इस बीच उसे अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली और वो मौके पर पहुंचा। पेशे से मेकओवर आर्टिस्ट 31 साल की रश्मि करीब 2.5 महीने से अपने घर के पास एक जिम में वर्कआउट करने जाया करती थी, और आकाश उर्फ अक्कू नाम के एक लड़के से उसी जिम में उसकी मुलाकात हुई। अक्कू एक जिम ट्रेनर था। इसके बाद उसने रश्मि का पीछा करना शुरू कर दिया। खबर होने पर रश्मि के घर वालों ने अक्कू की शिकायत पुलिस से की, और तब अक्कू के घर वालों ने रश्मि से माफी भी मांगी थी, लेकिन बाद में वो फिर से अपनी हरकतें दोहराने लगा।
10: ये एक्चुअली जैसे मेरी वाइफ निकली कहीं तो ये पीछे पीछे बाइक से गाड़ी के आगे बाइक लगा देना, परेशान करना, मैं भी चलूंगा, जबरदस्ती बैठ जाना गाड़ी में, मतलब बिल्कुल ही टॉर्चर कर रखा था बहुत।
13: क्या नाम था? कभी आपकी वाइफ ने आपसे नहीं बताया मुझे कोई लड़का परेशान करता है इस तरीके की बात?
10: सर, मुझे जब पता लगा था तो हमने कंप्लेन करी थी महिला थाने में। उन्होंने बोला था कि बेटा अगर ये नहीं मानता है समझाने के बाद तो इसके खिलाफ। युवक का अक्कू नाम था।
14: कहां का रहने वाला था?
10: एतमादपुर गाँव।
13: जिम पे आपके मकान पे गया था क्या?
10: हाँ जी हाँ जी, ये इसने एक्चुअली ड्रिंक कर रखी थी, मुझे उसी दिन पता लगा था इसने ड्रिंक कर रखी थी, और ये घर पे आ गया था तो घर में कैमरे लगे थे सीसीटीवी, जिसमें कि ये दिख गया बाहर।
13: पूरा नाम क्या था लड़के का?
10: मुझे अक्कू नाम पता है।
12: शिवम की माने तो यहाँ तक तो मामले का एक एक सच उसे पता था, लेकिन इसके बाद जिस तरह उसकी बीवी और अक्कू की मौत हुई उसके रहस्य से वो भी हैरान है। लेकिन ये तो शिवम का बयान है। शिवम के बयान से अलग रश्मि की कार में मौजूद खून से सना हथौड़ा और खुद अक्कू के घर वालों का बयान कुछ और ही कहानी कहता है, क्योंकि अक्कू के घर वालों का कहना है कि ये मामला सुइसाइड का नहीं बल्कि कत्ल का है, और महिला के पति यानी शिवम ने ही अक्कू की हत्या करवाई।
15: ये मर्डर का मामला सर।
14: किसने कितना मर्डर किया है?
15: अब होगी ना कोई शादी से बनाई होगी, अभी तो खुलासा हुआ नहीं है।
14: क्या नाम था आपसे भाई का? भाई था आपका?
15: मेरा साला था।
14: क्या नाम था?
15: आकाश। मीडिया में देख के गए थे हम तो, जो बता रहे थे कि वहाँ पे पुल के पास में वो दो मिले, तो इसके लोकेशन से गए थे हम तो। हाँ जी।
16: तो अब एक पार्टी जैसे सामने वाली जो पार्टी है, जो लड़की पक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई जो है बीच में उसके लेना देना नहीं है, तो आप लोगों का क्या कहना है?
15: ये गलत है, मर्डर कराया इसके पति की जो शादी
16: था पूरी। क्या नाम है शेखर जी? क्या लगता था आपको? आपका
17: मरसाला लगता था,
16: साला लगता था। क्या कहना है आपको?
17: जब कसूर नहीं है इनकी, सारी की सारी साजिश है। चार गाड़ी ने चार चक्कर मारे थी।
16: अच्छा,
17: गई थी फिर वापिस आई है, फिर गई है, फिर वापिस आई है, फिर वो क्या नाम लड़का बैठाया है, बैठा के इनकी कहाँ पे इनकी प्लानिंग थी, कहाँ पे ये वहाँ पे या मिली भगत थी जहाँ पे इनको जगह दी गई है।
12: असल में पानी से निकाले गए रश्मि और अक्कू दोनों की लाशों पर चोट के निशान है। ऐसे में रश्मि और अक्कू के घर वाले एक दूसरे पर दोनों की हत्या करने का इल्जाम लगा रहे हैं। अक्कू के जीजा का साफ साफ कहना है कि जिस तरह की चोट अक्कू के सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों पर है, उन्हें देखकर ये साफ है कि उस पर हमला किया गया है, क्योंकि ऐसी चोट इंसान खुद को तो किसी हाल में नहीं पहुंचा सकता। घर वालों की माने तो इस कत्ल में अकेले रश्मि का पति शिवम ही नहीं बल्कि कम से कम 7 से 8 लोग शामिल हो सकते हैं। सचिन गौड़, फरीदाबाद, आज तक।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: शिक्षा बिल पर बहस के दौरान सदन में गर्मा गर्म बहस। संसदीय कार्य मंत्री का बयान, सियासत के चक्कर में विपक्ष ने बिल पर नहीं की बात, कल भी जारी रहेगी चर्चा। शिक्षा मंत्री पर प्रियंका के बयान से मचा बवाल, सदन की कार्यवाही से प्रहलाद जोशी पर की गई टिप्पणी को हटाया गया, बीजेपी ने उठाया था सवाल, कल दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के आरोपों पर बिफरी बीजेपी, विपक्ष की नियत पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं करते हैं सवाल, मोदी सरकार पर सरकार चला रही है रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक पर लगेगा पक्का लगाम। भोपाल में किसानों का प्रदर्शन, सीएम आवास की ओर जाने से पुलिस ने रोका, ई टोकन बंद करने, मूंग की 100% सरकारी खरीद को लेकर उठाई गई आवाज। और उत्पाद से कैंसर फैलाने वाले मुकदमों को रोकने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का प्रस्ताव, अमेरिकी कोर्ट को दिया 52,000 करोड़ रुपए का ऑफर, समझौते के लिए 95% दावेदारों की मंजूरी जरूरी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर...
0: संसद में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का मोदी सरकार पर हमला, बोली हर बात को पाकिस्तान चीन से जोड़ने की राजनीति अब नहीं चलेगी। सुले ने कहा यह राजनीति नहीं, छात्रों के भविष्य का मुद्दा है, जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई की एसआईटी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी छात्रों पर दर्ज की जाएगी एफआईआर, वापस ली जाएंगी, सीएम फडणवीस ने निर्देश दे दिए हैं, सीजेपी के साथ केंद्र सरकार के समझौते के बाद एक्शन। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में जांच के घेरे में सरकारी कर्मचारी, मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार ले गई एसआईटी, अन्य संदिग्धों की दबिश जारी। मुंबई के आजाद मैदान में आयुष डॉक्टर का विरोध प्रदर्शन, सरकारी नौकरियों में एमबीबीएस डॉक्टर्स जैसी प्राथमिकता की मांग। नागपुर में भारी बारिश के बीच स्कूलों में जलभराव के बीच कई बच्चे फंसे, राहत और बचाव दल ने रस्सी के सहारे सभी बच्चों को बाहर निकाला। पुणे के बारामती के भीषण सड़क हादसा, अचानक से फिसल गई बाइक, तेज रफ्तार ट्रक के नीचे जा घुसी, मौके पर ही 2 सगे भाइयों की मौत। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मीरा रोड इलाके में हिट एंड रन की घटना सामने आई, उबर कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी, करीब 500 मीटर तक घसीटा भी, आरोपी चालक गिरफ्तार किया गया। नागपुर में तेंदुए के शावकों से खिलवाड़ का वीडियो वायरल हुआ, रस्सी से बांधकर रखने के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू। गुजरात के बनासकांठा में तेल से भरा हुआ टैंकर पलट गया, सड़क पर फैले हुए सरसों के तेल को भरने के लिए उमड़ आई लोगों की भीड़। दिव्या खोसला आधिकारिक तौर पर बनी है खोसला का घोसला 2 की स्टारकास्ट का हिस्सा, 26 अगस्त को सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज। एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज किया गया, 14 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कहानी थी मियामी गौतम की एंट्री, विद्या बालन के बिना बनेगा कहानी का नया चैप्टर, 10 साल के बाद आ रहा है पार्ट 3। दीपक तिजोरी की गुजराती फिल्म गेट सेट गो का ट्रेलर रिलीज किया गया, 7 अगस्त 2026 को रिलीज की जाएगी फिल्म। मार्वल फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का धमाकेदार तमिल एंथम रिलीज किया गया, दुनिया भर में 31 जुलाई को रिलीज की जाएगी ये फिल्म।
2: इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया।
3: एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
4: आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से हमने ही खत्म किया है और पेपर लीक्स की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम किया।
5: अध्यक्ष में एक कमेटी बनाई जाएगी, एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में कभी भी नीट के परीक्षा में या कोई और परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में पेपर लीक ना हो।
6: children were sleeping on the streets. Aur koi yahan se keh raha hai ki foreign hostage. Now making memes, sir. Ye samosa China ke paise se aaya hai. Ye chai Pakistan ke paise se hai. Sir, nahi chalne wala. Those days are over, sir.
0: नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में चर्चा रात 11 बजे तक चली। आपने सुना, बिल पर बहस के दौरान सदन में पूरे दिन गर्मा गर्मी बनी रही। महाराष्ट्र से सत्ता पक्ष से श्रीकांत शिंदे तो विपक्ष से सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी। वहीं बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया है कि नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज किए गए जो केस हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक हैं रोहित पवार, उन्होंने बहुत साफ कहा है कि अगर 6 दिन के भीतर केस वापस नहीं लिए गए तो जोरदार आंदोलन एक बार फिर से होगा।
7: पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लेने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों को नोटिस भेजकर थाने बुला रही है। रोहित ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा।
8: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और आंदोलन के दौरान, सीजेपी आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए थे वो पीछे लेने की मांग की। हमारे साथ हैं एनसीपी नेता रोहित पवार जी। सर, आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, कल डीजी से भी मिले थे महाराष्ट्र के, क्या मांगे रखी और क्या उनकी तरफ से कहा गया?
9: तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी थे जो उस आंदोलन में वहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था या सहभाग लिया था। कल और आज में, कल हमने डीजे महाराष्ट्र के जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी उनसे मिले और जो मुंबई सिटी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों पे डाले गए, उनके जो सीपी है उनको अभी जाके हम मिले। दो विषय है, एक तो एफआईआर हो गया, एफआईआर अगर पीछे लेना है तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। अभी बिहार और आसाम का तो नोटिफिकेशन आ गया, अभी महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव राज्य है ऐसे हम सबको लगता था, लेकिन ये सरकार इतना स्लो है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो, इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम विनती वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये होने तक जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए।
7: रोहित पवार के साथ कई छात्र नेता भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक छवि के लोगों और छात्रों में फर्क करना सीखे।
10: सीपी सर से हमारी मुलाकात पॉजिटिव हुई, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी नई नोटिसेस बच्चों को दी नहीं जाएंगी। हमने ये भी शिकायत दाखिल की कि संडे के बाद भी, जब रेजिग्नेशन के बाद भी मुंबई में कहीं पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई तो भी नोटिसेस बच्चों को आ रही है। 23 तारीख के जिस दिन प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था, तो इस तरीके की नोटिसेस ना दी जाए। बच्चों को कॉल्स जा रहे हैं फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में बुलाने के, इस तरीके के कॉल्स बंद हो या फिर लाइव लोकेशन मांगना बंद हो। तो उन्होंने इस बारे में हमसे राजी किया है कि किसी भी तरीके के फोर्सफुल कॉल्स या फिर पुलिस स्टेशन में बुला के लेना, इस तरीके का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन से नहीं किया जाएगा।
8: कितने दिनों का समय देंगे कि केसेस वापस पीछे ले जाएं, नोटिफिकेशन निकालें?
11: मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आसाम ने और बिहार ने, और आज हमने देखा जब सीपी से मिल रहे थे उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, महाराष्ट्र के साथ जो 7 राज्य है जहां पे केसेस हुए उनके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लिया जाए। बस हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इसी हफ्ते में या फिर आज या फिर 2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर बच्चे और भी मतलब प्रॉब्लम में हो कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से उस केसेस के विरोध में वो मैदान में ना उतरे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से फिर सीजीपी के आंदोलन में अलग अलग जो भी विद्यार्थी संगठन है जो रस्ते पे उतरे थे, तो बावजूद आप उन विद्यार्थी संगठन नेताओं के बावजूद आपने सभी लोगों के ऊपर वो एफआईआर किया है और लोगों के बीच में डर है, बच्चों के बीच में डर है, लेकिन बच्चे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो वही प्रशासन से विनती है कि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले या फिर बच्चे फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
7: वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के गृह विभाग को आदेश दिया कि वो छात्रों के हाल ही में हुए आंदोलन से जुड़े सभी एफआईआर वापस ले लें। ये कदम केंद्र सरकार के उस भरोसे के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के तहत नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने नीट पेपर लीक के विरोध में पाकिस्तान के कथित कनेक्शन पर कह दिया

0: तो फिर वही आंदोलन में सर तन से जुदा क्यों नारे दिए गए, देवी हमारे हिंदू सनातन धर्मों को क्यों गाली दिया गया, हमारे देवी देवताओं को क्यों गंदे गंदे उनके फोटो दिखाए गए, सर तन से जुदा अल्लाह और तकबीर इसका क्या संबंध है नीट से। इसलिए नीट के बारे में जो कुछ भूमिका लेनी थी वो हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से ली है, उसका सभी प्रश्न हम छुड़ाएंगे। मगर उनके कंधों पे रख आप बंदूक रख के अगर कोई भी हमारे देश में अगर गजवाहीन कर रहा होगा ना तो सभी को हम मिट्टी में मिला देंगे।
1: हम भी यही कह रहे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं हैं, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए। और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई कुख्यात अपराधी है, कोई मर्डर किया हुआ है, हाफ मर्डर किया, उसको पकड़ लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। आप दोनों को एक चश्मे से मत देखिए, इनोसेंट इनोसेंट है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, दोनों को अलग चश्मे से देखिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए, और जो अपराधी हैं भले ही उनकी उम्र 22-23 साल हो, अपराधी अपराधी, अपराधी कोई उम्र नहीं होती।
2: इस बीच बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी जो किसी भी तरह स्वीकार नहीं है।
3: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
2: वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा पर रोहित पवार ने कहा कि हम जैसा बिल चाहते हैं, बिल वैसा हुआ तो समर्थन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष संशोधन के लिए जरूरी सुझाव देगा।
4: नीतीश राणे जी जब बात करते हैं तो खुद के दिमाग से कभी बात नहीं करते, उनको बोला जाता है कि ये बात कर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। मैं सोच रहा था नीतीश राणे जी बहुत दिन से चुप क्यों है, वो हिंदुत्व के बारे में बहुत बोलते, कांग्रेस के वक्त कुछ और बोलते थे जब कांग्रेस में थे, अभी और कुछ बोल रहे, लेकिन जब अयोध्या में, पवित्र अयोध्या में प्रभु राम जी का जो मंदिर है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, जो उज्जैन में वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया, तो अभी ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं एक तो बहुत गलत है, और उसी के साथ अगर आप देखो तो करोड़ों बच्चे रास्ते पे आए थे, उन्होंने आंदोलन ये छेड़ा था, उन्होंने ये आंदोलन किया था, और ये वहाँ पे बच्चों को क्या AI से क्रिएट नहीं किया था, या भारत के बाहर से इंपोर्ट तो नहीं किया था? अभी एकाध दूसरा अकाउंट कोई देश से होगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री या अगर इंफॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट होता है IT डिपार्टमेंट, वो तो आपके पास है, वो आप जो ब्लॉक करना है वहाँ पे करो ना, लेकिन बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या हो गया है? ईगो हर्ट हो गया है भाजपा का।
2: फिलहाल पेपर लीक प्रोटेस्ट और एंटी पेपर लीक बिल पर मचा घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
5: मुंबई में नीट पेपर लीक केस में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में ले लिया जाता है और पुलिस की गाड़ी को रोककर चर्चा में आई थी रिया अहीर। आज एक बार फिर से वो मीडिया के सामने आई है, जबरदस्त तरीके से वायरल गर्ल रही वो। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार को छात्रों से डर लग क्यों रहा है, वो आतंकवादी तो नहीं है?
6: कुछ दिनों से आप लोगों को पता है मेरे साथ गलत हो रहा है, और उसके लिए मैं लगातार आवाज़ उठा रही हूँ ताकि लोगों को इससे भी प्रेरणा मिले। मैं रातों को सो नहीं पा रही हूँ, मैं जब से ये सब हुआ है मैं सोई नहीं हूँ, मैं खा नहीं पा रही हूँ, तो जब भी मैं रात को सोने की कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है कि मुझे आप लोगों को ये बोलना है।
7: हम CJP है, चिल्लर जनता पार्टी, क्योंकि हमें उठाने के लिए तो इलेक्शंस के वक्त पॉलिटिशियंस और आंदोलन के वक्त पुलिस आती ही है, और ये चिल्लर जब अलग अलग राज्यों में गिरती है ना तो युग की आवाज पूरे जग में गूंजती है। लाठियां, पेलेट गन्स, टीयर गैस बच्चों पर चलाए गए प्रिवेंटेटिव मेजर्स और प्रिवेंटेटिव डिटेनिंग के नाम पर, इन बच्चों के हाथ में क्या था? मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, इन बच्चों के हाथ में अपने देश का तिरंगा और हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की लिखी गई भारतीय संविधान की किताब थी, आप इनसे डर गए? बसों में जब इन्हें भर भर कर आप लेकर जा रहे थे तो वो भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ये बच्चे आपको टेररिस्ट लगते हैं।

0: महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही से टीटी का पेपर लीक हो गया था। क्वेश्चन पेपर यहीं छापा गया था और यहीं से लीक हुआ था। एसआईटी लीक केस में मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार ले जा रही है, जिससे कि उसके नेटवर्क को खंगाला जा सके। अब तक इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
1: महाराष्ट्र टीचर यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक केस की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट भिवंडी में एक सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच भी कर रही है। एसआईटी मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर ले जा रही है, जिससे उसके पूरे पेपर लीक नेटवर्क को खंगाला जा सके।
2: एग्जामिनेशन के पहले ही इसको महाराष्ट्र पुलिस ने इसको ये किया था, डिटेक्ट कर लिया था। एग्जाम के पहले ही ये सब हुआ और जब ये गुना दाखिल हुआ 27/6/2026 को, तब से लेके अभी तक इसमें 12 जो अक्यूज्ड आरोपी इनको अरेस्ट किया गया था। साथ में जो हम इसके जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र गुप्ता और इसका एक साथीदार है इंद्रजीत विजय सिंह, इनको कल समस्तीपुर में अप्रिहेंड किया गया। वहां से हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन जो है पटना, वहां में इनको अरेस्ट करके आज यहां पे लाया गया भिवंडी में। जी हमारा इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश में पता चलेगा और कौन कौन इसमें अक्यूज है और लग रहा है कि और कुछ इसमें अरेस्ट होगी।
1: महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच में आगरा के माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही सामने आई है, जहां टीटी का प्रश्न पत्र छापा गया था और वहीं से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे थे, न ही यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। अब तक इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के साथ ही और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी शामिल हैं।
3: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET पेपर लीक केस में पिछले शनिवार विजेंद्र गुप्ता, जो कि इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता से इंटरोगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके हाथ में एक अहम कड़ी हाथ लगी है और इस कड़ी को अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम फॉलो कर रही है, उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र शासन का एक कर्मचारी भी अब संदेह के धारा में है। आपको बता दें कि इसे अब चेक किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र शासन का जो कर्मचारी है उससे ट्रैक करने की कोशिश चल रही है, उसका रोल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो अंडर स्कैनर है। ये अहम जानकारी आज तक को पता चली है। आपको आज तक ये पहली जानकारी सामने ला रही है। आपको बता दें कि 15वां आरोपी जिसने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सोनू कुमार, जो पहले उसी प्रेस में आगरा में काम किया करता था जहां पर ये पेपर छपा था, टीटी का पेपर, क्वेश्चन पेपर छपा था, उसने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 2 तारीख तक रिमांड में भेज दिया है।
1: ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के तहत भिवंडी पुलिस की टीमें उन खरीदारों की तलाश कर रही है जो परीक्षा से पहले महाराष्ट्र में टीटी क्वेश्चन पेपर पार्ट और बेच रहे थे।
2: ये जो लोग हैं बार बार जो प्रिंटिंग प्रेस में जो एम्प्लॉइज है इनके कांटेक्ट में रहते हैं, इनको सिर्फ स्पेसिफिक पेपर के लिए नहीं तो रेगुलरली इनको पैसा वगैरह भेजते रहते हैं, इससे इनके रिलेशन आते हैं और जो फिर इम्पोर्टेंट पेपर दिखता है इनको या बेच सकने का इनको जब समझता है तब ये फिर वहां से पेपर निकाल के ये लोग सेल के लिए आते हैं।
1: हैरानी की बात है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस को करीब 30 साल से सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेस में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी।
4: ये जो कोंगाव का जो CR दाखिल है TAT के बारे में 281/26, इसमें आज जो 15वां आरोपी अरेस्ट हुआ है ये कल आत्मसमर्पण करने के लिए भिवंडी कोर्ट में आया था, हाईकोर्ट के एक वकील है उनके जरिए आया था, तो इसको कोर्ट ने हाजिर करके लिया लेकिन इसको न्यायालयीन कोठड़ी में भेजने का हुक्म किया। वो हुक्म होने के बाद उसने आत्मसमर्पण करने के बाद आयोग का कॉल किया, आयोग ने जो पेपर रखे थे आयोग का कॉल हुआ और आयोग ने उस ऐसी मांग रखी थी कि इसको आयोग के कस्टडी में दिया जाए करके, तो कोर्ट ने उसकी जो मांग है आयोग की वो पूरी कर दी है और आयोग की कस्टडी में दिया गया था और आज उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर किए थे। अब उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर करने के बाद उनको 2 अगस्त तक का पुलिस कस्टडी दी गई।
1: सवाल है कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने टीटी प्रश्न पत्र की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट आगरा की इसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया? क्या मंत्रालय या शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी इस लीक कांड में शामिल है?
3: सोनू कुमार बिजेंद्र गुप्ता का पुराना साथी है और पेपर लीक के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो माहिम पत्रम नाम का जो प्रेस है जहां पर ये पेपर छपा था, जो ये क्वेश्चन पेपर है टीटी का, वो पेपर छपा था, वहां पर ये पता चला पुलिस को कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी सीसीटीवी कवर नहीं था और कोई भी आ जा सकता था, और इसी वजह से वो पेपर वहां पर छपने के बाद आसानी से जो कर्मचारी थे वो अपने जूते में छुपा कर बाहर ले आए। इससे पहले भी ऐसा होते रहा होगा क्योंकि माहिम पत्रम ये जो प्रेस है ये बहुत साल से सरकारी क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन बर्ने और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिवेश सिंह, भिवंडी, आज तक।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुंबई में थर्ड ईयर कॉमर्स परीक्षा के 3 पेपर लीक होने की सीआईडी जांच का स्वागत किया है। ये परीक्षा इसी साल 9 से 15 अप्रैल के बीच हुई थी। पेपर लीक मामले में यूनिवर्सिटी के 3 अस्थायी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एवीबीपी ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी के अधिकारी ही इस लीक के लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
5: देश में कई जगहों में, महाराष्ट्र में भी कई बार पेपर लीक के जो आरोप है या स्टूडेंट्स या जिन्होंने एप्लीकेंट्स ने अपियर किया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उनकी तरफ से वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो उसमें ही मुंबई यूनिवर्सिटी में जो पेपर लीक हुआ था उसमें सीआईडी इंक्वायरी लगाई गई है। इस वक्त हमारे साथ समीर हरजानी है जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है एबीवीपी मुंबई के। तो ये जो आप कह सकते हैं कि डिमांड आप कह रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी एमएलसी ने की थी विधान परिषद में,
6: हमने मुंबई के जितने भी एमएलसी थे, जितने भी एमएलए थे, हम खुद जाके उनको पत्रक लिखा था कि मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हुआ है बीकॉम का, और एक पेपर नहीं हुए, 4 पेपर लीक हुए अलग अलग सब्जेक्ट के, और हमने जाके उनको बताया था, पर्सनली मिलके हमने लेटर दिया था। तो एमएलसी जो अनिल परब जी है उन्होंने विधान परिषद में मांग उठाई थी कि इसके ऊपर ये जांच होनी चाहिए, तो उस जांच पे उस टाइम पे माननीय शिक्षा मंत्री जी चंद्रकांत दादा पाटिल उन्होंने उत्तर दिया था, और फिर आज हम देख रहे हैं कि आज सुबह हम भी निकाला, मतलब घोषित किया है मुंबई विद्यापीठ ने कि इसके ऊपर ये जांच होनी चाहिए।
5: लेकिन मैं ये आप कह सकते हैं कि सरकार ने सीरियसली नहीं लिया काफी दिनों तक इस मैटर को, ये पेपर लीक होता है तो उसमें मतलब ये मामला आप कह सकते हैं कि अधिवेशन में असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस जाता है फिर एजुकेशन मिनिस्टर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए, अगर पेपर लीक जो है उसको सीरियसली लेना चाहिए।
6: हाँ, पेपर लीक को तो सीरियसली तो लेना ही चाहिए ना।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
0: मुंबई के आजाद मैदान में आयुष डॉक्टर्स ने आंदोलन किया है। इन डॉक्टर्स ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के खिलाफ नारेबाजी की। डॉक्टर्स को आजाद मैदान से सचिवालय तक पैदल मार्च करना था, लेकिन पुलिस ने डॉक्टर्स के मार्च को रास्ते में ही रोक दिया। आयुष डॉक्टर्स की मांग यह है कि उन्हें भी एमबीबीएस डॉक्टर्स की तरह सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। आंदोलनकारी डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार के आदेश के बावजूद आईएमए इस नियम को लागू नहीं कर रहा।
9: मुंबई में आयुष डॉक्टरों की तरफ से एक मोर्चा निकाला जा रहा है, फिलहाल इनका एक आंदोलन यहाँ पर शुरू है मुंबई के आजाद मैदान में। हम इन्हीं से जानेंगे किस चीज को लेकर ये आंदोलन शुरू है, और इनका जो अभी ये आंदोलन है ये मंत्रालय यानी जो सचिवालय है महाराष्ट्र का उसकी तरफ ये लोग कूच कर रहे हैं। सर, आपकी क्या मांगे और ये आंदोलन कहाँ जा रहे हैं? क्या मांगे और ये आंदोलन कहाँ जा रहे हैं?
10: देखो, महाराष्ट्र शासन का आदेश था 23 जुलाई को, जो हमने 8 जुलाई को 7 जुलाई को आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बाद 23 जुलाई को हमारी वैद्यकीय शिक्षण मिनिस्टर हसन मुशरीफ साहब इनके साथ, उनके दालन में आयुक्त, सचिव और जितने जितने अधिकारी है उनके साथ बैठक हुई। उस बैठक में उन्होंने आदेश दिए हैं, मंत्री महोदय ने आदेश दिए हैं कि आप है ना इनको रजिस्ट्रेशन दे दो। 27 जुलाई की तारीख दी थी, 27 जुलाई को हम उधर गए तो वो एमएमसी के रजिस्ट्रार जो थे डॉक्टर राकेश वाघमारे वो गायब हुए। वहां पे कल हमको ठिया आंदोलन करना पड़ा, उसके बाद राकेश वाघमारे आए और उन्होंने ये कहा कि एक आईएमए करके संगठन है जिसको हम क्या बोलते हैं वो ऐसी प्राइवेट संगठन सरकार पे ऊपर दबाव लाती है कि हम पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन कर देंगे और हमारे पेशेंट को चेक नहीं करेंगे। अरे हम उनको चैलेंज देते, आप इतनी हिम्मत है ना तो एक बार आंदोलन करके दिखाओ। हमारे सारे आयुष डॉक्टर पूरे महाराष्ट्र में फोकट में लोगों को मेडिसिन देंगे, फ्री में सेवा देंगे, हम उससे डरते नहीं।
9: अब आपका आंदोलन कहाँ जा रहा है, कहाँ
10: अभी मंत्रालय जाएगा,
9: अब मंत्रालय। इतने दिनों से आपका आंदोलन हो रहा लेकिन मांगे पूरी
11: नहीं हो रही अभी तक।
9: क्या कहेंगे सरकार से, क्या अपेक्षा है?
11: सरकार ने तो पूरी तरह से हमको दे दिया है, सरकार दे चुकी है सब कुछ। और ये 2014 में ही कायदा पारित हुआ है, इसमें हमको बीएचएमएस डॉक्टर्स के लिए एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्मेकोलॉजी और वो करने के बाद महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन देना था। तो पिछले 9 से 10 सालों ने ये आईएमए ने सरकार को धारे पे रखे हुआ है कि इनको देना ही नहीं है। तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है क्योंकि ये जो कायदा पारित हुआ है ये विधि मंडल में सारे पक्षों की सहमति के साथ में हुआ है, तो ये बिल्कुल लोकशाही के लिए बहुत गलत चीज है।
0: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: संसदीय कार्य मंत्री का बयान, सियासत के चक्कर में विपक्ष ने मेल पर नहीं की बात, आज दोपहर 12:30 बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के आरोपों पर बिफरी बीजेपी, विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं करते सवाल, मोदी सरकार चला रही रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक पर लगेगी पक्की लगाम। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई है 75, शिवसागर गोलाघाट समेत 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित, सीएम हेमंता ने पीड़ित परिवार को 4 लाख के अलावा 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। और उत्पाद से कैंसर फैलाने वाले मुकदमों को रोकने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का प्रस्ताव, अमेरिकी कोर्ट को दिया 52,000 करोड़ रुपए का ऑफर, समझौते के लिए 95% दावेदारों की मंजूरी जरूरी।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े संशोधन विधेयक 2026 पर जोरदार बहस, सरकार की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुरू की चर्चा। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा के लिए विपक्ष के समय बढ़ाने की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, इस बिल पर हम 10 घंटे भी चर्चा के लिए तैयार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस का घेराव करते हुए कांग्रेस काल में हुए पेपर लीक गिनाए, कहा 1992-2010 में परीक्षा सुधार के लिए सिफारिश की गई थी लेकिन कांग्रेस यूपीए सरकार ने नहीं मानी थी सिफारिश। राधा कृष्ण कमेटी के सुझावों का भी जितेंद्र सिंह ने जिक्र किया, बोले 40 सुझावों में 35 लागू हो चुके हैं, अगर किसी को इससे आपत्ति हुई है तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। पेपर लीक बिल की चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा इस बिल के पास होने से 3 महीने में होगा ट्रायल और 2 महीने में पूरी हो जाएगी जांच। गौरव गोगोई ने बिल को लेकर सरकार पर पलटवार करते हुए कहा, यह सिर्फ बिल दिखावे का बिल है, सरकार नहीं लाना चाहती है सुधार। गौरव गोगोई ने 2024 नीट पेपर लीक मामले में बेल पर आए आरोपियों की लिस्ट भी गिनवाई, बोले ये कानून उस समय भी विफल था, आज भी विफल होगा, ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है। गौरव गोगोई का प्रधानमंत्री मोदी के हाई पावर कमेटी के गठन होने पर भी तंज, कहा एनटीए के डीजी को बदला और चेयरमैन को नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया गया। अखिलेश का मोदी सरकार पर तंज, बोले जो चढ़ावा नहीं बचा सके वो पेपर लीक कैसे बचाएंगे। बहस के दौरान बीजेपी ने विपक्षी नीयत पर सवाल उठाए, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का क्यों नहीं मांगा गया इस्तीफा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा मोदी सरकार चला रही है रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक होगा तो पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। संसद में प्रधानमंत्री मोदी का प्रियंका गांधी पर कटाक्ष, कहा कैमरे का नहीं दिखा, कैमरे नहीं दिल का एंगल बदले प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री पर लगाए संगीन आरोप, सदन में जमकर हंगामा हुआ, बीजेपी बोली है चरित्र हनन है। प्रियंका गांधी का बयान रिकॉर्ड से हटने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, बोले प्रियंका पर कार्रवाई हो। प्रियंका गांधी ने जंतर मंतर पर नीट प्रदर्शन को लेकर सरकार से पूछे सवाल, बोली प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलाने की क्या जरूरत थी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या बोले युवा राजनीति नहीं समाधान चाहते, नई शिक्षा नीति से सुधर रही है शिक्षा व्यवस्था। डिंपल यादव ने छात्र संगठन और सोनम वांगचुक का मुद्दा उठाया, बोली बच्चों पर क्यों नहीं बना पाए दबाव। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले एसपी सरकार ने यूपी लोक सेवा आयोग को जाति आयोग बना दिया था, हम ही करेंगे पेपर लीक का इलाज। अनुराग ठाकुर का एसपी कांग्रेस पर हमला, बोले 100 पेपर लीक कराकर राहुल गांधी और अखिलेश आंदोलन करने चले हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप, का विपक्षी सांसद पेपर लीक बिल पर नहीं बोले, देर रात तक सदन चलाने का क्या फायदा। मॉनसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पर अब 12 बजे चर्चा होनी है दोबारा से, करीब 12:30 बजे राहुल गांधी बोलेंगे। छात्रों के खिलाफ केस पर अभिजीत दीपके की सरकार को चेतावनी, का पुलिस कार्रवाई अगर नहीं रुकी तो जल्द बड़ा प्रदर्शन होगा। पटना जेल से रिहा हुए तेज प्रताप यादव नीट प्रदर्शन मामले में गिरफ्तारी के 2 दिन के बाद मिली है रिहाई। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को दिल्ली कैबिनेट से मिल गई मंजूरी, राखी के त्यौहार पर पहली किश्त देगी दिल्ली सरकार, 1 अगस्त से शुरू होगा पोर्टल। संसद में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले मोदी सरकार पर हमलावर, बोली हर बात को पाकिस्तान और चीन के साथ जोड़ना गलत। सुप्रिया सुले ने कहा यह राजनीति नहीं छात्रों के भविष्य का मुद्दा है, जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई की एसआईटी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी छात्रों पर दर्ज की एफआईआर वापस ली जाएगी, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए, सीजेपी के साथ केंद्र सरकार के समझौते के बाद एक्शन। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में जांच के घेरे में है सरकारी कर्मचारी, मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार ले गई थी एसआईटी, अन्य संदिग्धों की दबिश जारी। उमे के आजाद मैदान में आयुष डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, सरकारी नौकरियों में एमबीबीएस डॉक्टर्स के जैसी प्राथमिकता की मांग। उमे के बड़े 5 क्लबों में एफएसएसएआई लाइसेंस निलंबित, खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पर एफडीए ने की है कार्रवाई। सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा फैसला, हरियाणा में 30 लाख तक के ईवी वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फ्री, 30 लाख से ज्यादा के वाहनों पर रजिस्ट्रेशन में 50% की छूट। गोरखपुर में सीएम योगी का ऐलान, अधिवक्ताओं को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। झारखंड के रांची मुख्य पुलिस मुख्यालय ने 16 नक्सलियों के एक साथ वहां आत्मसमर्पण किया, ऑपरेशन नवजीवन सेकंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। भोपाल में ही टोकन बंद करने से मूंग की 100% सरकारी खरीद को लेकर किसानों का प्रदर्शन, बैरिकेड्स लगाकर सीएम हाउस की ओर कूच किया, पुलिस ने रोका। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर म्यूजियम के निर्माण की तैयारियां तेज हुई, निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई 52 एकड़ भूमि। प्रस्तावित म्यूजियम से अलग अलग देशों के प्रसिद्ध मंदिरों के आर्किटेक्चरल मॉडल और उनके इतिहास और साथ ही धार्मिक महत्व को आधुनिक तकनीक के माध्यम से किया जाएगा प्रदर्शित। सावन को लेकर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारी तैयारियां पूरी, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बनाए गए हैं कुल 6 प्रवेश द्वार।
बाबा विश्वनाथ के दरबार में वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रोक, 5 जोन और 15 सेक्टर्स में बांटा गया पूरा इलाका। मंदिर के सोशल मीडिया के जरिए घर बैठे भक्त कर पाएंगे दर्शन। देवघर में सावन मेले की जोरदार तैयारियां, भीड़ प्रबंधन के लिए अलर्ट मोड पर है प्रशासन, एआई तकनीक से श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर नजर। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर साईं को भक्तों की अनोखी भेंट, सोने का नक्काशीदार मुकुट गुरु दक्षिणा के तौर पर किया गया अर्पण, 1,03,00,000 रुपए कीमत। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में सुबह गहरी खाई में गिरी अमरनाथ यात्रा की बस, घटना के बाद मौके पर प्रशासन मुस्तैद है, किया राहत और बचाव अभियान शुरू। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ धाम की यात्रा को फिर से रोका गया है, आज के लिए स्थगित की गई है पवित्र यात्रा। गुप्तकाशी में केदारनाथ हाईवे की पहाड़ी टूटने के बाद लिया गया बड़ा फैसला, यात्रा कंट्रोल रूम से हो रही है लगातार निगरानी, यात्रियों से खराब मौसम में यात्रा न करने की अपील। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन, पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर मलबे में तब्दील हो गया था रेस्टोरेंट, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मूसलाधार बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन हुआ, सामने आई है भूस्खलन की लाइव तस्वीरें, फिलहाल मार्ग बंद। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, बादलों से ढके पहाड़ों के बीच भारी बारिश का अनुमान। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी की चेतावनी स्तर के पार, जलस्तर 294 मीटर के खतरे के निशान से ऊपर। बागेश्वर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से उफान पर सरयू और गोमती नदी, तेज बारिश और भूस्खलन की वजह से लगभग 21 सड़कें बंद। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में फंसी 3 महिलाओं को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया, लड़कियों को बचाने गई थी महिलाएं अचानक से बाढ़ का पानी बढ़ जाने से फंस गई थी। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश का कहर, कई इलाकों में जलभराव और जनजीवन अस्त व्यस्त, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी में बारिश बन गई है मुसीबत, कनॉट प्लेस से मिंटो रोड तक पानी ही पानी, ट्रैफिक रफ्तार पर ब्रेक, पंचकुया रोड समेत कई इलाकों में बढ़ गई है परेशानी। बादलों की बरसातें राजधानी बेहाल, आईटीओ समेत कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम ने बढ़ा दिए लोगों की मुश्किलें। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में पानी ही पानी, कहीं दुकान तो घरों में पानी घुसा। भारी बारिश के बीच दिल्ली के संगम विहार इलाके में भी सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गंदे पानी सोकर आवाजाही करने के लिए मजबूर हुए लोग। मुजफ्फरनगर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल हुआ, कांवड़ मार्ग समेत कई इलाकों में जलभराव। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर, और आई कटरा गायघाट में बढ़ गया खतरा, प्रशासन की लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। पंजाब यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में बारिश के बाद भारी जलभराव के बीच हादसा, पानी के भरे हुए रास्ते से गुजरते समय बिजली का झटका लगने से पीएचडी स्कॉलर की मौत। घटना के बाद एबीवीपी का विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों में सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, घरों और स्कूलों में भर गया पानी, प्रशासन के लोगों से सावधानी बरतने की अपील। नागपुर में भारी बारिश की वजह से स्कूल में जलभराव में कई बच्चे फंसे, राहत और बचाव दल ने रस्सी के सहारे बच्चों को बाहर निकाला। पुणे के बारामती में भीषण सड़क हादसा, अचानक से फिसल गई बाइक और तेज रफ्तार ट्रक के नीचे जा घुसी, मौके पर 2 सगे भाइयों की जान गई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में हिट एंड रन की घटना, उबर कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी, करीब 500 मीटर तक घसीटा, आरोपी चालक गिरफ्तार। नागपुर में तेंदुए के शावकों से खिलवाड़ का वीडियो वायरल हुआ, रस्सी से बांधकर रखने के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू किया। गुजरात के बनासकांठा में तेल से भरा हुआ टैंकर पलट गया, सड़क पर फैला सरसों का तेल, भारी भीड़ लोगों की आंख भरने के लिए उमड़ी। सूरत में 2,67,00,000 के सोने चोरी कांड का खुलासा हुआ, शेयर बाजार का कर्ज चुकाने के लिए खुद संचालकों ने चोरी की थी, मालिक पिता पुत्र समेत 4 की गिरफ्तारी। पंजाब के संगरूर में बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला, सीसीटीवी फुटेज में दिखे 2 संदिग्ध, पुलिस ने दोनों को ही दबोचा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में भीषण आग लगी, आनंद फानम ने मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। बुलंदशहर में भारी बारिश के बीच खुले नाले में गिर गई थी 4th क्लास की छात्रा, स्कूल से घर लौटते समय हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के नालंदा में शादी से इनकार करने पर भाग रहा था प्रेमी, युवती ने रोका तो 100 मीटर तक बाइक से घसीटा, गुस्साए लोगों ने पिटाई कर डाली। भारी बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के नीचे भरभराकर गिरा एक डिवाइडर, एक शख्स के घायल होने की खबर। गुरुग्राम में फर्जी शादी और हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ, आरोपी वर्षा रानी समेत 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आगरा में ताजमहल में दक्षिण कोरियाई महिला पर्यटक पर बंदर का हमला, एम्बुलेंस पहुंचने में 1 घंटे की देरी हुई। बेगूसराय में ग्रामीणों को पिस्टल लहराकर धमका रहा था युवक, गांव वालों ने पकड़कर जमकर पीटा, पुलिस ने 1 कट्टा और 5 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। संभल में बारिश से बचने के लिए मिट्टी डालते समय हादसा हुआ, कच्चे मकान की छत गिरने से बच्ची समेत महिला की मौत हुई, 5 घायल हुए। श्रीलंका के दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान किया गया, शुभमन गिल को मिला टीम इंडिया का जिम्मा, केएल राहुल बने उपकप्तान। टेस्ट टीम में यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत को मिला है मौका, साई सुदर्शन, धूप जुरेल, जडेजा भी शामिल। टेस्ट टीम में सिराज, कुलदीप, मानक सुतार, बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, देवदत्त को भी जगह मिली।
पहली बार सारांश जैन और बरार की इंडियन टेस्ट टीम में एंट्री। सारांश जैन ने 54 फर्स्ट क्लास मैचों में 188 विकेट झटके हैं, 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं। 15 से 19 अगस्त तक गोल में खेला जाएगा पहला टेस्ट, जबकि दूसरा टेस्ट होगा 23 से 27 अगस्त के बीच कोलंबो के एसएससी मैदान पर। दिव्या खोसला आधिकारिक तौर पर बनी खोसला का घोसला 2 की स्टारकास्ट का हिस्सा, 26 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज किया गया, 14 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कहानी थ्री में यामी गौतम की एंट्री, विद्या बालन के बिना बनेगा कहानी का नया चैप्टर, 10 साल के बाद आ रहा है पार्ट 3। दीपक तिजोरी की गुजराती फिल्म गेट सेट गो का ट्रेलर रिलीज किया गया, 7 अगस्त 2026 को रिलीज होगी फिल्म। मार्वल फिल्म स्पाइडर ब्रांड न्यू डे का धमाकेदार तमिल एंथम रिलीज किया गया, दुनिया भर में 31 जुलाई को रिलीज होगी ये फिल्म। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात की, इस दौरान दोनों ही नेताओं ने रूस के साथ शांति वार्ता को फिर से शुरू करने की बात कही। व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की, दोनों ही नेताओं के बीच ईरान, गजा, लेबनान समेत कई मुद्दों पर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हम ईरान को अब और समझौते नहीं तोड़ने दे सकते, ईरान के मामले में हमारी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत। ईरान के हॉर्मुज मुद्दे पर सऊदी अरब और ओमान के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात हुई, हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर जोर दिया गया। वॉशिंगटन के कैपिटल बिल्डिंग में हुए समारोह में पूर्व सीनेटर लिंडसे ग्राहम को दी गई श्रद्धांजलि, अमेरिका के सांसदों ने अंतिम विदाई दी, 11 जुलाई को दक्षिण कैरोलिना में निधन हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लॉरेंस का मास्को में जोरदार स्वागत, रूसी सेना प्रमुख के साथ उच्च स्तरीय बैठक। यूक्रेन के सूमी इलाके में रूसी सेना का भीषण हमला, कई घर तबाह हुए, हमले में 3 बच्चों समेत 6 के घायल होने की खबर। जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू में 7.1 तीव्रता के भूकंप से तबाही, कई जगहों पर सड़कें उखड़ी, दीवारें गिरी, हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल। स्पेन और फ्रांस में जंगलों में भीषण आग से बड़ी तबाही, तेज हवाओं की वजह से फैल गई आग, स्पेन के पीएम सांचेस ने कहा आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। पूर्व महान फुटबॉलर जिनेदिन जिदान बने हैं फ्रांस फुटबॉल टीम के नए कोच, जिदान ने पूर्व हेड कोच डिएरियर की जगह ली है।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको उस परीक्षा हॉल के बारे में बताएंगे जहां पेपर लीक के मुद्दे पर देश की सियासत का सबसे कड़ा इम्तिहान चल रहा है। ये परीक्षा हॉल है देश की संसद, जहां अभी भी परीक्षा संशोधन बिल पर जोरदार बहस चल रही है। जब आप ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं तब भी देश की संसद में आज इस बिल पर चर्चा हो रही है और आज एग्जामिनर की भूमिका में है देश के युवा। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद के परीक्षा हॉल में सरकार पेपर लीक पर पास हो पाएगी। संसद में आरोप प्रत्यारोप के बीच आज हर पार्टी यह मानने पर मजबूर हुई कि युवाओं का आंदोलन ही था जिसने सरकार को संसद में यह विधेयक लाने पर विवश किया। आज आपको यह भी बताएंगे कि पेपर लीक के मामले में देश के तमाम राज्यों की जो सरकारें हैं वो भी कसूरवार है, तब उन्हें क्लीन चिट किसने दी, जबकि इन राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। क्या राज्य सरकारों की पेपर लीक पर कोई जवाबदेही नहीं और उस पर सवाल पूछ लेना गुनाह हो गया। इसके साथ ही आपको फेसबुक से जुड़े विवाद के बारे में बताएंगे जिसने सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे जेंजी युवाओं के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन 28 जुलाई की सुबह फेसबुक से ये वीडियो अचानक गायब हो गया और लिखा गया लीगल रिक्वेस्ट के कारण इसे रोका गया। बाद में मेटा ने सफाई दी कि ये कोई सरकारी आदेश नहीं बल्कि एक टेक्निकल ग्लिच था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो प्लेटफॉर्म्स देश के प्रधानमंत्री के वीडियो को गलती से हटा देते हैं ग्लिच की वजह से, वो फेक न्यूज, हेट स्पीच, डीप फेक, ऐसे अकाउंट्स पर लगाम क्यों नहीं लगा पाते। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम किसी राजनीतिक बयान, किसी आरोप या किसी बहस से नहीं करना चाहते। इस छात्रा का नाम था विधि सूर्यवंशी। हो सकता है आज ये नाम आपको याद ना हो सकता है आपने इसके बारे में कभी सुना ही ना हो, लेकिन अगर आज देश शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कर रहा है, अगर संसद में परीक्षा प्रणाली को लेकर गंभीर बहस हो रही है, अगर लाखों युवा सड़कों पर उतर कर एक बेहतर सिस्टम की मांग कर रहे हैं, तो उस पूरी कहानी की एक दर्दनाक कड़ी विधि सूर्यवंशी भी है। विधि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार की बेटी थी और वो अपने पिता और भाई से अक्सर कहा करती थी कि एक दिन डॉक्टर बनकर उनका नाम वो रोशन करेंगी। उस सपने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। हर घंटे की पढ़ाई में उसे अपने परिवार का भविष्य दिखाई देता था, वो और मेहनत करती। इसके लिए साल 2020 में उसने नीट की परीक्षा दी। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना टूट गया। रिजल्ट में उसके सिर्फ 6 अंक दिखाए गए। जरा सोचिए, जिस छात्रा ने सालों तक डॉक्टर बनने का सपना देखा, जिसने मेहनत का पूरा, जिसको भरोसा हो, जिसने दिन रात एक कर दिया हो, खाना पीना सब भूल गई हो, उसके सामने अगर अचानक ऐसा परिणाम आ जाए तो उसके मन पर क्या गुजरी होगी। 6 मार्क्स। विधि उस सदमे को सह नहीं पाई, उसने आत्महत्या कर ली। एक पल में एक बेटी चली गई, एक परिवार बिखर गया, एक घर की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। परिवार को यकीन नहीं हुआ कि इतनी मेहनत करने वाली विधि सिर्फ 6 अंक कैसे ला सकती है। उसके भाई ने उसकी OMR शीट और परीक्षा में सवालों के उत्तरों का मिलान किया। इसके बाद जो सच सामने आया उसने पूरे मामले को बदल दिया। नीट की उस परीक्षा में विधि के 6 नहीं बल्कि 590 अंक आए थे। उस साल की कट ऑफ लगभग 468 अंक थी, उससे कहीं ज्यादा। यानी वो सिर्फ पास नहीं हुई थी बल्कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने की हकदार थी। सोचिए, जिस लड़की ने यह मान लिया कि उसका सपना खत्म हो गया, असल में उसका सपना पूरा हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही एक तकनीकी गलती, एक लापरवाही, व्यवस्था की खामी ने उसकी जिंदगी छीन ली। आज हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि पुराने जख्म कुरेदे। हम इस कहानी को इसलिए सुना रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि आज जो आंदोलन दिखाई दे रहा है

पीछे सालों का दर्द इकट्ठा है। विधि अकेली नहीं थी, पिछले कई सालों में ना जाने कितने छात्र कभी पेपर लीक से, कभी रिजल्ट की गड़बड़ियों से, कभी सिस्टम की लापरवाही से, कभी सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम में गलत मार्किंग की वजह से, क्वेश्चन पेपर आंसर मार्क्स कुछ तालमेल ही नहीं, किसी का सपना टूट गया, किसी छात्र का एक साल चला गया। कुछ ऐसे भी थे जो अपनी पूरी मेहनत करते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो आइए आपको दिखाते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी हार बैठे थे ऐसे लोगों ने क्या सोचा। इसलिए अगर आज देश का जो जेन जी है वो युवा शिक्षा व्यवस्था को बदलने की मांग कर रहा है तो उसे केवल राजनीति कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। हकीकत में ये सब राजनीति के लिए नहीं हो रहा है और ये सरकार और विपक्ष के बीच पैदा हुए सिर्फ राजनीतिक टकराव का विषय नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अचानक इस मुद्दे पर इतना शोर क्यों मच गया, उन्हें एक बार इन बच्चों की कहानियां जरूर पढ़नी चाहिए, उनके घरों में जाकर देखना चाहिए कि एक परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद, सालों की मेहनत भविष्य का नाम होती है। सोचिए कि 5-6 मार्क्स आना, बच्ची का सुसाइड करना और बाद में पता चलना कि उसके तो टॉपर वाले मार्क्स थे। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या करना समाधान नहीं है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को ये विश्वास होना चाहिए कि किसी भी परीक्षा से बड़ी उसकी जिंदगी है। लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि हम ये स्वीकार करें कि अगर हमारी व्यवस्था बार बार बार बार बच्चों को इस हद तक तोड़ रही है तो उनका आत्मविश्वास, उनका भविष्य, कभी कभी उनकी जिंदगी छीन रही है, तो ये समस्या सिर्फ बच्चों में नहीं, समस्या इस व्यवस्था में है। और शायद किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि वो अपने बच्चों के सपनों की रक्षा करे। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब एक परीक्षा की गलती किसी भी छात्र की जान ले लेती है तब वो सिर्फ एक प्रशासन

0: विधि के मामले में एनटीए ने आज तक कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है, लेकिन उसका और उसके जैसे दूसरे छात्रों का परिवार आज इस दर्द को अपने अंदर समेटे हैं और उसे उम्मीद है कि शायद इस आंदोलन से कुछ तो बदलाव आएगा। आज संसद में इसकी शुरुआत भी हुई और पेपर लीक के खिलाफ जो नया संशोधित बिल आया है उस पर सरकार की तरफ से चर्चा कराई गई। अगर संक्षेप में देखें तो इस चर्चा के कुल पांच बड़े बिंदु जो हैं, पांच पॉइंट्स आते हैं। पहला, संसद में शिक्षा व्यवस्था, एनटीए और परीक्षा प्रणाली पर केंद्र सरकार को व्यापक जवाबदेही का सामना करना पड़ा। दूसरा, सरकार ने नए संशोधन बिल को पेपर लीक के खिलाफ समाधान बताया, जबकि विपक्ष ने पूछा कि जब 2024 का कानून ही असरदार नहीं हुआ तो नया कानून क्या बदल देगा। इस चर्चा का एक बड़ा केंद्र यह भी रहा कि पेपर लीक के मामलों में सख्त कानून बनाने से क्या जरूरी ज्यादा यह है कि इन मामलों की अच्छे से जांच हो, दोषियों को सजा दिलाई जाए। इसी चर्चा में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने माना कि छात्रों के आंदोलन ने सरकार को परीक्षा सुधारों पर नया विधेयक लाने और व्यापक चर्चा के लिए मजबूर किया है। और इस मुद्दे पर संसद में हुई राजनीति और आरोप प्रत्यारोप के बीच लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत दिखी कम से कम कि पेपर लीक देश के युवाओं के भविष्य पर हमला है, परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार अब टाले नहीं जा सकते। तो सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है कि आज हमारे जेन जी युवाओं ने शिक्षा को इस वक्त का सबसे बड़ा राष्ट्र मुद्दा बनाया और संसद ही नहीं बल्कि हर घर में इसके बारे में बात हो रही है। आज लोकसभा में दोपहर 2 बजे से पेपर लीक संशोधन बिल पर तीखी बहस शुरू हुई, जिस पर सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी बातें रखी और हम चाहेंगे कि इन बातों पर आप भी इनको ध्यान से सुने। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार संसद में होने वाली चर्चा राजनीतिक खबरों तक सीमित रह जाती है, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो इस देश के युवाओं, उनके भविष्य से जुड़ा और यहां पर आपकी बात हो रही है। सबसे पहले देखिए कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ नए संशोधन बिल पर क्या कह रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि साल 1992 और 2010 में परीक्षा सुधारों के लिए कई सिफारिशें की गई थी, लेकिन तत्कालीन यूपीए और कांग्रेस सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। एनटीए का प्रस्ताव भी यूपीए के समय आया था जिस पर अमल नहीं हुआ। इन बातों को देखते हुए सरकार ने यह बताने की कोशिश की कि पेपर लीक को लेकर सरकार की नीति और नियत पूरी तरह ईमानदार है और भारत के बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा। अब सरकार के इन आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। उन्होंने संसद में जो आंकड़े रखे वो हैरान करने वाले थे। उन्होंने बताया कि 2024 के नीट पेपर लीक में 45 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें 44 को आज जमानत मिल चुकी है। यही नहीं, इस पेपर लीक में जो मास्टरमाइंड 11 महीने तक फरार रहा और 2025 में उसकी गिरफ्तारी हुई, वो भी बेल पर छूट चुका है। गौरव गोगोई ने संसद में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भी सवाल उठाए और ये कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद सदन में लौटे तो सरकार ने उन्हें ऐसा माला पहनाई जिसे वो पाकिस्तान से जंग जीत कर आए। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर एनडीए के डीजी को हटा दिया गया, एनटीए के डीजी को हटा दिया गया तो चेयरमैन को क्यों नहीं बदला गया। सुनिए,
1: हम जानना चाहते हैं आपने एनटीए के डीजी को बदला और एनटीए के चेयरमैन को रखा, ऐसा क्यों? आपको एनटीए के डीजी पर विश्वास नहीं, आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, आपने ये भी मान लिया, तो आपको एनटीए के चेयरमैन पे इतना विश्वास क्यों, ये हम जानना चाहते हैं।
0: इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी आज कितनी बड़ी पार्टी बन गई है और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भगवान के दरबार का चढ़ावा और दान नहीं बचा सके वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। हालांकि इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई और अखिलेश यादव से ये पूछा कि अगर सरकार छात्रों के आंदोलन के बाद बिल लेकर आती है तो ये लोकतांत्रिक तरीका अच्छा है या आंदोलन कुचलने के लिए इमरजेंसी लगा देना अच्छा है। सुनिए,
2: आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको तो संकट से बचा लिया। और अगर
3: अखिलेश जी तो समाजवादी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए।
2: अध्यक्ष महोदय मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया।
0: बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी ने भी पेपर लीक पर सरकार को 3 सुझाव दिए हैं। पहला, फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमों के निपटारे की कड़ी निगरानी हो। दूसरा, जांच प्रक्रिया को तेज करने के लिए फोरेंसिक विभागों में खाली पड़े पदों को तुरंत भरा जाए। और तीसरा, शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह नॉन प्रॉफिट बनाना जरूरी है।
4: The bill which they are bringing today, you are not addressing the core issue.
5: Yes.
4: The core issue is NEET. NEET is not necessary. NEET is not uniformity. NEET is against the students, the first time students who are coming from the first generation students who want to become doctors.
6: Even now, if you look at it across the states, if you look at it in various states, 40% of the forensic positions are still lying vacant, sir. We make this education as a not-profit, keep it not-profit, and eligible for every student across the country, sir. I request the government to look at it very seriously, sir.
0: आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर कई सवाल उठाए। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले प्रहलाद जोशी पर बड़ा हमला कर दिया। सुनिए,
7: पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा, उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। इस नई कमेटी में तो एक XIB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर सच है, आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
0: इसी के बाद बहुत सारे आरोप प्रियंका वाड्रा गांधी ने लगाए। ये आरोप लगा रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सरकार ने एक ऐसे नेता को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जो एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर सहमति व्यक्त कर रहे थे। यहां प्रियंका गांधी वाड्रा उसी मामले का जिक्र कर रही थी जिसमें शिक्षा मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के मामले में 11 दोषियों के समय से पहले रिहा होने के फैसले का बचाव किया था। और ये मामला जब संसद में उठा तो इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया। लेकिन बाद में संसद से बाहर आकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी बात को फिर से दोहराया। क्या कहा सुनिए।
8: द बीजेपी पुट्स अ मैन हु इज अ डिफेंडर ऑफ रेपिस्ट्स, दैट्स द मोस्ट फिल्थी टाइप ऑफ मैन। देयर कैन बी नो फिल्थियर मैन देन समबडी हु सेज दैट रेपिस्ट्स नीड प्रोटेक्शन। That is the education minister of India. It's strange. It's a strange reaction from the prime minister. That there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects rapists.
5: क्वाइट अमेज्ड है
9: मैम. ऑथेंटिकेट करना है या अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट. मैंने
10: वीडियो
9: है वीडियो भी है उस समय का. आप समझ भी नहीं.
0: इस पूरी राजनीति को देखकर आज सिर्फ एक बात याद आती है. अब तक इस देश में बच्चों की परीक्षा ली जाती थी लेकिन आज वही बच्चे इस देश की राजनीति की परीक्षा ले रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बच्चों के सामने प्रश्न पत्र रखा जाता था और आज बच्चों ने नेताओं के सामने सवालों की एक कॉपी खोल दी है. ये बदलाव बहुत बड़ा है क्योंकि पहली बार देश का युवा सिर्फ अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहा बल्कि पूरे सिस्टम को पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग कर रहा है. वो ये नहीं कह रहा कि मुझे किसी तरह नौकरी दे दीजिए. वो कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें मेहनत करने वाले हर छात्र को न्याय मिले. सबसे अच्छी बात यह है कि यह सवाल किसी एक पार्टी से नहीं पूछा जा रहा. जहां जिस पार्टी की सरकार है वहां उसी से जवाब मांगा जा रहा है. कहीं पेपर लीक पर सवाल है, कहीं भर्ती में देरी पर सवाल है, कहीं परीक्षा व्यवस्था पर सवाल है, कहीं शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल है. यानी अब युवा राजनीतिक झंडे लेकर नहीं अपने भविष्य को लेकर खड़ा है और यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे अच्छी तस्वीर होती है. लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने का नाम नहीं है. लोकतंत्र का असली मतलब है जनता नेताओं से सवाल पूछ सके. और अगर इस देश के युवा शिक्षा रोजगार अपने भविष्य पर सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा लोकतंत्र और परिपक्व हो रहा है. आप खुद सोचिए किसने सोचा था कि इस देश की संसद में राजनीतिक मुद्दों से इतर शिक्षा के मुद्दे पर गंभीर चर्चा के लिए ये नेता मानेंगे. और हमें लगता है कि यही भारत के लोकतंत्र की एक नई परीक्षा है. इस परीक्षा में पास वही होगा जो युवाओं का भरोसा जीत पाएगा. यानी इस बार रिपोर्ट कार्ड बच्चे लिख रहे हैं. ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो लोग पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के इस मुद्दे को सिर्फ मोदी सरकार की घेराबंदी का मुद्दा बना रहे हैं वो गलती कर रहे हैं. अगर आपको यकीन ना हो तो इस जरा इन घटनाओं पर एक बार नजर डालकर देखिए. महाराष्ट्र में 28 जून को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा होने वाली थी लेकिन उससे पहले खुलासा हुआ कि इस परीक्षा के का पेपर लीक हो चुका है और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है. पंजाब में भी फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल रैकेट पकड़ा गया. वायरलेस ईयरपीस, मॉडिफाइड मोबाइल फोन्स जैसे उपकरणों के जरिए परीक्षा में धांधली कराने की कोशिश की गई. 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी को जो मौजूदा सेमेस्टर है उसकी 2 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी. क्यों? क्योंकि आरोप यह लगा कि इन परीक्षाओं का पेपर पहले ही लीक हो गया था और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है. कर्नाटक में भी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे जिसके कारण परीक्षा के पास हुए उम्मीदवारों की सूची रोकनी पड़ गई. पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है. कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है. झारखंड में तो कमाल ही हो गया है. झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती घोटाले की जांच लगातार तेज हो रही है. सीआईडी ने पूर्व अध्यक्ष तक को पूछताछ के लिए बुलाया है और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच जारी है. इससे पहले भी हमने आपको बताया था झारखंड में एग्जाम में सोचिए बच्चों का एग्जाम देने के 1-2 घंटे पहले उनको मेल आ रहा था कि उनका सेंटर कहां पर है और वो सेंटर जहां पर वो मौजूद थे वहां से 1-2-3-3 घंटे की दूरी पर. इसीलिए हम कह रहे हैं समस्या किसी एक राज्य की नहीं है, समस्या किसी एक सरकार की नहीं है, समस्या उस व्यवस्था की है जिस पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है. और जो लोग राजनीति में उसको उलझाकर कहते हैं कि यहां की बात मत करो, वहां की बात मत करो, वहीं की बात करो, वो सिर्फ भटकाना चाहते हैं. इन राज्यों में सरकार अलग अलग है लेकिन सवाल एक ही है कि क्या पेपर लीक को राजनीतिक पार्टियां सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ एक मुद्दा मानेंगी या वो अपने राज्यों में भी पेपर लीक के खिलाफ कदम उठाएंगी और इसमें बीजेपी के राज्य भी शामिल हैं. कई लोगों ने इन राज्यों में भी पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली को लेकर शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे का मुद्दा उठाया. लेकिन क्या आप जानते हैं इन राज्यों में शिक्षा मंत्री कौन है और कितने राज्यों के शिक्षा मंत्री दागी है? तो हमने सोचा कि इन माननीयों के बारे में जरा सा आपको बताया जाए. वो माननीय जो शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं. सबसे पहले बात झारखंड की करते हैं. झारखंड को साल 2001 में एक अलग राज्य बनाया गया था. और तभी से वहां पेपर लीक के मामले हर साल आते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को पिछले 21 सालों में अलग अलग भर्तियों के लिए 21 परीक्षाएं करानी थी, जिनमें वो 13 परीक्षाएं ही करा सका और इनमें भी सभी परीक्षाएं अलग अलग विवादों और गड़बड़ियों से घिरी है। इनमें भी एक परीक्षा तो ऐसी है जिसके लिए साल 2015 में भर्ती निकाली गई थी, लेकिन आज तक ये परीक्षा नहीं हो पाई है। साल 2024 में जब ये परीक्षा हुई तब शाम को ही ये खबर आ गई कि इसका पेपर लीक हो चुका है, जबकि दूसरी बार जब ये परीक्षा कराई गई और इसके लिए सरकार ने इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया तब भी पेपर लीक हो गया और आज ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है। ये स्थिति भी तब है जब हेमंत सोरेन 2019 से लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के शिक्षा मंत्री भी वही हैं। इससे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या हेमंत सोरेन के शिक्षा मंत्री रहते जो पेपर लीक हुए उनके लिए उनका इस्तीफा मांगा जाएगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि झारखंड में पेपर लीक की कहानियां हजारों युवाओं का दिल तोड़ने वाली कहानियां हैं। जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा लीक हुई उसमें सीआईडी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें अभय तिवारी नाम का आरोपी भी शामिल है। इसने झारखंड लोक सेवा आयोग में 5 बार सरकारी नौकरी की परीक्षा पास की है। उसका भाई, उसकी पत्नी भी झारखंड सरकार में नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा यह आरोपी पहले उस कंपनी में प्रबंधक का काम संभालता था जिसे झारखंड में परीक्षा कराने का ठेका मिला हुआ था और इस कंपनी ने जो परीक्षाएं कराई वही बाद में लीक हुई। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर अब यह दिखाना चाहती हूं कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था पर इतनी बहस तो हो रही है लेकिन कई राज्यों के शिक्षा मंत्री ऐसे हैं जो दागी हैं और उन जिनके खिलाफ सोचिए आपराधिक मामले दर्ज है। तो हमने सोचा कि हर जगह का देखिए, कांग्रेस की भी सरकार है, बीजेपी की भी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी सरकार है, टीडीपी की भी सरकार है, लेकिन आप देखिए कि कितने कितने मामले हैं। तो सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, तो वो है ये देखिए तेलंगाना। शिक्षा मंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी, इन पर कितने मामले चल रहे हैं जरा ये वाले कलर से दिखाते हैं तो साफ दिखेगा, 89, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आइए तो आपराधिक मामले डीके शिव कुमार के खिलाफ हैं 19 और वो फिलहाल डीके शिव कुमार है शिक्षा मंत्री। अब आ जाइए आप 17 के साथ टीडीपी की सरकार सहयोगी है बीजेपी की, 17 मामले हैं नारा लोकेश पर, वो शिक्षा मंत्री है। फिर आइए राजस्थान, शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, 14 आपराधिक मामले, 14। उसके बाद आ जाइए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यहीं पर है शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन, 5 आपराधिक मामले उन पर हैं। फिर आ जाइए उत्तर प्रदेश जहां पर योगेंद्र उपाध्याय है उच्च शिक्षा मंत्री, ये आपको योगेंद्र उपाध्याय का चेहरा देखिए, 4 आपराधिक मामले हैं इनके खिलाफ। उसके बाद से आ जाइए आपराधिक मामले 3 वाले केरलम में एन शमशुद्दीन है शिक्षा मंत्री और 1 आपराधिक मामले वाले बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में उदय प्रताप सिंह ये हैं। तो ये सारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनके चेहरे आप देख लीजिए और इसी के साथ साथ उनके बगल में बने जो

0: आप लोगों ने इससे पहले की कई परीक्षाओं को आप लोगों ने देखा है, कितनी सफलतापूर्वक परीक्षाएं हुई। आप पिछले जो हमारे विपक्ष के लोगों के कार्यकाल को देखें, उसमें उन लोगों ने कितने एग्जाम्स कराए और हम लोगों ने इतने दिनों में कितने एग्जाम्स कराए, कितने सफलतापूर्वक कराए। चूंकि ये सिस्टम में बहुत बड़ा ये है, मतलब कुछ एक्टिविटीज हैं जहां एक एक समय पर ही पकड़ में आते हैं, छुपे छुपे लोग हैं, बरसों से जगह जगह पर बैठ करके गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं।
1: पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है, पंजाब में पेपर लीक।
2: लेकिन सर बच्चों ने प्रदर्शन किया पंजाब में, उसका कोई असर नहीं, नहीं। बच्चे भी कहीं दिखा है, कई जगह पंजाब में बच्चों ने भी वो किया है, प्रोटेस्ट किया है बकायदा, वहाँ भी एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे वहाँ पर जवाब दे।
1: पंजाब आज पहली बात तो जो है एजुकेशन मिनिस्टर का वो डिपार्टमेंट, वो तो फार्मेसी है, वो तो मेडिकल, वो हेल्थ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है।
2: तो क्या हेल्थ मिनिस्टर पता क्या सर?
1: नहीं नहीं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ही ये क्लियर किया, देयर वॉज नो चीट, नो पेपर लीकिंग, ओनली चीटिंग चल रही थी जो कि रोक दी गई, वही एग्जाम हुआ है सक्सेसफुली।
3: आम्ही तर टीईटीच्या परीक्षेमध्ये घोटाळा होतो लक्षात आल्याबरोबर परीक्षा व्हायच्या आधी घोटाळेबाजांना पकडलं आणि त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई देखील केली, त्यामुळे आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं पायचं वाकून हे बंद करा।
4: हमारे देश में जब भी पेपर लीक की बात होती है, जब भी शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर सवाल उठते हैं, तब एक सवाल बार बार पूछा जाता है। वो सवाल ये होता है कि आखिर हर किसी को सरकारी नौकरी की चर्चा क्यों हो। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि ये सवाल असली मुद्दे से ध्यान भटकाता है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि युवाओं को सरकारी नौकरी क्यों चाहिए और चाहिए, असली सवाल यह है कि देश में ऐसी कितनी नौकरियां हैं जहां एक युवा सम्मान के साथ अपना भविष्य बना सके। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था आज के भारत के लिए बच्चों को तैयार कर रही है, या वो बीते हुए भारत के लिए इन बच्चों को तैयार कर रही है। एक समय था जब सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती थी बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद होती थी। गांव का किसान, रिक्शा चलाने वाला पिता, दिहाड़ी मजदूर, छोटी दुकान चलाने वाला परिवार, सब अपने बच्चों से कहते थे कि बेटा पढ़ लिख लो, सरकारी नौकरी मिल गई तो जिंदगी बन जाएगी। उस समय ये सोच अलग थी क्योंकि तब देश में निजी उद्योग कम थे, बड़ी कंपनियां नहीं थी, टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार नहीं था, हाई स्किल नौकरियों का बाजार नहीं था, इसलिए उस दौर में पढ़ाई का सबसे बड़ा मकसद सरकारी नौकरी बन गया। इसी सोच ने कोचिंग इंडस्ट्री को जन्म दिया, लाखों परिवार ने अपनी बचत बच्चों की पढ़ाई पर लगाई और फिर एक पूरा जैसे दुनिया बदल गई। नई टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डिजाइन, एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन एनर्जी, न जाने कितने नए क्षेत्र पैदा हुए, दुनिया बदली। लेकिन सोचिए क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बदली, और यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे स्कूल्स का सिलेबस बहुत धीरे धीरे बदला, कॉलेजेस में आज भी लाखों छात्र ऐसी डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं जिनकी बाजार में बहुत कम मांग है। और सोचिए जब ये हालात बनते हैं तो इसी देश के छात्रों से पूछा जाता है कि वो सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। जब आप छात्रों को आजकल की नौकरियों के हिसाब से शिक्षा नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे। हमारे देश में सरकारी नौकरियां कुल रोजगार का सिर्फ लगभग 4-5% है, मतलब 95% रोजगार और नौकरियां सरकारी नहीं है। लेकिन क्या फिर भी किसी ने सोचा कि लाखों युवा उन्हीं 4-5% नौकरियों के पीछे आखिर क्यों भागते हैं। इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं है कि बाकी व्यवस्था उन्हें एक स्थिर, एक सम्मानजनक, एक सुरक्षित रोजगार दे पाएगी। और जब उन्हीं कुछ सरकारी नौकरियों की परीक्षा का पेपर भी लीक हो जाए तो जरा सोचिए उस युवा पर क्या बीतती होगी जिसने 2-2 साल तक कमरे में बंद होकर सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी की। यही गुस्सा आज सड़कों पर दिखाई दिया, और यह गुस्सा सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, यह गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ है जो युवाओं से मेहनत तो मांगती है लेकिन उन्हें भरोसा नहीं दे पाती। हम अक्सर सुनते हैं कि देश में धर्म खतरे में है, संस्कृति खतरे में है, पहचान खतरे में है, लेकिन आज अगर कोई चीज सचमुच खतरे में है तो वो है भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये शब्द थोड़ा कठिन लगता है लेकिन इसी में आज के आंदोलन की पूरी सच्चाई छिपी है। जब किसी देश में काम करने की उम्र वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं तब वो देश सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। यानी अगर युवाओं को सही शिक्षा मिले

0: सही स्किल मिले, सही नौकरी मिले, तो वही युवा पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल सकते हैं। और आज भारत इस दौर पे है। केंद्र सरकार कहती है कि देश की लगभग 69% आबादी है वो 15 से 64 साल की उम्र के बीच है, यानी ये वो पीढ़ी है जो काम कर सकती है, उत्पादन कर सकती है, देश को आगे ले जा सकती है। अगर हम इन लोगों को नौकरियां दें या उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करें तो शायद भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, और कई देशों ने ऐसा किया है। इसका फायदा जापान ने उठाया, दक्षिण कोरिया ने उठाया, चाइना ने उठाया, थाईलैंड, स्पेन, इटली ने उठाया। इन देशों ने अपने युवाओं को नौकरी दी, उद्योग लगाए, स्किल सिखाई, आर्थिक ताकत बन गए। अब वही मौका भारत के सामने है, लेकिन सवाल यही है कि क्या हम अपने युवाओं को वही मौका दे पा रहे हैं? आंकड़े कहते हैं कि अभी नहीं दे रहे हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार अप्रैल 2025 में 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर 13.8% थी, लेकिन जून 2026 तक ये बढ़कर 16.2% हो गई है। यानी हर 100 युवाओं में लगभग 16 ऐसे हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ किसी एक राज्य की कहानी नहीं है, पूरे देश का चैलेंज है। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, ये संकट लगभग हर राज्य में दिखाई देता है, और आप उसके लिए ये ग्राफिक्स को देख सकते हैं। लगभग हर पार्टी की सरकारों में उस वक्त जेंजी युवाओं में बेरोजगारी दर बढ़ रही है और कोई सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। ये भी तब हो रहा है जब इसी देश में नौकरी ढूंढने वाले कम होते जा रहे हैं। आमतौर पर बेरोजगारी तब बढ़ती है जब ज्यादा लोग नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है। भारत में नौकरी खोजने वालों की संख्या घट रही है लेकिन फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है, यानी बहुत से युवाओं ने उम्मीद ही छोड़ दी है। शायद ये सबसे बड़ा खतरा, और हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप देखिएगा बेरोजगारी दर, तो वापस से एक बार ग्राफिक्स दिखा दीजिए। केरलम 18.2% आप देख रहे हैं, वहां पर अब कांग्रेस की सरकार है, हालांकि अभी बनी है। तेलंगाना 18.1% कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 17%, 16.2% टीडीपी की सरकार गठबंधन में बीजेपी के साथ आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में टीवीके की सरकार है, दो राज्य राजस्थान और बिहार जहां पर 12% के साथ बीजेपी की सरकार है। ऐसे ही कांग्रेस की सरकार वाला कर्नाटक 8.6%, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश लगभग 8% है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार। हम हमेशा कहते रहे कि अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन आज पढ़ाई और नौकरी के बीच का रिश्ता भी कमजोर पड़ता जा रहा है। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि 2023 में लगभग 1,10,00,000 ग्रेजुएट युवा बेरोजगार थे। यानी समस्या अब सिर्फ अशिक्षित या कम पढ़े लिखे लोगों की नहीं है, डिग्री वाले युवा नौकरी के लिए जब भटकते हैं तो बड़ी दिक्कत है। क्या शिक्षा और नौकरी के बीच का जो कनेक्शन है वो कहीं कटा हुआ है? 1983 से 2023 के बीच देश में ग्रेजुएट युवाओं की संख्या लगभग 13 गुना बढ़ी, लेकिन इसी दौरान ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या वो 16 गुना बढ़ी। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड है। आज भारत की औसत उम्र लगभग 29 साल है, 2030 तक करोड़ों नए युवा नौकरी के बाजार में आएंगे। अगर हम अब भी उन्हें वही पुरानी शिक्षा देंगे, वही पुरानी सोच देंगे, नई अर्थव्यवस्था के हिसाब से उन्हें तैयार ही नहीं करेंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ उन युवाओं का नहीं होगा। पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ भर्ती का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ सरकार और विपक्ष की राजनीति भी नहीं है, ये भारत के भविष्य का सवाल है। क्योंकि अगर एक देश अपने युवाओं को अच्छी शिक्षा, सही कौशल, ईमानदार अवसर नहीं दे पाता तो वो सिर्फ नौकरियां नहीं खोता, वो अपनी अगली पीढ़ी का भरोसा खोता है, और किसी भी देश के लिए इससे बड़ा संकट कोई नहीं हो सकता। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से प्रधानमंत्री मोदी का जो 23 जुलाई का वीडियो है कुछ घंटे के लिए क्यों हटाया गया। सबसे बड़ी बात, जो कंपनी प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटा सकती है वही फेक खबरों, डीप फेक वाले अकाउंट्स को आखिर क्यों नहीं हटा पाती। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे जेंजी युवाओं को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है, युवाओं के भविष्य के साथ समझौता नहीं होगा। इस वीडियो को करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा। 28 जुलाई की सुबह कई सोशल मीडिया यूजर्स ने देखा कि ये फेसबुक वीडियो पर दिखाई नहीं दे रहा था। वीडियो की जगह ये लिखा था, इस कंटेंट को लीगल रिक्वेस्ट के कारण भारत में रोका गया है। यानी पहली नजर में ऐसा लगा कि किसी कानूनी आदेश या सरकारी अनुरोध के कारण इस वीडियो को हटाया गया है, लेकिन कुछ समय बाद मेटा ने सफाई दी कि ये किसी कानूनी कार्रवाई का मामला नहीं था बल्कि एक टेक्निकल ग्लिच यानी तकनीकी गलती थी और इसके बाद इस वीडियो का वो फेसबुक इंस्टाग्राम पर दोबारा बहाल कर दिया गया। अब इस घटना के बाद बड़ा सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे और क्या इसके पीछे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर दिन करोड़ों पोस्ट, वीडियोस, तस्वीरें अपलोड होती हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कंटेंट को संभालने के लिए कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिस्टम, मशीन लर्निंग मॉडल, ऑटोमेटेड फिल्टर, कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती हैं। ये सिस्टम कुछ शब्दों, तस्वीरों, विषयों, संदर्भों के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि कोई कंटेंट नियमों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए यौन उत्पीड़न को लेकर ऐसी या आत्महत्या कोई संवेदनशील जानकारी हो जो लोगों को विचलित कर सकती है, इस पर कोई वीडियो या पोस्ट है तो इसे कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम हाइड कर देता है या उसे हटा देता है। अब यह होता सिर्फ संवेदनशील मामलों में है, लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं और इसी वजह से अब इस मामले में फेसबुक और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यानी सवाल यह है कि क्या फेसबुक ने नीट के मुद्दे पर कोई ऐसा कीवर्ड या कंटेंट हाईलाइट किया जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो पोस्ट हट गया। और सोचिए अगर जंतर मंतर आंदोलन और पेपर लीक को लेकर वाकई में ऐसा कोई कीवर्ड हाईलाइट हुआ होगा तो फिर इस मुद्दे पर और कितने लोगों के पोस्ट हटाए गए होंगे। इन्हीं बातों को देखते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। और यहां आपको यह भी सोचना होगा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो पोस्ट तो हटा देता है, लेकिन जिन डीप फेक अकाउंट से जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन को लेकर फेक न्यूज फैलाई गई, उन अकाउंट्स को ये कंपनियां नहीं हटाती या उन पोस्ट को नहीं हटाती। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसने खुद ऐसे 450 अकाउंट्स की पहचान की जो आंदोलन को लेकर झूठी खबरें फैला रहे थे और वो भी एआई के जरिए, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस को इन कंपनीज के पास जाकर ये बताना पड़ा कि इनके प्लेटफॉर्म कैसे फेक न्यूज का माध्यम बन गए हैं। यहां ये भी समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का फेसबुक अकाउंट कोई अगर आप देखिए तो एक राष्ट्राध्यक्ष का अकाउंट है, प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट है और उसमें टेक्निकल ग्लिच की बात की जा रही है। दुनिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और उनका अकाउंट सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। लेकिन यहां अगर जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीट पेपर लीक को एक वीडियो पोस्ट करते हैं तो पोस्ट हट जाता है और कंपनीज की मंशा पर सवाल उठते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री को फॉलो करने वाले लगभग 6.1 करोड़ लोग फेसबुक पर, वह इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ 10.5 करोड़ लोग। और यही वजह है कि सरकार ने इस मुद्दे पर मेटा के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी हेड को तलब किया। जानते हैं महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अब तक दुनिया में जितने भी पोस्ट को हटाया गया है, उनका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, उन सभी मामलों में कोई ना कोई विवाद था। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का एक्स अकाउंट निलंबित हुआ तो उसका कारण अमेरिकी संसद में हुई हिंसा थी। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया। 28 मार्च 2021 को जब वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का फेसबुक अकाउंट निलंबित हुआ तब भी उन पर झूठी खबर फैलाने का आरोप था। और 2021 में जब ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो का फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट बंद किया गया तब उन पर भी आरोप था कि उन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर गलत दावे किए थे।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है।
2: I think the explanation that it was a technical ground and that there was a technical glitch in the kind of discovery program that they had, the algorithm that they had to find this kind of content, does not appear to be an acceptable explanation in its entirety. We have sought more details. What was done was wrong. The authorized content from the authorized handle of the Prime Minister being removed is an extremely disturbing occurrence. It should have never happened. Meta realized that they had to apologize for this mistake, and their unconditional apology for the mistake is a good step.
0: दुनिया के सबसे बदनाम, अगली खबर का अब हम रुक कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बदनाम यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की मौत को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उसकी मौत के बाद भी रहस्यों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सवाल यह है कि एपस्टीन के हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का असली हकदार कौन बनेगा। हाल ही में अमेरिका के न्याय विभाग की सीक्रेट फाइल से यह ऐसा नाम सामने आया है जिसे सबको हैरान कर दिया। ये नाम है बेलारूस की एक गुमनाम डेंटिस्ट का। साल 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में आत्महत्या करने के बाद एपस्टीन अपने पीछे लगभग 600 मिलियन डॉलर की संपत्ति छोड़ गया। खबर है कि जेल में जान देने से सिर्फ 2 दिन पहले एपस्टीन ने अपनी वसीयत और ट्रस्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उसने अपनी सारी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा जो है अपनी 37 साल की गर्लफ्रेंड डॉक्टर कारीना शुल्याक के नाम कर दिया। दावा किया जा रहा है कि वसीयत में कारीना को करीब 950 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम, पेरिस और न्यूयॉर्क के आलिशान घर, करीबियन आइलैंड और 33 कैरेट की एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी मिलने का जिक्र है। दावा किया जा रहा है कि मौत से पहले एपस्टीन ने जेल से आखिरी कॉल भी कारीना को ही किया था। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलावट के इस दौर में सिर्फ धोखा ही है जो 100% शुद्ध मिल रहा है। नमस्कार।

0: देश में एक बार फिर संसद में देश के बच्चों के भविष्य सुरक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और लोकसभा में रात 11 बजे तक बहस के बाद अब कार्रवाई सुबह 11 बजे तक के लिए शुरू होने की बात कही गई है। आज लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे।
1: भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 6 करोड़ 30 लाख हो गई। यानी चार दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी, लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो जाती है। यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहां लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है।
2: इट इज ऑल्सो अ रिइटरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जीज रिजॉल्व नॉट टू अलाउ एनीवन टू कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया। एंड देयरफॉर दिस बिल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वे as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगी। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई।
3: आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
4: विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे।
5: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने, एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
6: छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा है, बता दीजिए।
5: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी।
3: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।
7: जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं।
8: जस्ट बिकॉज वी सपोर्ट दिस बिल डजंट मीन और द गवर्नमेंट शुड एक्सपेक्ट अस टू अपलॉड दोज हु सेट द वर्ल्ड ऑन फायर बिकॉज दे टर्न अप विद अ बकेट ऑफ वाटर।
9: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
0: महाराष्ट्र से सत्ता पक्ष से श्रीकांत शिंदे तो विपक्ष से सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी। वहीं बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया है कि नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर से जोरदार आंदोलन होगा।
10: पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लेने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों को नोटिस भेजकर थाने बुला रही है। रोहित ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा।
11: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और आंदोलन के दौरान, CJP आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए थे वो पीछे लेने की मांग की। हमारे साथ हैं एनसीपी नेता रोहित पवार जी। सर, आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, कल DG से भी मिले थे महाराष्ट्र के, क्या मांगे रखी और क्या उनकी तरफ से कहा गया?
12: तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी थे जो उस आंदोलन में वहां पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था या सहभाग लिया था। कल और आज में, कल हमने DG महाराष्ट्र के जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी उनसे मिले और जो मुंबई सिटी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों पे डाले गए, उनके जो CP है उनको अभी जाके हम मिले। दो विषय है, एक तो FIR हो गया, FIR अगर पीछे लेना है तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। अभी बिहार और आसाम का तो नोटिफिकेशन आ गया, अभी महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव राज्य है ऐसे हम सबको लगता था, लेकिन ये सरकार इतना स्लो है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो, इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम विनती वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये होने तक जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए।
10: रोहित पवार के साथ कई छात्र नेता भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक छवि के लोगों और छात्रों में फर्क करना सीखे।
13: CP सर से हमारी मुलाकात पॉजिटिव हुई, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी नई नोटिसेस बच्चों को दी नहीं जाएंगी। हमने ये भी शिकायत दाखिल की कि संडे के बाद भी, जब रेजिग्नेशन के बाद भी मुंबई में कहीं पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई तो भी नोटिसेस बच्चों को आ रही है। 23 तारीख के जिस दिन प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था, तो इस तरीके की नोटिसेस ना दी जाए। बच्चों को कॉल्स जा रहे हैं फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में बुलाने के, इस तरीके के कॉल्स बंद हो या फिर लाइव लोकेशन मांगना बंद हो। तो उन्होंने इस बारे में हमसे राजी किया है कि किसी भी तरीके के फोर्सफुल कॉल्स या फिर पुलिस स्टेशन में बुला के लेना, इस तरीके का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन से नहीं किया जाएगा।
11: कितने दिनों का समय देंगे कि केसेस वापस पीछे ले जाएं, नोटिफिकेशन निकालें?
14: मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आसाम ने और बिहार ने, और आज हमने देखा जब CP से मिल रहे थे उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, महाराष्ट्र के साथ जो 7 राज्य है जहां पे केसेस हुए उनके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लिया जाए। बस हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इसी हफ्ते में या फिर आज या फिर दो दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए या फिर बच्चे और भी मतलब प्रॉब्लम में हो कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से उस केसेस के विरोध में वो मैदान में ना उतरे। तो हम यही चाहते कि जिस प्रकार से फिर उस सीजीपी के आंदोलन में अलग अलग जो भी विद्यार्थी संगठन है जो रस्ते पे उतरे थे, तो बावजूद आप उन विद्यार्थी संगठन नेताओं के बावजूद आपने सभी लोगों के ऊपर वो एफआईआर किया है और लोगों के बीच में डर है, बच्चों के बीच में डर है, लेकिन बच्चे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो वही प्रशासन से विनती है कि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन लेके निकले या फिर बच्चे फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
10: वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के गृह विभाग को आदेश दिया कि वो छात्रों के हाल ही में हुए आंदोलन से जुड़े सभी एफआईआर वापस ले लें। ये कदम केंद्र सरकार के उस भरोसे के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के तहत नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने नीट पेपर लीक के विरोध में पाकिस्तान के कथित कनेक्शन पर कह दिया कि हम गजवाए हिंद करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
15: छात्रों का आंदोलन और गजवाए हिंद का कोई संबंध नहीं। एक तरफ अगर नीट के बारे में अगर आप प्रश्न उठा रहे थे तो फिर वही आंदोलन में सर तन से जुदा क्यों नारे दिए गए, हमारे हिंदू सनातन धर्म को क्यों गाली दिया गया, हमारे देवी देवताओं को क्यों गंदे गंदे उनके फोटो दिखाए गए, सर तन से जुदा अल्लाह और तकबीर, इसका क्या संबंध है नीट से। इसलिए नीट के बारे में जो कुछ भूमिका लेनी थी वो हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से ली है, उसका सभी प्रश्न हम छुड़ाएंगे। मगर उनके कंधों पे आप बंदूक रख के अगर कोई भी हमारे देश में अगर गजवाए हिंद कर रहा होगा ना तो सभी को हम मिट्टी में मिला देंगे।
16: हम भी यही कह रहे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं है, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए। और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई कुख्यात अपराधी है, कोई मर्डर किया हुआ है, हाफ मर्डर किया, उसको पकड़ लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। आप दोनों को एक चश्मे से मत देखिए, इनोसेंट इनोसेंट है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, दोनों को अलग चश्मे से देखिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए और जो अपराधी हैं भले ही उनकी उम्र 22-23 साल हो, अपराधी अपराधी, अपराधी कोई उम्र नहीं होती।
10: इस बीच बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी जो किसी भी तरह स्वीकार नहीं है।
17: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
10: वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा पर रोहित पवार ने कहा कि हम जैसा बिल चाहते हैं, बिल वैसा हुआ तो समर्थन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष संशोधन के लिए जरूरी सुझाव देगा।
18: नीतेश राणे जी जब बात करते हैं तो खुद के दिमाग से कभी बात नहीं करते, उनको बोला जाता है कि ये बात कर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। मैं सोच रहा था नीतेश राणे जी बहुत दिन से चुप क्यों है, वो हिंदुत्व के बारे में बहुत बोलते, कांग्रेस के वक्त कुछ और बोलते थे जब कांग्रेस में थे, अभी और कुछ बोल रहे, लेकिन जब अयोध्या में, पवित्र अयोध्या में प्रभु राम जी का जो मंदिर है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, जो उज्जैन में वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया, तो अभी ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं एक तो बहुत गलत है, और उसी के साथ अगर आप देखो तो करोड़ों बच्चे रास्ते पे आए थे, उन्होंने आंदोलन ये छेड़ा था, उन्होंने ये आंदोलन किया था, और ये वहाँ पे बच्चों को क्या AI से क्रिएट नहीं किया था या भारत के बाहर से इंपोर्ट तो नहीं किया था? अभी एकाध दूसरा अकाउंट कोई देश से होगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री या अगर इंफॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट होता है IT डिपार्टमेंट, वो तो आपके पास है, वो आप जो ब्लॉक करना है वहाँ पे करो ना, लेकिन बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो, क्या हो गया है, ईगो हर्ट हो गया है भाजपा का।
10: फिलहाल पेपर लीक प्रोटेस्ट और एंटी पेपर लीक बिल पर मचा घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में SIT एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा की महिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही से टीटी का पेपर लीक हो गया था, क्वेश्चन पेपर यहीं छापा गया था और यहीं से लीक हुआ था। एसआईटी लीक केस के मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता को लेकर गई थी बिहार, जिससे कि उसके नेटवर्क को खंगाला जा सके। अब तक इस पूरे मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
19: महाराष्ट्र टीचर यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक केस की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट भिवंडी में एक सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच भी कर रही है। एसआईटी मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर ले जा रही है, जिससे उसके पूरे पेपर लीक नेटवर्क को खंगाला जा सके।
20: एग्जामिनेशन के पहले ही इसको महाराष्ट्र पुलिस ने इसको ये किया था, डिटेक्ट कर लिया था, एग्जाम के पहले ही ये सब हुआ। और जब ये गुना दाखिल हुआ 27/6/2026 को, तब से लेके अभी तक इसमें 12 जो अक्यूज आरोपी है इनको अरेस्ट किया गया था। साथ में जो हम इसके जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र गुप्ता और इसका एक साथीदार है इंद्रजीत विजय सिंह, इनको कल समस्तीपुर में अप्रिहेंड किया गया। वहां से हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन जो है पटना, वहां में इनको अरेस्ट करके आज यहां पे लाया गया भिवंडी में। जी हमारा इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश में पता चलेगा और कौन कौन इसमें अक्यूज्ड है, और लग रहा है कि और कुछ इसमें अरेस्ट होंगे।
19: महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच में आगरा के माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही सामने आई है, जहां टीटी का प्रश्न पत्र छापा गया था और वहीं से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे थे, न ही यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। अब तक इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता के साथ ही और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी शामिल हैं।
21: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET पेपर लीक केस में पिछले शनिवार बिजेंद्र गुप्ता, जो कि इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बिजेंद्र गुप्ता से इंटेरोगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके हाथ में एक अहम कड़ी हाथ लगी है, और इस कड़ी को अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम फॉलो कर रही है, उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र शासन का एक कर्मचारी भी अब संदेह के धारा में है। आपको बता दें कि इसे अब चेक किया जा रहा है, और ये महाराष्ट्र शासन का जो कर्मचारी है उससे ट्रैक करने की कोशिश चल रही है, उसका रोल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो अंडर स्कैनर है। ये अहम जानकारी आज तक को पता चली है, आपको आज तक ये पहली जानकारी सामने ला रही है। आपको बता दें कि 15वां आरोपी जिसने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सोनू कुमार, जो पहले उसी प्रेस में आगरा में काम किया करता था जहां पर ये पेपर छपा था, टीईटी का पेपर, क्वेश्चन पेपर छपा था, उसने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 2 तारीख तक रिमांड में भेज दिया है।
19: ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के तहत भिवंडी पुलिस की टीमें उन खरीदारों की तलाश कर रही है जो परीक्षा से पहले महाराष्ट्र में टीईटी क्वेश्चन पेपर बांट और बेच रहे थे।
20: ये जो लोग हैं बार बार जो प्रिंटिंग प्रेस में जो एम्प्लॉयज है इनके कांटेक्ट में रहते हैं, इनको सिर्फ स्पेसिफिक पेपर के लिए नहीं तो रेगुलरली इनको पैसा वगैरह भेजते रहते हैं, इससे इनके रिलेशन आते हैं, और जो फिर इम्पोर्टेंट पेपर दिखता है इनको या बेच सकने का इनको जब समझता है तब ये फिर वहां से पेपर निकाल के ये लोग सेल के लिए आते हैं।
19: हैरानी की बात है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस को करीब 30 साल से सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेस में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी।
22: ये जो कोंगाव का जो CR दाखिल है TET के बारे में 281/26, इसमें जो आज जो 15वां आरोपी अरेस्ट हुआ है ये कल आत्मसमर्पण करने के लिए भिवंडी कोर्ट में आया था, हाईकोर्ट के एक वकील है उनके जरिए आया था, तो इसको कोर्ट ने हाजिर करके लिया, लेकिन इसको न्यायालयीन कोठड़ी में भेजने का हुक्म किया। वो हुक्म होने के बाद उसने आत्मसमर्पण करने के बाद आयोग का कॉल किया, आयोग ने जो पेपर रखे थे आयोग का कॉल हुआ और आयोग ने ऐसी मांग रखी थी कि इसको आयोग के कस्टडी में दिया जाए करके, तो कोर्ट ने उसकी जो मांग है आयोग की वो पूरी कर दी है और आयोग की कस्टडी में दिया गया था, और आज उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर किए थे। अब उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर करने के बाद उनको 2 अगस्त तक का पुलिस कस्टडी दी गई।
19: सवाल है कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने टीटी प्रश्न पत्र की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट आगरा की इसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया? क्या मंत्रालय या शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी इस लीक कांड में शामिल है?
21: सोनू कुमार बिजेंद्र गुप्ता का पुराना साथी है और पेपर लीक के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो माहिम पत्रम नाम का जो प्रेस है जहां पर ये पेपर छपा था, जो ये क्वेश्चन पेपर है टीटी का, वो पेपर छपा था, वहां पर ये पता चला पुलिस को कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी सीसीटीवी कवर नहीं था और कोई भी आ जा सकता था, और इसी वजह से वो पेपर वहां पर छपने के बाद आसानी से जो कर्मचारी थे वो अपने जूते में छुपा कर बाहर ले आए। इससे पहले भी ऐसा होते रहा होगा क्योंकि माहिम पत्रम ये जो प्रेस है ये बहुत साल से सरकारी क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिवेश सिंह, भिवंडी, आज तक।
0: एक कहावत है आपने जरूर सुनी होगी, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा चुप। क्या यही युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे पर राजनीति में होता है? जहां बीजेपी शासित राज्य में भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक हो, तो विपक्ष आक्रामक होकर प्रदर्शन करता है, लेकिन जब विपक्ष के शासन वाले राज्य में पेपर लीक, भर्ती धांधली होती है तो विपक्षी दल पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। यही झारखंड में हो रहा है जहां युवा नाराज हैं और सड़कों पर हैं।
1: देश में चलते संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित की बात करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक जाकर धरना देते हैं, संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं, छात्रों के हक में सवाल उठना चाहिए, सबका हक है, जरूरी भी है, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को ये पता है या नहीं कि उन्हीं की गठबंधन वाली सत्ता की नाक के नीचे हजारों छात्र परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर जेएमएम कांग्रेस शासित राज्य झारखंड की है, जहां भर्ती आयोग भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। रांची में नीले रंग का तिरपाल लगाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे वो बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी देने के नाम पर हुई परीक्षाओं में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से ठगने, रुलाने, दौड़ाने और भटकाने का आरोप है।
2: जो अभ्यर्थी हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे है और ठीक जंतर मंतर के तर्ज पे यहाँ पे देखिए अनिश्चितकालीन यहाँ धरना का कार्यक्रम जो है वो, सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह।
1: झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है, 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है, जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं।
4: सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हमारे, हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें, ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना सकें।
1: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां चार तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए, यानी जितने सवाल सॉल्व किए, उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर 4 है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है, वो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई, तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई।
23: TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है, जो लखनऊ की है, जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ, कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहाँ हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपया अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपया में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपया कहाँ से आ रहा है। तो 200 रुपया के लिए सरकार जो है, जो उसका जो जेपीसी का चेयरमैन और अध्यक्ष है, वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है, सीटों को बेचा जा रहा है। आज 14वीं जेपीसी सबके सामने आया है।
1: हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड एसएससी के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में, जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो,
24: कोई ऑप्शन नहीं है, घर वाले बस यही है कि
3: अच्छा इस बार हो जाएगा, हम भी अब उन्हें, हम उन्हें मतलब आसरा देते हैं, वो हमें ढांढस देते हैं, एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं इमोशनली, हम उन्हें कर समझाते हैं वो हमें समझाते हैं, ये स्थिति बना हुआ है।
5: भरोसे पे सब कुछ चल रहा है, ये परिवार वाले को भरोसा देते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और दो, और परिजन ये कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त और लो लेकिन कुछ कर के आओ, और वो हो नहीं पा रहा है जो ये करना चाहते हैं।
1: अब तक सीआईडी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एल खियांगते के घर तक छापा मारा गया। जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं, सीआईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है।
6: The agency, whatever agency that the commission has taken to do the work, at the point in which the work was given, at that point, the understanding is that the agency was not blacklisted.
1: दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करती है, और कांग्रेस राज्य में भर्ती में होती धांधली के आरोपों पर युवाओं के हक में प्रदर्शन करने बीजेपी उतरती है।
2: जेपीएससी के 14वें सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम में भारी अनियमितता के खिलाफ बीजेपी जेपीएससी कार्यालय पहुंची है। बैरिकेडिंग को जो लगाया गया था सुरक्षा के लिहाज से उसको तोड़कर, पहले बैरिकेडिंग को तोड़कर यहां बीजेपी के कार्यकर्ता आगे पहुंच चुके हैं।
7: पूरा लिपा पोती हो और इस राज्य में सरकार है प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री है कोई नहीं सुन, इस राज्य में सिंडिकेट का राज।
1: अब सवाल दो है, पहला तो ये कि बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं, और दूसरा सवाल क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है, या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद देश भर में जेंजी की चर्चाएं हैं, लेकिन अब जेंजी अल्फा भी चर्चाओं में आ चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक स्कूल के छात्र छात्राओं ने न सिर्फ बुनियादी चीजों के लिए प्रदर्शन किया है बल्कि प्रशासन को अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर भी कर दिया।
1: जंतर मंतर पर जेंजी के प्रदर्शन से उत्साहित होकर अब जैन अल्फा भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना जान चुके हैं। ये देश के जैन अल्फा का शायद पहला प्रदर्शन कहा जाए जिसने स्कूल प्रशासन को झुका दिया। जगह है उत्तर प्रदेश का फतेहपुर। यहाँ पर सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले इन बच्चों ने कॉलेज में बिजली और पानी के लिए आंदोलन किया।
24: लोग पानी, शुद्ध पानी नहीं है, पंखे से किरण आ रहा है, बच्चों को किरण मार रहा है, और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जब जब आ रहा है स्कूल बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं, और हम लोग सब लोग मिल के धरना दिए तो शिक्षकों को कोई तरह के नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा थे।
1: जेन जी के जंतर मंतर वाले आंदोलन की तरह जेन अल्फा के इस प्रदर्शन में बाबा साहब की तस्वीरें छात्रों के हाथों में दिखी। छात्रों ने अपनी मांगों को रखने का आत्मविश्वास वंदे मातरम के नारों के साथ सुना।
25: स्कूल की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है।
26: अच्छा, टंकी को लेके क्या कहे, पाए जल समस्या,
25: पानी से काई निकलती है, अच्छा पानी नहीं आता है,
26: सारी छात्रा इसी से पानी पीती है।
25: इसी से पीते हैं।
26: कितने कितने दिनों में सफाई होती है इसकी?
25: लगभग हफ्ते भर में।
26: अच्छा,
25: महीने महीने हो जाते हैं कभी।
1: फतेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले ये बच्चे कक्षा में पंखा, स्कूल में पीने का साफ पानी और शौचालय में गेट लगवाने की मांग लगातार करते आ रहे, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो फिर ये स्कूल के गेट के बाहर प्रदर्शन करने के लिए खुद ही उतर पड़े। इस प्रदर्शन की खबर मिली तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूल का निरीक्षण किया और इनकी सभी बातें मान ली। अब छात्रों को हर कक्षा में 4 पंखे, वायरिंग ठीक करवाने, साफ पानी के लिए एक आरओ लगवाने और क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए बेंच की व्यवस्था करवाने का आदेश दिया गया है।
27: प्रत्येक कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं और आज रात से लेके कल तक हम जाएंगे। वायरिंग जो है हमारी ओपन है, उसको हम लोग वायरिंग पाइप वाली कराने का रहेंगे। इसी तरीके से एमडीएम का जो मेनू है उसके अनुसार मात्रा और न्यूनू सुनिश्चित करा जाएगा। जो 6-7-8 के बच्चों को डेस्क बेंच चाहिए उनको एक महीने के अंदर डेस्क बेंच की व्यवस्था कराई जाएगी। पेयजल के लिए अलग एक आरओ और एक वाटर कूलर बच्चों के लिए उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब चीज़ें एक जो जल्दी हो सकती है वो जल्दी हो जाएगी।
1: जनरेशन अल्फा मतलब जिनका जन्म साल 2010 से 2024 के बीच हुआ, पहली ऐसी पीढ़ी है जिसने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बिना दुनिया नहीं देखी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि फतेहपुर में जनरेशन अल्फा को बुनियादी चीजें मांगने के लिए ही सड़क पर उतरना पड़ रहा है। प्रशासन इस प्रदर्शन के बाद अब सभी स्कूल की मूलभूत सुविधाएं जल्द से जल्द देने का वादा करता है, लेकिन खबरदार करता ये सवाल है कि इन स्कूली बच्चों को पीने के पानी, क्लास में पंखे और बेंच तक के लिए अगर सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो ये जो अधिकारी जिनका काम है निरीक्षण करना, स्कूल में बच्चों का ध्यान देना, वो कर क्या रहे हैं।
0: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सरमागरम बहस, संसदीय कार्य मंत्री का बयान, सियासत के चक्कर में विपक्ष ने बिल पर नहीं की बात, आज दोपहर 12:30 बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के आरोपों पर बिफरी बीजेपी, विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं करते सवाल, मोदी सरकार चला रही रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक पर लगेगी पक्की लगाम। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई है 75, शिवसागर गोलाघाट समेत 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित, सीएम हेमंता ने पीड़ित परिवार को 4 लाख के अलावा 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। और उत्पाद से कैंसर फैलाने वाले मुकदमों को रोकने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का प्रस्ताव अमेरिकी कोर्ट को दिया, 52,000 करोड़ रुपए का ऑफर, समझौते के लिए 95% दावेदारों की मंजूरी जरूरी। देश में एक बार फिर संसद में देश के बच्चों के भविष्य सुरक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और लोकसभा में 11:00 तक बहस के बाद अब कार्रवाई 11:00 तक के लिए शुरू होने की बात कही गई है। आज लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे।
1: भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 6,30,00,000 हो गई, यानी 4 दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी, लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1,10,00,000 हो जाती है, यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहां लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है।
2: इट इज ऑल्सो अ रिएट्रेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जीज रिजॉल्व नॉट टू अलाउ एनीवन टू कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया, एंड देयरफॉर दिस बिल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वे as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा, या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगी। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान, पेपर लीक, छात्रों पर लाठी चार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई।
3: आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
4: विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे।
5: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने, एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
6: छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा बता दीजिए।
5: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी।
3: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।
7: जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं।
8: जस्ट बिकॉज वी सपोर्ट दिस बिल डजंट मीन और द गवर्नमेंट शुड एक्सपेक्ट अस टू अप्लॉड दोज हु सेट द वर्ल्ड ऑन फायर बिकॉज दे टर्न अप विद अ बकेट ऑफ वाटर।
9: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
0: महाराष्ट्र से सत्ता पक्ष से श्रीकांत शिंदे तो विपक्ष से सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी। वहीं बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया है कि नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर से जोरदार आंदोलन होगा।
10: पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लेने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों को नोटिस भेजकर थाने बुला रही है। रोहित ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा।
11: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और आंदोलन के दौरान, CJP आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए थे वो पीछे लेने की मांग की। हमारे साथ हैं एनसीपी नेता रोहित पवार जी। सर, आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, कल DG से भी मिले थे महाराष्ट्र के, क्या मांगे रखी और क्या उनकी तरफ से कहा
12: तो
11: गया?
12: मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी थे जो उस आंदोलन में वहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था या सहभाग लिया था। कल और आज में, कल हमने DG महाराष्ट्र के जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी उनसे मिले और जो मुंबई सिटी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों पे डाले गए, उनके जो CP है उनको अभी जाके हम मिले। दो विषय है, एक तो FIR हो गया, FIR अगर पीछे लेना है तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। अभी बिहार और आसाम का तो नोटिफिकेशन आ गया, अभी महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव राज्य है ऐसे हम सबको लगता था, लेकिन ये सरकार इतना स्लो है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो, इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम विनती वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये होने तक जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेज भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए।
10: रोहित पवार के साथ कई छात्र नेता भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक छवि के लोगों और छात्रों में फर्क करना सीखे।
13: सीपी सर से हमारी मुलाकात पॉजिटिव हुई। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी नई नोटिसेस बच्चों को दी नहीं जाएंगी। हमने ये भी शिकायत दाखिल की कि संडे के बाद भी, जब रेजिग्नेशन के बाद भी मुंबई में कहीं पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई तो भी नोटिसेस बच्चों को आ रही है। 23 तारीख के जिस दिन प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था, तो इस तरीके की नोटिसेस ना दी जाए। बच्चों को कॉल्स जा रहे हैं फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में बुलाने के, इस तरीके के कॉल्स बंद हो या फिर लाइव लोकेशन मांगना बंद हो। तो उन्होंने इस बारे में हमसे राजी किया है कि किसी भी तरीके के फोर्सफुल कॉल्स या फिर पुलिस स्टेशन में बुला के लेना, इस तरीके का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन से नहीं किया जाएगा।
11: कितने दिनों का समय देंगे कि केसेस वापस पीछे ले जाएं, नोटिफिकेशन निकाले?
14: मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आसाम ने और बिहार ने, और आज हमने देखा जब सीपी से मिल रहे थे उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, महाराष्ट्र के साथ जो 7 राज्य है जहां पे केसेस हुए उनके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लिया जाए। बस हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इसी हफ्ते में या फिर आज या फिर 2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर बच्चे और भी मतलब प्रॉब्लम में हो कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से उस केसेस के विरोध में वो मैदान में ना उतरे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से फिर वो सीजीपी के आंदोलन में अलग अलग जो भी विद्यार्थी संगठन है जो रस्ते पे उतरे थे, तो बावजूद आप उन विद्यार्थी संगठन नेताओं के बावजूद आपने सभी लोगों के ऊपर वो FIR किया है और लोगों के बीच में डर है, बच्चों के बीच में डर है, लेकिन बच्चे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो वही प्रशासन से विनती है कि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले या फिर बच्चे फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
10: वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के गृह विभाग को आदेश दिया कि वो छात्रों के हाल ही में हुए आंदोलन से जुड़े सभी FIR वापस ले लें। ये कदम केंद्र सरकार के उस भरोसे के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि CJP के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के तहत नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने नीट पेपर लीक के विरोध में पाकिस्तान के कथित कनेक्शन पर कह दिया कि हम गजवाए हिंद करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
15: छात्रों का आंदोलन और गजवाए हिंद का कोई संबंध नहीं। एक तरफ अगर नीट के बारे में अगर आप प्रश्न उठा रहे थे तो फिर वही आंदोलन में सर तन से जुदा क्यों नारे दिए गए, हमारे हिंदू सनातन धर्म को क्यों गाली दिया गया, हमारे देवी देवताओं को क्यों गंदे गंदे उनके फोटो दिखाए गए, सर तन से जुदा।

0: नीट के बारे में जो कुछ भूमिका लेनी थी वो हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से ली है, उसका सभी प्रश्न हम छुड़ाएंगे। मगर उनके कंधों पे आप बंदूक रख के अगर कोई भी हमारे देश में अगर गजवाहीन कर रहा होगा ना, तो सभी को हम मिट्टी में मिला देंगे।
1: हम भी यही कह रहे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं है, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए। और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई कुख्यात अपराधी है, कोई मर्डर किया हुआ है, हाफ मर्डर किया, उसको पकड़ लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। आप दोनों को एक चश्मे से मत देखिए, इनोसेंट इनोसेंट है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, दोनों को अलग चश्मे से देखिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए, और जो अपराधी हैं भले ही उनकी उम्र 22-23 साल हो, अपराधी अपराधी हैं, अपराधी कोई उम्र नहीं होती।
2: इस बीच बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी, जो किसी भी तरह स्वीकार नहीं है।
3: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है। आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
2: वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा पर रोहित पवार ने कहा कि हम जैसा बिल चाहते हैं, बिल वैसा हुआ तो समर्थन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष संशोधन के लिए जरूरी सुझाव देगा।
4: नीतेश राणे जी जब बात करते हैं तो खुद के दिमाग से कभी बात नहीं करते, उनको बोला जाता है कि ये बात कर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। मैं सोच रहा था नीतेश राणे जी बहुत दिन से चुप क्यों है, वो हिंदुत्व के बारे में बहुत बोलते, कांग्रेस के वक्त कुछ और बोलते थे जब कांग्रेस में थे, अभी और कुछ बोल रहे, लेकिन जब अयोध्या में, पवित्र अयोध्या में प्रभु राम जी का जो मंदिर है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, जो उज्जैन में वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया, तो अभी ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं एक तो बहुत गलत है, और उसके साथ अगर आप देखो तो करोड़ों बच्चे रास्ते पे आए थे, उन्होंने आंदोलन ये छेड़ा था, उन्होंने ये आंदोलन किया था, और ये वहाँ पे बच्चों को क्या AI से क्रिएट नहीं किया था, या भारत के बाहर से इम्पोर्ट तो नहीं किया था? अभी एक आध दूसरा अकाउंट कोई देश से होगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री या अगर इंफॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट होता है, IT डिपार्टमेंट, वो तो आपके पास है, वो आप जो ब्लॉक कर रहे हैं वहाँ पे करो ना, लेकिन बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या हो गया है? ईगो हर्ट हो गया है भाजपा का।
2: फिलहाल पेपर लीक प्रोटेस्ट और एंटी पेपर लीक बिल पर मचा घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
5: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में SIT एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा की महिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही से TET का पेपर लीक हो गया था। क्वेश्चन पेपर यहीं छापा गया था और यहीं से लीक हुआ था। SIT लीक केस के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को लेकर गई थी बिहार, जिससे कि उसके नेटवर्क को खंगाला जा सके। अब तक इस पूरे मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
2: महाराष्ट्र टीचर यानी टीचर एजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक केस की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट भिवंडी में एक सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच भी कर रही है। SIT मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर ले जा रही है, जिससे उसके पूरे पेपर लीक नेटवर्क को खंगाला जा सके।
6: एग्जामिनेशन के पहले ही इसको महाराष्ट्र पुलिस ने इसको ये किया था, डिटेक्ट कर लिया था, एग्जाम के पहले ही ये सब हुआ। और जब ये गुना दाखिल हुआ 27/6/2026 को, तब से लेके अभी तक इसमें 12 जो अक्यूज्ड आरोपी है इनको अरेस्ट किया गया था। साथ में जो हम इसके जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र गुप्ता और इसका एक साथीदार है इंद्रजीत विजय सिंह, इनको कल समस्तीपुर में अप्रिहेंड किया गया। वहां से हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन जो है पटना, वहां में इनको अरेस्ट करके आज यहाँ पे लाया गया भिवंडी में। जी हमारा इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश में पता चलेगा और कौन कौन इसमें अक्यूज्ड है, और लग रहा है कि और कुछ इसमें अरेस्ट होंगे।
2: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में SIT की जांच में आगरा के माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही सामने आई है। जहां टीटी का प्रश्न पत्र छप

0: छापा गया था और वहीं से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे थे, न ही यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। अब तक इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता के साथ ही और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी शामिल हैं।
1: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET पेपर लीक केस में पिछले शनिवार बिजेंद्र गुप्ता, जो कि इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बिजेंद्र गुप्ता से इंटरोगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके हाथ में एक अहम कड़ी हाथ लगी है और इस कड़ी को अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम फॉलो कर रही है, उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र शासन का एक कर्मचारी भी अब संदेह के धारा में है। आपको बता दें कि इसे अब चेक किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र शासन का जो कर्मचारी है उससे ट्रैक करने की कोशिश चल रही है, उसका रोल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो अंडर स्कैनर है। ये अहम जानकारी आज तक को पता चली है। आपको आज तक ये पहली जानकारी सामने ला रही है। आपको बता दें कि 15वां आरोपी जिसने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सोनू कुमार, जो पहले उसी प्रेस में आगरा में काम किया करता था जहां पर ये पेपर छपा था, TET का पेपर, क्वेश्चन पेपर छपा था, उसने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 2 तारीख तक रिमांड में भेज दिया है।
0: ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के तहत भिवंडी पुलिस की टीमें उन खरीदारों की तलाश कर रही है जो परीक्षा से पहले महाराष्ट्र में TET क्वेश्चन पेपर पार्ट और बेच रहे थे।
2: ये जो लोग हैं, बार बार जो प्रिंटिंग प्रेस में जो एम्प्लॉयज हैं, इनके कांटेक्ट में रहते हैं। इनको सिर्फ स्पेसिफिक पेपर के लिए नहीं, तो रेगुलरली इनको पैसा वगैरह भेजते रहते हैं, इससे इनके रिलेशन आते हैं और जो फिर इम्पोर्टेंट पेपर दिखता है इनको या बेच सकने का इनको जब समझता है तब ये फिर वहां से पेपर निकाल के ये लोग सेल के लिए आते हैं।
0: हैरानी की बात है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस को करीब 30 साल से सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेस में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी।
3: ये जो कोंगाव का जो CR दाखिल है TET के बारे में 281/26, इसमें आज जो 15वां आरोपी अरेस्ट हुआ है, ये कल आत्मसमर्पण करने के लिए भिवंडी कोर्ट में आया था। हाईकोर्ट के एक वकील है, उनके जरिए आया था, तो इसको कोर्ट ने हाजिर करके लिया, लेकिन इसको न्यायालयीन कोठड़ी में भेजने का हुक्म किया। वो हुक्म होने के बाद उसने आत्मसमर्पण करने के बाद आयोग का कॉल किया, आयोग ने जो पेपर रखे थे आयोग का कॉल हुआ और आयोग ने उस ऐसी मांग रखी थी कि इसको आयोग के कस्टडी में दिया जाए करके, तो कोर्ट ने उसकी जो मांग है आयोग की वो पूरी कर दी है और आयोग की कस्टडी में दिया गया था और आज उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर किए थे। अब उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर करने के बाद उनको 2 अगस्त तक का पुलिस कस्टडी दी गई।
0: सवाल है कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने TET प्रश्न पत्र की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट आगरा की इसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया? क्या मंत्रालय या शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी इस लीक कांड में शामिल है?
1: सोनू कुमार बिजेंद्र गुप्ता का पुराना साथी है और पेपर लीक के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो माहिम पत्रम नाम का जो प्रेस है जहां पर ये पेपर छपा था, जो ये क्वेश्चन पेपर है टीटी का, वो पेपर छपा था, वहां पर ये पता चला पुलिस को कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी CCTV कवर नहीं था और कोई भी आ जा सकता था और इसी वजह से वो पेपर वहां पर छपने के बाद आसानी से जो कर्मचारी थे वो अपने जूते में छुपा कर बाहर ले आए। इससे पहले भी ऐसा होते रहा होगा क्योंकि माहिम पत्रम ये जो प्रेस है ये बहुत साल से सरकारी क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन बर्ने और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिवेश सिंह, भिवंडी आज तक।
4: एक कहावत है आपने जरूर सुनी होगी, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा चुप। क्या यही युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दों पर राजनीति में होता है? जहां बीजेपी शासित राज्य में भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक हो, तो विपक्ष आक्रामक होकर प्रदर्शन करता है, लेकिन जब विपक्ष के शासन वाले राज्य में पेपर लीक भर्ती धांधली होती है तो विपक्षी दल पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। यही झारखंड में हो रहा है जहां युवा नाराज हैं और सड़कों पर हैं।
5: देश में चलते संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित की बात करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक जाकर धरना देते हैं, संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं, छात्रों के हक में सवाल उठना चाहिए, सबका हक है, जरूरी भी है, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को ये पता है या नहीं कि उन्हीं की गठबंधन वाली सत्ता की नाक के नीचे हजारों छात्र परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर जेएमएम कांग्रेस शासित राज्य झारखंड की है, जहां भर्ती आयोग भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। रांची में नीले रंग का तिरपाल लगाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे वो बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी देने के नाम पर हुई परीक्षाओं में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से ठगने, रुलाने, दौड़ाने और भटकाने का आरोप है।
6: जो अभ्यर्थी हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे है और ठीक जंतर मंतर के तर्ज पे यहाँ पे देखिए अनिश्चितकालीन यहाँ धरना का कार्यक्रम जो है वो सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह।
5: झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है, 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है। जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं।
7: सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हमारे हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें, ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना सकें।
5: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां 4 तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर 4 है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई, तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई।
8: TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जो लखनऊ की है, जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ, कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहां हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपये अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपये में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपये कहां से आ रहा है। तो 200 रुपये के लिए सरकार जो है जो उसका जो जेपीसी का चेयरमैन और अध्यक्ष है वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है सीटों को बेचा जा रहा है। आज 14वीं जेपीसी सबके सामने आया है।
5: हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड एसएससी के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो,
9: कोई ऑप्शन नहीं है, घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा। हम भी अब उन्हें हम उन्हें मतलब आसरा देते हैं, वो हमें ढांढस देते हैं, एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं। इमोशनली हम उन्हें कर समझाते हैं, वो हमें समझाते हैं, ये स्थिति बना हुआ है।
10: भरोसे पे सब कुछ चल रहा है, ये परिवार वालों को भरोसा देते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और दो, और परिजन ये कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त और लो लेकिन कुछ कर के आओ, और वो हो नहीं पा रहा है जो ये करना चाहते हैं।
5: अब तक सीआईडी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एल खियांगते के घर तक छापा मारा गया। जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं, सीआईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है।
11: द एजेंसी व्हाटएवर एजेंसी दैट द कमीशन हैज टेकन टू डू द वर्क एट द पॉइंट इन व्हिच द वर्क वाज गिवन at that point the understanding is that the agency was not blacklisted.
5: Delhi mein BJP sarkar ke khilaf pradarshan congress karti hai aur congress raj mein bharti mein hoti dhandli ke aaropon par yuvaon ke haq mein pradarshan karne BJP utarti hai.
6: JPSC ke 14वें civil services prelim exams mein bhari anivyatta ke khilaf BJP JPSC karyalay pahunchi hai, barricading ko जो लगाया गया था सुरक्षा के लिहाज से उसको तोड़कर, पहले बैरिकेडिंग को तोड़कर यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता आगे पहुंच चुके हैं।
12: पूरा लिपापोती हो रहा, और इस राज्य में सरकार है प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री है कोई नहीं सुन, इस राज्य में सिंडिकेट का राज।
13: अब सवाल दो है, पहला तो ये कि बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं, और दूसरा सवाल क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है, या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद देश भर में जेंजी की चर्चाएं हैं, लेकिन अब जेंजी अल्फा भी चर्चाओं में आ चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक स्कूल के छात्र छात्राओं ने न सिर्फ बुनियादी चीजों के लिए प्रदर्शन किया है बल्कि प्रशासन को अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर भी कर दिया।
13: जंतर मंतर पर जेंजी की प्रदर्शन से उत्साहित होकर अब जेन अल्फा भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना जान चुके हैं। ये देश के जन अल्फा का शायद पहला प्रदर्शन कहा जाए जिसने स्कूल प्रशासन को झुका दिया। जगह है उत्तर प्रदेश का फतेहपुर। यहाँ पर सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले इन बच्चों ने कॉलेज में बिजली और पानी के लिए आंदोलन किया।
14: लोग पानी, शुद्ध पानी नहीं है, पंखे से किरण आ रहा है, बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं, और हम लोग सब लोग मिलकर धरना दिए तो सिस्टरों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा थे।
13: जेन जी के जंतर मंतर वाले आंदोलन की तरह जेन अल्फा के इस प्रदर्शन में बाबा साहब की तस्वीरें छात्रों के हाथों में दिखी। छात्रों ने अपनी मांगों को रखने का आत्मविश्वास वंदे मातरम के नारों के साथ सुना।
15: स्कूल की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है।
16: अच्छा, टंकी को लेके क्या कर पाए, जल समस्या,
15: पानी से काई निकलती है, अच्छा पानी नहीं आता है,
16: सारे छात्र इसी से पानी पीते हैं।
15: इसी से पीते हैं।
16: कितने कितने दिनों में सफाई होती है इसकी?
15: लगभग हफ्ते भर में।
16: अच्छा,
15: महीने महीने हो जाते हैं कभी।
4: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: संसदीय कार्य मंत्री का बयान, सियासत के चक्कर में विपक्ष ने बिल पर नहीं की बात, आज दोपहर 12:30 बजे बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के आरोपों पर बिफरी बीजेपी, विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं करते सवाल, मोदी सरकार चला रही रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक पर लगेगी पक्की लगाम। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई है 75, शिवसागर गोलाघाट समेत 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित, सीएम हेमंता ने पीड़ित परिवार को 4 लाख के अलावा 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। और उत्पाद से कैंसर फैलाने वाले मुकदमों को रोकने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का प्रस्ताव, अमेरिकी कोर्ट को दिया 52,000 करोड़ रुपए का ऑफर, समझौते के लिए 95% दावेदारों की मंजूरी जरूरी। देश में एक बार फिर संसद में देश के बच्चों के भविष्य सुरक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और लोकसभा में 11:30 बजे तक बहस के बाद अब कार्रवाई 11:30 बजे तक के लिए शुरू होने की बात कही गई है। आज लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे।
1: भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 6 करोड़ 30 लाख हो गई, यानी 4 दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी, लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो जाती है, यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहां लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है।
2: इट इज ऑल्सो अ रीइटरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जीज रिजॉल्व नॉट टू अलाउ एनीवन टू कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया, एंड देयरफॉर दिस बिल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वे as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा, या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगी। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान, पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई।
3: आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
4: विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे।
5: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने, एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
6: छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा बता दीजिए।
5: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी।
3: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।
7: जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है। इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं।
8: जस्ट बिकॉज वी सपोर्ट दिस बिल डजंट मीन और द गवर्नमेंट शुड एक्सपेक्ट अस टू अप्लॉड दोज हु सेट द वर्ल्ड ऑन फायर बिकॉज दे टर्न अप विद अ बकेट ऑफ वाटर।
9: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
0: महाराष्ट्र से सत्ता पक्ष से श्रीकांत शिंदे तो विपक्ष से सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी। वहीं बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया है कि नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर से जोरदार आंदोलन होगा।

0: पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लेने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों को नोटिस भेजकर थाने बुला रही है। रोहित ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा।
1: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और आंदोलन के दौरान सीजेपी आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए थे वो पीछे लेने की मांग की। हमारे साथ हैं एनसीपी नेता रोहित पवार जी। सर, आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, कल डीजी से भी मिले थे महाराष्ट्र के, क्या मांगे रखी और क्या उनकी तरफ से कहा
2: तो
1: गया?
2: मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी थे जो उस आंदोलन में वहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था या सहभाग लिया था। कल और आज में कल हमने डीजे महाराष्ट्र के जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी उनसे मिले और जो मुंबई सिटी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों पे डाले गए, उनके जो सीपी है उनको अभी जाके हम मिले। दो विषय है, एक तो एफआईआर हो गया, एफआईआर अगर पीछे लेना है तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। अभी बिहार और आसाम का तो नोटिफिकेशन आ गया, अभी महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव राज्य है ऐसे हम सबको लगता था, लेकिन ये सरकार इतना स्लो है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम विनती वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये होने तक जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए।
0: रोहित पवार के साथ कई छात्र नेता भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक छवि के लोगों और छात्रों में फर्क करना सीखे।
3: सीपी सर से हमारी मुलाकात पॉजिटिव हुई, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी नई नोटिसेस बच्चों को दी नहीं जाएंगी। हमने ये भी शिकायत दाखिल की कि संडे के बाद भी, जब रेजिग्नेशन के बाद भी मुंबई में कहीं पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई तो भी नोटिसेस बच्चों को आ रही है। 23 तारीख के जिस दिन प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था तो इस तरीके की नोटिसेस ना दी जाए। बच्चों को कॉल्स जा रहे हैं फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में बुलाने के, इस तरीके के कॉल्स बंद हो या फिर लाइव लोकेशन मांगना बंद हो। तो उन्होंने इस बारे में हमसे राजी किया है कि किसी भी तरीके के फोर्सफुल कॉल्स या फिर पुलिस स्टेशन में बुला के लेना, इस तरीके का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन से नहीं किया जाएगा।
1: कितने दिनों का समय देंगे कि केसेस वापस पीछे ले जाएं, नोटिफिकेशन निकाले?
4: मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आसाम ने और बिहार ने, और आज हमने देखा जब सीपी से मिल रहे थे उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, महाराष्ट्र के साथ जो 7 राज्य है जहां पे केसेस हुए उनके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लिया जाए। बस हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इसी हफ्ते में या फिर आज या फिर 2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर बच्चे और भी मतलब प्रॉब्लम में हो कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से उस केसेस के विरोध में वो मैदान में ना उतरे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से फिर वो सीजीपी के आंदोलन में अलग अलग जो भी विद्यार्थी संगठन है जो रस्ते पे उतरे थे, तो बावजूद आप उन विद्यार्थी संगठन नेताओं के बावजूद आपने सभी लोगों के ऊपर वो एफआईआर किया है और लोगों के बीच में डर है, बच्चों के बीच में डर है, लेकिन बच्चे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो वही प्रशासन से विनती है कि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले या फिर बच्चे फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
0: वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के गृह विभाग को आदेश दिया कि वो छात्रों के हाल ही में हुए आंदोलन से जुड़े सभी एफआईआर वापस ले लें। ये कदम केंद्र सरकार के उस भरोसे के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के तहत नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने नीट पेपर लीक के विरोध में पाकिस्तान के कथित कनेक्शन पर कह दिया कि हम गजवाए हिंद करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
5: छात्रों का आंदोलन और गजवाए हिंद का कोई संबंध नहीं। एक तरफ अगर नीट के बारे में अगर आप प्रश्न उठा रहे थे तो फिर वही आंदोलन में सर तन से जुदा क्यों नारे दिए गए, हमारे हिंदू सनातन धर्म को क्यों गाली दिया गया, हमारे देवी देवताओं को क्यों गंदे गंदे उनके फोटो दिखाए गए, सर तन से जुदा अल्लाह और तकबीर, इसका क्या संबंध है नीट से? इसलिए नीट के बारे में जो कुछ भूमिका लेनी थी वो हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से ली है, उसका सभी प्रश्न हम छुड़ाएंगे। मगर उनके कंधों पे आप बंदूक रख के अगर कोई भी हमारे देश में अगर गजवाई हिंद कर रहा होगा ना तो सभी को हम मिट्टी में मिला देंगे।
6: हम भी यही कह रहे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं है, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए। और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई कुख्यात अपराधी है, कोई मर्डर किया हुआ है, हाफ मर्डर किया, उसको पकड़ लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। आप दोनों को एक चश्मे से मत देखिए, इनोसेंट इनोसेंट है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, दोनों को अलग चश्मे से देखिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए, और जो अपराधी हैं, भले ही उनकी उम्र 22-23 साल हो, अपराधी अपराधी, अपराधी कोई उम्र नहीं होती।
0: इस बीच बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी, जो किसी भी तरह स्वीकार नहीं है।
7: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
0: वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा पर रोहित पवार ने कहा कि हम जैसा बिल चाहते हैं, बिल वैसा हुआ तो समर्थन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष संशोधन के लिए जरूरी सुझाव देगा।
8: नीतेश राणे जी जब बात करते हैं तो खुद के दिमाग से कभी बात नहीं करते, उनको बोला जाता है कि ये बात कर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। मैं सोच रहा था नीतेश राणे जी बहुत दिन से चुप क्यों है, वो हिंदुत्व के बारे में बहुत बोलते, कांग्रेस के वक्त कुछ और बोलते थे जब कांग्रेस में थे, अभी और कुछ बोल रहे, लेकिन जब अयोध्या में, पवित्र अयोध्या में प्रभु राम जी का जो मंदिर है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, जो उज्जैन में वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया, तो अभी ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं एक तो बहुत गलत है, और उसी के साथ अगर आप देखो तो करोड़ों बच्चे रास्ते पे आए थे, उन्होंने आंदोलन ये छेड़ा था, उन्होंने ये आंदोलन किया था, और ये वहाँ पे बच्चों को क्या AI से क्रिएट नहीं किया था, या भारत के बाहर से इम्पोर्ट तो नहीं किया था? अभी एकाध दूसरा अकाउंट कोई देश से होगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री या अगर इंफॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट होता है, IT डिपार्टमेंट, वो तो आपके पास है, वो आप जो ब्लॉक करना है वहाँ पे करो ना, लेकिन बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या हो गया है? ईगो हर्ट हो गया है भाजपा का।
0: फिलहाल पेपर लीक प्रोटेस्ट और एंटी पेपर लीक बिल पर मचा घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
9: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में SIT एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा की महिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही से TET का पेपर लीक हो गया था। क्वेश्चन पेपर यहीं छापा गया था और यहीं से लीक हुआ था। SIT लीक केस के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को लेकर गई थी बिहार, जिससे कि उसके नेटवर्क को खंगाला जा सके। अब तक इस पूरे मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
0: महाराष्ट्र टीचर यानी टीचर एजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक केस की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट भिवंडी में एक सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच भी कर रही है। SIT मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर ले जा रही है, जिससे उसके पूरे पेपर लीक नेटवर्क को खंगाला जा सके।
10: एग्जामिनेशन के पहले ही इसको महाराष्ट्र पुलिस ने इसको ये किया था, डिटेक्ट कर लिया था, एग्जाम के पहले ही ये सब हुआ। और जब ये गुना दाखिल हुआ 27/6/2026 को, तब से लेके अभी तक इसमें 12 जो अक्यूज्ड आरोपी है इनको अरेस्ट किया गया था। साथ में जो हम इसके जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र गुप्ता और इसका एक साथीदार है इंद्रजीत विजय सिंह, इनको कल समस्तीपुर में अप्रिहेंड किया गया। वहां से हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन जो है पटना, वहां में इनको अरेस्ट करके आज यहाँ पे लाया गया भिवंडी में। जी हमारा इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश में पता चलेगा और कौन कौन इसमें अक्यूज्ड है, और लग रहा है कि और कुछ इसमें अरेस्ट होगी।
0: महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में SIT की जांच में आगरा के माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही सामने आई है, जहां TET का प्रश्न पत्र छापा गया था और वहीं से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पर्याप्त CCTV कैमरे तक नहीं लगे थे, न ही यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। अब तक इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के साथ ही और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी शामिल हैं।
11: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET पेपर लीक केस में पिछले शनिवार विजेंद्र गुप्ता, जो कि इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता से इंटरोगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके हाथ में एक अहम कड़ी हाथ लगी है और इस कड़ी को अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम फॉलो कर रही है, उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र शासन का एक कर्मचारी भी अब संदेह के धारा में है। आपको बता दें कि इसे अब चेक किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र शासन का जो कर्मचारी है उससे ट्रैक करने की कोशिश चल रही है, उसका रोल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो अंडर स्कैनर है। ये अहम जानकारी आज तक को पता चली है। आपको आज तक ये पहली जानकारी सामने ला रही है। आपको बता दें कि 15वां आरोपी जिसने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सोनू कुमार, जो पहले उसी प्रेस में आगरा में काम किया करता था जहां पर ये पेपर छपा था, TET का पेपर, क्वेश्चन पेपर छपा था, उसने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 2 तारीख तक रिमांड में भेज दिया है।
0: ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के तहत भिवंडी पुलिस की टीमें उन खरीदारों की तलाश कर रही है जो परीक्षा से पहले महाराष्ट्र में TET क्वेश्चन पेपर बांट और बेच रहे थे।
10: ये जो लोग हैं बार बार जो प्रिंटिंग प्रेस में जो एम्प्लॉयज है इनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं, इनको सिर्फ स्पेसिफिक पेपर के लिए नहीं तो रेगुलरली इनको पैसा वगैरह भेजते रहते हैं, इससे इनके रिलेशन आते हैं और जो फिर इम्पोर्टेंट पेपर दिखता है इनको या बेच सकने का इनको जब समझता है तब ये फिर वहां से पेपर निकाल के ये लोग सेल के लिए आते हैं।
0: हैरानी की बात है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस को करीब 30 साल से सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेस में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी।
12: ये जो कोंगाव का जो CR दाखिल है TET के बारे में 281/26, इसमें आज जो 15वां आरोपी अरेस्ट हुआ है ये कल आत्मसमर्पण करने के लिए भिवंडी कोर्ट में आया था, हाईकोर्ट के एक वकील है उनके जरिए आया था, तो इसको कोर्ट ने हाजिर करके लिया लेकिन इसको न्यायालयीन कोठड़ी में भेजने का हुक्म किया। वो हुक्म होने के बाद उसने आत्मसमर्पण करने के बाद आयोग का कॉल किया, आयोग ने जो पेपर रखे थे आयोग का कॉल हुआ और आयोग ने उस ऐसी मांग रखी थी कि इसको आयोग के कस्टडी में दिया जाए करके, तो कोर्ट ने उसकी जो मांग है आयोग की वो पूरी कर दी है और आयोग की कस्टडी में दिया गया था और आज उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर किए थे। अब उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर करने के बाद उनको 2 अगस्त तक का पुलिस कस्टडी दी गई।
0: सवाल है कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने TET प्रश्न पत्र की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट आगरा की इसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया? क्या मंत्रालय या शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी इस लीक कांड में शामिल है?
11: सोनू कुमार विजेंद्र गुप्ता का पुराना साथी है और पेपर लीक के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो माहिम पत्रम नाम का जो प्रेस है जहां पर ये पेपर छपा था, जो ये क्वेश्चन पेपर है TET का वो पेपर छपा था, वहां पर ये पता चला पुलिस को कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी CCTV कवर नहीं था और कोई भी आ जा सकता था और इसी वजह से वो पेपर वहां पर छपने के बाद आसानी से जो कर्मचारी थे वो अपने जूते में छुपा कर बाहर ले आए। इससे पहले भी ऐसा होते रहा होगा क्योंकि माहिम पत्रम ये जो प्रेस है ये बहुत साल से सरकारी क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन बर्ने और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिवेश सिंह, भिवंडी आज तक।
9: एक कहावत है आपने जरूर सुनी होगी, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा चुप। क्या यही युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे पर राजनीति में होता है? जहां बीजेपी शासित राज्य में भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक हो तो विपक्ष आक्रामक होकर प्रदर्शन करता है, लेकिन जब विपक्ष के शासन वाले राज्य में पेपर लीक भर्ती धांधली होती है तो विपक्षी दल पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। यही झारखंड में हो रहा है जहां युवा नाराज हैं और सड़कों पर हैं।
13: देश में चलते संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित की बात करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक जाकर धरना देते हैं, संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं, छात्रों के हक में सवाल उठना चाहिए, सबका हक है, जरूरी भी है, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को ये पता है या नहीं कि उन्हीं की गठबंधन वाली सत्ता की नाक के नीचे हजारों छात्र परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर JMM कांग्रेस शासित राज्य झारखंड की है, जहां भर्ती आयोग भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। रांची में नीले रंग का तिरपाल लगाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे वो बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी देने के नाम पर हुई परीक्षाओं में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से ठगने, रुलाने, दौड़ाने और भटकाने का आरोप है।
14: जो अभ्यर्थी हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे है और ठीक जंतर मंतर के तर्ज पे यहाँ पे देखिए अनिश्चितकालीन यहाँ धरना का कार्यक्रम जो है वो सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह।
13: झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है। 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है। जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं।
15: सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हमारे हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना सकें।
13: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां 4 तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर 4 है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई।
15: TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जो लखनऊ की है जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ कि कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहाँ हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपया अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपया में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपया कहाँ से आ रहा है। तो 200 रुपया के लिए सरकार जो है जो उसका जो जेपीएससी का चेयरमैन और अध्यक्ष है वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है सीटों को बेचा जा रहा है। आज 14वीं जेपीएससी सबके सामने आया है।
13: हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड एसएससी के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो।
16: कोई ऑप्शन नहीं है, घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा। हम भी अब उन्हें हम उन्हें मतलब आसरा देते हैं वो हमें डांडस देते हैं, एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं। इमोशनली हम उन्हें कर समझाते हैं वो हमें समझाते हैं, ये स्थिति बना हुआ है।
17: भरोसे पे सब कुछ चल रहा है, ये परिवार वाले को भरोसा देते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और दो और परिजन ये कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त और लो लेकिन कुछ करके आओ और वो हो नहीं पा रहा है जो ये करना चाहते हैं।
13: अब तक सीआईडी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एल खियांगते के घर तक छापा मारा गया। जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं, सीआईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है।
18: The agency, whatever agency that the commission has taken to do the work, at the point in which the work was given, at that point, the understanding is that the agency was not blacklisted.
13: दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करती है और कांग्रेस राज्य में भर्ती में होती धांधली के आरोपों पर युवाओं के हक में प्रदर्शन करने बीजेपी उतरती है।
14: जेपीएससी के 14वें सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम्स में भारी अनियमितता के खिलाफ बीजेपी जेपीएससी कार्यालय पहुंची है। बैरिकेडिंग को जो लगाया गया था सुरक्षा के लिहाज से उसको तोड़कर, पहले बैरिकेडिंग को तोड़कर यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता आगे पहुंच चुके हैं।
19: पूरा लिपा पोती हो रहा और इस राज्य में सरकार है प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री है कोई नहीं सुन, इस राज्य में सिंडिकेट का राज।
20: अब सवाल दो है। पहला तो ये कि बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं, और दूसरा सवाल, क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है, या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
9: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: के चक्कर में विपक्ष ने बिल पर नहीं की बात, आज दोपहर 12:30 बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के आरोपों पर बिफरी बीजेपी, विपक्ष की नियत पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं करते सवाल, मोदी सरकार चला रही रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक पर लगेगी पक्की लगाम। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई है 75, शिवसागर गोलाघाट समेत 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित, सीएम हेमंता ने पीड़ित परिवार को 4 लाख के अलावा 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। और उत्पाद से कैंसर फैलाने वाले मुकदमों को रोकने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का प्रस्ताव अमेरिकी कोर्ट को दिया, 52,000 करोड़ रुपए का ऑफर, समझौते के लिए 95% दावेदारों की मंजूरी जरूरी। देश में एक बार फिर संसद में देश के बच्चों के भविष्य सुरक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और लोकसभा में 11:00 तक बहस के बाद अब कार्रवाई 11:00 तक के लिए शुरू होने की बात कही गई है। आज लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे।
1: भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 6,30,00,000 हो गई, यानी 4 दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी, लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1,10,00,000 हो जाती है, यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहां लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है।
2: इट इज ऑल्सो अ रिइटरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जीज रिजॉल्व नॉट टू अलाउ एनीवन टू कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया, एंड देयरफॉर दिस बिल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वे as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा, या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगी। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान, पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई।
3: आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
4: विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे।
5: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने, एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
6: छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए।
5: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी।
3: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।
7: जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं।
8: जस्ट बिकॉज वी सपोर्ट दिस बिल डजंट मीन और द गवर्नमेंट शुड एक्सपेक्ट अस टू अपलॉड दोज हु सेट द वर्ल्ड ऑन फायर बिकॉज दे टर्न अप विद अ बकेट ऑफ वाटर।
9: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
0: महाराष्ट्र से सत्ता पक्ष से श्रीकांत शिंदे तो विपक्ष से सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी। वहीं बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया है कि नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर से जोरदार आंदोलन होगा।

0: पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लेने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों को नोटिस भेजकर थाने बुला रही है। रोहित ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा।
1: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और आंदोलन के दौरान सीजेपी आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए थे वो पीछे लेने की मांग की। हमारे साथ हैं एनसीपी नेता रोहित पवार जी। सर, आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, कल डीजी से भी मिले थे महाराष्ट्र के, क्या मांगे रखी और क्या उनकी तरफ से कहा गया?
2: तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी थे जो उस आंदोलन में वहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था या सहभाग लिया था। कल और आज में कल हमने डीजे महाराष्ट्र के जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी उनसे मिले और जो मुंबई सिटी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों पे डाले गए, उनके जो सीपी है उनको अभी जाके हम मिले। दो विषय है, एक तो एफआईआर हो गया, एफआईआर अगर पीछे लेना है तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। अभी बिहार और आसाम का तो नोटिफिकेशन आ गया, अभी महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव राज्य है ऐसे हम सबको लगता था, लेकिन ये सरकार इतना स्लो है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम विनती वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये होने तक जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए।
0: रोहित पवार के साथ कई छात्र नेता भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक छवि के लोगों और छात्रों में फर्क करना सीखे।
3: सीपी सर से हमारी मुलाकात पॉजिटिव हुई, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी नई नोटिसेस बच्चों को दी नहीं जाएंगी। हमने ये भी शिकायत दाखिल की कि संडे के बाद भी, जब रेजिग्नेशन के बाद भी मुंबई में कहीं पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई तो भी नोटिसेस बच्चों को आ रही है। 23 तारीख के जिस दिन प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था तो इस तरीके की नोटिसेस ना दी जाए। बच्चों को कॉल्स जा रहे हैं फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में बुलाने के, इस तरीके के कॉल्स बंद हो या फिर लाइव लोकेशन मांगना बंद हो। तो उन्होंने इस बारे में हमसे राजी किया है कि किसी भी तरीके के फोर्सफुल कॉल्स या फिर पुलिस स्टेशन में बुला के लेना, इस तरीके का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन से नहीं किया जाएगा।
1: कितने दिनों का समय देंगे कि केसेस वापस पीछे ले जाएं, नोटिफिकेशन निकाले?
4: मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आसाम ने और बिहार ने, और आज हमने देखा जब सीपी से मिल रहे थे उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, महाराष्ट्र के साथ जो 7 राज्य है जहां पे केसेस हुए उनके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लिया जाए। बस हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इसी हफ्ते में या फिर आज या फिर 2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर बच्चे और भी मतलब प्रॉब्लम में हो कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से उस केसेस के विरोध में वो मैदान में ना उतरे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से फिर उस सीजीपी के आंदोलन में अलग अलग जो भी विद्यार्थी संगठन है जो रस्ते पे उतरे थे, तो बावजूद आप उन विद्यार्थी संगठन नेताओं के बावजूद आपने सभी लोगों के ऊपर वो एफआईआर किया है और लोगों के बीच में डर है, बच्चों के बीच में डर है, लेकिन बच्चे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो वही प्रशासन से विनती है कि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले या फिर बच्चे फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
0: वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के गृह विभाग को आदेश दिया कि वो छात्रों के हाल ही में हुए आंदोलन से जुड़े सभी एफआईआर वापस ले लें। ये कदम केंद्र सरकार के उस भरोसे के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के तहत नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने नीट पेपर लीक के विरोध में पाकिस्तान के कथित कनेक्शन पर कह दिया कि हम गजवाए हिंद करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
5: छात्रों का आंदोलन और गजवाए हिंद का कोई संबंध नहीं। एक तरफ अगर नीट के बारे में अगर आप प्रश्न उठा रहे थे तो फिर वही आंदोलन में सर तन से जुदा क्यों नारे दिए गए, हमारे हिंदू सनातन धर्म को क्यों गाली दिया गया, हमारे देवी देवताओं को क्यों गंदे गंदे उनके फोटो दिखाए गए, सर तन से जुदा अल्लाह तकबीर, इसका क्या संबंध है नीट से? इसलिए नीट के बारे में जो कुछ भूमिका

0: कह रहे हैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं है, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए। और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई कुख्यात अपराधी है, कोई मर्डर किया हुआ है, हाफ मर्डर किया, उसको पकड़ लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। आप दोनों को एक चश्मे से मत देखिए, इनोसेंट इनोसेंट है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, दोनों को अलग चश्मे से देखिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए, और जो अपराधी हैं भले ही उनकी उम्र 22-23 साल हो, अपराधी अपराधी, अपराधी कोई उम्र नहीं होती।
1: इस बीच बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी, जो किसी भी तरह स्वीकार नहीं है।
2: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है। आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
1: वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा पर रोहित पवार ने कहा कि हम जैसा बिल चाहते हैं, बिल वैसा हुआ तो समर्थन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष संशोधन के लिए जरूरी सुझाव देगा।
3: नीतेश राणे जी जब बात करते हैं तो खुद के दिमाग से कभी बात नहीं करते, उनको बोला जाता है कि ये बात कर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। मैं सोच रहा था नीतेश राणे जी बहुत दिन से चुप क्यों है, वो हिंदुत्व के बारे में बहुत बोलते, कांग्रेस के वक्त कुछ और बोलते थे जब कांग्रेस में थे, अभी और कुछ बोल रहे, लेकिन जब अयोध्या में, पवित्र अयोध्या में प्रभु राम जी का जो मंदिर है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, जो उज्जैन में वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया, तो अभी ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं एक तो बहुत गलत है, और उसके साथ अगर आप देखो तो करोड़ों बच्चे रास्ते पे आए थे, उन्होंने आंदोलन ये छेड़ा था, उन्होंने ये आंदोलन किया था, और ये वहाँ पे बच्चों को क्या AI से क्रिएट नहीं किया था, या भारत के बाहर से इंपोर्ट तो नहीं किया था? अभी एकाध दूसरा अकाउंट कोई देश से होगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री या अगर इंफॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट होता है, IT डिपार्टमेंट, वो तो आपके पास है, वो आप जो ब्लॉक कर रहे हैं वहाँ पे करो ना, लेकिन बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या हो गया है? ईगो हर्ट हो गया है भाजपा का।
1: फिलहाल पेपर लीक प्रोटेस्ट और एंटी पेपर लीक बिल पर मचा घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
4: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में SIT एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा की महिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही से TET का पेपर लीक हो गया था। क्वेश्चन पेपर यहीं छापा गया था और यहीं से लीक हुआ था। SIT लीक केस के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को लेकर गई थी बिहार, जिससे कि उसके नेटवर्क को खंगाला जा सके। अब तक इस पूरे मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
1: महाराष्ट्र टीचर यानी टीचर एजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक केस की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट भिवंडी में एक सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच भी कर रही है। SIT मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर ले जा रही है, जिससे उसके पूरे पेपर लीक नेटवर्क को खंगाला जा सके।
5: एग्जामिनेशन के पहले ही इसको महाराष्ट्र पुलिस ने इसको ये किया था, डिटेक्ट कर लिया था, एग्जाम के पहले ही ये सब हुआ। और जब ये गुना दाखिल हुआ 27/6/2026 को, तब से लेके अभी तक इसमें 12 जो अक्यूज्ड आरोपी इनको अरेस्ट किया गया था। साथ में जो हम इसके जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र गुप्ता और इसका एक साथीदार है इंद्रजीत विजय सिंह, इनको कल समस्तीपुर में अप्रिहेंड किया गया। वहां से हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन जो है पटना, वहां में इनको अरेस्ट करके आज यहाँ पे लाया गया भिवंडी में। जी हमारा इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश में पता चलेगा और कौन कौन इसमें अक्यूज्ड है, और लग रहा है कि और कुछ इसमें अरेस्ट होगी।
1: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में SIT की जांच में आगरा के माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही सामने आई है, जहां TET का प्रश्न पत्र छापा गया था और वहीं से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पर्याप्त CCTV कैमरे तक नहीं लगे थे, न ही यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। अब तक इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के साथ ही और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी शामिल हैं।
6: महाराष्ट्र

0: मिश्रा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET पेपर लीक केस में पिछले शनिवार बिजेंद्र गुप्ता, जो कि इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बिजेंद्र गुप्ता से इंटरोगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके हाथ में एक अहम कड़ी हाथ लगी है और इस कड़ी को अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम फॉलो कर रही है, उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र शासन का एक कर्मचारी भी अब संदेह के धारा में है। आपको बता दें कि इसे अब चेक किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र शासन का जो कर्मचारी है उससे ट्रैक करने की कोशिश चल रही है, उसका रोल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो अंडर स्कैनर है। ये अहम जानकारी आज तक को पता चली है। आपको आज तक ये पहली जानकारी सामने ला रही है। आपको बता दें कि 15वां आरोपी जिसने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सोनू कुमार, जो पहले उसी प्रेस में आगरा में काम किया करता था जहां पर ये पेपर छपा था, TET का पेपर, क्वेश्चन पेपर छपा था, उसने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 2 तारीख तक रिमांड में भेज दिया है।
1: ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के तहत भिवंडी पुलिस की टीमें उन खरीदारों की तलाश कर रही है जो परीक्षा से पहले महाराष्ट्र में TET क्वेश्चन पेपर बांट और बेच रहे थे।
2: ये जो लोग हैं बार बार जो प्रिंटिंग प्रेस में जो एम्प्लॉयज है इनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं, इनको सिर्फ स्पेसिफिक पेपर के लिए नहीं तो रेगुलरली इनको पैसा वगैरह भेजते रहते हैं, इससे इनके रिलेशन आते हैं और जो फिर इम्पोर्टेंट पेपर दिखता है इनको या बेच सकने का इनको जब समझता है तब ये फिर वहां से पेपर निकाल के ये लोग सेल के लिए आते हैं।
1: हैरानी की बात है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस को करीब 30 साल से सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेस में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी।
3: ये जो कोंगाव का जो CR दाखिल है TET के बारे में 281/26, इसमें आज जो 15वां आरोपी अरेस्ट हुआ है ये कल आत्मसमर्पण करने के लिए भिवंडी कोर्ट में आया था, हाई कोर्ट के एक वकील है उनके जरिए आया था, तो इसको कोर्ट ने हाजिर करके लिया लेकिन इसको न्यायालयीन कोठड़ी में भेजने का हुक्म किया। वो हुक्म होने के बाद उसने आत्मसमर्पण करने के बाद आयोग का कॉल किया, आयोग ने जो पेपर रखे थे आयोग का कॉल हुआ और आयोग ने उस ऐसी मांग रखी थी कि इसको आयोग के कस्टडी में दिया जाए करके, तो कोर्ट ने उसकी जो मांग है आयोग की वो पूरी कर दी है और आयोग की कस्टडी में दिया गया था और आज उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर किए थे। अब उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर करने के बाद उनको 2 अगस्त तक का पुलिस कस्टडी दी गई।
1: सवाल है कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने TET प्रश्न पत्र की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट आगरा की इसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया? क्या मंत्रालय या शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी इस लीक कांड में शामिल है?
0: सोनू कुमार बिजेंद्र गुप्ता का पुराना साथी है और पेपर लीक के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो माहिम पत्रम नाम का जो प्रेस है जहां पर ये पेपर छपा था, जो ये क्वेश्चन पेपर है TET का वो पेपर छपा था, वहां पर ये पता चला पुलिस को कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी CCTV कवर नहीं था और कोई भी आ जा सकता था और इसी वजह से वो पेपर वहां पर छपने के बाद आसानी से जो कर्मचारी थे वो अपने जूते में छुपा कर बाहर ले आए। इससे पहले भी ऐसा होते रहा होगा क्योंकि माहिम पत्रम ये जो प्रेस है ये बहुत साल से सरकारी क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिवेश सिंह, भिवंडी आज तक।
4: एक कहावत है आपने जरूर सुनी होगी, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा चुप। क्या यही युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दों पर राजनीति में होता है? जहां बीजेपी शासित राज्य में भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक हो तो विपक्ष आक्रामक होकर प्रदर्शन करता है, लेकिन जब विपक्ष के शासन वाले राज्य में पेपर लीक भर्ती धांधली होती है तो विपक्षी दल पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। यही झारखंड में हो रहा है जहां युवा नाराज हैं और सड़कों पर हैं।
5: देश में चलते संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित की बात करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक जाकर धरना देते हैं, संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं, छात्रों के हक में सवाल उठना चाहिए, सबका हक है, जरूरी भी है, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को ये पता है या नहीं कि उन्हीं की गठबंधन वाली सत्ता की नाक के नीचे हजारों छात्र परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर JMM कांग्रेस शासित राज्य झारखंड की है जहां भर्ती आयोग भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। रांची में नीले रंग का तिरपाल लगाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे वो बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें नौकरी देने के नाम पर हुई परीक्षाओं में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से ठगने, रुलाने, दौड़ाने और भटकाने का आरोप है।
6: जो अभ्यर्थी हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे है और ठीक जंतर मंतर के तर्ज पे यहाँ पे देखिए अनिश्चितकालीन यहाँ धरना का कार्यक्रम जो है वो सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह।
5: झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है। 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है। जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं।
7: सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हमारे हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना।
5: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां 4 तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर 4 है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई।
8: TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जो लखनऊ की है जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ कि कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहाँ हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपया अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपया में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपया कहाँ से आ रहा है। तो 200 रुपया के लिए सरकार जो है जो उसका जो जेपीएससी का चेयरमैन और अध्यक्ष है वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है सीटों को बेचा जा रहा है। आज 14वीं जेपीएससी सबके सामने आया है।
5: हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड एसएससी के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो।
9: कोई ऑप्शन नहीं है, घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा। हम उन्हें मतलब आसरा देते हैं वो हमें ढांढस देते हैं, एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं इमोशनली। हम उन्हें कर समझाते हैं वो हमें समझाते हैं, ये स्थिति बना हुआ है।
10: भरोसे पे सब कुछ चल रहा है। ये परिवार वाले को भरोसा देते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और दो और परिजन ये कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त और लो लेकिन कुछ कर के आओ और वो हो नहीं पा रहा है जो ये करना चाहते हैं।
5: अब तक सीआईडी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एल खियांगते के घर तक छापा मारा गया। जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं, सीआईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है।
11: द एजेंसी व्हाटएवर एजेंसी दैट द कमीशन हैज टेकन टू डू द वर्क at the point in which the work was given, at that point the understanding is that the agency was not blacklisted.
5: दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करती है और कांग्रेस राज में भर्ती में होती धांधली के आरोपों पर युवाओं के हक में प्रदर्शन करने बीजेपी उतरती है।
6: जेपीएससी के 14वें सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम्स में भारी अनियमितता के खिलाफ बीजेपी जेपीएससी कार्यालय पहुंची है। बैरिकेडिंग को जो लगाया गया था सुरक्षा के लिहाज से उसको तोड़कर, पहले बैरिकेडिंग को तोड़कर यहां बीजेपी के कार्यकर्ता आगे पहुंच चुके हैं।
12: पूरा लिपा पोती हो रहा और इस राज्य में सरकार है प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री है कोई नहीं सुन, इस राज्य में सिंडिकेट का।
13: अब सवाल दो है। पहला तो ये कि बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं, और दूसरा सवाल, क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है, या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
14: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
15: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
14: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
15: They score!
14: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: संसदीय कार्य मंत्री का बयान, सियासत के चक्कर में विपक्ष ने बिल पर नहीं की बात, आज दोपहर 12:30 बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के आरोपों पर बिफरी बीजेपी, विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं करते सवाल, मोदी सरकार चला रही रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक पर लगेगी पक्की लगाम। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई है 75, शिवसागर गोलाघाट समेत 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित, सीएम हेमंता ने पीड़ित परिवार को 4 लाख के अलावा 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। और उत्पाद से कैंसर फैलाने वाले मुकदमों को रोकने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का प्रस्ताव, अमेरिकी कोर्ट को दिया 52,000 करोड़ रुपए का ऑफर, समझौते के लिए 95% दावेदारों की मंजूरी जरूरी। देश में एक बार फिर संसद में देश के बच्चों के भविष्य सुरक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और लोकसभा में 11:00 तक बहस के बाद अब कार्रवाई 11:00 तक के लिए शुरू होने की बात कही गई है। आज लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे।
1: भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 6,30,00,000 हो गई, यानी 4 दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी, लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1,10,00,000 हो जाती है, यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहां लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है।
2: इट इज ऑल्सो अ रिएट्रेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जीज रिजॉल्व नॉट टू अलाउ एनीवन टू कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया, एंड देयरफॉर दिस बिल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वे as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा, या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगी। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान, पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई।
3: आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
4: विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे।
5: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने, एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
6: छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा बता दीजिए।
5: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी।
3: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।
7: जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं।
8: जस्ट बिकॉज वी सपोर्ट दिस बिल डजंट मीन और द गवर्नमेंट शुड एक्सपेक्ट अस टू अपलॉड दोज हु सेट द वर्ल्ड ऑन फायर बिकॉज दे टर्न अप विद अ बकेट ऑफ वाटर।
9: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
0: महाराष्ट्र से सत्ता पक्ष से श्रीकांत शिंदे तो विपक्ष से सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी। वहीं बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया है कि नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर से जोरदार आंदोलन होगा।
10: पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लेने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों को नोटिस भेजकर थाने बुला रही है। रोहित ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा।
11: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और आंदोलन के दौरान, CJP आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए थे वो पीछे लेने की मांग की। हमारे साथ हैं एनसीपी नेता रोहित पवार जी। सर, आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, कल DG से भी मिले थे महाराष्ट्र के, क्या मांगे रखी और क्या उनकी तरफ से कहा गया?
12: तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी थे जो उस आंदोलन में वहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था या सहभाग लिया था। कल और आज में, कल हमने DG महाराष्ट्र के जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी उनसे मिले, और जो मुंबई सिटी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों पे डाले गए, उनके जो CP है उनको अभी जाके हम मिले। दो विषय है, एक तो FIR हो गया, FIR अगर पीछे लेना है तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। अभी बिहार और आसाम का तो नोटिफिकेशन आ गया, अभी महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव राज्य है ऐसे हम सबको लगता था, लेकिन ये सरकार इतना स्लो है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो, इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम विनती वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये होने तक जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए।
10: रोहित पवार के साथ कई छात्र नेता भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक छवि के लोगों और छात्रों में फर्क करना सीखे।
13: सीपी सर से हमारी मुलाकात पॉजिटिव हुई। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी नई नोटिसेस बच्चों को दी नहीं जाएंगी। हमने ये भी शिकायत दाखिल की कि संडे के बाद भी, जब रेजिग्नेशन के बाद भी मुंबई में कहीं पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई तो भी नोटिसेस बच्चों को आ रही है। 23 तारीख के जिस दिन प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था, तो इस तरीके की नोटिसेस ना दी जाए। बच्चों को कॉल्स जा रहे हैं फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में बुलाने के, इस तरीके के कॉल्स बंद हो या फिर लाइव लोकेशन मांगना बंद हो। तो उन्होंने इस बारे में हमसे राजी किया है कि किसी भी तरीके के फोर्सफुल कॉल्स या फिर पुलिस स्टेशन में बुला के लेना, इस तरीके का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन से नहीं किया जाएगा।
11: कितने दिनों का समय देंगे कि केसेस वापस पीछे ले जाएं, नोटिफिकेशन निकाले?
14: मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आसाम ने और बिहार ने, और आज हमने देखा जब सीपी से मिल रहे थे उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, महाराष्ट्र के साथ जो 7 राज्य है जहां पे केसेस हुए उनके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लिया जाए। बस हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इसी हफ्ते में या फिर आज या फिर 2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर बच्चे और भी मतलब प्रॉब्लम में हो कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से उस केसेस के विरोध में वो मैदान में ना उतरे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से फिरोज सीजीपी के आंदोलन में अलग अलग जो भी विद्यार्थी संगठन है जो रस्ते पे उतरे थे, तो बावजूद आप उन विद्यार्थी संगठन नेताओं के बावजूद आपने सभी लोगों के ऊपर वो FIR किया है और लोगों के बीच में डर है, बच्चों के बीच में डर है, लेकिन बच्चे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो वही प्रशासन से विनती है कि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले या फिर बच्चे फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
10: वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के गृह विभाग को आदेश दिया कि वो छात्रों के हाल ही में हुए आंदोलन से जुड़े सभी FIR वापस ले लें। ये कदम केंद्र सरकार के उस भरोसे के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि CJP के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के तहत नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने नीट पेपर लीक के विरोध में पाकिस्तान के कथित कनेक्शन पर कह दिया कि हम गजवाए हिंद करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
15: छात्रों का आंदोलन और गजवाए हिंद का कोई संबंध नहीं। एक तरफ अगर नीट के बारे में अगर आप प्रश्न उठा रहे थे तो फिर वही आंदोलन में सर तन से जुदा क्यों नारे दिए गए, हमारे हिंदू सनातन धर्म को क्यों गाली दिया गया, हमारे देवी देवताओं को क्यों गंदे गंदे उनके फोटो दिखाए गए, सर तन से जुदा अल्लाह और तकबीर, इसका क्या संबंध है नीट से? इसलिए नीट के बारे में जो कुछ भूमिका लेनी थी वो हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से ली है, उसका सभी प्रश्न हम छुड़ाएंगे। मगर उनके कंधों पे आप बंदूक रख के अगर कोई भी हमारे देश में अगर गजवाई हिंद कर रहा होगा ना तो सभी को हम मिट्टी में मिला देंगे।
16: हम भी यही कह रहे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं है, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए। और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई कुख्यात अपराधी है, कोई मर्डर किया हुआ है, हाफ मर्डर किया, उसको पकड़ लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। आप दोनों को एक चश्मे से मत देखिए, इनोसेंट इनोसेंट है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, दोनों को अलग चश्मे से देखिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए, और जो अपराधी हैं भले ही उनकी उम्र 22-23 साल हो, अपराधी अपराधी, अपराधी कोई उम्र नहीं होती।
10: इस बीच बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी जो किसी भी तरह स्वीकार नहीं है।
17: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
10: वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा पर रोहित पवार ने कहा कि हम जैसा बिल चाहते हैं, बिल वैसा हुआ तो समर्थन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष संशोधन के लिए जरूरी सुझाव देगा।
18: नितेश राणे जी जब बात करते हैं तो खुद के दिमाग से कभी बात नहीं करते, उनको बोला जाता है कि ये बात कर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। मैं सोच रहा था नितेश राणे जी बहुत दिन से चुप क्यों है, वो हिंदुत्व के बारे में बहुत बोलते, कांग्रेस के वक्त कुछ और बोलते थे जब कांग्रेस में थे, अभी और कुछ बोल रहे, लेकिन जब अयोध्या में पवित्र अयोध्या में प्रभु राम जी का जो मंदिर है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जो उज्जैन में वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया। तो अभी ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं एक तो बहुत गलत है, और उसके साथ अगर आप देखो तो करोड़ों बच्चे रास्ते पे आए थे, उन्होंने आंदोलन ये छेड़ा था, उन्होंने ये आंदोलन किया था, और ये वहाँ पे बच्चों को क्या एआई से क्रिएट नहीं किया था या भारत के बाहर से इंपोर्ट तो नहीं किया था? अभी एक आध दूसरा अकाउंट कोई देश से होगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री या अगर इंफॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट होता है आईटी डिपार्टमेंट वो तो आपके पास है, वो आप जो ब्लॉक करना है वहाँ पे करो ना, लेकिन बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या हो गया है? ईगो हर्ट हो गया है भाजपा का।
19: फिलहाल पेपर लीक प्रोटेस्ट और एंटी पेपर लीक बिल पर मचा घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा की महिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही से टीटी का पेपर लीक हो गया था। क्वेश्चन पेपर यहीं छापा गया था और यहीं से लीक हुआ था। एसआईटी लीक केस के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को लेकर गई थी बिहार, जिससे कि उसके नेटवर्क को खंगाला जा सके। अब तक इस पूरे मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
19: महाराष्ट्र टीचर यानी टीचर एजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक केस की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट भिवंडी में एक सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच भी कर रही है। एसआईटी मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर ले जा रही है, जिससे उसके पूरे पेपर लीक नेटवर्क को खंगाला जा सके।
20: एग्जामिनेशन के पहले ही इसको महाराष्ट्र पुलिस ने इसको ये किया था, डिटेक्ट कर लिया था। एग्जाम के पहले ही ये सब हुआ, और जब ये गुना दाखिल हुआ 27/6/2026 को, तब से लेके अभी तक इसमें 12 जो अक्यूज्ड आरोपी इनको अरेस्ट किया गया था। साथ में जो हम इसके जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र गुप्ता और इसका एक साथीदार है इंद्रजीत विजय सिंह, इनको कल समस्तीपुर में अप्रिहेंड किया गया। वहां से हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन जो है पटना, वहां में इनको अरेस्ट करके आज यहाँ पे लाया गया भिवंडी में। जी, हमारा इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश में पता चलेगा और कौन कौन इसमें अक्यूज्ड है, और लग रहा है कि और कुछ इसमें अरेस्ट होगी।
19: महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच में आगरा के माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही सामने आई है, जहां टीटी का प्रश्न पत्र छापा गया था और वहीं से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे थे, न ही यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। अब तक इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के साथी और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी शामिल हैं।
21: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी पेपर लीक केस में पिछले शनिवार विजेंद्र गुप्ता, जो कि इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता से इंटरोगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके हाथ में एक अहम कड़ी हाथ लगी है, और इस कड़ी को अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम फॉलो कर रही है, उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र शासन का एक कर्मचारी भी अब संदेह के धारा में है। आपको बता दें कि इसे अब चेक किया जा रहा है, और ये महाराष्ट्र शासन का जो कर्मचारी है उससे ट्रैक करने की कोशिश चल रही है, उसका रोल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो अंडर स्कैनर है। ये अहम जानकारी आज तक को पता चली है, आपको आज तक ये पहली जानकारी सामने ला रही है। आपको बता दें कि 15वां आरोपी जिसने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सोनू कुमार, जो पहले उसी प्रेस में आगरा में काम किया करता था जहां पर ये पेपर छपा था, टीईटी का पेपर क्वेश्चन पेपर छपा था, उसने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 2 तारीख तक रिमांड में भेज दिया है।
19: ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के तहत भिवंडी पुलिस की टीमें उन खरीदारों की तलाश कर रही है जो परीक्षा से पहले महाराष्ट्र में टीईटी क्वेश्चन पेपर बांट और बेच रहे थे।
20: ये जो लोग हैं बार बार जो प्रिंटिंग प्रेस में जो एम्प्लॉयज है इनके कांटेक्ट में रहते हैं, इनको सिर्फ स्पेसिफिक पेपर के लिए नहीं तो रेगुलरली इनको पैसा वगैरह भेजते रहते हैं, इससे इनके रिलेशन आते हैं, और जो फिर इम्पोर्टेंट पेपर दिखता है इनको या बेच सकने का इनको जब समझता है तब ये फिर वहां से पेपर निकाल के ये लोग सेल के लिए आते हैं।
19: हैरानी की बात है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस को करीब 30 साल से सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेस में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी।
1: ये जो कोंडगांव का जो सीआर दाखिल है पीएटी के बारे में 281/26, इसमें आज जो 15वां आरोपी अरेस्ट हुआ है, ये कल आत्मसमर्पण करने के लिए भिवंडी कोर्ट में आया था। हाई कोर्ट के एक वकील है, उनके जरिए आया था, तो इसको कोर्ट ने हाजिर करके लिया, लेकिन इसको न्यायालयीन कोठड़ी में भेजने का हुक्म किया। वो हुक्म होने के बाद उसने आत्मसमर्पण करने के बाद आयोग का कॉल किया, आयोग ने जो पेपर रखे थे आयोग का कॉल हुआ, और आयोग ने ऐसी मांग रखी थी कि इसको आयोग के कस्टडी में दिया जाए करके, तो कोर्ट ने उसकी जो मांग है आयोग की वो पूरी कर दी है और आयोग की कस्टडी में दिया गया था, और आज उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर किए थे। अब उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर करने के बाद उनको 2 अगस्त तक का पुलिस कस्टडी दी गई।
19: सवाल है कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने टीटी प्रश्न पत्र की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट आगरा की इसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया? क्या मंत्रालय या शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी इस लीक कांड में शामिल है?
21: सोनू कुमार बिजेंद्र गुप्ता का पुराना साथी है और पेपर लीक के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो माहिम पत्रम नाम का जो प्रेस है जहां पर ये पेपर छपा था, जो ये क्वेश्चन पेपर है टीटी का, वो पेपर छपा था, वहां पर ये पता चला पुलिस को कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी सीसीटीवी कवर नहीं था और कोई भी आ जा सकता था, और इसी वजह से वो पेपर वहां पर छपने के बाद आसानी से जो कर्मचारी थे वो अपने जूते में छुपा कर बाहर ले आए। इससे पहले भी ऐसा होते रहा होगा, क्योंकि माहिम पत्रम ये जो प्रेस है ये बहुत साल से सरकारी क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन बर्ने और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिवेश सिंह, भिवंडी आज तक।
0: एक कहावत है आपने जरूर सुनी होगी, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा चुप। क्या यही युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे पर राजनीति में होता है? जहां बीजेपी शासित राज्य में भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक हो, तो विपक्ष आक्रामक होकर प्रदर्शन करता है, लेकिन जब विपक्ष के शासन वाले राज्य में पेपर लीक भर्ती धांधली होती है तो विपक्षी दल पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। यही झारखंड में हो रहा है, जहां युवा नाराज हैं और सड़कों पर हैं।
2: देश में चलते संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित की बात करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक जाकर धरना देते हैं, संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं, छात्रों के हक में सवाल उठना चाहिए, सबका हक है, जरूरी भी है, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को ये पता है या नहीं कि उन्हीं की गठबंधन वाली सत्ता की नाक के नीचे हजारों छात्र परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर जेएमएम कांग्रेस शासित राज्य झारखंड की है, जहां भर्ती आयोग भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। रांची में नीले रंग का तिरपाल लगाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे वो बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी देने के नाम पर हुई परीक्षाओं में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से ठगने, रुलाने, दौड़ाने और भटकाने का आरोप है।
22: जो अभ्यर्थी हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे है और ठीक जंतर मंतर के तर्ज पे यहाँ पे देखिए अनिश्चितकालीन यहाँ धरना का कार्यक्रम जो है वो सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह।
2: झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है, 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है, जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं।
23: सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हमारे हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें, ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बनाएं।
2: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां 4 तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर चार है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो एक महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई, तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई।
3: TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जो लखनऊ की है, जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ कि कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहाँ हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपये अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपये में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपये कहाँ से आ रहा है। तो 200 रुपये के लिए सरकार जो है, जो उसका जो JPC का चेयरमैन और अध्यक्ष है, वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है, सीटों को बेचा जा रहा है। आज 14वीं JPC सबके सामने आया है।
2: हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड SSC के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो,
4: कोई ऑप्शन नहीं है, घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा। हम भी अब उन्हें, हम उन्हें मतलब आसरा देते हैं, वो हमें ढांढस देते हैं, एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं। इमोशनली हम उन्हें कब समझाते हैं, वो हमें समझाते हैं, ये स्थिति बना हुआ है।
5: भरोसे पे सब कुछ चल रहा है, ये परिवार वाले को भरोसा देते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और दो, और परिजन ये कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त और लो लेकिन कुछ करके आओ, और वो हो नहीं पा रहा है जो ये करना चाहते हैं।
2: अब तक CID ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर JPSC के अध्यक्ष रहे एल खियांगते के घर तक छापा मारा गया। JPSC अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं, CID की टीम पूछताछ कर चुकी है।
6: The agency, whatever agency that the commission has taken to do the work, at the point in which the work was given, at that point, the understanding is that the agency was not blacklisted.
2: दिल्ली में BJP सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करती है और कांग्रेस राज्य में भर्ती में होती धांधली के आरोपों पर युवाओं के हक में प्रदर्शन करने BJP उतरती है।
22: JPSC के 14वें सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम्स में भारी अनियमितता के खिलाफ BJP JPSC कार्यालय पहुंची है। बैरिकेडिंग को जो लगाया गया था सुरक्षा के लिहाज से उसको तोड़कर, पहले बैरिकेडिंग को तोड़कर यहाँ BJP के कार्यकर्ता आगे पहुंच चुके हैं।
24: पूरा लिपा पोती हो रहा और इस राज्य में सरकार है प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री है कोई नहीं सुन, इस राज्य में सिंडिकेट का राज।
2: अब सवाल दो है, पहला तो ये कि बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं, और दूसरा सवाल क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का, और दूसरा सवाल क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है, या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली।
0: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: संसदीय कार्य मंत्री का बयान, सियासत के चक्कर में विपक्ष ने बिल पर नहीं की बात, आज दोपहर 12:30 बजे बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के आरोपों पर बिफरी बीजेपी, विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं करते सवाल, मोदी सरकार चला रही रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक पर लगेगी पक्की लगाम। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई है 75, शिवसागर गोलाघाट समेत 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित, सीएम हेमंता ने पीड़ित परिवार को 4 लाख के अलावा 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। और उत्पाद से कैंसर फैलाने वाले मुकदमों को रोकने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का प्रस्ताव, अमेरिकी कोर्ट को दिया 52,000 करोड़ रुपए का ऑफर, समझौते के लिए 95% दावेदारों की मंजूरी जरूरी। देश में एक बार फिर संसद में देश के बच्चों के भविष्य सुरक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और लोकसभा में रात 11 बजे तक बहस के बाद अब कार्रवाई सुबह 11 बजे तक के लिए शुरू होने की बात कही गई है। आज लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे।
1: भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 6 करोड़ 30 लाख हो गई। यानी 4 दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी, लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो जाती है, यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहां लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है।
2: इट इज ऑल्सो अ रिइटरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जीज रिजॉल्व नॉट टू अलाउ एनीवन टू कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया, एंड देयरफॉर दिस बिल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वे as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा, या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगी। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान, पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई।
3: आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
4: विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे।
5: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने, एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
6: छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा बता दीजिए।
5: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी।
3: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।
7: जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं।
8: जस्ट बिकॉज वी सपोर्ट दिस बिल डजंट मीन और द गवर्नमेंट शुड एक्सपेक्ट अस टू अपलॉड दोज हु सेट द वर्ल्ड ऑन फायर बिकॉज दे टर्न अप विद अ बकेट ऑफ वाटर।
9: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
0: महाराष्ट्र से सत्ता पक्ष से श्रीकांत शिंदे तो विपक्ष से सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी। वहीं बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया है कि नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर से जोरदार आंदोलन होगा।

0: पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लेने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों को नोटिस भेजकर थाने बुला रही है। रोहित ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा।
1: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और आंदोलन के दौरान सीजेपी आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए थे वो पीछे लेने की मांग की। हमारे साथ हैं एनसीपी नेता रोहित पवार जी। सर, आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, कल डीजी से भी मिले थे महाराष्ट्र के, क्या मांगे रखी और क्या उनकी तरफ से कहा गया?
2: तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी थे जो उस आंदोलन में वहां पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था या सहभाग लिया था। कल और आज में कल हमने डीजे महाराष्ट्र के जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी उनसे मिले और जो मुंबई सिटी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों पे डाले गए, उनके जो सीपी है उनको अभी जाके हम मिले। दो विषय है, एक तो एफआईआर हो गया, एफआईआर अगर पीछे लेना है तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। अभी बिहार और आसाम का तो नोटिफिकेशन आ गया, अभी महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव राज्य है ऐसे हम सबको लगता था, लेकिन ये सरकार इतना स्लो है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो, इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम विनती वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये होने तक जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए।
0: रोहित पवार के साथ कई छात्र नेता भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक छवि के लोगों और छात्रों में फर्क करना सीखे।
3: सीपी सर से हमारी मुलाकात पॉजिटिव हुई, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी नई नोटिसेस बच्चों को दी नहीं जाएंगी। हमने ये भी शिकायत दाखिल की कि संडे के बाद भी, जब रेजिग्नेशन के बाद भी मुंबई में कहीं पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई तो भी नोटिसेस बच्चों को आ रही है। 23 तारीख के जिस दिन प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था तो इस तरीके की नोटिसेस ना दी जाए। बच्चों को कॉल्स जा रहे हैं फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में बुलाने के, इस तरीके के कॉल्स बंद हो या फिर लाइव लोकेशन मांगना बंद हो। तो उन्होंने इस बारे में हमसे राजी किया है कि किसी भी तरीके के फोर्सफुल कॉल्स या फिर पुलिस स्टेशन में बुला के लेना, इस तरीके का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन से नहीं किया जाएगा।
1: कितने दिनों का समय देंगे कि केसेस वापस पीछे ले जाएं, नोटिफिकेशन निकालें?
4: मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आसाम ने और बिहार ने, और आज हमने देखा जब सीपी से मिल रहे थे उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, महाराष्ट्र के साथ जो 7 राज्य है जहां पे केसेस हुए उनके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लिया जाए। बस हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इसी हफ्ते में या फिर आज या फिर 2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर बच्चे और भी मतलब प्रॉब्लम में हो कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से उस केसेस के विरोध में वो मैदान में ना उतरे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से फिर सीजीपी के आंदोलन में अलग अलग जो भी विद्यार्थी संगठन है जो रस्ते पे उतरे थे, तो बावजूद आप उन विद्यार्थी संगठन नेताओं के बावजूद आपने सभी लोगों के ऊपर वो एफआईआर किया है और लोगों के बीच में डर है, बच्चों के बीच में डर है, लेकिन बच्चे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो वही प्रशासन से विनती है कि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले या फिर बच्चे फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
0: वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के गृह विभाग को आदेश दिया कि वो छात्रों के हाल ही में हुए आंदोलन से जुड़े सभी एफआईआर वापस ले लें। ये कदम केंद्र सरकार के उस भरोसे के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के तहत नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने नीट पेपर लीक के विरोध में पाकिस्तान के कथित कनेक्शन पर कह दिया कि हम गजवाए हिंद करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
5: छात्रों का आंदोलन और गजवाए हिंद का कोई संबंध नहीं। एक तरफ अगर नीट के बारे में अगर आप प्रश्न उठा रहे थे तो फिर वही आंदोलन में

0: बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं है, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए, और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई कुख्यात अपराधी है, कोई मर्डर किया हुआ है, हाफ मर्डर किया, उसको पकड़ लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। आप दोनों को एक चश्मे से मत देखिए, इनोसेंट इनोसेंट है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, दोनों को अलग चश्मे से देखिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए, और जो अपराधी हैं भले ही उनकी उम्र 22-23 साल हो, अपराधी अपराधी, अपराधी कोई उम्र नहीं होती।
1: इस बीच बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी, जो किसी भी तरह स्वीकार नहीं है।
2: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
1: वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा पर रोहित पवार ने कहा कि हम जैसा बिल चाहते हैं, बिल वैसा हुआ तो समर्थन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष संशोधन के लिए जरूरी सुझाव देगा।
3: नीतेश राणे जी जब बात करते हैं तो खुद के दिमाग से कभी बात नहीं करते, उनको बोला जाता है कि ये बात कर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। मैं सोच रहा था नीतेश राणे जी बहुत दिन से चुप क्यों है, वो हिंदुत्व के बारे में बहुत बोलते, कांग्रेस के वक्त कुछ और बोलते थे जब कांग्रेस में थे, अभी और कुछ बोल रहे, लेकिन जब अयोध्या में, पवित्र अयोध्या में प्रभु राम जी का जो मंदिर है, वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, जो उज्जैन में वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया, तो अभी ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं एक तो बहुत गलत है, और उसके साथ अगर आप देखो तो करोड़ों बच्चे रास्ते पे आए थे, उन्होंने आंदोलन ये छेड़ा था, उन्होंने ये आंदोलन किया था, और ये वहाँ पे बच्चों को क्या AI से क्रिएट नहीं किया था, या भारत के बाहर से इम्पोर्ट तो नहीं किया था? अभी एक आध दूसरा अकाउंट कोई देश से होगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री या अगर इंफॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट होता है, IT डिपार्टमेंट, वो तो आपके पास है, वो आप जो ब्लॉक कर रहे हैं वहाँ पे करो ना, लेकिन बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या हो गया है? ईगो हर्ट हो गया है भाजपा का।
1: फिलहाल पेपर लीक प्रोटेस्ट और एंटी पेपर लीक बिल पर मचा घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
4: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में SIT एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा की महिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही से TET का पेपर लीक हो गया था। क्वेश्चन पेपर यहीं छापा गया था और यहीं से लीक हुआ था। SIT लीक केस के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को लेकर गई थी बिहार, जिससे कि उसके नेटवर्क को खंगाला जा सके। अब तक इस पूरे मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
1: महाराष्ट्र टीचर यानी टीचर एजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक केस की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट भिवंडी में एक सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच भी कर रही है। SIT मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर ले जा रही है, जिससे उसके पूरे पेपर लीक नेटवर्क को खंगाला जा सके।
5: एग्जामिनेशन के पहले ही इसको महाराष्ट्र पुलिस ने इसको ये किया था, डिटेक्ट कर लिया था, एग्जाम के पहले ही ये सब हुआ। और जब ये गुना दाखिल हुआ 27/6/2026 को, तब से लेके अभी तक इसमें 12 जो अक्यूज्ड आरोपी इनको अरेस्ट किया गया था। साथ में जो हम इसके जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र गुप्ता और इसका एक साथीदार है इंद्रजीत विजय सिंह, इनको कल समस्तीपुर में अप्रिहेंड किया गया। वहां से हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन जो है पटना, वहां में इनको अरेस्ट करके आज यहाँ पे लाया गया भिवंडी में। जी हमारा इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश में पता चलेगा और कौन कौन इसमें अक्यूज है, और लग रहा है कि और कुछ इसमें अरेस्ट होंगे।
1: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में SIT की जांच में आगरा के माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही सामने आई है, जहां TET का प्रश्न पत्र छापा गया था और वहीं से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पर्याप्त CCTV कैमरे तक नहीं लगे थे, न ही यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। अब तक इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के साथ ही और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी शामिल हैं।
6: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET पेपर लीक केस में पिछले शनिवार विजेंद्र गुप्ता

0: जो कि इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता से इंटरोगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके हाथ में एक अहम कड़ी हाथ लगी है और इस कड़ी को अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम फॉलो कर रही है, उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र शासन का एक कर्मचारी भी अब संदेह के धारा में है। आपको बता दें कि इसे अब चेक किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र शासन का जो कर्मचारी है उससे ट्रैक करने की कोशिश चल रही है, उसका रोल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो अंडर स्कैनर है। ये अहम जानकारी आज तक को पता चली है। आपको आज तक ये पहली जानकारी सामने ला रही है। आपको बता दें कि 15वां आरोपी जिसने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सोनू कुमार, जो पहले उसी प्रेस में आगरा में काम किया करता था जहां पर ये पेपर छपा था, टीईटी का पेपर, क्वेश्चन पेपर छपा था, उसने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 2 तारीख तक रिमांड में भेज दिया है।
1: थाने पुलिस कमिश्नरेट के तहत भिवंडी पुलिस की टीमें उन खरीदारों की तलाश कर रही है जो परीक्षा से पहले महाराष्ट्र में टीईटी क्वेश्चन पेपर बांट और बेच रहे थे।
2: ये जो लोग हैं बार बार जो प्रिंटिंग प्रेस में जो एम्प्लॉयज हैं इनके कांटेक्ट में रहते हैं, इनको सिर्फ स्पेसिफिक पेपर के लिए नहीं तो रेगुलरली इनको पैसा वगैरह भेजते रहते हैं, इससे इनके रिलेशन आते हैं और जो फिर इम्पोर्टेंट पेपर दिखता है इनको या बेच सकने का इनको जब समझता है तब ये फिर वहां से पेपर निकाल के ये लोग सेल के लिए आते हैं।
1: हैरानी की बात है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस को करीब 30 साल से सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेस में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी।
3: ये जो कोंगाव का जो सीआर दाखिल है टीएटी के बारे में 281/26, इसमें आज जो 15वां आरोपी अरेस्ट हुआ है ये कल आत्मसमर्पण करने के लिए भिवंडी कोर्ट में आया था, हाईकोर्ट के एक वकील है उनके जरिए आया था, तो इसको कोर्ट ने हाजिर करके लिया लेकिन इसको न्यायालयीन कोठड़ी में भेजने का हुक्म किया। वो हुक्म होने के बाद उसने आत्मसमर्पण करने के बाद आयोग का कॉल किया, आयोग ने जो पेपर रखे थे आयोग का कॉल हुआ और आयोग ने उस ऐसी मांग रखी थी कि इसको आयोग के कस्टडी में दिया जाए करके, तो कोर्ट ने उसकी जो मांग है आयोग की वो पूरी कर दी है और आयोग की कस्टडी में दिया गया था और आज उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर किए थे। अब उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर करने के बाद उनको 2 अगस्त तक का पुलिस कस्टडी दी गई।
1: सवाल है कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने टीटी प्रश्न पत्र की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट आगरा की इसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया? क्या मंत्रालय या शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी इस लीक कांड में शामिल है?
0: सोनू कुमार बिजेंद्र गुप्ता का पुराना साथी है और पेपर लीक के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो माहिम पत्रम नाम का जो प्रेस है जहां पर ये पेपर छपा था, जो ये क्वेश्चन पेपर है टीटी का वो पेपर छपा था, वहां पर ये पता चला पुलिस को कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी सीसीटीवी कवर नहीं था और कोई भी आ जा सकता था और इसी वजह से वो पेपर वहां पर छपने के बाद आसानी से जो कर्मचारी थे वो अपने जूते में छुपा कर बाहर ले आए। इससे पहले भी ऐसा होते रहा होगा क्योंकि माहिम पत्रम ये जो प्रेस है ये बहुत साल से सरकारी क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन बर्ने और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिवेश सिंह, भिवंडी आज तक।
4: एक कहावत है आपने जरूर सुनी होगी, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा चुप। क्या यही युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे पर राजनीति में होता है? जहां बीजेपी शासित राज्य में भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक हो तो विपक्ष आक्रामक होकर प्रदर्शन करता है, लेकिन जब विपक्ष के शासन वाले राज्य में पेपर लीक भर्ती धांधली होती है तो विपक्षी दल पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। यही झारखंड में हो रहा है जहां युवा नाराज हैं और सड़कों पर हैं।
5: देश में चलते संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित की बात करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक जाकर धरना देते हैं, संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं, छात्रों के हक में सवाल उठना चाहिए, सबका हक है, जरूरी भी है, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को ये पता है या नहीं कि उन्हीं की गठबंधन वाली सत्ता की नाक के नीचे हजारों छात्र परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर जेएमएम कांग्रेस शासित राज्य झारखंड की है जहां भर्ती आयोग भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। रांची में नीले रंग का तिरपाल लगाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे वो बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें नौकरी देने के नाम पर हुई परीक्षाओं में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से ठगने, रुलाने, दौड़ाने और भटकाने का आरोप है।
6: जो अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा सातवें आसमान पे है और ठीक जंतर मंतर के तर्ज पे यहाँ पे देखिए अनिश्चितकालीन यहाँ धरना का कार्यक्रम जो है वो सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह।
5: झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है। 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है। जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं।
7: सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हमारे हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना।
5: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां 4 तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर 4 है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई।
8: TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जो लखनऊ की है जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ कि कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहाँ हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपये अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपये में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपये कहाँ से आ रहा है। तो 200 रुपये के लिए सरकार जो है जो उसका जो जेपीएससी का चेयरमैन और अध्यक्ष है वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है सीटों को बेचा जा रहा है। आज 14वीं जेपीएससी सबके सामने आया है।
5: हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड एसएससी के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो।
9: कोई ऑप्शन नहीं है, घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा। हम भी अब उन्हें हम उन्हें मतलब आसरा देते हैं वो हमें डांडस देते हैं, एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं। इमोशनली हम उन्हें कर समझाते हैं वो हमें समझाते हैं, ये स्थिति बना हुआ है।
10: भरोसे पे सब कुछ चल रहा है। ये परिवार वाले को भरोसा देते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और दो और परिजन ये कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त और लो लेकिन कुछ कर के आओ और वो हो नहीं पा रहा है जो ये करना चाहते हैं।
5: अब तक सीआईडी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एल खियांगते के घर तक छापा मारा गया। जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं, सीआईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है।
11: द एजेंसी व्हाटएवर एजेंसी दैट द कमीशन हैज टेकन टू डू द वर्क एट द पॉइंट इन व्हिच द वर्क वाज गिवन at that point the understanding is that the agency was not blacklisted.
5: दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करती है और कांग्रेस राज में भर्ती में होती धांधली के आरोपों पर युवाओं के हक में प्रदर्शन करने बीजेपी उतरती है।
6: जेपीएससी के 14वें सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम्स में भारी अनियमितता के खिलाफ बीजेपी जेपीएससी कार्यालय पहुंची है। बैरिकेडिंग को जो लगाया गया था सुरक्षा के लिहाज से उसको तोड़कर पहले बैरिकेडिंग को तोड़कर यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता आगे पहुंच चुके हैं।
12: पूरा लिपा पोती हो रहा और इस राज्य में सरकार है प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री है कोई नहीं सुन, इस राज्य में सिंडिकेट का।
5: अब सवाल दो है, पहला तो ये कि बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं और दूसरा सवाल क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है, या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
13: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
14: सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है, और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने, जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ

0: एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में गर्मागर्म बहस, संसदीय कार्य मंत्री का बयान, सियासत के चक्कर में विपक्ष ने बिल पर नहीं की बात, आज दोपहर 12:30 बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के आरोपों पर बिफरी बीजेपी, विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं करते सवाल, मोदी सरकार चला रही रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक पर लगेगी पक्की लगाम। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई है 75, शिवसागर गोलाघाट समेत 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित, सीएम हेमंता ने पीड़ित परिवार को 4 लाख के अलावा 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। और उत्पाद से कैंसर फैलाने वाले मुकदमों को रोकने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का प्रस्ताव, अमेरिकी कोर्ट को दिया 52,000 करोड़ रुपए का ऑफर, समझौते के लिए 95% दावेदारों की मंजूरी जरूरी। देश में एक बार फिर संसद में देश के बच्चों के भविष्य सुरक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और लोकसभा में 11:00 तक बहस के बाद अब कार्रवाई 11:00 तक के लिए शुरू होने की बात कही गई है। आज लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे।
1: भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 6,30,00,000 हो गई, यानी 4 दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी, लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1,10,00,000 हो जाती है, यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहां लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है।
2: इट इज ऑल्सो अ रिइटरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जीज रिजॉल्व नॉट टू अलाउ एनीवन टू कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया, एंड देयरफॉर दिस बिल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वे as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा, या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगी। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान, पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई।
3: आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
4: विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे।
5: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने, एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
6: छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा बता दीजिए।
5: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी।
3: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।
7: जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं।
8: जस्ट बिकॉज वी सपोर्ट दिस बिल डजंट मीन और द गवर्नमेंट शुड एक्सपेक्ट अस टू अप्लॉड दोज हु सेट द वर्ल्ड ऑन फायर बिकॉज दे टर्न अप विद अ बकेट ऑफ वाटर।
9: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
0: महाराष्ट्र से सत्ता पक्ष से श्रीकांत शिंदे तो विपक्ष से सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी। वहीं बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया है कि नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर से जोरदार आंदोलन होगा।
10: पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लेने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों को नोटिस भेजकर थाने बुला रही है। रोहित ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा।
11: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और आंदोलन के दौरान, CJP आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए थे वो पीछे लेने की मांग की। हमारे साथ हैं एनसीपी नेता रोहित पवार जी। सर, आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, कल DG से भी मिले थे महाराष्ट्र के, क्या मांगे रखी और क्या उनकी तरफ से कहा गया?
12: तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी थे जो उस आंदोलन में वहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था या सहभाग लिया था। कल और आज में, कल हमने DG महाराष्ट्र के जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी उनसे मिले, और जो मुंबई सिटी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों पे डाले गए, उनके जो CP है उनको अभी जाके हम मिले। दो विषय है, एक तो FIR हो गया, FIR अगर पीछे लेना है तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। अभी बिहार और आसाम का तो नोटिफिकेशन आ गया, अभी महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव राज्य है ऐसे हम सबको लगता था, लेकिन ये सरकार इतना स्लो है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो, इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम विनती वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये होने तक जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेज भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए।
10: रोहित पवार के साथ कई छात्र नेता भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक छवि के लोगों और छात्रों में फर्क करना सीखे।
13: सीपी सर से हमारी मुलाकात पॉजिटिव हुई। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी नई नोटिसेस बच्चों को दी नहीं जाएंगी। हमने ये भी शिकायत दाखिल की कि संडे के बाद भी, जब रेजिग्नेशन के बाद भी मुंबई में कहीं पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई तो भी नोटिसेस बच्चों को आ रही है। 23 तारीख के जिस दिन प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था, तो इस तरीके की नोटिसेस ना दी जाए। बच्चों को कॉल्स जा रहे हैं फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में बुलाने के, इस तरीके के कॉल्स बंद हो या फिर लाइव लोकेशन मांगना बंद हो। तो उन्होंने इस बारे में हमसे राजी किया है कि किसी भी तरीके के फोर्सफुल कॉल्स या फिर पुलिस स्टेशन में बुला के लेना, इस तरीके का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन से नहीं किया जाएगा।
11: कितने दिनों का समय देंगे कि केसेस वापस पीछे ले जाएं, नोटिफिकेशन निकाले?
14: मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आसाम ने और बिहार ने, और आज हमने देखा जब सीपी से मिल रहे थे उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, महाराष्ट्र के साथ जो 7 राज्य है जहां पे केसेस हुए उनके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लिया जाए। बस हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इसी हफ्ते में या फिर आज या फिर 2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर बच्चे और भी मतलब प्रॉब्लम में हो कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से उस केसेस के विरोध में वो मैदान में ना उतरे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से फिरोज सीजीपी के आंदोलन में अलग अलग जो भी विद्यार्थी संगठन है जो रस्ते पे उतरे थे, तो बावजूद आप उन विद्यार्थी संगठन नेताओं के बावजूद आपने सभी लोगों के ऊपर वो FIR किया है और लोगों के बीच में डर है, बच्चों के बीच में डर है, लेकिन बच्चे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो वही प्रशासन से विनती है कि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले या फिर बच्चे फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
10: वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के गृह विभाग को आदेश दिया कि वो छात्रों के हाल ही में हुए आंदोलन से जुड़े सभी FIR वापस ले लें। ये कदम केंद्र सरकार के उस भरोसे के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि CJP के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के तहत नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने नीट पेपर लीक के विरोध में पाकिस्तान के कथित कनेक्शन पर कह दिया कि हम गजवाए हिंद करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
15: छात्रों का आंदोलन और गजवाए हिंद का कोई संबंध नहीं। एक तरफ अगर नीट के बारे में अगर आप प्रश्न उठा रहे थे तो फिर वही आंदोलन में सर तन से जुदा क्यों नारे दिए गए, हमारे हिंदू सनातन धर्म को क्यों गाली दिया गया, हमारे देवी देवताओं को क्यों गंदे गंदे उनके फोटो दिखाए गए, सर तन से जुदा अल्लाह और तकबीर, इसका क्या संबंध है नीट से? इसलिए नीट के बारे में जो कुछ भूमिका लेनी थी वो हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से ली है, उसका सभी प्रश्न हम छुड़ाएंगे। मगर उनके कंधों पे आप बंदूक रख के अगर कोई भी हमारे देश में अगर गजवाई हिंद कर रहा होगा ना तो सभी को हम मिट्टी में मिला देंगे।
16: हम भी यही कह रहे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं है, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए। और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई कुख्यात अपराधी है, कोई मर्डर किया हुआ है, हाफ मर्डर किया, उसको पकड़ लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। आप दोनों को एक चश्मे से मत देखिए, इनोसेंट इनोसेंट है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, दोनों को अलग चश्मे से देखिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए, और जो अपराधी हैं भले ही उनकी उम्र 22-23 साल हो, अपराधी अपराधी, अपराधी कोई उम्र नहीं होती।
10: इस बीच बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी जो किसी भी तरह स्वीकार नहीं है।
17: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
10: वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा पर रोहित पवार ने कहा कि हम जैसा बिल चाहते हैं, बिल वैसा हुआ तो समर्थन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष संशोधन के लिए जरूरी सुझाव देगा।
18: नीतेश राणे जी जब बात करते हैं तो खुद के दिमाग से कभी बात नहीं करते, उनको बोला जाता है कि ये बात कर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। मैं सोच रहा था नीतेश राणे जी बहुत दिन से चुप क्यों है, वो हिंदुत्व के बारे में बहुत बोलते, कांग्रेस के वक्त कुछ और बोलते थे जब कांग्रेस में थे, अभी और कुछ बोल रहे, लेकिन जब अयोध्या में पवित्र अयोध्या में प्रभु राम जी का जो मंदिर है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जो उज्जैन में वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया। तो अभी ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं एक तो बहुत गलत है, और उसके साथ अगर आप देखो तो करोड़ों बच्चे रास्ते पे आए थे, उन्होंने आंदोलन ये छेड़ा था, उन्होंने ये आंदोलन किया था, और ये वहाँ पे बच्चों को क्या एआई से क्रिएट नहीं किया था या भारत के बाहर से इंपोर्ट तो नहीं किया था? अभी एकाध दूसरा अकाउंट कोई देश से होगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री या अगर इंफॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट होता है आईटी डिपार्टमेंट वो तो आपके पास है, वो आप जो ब्लॉक करना है वहाँ पे करो ना, लेकिन बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या हो गया है? ईगो हर्ट हो गया है भाजपा का।
19: फिलहाल पेपर लीक प्रोटेस्ट और एंटी पेपर लीक बिल पर मचा घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा की महिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही से टीटी का पेपर लीक हो गया था। क्वेश्चन पेपर यहीं छापा गया था और यहीं से लीक हुआ था। एसआईटी लीक केस के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को लेकर गई थी बिहार, जिससे कि उसके नेटवर्क को खंगाला जा सके। अब तक इस पूरे मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
19: महाराष्ट्र टीचर यानी टीचर एजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक केस की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट भिवंडी में एक सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच भी कर रही है। एसआईटी मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर ले जा रही है, जिससे उसके पूरे पेपर लीक नेटवर्क को खंगाला जा सके।
20: एग्जामिनेशन के पहले ही इसको महाराष्ट्र पुलिस ने इसको ये किया था, डिटेक्ट कर लिया था। एग्जाम के पहले ही ये सब हुआ, और जब ये गुना दाखिल हुआ 27/6/2026 को, तब से लेके अभी तक इसमें 12 जो अक्यूज्ड आरोपी इनको अरेस्ट किया गया था। साथ में जो हम इसके जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र गुप्ता और इसका एक साथीदार है इंद्रजीत विजय सिंह, इनको कल समस्तीपुर में अप्रिहेंड किया गया। वहां से हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन जो है पटना, वहां में इनको अरेस्ट करके आज यहां पे लाया गया भिवंडी में। जी, हमारा इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश में पता चलेगा और कौन कौन इसमें अक्यूज्ड है, और लग रहा है कि और कुछ इसमें अरेस्ट होगी।
19: महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच में आगरा के माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही सामने आई है, जहां टीटी का प्रश्न पत्र छापा गया था और वहीं से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे थे, न ही यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। अब तक इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के साथ ही और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी शामिल हैं।
21: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET पेपर लीक केस में पिछले शनिवार विजेंद्र गुप्ता, जो कि इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता से इंटरोगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके हाथ में एक अहम कड़ी हाथ लगी है, और इस कड़ी को अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम फॉलो कर रही है, उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र शासन का एक कर्मचारी भी अब संदेह के धारा में है। आपको बता दें कि इसे अब चेक किया जा रहा है, और ये महाराष्ट्र शासन का जो कर्मचारी है उससे ट्रैक करने की कोशिश चल रही है, उसका रोल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो अंडर स्कैनर है। ये अहम जानकारी आज तक को पता चली है। आपको आज तक ये पहली जानकारी सामने ला रही है। आपको बता दें कि 15वां आरोपी जिसने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सोनू कुमार, जो पहले उसी प्रेस में आगरा में काम किया करता था जहां पर ये पेपर छपा था, टीईटी का पेपर, क्वेश्चन पेपर छपा था, उसने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 2 तारीख तक रिमांड में भेज दिया है।
19: ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के तहत भिवंडी पुलिस की टीमें उन खरीदारों की तलाश कर रही है जो परीक्षा से पहले महाराष्ट्र में टीईटी क्वेश्चन पेपर बांट और बेच रहे थे।
20: ये जो लोग हैं बार बार जो प्रिंटिंग प्रेस में जो एम्प्लॉयज है इनके कांटेक्ट में रहते हैं, इनको सिर्फ स्पेसिफिक पेपर के लिए नहीं तो रेगुलरली इनको पैसा वगैरह भेजते रहते हैं, इससे इनके रिलेशन आते हैं, और जो फिर इम्पोर्टेंट पेपर दिखता है इनको या बेच सकने का इनको जब समझता है तब ये फिर वहां से पेपर निकाल के ये लोग सेल के लिए आते हैं।
19: हैरानी की बात है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस को करीब 30 साल से सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेस में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी।
1: ये जो कोंडगांव का जो सीआर दाखिल है टीएटी के बारे में 281/26, इसमें आज जो 15वां आरोपी अरेस्ट हुआ है, ये कल आत्मसमर्पण करने के लिए भिवंडी कोर्ट में आया था। हाई कोर्ट के एक वकील है, उनके जरिए आया था, तो इसको कोर्ट ने हाजिर करके लिया, लेकिन इसको न्यायालयीन कोठड़ी में भेजने का हुक्म किया। वो हुक्म होने के बाद उसने आत्मसमर्पण करने के बाद आयोग का कॉल किया, आयोग ने जो पेपर रखे थे आयोग का कॉल हुआ और आयोग ने ऐसी मांग रखी थी कि इसको आयोग के कस्टडी में दिया जाए करके, तो कोर्ट ने उसकी जो मांग है आयोग की वो पूरी कर दी है और आयोग की कस्टडी में दिया गया था और आज उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर किए थे। अब उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर करने के बाद उनको 2 अगस्त तक का पुलिस कस्टडी दी गई।
19: सवाल है कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने टीटी प्रश्न पत्र की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट आगरा की इसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया? क्या मंत्रालय या शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी इस लीक कांड में शामिल है?
21: सोनू कुमार बिजेंद्र गुप्ता का पुराना साथी है और पेपर लीक के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो माहिम पत्रम नाम का जो प्रेस है जहां पर ये पेपर छपा था, जो ये क्वेश्चन पेपर है टीटी का, वो पेपर छपा था वहां पर, ये पता चला पुलिस को कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी सीसीटीवी कवर नहीं था और कोई भी आ जा सकता था और इसी वजह से वो पेपर वहां पर छपने के बाद आसानी से जो कर्मचारी थे वो अपने जूते में छुपा कर बाहर ले आए। इससे पहले भी ऐसा होते रहा होगा क्योंकि माहिम पत्रम ये जो प्रेस है ये बहुत साल से सरकारी क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन बर्ने और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिवेश सिंह, भिवंडी आज तक।
0: एक कहावत है आपने जरूर सुनी होगी, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा चुप। क्या यही युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे पर राजनीति में होता है? जहां बीजेपी शासित राज्य में भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक हो, तो विपक्ष आक्रामक होकर प्रदर्शन करता है, लेकिन जब विपक्ष के शासन वाले राज्य में पेपर लीक भर्ती धांधली होती है तो विपक्षी दल पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। यही झारखंड में हो रहा है जहां युवा नाराज हैं और सड़कों पर हैं।
2: देश में चलते संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित की बात करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक जाकर धरना देते हैं, संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं, छात्रों के हक में सवाल उठना चाहिए, सबका हक है, जरूरी भी है, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को ये पता है या नहीं कि उन्हीं की गठबंधन वाली सत्ता की नाक के नीचे हजारों छात्र परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर जेएमएम कांग्रेस शासित राज्य झारखंड की है, जहां भर्ती आयोग भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। रांची में नीले रंग का तिरपाल लगाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे वो बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें नौकरी देने के नाम पर हुई परीक्षाओं में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से ठगने, रुलाने, दौड़ाने और भटकाने का आरोप है।
22: जो अभ्यर्थी हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे है और ठीक जंतर मंतर के तर्ज पे यहाँ पे देखिए अनिश्चितकालीन यहाँ धरना का कार्यक्रम जो है वो सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह।
2: झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है, 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है, जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं।
23: सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हमारे हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना।
2: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां 4 तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर चार है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो एक महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई।
23: TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जो लखनऊ की है जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ कि कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहाँ हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपये अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपये में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपये कहाँ से आ रहा है। तो 200 रुपये के लिए सरकार जो है जो उसका जो JPC का चेयरमैन और अध्यक्ष है वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है सीटों को बेचा जा रहा है। आज 14वीं JPC सबके सामने आया है।
2: हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड SSC के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो।
3: कोई ऑप्शन नहीं है, घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा। हम भी अब उन्हें हम उन्हें मतलब आसरा देते हैं, वो हमें ढांढस देते हैं, एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं। इमोशनली हम उन्हें कर समझाते हैं, वो हमें समझाते हैं, ये स्थिति बना हुआ है।
4: भरोसे पे सब कुछ चल रहा है। ये परिवार वाले को भरोसा देते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और दो और परिजन ये कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त और लो लेकिन कुछ करके आओ और वो हो नहीं पा रहा है जो ये करना चाहते हैं।
2: अब तक CID ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर JPSC के अध्यक्ष रहे एल खियांगते के घर तक छापा मारा गया। JPSC अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं, CID की टीम पूछताछ कर चुकी है।
5: The agency, whatever agency that the commission has taken to do the work, at the point in which the work was given, at that point, the understanding is that the agency was not blacklisted.
2: दिल्ली में BJP सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करती है और कांग्रेस राज्य में भर्ती में होती धांधली के आरोपों पर युवाओं के हक में प्रदर्शन करने BJP उतरती है।
22: JPSC के 14वें सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम्स में भारी अनियमितता के खिलाफ BJP JPSC कार्यालय पहुंची है। बैरिकेडिंग को जो लगाया गया था सुरक्षा के लिहाज से उसको तोड़कर, पहले बैरिकेडिंग को तोड़कर यहाँ BJP के कार्यकर्ता आगे पहुंच चुके हैं।
6: पूरा लिपा पोती हो रहा और इस राज्य में सरकार है प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री है कोई नहीं सुन, इस राज्य में सिंडिकेट का राज।
2: अब सवाल दो है, पहला तो ये कि बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं और दूसरा सवाल क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: के चक्कर में विपक्ष ने बिल पर नहीं की बात, आज दोपहर 12:30 बजे बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के आरोपों पर बिफरी बीजेपी, विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं करते सवाल, मोदी सरकार चला रही रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक पर लगेगी पक्की लगाम। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई है 75, शिवसागर गोलाघाट समेत 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित, सीएम हेमंता ने पीड़ित परिवार को 4 लाख के अलावा 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। और उत्पाद से कैंसर फैलाने वाले मुकदमों को रोकने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का प्रस्ताव, अमेरिकी कोर्ट को दिया 52,000 करोड़ रुपए का ऑफर, समझौते के लिए 95% दावेदारों की मंजूरी जरूरी। देश में एक बार फिर संसद में देश के बच्चों के भविष्य सुरक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और लोकसभा में 11:00 बजे तक बहस के बाद अब कार्रवाई 11:00 बजे तक के लिए शुरू होने की बात कही गई है। आज लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे।
1: भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 6,30,00,000 हो गई, यानी 4 दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी, लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1,10,00,000 हो जाती है, यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहां लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है।
2: इट इज ऑल्सो अ रिइटरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जीज रिजॉल्व नॉट टू अलाउ एनीवन टू कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया, एंड देयरफॉर दिस बिल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वे as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा, या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगी। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान, पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई।
3: आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
4: विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे।
5: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने, एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
6: छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए।
5: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी।
3: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।
7: जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं।
8: जस्ट बिकॉज वी सपोर्ट दिस बिल डजंट मीन और द गवर्नमेंट शुड एक्सपेक्ट अस टू अप्लॉड दोज हू सेट द वर्ल्ड ऑन फायर बिकॉज दे टर्न अप विद अ बकेट ऑफ वाटर।
9: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
0: महाराष्ट्र से सत्ता पक्ष से श्रीकांत शिंदे तो विपक्ष से सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी। वहीं बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया है कि नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर से जोरदार आंदोलन होगा।

0: पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लेने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों को नोटिस भेजकर थाने बुला रही है। रोहित ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा।
1: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और आंदोलन के दौरान सीजेपी आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए थे वो पीछे लेने की मांग की। हमारे साथ हैं एनसीपी नेता रोहित पवार जी। सर, आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, कल डीजी से भी मिले थे महाराष्ट्र के, क्या मांगे रखी और क्या उनकी तरफ से कहा गया?
2: तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी थे जो उस आंदोलन में वहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था या सहभाग लिया था। कल और आज में कल हमने डीजी महाराष्ट्र के जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी उनसे मिले और जो मुंबई सिटी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों पे डाले गए, उनके जो सीपी है उनको अभी जाके हम मिले। दो विषय है, एक तो एफआईआर हो गया, एफआईआर अगर पीछे लेना है तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। अभी बिहार और आसाम का तो नोटिफिकेशन आ गया, अभी महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव राज्य है ऐसे हम सबको लगता था, लेकिन ये सरकार इतना स्लो है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम विनती वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये होने तक जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए।
0: रोहित पवार के साथ कई छात्र नेता भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक छवि के लोगों और छात्रों में फर्क करना सीखे।
3: सीपी सर से हमारी मुलाकात पॉजिटिव हुई, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी नई नोटिसेस बच्चों को दी नहीं जाएंगी। हमने ये भी शिकायत दाखिल की कि संडे के बाद भी, जब रेजिग्नेशन के बाद भी मुंबई में कहीं पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई तो भी नोटिसेस बच्चों को आ रही है। 23 तारीख के जिस दिन प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था तो इस तरीके की नोटिसेस ना दी जाए। बच्चों को कॉल्स जा रहे हैं फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में बुलाने के, इस तरीके के कॉल्स बंद हो या फिर लाइव लोकेशन मांगना बंद हो। तो उन्होंने इस बारे में हमसे राजी किया है कि किसी भी तरीके के फोर्सफुल कॉल्स या फिर पुलिस स्टेशन में बुला के लेना, इस तरीके का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन से नहीं किया जाएगा।
1: कितने दिनों का समय देंगे कि केसेस वापस पीछे ले जाएं, नोटिफिकेशन निकालें?
4: मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आसाम ने और बिहार ने, और आज हमने देखा जब सीपी से मिल रहे थे उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, महाराष्ट्र के साथ जो 7 राज्य है जहां पे केसेस हुए उनके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन ले जाए। बस हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इसी हफ्ते में या फिर आज या फिर 2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर बच्चे और भी मतलब प्रॉब्लम में हो कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से उस केसेस के विरोध में वो मैदान में ना उतरे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से फिर वो सीजीपी के आंदोलन में अलग अलग जो भी विद्यार्थी संगठन है जो रस्ते पे उतरे थे, तो बावजूद आप उन विद्यार्थी संगठन नेताओं के बावजूद आपने सभी लोगों के ऊपर वो एफआईआर किया है और लोगों के बीच में डर है, बच्चों के बीच में डर है, लेकिन बच्चे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो वही प्रशासन से विनती है कि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले या फिर बच्चे फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
0: वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के गृह विभाग को आदेश दिया कि वो छात्रों के हाल ही में हुए आंदोलन से जुड़े सभी एफआईआर वापस ले लें। ये कदम केंद्र सरकार के उस भरोसे के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के तहत नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने नीट पेपर लीक के विरोध में पाकिस्तान के कथित कनेक्शन पर कह दिया कि हम गजवाए हिंद करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
5: छात्रों का आंदोलन और गजवाए हिंद का कोई संबंध नहीं। एक तरफ अगर नीट के बारे में अगर आप प्रश्न उठा रहे थे तो फिर वही आंदोलन में सर तन से जुदा क्यों नारे दिए गए, हमारे हिंदू सनातन धर्म को क्यों गाली दिया गया, हमारे देवी देवताओं को क्यों गंदे गंदे उनके फोटो दिखाए गए, सर तन से जुदा अल्लाह और तकबीर, इसका क्या संबंध है नीट से? इसलिए नीट के बारे में जो कुछ भूमिका लेनी थी वो हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से ली है, उसका सभी प्रश्न हम छुड़ाएंगे। मगर उनके कंधों पे आप बंदूक रख के अगर कोई भी हमारे देश में अगर गजवाई हिंद कर रहा होगा ना तो सभी को हम मिट्टी में मिला देंगे।
6: हम भी यही कह रहे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं है, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए। और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई

0: ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी, जो किसी भी तरह स्वीकार नहीं है।
1: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है। आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
0: वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा पर रोहित पवार ने कहा कि हम जैसा बिल चाहते हैं, बिल वैसा हुआ तो समर्थन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष संशोधन के लिए जरूरी सुझाव देगा।
2: नीतीश राणे जी जब बात करते हैं तो खुद के दिमाग से कभी बात नहीं करते, उनको बोला जाता है कि ये बात कर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। मैं सोच रहा था नीतीश राणे जी बहुत दिन से चुप क्यों है, वो हिंदुत्व के बारे में बहुत बोलते, कांग्रेस के वक्त कुछ और बोलते थे जब कांग्रेस में थे, अभी और कुछ बोल रहे, लेकिन जब अयोध्या में, पवित्र अयोध्या में प्रभु राम जी का जो मंदिर है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, जो उज्जैन में वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया, तो अभी ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं एक तो बहुत गलत है, और उसी के साथ अगर आप देखो तो करोड़ों बच्चे रास्ते पे आए थे, उन्होंने आंदोलन ये छेड़ा था, उन्होंने ये आंदोलन किया था, और ये वहाँ पे बच्चों को क्या AI से क्रिएट नहीं किया था, या भारत के बाहर से इंपोर्ट तो नहीं किया था? अभी एकाध दूसरा अकाउंट कोई देश से होगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री या अगर इंफॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट होता है IT डिपार्टमेंट, वो तो आपके पास है, वो आप जो ब्लॉक करना है वहाँ पे करो ना, लेकिन बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या हो गया है? ईगो हर्ट हो गया है भाजपा का।
0: फिलहाल पेपर लीक प्रोटेस्ट और एंटी पेपर लीक बिल पर मचा घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
3: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में SIT एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा की महिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही से TET का पेपर लीक हो गया था। क्वेश्चन पेपर यहीं छापा गया था और यहीं से लीक हुआ था। SIT लीक केस के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को लेकर गई थी बिहार, जिससे कि उसके नेटवर्क को खंगाला जा सके। अब तक इस पूरे मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
0: महाराष्ट्र टीचर यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक केस की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट भिवंडी में एक सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच भी कर रही है। SIT मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर ले जा रही है, जिससे उसके पूरे पेपर लीक नेटवर्क को खंगाला जा सके।
4: एग्जामिनेशन के पहले ही इसको महाराष्ट्र पुलिस ने इसको ये किया था, डिटेक्ट कर लिया था, एग्जाम के पहले ही ये सब हुआ। और जब ये गुना दाखिल हुआ 27/6/2026 को, तब से लेके अभी तक इसमें 12 जो अक्यूज है, आरोपी, इनको अरेस्ट किया गया था। साथ में जो हम इसके जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र गुप्ता और इसका एक साथीदार है इंद्रजीत विजय सिंह, इनको कल समस्तीपुर में अप्रिहेंड किया गया। वहां से हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन जो है पटना, वहां में इनको अरेस्ट करके आज यहां पे लाया गया भिवंडी में। जी हमारा इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश में पता चलेगा और कौन कौन इसमें अक्यूज्ड है, और लग रहा है कि और कुछ इसमें अरेस्ट होंगे।
0: महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में SIT की जांच में आगरा के माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही सामने आई है, जहां टीटी का प्रश्न पत्र छापा गया था और वहीं से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पर्याप्त CCTV कैमरे तक नहीं लगे थे, न ही यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। अब तक इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के साथ ही और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी शामिल हैं।
5: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET पेपर लीक केस में पिछले शनिवार विजेंद्र गुप्ता, जो कि इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता से इंटेरोगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके हाथ में एक अहम कड़ी हाथ लगी है, और इस कड़ी को अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम फॉलो कर रही है, उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र शासन का एक कर्मचारी भी अब संदेह के धारा में है। आपको बता दें कि इसे अब चेक किया जा रहा है, और ये महाराष्ट्र शासन का जो कर्मचारी है उससे ट्रैक करने की कोशिश चल रही है, उसका

0: टोल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो अंडर स्कैनर है। ये अहम जानकारी आज तक को पता चली है, आपको आज तक ये पहली जानकारी सामने ला रही है। आपको बता दें कि 15वां आरोपी जिसने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सोनू कुमार, जो पहले उसी प्रेस में आगरा में काम किया करता था जहां पर ये पेपर छपा था, टीईटी का पेपर, क्वेश्चन पेपर छपा था, उसने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 2 तारीख तक रिमांड में भेज दिया है।
1: थाने पुलिस कमिश्नरेट के तहत भिवंडी पुलिस की टीमें उन खरीदारों की तलाश कर रही है जो परीक्षा से पहले महाराष्ट्र में टीईटी क्वेश्चन पेपर बांट और बेच रहे थे।
2: ये जो लोग हैं बार बार जो प्रिंटिंग प्रेस में जो एम्प्लॉयज हैं इनके कांटेक्ट में रहते हैं, इनको सिर्फ स्पेसिफिक पेपर के लिए नहीं तो रेगुलरली इनको पैसा वगैरह भेजते रहते हैं, इससे इनके रिलेशन आते हैं और जो फिर इम्पोर्टेंट पेपर दिखता है इनको या बेच सकने का इनको जब समझता है तब ये फिर वहां से पेपर निकाल के ये लोग सेल के लिए आते हैं।
1: हैरानी की बात है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस को करीब 30 साल से सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेस में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी।
3: ये जो कोंगाव का जो सीआर दाखिल है टीएटी के बारे में 281/26, इसमें जो आज जो 15वां आरोपी अरेस्ट हुआ है ये कल आत्मसमर्पण करने के लिए भिवंडी कोर्ट में आया था, हाईकोर्ट के एक वकील है उनके जरिए आया था, तो इसको कोर्ट ने हाजिर करके लिया लेकिन इसको न्यायालयीन कोठड़ी में भेजने का हुक्म किया। वो हुक्म होने के बाद उसने आत्मसमर्पण करने के बाद आयोग का कॉल किया, आयोग ने जो पेपर रखे थे आयोग का कॉल हुआ और आयोग ने उस ऐसी मांग रखी थी कि इसको आयोग के कस्टडी में दिया जाए करके, तो कोर्ट ने उसकी जो मांग है आयोग की वो पूरी कर दी है और आयोग की कस्टडी में दिया गया था और आज उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर किए थे। अब उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर करने के बाद उनको 2 अगस्त तक का पुलिस कस्टडी दी गई।
1: सवाल है कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने टीटी प्रश्न पत्र की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट आगरा की इसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया? क्या मंत्रालय या शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी इस लीक कांड में शामिल है?
0: सोनू कुमार बिजेंद्र गुप्ता का पुराना साथी है और पेपर लीक के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो माहिम पत्रम नाम का जो प्रेस है जहां पर ये पेपर छपा था, जो ये क्वेश्चन पेपर है टीटी का वो पेपर छपा था, वहां पर ये पता चला पुलिस को कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी सीसीटीवी कवर नहीं था और कोई भी आ जा सकता था और इसी वजह से वो पेपर वहां पर छपने के बाद आसानी से जो कर्मचारी थे वो अपने जूते में छुपा कर बाहर ले आए। इससे पहले भी ऐसा होते रहा होगा क्योंकि माहिम पत्रम ये जो प्रेस है ये बहुत साल से सरकारी क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन बर्ने और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिवेश सिंह, भिवंडी आज तक।
4: एक कहावत है आपने जरूर सुनी होगी, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा चुप। क्या यही युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे पर राजनीति में होता है? जहां बीजेपी शासित राज्य में भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक हो तो विपक्ष आक्रामक होकर प्रदर्शन करता है, लेकिन जब विपक्ष के शासन वाले राज्य में पेपर लीक भर्ती धांधली होती है तो विपक्षी दल पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। यही झारखंड में हो रहा है जहां युवा नाराज हैं और सड़कों पर हैं।
5: देश में चलते संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित की बात करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक जाकर धरना देते हैं, संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं, छात्रों के हक में सवाल उठना चाहिए, सबका हक है, जरूरी भी है, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को ये पता है या नहीं कि उन्हीं की गठबंधन वाली सत्ता की नाक के नीचे हजारों छात्र परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर जेएमएम कांग्रेस शासित राज्य झारखंड की है जहां भर्ती आयोग भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। रांची में नीले रंग का तिरपाल लगाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे वो बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें नौकरी देने के नाम पर हुई परीक्षाओं में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से ठगने, रुलाने, दौड़ाने और भटकाने का आरोप है।
6: जो अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पे है और ठीक जंतर मंतर के तर्ज पे यहाँ पे देखिए अनिश्चितकालीन यहाँ धरना का कार्यक्रम जो है वो सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह।
5: झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है, 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है। जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं।
7: सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हमारे हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना सकें।
5: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां चार तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर चार है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो एक महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई, तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई।
8: TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जो लखनऊ की है, जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ, कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहाँ हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपया अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपया में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपया कहाँ से आ रहा है। तो 200 रुपया के लिए सरकार जो है जो उसका जो जेपीसी का चेयरमैन और अध्यक्ष है वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है सीटों को बेचा जा रहा है। 14वीं जेपीसी सबके सामने आया है।
5: हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड एसएससी के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो,
9: कोई ऑप्शन नहीं है। घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा, हम भी अब उन्हें हम उन्हें मतलब आसरा देते हैं, वो हमें डांडा देते हैं, एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं। इमोशनली हम उन्हें कर समझाते हैं, वो हमें समझाते हैं, ये स्थिति बना हुआ है।
10: भरोसे पे सब कुछ चल रहा है, ये परिवार वाले को भरोसा देते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और दो और परिजन ये कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त और लो लेकिन कुछ करके आओ, और वो हो नहीं पा रहा है जो ये करना चाहते हैं।
5: अब तक सीआईडी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एल खियांगते के घर तक छापा मारा गया। जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं, सीआईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है।
11: The agency, whatever agency that the commission has taken to do the work, at the point in which the work was given, at that point, the understanding is that the agency was not blacklisted.
5: दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करती है और कांग्रेस राज्य में भर्ती में होती धांधली के आरोपों पर युवाओं के हक में प्रदर्शन करने बीजेपी उतरती है।
6: जेपीएससी के 14वें सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम में भारी अनियमितता के खिलाफ बीजेपी जेपीएससी कार्यालय पहुंची है। बैरिकेडिंग को जो लगाया गया था सुरक्षा के लिहाज से उसको तोड़कर, पहले बैरिकेडिंग को तोड़कर यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता आगे पहुंच चुके हैं।
12: पूरा लिपा पोती हो और इस राज्य में सरकार है प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री है कोई नहीं सुन, इस राज्य में सिंडिकेट का राज।
5: अब सवाल दो है, पहला तो ये कि बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं, और दूसरा सवाल क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है, या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में गर्मागर्म बहस, संसदीय कार्य मंत्री का बयान, सियासत के चक्कर में विपक्ष ने बिल पर नहीं की बात, आज दोपहर 12:30 बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के आरोपों पर बिफरी बीजेपी, विपक्ष की नियत पर उठाए सवाल, पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं करते सवाल, मोदी सरकार चला रही रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक पर लगेगी पक्की लगाम। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई है 75, शिवसागर गोलाघाट समेत 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित, सीएम हेमंता ने पीड़ित परिवार को 4 लाख के अलावा 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। और उत्पाद से कैंसर फैलाने वाले मुकदमों को रोकने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का प्रस्ताव अमेरिकी कोर्ट को दिया, 52,000 करोड़ रुपए का ऑफर, समझौते के लिए 95% दावेदारों की मंजूरी जरूरी। देश में एक बार फिर संसद में देश के बच्चों के भविष्य सुरक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और लोकसभा में 11:00 तक बहस के बाद अब कार्रवाई 11:00 तक के लिए शुरू होने की बात कही गई है। आज लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे।
1: भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 6,30,00,000 हो गई, यानी 4 दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी, लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1,10,00,000 हो जाती है, यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहां लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है।
2: इट इज ऑल्सो अ रिइटरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जीज रिजॉल्व नॉट टू अलाउ एनीवन टू कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया, एंड देयरफॉर दिस बिल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वे as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा, या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगी। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान, पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई।
3: आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
4: विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे।
5: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने, एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
6: छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा, आप बता दीजिए।
5: मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी।
3: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।
7: जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं।
8: जस्ट बिकॉज वी सपोर्ट दिस बिल डजंट मीन और द गवर्नमेंट शुड एक्सपेक्ट अस टू अपलॉड दोज हु सेट द वर्ल्ड ऑन फायर बिकॉज दे टर्न अप विद अ बकेट ऑफ वाटर।
9: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फॉर्मो।
0: महाराष्ट्र से सत्ता पक्ष से श्रीकांत शिंदे तो विपक्ष से सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी। वहीं बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया है कि नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर से जोरदार आंदोलन होगा।
10: पेपर लीक केस में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लेने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों को नोटिस भेजकर थाने बुला रही है। रोहित ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा।
11: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और आंदोलन के दौरान CJP आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए थे वो पीछे लेने की मांग की। हमारे साथ हैं एनसीपी नेता रोहित पवार जी। सर, आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, कल DG से भी मिले थे महाराष्ट्र के, क्या मांगे रखी और क्या उनकी तरफ से कहा गया?
12: तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी थे जो उस आंदोलन में वहां पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था या सहभाग लिया था। कल और आज में कल हमने DG महाराष्ट्र के जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी उनसे मिले और जो मुंबई सिटी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों पे डाले गए, उनके जो CP है उनको अभी जाके हम मिले। दो विषय है, एक तो FIR हो गया, FIR अगर पीछे लेना है तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। अभी बिहार और आसाम का तो नोटिफिकेशन आ गया, अभी महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव राज्य है ऐसे हम सबको लगता था, लेकिन ये सरकार इतना स्लो है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो, इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम विनती वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये होने तक जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए।
10: रोहित पवार के साथ कई छात्र नेता भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक छवि के लोगों और छात्रों में फर्क करना सीखे।
13: सीपी सर से हमारी मुलाकात पॉजिटिव हुई, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी नई नोटिसेस बच्चों को दी नहीं जाएंगी। हमने ये भी शिकायत दाखिल की कि संडे के बाद भी, जब रेजिग्नेशन के बाद भी मुंबई में कहीं पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई तो भी नोटिसेस बच्चों को आ रही है। 23 तारीख के जिस दिन प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था, तो इस तरीके की नोटिसेस ना दी जाए। बच्चों को कॉल्स जा रहे हैं फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में बुलाने के, इस तरीके के कॉल्स बंद हो या फिर लाइव लोकेशन मांगना बंद हो। तो उन्होंने इस बारे में हमसे राजी किया है कि किसी भी तरीके के फोर्सफुल कॉल्स या फिर पुलिस स्टेशन में बुला के लेना, इस तरीके का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन से नहीं किया जाएगा।
11: कितने दिनों का समय देंगे कि केसेस वापस पीछे ले जाएं, नोटिफिकेशन निकालें?
14: मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आसाम ने और बिहार ने, और आज हमने देखा जब सीपी से मिल रहे थे उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, महाराष्ट्र के साथ जो 7 राज्य है जहां पे केसेस हुए उनके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन ले जाए। बस हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इसी हफ्ते में या फिर आज या फिर 2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर बच्चे और भी मतलब प्रॉब्लम में हो कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से उस केसेस के विरोध में वो मैदान में ना उतरे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से फिर सीजीपी के आंदोलन में अलग अलग जो भी विद्यार्थी संगठन है जो रस्ते पे उतरे थे, तो बावजूद आप उन विद्यार्थी संगठन नेताओं के बावजूद आपने सभी लोगों के ऊपर वो एफआईआर किया है और लोगों के बीच में डर है, बच्चों के बीच में डर है, लेकिन बच्चे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो वही प्रशासन से विनती है कि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले या फिर बच्चे फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
10: वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के गृह विभाग को आदेश दिया कि वो छात्रों के हाल ही में हुए आंदोलन से जुड़े सभी एफआईआर वापस ले लें। ये कदम केंद्र सरकार के उस भरोसे के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के तहत नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने नीट पेपर लीक के विरोध में पाकिस्तान के कथित कनेक्शन पर कह दिया कि हम गजवाए हिंद करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
15: छात्रों का आंदोलन और गजवाए हिंद का कोई संबंध नहीं। एक तरफ अगर नीट के बारे में अगर आप प्रश्न उठा रहे थे तो फिर वही आंदोलन में सर तन से जुदा क्यों नारे दिए गए, हमारे हिंदू सनातन धर्म को क्यों गाली दिया गया, हमारे देवी देवताओं को क्यों गंदे गंदे उनके फोटो दिखाए गए, सर तन से जुदा, अल्लाह तकबीर, इसका क्या संबंध है नीट से? इसलिए नीट के बारे में जो कुछ भूमिका लेनी थी वो हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से ली है, उसका सभी प्रश्न हम छुड़ाएंगे। मगर उनके कंधों पे आप बंदूक रख के अगर कोई भी हमारे देश में अगर गजवा हिम कर रहा होगा ना तो सभी को हम मिट्टी में मिला देंगे।
16: हम भी यही कह रहे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं है, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए। और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई कुख्यात अपराधी है, कोई मर्डर किया हुआ है, हाफ मर्डर किया, उसको पकड़ लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। आप दोनों को एक चश्मे से मत देखिए, इनोसेंट इनोसेंट है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, दोनों को अलग चश्मे से देखिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए, और जो अपराधी हैं भले ही उनकी उम्र 22-23 साल हो, अपराधी अपराधी हैं, अपराधी कोई उम्र नहीं होती।
10: इस बीच बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी जो किसी भी तरह स्वीकार नहीं है।
17: हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
10: वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा पर रोहित पवार ने कहा कि हम जैसा बिल चाहते हैं, बिल वैसा हुआ तो समर्थन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष संशोधन के लिए जरूरी सुझाव देगा।
18: नितेश राणे जी जब बात करते हैं तो खुद के दिमाग से कभी बात नहीं करते, उनको बोला जाता है कि ये बात कर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। मैं सोच रहा था नितेश राणे जी बहुत दिन से चुप क्यों है, वो हिंदुत्व के बारे में बहुत बोलते, कांग्रेस के वक्त कुछ और बोलते थे जब कांग्रेस में थे, अभी और कुछ बोल रहे, लेकिन जब अयोध्या में, पवित्र अयोध्या में प्रभु राम जी का जो मंदिर है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, जो उज्जैन में वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया, तो अभी ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं एक तो बहुत गलत है, और उसके साथ अगर आप देखो तो करोड़ों बच्चे रास्ते पे आए थे, उन्होंने आंदोलन ये छेड़ा था, उन्होंने ये आंदोलन किया था, और ये वहाँ पे बच्चों को क्या AI से क्रिएट नहीं किया था या भारत के बाहर से इम्पोर्ट तो नहीं किया था? अभी एक आध दूसरा अकाउंट कोई देश से होगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री या अगर इंफॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट होता है IT डिपार्टमेंट, वो तो आपके पास है, वो आप जो ब्लॉक कर रहे हैं वहाँ पे करो ना, लेकिन बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या हो गया है? ईगो हर्ट हो गया है भाजपा का।
19: फिलहाल पेपर लीक प्रोटेस्ट और एंटी पेपर लीक बिल पर मचा घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में SIT एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा की महिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही से TET का पेपर लीक हो गया था। क्वेश्चन पेपर यहीं छापा गया था और यहीं से लीक हुआ था। SIT लीक केस के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को लेकर गई थी बिहार, जिससे कि उसके नेटवर्क को खंगाला जा सके। अब तक इस पूरे मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
19: महाराष्ट्र टीचर यानी टीचर एजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक केस की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट भिवंडी में एक सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच भी कर रही है। SIT मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर ले जा रही है, जिससे उसके पूरे पेपर लीक नेटवर्क को खंगाला जा सके।
20: एग्जामिनेशन के पहले ही इसको महाराष्ट्र पुलिस ने इसको ये किया था, डिटेक्ट कर लिया था। एग्जाम के पहले ही ये सब हुआ, और जब ये गुना दाखिल हुआ 27/6/2026 को, तब से लेके अभी तक इसमें 12 जो अक्यूज्ड आरोपी इनको अरेस्ट किया गया था। साथ में जो हम इसके जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र गुप्ता और इसका एक साथीदार है इंद्रजीत विजय सिंह, इनको कल समस्तीपुर में अप्रिहेंड किया गया। वहां से हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन जो है पटना, वहां में इनको अरेस्ट करके आज यहाँ पे लाया गया भिवंडी में। जी, हमारा इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश में पता चलेगा और कौन कौन इसमें अक्यूज्ड है, और लग रहा है कि और कुछ इसमें अरेस्ट होंगे।
19: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में SIT की जांच में आगरा के माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही सामने आई है, जहां TET का प्रश्न पत्र छापा गया था और वहीं से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पर्याप्त CCTV कैमरे तक नहीं लगे थे, न ही यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। अब तक इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के साथ ही और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी शामिल हैं।
21: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET पेपर लीक केस में पिछले शनिवार विजेंद्र गुप्ता, जो कि इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता से इंटरोगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके हाथ में एक अहम कड़ी हाथ लगी है, और इस कड़ी को अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम फॉलो कर रही है, उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र शासन का एक कर्मचारी भी अब संदेह के धारा में है। आपको बता दें कि इसे अब चेक किया जा रहा है, और ये महाराष्ट्र शासन का जो कर्मचारी है उससे ट्रैक करने की कोशिश चल रही है, उसका रोल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो अंडर स्कैनर है। ये अहम जानकारी आज तक को पता चली है। आपको आज तक ये पहली जानकारी सामने ला रही है। आपको बता दें कि 15वां आरोपी जिसने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सोनू कुमार, जो पहले उसी प्रेस में आगरा में काम किया करता था जहां पर ये पेपर छपा था, TET का पेपर, क्वेश्चन पेपर छपा था, उसने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 2 तारीख तक रिमांड में भेज दिया है।
19: ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के तहत भिवंडी पुलिस की टीमें उन खरीदारों की तलाश कर रही है जो परीक्षा से पहले महाराष्ट्र में TET क्वेश्चन पेपर बांट और बेच रहे थे।
20: ये जो लोग हैं बार बार जो प्रिंटिंग प्रेस में जो एम्प्लॉइज है इनके कांटेक्ट में रहते हैं, इनको सिर्फ स्पेसिफिक पेपर के लिए नहीं तो रेगुलरली इनको पैसा वगैरह भेजते रहते हैं, इससे इनके रिलेशन आते हैं, और जो फिर इम्पोर्टेंट पेपर दिखता है इनको या बेच सकने का इनको जब समझता है तब ये फिर वहां से पेपर निकाल के ये लोग सेल के लिए आते हैं।
19: हैरानी की बात है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस को करीब 30 साल से सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेस में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी।
22: ये जो कोंगाव का जो CR दाखिल है TET के बारे में 281/26, इसमें आज जो 15वां आरोपी अरेस्ट हुआ है ये कल आत्मसमर्पण करने के लिए भिवंडी कोर्ट में आया था, हाई कोर्ट के एक वकील है उनके जरिए आया था, तो इसको कोर्ट ने हाजिर करके लिया, लेकिन इसको न्यायालयीन कोठड़ी में भेजने का हुक्म किया। वो हुक्म होने के बाद उसने आत्मसमर्पण करने के बाद आयोग का कॉल किया, आयोग ने जो पेपर रखे थे आयोग का कॉल हुआ और आयोग ने ऐसी मांग रखी थी कि इसको आयोग के कस्टडी में दिया जाए करके, तो कोर्ट ने उसकी जो मांग है आयोग की वो पूरी कर दी है और आयोग की कस्टडी में दिया गया था और आज उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर किए थे। अब उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर करने के बाद उनको 2 अगस्त तक का पुलिस कस्टडी दी गई।
19: सवाल है कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने टीटी प्रश्न पत्र की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट आगरा की इसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया? क्या मंत्रालय या शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी इस लीक कांड में शामिल है?
21: सोनू कुमार बिजेंद्र गुप्ता का पुराना साथी है और पेपर लीक के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो माहिम पत्रम नाम का जो प्रेस है जहां पर ये पेपर छपा था, जो ये क्वेश्चन पेपर है टीटी का, वो पेपर छपा था, वहां पर ये पता चला पुलिस को कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी सीसीटीवी कवर नहीं था और कोई भी आ जा सकता था और इसी वजह से वो पेपर वहां पर छपने के बाद आसानी से जो कर्मचारी थे वो अपने जूते में छुपा कर बाहर ले आए। इससे पहले भी ऐसा होते रहा होगा क्योंकि माहिम पत्रम ये जो प्रेस है ये बहुत साल से सरकारी क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिवेश सिंह, भिवंडी आज तक।
0: एक कहावत है आपने जरूर सुनी होगी, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा चुप। क्या यही युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे पर राजनीति में होता है? जहां बीजेपी शासित राज्य में भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक हो, तो विपक्ष आक्रामक होकर प्रदर्शन करता है, लेकिन जब विपक्ष के शासन वाले राज्य में पेपर लीक, भर्ती धांधली होती है तो विपक्षी दल पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। यही झारखंड में हो रहा है जहां युवा नाराज हैं और सड़कों पर हैं।
1: देश में चलते संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित की बात करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक जाकर धरना देते हैं, संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं, छात्रों के हक में सवाल उठना चाहिए, सबका हक है, जरूरी भी है, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को ये पता है या नहीं कि उन्हीं की गठबंधन वाली सत्ता की नाक के नीचे हजारों छात्र परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर जेएमएम कांग्रेस शासित राज्य झारखंड की है, जहां भर्ती आयोग भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। रांची में नीले रंग का तिरपाल लगाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे वो बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी देने के नाम पर हुई परीक्षाओं में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से ठगने, रुलाने, दौड़ाने और भटकाने का आरोप है।
2: जो अभ्यर्थी हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे है और ठीक जंतर मंतर के तर्ज पे यहाँ पे देखिए अनिश्चितकालीन यहाँ धरना का कार्यक्रम जो है वो सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह।
1: झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है, 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है, जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं।
4: सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हमारे हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना सकें।
1: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां 4 तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर 4 है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई, तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई।
23: TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जो लखनऊ की है,
3: जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ कि कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहाँ हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपया अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपये में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपये कहाँ से आ रहा है? तो 200 रुपये के लिए सरकार जो है, जो उसका जो जेपीसी का चेयरमैन और अध्यक्ष है, वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है, सीटों को बेचा जा रहा है। आज 14वीं जेपीसी सबके सामने आया है।
5: हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड एसएससी के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो,
6: कोई ऑप्शन नहीं है, घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा, हम भी अब उन्हें, हम उन्हें मतलब आसरा देते हैं, वो हमें डांडस देते हैं, एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं इमोशनली, हम उन्हें कर समझाते हैं, वो हमें समझाते हैं, ये स्थिति बना हुआ है।
23: भरोसे पे सब कुछ चल रहा है, ये परिवार वाले को भरोसा देते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और दो, और परिजन ये कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा सा वक्त और लो लेकिन कुछ कर के आओ, और वो हो नहीं पा रहा है जो ये करना चाहते हैं।
5: अब तक सीआईडी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एल खियांगते के घर तक छापा मारा गया। जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं, सीआईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है।
24: द एजेंसी व्हाटएवर एजेंसी दैट द कमीशन हैज टेकन टू डू द वर्क at the point in which the work was given, at that point the understanding is that the agency was not blacklisted.
5: दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करती है और कांग्रेस राज में भर्ती में होती धांधली के आरोपों पर युवाओं के हक में प्रदर्शन करने बीजेपी उतरती है।
2: जेपीएससी के 14वें सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम्स में भारी अनियमितता के खिलाफ बीजेपी जेपीएससी कार्यालय पहुंची है। बैरिकेडिंग को जो लगाया गया था सुरक्षा के लिहाज से उसको तोड़कर, पहले बैरिकेडिंग को तोड़कर यहां बीजेपी के कार्यकर्ता आगे पहुंच चुके हैं।
25: पूरा लिपा पोती हो रहा और इस राज्य में सरकार है प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री है कोई नहीं सुन, इस राज्य में सिंडिकेट का।
5: अब सवाल दो हैं। पहला तो ये कि बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं, और दूसरा सवाल क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है, या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: संसदीय कार्य मंत्री का बयान, सियासत के चक्कर में विपक्ष ने मिल पर नहीं की बात। आज दोपहर 12:30 बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के आरोपों पर बिफरी बीजेपी, विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल। पूछा पंजाब के शिक्षा मंत्री पर क्यों नहीं करते सवाल। मोदी सरकार चला रही रिफॉर्म एक्सप्रेस, पेपर लीक पर लगेगी पक्की लगाम। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल। एनटीए के 3 एक्सपर्ट के नाम भी शामिल। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई है 75। शिवसागर, गोलाघाट समेत 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। सीएम हेमंता ने पीड़ित परिवार को 4 लाख के अलावा 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। और उत्पाद से कैंसर फैलाने वाले मुकदमों को रोकने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का प्रस्ताव। अमेरिकी कोर्ट को दिया 52,000 करोड़ रुपए का ऑफर। समझौते के लिए 95% दावेदारों की मंजूरी जरूरी। देश में एक बार फिर संसद में देश के बच्चों के भविष्य सुरक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और लोकसभा में 11:00 तक बहस के बाद अब कार्रवाई 11:00 तक के लिए शुरू होने की बात कही गई है। आज लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे।
1: भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 6,30,00,000 हो गई। यानी 4 दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी, लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1,10,00,000 हो जाती है। यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहां लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है।
2: इट इज ऑल्सो अ रिएट्रेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जीज रिजॉल्व नॉट टू अलाउ एनीवन टू कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया। एंड देयरफॉर दिस बिल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वे as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा, या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगे। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान, पेपर लीक, छात्रों पर लाठी चार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई।
3: आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
4: विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे।
5: जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने।
6: छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है। या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के